0: फीसदी आरक्षण, बेरोजगारों को 3000 रुपए का मासिक भत्ता। राम मंदिर चढ़ावा चोरी कांड में 150 संदिग्धों में नोट गिनने वाले ट्रस्टी शामिल, 25 पर गिर सकती है आगाज। सीएजी ऑडिट के लिए हाईकोर्ट में याचिका, सुप्रीम कोर्ट में पीआईएल दायर। और ब्रिटेन में फिर सियासी भूचाल, चौतरफा संतोष के बाद प्रधानमंत्री के स्टामक का इस्तीफा, 10 साल में पद छोड़ने वाले बने छठे प्रधानमंत्री, उत्तराधिकारी का फैसला जल्द। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में ऐसी आग लगी कि 15 लोगों की जान चली गई। अलीगंज इलाके में कमर्शियल कॉम्प्लेक्स में हुआ यह अग्निकांड वाकई में रोंगटे खड़े कर देने वाला है। सीएम योगी ने घटना वाली जगह और अस्पताल का जाकर जायजा लिया है और उसके बाद हाई लेवल मीटिंग्स भी बुलाई हैं। सीएम ने इस हादसे की एसआईटी जांच के आदेश दे दिए हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी दिल्ली से लखनऊ पहुंच गए। लखनऊ में अस्पताल जाकर हालात का उन्होंने जायजा लिया।
1: लखनऊ में भीषण अग्निकांड, 15 लोगों की चली गई जान। एनिमेशन सेंटर में लगी आग ने पूरे शहर को छत छोड़ दिया। इतना बड़ा अग्निकांड, कौन है 15 मौतों का गुनहगार? मच गया हाहाकार, सीएम योगी ने अफसरों को लगाई फटकार। लखनऊ अग्निकांड का पूरा सच, जवाब तो देना ही पड़ेगा। सागर, नीलेश, अनामिका, संयम, अनुच्छा, सुखमणि, आदित्य, ज्योति, भविष्य, अब्दुल रहमान, सूरज, बहजान, जैनिल, मोहम्मद अब्मार, सुमल्या, ये वो नाम हैं जो आज लखनऊ अग्निकांड की भेंट चढ़ गए हैं। सोचिए, ये अग्निकांड उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में हुआ है, जहां से पूरी सरकार चलती है, जहां मंत्रियों से लेकर अफसरों की पूरी फौज रहती है, फिर भी नियमों की अनदेखी की जाती है। और कमर्शियल बिल्डिंग में चल रहा एक एनिमेशन और गेमिंग इंस्टीट्यूट धू धू कर जल जाता है और उसमें जल जाती हैं 15 जिंदगियां, जिनमें 12 पुरुष और 3 महिलाएं शामिल हैं। दोपहर करीब 2:15 का वक्त अचानक लखनऊ के अलीगंज इलाके में नीचे पेट शॉप और ऊपर जहां गेमिंग इंस्टीट्यूट चलता था, पूरी बिल्डिंग आग के शोलों से घिर जाती है। चीख पुकार मच जाती है, अफरा तफरी मचती है और तस्वीरें देखकर रूह कांपने लगती है।
2: लपटे दिखाइए जो लपटे हैं, सोचिए फायर टेंडर की ये गाड़ी किस तरीके से यहाँ पर जो है मौजूद है और कैसे जो धुआं है उससे आप अंदाजा लगा लें। तो ये देखिए यहाँ पर ये तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं, ये दिखाई पड़ रहा है कि यहाँ पर 2-3 जो है वो शॉप्स प्रॉपर हैं और ऊपरी मंजिल जो है वहां पर कोचिंग सेंटर चल रहा था। तस्वीरें दिखा दी कैमरामैन गौरव लगातार, ये देखिए कैसे फायर के जो ऑफिसर्स हैं वो इस वक्त जो है मौके पर यहाँ मौजूद नजर आ रहे हैं और बाकायदा जो है यहाँ पर उच्च अधिकारी भी पहुंचे हुए हैं।
1: देखिए इस वीडियो को और सोचिए किस हाल में आप और हम अपने बच्चों को जान जोखिम में डालकर पढ़ने भेजते हैं, जहां आग लगने के बाद पता नहीं होता कि कोई बचने का रास्ता भी है। और ये देखिए किस तरह शीशा तोड़कर रस्सी के सहारे उतरने को मजबूर होते हैं बच्चे। जो बच गए वो भगवान भरोसे बचते हैं, वरना परिवार के पास सिवाय आंसू के कुछ नहीं बचता।
3: मेरा भाई फोन करके बताया कि भैया आप फंस गए, 2 दिन पहले मेरा ऑपरेशन किडनी स्टोन को, हम बेड से सीधा भागे, हमने कहा भीगो निकालो मुझे जाना है, यहाँ है। उसके बाद बात नहीं हुई, वो बताया हम बाथरूम में हैं, इतनी बात बताई कि हम बाथरूम में 5-6 लोग आ गए हैं, भैया जल्दी आ जाना, बस इतनी बात, इसका बात नहीं हुई।
4: तो ये भाई कहाँ इसमें पढ़ता था, क्या
3: कोचिंग करता था सब, तो परेशान था।
4: अभी तक कोई अता पता नहीं,
3: नहीं पता साहब, कुछ नहीं पता। कुछ एक बार बात हुई, सिर्फ बात,
4: कुछ बोल नहीं पाया
3: कुछ।
5: हमारा बेटा है यहाँ,
2: केजीएमयू गए हम लोग।
5: हाँ, कह रहे केजीएमयू ले गए, तो वहाँ जा रहे हैं।
2: कोई कॉन्टेक्ट नहीं हो पा रहा,
5: नहीं कुछ नहीं पता।
2: क्या नाम है बेटे का आपके?
5: आदित्य श्रीवास्तव।
2: यहाँ गेमिंग जोन में काम करता था?
5: हाँ, यही जॉब करता था।
2: गेमिंग जोन है?
5: गेमिंग वाला नहीं था वो, एनिमेशन।
1: लेकिन चंद लम्हों बाद ही जब ये पता चलता है कि आदित्य श्रीवास्तव अग्निकांड की भेंट चढ़ गया, तो सोचिए इस माँ पर क्या बीती होगी। घटना की सूचना मिलते ही दमकल की 14 गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाने की कोशिश की। सूचना मिलते ही डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक भी मौके पर पहुंच गए।
6: जो छत पे मैं गया था, तो फर्स्ट फ्लोर जो टॉप फ्लोर है उस पर इस समय कोई भी बच्चा नहीं है। सेकंड फ्लोर की दीवार साइड से तोड़ करके दूसरे के घर के दीवार से सटी जो छत थी उसे तोड़ करके अंदर प्रेस कर गए हैं। एक एक कमरे को सर्च किया जा रहा है, एक एक वॉशरूम को सर्च किया जा रहा है, क्योंकि उन्होंने दीवार के साइड में बड़ा सा मोटा का लकड़ी का प्लाई लगा रखा सा था, तो दीवार के साथ साथ लकड़ी की प्लाई भी तोड़ना पड़ा और एक एक सर्च ऑपरेशन चल रहा है।
1: सीएम योगी अलीगढ़ का दौरा अधूरा छोड़कर लखनऊ लौटते हैं और सीधे घटना स्थल पर पहुंचते हैं। सीएम योगी ने केजीएमयू के ट्रॉमा सेंटर का रुख किया, जहां पर गंभीर रूप से घायल लोग भर्ती हैं, और अग्निकांड पर सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए।
7: लखनऊ में एक दुर्घटना हुई है, वहां पर एक अग्निकांड की चपेट में कुछ बच्चे आए हैं और उसके कारण उनकी दुखद मौत। प्रशासन वहां पे राहत कार्य में लगा हुआ है, लेकिन उस दुखद घटना के कारण मुझे तत्काल वापस लखनऊ जाना पड़ रहा है। मैं उन सभी परिजनों के प्रति जिन्होंने अपने परिवार के उन नौजवानों को खोया है, उनके प्रति मैं अपनी संवेदना व्यक्त करता हूं।
1: लेकिन सवाल यही है कि इस अग्निकांड का जिम्मेदार कौन है? दावा है कि रिहायशी इलाके में ये कमर्शियल शॉप इंस्टीट्यूट चलता रहा। दावा ये भी है कि बिल्डिंग में नियम के मुताबिक एग्जिट रूट तक नहीं था, और तो और दावा ये भी है कि फायर विभाग से भी कोई एनओसी नहीं थी,
8: नहीं है जहां से कोई भाग सके। देखिए जिस तरीके की आग लगी है उसके बाद आप बच के नहीं निकल सकते। यही वजह है कि कई छात्रों ने, लड़कों ने ऊपर से छलांग लगाई है और नीचे बहुत बुरी तरीके से घायल हुए। दूसरी बात, अभी बिल्डिंग की बात हो रही थी, आप देखिए ये पूरा इलाका जो है रेजिडेंशियल है, सरकारी अगर देखा जाए तो सरकारी बिल्डिंगें हैं या फिर रेजिडेंशियल है। ठीक उसके बगल के अगर आप बिल्डिंग्स को देखें तो मैं कहूंगा कैमरामैन को।
1: बड़ी बात तो यह है कि जो इमारत किसी कस्बे में नहीं बल्कि लखनऊ जैसे शहर में है, प्रदेश की राजधानी में है, अलीगंज जैसे पॉश इलाके में है, फिर भी यहाँ इतना बड़ा अग्निकांड कैसे हो गया?
9: लखनऊ में एक आग की दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई है जिसमें कि भारी जनहानि हुई है, जो अत्यंत पीड़ादायक है, और इस कठिन घड़ी में हार्दिक संवेदनाएं सभी शोकाकुल परिवारों के साथ है, और इसके साथ ही मैं सभी घायलों के जल्द से जल्द स्वस्थ होने की कामना करता हूं, और प्रशासन के कुछ अधिकारियों से भी हमारी बातचीत हुई है, और तुरंत मैं लखनऊ के लिए इसमें प्रस्थान कर रहा हूं और मैं जाकर स्थिति का जायजा लूंगा। लेकिन जो कुछ भी घटना हुई है बहुत ही हृदय विदारक घटना हुई है, मैं उसके कारण बेहद दुखी हूं।
1: जिस एनिमेशन इंस्टीट्यूट में आग लगी है उसका नाम हेक्सर स्टूडियो बताया जा रहा है। कंपनी में करीब 30 लोग काम करते थे जिनमें 3D गेम डेवलपर और 3D आर्टिस्ट शामिल थे। आज तक ब्यूरो।
0: लखनऊ में अंधेरगर्दी की आग में 15 जिंदगियां काल के गाल में समा गईं। अब पीड़ितों का आरोप यह है कि सरकारी सिस्टम ने उन्हें मार डाला। आग में फंसे हुए लोगों ने जान बचाने के लिए फायर ब्रिगेड और पुलिस को फोन किया, लेकिन फोन उठाया ही नहीं गया। हादसे में जान गंवाने वाले आदित्य की मां का आरोप यह है कि घटना स्थल पर जब सीएम योगी पहुंचे तो पूरा सरकारी अमला एक पैर पर खड़ा हुआ नजर आया। अगर घटना के ठीक बाद पुलिस प्रशासन की नींद टूट गई होती तो शायद कुछ जिंदगियों को बचा लिया गया होता।
10: एक ये आंसू जो अपने को खोने वाली एक महिला के बच्चे, लेकिन सरकारी सिस्टम की अंधेरगर्दी देखिए, अपनी नाकामी पर पर्दा डालने वाले सिस्टम को ये बर्दाश्त नहीं, दुनिया इनका दर्द देखे, महिला को पुलिस हटा देती। अब एक और आंसू देखिए, ये है उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक, मीडिया के कैमरे के सामने फपक फपक कर रो पड़ते हैं। इन्हें ना कोई रोकने वाला और ना कोई हटाने वाला। क्या अंधेरगर्दी की आग पर डिप्टी सीएम के आंसू से सरकार की घोर नाकामी के दाग धुल जाएंगे? क्योंकि सवाल अब एक दो नहीं, 15 जिंदगियों को सोई हुई सरकार और सरकारी व्यवस्था ने बेमौत मार दिया।
11: मैं 15 ब्रॉडेड मृत अवस्था में हमारे पास आए हैं और बाकी जो 5-6 लोग घायल हैं वो एकदम ठीक है, स्टेबल हैं।
10: दिल और दिमाग को हिला देने वाले इस खौफनाक दृश्य को देखिए, मौत से बचने के लिए किस तरह लोग जान बचाने के लिए बिल्डिंग से तार के जरिए नीचे उतरते हैं। मौत के दर्दनाक मंजर का एहसास आज आप करिए, लेकिन हादसे के बाद घटना स्थल पर जिम्मेदारों की मौजूदगी पर सवाल। ऐसा तो है नहीं कि रातों रात इतनी बड़ी बिल्डिंग खड़ी हो गई, लेकिन लखनऊ के अलीगंज में बड़ा हादसा हुआ तो पूरा सरकारी अमला मानो एक पैर पर खड़ा हो गया। काश इनकी नींद वक्त रहते टूटी होती तो आज 15 घरों में मातम नहीं होती। नाम संजय प्रसाद, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी होम, घटना स्थल पर मुआयना करने पहुंचे। काश पहले नींद टूटती तो ये हादसा नहीं होता। नाम राजीव कृष्ण, डीजीपी उत्तर प्रदेश, घटना स्थल पर मुआयना करने पहुंचे। पहले नींद टूटी होती तो हादसा ना होता। नाम सुजीत पांडे, डीजी फायर है उत्तर प्रदेश, खाना पूर्ति अगर इन्होंने ना की होती तो भी हादसा नहीं होता। नाम है विशाख जी, लखनऊ के कलेक्टर, पहले नींद टूटी होती तो हादसा नहीं होता। नाम है ब्रजेश पाठक, उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम, सिस्टम के दुश्मनों को रुलाया होता तो खुद नहीं रोते। ये सवाल आदित्य श्रीवास्तव की माँ के, जिन्होंने इस दर्दनाक हादसे में अपने जवान बेटे को खोया, बुढ़ापे की लाठी को सरकारी अंधेरगर्दी ने छीना। आज सरकारी सिस्टम का बोझ कंधों पर जवान बेटी की लाश के बोझ से ज्यादा, क्योंकि आदित्य श्रीवास्तव की माँ इन अफसरों को सीधे कटघरे में खड़ा कर देती।
12: मैंने देखा है, मैंने सब देखा, मैं बराबर यही कह रही थी कि एकदम से देखा था मैंने सब, जिस तरह से इस समय भी मैंने देखा कि सीएम साहब आने वाले थे, किया जा रहा था, उस टाइम उस तरह से ये भी ध्यान दिया जाता तो हो सकता है बच्चे बच जाते।
13: मेहनत कर लिया थी,
12: हाँ बच्चे बचाए जा सकते थे। जॉब करता था, एनिमेशन कोर्स का ये स्टूडियो है, वहीं पे जॉब करता था।
10: सरकारी दावों की कलाई खोलती ये तस्वीरें आज आप देखिए। मंगल ग्रह और चांद पर जाने के नए मिशन में हम जुटते हैं, लेकिन ऐसी आपदा में जान बचाने के लिए भी पूरा फायर सिस्टम हथौड़े पर निर्भर। यह हमारी सच्चाई पर आंखें खोलने वाला हथौड़ा। मौके पर मुआयना करने पहुंचे मुख्यमंत्री को आज किस्मत से जिंदा बची इस लड़की की आप बीत जरूर सुननी चाहिए, क्योंकि सिस्टम ने मरने के लिए भगवान भरोसे छोड़ा।
14: परिस्थिति क्या थी, क्या कोई बचाने के लिए आया, कैसे अंदर कुछ पहुँच पाए?
15: फोन कर रही थी, कोई बचा ले हमें नहीं, तो फोन ही नहीं उठा रहा था,
14: कोई नहीं उठा रहा था। आपने फायर पे या किसी के फोन पे?
10: जिम्मेदारों पर बड़े और कड़े एक्शन का दावा मुख्यमंत्री ने किया। पीड़ितों की आप बीती भी सुनी।
16: 14 बार मैंने अपनी आंखों से देखा।
10: सवाल ये है कि जांच की फाइलों में 15 मौतों की सच्चाई दम तोड़ देगी या फिर जिम्मेदारों पर जांच की आंच पहुंचेगी? सवाल इसलिए बड़े हैं क्योंकि तमाम हादसों के बावजूद हर बार हादसे के बाद मुआयना होता है, जिम्मेदारों पर एक्शन के दावे होते हैं लेकिन नतीजा सिफर निकलता है।
0: यूपी में जाति और धर्म की राजनीति भी परवान चढ़ रही है। पहले अखिलेश यादव ने अपने ब्राह्मण नेताओं के साथ बैठक की थी, अब मायावती ने ब्राह्मणों को साधने का दांव चला है। बीएसपी की ओर से ऐलान किया गया है कि वो 27 के चुनाव में ज्यादा से ज्यादा ब्राह्मणों को टिकट देंगी।
17: ये तस्वीरें याद है ना, चंद रोज पहले अखिलेश यादव ने अपने ब्राह्मण नेताओं की बैठक बुलाई थी। सारी कवायद इस बात की थी कि यूपी में ब्राह्मण वोट को एकजुट किया जाए। अब अखिलेश के बाद मायावती ने भी ब्राह्मण वोटर्स पर दांव चला है। बीएसपी प्रमुख मायावती ने एक बार फिर अपने पुराने और सफल सोशल इंजीनियरिंग फॉर्मूले सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय को केंद्र में रखा है। पार्टी ने ब्राह्मण समाज को साधने के लिए उन्हें बड़ी संख्या में टिकट देने का निर्णय लिया है। मायावती ने स्पष्ट किया है कि पार्टी केवल वादे नहीं करती बल्कि जिसकी जितनी तैयारी उसकी उतनी भागीदारी के सिद्धांत पर काम करती है। इधर बीएसपी ब्राह्मण वोटर्स को लुभाने में लगी है, उधर पीडीए की बात करने वाले अखिलेश यादव की मुश्किलें मौलाना शहाबुद्दीन रजवी बरेलवी ने बढ़ा दी है।
18: अखिलेश यादव के परिवार पर मुसलमानों का बहुत बड़ा एहसान है, इस वजह से मैंने पत्र के माध्यम से उनसे मांग की है कि 2027 के चुनाव के लिए मुख्यमंत्री के चेहरे के तौर पर किसी मुसलमान की घोषणा करें।
17: लेकिन मौलाना की अपील को समाजवादी पार्टी ने सिरे से खारिज कर दिया है।
19: हमने एक नेता मुलायम सिंह यादव को चुना था और हमने एक नेता अखिलेश यादव को चुना है, उसी के नेतृत्व में समाजवादी पार्टी आगे बढ़ेगी और जीतेगी भी।
17: यूपी में 27 का समर अब जाति और धर्म के समीकरण बना रहा है। समर्थ श्रीवास्तव, लखनऊ आज तक।
0: शिवसेना अध्यक्ष और महाराष्ट्र के डेप्यूटी सीएम एकनाथ शिंदे का सियासी कुनबा बढ़ गया है। उद्धव ठाकरे के जो 6 बागी सांसद थे ना, आज वो शिंदे कैंप में शामिल हो गए। अब लोकसभा में शिंदे के 7 सांसद की जगह 13 सांसद हो गए। ऑपरेशन टाइगर को शिंदे ने खुद अंजाम दिया। शिंदे बोले, मैंने कहा था एक बार जो मैंने कमिटमेंट कर दी तो उसके बाद मैं अपने आप की भी नहीं सुनता।
20: उद्धव ठाकरे के 6 बागी सांसदों ने कई दिन की आंख मिचौली के बाद आखिरकार मुंबई में एकनाथ शिंदे की मौजूदगी में शिवसेना का दामन थाम लिया।
21: ये केमिकल लोचा वाले लोग हैं, तो जाने दो, मुझे कुछ बोलना नहीं ज्यादा। लेकिन ये 6 खासदार जो है, ये ओम राजे निंबाळकर, भाऊ साहेब वाकसोरे, संजय दीना पाटिल, यहां पर हमारे संजय बंडू जाधव, संजय देशमुख, नागेश अष्टीकर, ये सब लोग पूरे अपने कार्यकर्ताओं से बातचीत करके अपने चुनाव क्षेत्र के विकास के लिए और जो भी किसके जो जो प्रॉब्लम्स है, कुछ अभी मैं ओम राजे के बारे में बता दिया है, अभी फिर से मुझे कहने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन जैसे चुनाव क्षेत्र में विकास की बात है, वैसे पारिवारिक भी कुछ भी तकलीफ है उसके पीछे एकनाथ शिंदे खड़ा है।
20: अपना सियासी कुनबा बढ़ाने के लिए एकनाथ शिंदे बोले, मैं कोई काम अधूरा नहीं छोड़ता।
22: आम्ही ऑपरेशन अर्धवट करत नाही, फुलफुल करतो।
20: पहले शिवसेना के 7 लोकसभा सांसद, लेकिन उद्धव ठाकरे की पार्टी शिवसेना यूबीटी के 6 सांसद शिंदे कैंप में आने के बाद अब लोकसभा में कुल शिंदे के 13 सांसद हो गए, जिससे एनडीए में शिंदे का सियासी कद भी काफी बढ़ गया है।
21: 2022 में पहले ऑपरेशन हुआ था, 2022 के बाद 40 एमएलए शुरुआत में थे, आज हमारे 6 खासदार साथ में आए हैं। क्रिकेट में क्या कहते हैं, षटकार, सिक्सर, और सभी लोगों का परिचय मैंने कराया है, एक से बढ़कर एक सब हमारे जमीन से जुड़े हुए हमारे खासदार है, धुरंधर है। और सभी लोग अपनी अपनी ताकत अपने अपने चुनाव क्षेत्र में मजबूती से चुनकर आए। ये जो लोग कहते हैं, आरोप लगाते हैं, ये स्वार्थ के लिए गए, इनके लिए गए, उसके लिए गए, कई लोग तरह तरह की बातें करते हैं। अभी जब उनके पास थे तो सब अच्छे थे, मैं भी था, अच्छा था। मैं जब बाला साहब ठाकरे जी के विचार को आगे बढ़ाने के लिए गया तो बुरा हो गया। अभी ये सब लोग क्यों जा रहे हैं, इसका आत्मचिंतन आत्म परीक्षण करना चाहिए।
20: महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम और शिवसेना प्रमुख एकनाथ शिंदे ने ऑपरेशन टाइगर की कामयाबी पर फिल्मी अंदाज में कहा, एक बार जो मैंने कमिटमेंट कर दी उसके बाद मैं अपने आप की भी नहीं सुनता।
21: और मैं एक बार कमिटमेंट करता हूं तो फिर मैं फिर खुद की भी नहीं सुनता हूं, ये मेरा स्वभाव है।

0: ये ऐतिहासिक दिन है। हमारे 6000 शिवसेना में शामिल हुए, शिवसेना परिवार में शामिल हुए, बाला साहब ठाकरे जी के विचारधारा में शामिल हुए, धर्मवीर आनंद दिघे साहब की विचारधारा में शामिल हुए। इससे शिवसेना की ताकत बढ़ रही है, शिवसेना बढ़ रही है, शिवसेना चांदा से बांदा पहुंच रही है। कई लोग हमारे टिंगल करते थे, मजाक करते थे, शिवसेना ठाणे तक है। मैं उन्हें कहा अभी देखो, शिवसेना सेकेंड लार्जेस्ट पार्टी महाराष्ट्र में हो चुकी है।
1: शिंदे बोले सीएम फडणवीस के साथ उनकी जोड़ी हिट है क्योंकि दोनों का मकसद महाराष्ट्र का चौतरफा विकास करना है।
0: कि जो भी लोग आज तरह तरह की बातें करते हैं उनके पास कोई मुद्दे नहीं है, गलत सलत आप जब 2022 से गालियां देना है दे दो, जितनी गालियां देते रहोगे उतने खड्डे में जाते रहोगे, जाओ खड्डे में। और इसलिए मैं इतना ही कहूंगा, हम काम कर रहे, काम करने वाले लोग हैं। 2.5 साल का मेरे मुख्यमंत्री कार्यकाल भी आपने देखा है, कितने डेवलपमेंट के काम हुए, विकास के हुए, कई लड़की लाडली बहन जैसे कई स्कीम जो है वो भी हो गई शुरू। आज भी महाराष्ट्र आगे जा रहे, देवेंद्र जी हमारे मुख्यमंत्री है, हम टीम बनकर काम कर रहे, इस महाराष्ट्र को आगे बढ़ा रहे।
1: ऑपरेशन टाइगर की सफलता पर महायुति सरकार जश्न मना रही है। विधानसभा सत्र की शुरुआत से पहले सीएम फडणवीस और डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे का जोश हाई दिखा। इससे पहले मुख्यमंत्री फडणवीस ने भी कहा कि ऑपरेशन टाइगर पूरा हुआ,
2: ऑपरेशन यशस्वी है, बॉडी एकदम सुदृढ है, ऑपरेशन यशस्वी है आणि बॉडी एकदम सुदृढ है।
1: वहीं आदित्य ठाकरे ने कहा धोखेबाज सांसद उद्धव के चेहरे पर चुनकर आए थे, इसलिए हिम्मत है तो इस्तीफा देकर चुनाव लड़े।
3: जो 6 बागी नहीं बिकाऊ सांसद है वो चुन के आए थे उद्धव बाला साहब ठाकरे इनके चेहरे पे, जो वो चुन के आए थे वो महाविकास आघाड़ी और इंडिया अलायंस के चेहरे पे, वो जो चुन के आए थे वो भाजपा के खिलाफ आए थे, जिस भाजपा को इस देश का संविधान बदलना है। आज भाजपा इनको तोड़फोड़ करके जो अपने पक्ष में अपने दल में शामिल करना चाहती है, दलदल में शामिल करना चाहती है, वो इसीलिए करना चाहती है ताकि वो देश का संविधान बदल सके। उनको 2/3 जो मेजोरिटी है वो ही प्राप्त करना चाहती है और ताकि देश में संविधान बदल सके, यही उनका लक्ष्य। अगर इस देश में कानून व्यवस्था है, न्याय प्रक्रिया है, तो हम यही अपेक्षित करते हैं कि न्याय हमें मिले। ये न्याय सिर्फ हमारे पार्टी के लिए नहीं है, जैसे आज हमारी पार्टी को तोड़ा है वैसे आम आदमी पार्टी को भी तोड़ा, टीएमसी को तोड़ा है, कल कोई भाजपा को जाके तोड़ेगा। लेकिन क्योंकि ऐसे राक्षस तो उधर भी जा सकते हैं, लेकिन यही बात है कि अगर हम कानून से चले, क्या हम संविधान से चले, तो फिर इस देश में संविधान का अगर राज्य हो और संविधान का राज हो तो हमें न्याय मिलेगा, यही अपेक्षा है।
1: शिवसेना दावा कर रही है कि उद्धव के एक और सांसद शिंदे कैंप में आने को बेकरार थे, लेकिन वो कैबिनेट मंत्री बनाने के लिए दबाव बना रहे थे, जिसके बाद शिंदे ने उन्हें मना कर दिया।
4: ये बागी सांसद जो है ये कोई चेन्नई में रुका था, कोई वाराणसी में जाकर मंदिर में दर्शन कर रहा था और सभी सांसद आज कुल मिलाकर एक हवाई जहाज से मुंबई एयरपोर्ट दोपहर 1:30 बजे के करीब पहुंचे, जिसके बाद वो एकनाथ शिंदे के सरकारी आवास नंदनवन पर पहुंचे। उसके बाद उन्होंने एकनाथ शिंदे के साथ बैठक की और इस बैठक के बाद मैं जहां खड़ा हूं वहां वाईबी चौहान सेंटर में उन्होंने आकर पार्टी में अधिकृत तौर पर प्रवेश किया और ऑपरेशन टाइगर पूरा किया। तो इस तरह से इस ऑपरेशन टाइगर को अंजाम दिया गया है और महाराष्ट्र की सियासत फिर एक बार दिख रही है किस तरह से गर्मा गई है। कैमरा पर्सन मंदार चौहान के साथ मैं ऋत्विक भालेकर, मुंबई आज तक।
5: इसी के साथ हम यहां रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आज तक।
6: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।
7: नीड बेटर इंटरनेट? Cox Internet has the fast, reliable speeds you're looking for. Perfect for seamless streaming, gaming, and working from home. And now get Cox 300 Meg Internet with a 2-year plan price lock guarantee, plus equipment included. Oh yeah! So get your household up to speed. Switch to Cox Internet today. Taxes and fees excluded from price guarantee.
8: मूंगा धारण करने से आत्म

0: विश्वास बढ़ जाता है। क्या मूंगा धारण करने से व्यक्ति का भय दूर होता है? क्या मूंगा धारण करने से महिलाएं स्वस्थ रहती हैं? क्या है मूंगा रत्न की विशेषता और कैसा है इसका प्रभाव, जानिए मेरे साथ सिर्फ भाग्य चक्र में।
1: You know that thing where you get an amazing pair of shoes at a really great price and want to tell everyone about it? Yeah, so do we. Here at Designer Shoe Warehouse, we'll give you something to brag about. Like the latest styles from brands you love, or the trends everyone's obsessing over, or shoes that make you feel like, well, you. So go ahead, show off a little. Find shoes that get you at prices that get your budget. Head to your DSW store or DSW.com today. DSW, let us surprise you.
0: क्या मूंगा धारण करने से आत्मविश्वास बढ़ जाता है? क्या मूंगा धारण करने से व्यक्ति का भय दूर होता है? क्या मूंगा धारण करने से महिलाएं स्वस्थ रहती हैं? क्या है मूंगा रत्न की विशेषता और कैसा है इसका प्रभाव, जानिए मेरे साथ सिर्फ।
2: Hey, this is Freddie Coleman from Freddie and Harry. Stay on top of the Major League Baseball season with ESPN Radio. Get daily sports talk covering every big moment from around the league.
3: To right field, and it will
2: from the first pitch of the season to the stretch run.
3: And that's the ball game.
2: We've got you covered with analysis, storylines, and insider perspective. And all season long, catch select live games so you can tune in for key matchups and hear the action unfold. Search ESPN Radio or tell your device to play ESPN Radio on TuneIn to listen.
4: Presented by पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।

लखनऊ अग्निकांड में अब तक 15 लोगों की मौत, 9 घायल। पीड़ितों से मिलने अस्पताल पहुंचे सीएम योगी। एई जेई सहित 4 अधिकारी सस्पेंड। एसआईटी करेगी हादसे की जांच। सरकार ने 7 दिन में मांगी रिपोर्ट। तंदूर बन गया कमर्शियल कॉम्प्लेक्स। एक ही एंट्री एग्जिट होने से फंसे युवा। रिहायशी भवन के नक्शे पर बनी थी इमारत। बिल्डिंग मालिक सहित 4 गिरफ्तार। नामजद एफआईआर। फिरहाद हाकिम सहित टीएमसी के 8 शीर्ष नेताओं को नोटिस। बीजेपी खेमे में शामिल होने और पार्टी विरोधी गतिविधियों का आरोप। बागी विधायकों ने खुद को बताया असली टीएमसी। ममता को अध्यक्ष पद से हटाया। सांसदों की बगावत के बाद उद्धव को लग सकता है एक और झटका। विधानसभा की रणनीति पर चर्चा के लिए बुलाई गई बैठक से 3 विधायक और 1 एमएलसी भी गायब। महाराष्ट्र के पुणे में हवाला कारोबारी के दफ्तर पर फायरिंग। सोशल मीडिया पोस्ट में लॉरेंस बिश्नोई ने ली हमले की जिम्मेदारी। लिखा, अगली गोली सीने पर चलेगी।

0: आज तक आपके साथ मैं हूं आशुतोष मिश्रा। देश और दुनिया की सारी खबरें लेकर हम आपके सामने हाजिर हैं। सुबह के 6 बज चुके हैं और शुरुआत करेंगे उस बड़ी खबर से जिसने पूरे उत्तर प्रदेश को चौंकाया, पूरे उत्तर प्रदेश को हैरत में डाला, एक दर्दनाक हादसा। तो लखनऊ अग्निकांड में इमारत के मालिक सहित 4 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आपको याद हो कल दोपहर अलीगंज इलाके के पुरनिया कमर्शियल कॉम्प्लेक्स में आग लगी थी। आप जो देख रहे तस्वीरें उसी घटना की हैं। इस आगजनी में, इस अग्निकांड में 15 युवाओं की जलने से मौत हो गई। बेहद दर्दनाक हादसा, बेहद दर्दनाक मौत। इस हादसे में 9 लोग घायल हुए हैं जिनका इलाज भी चल रहा है। उत्तर प्रदेश सरकार ने इस मामले में SIT गठित कर दी है, जांच के आदेश दे दिए हैं, 7 दिनों में रिपोर्ट मांगी है। इस घटना के तुरंत बाद CM योगी ने मौके पर पहुंचकर हालात का जायजा लिया। उन्होंने देर रात KGMO में घायलों और मृतकों के परिजनों से भी मुलाकात की। सरकार ने मुआवजे का भी ऐलान किया है। इन मृतकों में 3 महिलाएं शामिल हैं। पुलिस ने इस मामले में 6 लोगों के खिलाफ नामजद रिपोर्ट दर्ज की है। मारे गए युवाओं में ज्यादातर की उम्र 20 से 24 साल के बीच थी। वो युवा जो देश का भविष्य थे। केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह भी देर शाम तक लखनऊ पहुंचे। उन्होंने भी आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की बात कही है। प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भी इस हादसे पर अपनी संवेदना जाहिर की है। AEJ सहित 4 अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई हुई है। तो 22 जून जिसने लखनऊ में इस घटना को अंजाम दिया, आपको याद हो इससे पहले दिल्ली में एक अग्निकांड हुआ जिसके बाद उत्तर प्रदेश सरकार ने इमारतों की ऑडिट के आदेश दिए थे। न जाने वो ऑडिट कहां गई, उस ऑडिट की रिपोर्ट कहां गई, कितनी सुरक्षा देखी गई, इन इमारतों की बनावट कितनी देखी गई। लेकिन इन 6 तस्वीरों से पूरे हादसे को समझें तो एक पूरी इमारत जलता फिरता एक तंदूर बन गई। और उसी के बाद तार पर बच्चे लटक रहे थे, वो भागने की कोशिश कर रहे थे, खिड़की के रास्ते जान बचाने की कोशिश कर रहे थे, कई बच्चे वहां से कूदने की कोशिश कर रहे थे, इसके बाद उनको चोटें भी आई। मौके पर तुरंत उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे जो समय किसी और शहर में थे, लेकिन हादसे की जानकारी के बाद वो भी तुरंत पहुंचे। और उसी के साथ साथ उत्तर प्रदेश पुलिस ने, लखनऊ पुलिस ने कार्रवाई भी शुरू की, 4 गिरफ्तारियां की हैं। और इसी के साथ जो बिल्डिंग का मालिक है उसके खिलाफ भी मुकदमा दर्ज किया गया है। 4 अधिकारी इसमें अब तक सस्पेंड किए गए हैं। वो जूनियर अधिकारी जिनकी जिम्मेदारी थी ये देखना कि अवैध निर्माण ना होने पाए, बिल्डिंग नियमों का पालन हो, एंट्री और एग्जिट अलग अलग होने चाहिए, क्योंकि अगर ये ऐसा होता तो ऐसे में वहां पर जाने बचाई जा सकती। देखिए तस्वीरें कैसे बच्चे, जब एक पूरी इमारत जब वो तंदूर बन गई, बच्चे वहां से कूदने लगे खुद को जान बचाने की कोशिश। तो आखिर इस तरह के हादसों के जिम्मेदार कौन होता है, सीधा सवाल है। हाउस टैक्स नोटिस जब भरा जाता है ना इमारत का, तो पता चल जाता है रिहायशी नक्शे पर इमारत बनती है, यानी आप किसी रिहायशी इलाके में कमर्शियल बिल्डिंग नहीं बना सकते बिना अनुमति के। 2014 से उस रिहायश इमारत का, ये जो जलता तंदूर दिखाई दे रहा है ये रिहायश इमारत, यहां लोगों को रहना था लेकिन बिना NOC के, बिना परमिशन के वहां कमर्शियल कॉम्प्लेक्स बना दिया। कभी भी फायर NOC नहीं मांगी गई। अब आप सोचिए फायर डिपार्टमेंट की भी गलती है, नगर निगम की भी गलती है कि आपके इलाके में अगर इस तरह की इमारत रिहायशी कमर्शियल हो गई, आप बिना अनुमति चल रही है, आपने उसे चलने कैसे दी। तो फायर विभाग की NOC सुनिश्चित करनी होती है। अब SIT बनाई गई, तो SIT में कौन कौन है, अमृत अभिजात अपर मुख्य सचिव हैं पर्यटन विभाग के, ये भी जांच करेंगे। इसी के साथ साथ प्रवीण कुमार जो ADG लखनऊ हैं, पुलिस की जांच पहले से इसमें चल रही है, तो एक SIT और बना दी गई। एक तरफ सिविल जांच होगी, एक तरफ पुलिस की जांच होगी। दूसरा, बिल्डिंग मालिक सहित 4 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं, ये अब तक की कार्रवाई हुई है। और उसके अलावा AEJE और इसके अलावा जो छोटे अधिकारी थे उनमें से 4 को सस्पेंड कर दिया गया है, ये कार्रवाई के नाम पर कुल मिलाकर के हुआ है। लेकिन ये इमारत कैसे चल रही थी इसका जवाब अभी किसी के पास नहीं। बिल्डिंग मालिक से 4 की गिरफ्तारी और उसके साथ AEJE जो छोटे स्तर के कुछ अधिकारी हैं उनको गिरफ्तार कर लिया गया है। 2 सदस्यों की SIT टीम गठित कर दी गई है, तो उसमें एक जो है सिविल ऑफिसर है, एक पुलिस ऑफिसर है, ये मिलकर के जांच करेंगे और 7 दिन में ये अपनी रिपोर्ट शासन को देंगे। 7 दिन बाद उस रिपोर्ट पर क्या होगा आगे आपसे, इसके पहले दिल्ली में भी एक हादसा हुआ था, तो 7 दिन बाद ये रिपोर्ट सौंपेंगे। रिपोर्ट के बाद कार्रवाई क्या होगी फिर देखना होगा। हालांकि पहले एक तरफ पुलिस की कार्रवाई शुरू हो गई है, बिल्डिंग के मालिक को गिरफ्तार कर लिया गया। अब आग लगने के कारण जांच का दायरा क्या होगा, जो SIT बनाएगी वो क्या करेगी, वो ये बताएगी कि आखिर इस इमारत में आग लगी कैसे, सुरक्षा मानकों का वहां पर पालन हुआ था कि नहीं। अगर एक इमारत रिहायशी है कमर्शियल चल रही है तो सबसे बड़ी बात है कि कोई पालन नहीं हुआ था, सबसे बड़ी लापरवाही तो यही समझ में आ रही है। भवन की वैधानिक स्वीकृतियां, एक जो नक्शा होता है क्या वो रिहायशी है, वहां कमर्शियल कैसे चला, अगर इमारत है तो एंट्री अलग होनी चाहिए एग्जिट अलग होनी चाहिए ताकि ऐसे हादसों में बच्चे या बुढ़े हों बुजुर्ग हों भाग के निकल सकें। फायर अग्निशमन के पर्याप्त इंतजाम थे या नहीं थे। उसी के साथ संभावित लापरवाही, आप अपने घर के बाहर अगर छज्जा लगाने जाएंगे ना, नगर निगम पुलिस पहले पहुंच जाती है, छज्जा नहीं लगाने देती है। लेकिन यहां एक इमारत रिहायशी इलाके में कमर्शियल कोचिंग से लेकर के दुनिया भर की सारी गतिविधियां हो रही थी और किसी को फर्क ही नहीं था, किसी को पता ही नहीं था, ऐसा हो ही नहीं सकता। लेकिन अब यह घटना हो गई है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी घटनास्थल पर पहुंचे, उन्होंने इस घटना पर अपना दुख जताया। राजनाथ सिंह ने पीड़ित परिवारों के प्रति अपनी संवेदनाएं व्यक्त की। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री के निर्देश पर पूरे मामले की गहन जांच होगी, दोषियों पर सख्त एक्शन होगा। तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी पहुंचे और उसके बाद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी लखनऊ पहुंचे, उन्होंने परिजनों से मुलाकात की। ये देर रात की तस्वीर है, उन्हीं के साथ उत्तर प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री भी वहां पर मौजूद थे। परिजनों को उन्होंने आश्वासन दिलाया कि कार्यवाही होगी, लेकिन वो खौफनाक मंजर जलते तार पर जब वो लटकने लगे, वहां से कूदने लगे, गिरने लगे, अभी भी जो घायल है वो अस्पताल में है, गंभीर अवस्था में है, उनका इलाज चल रहा है। एक पूरी इमारत अगर तंदूर बन जाती है और देश के 15 युवा उसमें जलकर उनकी मौत हो जाती है, कई सारे सवाल छोड़ देती है।
1: पहले दुखद है, दुर्भाग्यपूर्ण है, विरादायक है, कुछ भी कहा जाए आरोप वाले एडमिनिस्ट्रेशन के स्तर पर और डॉक्टर्स के स्तर पर जो मैक्सिमम एफर्ट हो सकता है जो कुछ भी करना आवश्यक है सब किया है लोगों ने, और मुख्यमंत्री जी ने स्वयं कहा भी है इस मामले की तह तक जाने की वो कोशिश करेंगे, प्रॉपरली इसकी जाँच कराई जाएगी और आवश्यक जहाँ हुआ तो रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स करने में गवर्नमेंट पीछे नहीं
2: रहेगी। सर परिवार वाले
3: परिजनों से भी मिले, किसकी गलती अभी प्राथमिक तौर पे?
1: देखिए भाई इसे नहीं कह सकते, ये तो जांच करनी चाहिए।
2: सर परिजन लापरवाही का आरोप लगा रहे हैं लगातार की
1: ठीक है, स्वाभाविक है परिजन पीड़ा में है, लेकिन जब तक मामले की पूरी तरह से जाँच न हो जाए तब तक किसी के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स करना मैं समझता हूँ ये जल्दबाजी है।
0: आपको दिल्ली का वो कोचिंग सेंटर याद है, बरसात आई पानी भर गया बच्चे डूब के मर गए। आपको दिल्ली का मालवीय नगर याद है, इसी तरह की लापरवाही की इमारत में आग लगती है, लोग जलकर मर जाते हैं और उसके बाद यही हादसा लखनऊ में हुआ है। दिल्ली ने एक दिल्ली से सबक नहीं लिया, लखनऊ ने दिल्ली से सबक नहीं लिया, देश ने लखनऊ से सबक नहीं लिया तो ऐसे हादसे रोकना हमेशा मुश्किल होगा। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में ऐसी आग लगी कि 15 लोगों की जान ले ली। अलीगंज इलाके की एक कमर्शियल कॉम्प्लेक्स में अग्निकांड रोंगटे खड़े कर देने वाला है। सीएम योगी ने घटना वाली जगह अस्पताल जाकर जायजा लिया, हाई लेवल मीटिंग बुलाई, हादसे के एसआईटी जांच के आदेश दिए। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह दिल्ली से लखनऊ पहुंचे, लखनऊ में अस्पताल जाकर जायजा लिया। लेकिन एक सवाल हर किसी के सामने है, आंख के सामने एक अपराध हो रहा था, हर कोई चुप क्यों था?
4: लखनऊ में भीषण अग्निकांड, 15 लोगों की चली गई जान। एनिमेशन सेंटर में लगी आग ने पूरे शहर को छत छोड़ दिया। इतना बड़ा अग्निकांड, कौन है 15 मौतों का गुनहगार? मच गया हाहाकार, सीएम योगी ने अफसरों को लगाई फटकार। लखनऊ अग्निकांड का पूरा सच जवाब तो देना ही पड़ेगा। सागर, नीलेश, अनामिका, संयम, अनुच्छा, सुखमणि, आदित्य, ज्योति, भविष्य, अब्दुल रहमान, सूरज, बहजान, जैनिल, मोहम्मद अब्मार, सुमल्या, ये वो नाम हैं जो आज लखनऊ अग्निकांड की भेंट चढ़ गए हैं। सोचिए ये अग्निकांड उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में हुआ है, जहां से पूरी सरकार चलती है, जहां मंत्रियों से लेकर अफसरों की पूरी फौज रहती है, फिर भी नियमों की अनदेखी की जाती है और कमर्शियल बिल्डिंग में चल रहा एक एनिमेशन और गेमिंग इंस्टीट्यूट धू धू कर जल जाता है और उसमें जल जाती हैं 15 जिंदगियां, जिनमें 12 पुरुष और 3 महिलाएं शामिल हैं। दोपहर करीब 2:15 का वक्त अचानक लखनऊ के अलीगंज इलाके में नीचे पेट शॉप और ऊपर जहां गेमिंग इंस्टीट्यूट चलता था पूरी बिल्डिंग आग के शोलों से घिर जाती है। चीख पुकार मच जाती है, अफरा तफरी मचती है और तस्वीरें देखकर रूह कांपने लगती है।
5: लपटे दिखाइए जो लपटे हैं, सोचिए फायर टेंडर की ये गाड़ी किस तरीके से यहाँ पर जो है मौजूद है और कैसे जो धुआं है उससे आप अंदाजा लगा लें। तो ये देखिए यहाँ पर ये तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं, ये दिखाई पड़ रहा है कि यहाँ पर 2-3 जो है वो शॉप्स प्रॉपर हैं और ऊपरी मंजिल जो है वहां पर कोचिंग सेंटर चल रहा था। तस्वीरें दिखा दी कैमरामैन गौरव लगातार, ये देखिए कैसे फायर के जो ऑफिसर्स हैं वो इस वक्त जो है मौके पर यहाँ मौजूद नजर आ रहे हैं और बकायदा जो है यहाँ पर उच्च अधिकारी भी पहुंचे हुए हैं।
4: देखिए इस वीडियो को और सोचिए किस हाल में आप और हम अपने बच्चों को जान जोखिम में डालकर पढ़ने भेजते हैं, जहां आग लगने के बाद पता नहीं होता कि कोई बचने का रास्ता भी है। और ये देखिए किस तरह शीशा तोड़कर रस्सी के सहारे उतरने को मजबूर होते हैं बच्चे। जो बच गए वो भगवान भरोसे बचते हैं, वरना परिवार के पास सिवाय आंसू के कुछ नहीं बचता।
6: मेरा भाई फोन करके बताया कि भैया आप फंस गए, 2 दिन पहले मेरा ऑपरेशन किडनी स्टोन को हो, हम बेड से सीधा भागे, लगा बीगो निकालो मुझे जाना है, यहाँ है। उसके बाद बात नहीं हुई, वो बताया हम बाथरूम में हैं, इतनी बात बताई कि हम बाथरूम में 5-6 लोग आ गए हैं, भैया जल्दी आ जाना, बस इतनी बात हुई, उसके बाद नहीं हुई।
7: तो ये भाई कहाँ इसमें पढ़ता था, क्या
6: कोचिंग करता था सब परेशान थे,
7: अभी तक कोई अता पता नहीं,
6: नहीं पता साहब, कुछ नहीं पता, कुछ एक बार बात हुई बात,
7: कुछ बोल नहीं पाया
6: कुछ।
8: हमारा बेटा है यहाँ
5: KGMU गए हम लोग,
8: हाँ कह रहे KGMU ले गए तो वहाँ जा रहे हैं,
5: कोई कॉन्टेक्ट नहीं हो पा रहा,
8: नहीं कुछ नहीं पता।
5: क्या नाम है बेटे का आपके?
8: आदित्य श्रीवास्तव।
5: यहाँ गेमिंग जोन में काम करता था?
8: हाँ यही जॉब करता था।
5: गेमिंग जोन है?
8: गेमिंग वाला नहीं था वो, एनिमेशन।
4: लेकिन चंद लम्हों बाद ही जब ये पता चलता है कि आदित्य श्रीवास्तव अग्निकांड की भेंट चढ़ गया तो सोचिए इस माँ पर क्या बीती होगी। घटना की सूचना मिलते ही दमकल की 14 गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाने की कोशिश की। सूचना मिलते ही डिप्टी CM ब्रिजेश पाठक भी मौके पर पहुंच गए।
9: जो छत पे मैं गया था तो फर्स्ट फ्लोर जो टॉप फ्लोर है उस पर इस समय कोई भी बच्चा नहीं है। सेकंड फ्लोर की दीवार साइड से तोड़ करके दूसरे के घर के दीवार से सटी जो छत थी उसे तोड़ करके अंदर प्रेस कर गए हैं। एक एक कमरे को सर्च किया जा रहा है, एक एक वॉशरूम को सर्च किया जा रहा है, क्योंकि उन्होंने दीवार के साइड में बड़ा सा मोटा का लकड़ी का प्लाई लगा रखा सा था, तो दीवार के साथ साथ लकड़ी की प्लाई भी तोड़ना पड़ा और एक एक सर्च ऑपरेशन चल रहा है।
4: CM योगी अलीगढ़ का दौरा अधूरा छोड़कर लखनऊ लौटते हैं और सीधे घटना स्थल पर पहुंचते हैं। CM योगी ने KGMU के ट्रॉमा सेंटर का रुख किया जहां पर गंभीर रूप से घायल लोग भर्ती हैं और अग्निकांड पर सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए।
10: लखनऊ में एक दुर्घटना हुई है, वहां पर एक अग्निकांड की चपेट में कुछ बच्चे आए हैं और उसके कारण उनकी दुखद मौत, प्रशासन वहां पे राहत कार्य में लगा हुआ है, लेकिन उस दुखद घटना के कारण मुझे तत्काल वापस लखनऊ जाना पड़ रहा है। मैं उन सभी परिजनों के प्रति जिन्होंने अपने परिवार के उन नौजवानों को खोया है उनके प्रति मैं अपनी संवेदना व्यक्त करता हूं।
4: लेकिन सवाल यही है कि इस अग्निकांड का जिम्मेदार कौन है। दावा है कि रिहायशी इलाके में ये कमर्शियल शॉप इंस्टीट्यूट चलता रहा। दावा ये भी है कि बिल्डिंग में नियम के मुताबिक एग्जिट रूट तक नहीं था और तो और दावा ये भी है कि फायर विभाग से भी कोई NOC नहीं थी।
7: लिफ्ट नहीं है जहां से कोई भाग सके। देखिए जिस तरीके की आग लगी है उसके बाद आप बच के नहीं निकल सकते। यही वजह है कि कई छात्रों ने, लड़कों ने ऊपर से छलांग लगाई है और नीचे बहुत बुरी तरीके से घायल हुए। दूसरी बात, अभी बिल्डिंग की बात हो रही थी, आप देखिए ये पूरा इलाका जो है रेसिडेंशियल है, सरकारी अगर देखा जाए तो सरकारी बिल्डिंगें हैं या फिर रेजिडेंशियल है। ठीक उसके बगल के अगर आप बिल्डिंग्स को देखें तो मैं कहूंगा कैमरामैन को।
4: बड़ी बात तो यह है कि जो इमारत किसी कस्बे में नहीं बल्कि लखनऊ जैसे शहर में है, प्रदेश की राजधानी में है, अलीगंज जैसे पॉश इलाके में है, फिर भी यहाँ इतना बड़ा अग्निकांड कैसे हो गया?
11: लखनऊ में एक आग की दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई है जिसमें कि भारी जनहानि हुई है जो अत्यंत पीड़ादायक है, और इस कठिन घड़ी में हार्दिक संवेदनाएं सभी शोकाकुल परिवारों के साथ है, और इसके साथ ही मैं सभी घायलों के जल्द से जल्द स्वस्थ होने की कामना करता हूं, और प्रशासन के कुछ अधिकारियों से भी हमारी बातचीत हुई है और तुरंत मैं लखनऊ के लिए इसमें प्रस्थान कर रहा हूं और मैं जाकर स्थिति का जायजा लूंगा। लेकिन जो कुछ भी घटना हुई है बहुत ही हृदय विदारक घटना हुई है, मैं उसके कारण बेहद दुखी हूं।
4: जिस एनिमेशन इंस्टीट्यूट में आग लगी है उसका नाम हेक्सर स्टूडियो बताया जा रहा है। कंपनी में करीब 30 लोग काम करते थे जिनमें 3D गेम डेवलपर और 3D आर्टिस्ट शामिल थे। आज तक ब्यूरो।
0: लखनऊ में अंधेर गर्दी की आग में 15 जिंदगी काल के गाल में समा गई। पीड़ितों का आरोप है कि सरकारी सिस्टम ने मार डाला। आग में फंसे लोगों ने जान बचाने के लिए फायर ब्रिगेड और पुलिस को फोन किया लेकिन फोन भी नहीं उठा। हादसे में जान गंवाने वाले आदित्य की मां का आरोप है कि घटनास्थल पर जब CM पहुंचे तो पूरा सरकारी अमला एक पैरों पर खड़ा दिखा। घटना के बाद पुलिस प्रशासन की नींद टूटी होती तो कुछ जिंदगियां बच गई होती। लेकिन इन तस्वीरों को देखिए, ये वो तस्वीरें उस घटनाक्रम की हैं। कई सारे सवाल पूछ रही हैं, रिहायशी के इलाके में इमारत कैसे कमर्शियल चलती रही? अगर एक इमारत बनी है, अगर उसकी एंट्री है तो एग्जिट क्यों नहीं था? क्या आग से होने वाली घटनाओं के पर्याप्त इंतजाम थे? और सबसे बड़ी बात, खोज लीजिए इंटरनेट पर, ज्यादा समय नहीं हुआ, दिल्ली की घटना हुई, अगले दिन लखनऊ से खबर आती है कि सरकार ने आदेश दिए हैं इमारतों को ऑडिट कीजिए, देखिए कहीं आग लगने की घटना हो तो नहीं सकती है, कहीं दिल्ली की पुनरावृत्ति लखनऊ में ना हो जाए। उसके बाद क्या हुआ? अगर उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ जहां से आदेश निकला है वहीं पर ऑडिट नहीं हुआ, और अगर ऐसा नहीं हुआ तो सरकार के आदेश ने, बल्कि ये वो लापरवाही है जिसके लिए जिम्मेदार क्या AE JE जैसे छोटे अफसर होंगे, अधिकारी होंगे? फायर ब्रिगेड की वो पूरी जिम्मेदारी थी, चीफ फायर ऑफिसर की जिम्मेदारी थी ये देखना कि अगर कोई इमारत अवैध तरीके से चल रही है, बिना NOC के चल रही है, उसे सील करें। ये लखनऊ के नगर निगम की जिम्मेदारी है, ये वहां के महापौर की जिम्मेदारी है, ये वहां के उस डिविजनल कमिश्नर की जिम्मेदारी है, रेवेन्यू ऑफिसर की जिम्मेदारी है कि आपके इलाके में रिहायशी कॉलोनी में आखिर कमर्शियल संपत्ति कैसे चल रही थी, और चल रही थी तो आपने उसे सील क्यों नहीं किया? क्यों बुलडोजर लखनऊ में नहीं गरजा? 15 बच्चों की जिंदगी जब चली गई है कौन जिम्मेदार है? एक तरफ तंदूर पूरी इमारत बन गई, 4 लोगों की गिरफ्तारी हुई है, इमारत के मालिक को अब गिरफ्तार कर लिया गया है। अगर ये कार्यवाही पहले होती तो ये घटना नहीं हो पाती। देखिए इन तस्वीरों को, हृदय विदारक है। जान बचाने के लिए बच्चे कूद रहे थे। आप दिया जलाते हैं ना, गर्म तेल का छींटा आपके हाथों पर पड़ता है तो आप चीख उठते हैं, बिलख उठते हैं, दर्द से हाथ खींच लेते हैं। ये 15 बच्चे उस आग में जल रहे थे, तड़प रहे थे, आग का तांडव था, चारों ओर हाहाकार था, चीख पुकार था। ये देखिए, देखिए इन तस्वीरों को, और ये तस्वीरों के साथ सवाल पूछिए कि क्या इसे रोका नहीं जा सकता था? क्या दिल्ली के मालवीय नगर से सबक नहीं सीखा जा सकता था?
12: लेकिन सरकारी सिस्टम की अंधेर गर्दी देखिए, अपनी नाकामी पर पर्दा डालने वाले सिस्टम को ये बर्दाश्त नहीं, दुनिया इनका दर्द देखे। महिला को पुलिस हटा देती थी, अब एक और आंसू देखे। ये है उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक, मीडिया के कैमरे के सामने फफक फफक कर रो पड़ते हैं। इन्हें ना कोई रोकने वाला और ना कोई हटाने वाला। क्या अंधेर गर्दी की आग पर डिप्टी CM के आंसू से सरकार की घोर नाकामी के दाग धुल जाएंगे? क्योंकि सवाल अब एक दो नहीं, 15 जिंदगियों को सोई हुई सरकार और सरकारी व्यवस्था ने बेमौत मार दिया।
13: जिसमें 15 ब्रॉडेड मृतावस्था में हमारे पास आए हैं और बाकी जो 5-6 लोग घायल हैं वो एकदम ठीक है, स्टेबल हैं।
12: दिल और दिमाग को हिला देने वाले इस खौफनाक दृश्य को देखिए, मौत से बचने के लिए किस तरह लोग जान बचाने के लिए बिल्डिंग से तार के जरिए नीचे उतरते हैं। मौत के दर्दनाक मंजर का एहसास आज आप करिए, लेकिन हादसे के बाद घटना स्थल पर जिम्मेदारों की मौजूदगी पर सवाल। ऐसा तो है नहीं कि रातों रात इतनी बड़ी बिल्डिंग खड़ी हो गई, लेकिन लखनऊ के अलीगंज में बड़ा हादसा हुआ तो पूरा सरकारी अमला मानो एक पैर पर खड़ा हो गया। काश इनकी नींद वक्त रहते टूटी होती तो आज 15 घरों में मातम नहीं होती। नाम संजय प्रसाद, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी होम, घटना स्थल पर मुआयना करने पहुंचे। काश पहले नींद टूटती तो ये हादसा नहीं होता। नाम राजीव कृष्ण, डीजीपी उत्तर प्रदेश, घटना स्थल पर मुआयना करने पहुंचे। पहले नींद टूटी होती तो हादसा ना होता। नाम सुजीत पांडे, डीजी फायर है उत्तर प्रदेश, खाना पूर्ति अगर इन्होंने ना की होती तो भी हादसा नहीं होता। नाम है विशाख जी, लखनऊ के कलेक्टर, पहले नींद टूटी होती तो हादसा नहीं होता। नाम है ब्रिजेश पाठक, उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम, सिस्टम के दुश्मनों को रुलाया होता तो खुद नहीं रोते। ये सवाल आदित्य श्रीवास्तव की माँ के, जिन्होंने इस दर्दनाक हादसे में अपने जवान बेटे को खोया। बुढ़ापे की लाठी को सरकारी अधेड़गर्दी ने छीना। आज सरकारी सिस्टम का बोझ कंधों पर जवान बेटी की लाश के बोझ से ज्यादा है, क्योंकि आदित्य श्रीवास्तव की माँ इन अफसरों को सीधे कटघरे में खड़ा कर देती है।
14: मैंने देखा है, मैंने सब देखा, मैं बराबर यही कह रही थी कि एकदम से देखा था मैंने सब, जिस तरह से इस समय भी मैंने देखा कि सीएम साहब आने वाले थे, किया जा रहा था, उस टाइम उस तरह से ये भी ध्यान दिया जाता तो हो सकता है बच्चे बच जाते,
15: मेहनत कर लिया थी,
14: हाँ बच्चे बचाए जा सकते थे। जॉब करता था, एनिमेशन कोर्स का ये स्टूडियो है, वहीं पे जॉब करता था।
12: सरकारी दावों की कलाई खोलती ये तस्वीर, आज आप देखिए मंगल ग्रह और चांद पर जाने के नए मिशन में हम जुटते हैं, लेकिन ऐसी आपदा में जान बचाने के राज भी पूरा फायर सिस्टम हथौड़े पर निर्भर। यह हमारी सच्चाई पर आंखें खोलने वाला हथौड़ा। मौके पर मुआयना करने पहुंचे मुख्यमंत्री को आज किस्मत से जिंदा बची इस लड़की की आप बीत जरूर सुननी चाहिए, क्योंकि सिस्टम ने मरने के लिए भगवान भरोसे छोड़ा।
16: सर सिस्टम क्या दिक्कत है, क्या कोई बचाने के लिए आया, कैसे अंदर कुछ पहुँच पाए? कोई नहीं उठा रहा था, आपने फायर पे या किसी पे फोन किया?
12: जिम्मेदारों पर बड़े और कड़े एक्शन का दावा मुख्यमंत्री ने किया। पीड़ितों की आप बीती भी सुनी।
17: 14 बेड मैंने अपनी आंखों से देखा।
12: सवाल ये है कि जांच की फाइलों में 15 मौतों की सच्चाई दम तोड़ देगी या फिर जिम्मेदारों पर जांच की आंच पहुंचेगी? सवाल इसलिए बड़े हैं क्योंकि तमाम हादसों के बावजूद हर बार हादसे के बाद मुआयना होता है, जिम्मेदारों पर एक्शन के दावे होते हैं लेकिन नतीजा सिफर निकलता है।
0: हर बार की तरह फिर एक हादसा हुआ है, फिर कमेटी बैठी है, फिर जांच के आदेश दिए गए हैं। क्या हर बार की तरह फिर सब कुछ कागजों में रह जाएगा? यूपी में जाति और धर्म की राजनीति भी परवान चढ़ रही है। पहले अखिलेश यादव ने अपने ब्राह्मण नेताओं के साथ बैठक की, अब मायावती ने ब्राह्मणों को साधने का दांव चला है। बीएसपी की ओर से ऐलान किया गया है कि वो 27 के चुनाव में ज्यादा से ज्यादा ब्राह्मणों को टिकट देगी।
18: ये तस्वीरें याद है ना, चंद रोज पहले अखिलेश यादव ने अपने ब्राह्मण नेताओं की बैठक बुलाई थी। सारी कवायद इस बात की थी कि यूपी में ब्राह्मण वोट को एकजुट किया जाए। अब अखिलेश के बाद मायावती ने भी ब्राह्मण वोटर्स पर दांव चला है। बीएसपी प्रमुख मायावती ने एक बार फिर अपने पुराने और सफल सोशल इंजीनियरिंग फॉर्मूले सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय को केंद्र में रखा है। पार्टी ने ब्राह्मण समाज को साधने के लिए उन्हें बड़ी संख्या में टिकट देने का निर्णय लिया है। मायावती ने स्पष्ट किया है कि पार्टी केवल वादे नहीं करती बल्कि जिसकी जितनी तैयारी उसकी उतनी भागीदारी के सिद्धांत पर काम करती है। इधर बीएसपी ब्राह्मण वोटर्स को लुभाने में लगी है, उधर पीडीए की बात करने वाले अखिलेश यादव की मुश्किलें मौलाना शहाबुद्दीन रजवी बरेलवी ने बढ़ा दी है।
19: अखिलेश यादव के परिवार पर मुसलमानों का बहुत बड़ा एहसान है, इस वजह से मैंने पत्र के माध्यम से उनसे मांग की है कि 2027 के चुनाव के लिए मुख्यमंत्री के चेहरे के तौर पर किसी मुसलमान की घोषणा करें।
18: लेकिन मौलाना की अपील को समाजवादी पार्टी ने सिरे से खारिज कर दिया है।
20: हमने एक नेता मुलायम सिंह यादव को चुना था और हमने एक नेता अखिलेश यादव को चुना है, उसी के नेतृत्व में समाजवादी पार्टी आगे बढ़ेगी और जीतेगी भी।
18: यूपी में 27 का समर अब जाति और धर्म के समीकरण बना रहा है। समर्थ श्रीवास्तव, लखनऊ आज तक।
0: वक्त एक ब्रेक का है, खबरें जा रही हैं, आप देखते रहिए आज तक।
21: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाएं स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा प्यार से परोस।
22: क्या मूंगा धारण करने से आत्मविश्वास बढ़ जाता है? क्या मूंगा धारण करने से व्यक्ति का भय दूर होता है? क्या मूंगा धारण करने से महिलाएं स्वस्थ रहती हैं? क्या है मूंगा रत्न की विशेषता और कैसा है इसका प्रभाव, जानिए मेरे साथ सिर्फ भाग्य चक्र में।
21: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाएं स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा प्यार से परोसें।

लखनऊ अग्निकांड में अब तक 15 लोगों की मौत, 9 घायल, पीड़ितों से मिलने अस्पताल पहुंचे सीएम योगी, एई जेई सहित 4 अधिकारी सस्पेंड, एसआईटी करेगी हादसे की जांच। लखनऊ में तंदूर बन गया था कमर्शियल कॉम्प्लेक्स, एक ही एंट्री एग्जिट होने से फंसे थे युवा, रिहायशी भवन के नक्शे पर बनी थी इमारत, बिल्डिंग मालिक सहित 4 गिरफ्तार, नामजद एफआईआर। फिरहाद हाकिम सहित टीएमसी के 8 शीर्ष नेताओं को नोटिस, बीजेपी खेमे में शामिल होने और पार्टी विरोधी गतिविधियों का आरोप, बागी विधायकों ने खुद को बताया असली टीएमसी, ममता बनर्जी को अध्यक्ष पद से हटा दिया। सांसदों की बगावत के बाद उद्धव को लग सकता है एक और झटका, विधानसभा की रणनीति पर चर्चा के लिए बुलाई गई बैठक से 3 विधायक और 1 एमएलसी गायब। पुणे में हवाला कारोबारी के दफ्तर पर फायरिंग, सोशल मीडिया पोस्ट में लॉरेंस बिश्नोई ने ली हमले की जिम्मेदारी, लिखा अगली गोली सीने पर चलेगी।

0: एक बड़ी खबर आ रही है दिल्ली के वाल्मीकि बस्ती तकिया काले खां इलाके में झुग्गियों में भीषण आग लग गई है। घटना के बाद मौके पर दमकल की कई गाड़ियां पहुंची हैं। आग बुझाने का काम तेजी से जारी है। आग लगने के कारणों का अभी पता नहीं चल पाया है। तो दिल्ली के झुग्गियों में भीषण आग लगी है। आसपास के इलाके में अफरा तफरी का माहौल है। स्थानीय लोगों में दहशत भी देखी जा रही है। हालांकि राहत और बचाव कार्य शुरू कर दिया गया है। आग पर काबू पाने की कोशिशें भी की जा रही हैं। तकिया काले खां इलाका ये जो है, फायर ब्रिगेड की तमाम जो फायर टेंडर्स हैं वो इस समय मशक्कत कर रहे हैं आग बुझाने की। झुग्गियाँ हैं और ऐसे में आग जल्दी फैल जाती है। कच्चे मकान हैं, वहाँ पर प्लास्टिक और इस तरह के जो ज्वलनशील पदार्थ हैं जिसके चलते झुग्गियों में आग बहुत तेजी से फैल जाती है। और अगर सुबह में हवा की रफ्तार हो तो आग बुझाने में और मुश्किल की लपटें जो हैं आसपास के इलाके को अपनी चपेट में ले लेती हैं। इलाके में अफरा तफरी है, झुग्गियों में आग लगी है। फायर टेंडर्स की तमाम गाड़ियां इस समय वहां पर ऑपरेशन चला रही हैं। आग पर काबू पाने की पूरी कोशिश की जा रही है। इलाके की तस्वीरें आप देख रहे हैं। फायर फाइटर्स मौके पर पहुंचे हैं। देर रात की यह घटना है। काफी समय लगा है, अभी भी आग पर काबू पाने की कोशिशें की जा रही हैं। तकिया काले खां का इलाका है और एक के बाद एक कई झुग्गियां उसकी चपेट में आई हैं। आग की लपटें धीरे धीरे फैलती गईं और इसी के बाद लोगों में दहशत का माहौल, अफरा तफरी मची। तुरंत पुलिस और फायर ब्रिगेड को सूचना दी गई जिसके बाद आग पर काबू पाने की कोशिश की जा रही है। अगली खबर उत्तराखंड से। विकास नगर में टोल प्लाजा पर मारपीट का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। बताया जा रहा है कि मामूली कहासुनी के बाद कार सवार कुछ युवकों ने एक टोल कर्मी के साथ जमकर मारपीट की। वायरल वीडियो में टोल प्लाजा पर हंगामा और हाथापाई होती दिखाई दे रही है। आरोप है कि घटना को अंजाम देने के बाद युवक मौके से फरार हो गए। इस घटना ने हाईवे सुरक्षा कानून व्यवस्था को लेकर सवाल खड़े कर दिए, जबकि मामले का वीडियो अब चर्चा का विषय बना हुआ है। एक मामूली कहा सुनी जिसके बाद वहां खड़े लोगों ने एक शख्स को जमकर पीटा, ये देखिए, और किसी ने उसका वीडियो भी बना लिया। ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। पटना के खान ग्लोबल स्टडीज कोचिंग अग्निशमन विभाग में एक बार फिर फायर सेफ्टी सिस्टम की जांच की है। इससे पहले 7 जून को हुई जांच में फायर स्टेयर, स्प्रिंकलर, डिटेक्टर और पंप हाउस जैसी कई खामियां पाई गई थी, जिसके बाद सुधार के लिए नोटिस जारी किया गया था। ताजा निरीक्षण के अनुसार अब जरूरी मानकों का काम पूरा अभी भी नहीं हुआ है, इसीलिए फायर स्टेयर का निर्माण अधूरा है। स्प्रिंकलर डिटेक्टर सिस्टम भी ऑटोमेटिक अभी तक नहीं हो पाए हैं, तो फायर विभाग ने संस्थान को फिर से 10 दिन का समय दिया है। चेतावनी दी है कि तय मानकों को पूरा नहीं किया गया तो कोचिंग सेंटर बंद हो सकता है। जैसे कोचिंग सेंटर है, बड़ी संख्या में छात्र आते हैं और ऐसे में एंट्री एग्जिट होना जरूरी है, तो खान सर की कोचिंग पर अब खतरा मंडरा रहा है और इसीलिए फायर सेफ्टी विभाग दोबारा जांच के लिए पहुंचा है कि क्या आपने एग्जिट प्लान बनाया, क्या आग लगने जैसी ऐसी किसी घटना की स्थिति में आग बुझाने की तैयारियां हैं, पूरी व्यवस्था है, वाटर स्प्रिंकलर है या नहीं, डिटेक्टर ऑटोमेटिक है कि नहीं, कि अगर आग की लपटें होती है या धुआं होती है तो वो उसे डिटेक्ट कर सकता है कि नहीं, तो खान सर की कोचिंग पर दोबारा फायर सेफ्टी विभाग ने जांच की है। नीट यूजी 2026 री एग्जाम में दो बड़े फर्जीवाड़े सामने आए हैं। बिहार के लखीसराय में डमी कैंडिडेट, फर्जी आधार कार्ड, बायोमेट्रिक सत्यापन में मिलीभगत के मामले में मेडिकल छात्रों समेत 30 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। जयपुर में छात्र को परीक्षा के दौरान मोबाइल के जरिए नकल की कोशिश करते हुए पकड़ा गया है। पुलिस के मुताबिक छात्रा ने मोबाइल छिपाकर परीक्षा केंद्र में प्रवेश किया था। AI की मदद से जवाब खोजने की बात सामने आई है। दोनों मामलों ने परीक्षा सुरक्षा व्यवस्था पर फिर से गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। जांच एजेंसियां पूरे नेटवर्क की पड़ताल में जुटी हैं। उत्तर प्रदेश के सीतापुर में समाजवादी पार्टी के कार्यालय पर प्रशासन ने बुलडोजर चलाया। प्रशासन के मुताबिक यह भवन नजूल भूमि पर बना था। DM कोर्ट के आदेश के बाद ध्वस्तीकरण किया गया। कार्यवाही से पहले नोटिस जारी किया गया था, जिसके बाद सपा नेताओं ने भवन खाली कर दिया था। सुबह सुबह भारी पुलिस पहुंची, PAC की तैनाती हुई और 4 बुलडोजरों से सपा के इस पूरे दफ्तर के उसके परिसर को बुलडोजर से ध्वस्त कर दिया गया। नगर पालिका प्रशासन ने कहा कि यह कार्यवाही जिलाधिकारी के आदेश की गई है। जिलाधिकारी ने आदेश दिया, यानी इलाके के डीएम का आदेश था कि दफ्तर गिरा दिया जाए क्योंकि ये नजूल की जमीन पर बना है। डीएम का आदेश था तो बुलडोजर लेकर के पहुंच गए लोग। उसके बाद समाजवादी पार्टी के दफ्तर पर एक्शन हुआ। ये वो तस्वीरें हैं, दफ्तर को ध्वस्त कर दिया गया। उत्तर प्रदेश के बाद खबर बिहार से। मोतिहारी में एक बार फिर भीषण सड़क हादसा हुआ। दो ट्रकों की आमने सामने जोरदार टक्कर हो गई। इस हादसे में एक व्यक्ति की मौत हो गई जबकि तीन लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। जानकारी के मुताबिक एक ट्रक मिट्टी के बर्तनों से लदा था। अनाज से भरे ट्रक से आमने सामने उसकी टक्कर हो गई और ये टक्कर इतनी तेज थी कि दोनों वाहनों के अगले हिस्से पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गए। प्राथमिक इलाज के लिए जो घायल थे उनको अस्पताल भेजा गया है। ये वो तस्वीरें हैं हादसे की। तीन लोग गंभीर रूप से घायल हैं, एक की मौत हो गई। तो आमने सामने आते हुए टक्कर अगर एक दूसरे से टकराते हैं तो हादसा कितना भीषण हो सकता है।
1: आने जाने वाले राहगीरों की भीषण।
0: बिहार के बाद खबर राजकोट से। गुजरात हाउसिंग बोर्ड के जर्जर आवासों में नल कनेक्शन काटने पहुंची नगर निगम टीम के दौरान हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिला। मकानों को खाली कराने की कार्यवाही हो रही थी। स्थानीय लोगों ने विरोध करना शुरू कर दिया और इसी विरोध के दौरान एक बुजुर्ग नल कनेक्शन के लिए खोदे गए गड्ढे में जाकर लेट गए, जिससे मौके पर हड़कंप मच गया। अब स्थानीय निवासियों ने मेयर से गुहार लगाई, जिसके बाद कनेक्शन काटने की कार्यवाही थोड़ी देर के लिए रोकी गई। आगे का निर्णय दिवाली के बाद लेने की बात कही गई है। ये देखिए, वहां कुछ लोग थे, अब कनेक्शन काटने के लिए लोग वहां पर पहुंच गए तो बुजुर्ग ने विरोध जताया और ऐसा अनोखा विरोध जताया कि वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। विरोध ऐसा था कि प्रशासन को भी उनके आगे झुकना पड़ा और पूरी कार्यवाही टाल दी गई है कि एक बार इस पर रिव्यू किया जाएगा। दिवाली के बाद देखेंगे दोबारा कनेक्शन काटना है कि नहीं। आईबी डायरेक्टर तपन कुमार डेका के कार्यकाल को तीसरी बार बढ़ाए जाने की तैयारी है। 1988 बैच के आईपीएस अधिकारी तपन कुमार डेका जुलाई 2022 से इंटेलिजेंस प्रमुख के तौर पर कार्यरत है। उनके कार्यकाल विस्तार को लेकर प्रक्रिया आगे बढ़ने की संभावना जताई जा रही है, जिससे लगातार तीसरी बार वो इस पद पर बने रह सकते हैं। उधर कतर के रास लफान औद्योगिक शहर में गैस फैक्ट्री में विस्फोट की घटना सामने आई है। यह हादसा उस समय हुआ जब प्लांट में तकनीकी खराबी के दौरान ऑपरेशन शुरू किए जा रहे थे। कतर के आंतरिक मंत्रालय के मुताबिक इस तकनीकी दुर्घटना बताया गया है। इसे कई लोग घायल हुए हैं। बार्जन लोकल गैस सप्लाई फैसिलिटी में इस विस्फोट में 13 लोगों की मौत हुई है और इन 13 में 12 भारतीय नागरिक शामिल हैं, जबकि 60 से अधिक लोग घायल हुए हैं। तो कतर में एक ऑयल फैसिलिटी में यह घटना हुई है। 12 भारतीय मरने वाले 13 लोगों में शामिल हैं। उधर यूक्रेन ने दावा किया है कि उसके ड्रोन ने रूस के वॉर्निश इलाके में एक सेमीकंडक्टर प्लांट को निशाना बनाया है। बताया जा रहा है कि यह संयंत्र रूस की प्रमुख माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक फैक्ट्रियों में से एक है। यहां ट्रांजिस्टर, माइक्रोचिप, पावर मॉड्यूल बनाया जाता है। ये उपकरण कथित तौर पर स्कंदर और कैलिब्र मिसाइलों के गाइडेंस सिस्टम और S-400 एयर डिफेंस सिस्टम में इस्तेमाल किए जाते हैं। यूक्रेन का कहना है कि यह हमला रूस की रक्षा आपूर्ति श्रृंखला को कमजोर करने के मकसद से किया गया है, जबकि रूस की ओर से अभी तक किसी बड़े नुकसान की पुष्टि नहीं की गई है। उधर शिवसेना अध्यक्ष और महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे का सियासी कुनबा बढ़ रहा है। उद्धव ठाकरे के 6 बागी सांसद वो शिंदे कैंप में शामिल हो गए। अब लोकसभा में शिंदे के 7 सांसद की जगह 13 सांसद हो गए। ऑपरेशन टाइगर को शिंदे ने खुद ही अंजाम दिया। शिंदे बोले, मैंने कहा था कि एक बार जो मैंने कमिटमेंट कर दी तो उसके बाद मैं अपने आप की भी नहीं सुनता। सोच लीजिए, पॉलिटिक्स में भी ये डायलॉग आ रहा है।
2: उद्धव ठाकरे के 6 बागी सांसदों ने कई दिन की आंख मिचौली के बाद आखिरकार मुंबई में एकनाथ शिंदे की मौजूदगी में शिवसेना का दामन थाम लिया।
3: ये केमिकल लोचा वाले लोग हैं, तो जाने दो, मुझे कुछ बोलना नहीं ज्यादा। लेकिन ये 6 खासदार जो है, ये ओम राजे निंबाळकर, बाहू साहेब वाकसोरे, संजय दीना पाटिल, यहां पर हमारे संजय बंडू जाधव, संजय देशमुख, नागेश अष्टीकर, ये सब लोग पूरे अपने कार्यकर्ताओं से बातचीत करके अपने चुनाव क्षेत्र के विकास के लिए और जो भी किसके जो जो प्रॉब्लम्स है, कुछ अभी मैं ओम राजे के बारे में बता दिया है, अभी फिर से मुझे कहने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन जैसे चुनाव क्षेत्र में विकास की बात है, वैसे पारिवारिक भी कुछ भी तकलीफ है उसके पीछे एकनाथ शिंदे खड़ा है।
2: अपना सियासी कुनबा बढ़ाने के लिए एकनाथ शिंदे बोले, मैं कोई काम अधूरा नहीं छोड़ता।
4: आम्ही ऑपरेशन अर्धवट करत नाही, फुलफुल करतो।
2: पहले शिवसेना के 7 लोकसभा सांसद थे, लेकिन उद्धव ठाकरे की पार्टी शिवसेना यूबीटी के 6 सांसद शिंदे कैंप में आने के बाद अब लोकसभा में कुल शिंदे के 13 सांसद हो गए, जिससे एनडीए में शिंदे का सियासी कद भी काफी बढ़ गया है।
3: 2022 में पहले ऑपरेशन हुआ था, 2022 के बाद 40 एमएलए शुरुआत में थे, आज हमारे 6 खासदार साथ में आए हैं। क्रिकेट में क्या कहते हैं, षटकार, सिक्सर, और सभी लोगों का परिचय मैंने कराया है। एक से बढ़कर एक सब हमारे जमीन से जुड़े हुए हमारे खासदार है, धुरंधर है, धुरंधर है। और सभी लोग अपनी अपनी ताकत अपने अपने चुनाव क्षेत्र में मजबूती से चुनकर आए। ये जो लोग कहते हैं, आरोप लगाते हैं, ये स्वार्थ के लिए गए, इनके लिए गए, उसके लिए गए, कई लोग तरह तरह की बातें करते हैं। अभी जब उनके पास थे तो सब अच्छे थे, मैं भी था, अच्छा था। मैं जब बाला साहब ठाकरे जी के विचार को आगे बढ़ाने के लिए गया तो बुरा हो गया। अभी ये सब लोग क्यों जा रहे हैं, इसका आत्मचिंतन आत्म परीक्षण करना चाहिए।
2: महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम और शिवसेना प्रमुख एकनाथ शिंदे ने ऑपरेशन टाइगर की कामयाबी पर फिल्मी अंदाज में कहा, एक बार जो मैंने कमिटमेंट कर दी उसके बाद मैं अपने आप की भी नहीं सुनता।
3: और मैं एक बार कमिटमेंट करता हूं तो फिर मैं फिर खुद की भी नहीं सुनता हूं, ये मेरा स्वभाव है और ऐसे ही रहना चाहिए। ये बाला साहब ठाकरे जी ने हमें सिखाया है, ये आनंदी के साहब ने सिखाया है, और इसलिए आज का दिन शिवसेना के लिए ऐतिहासिक दिन है। हमारे 6 खासदार शिवसेना में शामिल हुए हैं, शिवसेना परिवार में शामिल हुए, बाला साहब ठाकरे जी के विचारधारा में शामिल हुए, धर्मवीर आनंद दिघे साहब की विचारधारा में शामिल हुए। इससे शिवसेना की ताकत बढ़ रही है, शिवसेना बढ़ रही है, शिवसेना चांदा से बांदा पहुंच रही है। कई लोग हमारे टिंगल करते थे, मजाक करते थे, शिवसेना ठाणे तक है। मैं उन्हें कहा, अभी देखो शिवसेना सेकेंड लार्जेस्ट पार्टी महाराष्ट्र में हो चुकी है।
2: शिंदे बोले, सीएम फडणवीस के साथ उनकी जोड़ी हिट है क्योंकि दोनों का मकसद महाराष्ट्र का चौतरफा विकास करना है।
3: कि जो भी लोग आज तरह तरह की बातें करते हैं उनके पास कोई मुद्दे नहीं है, गलत सलत आप जब 2022 से गालियां देना है दे दो, जितनी गालियां देते रहोगे उतने खड्डे में जाते रहोगे, जाओ खड्डे में। और इसलिए मैं इतना ही कहूंगा, हम काम कर रहे, काम करने वाले लोग हैं। 2.5 साल का मेरे मुख्यमंत्री कार्यकाल भी आपने देखा है, कितने डेवलपमेंट के काम हुए, विकास के हुए, कई लड़की लाडली बहन जैसे कई स्कीम जो है वो भी हो गई शुरू। आज भी महाराष्ट्र आगे जा रहा है, देवेंद्र जी हमारे मुख्यमंत्री है, हम टीम बनकर काम कर रहे, इस महाराष्ट्र को आगे बढ़ा रहे।
2: ऑपरेशन टाइगर की सफलता पर महायुति सरकार जश्न मना रही है। विधानसभा सत्र की शुरुआत से पहले सीएम फडणवीस और डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे का जोश हाई दिखा। इससे पहले मुख्यमंत्री फडणवीस ने भी कहा कि ऑपरेशन टाइगर पूरा हुआ,
5: ऑपरेशन यशस्वी है, बॉडी एकदम सुदृढ है, ऑपरेशन यशस्वी है आणि बॉडी एकदम सुदृढ है।
2: वहीं आदित्य ठाकरे ने कहा, धोखेबाज सांसद उद्धव के चेहरे पर चुनकर आए थे, इसलिए हिम्मत है तो इस्तीफा देकर चुनाव लड़े।
6: जो 6 बागी नहीं बिकाऊ सांसद है वो चुन के आए थे उद्धव बाला साहब ठाकरे इनके चेहरे पे, जो वो चुन के आए थे वो महाविकास आघाड़ी और इंडिया अलायंस के चेहरे पे, वो जो चुन के आए थे वो भाजपा के खिलाफ आए थे, जिस भाजपा को इस देश का संविधान बदलना है। आज भाजपा इनको तोड़फोड़ करके जो अपने पक्ष में अपने दल में शामिल करना चाहती है, दलदल में शामिल करना चाहती है, वो इसीलिए करना चाहती है ताकि वो देश का संविधान बदल सके। उनको 2/3 जो मेजोरिटी है वो ही प्राप्त करना चाहती है और ताकि देश में संविधान बदल सके, यही उनका लक्ष्य। अगर इस देश में कानून व्यवस्था है, न्याय प्रक्रिया है, तो हम यही अपेक्षित करते हैं कि न्याय हमें मिले। ये न्याय सिर्फ हमारे पार्टी के लिए नहीं है, जैसे आज हमारी पार्टी को तोड़ा है वैसे आम आदमी पार्टी को भी तोड़ा, टीएमसी को तोड़ा है, कल कोई भाजपा को जाके तोड़ेगा। लेकिन क्योंकि ऐसे राक्षस तो उधर भी जा सकते हैं, लेकिन यही बात है कि अगर हम कानून से चले, क्या हम संविधान से चले, तो फिर इस देश में संविधान का अगर राज्य हो और संविधान का राज हो तो हमें न्याय मिलेगा, यही अपेक्षा है।
2: शिवसेना दावा कर रही है कि उद्धव के एक और सांसद शिंदे कैंप में आने को बेकरार थे, लेकिन वो कैबिनेट मंत्री बनाने के लिए दबाव बना रहे थे, जिसके बाद शिंदे ने उन्हें मना कर दिया।
7: ये बागी सांसद जो है ये कोई चेन्नई में रुका था, कोई वाराणसी में जाकर मंदिर में दर्शन कर रहा था, और सभी सांसद आज कुल मिलाकर एक हवाई जहाज से मुंबई एयरपोर्ट दोपहर 1:30 बजे के करीब पहुंचे, जिसके बाद वो एकनाथ शिंदे के सरकारी आवास नंदनवन पर पहुंचे। उसके बाद उन्होंने एकनाथ शिंदे के साथ बैठक की, और इस बैठक के बाद मैं जहां खड़ा हूं वहां वाईबी चौहान सेंटर में उन्होंने आकर पार्टी में अधिकृत तौर पर प्रवेश किया और ऑपरेशन टाइगर पूरा किया। तो इस तरह से इस ऑपरेशन टाइगर को अंजाम दिया गया है, और महाराष्ट्र की सियासत फिर एक बार दिख रही है किस तरह से गर्मा गई है। कैमरा पर्सन मंदार चौहान के साथ मैं ऋत्विक भालेकर, मुंबई आज तक।
0: उद्धव ठाकरे की पार्टी में सबसे पहले साल 2022 में शिंदे ने बगावत की, उसके बाद उन्होंने पार्टी के दो टुकड़े कर दिए। चार साल बाद शिंदे ने उद्धव के पास बची शिवसेना यूबीटी में फिर से सेंध लगाए, उनके 9 में से 6 लोकसभा सांसद को अपने कैंप में मिला लिया। शिवसेना दावा कर रही है कि सांसदों के बाद अब उद्धव के विधायकों की बारी है।
2: अपनी पार्टी में टूट के बीच आज उद्धव ठाकरे ने अपने विधायकों की मीटिंग पार्टी दफ्तर शिवालय में बुलाई थी, जिसमें 3 विधायक नहीं पहुंचे, जिनमें संजय डेरकर, राहुल पाटिल, संजय पोतनीस हैं। वहीं एमएलसी सुनील शिंदे भी पार्टी की मीटिंग में शामिल नहीं हुए।
8: एमएलसी सुनील शिंदे नहीं आए, उन्होंने कहा कि वो अपने गांव में हैं। दूसरी तरफ आप कह सकते हैं संजय देरकर जो है, राहुल पाटिल और संजय पोटनीस, ये 3 लोग नहीं आ पाए, जिसमें संजय पोटनीस कलीना मुंबई से एमएलए हैं, उनका कहना है कि वो मुंबई से बाहर हैं। राहुल पाटिल आप कह सकते हैं उनके कॉन्स्टिट्यूएंसी में जो परिषद का चुनाव हुआ उसकी काउंटिंग थी, वो इस वजह से मुंबई में नहीं है। वहीं संजय देरकर का ऐसा कहना है कि उनको लेट पता चला इस मीटिंग के बारे में, इसलिए वो आज यहाँ पर नहीं पहुंच पाए हैं। ये आप कह सकते हैं कि औपचारिक भूमिकाएं हो गई। आपको पता होगा कि पिछले हफ्ते भी एक संडे के दिन सारे एमपीज की मीटिंग बुलाई गई थी, जिसमें से वो बागी सांसद जिन्होंने आज बगावत की और शिंदे सेना में शामिल होने जा रहे हैं, उन्होंने ऑनलाइन द्वारा ये मीटिंग ज्वाइन की थी, वहीं पर संजीदा पाटिल खुद उपस्थित रहे थे। तो कहीं ना कहीं कोशिश शुरू है कि ऑपरेशन टाइगर 2 को महाराष्ट्र में रोका जाए।
2: महाराष्ट्र में शिवसेना यूबीटी के 20 विधायक और 6 एमएलसी हैं। उद्धव ठाकरे की मीटिंग 1 घंटे तक चली। पार्टी में एकजुटता दिखाने के लिए उद्धव ने आदित्य ठाकरे और संजय राउत के साथ सभी विधायकों और एमएलसी के साथ एक ग्रुप फोटो भी खिंचवाई। हालांकि शिवसेना यूबीटी नेता कह रहे हैं कि जो विधायक नहीं पहुंच सके उनमें बगावत वाला एंगल ना तलाशा जाए, सबकी कुछ न कुछ मजबूरी थी। उद्धव ठाकरे खुद बगावत करने वाले सांसदों के चुनाव क्षेत्रों का दौरा करेंगे। इसके साथ ही उन्होंने पार्टी के वरिष्ठ नेताओं और विधायकों को भी बागी सांसदों के चुनाव क्षेत्र में जाकर पोल खोलने की बात कही है।
9: शिवसेना विधायक दल की ये मीटिंग थी। मानसून सेशन में जनता के प्रश्न किस प्रकार उठाया जाए, कौन से मुद्दे में ध्यान दिया जाए, इसके बारे में विधायक दल की मीटिंग में चर्चा हुई और माननीय उद्धव जी ने इसको सब विधायकों को मार्गदर्शन किया है। हम ये सारे मुद्दे जनता के उठाएंगे।
0: डोनाल्ड ट्रंप की धमकी ने शांति समझौते को सवालों के घेरे में खड़ा कर दिया। सवाल ये है कि ट्रंप शांति तो चाहते हैं, लेकिन शांति वार्ता के दौरान ईरान पर हमले की धमकी क्यों दी? ऐसे में शांति समझौते के एमओयू पर दस्तखत के बाद ट्रंप की नीति और नियत पर बड़ा सवाल खड़ा है। तो क्या ट्रंप की धमकी के चलते शांति समझौते से ईरान पीछे हट जाएगा? क्या एक बार फिर अमेरिका और ईरान युद्ध के मैदान में आर पार की जंग लड़ने वाले हैं?

0: ट्रंप के मुंह में पीस डील, बगल में धमकी। क्या ट्रंप शांति नहीं ईरान की हार चाहते हैं? शांति वार्ता के बीच ट्रंप की धमकी क्यों आई? ईरान का बदला अमेरिका की घोर बेइज्जती। ना फोटो सेशन और ना वैन से हाथ मिलाया, शांति समझौते के कच्चे धागे। ये तस्वीरें अमेरिका और ईरान के बीच हुए शांति समझौते पर मंडरा रहे खतरे का साक्षात प्रमाण हैं। अमेरिका और ईरान के वार्ताकार स्विट्जरलैंड तो पहुंचे, लेकिन ना तो दोनों मुल्कों के वार्ताकारों ने हाथ मिलाया और ना ही फोटो सेशन हुआ। उल्टा ईरान ने अमेरिका की इंटरनेशनल बेइज्जती जरूर कर दी। ऐसा क्यों, इसे समझिए। अमेरिकी राष्ट्रपति कई बार दावा कर चुके हैं कि अमेरिका नहीं बल्कि ईरान शांति समझौते के लिए बेताब था।
1: Regular contract. I would think they would do it. If they don't, then that's, you know, that's okay. We'll have to start the process again. And we don't lose. We have the greatest military in the world. We have the greatest blockade. The naval blockade was 100% effective. And again, they have no navy. They have no air force. All bombed out. I don't want to say the leaders, but first level of leader, gone. Second level of leaders, gone. Some of the third level of leaders, gone. And they want to make a deal. They are so ready to make a deal. Yeah.
0: ट्रंप के दावों की पोल ईरानी डेलीगेशन ने दुनिया के सामने खोल दी। देखिए, ईरानी डेलीगेशन का इंतजार बेसब्री से अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस को था। ईरान के विदेश मंत्री अराक्ची किसी विजेता की तरह आते हैं, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ से मिलते हैं और लौट जाते हैं। ना तो अराक्ची वेंस से मिलते हैं और न ही अमेरिकी डेलीगेशन से। जैसे ही अराक्ची लौट जाते हैं, उपराष्ट्रपति का चेहरा तनाव से भर जाता है। वो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के पास आते हैं, बगल में खड़े पाकिस्तान के आर्मी चीफ से बात करते हैं, जानकारी जुटाने की कोशिश करते हैं कि ईरानी विदेश मंत्री ने उन्हें इग्नोर क्यों किया। बात यही नहीं रुकी, ईरानी डेलीगेशन ने अमेरिकी राष्ट्रपति की धमकी के

0: ईरान के सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामिनई के प्रतिनिधि हाजी सादेगी ने अमेरिकी राष्ट्रपति को बता दिया कि ईरान के दिल में क्या है। वार्ताकारों को ये पता होना चाहिए कि वो एक ऐसे दुश्मन से बातचीत कर रहे हैं जिससे हम कभी दोस्ती नहीं करेंगे और न ही उसे कभी बर्दाश्त करेंगे। हम शत्रुता नहीं भूलते। अहंकारी शक्तियों को ये पता होना चाहिए कि वो इस राष्ट्र पर शासन करने के सपने को अपने साथ कब्र में ले जाएंगे। तुम जो फिरौन से मिलते जुलते हो, जान लो कि ये राष्ट्र तब तक चैन से नहीं बैठेगा जब तक कि तुम्हें अपने क्रोध के सागर में डुबो नहीं देता। भले ही अमेरिका और ईरान बातचीत को आगे बढ़ाने के लिए मिले थे, लेकिन ईरानी प्रतिनिधि मंडल ने अमेरिकी टीम के साथ ग्रुप तस्वीर खिंचवाने से इनकार कर दिया। ईरानी मीडिया के मुताबिक अमेरिकी डेलीगेशन और वार्ता के आयोजकों ने दोनों पक्षों के बीच हाथ मिलाने और ग्रुप फोटो खिंचवाने की तैयारी कर रखी थी, लेकिन ईरानी वार्ताकारों ने इसमें भाग लेने से इनकार कर दिया, यानी बॉयकॉट किया। बॉयकॉट के बाद ईरानी टीम के बिना ही फोटो सेशन और ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस के 18 घंटे चली पहली राउंड की वार्ता खत्म कर वो लौट गई, वो भी ट्रंप के लिए अपनी चेतावनी पीछे छोड़कर। अगर ट्रंप की धमकियां कारगर होती तो वो आज इस गतिरोध तक नहीं पहुंचते। वो जितना ज्यादा बोलते हैं हम उतना ही ज्यादा कार्रवाई करते हैं। क्या ट्रंप को नहीं लगता अगर उनकी धमकियों का कोई असर होता तो वो आज ऐसी निराशाजनक स्थिति में नहीं होते। हम अमेरिकी धमकियों की परवाह नहीं करते। ट्रंप को अपने बयानों को लेकर सावधान रहना चाहिए। हमारी सेना उन्हें अलग तरह से जवाब देने के लिए तैयार है। वो चाहे कुछ भी कहें, हम एक्शन लेने वाले लोग हैं। ईरानी वार्ताकारों ने अमेरिकी राष्ट्रपति के घमंड को चूर चूर कर दिया। वार्ता खत्म होने के बाद अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वैंस ने दावा किया कि ईरान अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा से अपने एटमी प्रोग्राम की जांच करवाने को तैयार है। हमने एक सफल अंतिम समझौते के लिए बहुत अच्छी नींव रखी है। अंतिम समझौता ही घर है। हमने नींव रखी है, घर का निर्माण नहीं किया है। अच्छी बात यह है कि ईरान IAEA निरीक्षकों को वापस बुलाने पर सहमत हो गया है। ईरान के सरकारी मीडिया ने अमेरिकी उपराष्ट्रपति के दावे को खारिज कर दिया। तस्नीम न्यूज का दावा है कि स्विट्जरलैंड में ईरान के परमाणु प्रोग्राम को लेकर कोई चर्चा नहीं हुई। ऐसे में IAEA के निरीक्षकों से जांच कराने का कोई सवाल ही नहीं उठता। ईरानी मीडिया का दावा है कि परमाणु प्रोग्राम पर चर्चा आखिरी दौर में होगी, वो भी तब जब शांति समझौते के MOU की शर्तों का अमेरिका पालन करेगा। ईरान ने अंतिम समझौते के लिए अपनी लक्ष्मण रेखा खींच दी है। अमेरिका की धमकी के आगे ईरान कभी झुकेगा नहीं। अगर अमेरिकी पक्ष बहुत ज्यादा मांग रखेगा तो हम इस समझौते को स्वीकार नहीं करेंगे। अमेरिका के साथ हुए समझौते के MOU को लेकर मेरा अलग मत था, लेकिन ईरानी राष्ट्रपति और सर्वोच्च राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के दूसरे सदस्यों के प्रति प्रतिबद्धता के चलते मैंने अनुमति दे दी। ईरानी अधिकारियों ने ईमानदारी से काम किया, लेकिन अमेरिकी राष्ट्रपति बेचैनी में थे। उन्होंने इस समझौते को करवाने के लिए हर तरह के दबाव का इस्तेमाल किया। अगर ट्रंप की डील को कमजोर करने की कोशिश की गई तो उसके नतीजे अच्छे नहीं होंगे। हम बात करेंगे लेकिन झुकेंगे नहीं। दरअसल अमेरिका और ईरान के बीच हुआ शांति समझौता कच्चे धागे से बंधा हुआ है जो ट्रंप की धमकियों से कभी भी टूट सकता है। बड़ी बात यह है कि शांति समझौते के MOU पर दस्तखत करने के बाद भी ट्रंप अपनी खोखली धमकियों से बाज नहीं आ रहे हैं।
1: वक्त एक ब्रेक का है, खबरें लगातार जारी हैं, आप देखते रहिए आज तक।
2: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।
3: क्या मूंगा धारण करने से आत्मविश्वास बढ़ जाता है? क्या मूंगा धारण करने से व्यक्ति का भय दूर होता है? क्या मूंगा धारण करने से महिलाएं स्वस्थ रहती हैं? क्या है मूंगा रत्न की विशेषता और कैसा है इसका प्रभाव, जानिए मेरे साथ सिर्फ भाग्य चक्र में।
2: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।

लखनऊ अग्निकांड में अब तक 15 लोगों की मौत, 9 घायल, पीड़ितों से मिलने अस्पताल पहुंचे सीएम योगी, एई जेई सहित 4 अधिकारी सस्पेंड, एसआईटी करेगी हादसे की जांच। लखनऊ में तंदूर बन गया था कमर्शियल कॉम्प्लेक्स, एक ही एंट्री एग्जिट होने से फंसे थे युवा, रिहायशी भवन के नक्शे पर बनी थी इमारत, बिल्डिंग मालिक सहित 4 गिरफ्तार, नामजद एफआईआर। फिरहाद हाकिम सहित टीएमसी के 8 शीर्ष नेताओं को नोटिस, बीजेपी खेमे में शामिल होने और पार्टी विरोधी गतिविधियों का आरोप, बागी विधायकों ने खुद को बताया असली टीएमसी, ममता बनर्जी को अध्यक्ष पद से हटा दिया। सांसदों की बगावत के बाद उद्धव को लग सकता है एक और झटका, विधानसभा की रणनीति पर चर्चा के लिए बुलाई गई बैठक से 3 विधायक और 1 एमएलसी गायब। पुणे में हवाला कारोबारी के दफ्तर पर फायरिंग, सोशल मीडिया पोस्ट में लॉरेंस बिश्नोई ने ली हमले की जिम्मेदारी, लिखा अगली गोली सीने पर चलेगी।

आपका आप देख रहे हैं भाग्य चक्र और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। आज हम बात करेंगे मंगल के रत्न के बारे में जिसको कहते हैं मूंगा यानी कोरल। मूंगा कहां तक असर डालता है, किनको मूंगा पहनना चाहिए और मूंगा पहनने के लाभ क्या हैं, इस विषय पर आज चर्चा करेंगे। बात करेंगे 12 राशियों के दैनिक राशिफल की और कार्यक्रम के अंत में आपको बताएंगे कि अगर आज किसी महत्वपूर्ण काम से जाना है तो क्या करके घर से निकलें कि आपको सफलता मिले, और आज का दिन कितना विशेष है, आज कौन सा काम करें कौन सा काम ना करें। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जानते हैं पंचांग।

2026 दिन मंगलवार, तिथि है ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि, शाम के 4:39 तक। नक्षत्र है हस्त नक्षत्र, सुबह के 11:54 तक। चंद्रमा कन्या राशि में संचरण कर रहे हैं। राहु काल का समय शाम के 3:04 तक। उत्तर दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है तो जरा सा गुड़ खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। देखिए, आज हम बात कर रहे हैं मंगल के रत्न के बारे में, जिसका नाम है मूंगा। मंगल का रत्न मूंगा क्यों है और ये कैसे काम करता है, प्रभाव कैसे डालता है? देखिए, मंगल नाम का जो ग्रह है, ये आप भले ही समझते हो कि फायर का ग्रह है, लेकिन ये पूरी तरीके से अग्नि का ग्रह नहीं है। मंगल में कुछ हिस्सा जल का भी होता है। मंगल की दो राशियां हैं, मेष और वृश्चिक। मेष अग्नि राशि है और वृश्चिक जलीय राशि है। तो लगभग 70-80% तक अग्नि होती है और 20-30% तक मंगल में जल होता है। इसी प्रकार मूंगे में भी अग्नि और जल, इन दोनों का हिस्सा पाया जाता है। मूंगा मुख्य रूप से दो प्रकार का होता है, एक लाल मूंगा और एक सिंदूरी मूंगा, यानी ऑरेंज कोरल। लाल मूंगा इटैलियन मूंगा होता है, ये उग्र स्वभाव का है, ये कमजोर मंगल को ताकत देता है। जो नारंगी मूंगा है उसे कहते हैं इंडियन कोरल। नारंगी मूंगा सौम्य होता है और ये नकारात्मक मंगल की दुष्टता को कम कर देता है। तो मंगल का रत्न मूंगा इसीलिए है क्योंकि ये समुद्र के जल से संबंधित होता है और सूर्य की किरणों से इसके अंदर अग्नि की मात्रा भी पाई जाती है। मूंगे पर हमारी चर्चा जारी रहेगी, लेकिन आपको बता दें कि कार्यक्रम के अंत में हम बताएंगे कि अगर आज किसी महत्वपूर्ण काम से जाना है तो क्या करके घर से निकलें कि आपको सफलता मिले, और आज का दिन कितना शुभ है किस राशि के लिए और किस राशि को सावधान रहना होगा ये भी बताएंगे। अब जान लेते हैं मेष, वृषभ और मिथुन राशि का दैनिक राशिफल। मेष राशि, स्वास्थ्य में सुधार होगा, रुके हुए काम पूरे होंगे, धन लाभ के योग बन रहे हैं। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा हरा।

योग बन रहे हैं, संपत्ति लाभ के योग हैं, खान पान में सावधानी रखें, अनाज का दान कर दें तो दिन और भी बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा सफेद। मिथुन राशि, स्वास्थ्य का ध्यान रखें, जल्दबाजी में निर्णय ना लें, परिवार में विवादों से बचाव करें, गुड़ का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा लाल। देखिए, अगर आपने मूंगा पहना और मूंगा आपको सूट करे, मूंगा आपको लाभ पहुंचाए, तो क्या क्या लाभ मूंगा पहनने से होते हैं? अगर मूंगा आपको लाभ पहुंचाए तो आपका साहस बढ़ेगा, आत्मविश्वास ताकतवर होगा, कॉन्फिडेंस में लाभ होगा। मूंगा अगर फायदा करे तो रक्त के मामले में और त्वचा संबंधी समस्याओं में सुधार होगा। महिलाओं को जो गायनिक समस्याएं होती हैं, पीरियड्स से रिलेटेड जो प्रॉब्लम महिलाओं को होती है, अगर वो मूंगा पहने और उन्हें लाभ हो तो ये समस्याएं कम हो जाती हैं। टेक्निकल फील्ड में और फोर्स की नौकरी, पुलिस की, आर्मी की, इन नौकरियों में मूंगा पहनने से लाभ होता है। अगर आपकी कुंडली में मंगल का दोष है और आपको मूंगा सूट करता है तो मूंगा पहनने से मंगल दोष की समस्याओं का निवारण होता है। मूंगे पर हमारी चर्चा जारी रहेगी, लेकिन आपको बता दें कि कार्यक्रम में आगे हम बताएंगे आपके जन्म की तारीख के अनुसार आज का दिन कैसा जाने वाला है और आज के दिन का शुभ समय क्या है, उसमें कौन सा उपाय किया जाएगा। अब जान लेते हैं कर्क, सिंह और कन्या राशि का दैनिक राशिफल। कर्क राशि, धन का लाभ होगा, कोई शुभ सूचना प्राप्त होगी, करियर की बाधा दूर होगी। हनुमान चालीसा का एक बार पाठ कर लें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा हरा। सिंह राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं, चिंताएं समाप्त होंगी, जल्दबाजी में निर्णय ना लें, अनाज का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा क्रीम। कन्या राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं,
करियर में सफलता मिलेगी, रुके हुए काम पूरे होंगे। हनुमान चालीसा का पाठ कर लें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा नारंगी। वक्त हो गया है आपके सवाल का। अगर आप ज्योतिष के माध्यम से अपनी किसी समस्या का समाधान चाहते हैं तो आप हमें

आज का पहला प्रश्न नरेंद्र पाल सिंह जी ने बिजनौर से लिखा है, अपने पुत्र के बारे में जानना चाहते हैं। 2 मई 1994 का जन्म है बेटे का। 10:05 प्रातः बिजनौर उत्तर प्रदेश। ये पूछ रहे हैं कि मेरा बेटा नौकरी करेगा या व्यापार करेगा और उसके विवाह के योग क्या हैं। देखिए, आपके पुत्र की कुंडली के हिसाब से अगर वो टीचिंग के क्षेत्र में जाएं, कंप्यूटर में जाएं, सेल्स या मार्केटिंग की नौकरी करें तो उसमें सफलता मिलने की संभावना अच्छी दिखाई दे रही है। जहां तक इनके विवाह का प्रश्न है, इनकी कुंडली है मिथुन लग्न की और मकर राशि की, और इनकी जो दशा चल रही है वो राहु में मंगल की चल रही है, तो इनकी शादी होने का जो समय है वो साल 2027 में दिखाई दे रहा है और विवाह के बाद ये उन्नति ज्यादा कर पाएंगे। एक इनको ओपल बनवा के पहना दीजिए, 10-12 रत्ती का ओपल चांदी में, दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में, शुक्रवार की शाम को ओपल धारण करवा दें और इनको कहें कि ये सुबह शाम हनुमान चालीसा का पाठ करें तो बहुत बेहतर होगा। अब अगर आपने बिना सोचे विचारे, बिना किसी के सलाह के अपने मन से मूंगा पहन लिया तो मूंगा आपको नुकसान कर सकता है, और अगर आपको मूंगा नुकसान करेगा तो क्या नुकसान होगा? मूंगा अगर नुकसान करे और आपने मूंगा पहना है तो आपके साथ दुर्घटना घट सकती है। आपको शल्य चिकित्सा से, सर्जरी से, ऑपरेशन से गुजरना पड़ सकता है। वाद विवाद हो सकते हैं, झगड़े लड़ाइयां होंगी, मुकदमेबाजी की और जेल जाने की नौबत आ सकती है। मूंगा अगर नुकसान करे तो रिश्तों में समस्याएं आ सकती हैं, रिश्तों में विवाद हो सकते हैं, खास तौर से भाई भाई के संबंध खराब हो सकते हैं। स्वभाव उग्र हो सकता है, क्रोध एकदम से बहुत ज्यादा बढ़ सकता है। और आपने मूंगा पहना है, मूंगा आपको नुकसान करे तो ऐसे लोग दुस्साहस में आकर, ओवर कॉन्फिडेंस में आकर कोई ना कोई काम ऐसा करते हैं जिससे जीवन संकट में आ जाता है। मूंगे पर हमारी चर्चा जारी रहेगी, लेकिन आपको बता दें कि कार्यक्रम में आगे हम बताएंगे आपके जन्म की तारीख के अनुसार आज का दिन कैसा जाने वाला है और आज के दिन की जिज्ञासा क्या है और उसका समाधान क्या है। अब जान लेते हैं तुला, वृश्चिक और धनु राशि का दैनिक राशिफल।

चिंता रह सकती है, धन की हानि हो सकती है, वाणी पर नियंत्रण बनाए रखें। गुड़ का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा पीला। वृश्चिक राशि, परिवार में मंगल कार्य होंगे, धन लाभ के योग बन रहे हैं, करियर में सुधार होगा। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा आसमानी। धनु राशि, काम के दबाव से राहत मिलेगी, धन लाभ के योग बन रहे हैं, करियर में नए अवसर मिल सकते हैं। अनाज का अगर दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा नीला। अब आपको अगर सलाह दी गई है मूंगा धारण करने की, तो मूंगे को धारण करने का तरीका क्या है वो भी आपको बताते हैं। मूंगे को तांबे की अंगूठी में या सोने की अंगूठी में, अनामिका अंगुली में, रिंग फिंगर में धारण करना चाहिए। मंगलवार को दोपहर में थोड़ा सा सूर्य ताकतवर हो जाए तब मूंगा धारण करना ज्यादा बेहतर होगा। मूंगा धारण करने के पहले इसको गंगा जल में कम से कम एक घंटे डुबाए रखें, उसके बाद गंगा जल से धोकर शुद्ध कर लें और अपने ईष्ट देव को या हनुमान जी को मूंगा अर्पित करके तब धारण करें। अगर आप मूंगा धारण करते हैं अंगूठी में या लॉकेट में, तो मूंगे के साथ हीरा, पन्ना या नीलम, ये आपको धारण नहीं करना चाहिए। देखिए, अगर आपको मूंगा पहनने की सलाह दी जाती है तो मेरी एक सलाह ये है कि आप थोड़ा सा ध्यान देकर थोड़ा सा पूछ लें कि क्या मैं मूंगे के साथ मोती भी पहन सकता हूं, क्योंकि अगर आप मूंगा और मोती एक साथ पहने तो ये कॉम्बिनेशन आपको धन प्राप्त करवाने में, आपकी आर्थिक स्थिति को बेहतर करवाने में आपकी काफी सहायता कर सकता है। तो आप ऐसा करिए, जब भी मूंगा पहनिए सलाह लेकर साथ में एक मोती भी धारण करिए। मूंगा मोती का कॉम्बिनेशन पहनने से आपको लाभ होगा। अब ये जानते हैं कि किन लोगों के लिए मूंगा धारण करना शुभ होता है और किनको मूंगा धारण नहीं करना चाहिए। देखिए, जिनकी कुंडलियों में मंगल कारक हो, फायदेमंद हो या फायदेमंद हो सकता हो, उनके लिए मूंगा धारण करना शुभ होता है। मेष, कर्क, सिंह, वृश्चिक, धनु और मीन लग्न के लिए
मूंगा पहनना बहुत अच्छा है और उसमें भी कर्क लग्न और सिंह लग्न के लिए मूंगा पहनना बहुत ही अच्छा है। वृषभ लग्न, मिथुन लग्न, कन्या लग्न और तुला लग्न के लिए मूंगा धारण करना खतरनाक हो सकता है। याद रखिए, मैं लग्न की बात कर रहा हूं। वृषभ, मिथुन, कन्या और तुला लग्न के लिए मूंगा धारण करना कदापि शुभ नहीं है। मकर लग्न में और कुंभ लग्न में मूंगा विशेष दशाओं में धारण किया जा सकता है, विशेष स्थिति और परिस्थिति में। जो लोग क्रोधी बहुत हैं या जो लोग बहुत जल्दी वायलेंट हो जाते हैं, बहुत जल्दी उनके अंदर हिंसा आ जाती है, ऐसे लोगों को मूंगा नहीं पहनना चाहिए। जो लोग आलसी स्वभाव के हैं, जिनको डर बहुत लगता है, डरपोक हैं, ऐसे लोगों को मूंगा जरूर पहनना चाहिए। देखिए, लग्न के आधार के अलावा आप अपनी जरूरत के आधार पर भी मूंगा पहन सकते हैं। जैसे अगर कोई महिला है और गायनिक प्रॉब्लम है या संतान होने में बार बार दिक्कतें आ रही हैं, तो महिला सलाह लेकर मूंगा पहन सकती है। या अगर कोई व्यक्ति है, उसकी बार बार सर्जरी होती है या बार बार रक्त से संबंधित समस्या होती है, तो ऐसा व्यक्ति भी सलाह लेकर मूंगा पहन सकता है। तो लग्न के अलावा आप अपनी जरूरत के अनुसार, अपने कुंडली के तत्वों के अनुसार और मंगल की पोजीशनिंग के हिसाब से भी मूंगा पहन सकते हैं। कार्यक्रम के अंत में आपको बताएंगे कि आज का दिन कितना महत्वपूर्ण है और आज के दिन कौन सा काम करें, कौन सा काम ना करें। अब जान लेते हैं मकर, कुंभ और मीन राशि के लोगों का दैनिक राशिफल। मकर राशि, करियर में सफलता मिलेगी, धन की स्थिति ठीक रहेगी, परिवार में शांति रखें। हनुमान चालीसा का अगर पाठ कर लें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा पीला। कुंभ राशि, स्वास्थ्य का ध्यान रखें, दूसरों के विवाद में ना पड़ें, लिखा पढ़ी में सावधानी रखें। गुड़ का अगर दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा लाल।

की आर्थिक लाभ होगा, करियर की बाधा दूर होगी। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, उस शुभ रंग आज के लिए होगा गुलाबी। अब वक्त हो गया है ऐसा क्यों का। ऐसा क्यों में हम आपके मन और जीवन से जुड़ी हुई तमाम जिज्ञासाओं का समाधान करने का प्रयास करते हैं। लोगों का ऐसा मानना है कि मंगलवार को अगर आप सर्जरी करवाते हैं, शल्य चिकित्सा ऑपरेशन करवाते हैं, तो ऐसा करना अच्छा होता है। क्या ऐसा है? देखिए, मंगलवार का दिन मंगल ग्रह से संबंधित होता है और मंगल का संबंध सर्जरी से भी होता है। तो अगर मंगलवार के दिन सर्जरी कराई जाए तो सामान्य स्थितियों में मंगल का प्रभाव बना रहता है और सर्जरी कराना बेहतर होता है। अगर किसी व्यक्ति की कुंडली में मंगल बहुत खराब है तब बात दूसरी है, अन्यथा सामान्य स्थितियों में मंगलवार को सर्जरी कराने में कोई दिक्कत नहीं है। अब वक्त हो गया है लकी नंबर के अनुसार आपका लक जानने का। नंबर 1 से लेकर नंबर 9 तक के लोगों के लिए आज का दिन कैसा रहने वाला है, आइए जानते हैं। नंबर 1, स्वास्थ्य में सुधार होगा। नंबर 2, धन लाभ के योग बन रहे हैं। नंबर 3, करियर में कुछ परिवर्तन होगा। नंबर 4, स्वास्थ्य का ध्यान रखें। नंबर 5, रुके हुए काम पूरे होंगे। नंबर 6, संपत्ति लाभ के योग बन रहे हैं। नंबर 7, परिवार में समस्याओं से बचाव करें। नंबर 8, यात्रा के योग बन रहे हैं। और नंबर 9, काम की अधिकता रहेगी। वक्त हो गया है भाग्य पहर का, तो आइए जानते हैं कि आज भाग्य पहर का शुभ समय क्या है और इसमें कौन सा उपाय किया जाएगा। आज भाग्य पहर का समय है शाम को 6:00 से 7:30 तक। इस समय में हनुमान जी की कपूर से आरती करिएगा। आपके स्वास्थ्य और रोजगार की समस्याओं में सुधार होगा। अगर आज किसी महत्वपूर्ण काम से जाना है, कोई परीक्षा है, कोई इंटरव्यू है, कोई मीटिंग है, तो क्या करके घर से निकलें कि सफलता मिले, आइए जानते हैं सक्सेस मंत्र में। अगर आज आपकी कोई परीक्षा है तो गुड़ खाकर घर से जाइएगा, सफल होंगे। अगर आज आपका कोई इंटरव्यू है तो हनुमान जी को तुलसी दल चढ़ाइएगा, सफलता मिलेगी। अगर कोई महत्वपूर्ण मीटिंग है तो सुबह हनुमान चालीसा पढ़ करके जाइएगा, काम हो जाएगा। अगर डॉक्टर के पास जाना है इलाज के लिए, चिकित्सा के लिए,
तो हनुमान जी की आरती करने के बाद जाइएगा, स्वस्थ होंगे। अगर आज कोई बड़ी खरीदारी करनी है, वाहन, भूमि, भवन, आभूषण, तो लाल रंग का रुमाल साथ में रखिएगा, आपको लाभ होगा। अब वक्त हो गया है शुभ मंगल सावधान का, तो आइए जानते हैं कि आज का दिन किस राशि के लिए बहुत शुभ होगा और किस राशि को बहुत सावधान रहना होगा।

कन्या राशि वालों के लिए कार्यों में सफलता मिलेगी, चिंताएं समाप्त होंगी। आज का दिन मंगलमय होगा। धनु राशि वालों के लिए धन का लाभ होगा, करियर में सफलता मिलेगी। आज सावधान रहना होगा। मिथुन राशि वालों को स्वास्थ्य बिगड़ सकता है, चिंताएं बढ़ सकती हैं। अब जान लेते हैं कि आज का दिन इतना महत्वपूर्ण क्यों है और आज के दिन क्या करें क्या ना करें। आज नवमी तिथि है, रिक्तता तिथि मानते हैं इसको, इसलिए आज कोई भी नया काम ना करें। नवमी तिथि की स्वामिनी है माता दुर्गा, इसलिए आज थोड़ा समय निकाल कर माता दुर्गा की उपासना करें, लाभ होगा। तो भाग्य चक्र में आज के लिए बस इतना ही। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, इसी कामना के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आज तक। नमस्कार।

लखनऊ के अलीगंज इलाके में कोचिंग गेमिंग सेंटर में लगी भीषण आग, 15 युवाओं की गई जान, 9 घायल। आग हादसे में जान बचाने के लिए पहली मंजिल से कूदे बच्चे, एक लोहे के ग्रिल पर गिरा। लखनऊ आग हादसे में आग से बचने के लिए बाथरूम में छिपे थे बच्चे, दम घुटने से गई जान, सीएम योगी ने 4 अधिकारियों को सस्पेंड किया। योगी ने घटनास्थल और अस्पताल में लिया जायजा, मुख्यमंत्री आवास पर की हाई लेवल मीटिंग, मृतकों के परिजनों के लिए 5 लाख रुपए के मुआवजे का ऐलान। लखनऊ आग हादसे पर मुख्यमंत्री योगी का सख्त, जांच के लिए 2 सदस्यीय एसआईटी टीम गठित, 7 दिन में रिपोर्ट देने के निर्देश। लखनऊ अग्निकांड पर सीएम ने जताया दुख, मुख्यमंत्री ने अलीगढ़ आगरा दौरा समय सभी कार्यक्रम रखे। योगी ने घायलों के तत्काल उपचार के लिए निर्देश दिए, पीड़ित परिवारों को हर संभव मदद का भरोसा दिया। लखनऊ अग्निकांड में लखनऊ विकास प्राधिकरण की कथित लापरवाही उजागर, आवासीय नक्शे पर बना कमर्शियल कॉम्प्लेक्स, अफसरों पर होगी कड़ी कार्रवाई। लखनऊ अग्निकांड में मृतक आदित्य की मां ने रेस्क्यू और इलाज में देरी का आरोप लगाया, कहा समय पर कार्रवाई होती तो कई जाने बच सकती। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने घटनास्थल का दौरा किया, स्थिति का जायजा लिया, कहा लखनऊ अग्निकांड की उच्च स्तरीय जांच के आदेश दिए गए। हादसे पर पीएम मोदी ने भी संवेदना जताई, प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख रुपए, घायलों को 50,000 रुपए की आर्थिक मदद का ऐलान। लखनऊ अग्निकांड पर उपराष्ट्रपति ने भी जताया दुख, मृतकों के परिजनों के प्रति संवेदना और घायलों के जल्द स्वस्थ होने की कामना की। राजनाथ सिंह ने भी लखनऊ आग हादसे पर दुख जताया, बोले पीड़ित परिवारों के साथ संवेदनाएं। रक्षा मंत्री लखनऊ पहुंचे, अलीगंज अग्निकांड घटनास्थल का जायजा लेने के बाद अस्पताल में घायलों से मुलाकात। हादसे पर उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने भी दुख जताया। लखनऊ कोचिंग सेंटर अग्निकांड पर नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने शोक जताया, मृतकों के परिवारों के प्रति संवेदना जताई। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने भी घटना पर शोक व्यक्त किया, कहा अलीगंज से यह दुर्घटना बेहद पीड़ादायक है। बीएसपी प्रमुख मायावती ने लखनऊ आग हादसे पर कहा कि यह दिल दहला देने वाली घटना है, भविष्य में ऐसी घटनाओं की रोकथाम के लिए ठोस कदम उठाने चाहिए। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने भी लखनऊ में भी छात्रों की मौत पर गहरा शोक जताया, घायलों के स्वस्थ होने की कामना की। अखिलेश यादव ने लखनऊ आग हादसे के मृतकों को दी श्रद्धांजलि, बोले अग्निकांड के पीछे कारणों की ईमानदारी से जांच होनी चाहिए। यूपी के फिरोजाबाद अलीगढ़ को सीएम योगी ने विकास के सौगात दी, 1100 करोड़ से अधिक परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले की जांच अब सुप्रीम कोर्ट पहुंची है, एफआईआर और सीबीआई एसआईटी जांच की याचिका दाखिल की गई। राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले को लेकर यूपी कांग्रेस का कल पूरे राज्य में विरोध प्रदर्शन का ऐलान, निष्पक्ष जांच और एफआईआर की मांग की गई है। यूपी के सीतापुर में समाजवादी पार्टी कार्यालय पर बुलडोजर की कार्यवाही हुई, नजूल की भूमि पर अवैध कब्जे के आरोप में प्रशासन ने ध्वस्त किया। हरिद्वार में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने हरि सेवा आश्रम में आयोजित संत सम्मेलन में भागीदारी की। पूर्व अग्निवीरों के लिए गुजरात सरकार का बड़ा फैसला, सरकारी विभागों में क्लास 3 पदों की सीधी भर्ती में 20% आरक्षण दिया जाएगा। भारतीय नौसेना के जहाज आईएनएस उदयगिरी, आईएनएस कवरत्ती वियतनाम के होचिमिन सिटी पहुंचे, समुद्री सहयोग को और मजबूत करना मकसद है। समंदर में नौसेना की ताकत और बढ़ेगी, अगले महीने आईएनएस महेंद्रगिरी और आईएनएस मालवा नेवी में शामिल होंगे, निगरानी और युद्ध क्षमता में इजाफा होगा। एशियन रिले चैंपियनशिप में भारतीय महिला टीम ने जीता गोल्ड, 100 मीटर रिले में चीन को भारत ने हराया, भारत ने कुल 3 पदक जीते। आकाशदीप का धूमधाम से तिलक हुआ, भोजपुरी गाने पर जमकर थिरके गेंदबाज, 24 जून को वाराणसी में शादी। दिल्ली में खराब स्ट्रीट लाइट पर प्रति घंटा लगेगा जुर्माना, कंट्रोल रूम से होगी लाइव निगरानी, डिजिटल कंट्रोल रूम से मिलेगी ऑटोमेटिक अलर्ट सूचना। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कुनो नेशनल पार्क का दीदार किया, 1-to-1 बात कर चीता मित्रों के जज्बे को सराहा, भारत में जन्मे चीतों की संख्या 32 हुई। जूनागढ़ के गीर शासन के जंगल के राजा एशियाई शेरों का वेकेशन शुरू, आज से 15 अक्टूबर तक गीर सफारी पर्यटकों के लिए बंद रहेगा, आखिर दिन बड़ी संख्या में जुटे सैलानी। पटना में 8वीं तक के स्कूल 27 जून तक बंद किए गए हैं, भीषण गर्मी के चलते डीएम ने जारी किए आदेश। मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया, आज यूपी दिल्ली बिहार समेत 15 राज्यों में बारिश और तूफान की चेतावनी दी गई है। देशभर में मॉनसून रफ्तार पकड़ रहा है, जुलाई के पहले हफ्ते तक दिल्ली पहुंचने के आसार हैं। अगले 48 घंटों के दौरान दक्षिण पश्चिम मॉनसून के महाराष्ट्र, तेलंगाना, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, झारखंड और बिहार के कई हिस्सों में आगे बढ़ने का अनुमान। हफ्तों के इंतजार के बाद मुंबई में प्री मॉनसून एक्टिविटी, कई इलाकों में सीजन की पहली बारिश देखने को मिली। मुंबई के बांद्रा में भी मूसलाधार बारिश हुई, भारी बारिश के चलते कई इलाकों में जलभराव, आवाजाही भी प्रभावित हुई। पुणे में कई इलाकों में झमाझम बारिश देखने को मिली, कई जगहों पर पानी भरा। गुजरात के अमरेली में पिछले 3 दिनों से कई गांव में तेज हवा के साथ हो रही है बारिश, बुआई का इंतजार कर रहे किसानों के लिए खुशी की खबर।
गुजरात के वलसाड़ में पहली बारिश में मोगरावाड़ी अंडरपास डूब गया। प्री मानसून तैयारियों की पोल खुली, घुटनों तक भरे पानी से गुजरने पर मजबूर हुए लोग। पहली बारिश में सूरत नगर निगम की भी पोल खुली, अंडरपास में जल भराव और धसी सड़कों में कई घायल हुए, सीसीटीवी में हादसा कैद हुआ। मौसम विभाग के मुताबिक अलनीनो की वजह से गुजरात में अब तक मानसून की शुरुआत नहीं हुई है, अभी 3 से 5 दिनों तक इंतजार करना होगा। उत्तर गुजरात से सौराष्ट्र होते हुए पश्चिम मध्य अरब सागर तक कम दबाव का इलाका बना हुआ, इसी के चलते कई शहरों में बारिश हो रही है। 88 साल के पद्मश्री पूर्व डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल इंद्रजीत सिंह सिद्धू लोगों के लिए प्रेरणा बने। चंडीगढ़ में सार्वजनिक जगहों पर सफाई के लिए काम करते हैं। मेरठ के संकेत ने मिसाल पेश की है। 2 नंबर से जेई एडवांस में असफल होने के बाद सेल्फ स्टडी कर इसरो के साइंटिस्ट बने। जम्मू कश्मीर में आस्था और परंपरा के प्रतीक खीर भवानी मेले का शुभारंभ हो चुका है, बड़ी संख्या में भक्त अब शामिल हुए। गांधरबल की खीर भवानी में एलजी मनोसेना महबूबा मुफ्ती ने दर्शन पूजन किए, कश्मीरी पंडितों का सबसे बड़ा धार्मिक उत्सव है। गुवाहाटी के कामाख्या मंदिर में अंबुबाची मेले का शुभारंभ हुआ, 3 दिन तक बंद रहते मंदिर के कपाट, 4वें दिन 26 जून को विशेष पूजा अर्चना हो। उत्तर प्रदेश के हरदोई में ब्रिज निर्माण के दौरान बड़ा हादसा हो गया, निर्माणाधीन पुल का 50 मीटर हिस्सा ढह गया, मलबे में दबने से 3 मजदूर घायल। देहरादून के विकास नगर फास्टैग कटने पर भड़के कार सवार, धर्मवाला टोल प्लाजा कर्मी को बेरहमी से पीटा। ग्रेटर नोएडा में नशे में धुत युवती का हाई वोल्टेज ड्रामा, हाथ में सिगरेट और बगल में शराब की बोतल रखकर सड़क पर लेट गई। गाजियाबाद में 19 यात्रियों से भरी रोडवेज पलट गई, ऋषिकेश से ISBT दिल्ली जा रही थी बस ट्रक बचाने में हादसा हुआ। हैदराबाद के आसिफ नगर में हिट एंड रन का मामला सामने आया, किराए की SUV चला रहा नाबालिग महिला को टक्कर मारकर फरार हो गया, इलाज के दौरान मौत हो गई। MP के छिंदवाड़ा में ट्रक और मजदूरों से भरे पिकअप वैन की टक्कर हो गई, 5 की मौत और 20 लोग घायल हुए। जयपुर में मॉर्निंग वॉक पर निकली महिला से लूट हुई, गले पर झपट्टा मारकर सोने की चेन तोड़कर बाइक सवार बदमाश फरार, पुलिस जांच में जुटी। सीकर के रिंगस में आवारा कुत्तों ने बच्चे पर हमला किया, बचाने आए 2 लोगों को भी काटा, 2 बच्चों समेत 10 लोग घायल हुए। जालंधर में होम्योपैथी क्लिनिक पर नकाबपोश बदमाशों ने ताबड़तोड़ गोलियां चलाई, शीशा टूटा। यूपी के कौशाम्बी में भीषण सड़क हादसा हुआ, एम्बुलेंस और कार की टक्कर में मां बेटे की मौत, पिता और मासूम बेटी की हालत अभी भी गंभीर बनी हुई है। उड़ीसा के संबलपुर में चोरी के शक में प्रवासी मजदूर की बेरहमी से पिटाई की गई, पुलिस ने भीड़ से बचाकर 5 से अधिक लोगों को गिरफ्तार किया। पश्चिम बंगाल के कूचबिहार में तेज रफ्तार बाइक हादसे में 18 साल के युवक की मौत हो गई, नियंत्रण खोने से बड़ी दुर्घटना। पंजाब के फाजिलका में आंधी तूफान का कहर देखने को मिला, पेड़ गिरने से युवक की मौत हुई, पूरी घटना CCTV में कैद। यूपी के सोनभद्र में अंतर्राज्यीय गांजा तस्करी का भंडाफोड़ हुआ, 80 लाख से अधिक कीमत का गांजा बरामद किया गया, 6 तस्कर गिरफ्तार हुए। इंदौर सोशल मीडिया पर युवतियों को बदनाम करने वाला साइबर अपराधी गिरफ्तार किया गया, पुलिस ने देवास से आरोपी को दबोचा। महाराष्ट्र के बीड में 2 वाहनों की भीषण टक्कर हुई, हादसे में चालक की मौत, 1 गंभीर रूप से घायल। सूरत नगर निगम की प्रताड़ना से परेशान बुजुर्ग दंपत्ति ने इच्छा मृत्यु मांगी, कलेक्टर को अर्जी सौंपी। सूरत में पुलिस थाने के बाहर बजरंग सेना का प्रदर्शन, शराब और गांजे की बिक्री बंद करने की मांग की। अहमदाबाद क्राइम ब्रांच की बड़ी कामयाबी, 7 साल से फरार कुख्यात शूटर मोहम्मद तस्लीम को राजस्थान से गिरफ्तार किया। राजकोट में जर्जर आवास खाली कराने के विरोध में बुजुर्ग कानों का प्रदर्शन देखने को मिला, खड्डे में लेटकर विरोध जताया, मेयर ने कार्यवाही रोकने का आदेश। अमेरिका में दिलजीत दोसांझ का जलवा सिंगर के नाम पर रखा जाएगा पब्लिक हॉलिडे। 6 जनवरी 2027 का दिन दिलजीत दोसांझ डे के नाम से सेलिब्रेट किया जाएगा पब्लिक हॉलिडे। दोसांझ काफी भावुक, फिल्म निर्माता बोनी कपूर की बेटी बनेगी दुल्हनिया अंशुला कपूर का प्री वेडिंग सेलिब्रेशन शुरू हो चुका है। बॉक्स ऑफिस पर चला शाहिद कृति और रश्मिका का जादू फिल्म कॉकटेल 2 ने 3 दिनों में की 75 करोड़ से ज्यादा की कमाई। मां इंती बंगारम पर हुई नोटों की बारिश, 3 दिनों में 41 करोड़ से ज्यादा कमाई की फिल्म। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बदस्ते इस्तेमाल से मेमोरी चिप्स की डिमांड रिकॉर्ड स्तर पर पहुंचने के बाद आईफोन के दाम बढ़ाएगा एप्पल, आईफोन मैकबुक की कीमतें बढ़ेंगी। जून के पहले 3 हफ्तों में देश में सामान्य से 42% कम बारिश हुई है, जिसके बाद कृषि पैदावार घटने की आशंका। इस साल विदेशी निवेशकों ने भारतीय बाजार से $8.5 अरब की निकासी की है, 2023 के बाद देश में जितना विदेशी निवेश आया उसका 55% हिस्सा निकाला गया। भ्रामक विज्ञापनों पर CCPA ने सख्ती दिखाते हुए स्टोरिया फूड्स और मिसेज बेक्टर्स पर 1-1 लाख रुपए का जुर्माना लगाया। ईरान और अमेरिका ने 60 दिनों के भीतर शांति समझौता करने की दिशा में रोडमैप पर सहमति बनाई। ब्रिटेन में बड़ा सियासी उलटफेर देखने को मिला, कि इस सामने प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दिया। ईरान अमेरिका के बीच स्विट्जरलैंड में चल रही बातचीत पर अमेरिकी राष्ट्रपति JD वेंस ने कहा कि ईरान से बातचीत में अच्छी प्रगति हुई। लेबनन में मौजूद इजरायली सैनिकों को इजरायल के PM नेतन्याहू ने कहा कि लेबनन में हमारे सैनिकों पर होने वाले हमले का जवाब देंगे। गाजा पर इजरायली सेना ने हमला किया, 1 शख्स की मौत हुई, 3 लोग घायल हुए। रूस यूक्रेन की सेनाओं ने एक दूसरे पर फिर भीषण हमला किया, रूसी ड्रोन ने यूक्रेन के दक्षिण पूर्वी शहर को निशाना बनाया। रूसी सरकार का यूक्रेनी राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की पर बड़ा आरोप, कहा ज़ेलेंस्की बेलारूस की संप्रभुता को चुनौती दे रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया कनाडा के बीच बड़ा रक्षा समझौता हुआ है, $2.5 अरब का ओवर द होराइजन रडार तकनीक खरीदेगा कनाडा।
फिलीपींस के टैगलो शहर में मौजूद एक स्कूल में भीषण गोलीबारी हुई, 3 छात्रों की मौत। अपने पहले विदेशी दौरे पर मलेशिया पहुंचे बांग्लादेश के प्रधानमंत्री तारिक रहमान, मलेशिया टीम से मुलाकात के दौरान बांग्लादेशी श्रमिकों की सुरक्षा का मुद्दा उठाया। भीषण गर्मी और तेज हवाओं के कारण अमेरिकी राज्य यूटा के जंगलों में आग भड़क गई, बेकाबू आग को देखते हुए सॉल्ट लेक सिटी में घरों को खाली करने के आदेश दिए गए।

0: Need better internet? Cox Internet has the fast, reliable speeds you're looking for. Perfect for seamless streaming, gaming, and working from home. And now get Cox 300 Meg Internet with a 2-year plan price lock guarantee, plus equipment included. So get your household up to speed. Switch to Cox Internet today. Taxes and fees excluded from price guarantee.
1: It's Stormy, and previously on my show, Carly Pierce shared why she loves award show season.
2: For me, celebrating the people who create country music is about celebrating each other and rooting each other on and being a country music family and community and knowing that we are the generation right now that is going to influence many generations to come.
1: Listen to the Stormy Warren Show on the Big 615 weekdays 7 a.m. to 1 p.m. Central right here on TuneIn.
3: ऊंचाई पर बने रहने के लिए जरूरी है इरादों का प्योर होना। Gallant Advance बनाते हैं ऐसा स्टील जो अंदर से है ज्यादा प्योर, ज्यादा मजबूत। Gallant Advance TMT Rebar, निर्माण का रियल हीरो।
4: कुछ भी खा नहीं पा रहा हूँ, बहुत अपसेट हूँ।
5: No added sugar, preservative के बिना। डेट्स, बादाम, पिस्ता, काजू और शहद से तैयार किया गया Lion Dates Nut Bites।
6: Lion Date Nut Bites।
7: हनी, इस घर में कुछ है जो टूटता नहीं।
8: ये पिलर कभी नहीं टूटेगा। रुंगटा स्टील टीएमटी से बना।
9: रुंगटा नहीं तो घर स्ट्रॉन्ग नहीं। रुंगटा स्टील टीएमटी बार एकदम सॉलिड।
10: इन एसोसिएशन विद हिंट, बड़े आराम से Sharda University. The world comes together at Sharda University. Where are you?
11: Vimal, bolo zuba kesri.
12: Cool, stylish fans. Enhance home decor with beautiful fans.
13: Punjab National Bank. Bharose ka prateek.
14: Aaj tak la raha hai video wala paper. Har subah aapke mobile mein, wo bhi aapke purane newspaper se pehle. पढ़ने के लिए अपने डिवाइस पर टाइप करें epaper.aajtak.in या स्क्रीन पे दिए गए QR कोड को अभी स्कैन करें।
15: जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए श्री संत का।
16: प्लीज बजीपा, प्लीज डू ललन टॉक शो, इट्स अ रिक्वेस्ट एंड प्लीज टू स्पीक ट्रूथ।
15: अप्रैल 2026 में उन्होंने एक रिटेल कंपनी का ऐड किया।
16: ऐसे हरकतें आप करोगे आपके भाई के साथ? आई चैलेंज यू बजीपा, अगर आपको इतना प्रॉब्लम है तप्पड़ खांड से और आप इतना कमा रहे हो, हमें भी तो कमाने दो। आओ ना रिंग में, वेट कम।

0: ट्रंप मेलोनी के बीच जंग जारी। नाटो के बहाने आरोप लगाने की अब ट्रंप की बारी। अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप और इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी की सोशल मीडिया लड़ाई छोटी बातों से शुरू होकर ऐसी उलझी है कि फोटो सेशन से शुरू हुआ बवाल अब राष्ट्रीय सुरक्षा तक पहुंच गया है। मेलोनी ने डोनाल्ड ट्रंप को जमकर खरी खोटी सुनाई है। दरअसल ट्रंप बार बार G7 में मेलोनी के व्यवहार को लेकर सोशल मीडिया पोस्ट कर रहे हैं। पहले शनिवार को उन्होंने लिखा कि फ्रांस में G7 मीटिंग के दौरान इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने बार बार मेरे साथ तस्वीर खिंचवाने की गुजारिश की। इटली में उनकी लोकप्रियता का स्तर गिर रहा है। ऐसा शायद इसलिए क्योंकि जब ईरान को परमाणु हथियार बनाने से रोकने की बात आई तो उन्होंने अमेरिका का साथ देने से इनकार कर दिया था। मेलोनी ने हमें इटली के लैंडिंग स्ट्रिप्स या रनवे का इस्तेमाल नहीं करने दिया, जिससे बहुत बड़ी लॉजिस्टिकल दिक्कत हुई। ये तब हुआ जब अमेरिका इटली और दूसरे नाटो सहयोगियों की सुरक्षा के लिए हर साल अरबों डॉलर खर्च करता है। अमेरिका ने अब ईरान को सैन्य रूप से हरा दिया है तो मेलोनी अपनी लोकप्रियता बढ़ाने के लिए फिर से दोस्ती करना चाहती है, लेकिन नहीं शुक्रिया। मेलोनी ने इसके जवाब में लिखा, राष्ट्रपति ट्रंप, ये लगातार और बिना किसी उकसावे के किए जा रहे हमले बिल्कुल बेमतलब है। जहां तक मेरी लोकप्रियता की बात है तो आपका दोस्त होने से इसमें कोई मदद नहीं मिली है और न ही ये आपके साथ मेरे रिश्तों पर निर्भर करती है। मेरी लोकप्रियता इटली के राष्ट्रीय हितों की रक्षा करने की मेरी काबिलियत पर निर्भर करती है और मैंने हमेशा यही किया है। इटली में अमेरिकी सैन्य ठिकानों के मामले में भी हमने समझौतों का सम्मान किया है। जब तक मैं प्रधानमंत्री हूँ उनका उल्लंघन नहीं किया जा सकता। मेलोनी इससे पहले भी ट्रंप का साफ शब्दों में जवाब दे चुकी है।
1: कुछ बातों का तुरंत जवाब दिया जाना चाहिए। डोनाल्ड ट्रंप के बयान पूरी तरह से मनगढ़ंत है। मुझे समझ नहीं आता कि अमेरिका के राष्ट्रपति अपने सहयोगियों के साथ ऐसा व्यवहार क्यों करते हैं। दुख की बात है कि वे अमेरिका के दुश्मनों के साथ वैसी सख्ती नहीं दिखाते, बल्कि उनके प्रति वे कहीं ज्यादा नरम रुख अपनाते हैं। लेकिन उन्हें एक बात याद रखनी चाहिए, मैं और इटली कभी भी गिड़गिड़ाते नहीं है।
0: लेकिन अब ट्रंप ने फिर एक पोस्ट किया है। उन्होंने लिखा कि नाटो पर खरबों डॉलर खर्च करने के बाद भी इटली और उसकी प्रधानमंत्री इस्लामिक गणराज्य ईरान और उससे जुड़े गंभीर परमाणु खतरे के मुद्दे पर शामिल होने के बारे में सोचने तक को तैयार नहीं है। दशकों से हम उनकी रक्षा करते आए हैं, लेकिन जब हमारी और दुनिया की सुरक्षा की बात आती है तो वे हमारे साथ खड़े नजर नहीं आते। ये अच्छी बात नहीं है। यूरोपीय देशों के साथ ट्रंप की कई मुद्दों पर नहीं बनती, लेकिन इस बार इटली की पीएम के साथ ये तल्खी मिसाइलों के वार से कम नहीं है। आज तक ब्यूरो।
2: काम आसान बनाने आई टेक्नोलॉजी अब काम छीनने लगी है और यही बदलाव धीरे धीरे पूरी इकोनॉमी की तस्वीर बदल दे रहा है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI ने कंपनियों की स्पीड बढ़ाई है, खर्च घटाया है, लेकिन इसके साथ ही एक ऐसा खतरा भी खड़ा हो गया है जो सीधे आम आदमी की जेब से जुड़ा है। एक नई स्टडी में इस खतरे को ऑटोमेशन ट्रैप नाम दिया गया है। यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया और बोस्टन यूनिवर्सिटी के रिसर्चर्स के अनुसार कंपनीज AI के जरिए लागत घटा रही हैं, लेकिन छटनी होने पर लोगों की कमाई भी घटती है, जिससे बाजार में कुल खर्च कम होने लगता है। यानी जिस टेक्नोलॉजी से कंपनीज फायदा कमा रही हैं, वही आगे चलकर उनके बिजनेस पर दबाव बना सकती है। रिपोर्ट बताती है कि कंपनीज चाहकर भी इस रेस से बाहर नहीं निकल पा रही हैं। इसकी वजह है कि एक कंपनी ऑटोमेशन करती है तो बाकी को भी करना पड़ता है। ये ऑटोमेशन आर्म्स रेस बन चुकी है, जिसके असर से जरूरत से ज्यादा ऑटोमेशन हो रहा है। इसका असर धीरे धीरे पूरी इकोनॉमी पर पड़ता है। कम नौकरियां मतलब कम सैलरी, और कम सैलरी का सीधा असर बाजार की डिमांड पर दिखता है। इसका मतलब साफ है कि शॉर्ट टर्म में मुनाफा बढ़ता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में बिजनेस पर असर पड़ सकता है। जमीन पर भी इसके संकेत साफ साफ नजर आने लगे हैं। दरअसल 2025 में 1,00,000 से ज्यादा टेक कर्मचारियों की छटनी हुई। इनमें आधे से ज्यादा मामलों में AI नौकरी जाने की वजह रही। 2026 में तो महज 4 महीने में ही 92,000 से ज्यादा लोग नौकरी गंवा चुके हैं। रिपोर्ट ये भी कहती है कि जैसे जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ज्यादा ताकतवर होगा और कंपनीज के बीच मुकाबला बढ़ेगा, ये समस्या और गहरा सकती है। इस स्थिति से निपटने के लिए कई तरीके भी सुझाए गए हैं, जिनमें शामिल हैं UBI, रीस्किलिंग और कर्मचारियों को कंपनी में हिस्सेदारी देना, ऑटोमेशन पर खास टैक्स लगाने का सुझाव जिससे कंपनीज छटनी के असर को भी ध्यान में रखें, रिसर्च में ये भी कहा गया है कि ये कदम पूरी समस्या को सुलझा नहीं पाते, यानी टेक्नोलॉजी की दौड़ में संतुलन बनाए बगैर आगे बढ़ना मुश्किल हो सकता है। एआई ने काम करने का तरीका तो बदल दिया है, लेकिन अगर यही रफ्तार जारी रही तो इसका असर हर उस

एक एनकाउंटर जिस पर अपनों के बीच ही घिर गई है सम्राट सरकार, एक एनकाउंटर जिस पर बीजेपी के भीतर ही मोर्चाबंदी हो रही है। 5 दिन पहले यानी 17 जून को भरत तिवारी पर बिहार पुलिस गोलियां बरसाती है और अब 5 दिन बाद खुद बिहार पुलिस और बिहार सरकार पर सवालों की बौछार हो रही है। एक बड़ा और संगीन सवाल भरत तिवारी के इस वीडियो की बुनियाद पर भी हो रहा है जो अभी अभी सामने आया है। तो क्या भरत तिवारी को अंदेशा था कि उसकी मौत करीब आ रही है? क्या उसे एहसास हो गया था कि वो इस तरह एनकाउंटर में मारा जाएगा? भरत तिवारी की शख्सियत और अतीत विवादों से भरा है, इसलिए इस वीडियो को लेकर भी दावा जोखिम भरा हो सकता है। बीजेपी के भीतर इस एनकाउंटर को लेकर किस कदर बेचैनी है, ये आप सम्राट सरकार के 2 मंत्रियों के बयानों से समझ सकते हैं। इस एनकाउंटर पर सवाल उठाने वाले, आक्रोश जाहिर करने वाले सिर्फ ये 2 मंत्री ही नहीं है, बीजेपी नेताओं की लंबी फहरिस्त है जो खुलकर नाराजगी जता रहे हैं। रोहित सिंह, पटना, आज तक।

0: दुश्मनों के साथ दुश्मनी और दोस्तों के साथ भी दुश्मनी, क्या यही है ट्रंप के रिश्तों का फॉर्मूला? क्या ट्रंप जानबूझकर ऐसा करते हैं या फिर अनजाने में रिश्ते तल्ख होते चले जाते हैं? अमेरिका के राष्ट्रपति के तौर पर पहले कार्यकाल में और फिर दूसरे कार्यकाल में भी ट्रंप की दोस्ती की यही तस्वीर उभर कर सामने आ रही है। दोस्तों के साथ क्यों तल्ख हो जाते हैं ट्रंप के रिश्ते? इसराइल की सुरक्षा के लिए निशाना बनाया था ईरान, अब नेतन्याहू को लेबनन पर मिल रहा ज्ञान, बढ़ रहा घमासान। शुरुआत करते हैं अमेरिका और इसराइल से या फिर ट्रंप और नेतन्याहू से। ट्रंप और नेतन्याहू की ये तस्वीरें उनके दोस्त होने, उनके करीबी होने की गवाही दे रही हैं। इतने करीबी कि एक साल में ट्रंप इसराइल का साथ देने के लिए दो बार ईरान पर हमला कर चुके हैं, पहला जून 2025 में, दूसरा 28 फरवरी 2026 को। इन हमलों में ईरान ने तो जो खोया सो खोया, अमेरिका भी हर रोज करोड़ों डॉलर का नुकसान झेलता आया है। इसराइल के साथ कंधे से कंधा मिलाकर युद्ध भूमि में उतरे ट्रंप को अपने ही देश में इसके लिए आलोचनाओं का सामना करना पड़ा, लेकिन उन्होंने परवाह नहीं की। तो सवाल यह है कि अपने पश्चिम एशिया के इस सबसे भरोसेमंद दोस्त को भी ट्रंप ने आलोचना करने से क्यों नहीं बख्शा? पिछले कुछ दिनों से नेतन्याहू ट्रंप की आलोचना का शिकार हो रहे हैं, कभी ट्रंप तो कभी जेडी वैंस इसराइल को खरी खोटी सुनाने में नहीं चूक रहे। हालात देखते हुए अब नेतन्याहू के भी सुर बदलने लगे हैं। वो साफ साफ कह रहे हैं कि दुनिया को बेशक जो लगता हो, लेकिन सच यही है कि मेरी और ट्रंप की सोच अलग है।
1: In the United States, they say that President Trump does everything that I ask him to do. And in Israel, they say that I do everything he wants me to do. Well, neither is true. We're leaders of independent and proud countries. We stand for our interests. I stand for the interests of Israel.
0: इसराइल किसी भी कीमत पर हिजबुल्ला को बख्शने के मूड में नहीं है और ईरान तब तक अमेरिका से कोई डील करने के मूड में नहीं है जब तक इसराइल लेबनन में सैन्य कार्रवाई रोक नहीं देता। डील को सील करने के लिए आतुर बैठे ट्रंप के लिए ये एक नई मुश्किल है जो इतनी आसानी से हल होने वाली नहीं है। लेकिन सवाल फिर वही है कि आखिर अपने बेहद करीबी देशों के प्रमुखों के साथ ऐसा क्यों करते हैं ट्रंप? अपनी इमेज बनाने के लिए, अपनी इमेज को बदलने के लिए या फिर दोस्तों को उनकी हदें बताने के लिए? आज तक ब्यूरो।

क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।

लोगों की मौत के बाद एक्शन, हादसे की जांच के लिए एसआईटी का गठन, 7 दिन में आएगी रिपोर्ट, बिल्डिंग मालिक समेत 4 गिरफ्तार, एई और जेई समेत 4 अधिकारी सस्पेंड। भरत तिवारी एनकाउंटर को लेकर बिहार में सियासत तेज, पटना हाईकोर्ट में पीआईएल दायर कर निष्पक्ष जांच की मांग, बिहार राज्य मानव अधिकार आयोग ने भी लिया संज्ञान, 13 जुलाई तक रिपोर्ट तलब।

वादों के बगावत के बाद उद्धव को लग सकता है एक और झटका। बैठक में शामिल नहीं हुए 3 विधायक और 1 एमएलसी, 6 सांसद पहले ही शिंदे की शिवसेना में हो चुके हैं शामिल। फिरहाद हाकिम समेत टीएमसी के 8 नेताओं को कारण बताओ नोटिस। बीजेपी खेमे में शामिल होने पर पार्टी विरोधी गतिविधियों का आरोप। बागी विधायकों ने खुद को बताया असली टीएमसी। ममता को अध्यक्ष पद से हटाया। वहीं देश के पश्चिमी इलाकों में मॉनसून देने वाला है दस्तक। अगले 24 घंटों में बारिश से तरबतर होंगे गुजरात और महाराष्ट्र, झमाझम बरसात में भीगी मुंबई।

0: आपके लिए इस बुलेटिन में। आपको दिखाएंगे कतर में गैस फैक्ट्री ब्लास्ट से जुड़ी खबर, मरने वालों में 12 भारतीय शामिल है। साथ ही आपको भी बताएंगे कि लखनऊ अग्निकांड में 15 लोगों की मौत की इनसाइड स्टोरी क्या है, अब तक क्या कुछ एक्शन हुआ है। वहीं इसके साथ ही बताएंगे उद्धव की पार्टी में टूट की नई कहानी, सांसदों के बाद अब किसकी बारी। इसके अलावा बताएंगे टीएमसी पर बागियों के नए दावे से जुड़ी खबर और दिखाएंगे कि राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में अब कानूनी रास्ता क्या है। इसके अलावा बात उस खबर की भी होगी कि आईबी के नए बॉस की पूरी डिटेल आपको देंगे। साथ ही होगी खानसर विवाद से जुड़ी खबर, बताएंगे क्यों लटकी है कोचिंग सेंटर पर तलवार और लॉरेंस बिश्नोई ने कहां फायरिंग की, किसे एक बार फिर से नई धमकी लॉरेंस ने दी है। तो सबसे पहले रुक करते हैं इस वक्त की एक बड़ी खबर का। कतर के रास लाफान लिक्विफाइड नेचुरल गैस कॉम्प्लेक्स में हुए भीषण धमाके की वजह से 12 भारतीयों की मौत हो गई है। इस धमाके में कुल 13 लोग मारे गए हैं। दोहा स्थित भारतीय दूतावास ने यह जानकारी दी है। दूतावास ने पीड़ित परिवारों के प्रति संवेदना जताई और बताया है कि इस घटना में घायल हुए सभी लोगों की हालत स्थिर है और उनका इलाज चल रहा है। इसके पहले कतर के ऊर्जा मंत्री और कतर एनर्जी के मुख्य कार्यकारी साद अल काबी ने यह भी बताया था कि मारे गए लोग भारतीय और पाकिस्तानी नागरिक हैं। इस पूरे हादसे में 60 से ज्यादा लोग घायल भी हुए हैं। धमाका बरजान गैस फैसिलिटी में हुआ जो कि कतर के मुख्य निर्यात केंद्र रास लाफान इंडस्ट्रियल सिटी का एक हिस्सा माना जाता है। कतर अधिकारियों ने इसे तकनीकी दुर्घटना कहा है और इसकी जांच फिलहाल शुरू कर दी है। इस पूरे धमाके में 60 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। गैस परिसर में बहुत बड़ा ब्लास्ट हुआ है, बरजान गैस फैसिलिटी ब्लास्ट में अभी तक फिलहाल 13 लोगों की मौत की खबर सामने आई है। इसमें से 12 लोग भारतीय बताए जा रहे हैं और 60 लोग घायल भी हैं। प्रणय हमारे साथ जुड़ गए ज्यादा जानकारी के लिए। प्रणय, पूरे हादसे के बारे में बताइएगा डिटेल में, कैसे पूरा हादसा हुआ, कितने लोग इसमें भारतीय हैं, कुछ पाकिस्तानी भी बताए जा रहे हैं। प्रणय
1: देखिए पूजा, करीब 13 लोगों की मौत इस बारजान गैस फैसिलिटी में हुए हादसे के दौरान हुई है और 21 जून की रात को ये जो हादसा हुआ इसके अंदर 13 में से 12 लोग जो मारे गए हैं वो भारतीय हैं। इसके अलावा 66 लोग जो हैं वो घायल बताए जा रहे हैं, जिसके अंदर भारतीय के साथ साथ पाकिस्तानी, नेपाली, बांग्लादेशी, नाइजीरिया, तंजानिया समेत कई देशों के जो लोग हैं जो वहां काम के लिए मौजूद थे वो लोग घायल हैं। और कतर एनर्जी जो है जो कि इसका संचालन करती है बारजान फैसिलिटी की, उसके मुताबिक ये एक ऑपरेशनल हादसा था, यानी किसी तरीके का ना तो कोई हमला हुआ, ना किसी तरीके की कोई ना कोई सबोटाज यहाँ पर हुआ है। और ये फैसिलिटी दिसंबर 2025 से बंद थी, 19 जून को ही, यानी इस हादसे से दो दिन पहले ही इसे ऑन किया गया था, इसे शुरू किया गया था। रास लाफान जो है वो दुनिया की सबसे बड़ी गैस फैसिलिटीज में से एक है और भारत को भी बड़े पैमाने पर जो गैस सप्लाई है वो इसी रास लाफान के इलाके से होती है। लेकिन ईरान और अमेरिका के बीच चले युद्ध के दौरान मार्च के महीने में, करीब 18 मार्च को ये रास लाफान
0: गैस, जल्द से जल्द अब इस पूरे हादसे की जांच भी प्रणय की जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, जानकारी के लिए नजर बनाए रखेगा। वहीं लखनऊ अग्निकांड की बात कर लेते हैं। इस वक्त एक बड़ी खबर अग्निकांड को लेकर, योगी सरकार का एक्शन जारी है। यूपी पुलिस ने बिल्डिंग के मालिक समेत 4 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। साथ ही इस हादसे की जांच के लिए सीएम योगी ने एसआईटी टीम का गठन भी कर दिया है, जिसमें से 7 दिन में रिपोर्ट मांगी गई है। इसके अलावा लापरवाही बरतने के चलते सरकार ने एई और जेई समेत 4 अफसरों को सस्पेंड भी कर दिया है। कमर्शियल कॉम्प्लेक्स में लगी आग से अब तक 15 लोगों की मौत हो चुकी है और 9 लोग गंभीर रूप से घायल है। सीएम योगी ने अस्पताल जाकर खुद घायलों और मृतकों के परिजनों से मुलाकात की, साथ ही हादसे वाली जगह जाकर हालात का भी जायजा सीएम योगी आदित्यनाथ ने लिया। तो वहीं देर शाम केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह भी हादसे वाली जगह पर पहुंचे और उन्होंने भी वहां पहुंचकर उस पूरे हालात का जायजा लिया। उन्होंने आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की बात भी कही। पीएम मोदी और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने इस पूरे हादसे पर संवेदना भी अपनी व्यक्त की है। संतोष शर्मा हमारे साथ जुड़ गए ज्यादा जानकारी के लिए हादसे वाली जगह से। संतोष, अभी ये जांच कहां तक पहुंची है, कई लोगों को सस्पेंड भी कर दिया है, संतोष क्या अपडेट है?
2: देखिए बिल्कुल, मैं इस समय पर उस कॉम्प्लेक्स के अंदर मौजूद हूं। आप देखिए किस तरीके का ये एंट्री एग्जिट पॉइंट था और ये बहुत छोटा सा पहली बिल्डिंग है जो पेट शॉप जिसको कहा गया, इसी पेट शॉप में सामान रखा था और यहां से ऊपर के फ्लोर पर जो स्टूडियो था, जो कोचिंग सेंटर था जहां पर लोग फंसे थे, और उसके बाद ये अंदर का ये पूरा नजारा है। आपको तस्वीरों के जरिए दिखाते हैं कि पूरा सब कुछ तहस नहस हो गया और तहस नहस होने के बाद ये पूरा 15 लोगों की जान चली गई। उत्तर प्रदेश सरकार ने इस मामले में एसआईटी गठित की है और ये छोटा सा रास्ता है ये इस रास्ते से, यही एक एंट्री और एग्जिट प्वाइंट था, इसी एंट्री एग्जिट प्वाइंट से सिर्फ ये एक पूरा सा एक छोटा सा एक बॉक्स नुमा ये बिल्डिंग है। इस बॉक्स नुमा बिल्डिंग के अंदर ही लोग सिर्फ इसी से, जो बच्चे थे जो लोग थे वो इसी छोटे से रास्ते से, और कोई रास्ता था ही नहीं, ये इस रास्ते से अंदर जाना बाहर जाना। और जब आग लग गई तो उसकी वजह से धुएं ने और आग ने अफरा तफरी मच गई और लोग फंस गए। और ये अब आपको रास्ता दिखाते हैं, ये रास्ता है, इस रास्ते के जरिए ये एक एंट्री एग्जिट प्वाइंट है। मैं आपको दिखा रहा हूँ तस्वीरों के जरिए, दिखाने की कोशिश कीजिए, ये एंट्री एग्जिट प्वाइंट है। इसके अलावा जो बेसमेंट बनाया गया था, एक बेसमेंट भी बना हुआ है अंदर, देखिए आपको बेसमेंट भी ले चलते हैं, अंदर बेसमेंट है। ये नीचे मतलब तीन फ्लोर की ये बिल्डिंग, उसके बाद ये बेसमेंट, टोटली अगर कहा जाए तो सिर्फ और सिर्फ सुरक्षा मानकों को दरकिनार करके ये बनाया गया और ये बिल्डिंग बनी हुई है। ये नीचे आते हैं, नीचे आकर के रास्ता, ये बेसमेंट का है ये रास्ता। और इस बेसमेंट के रास्ते से आप देखिए, समझिए कि ये कैसे समझाने की कोशिश करते हैं। ये नीचे जब जा रहे हैं तो ये छोटे बच्चों का जो शॉप है, कपड़ों की शॉप है, टॉयज शॉप है, ये तमाम चीजें यहाँ गोडाउन में रखी गई हैं, इकट्ठा की गई हैं। तो ये टोटल ये एक छोटा सा बॉक्स नुमा ये कॉम्प्लेक्स है। इस कॉम्प्लेक्स में सिर्फ और एंट्री और एग्जिट का एक गेट। तो ऐसे में जब हादसा हुआ तो 15 लोगों की दम घुटने से जान चली गई। और ये आपका
3: जी सर? नहीं, मेरा नहीं है सर, हम तो नगर निगम कर्मचारी हैं।
2: नगर निगम की तरफ
3: जी जी, पानी भरा हुआ था, हम ये इसे खींचने आए हैं बस।
2: अच्छा, ये बेसमेंट में पूरा पानी भरा हुआ है?
3: जी जी, ये इतना पानी था, कम से कम आधा फुट रह गया है बस।
2: अच्छा, अब देखिए आधा फीट पानी है अंदर, और आपको अंदर ये जो है ये पूरा पूरा पानी भरा हुआ है। आप देखिए ये पाइप लगा हुआ है, तो पाइप से ये पानी निकालने की कोशिश की जाए, पूरा पाइप डूबा हुआ है। देखिए ये इतना पानी भरा हुआ है, क्योंकि कल फायर ब्रिगेड ने पूरा रेस्क्यू ऑपरेशन किया, पानी लेकर गया तो ये बेसमेंट में चला गया। तो ये तस्वीरों के जरिए ये
0: तस्वीरें तो ये बयान कर रही हैं जो अभी हाल ही में दिल्ली अग्निकांड हुआ, और उससे जो सबक लेना चाहिए था वो यहाँ पर नहीं लग रहा, क्योंकि लगातार कहा गया था जो बिल्डिंग्स है उनकी जांच की जाएगी।
2: सक्षम था और ये बॉक्स रूमा था, एंट्री और एग्जिट के लिए कोई व्यवस्था नहीं, कोई जगह नहीं, इमरजेंसी में एंट्री एग्जिट जो थी वो कोई बनाई नहीं गई थी, सिर्फ एक ही पॉइंट से एंट्री एग्जिट है। और अब आपको वो रास्ता एक बार फिर से बाहर ले जा करके संजय से कहेंगे, कैमरा पर्सन से, कि बाहर का रास्ता एक बार बहुत महत्वपूर्ण है इस बॉक्स के लिए, कि जिस तरीके से ये बॉक्स नुमा, ये डिब्बा नुमा, ये पूरे बिल्डिंग बनाई गई। आप सोचिए कि जो लोग आए थे, जो लोग फंसे थे, वो क्यों उनकी जान चली गई। फायर ब्रिगेड मौके पर पहुंची, फायर ब्रिगेड चाहकर भी कुछ नहीं कर पाई, क्योंकि उनको निकालने के लिए जो लोग फंसे हुए थे पीछे की तरफ, उनको निकालने के लिए कोई जगह नहीं थी। और ये जो एंट्री एग्जिट प्वाइंट है, इसी से लोग निकलने के लिए और बाहर आने के लिए रास्ता था। और अब ये एंट्री एग्जिट प्वाइंट देख रहा हूँ, ये देखिए ये जो एसी पैनल लगे हैं, मतलब एंट्री एग्जिट प्वाइंट भी कोई फ्री नहीं था कि कोई फ्रीली आ सके जा सके, यहाँ पर भी एसी के पैनल का पूरा जाल लगा हुआ है। तो आप समझिए कि किस तरीके के हालात और किस तरीके से मानकों को, सुरक्षा मानकों की अनदेखी करने के बाद ये पूरा कॉम्प्लेक्स तैयार किया गया। और उस कॉम्प्लेक्स को तैयार करने के बाद यहाँ कमर्शियल एक्टिविटी हो रही थी। दूसरी चीज, ये पूरा जो कॉम्प्लेक्स आप देखिए, ये पूरी आग लगी हुई है, आग लगी हुई थी, उसके बाद इसको रेस्क्यू किया गया। तो कहा जाता है पूरा ये अनदेखी, नियमों की अनदेखी, जो कायदे कानून थे, जो एलडीए की लापरवाही, तमाम जिम्मेदार विभागों की लापरवाही, चाहे वो नगर निगम हो, चाहे वो जिला प्रशासन हो, उसका नतीजा है कि एक बॉक्स नुमा कॉम्प्लेक्स में आग लगी और 15 लोगों की जान चली गई।
0: संतोष, देखिए माना कहा ये भी जा रहा है

0: तो ये तस्वीरें आप कल की देखिए, कितनी भयावह तस्वीरें हैं। अलीगंज लखनऊ में ये भयानक हादसा हुआ, कई बच्चों ने अपनी जान गंवा दी और कहा यह जा रहा है कि बर्न इंजरी उन बच्चों को नहीं हुई है, दम घुटने की वजह से उनकी मौत हुई है। यानी सही एग्जिट पॉइंट होता, सही एग्जिट डोर होता तो शायद उन बच्चों की जान बच सकती थी। एक पहले अभी हमने देखा दिल्ली में इतना बड़ा अग्निकांड हुआ, उसके बाद अब लखनऊ से ऐसी भयावह तस्वीरें इस अग्निकांड की, जगह जगह पर चीख पुकार सुनाई दी और ऐसे में उस अग्निकांड के बाद भी सबक नहीं लिया गया। लखनऊ अग्निकांड के बाद सरकार का एक्शन शुरू हुआ है, सीएम योगी ने इमरजेंसी बैठक भी बुलाई। हादसे की समीक्षा के बाद एसआईटी गठित कर दी गई है जो कि 7 दिन में रिपोर्ट देगी।
1: लखनऊ अग्निकांड में 15 छात्रों की जान चली गई। आग की लपटों के बीच चीख पुकार और जिंदगी बचाने की जद्दोजहद की तस्वीरों ने लखनऊ ही नहीं बल्कि पूरे देश को एक बार फिर झकझोर कर रख दिया है। एनिमेशन सेंटर में हुए इस भीषण और दिल दहलाने वाले हादसे के बाद सरकार एक्शन में है। बिल्डिंग के मालिक वीरेंद्र शुक्ला सहित 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। एई और जेई सहित 4 अधिकारियों को तत्काल प्रभाव से सस्पेंड कर दिया गया है। सीएम योगी आदित्यनाथ देर शाम अस्पताल पहुंचे, घायलों से बातचीत की और मृतकों के परिजनों को हर संभव मदद का आश्वासन दिया।
2: बहुत ही बड़ी घटना है, ये झकझोर देने वाली घटना है और घटना की उच्च स्तरीय जाँच के साथ साथ आज ही निर्देश दिए गए हैं ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो, तत्काल प्रशासन इसमें एक रिपोर्ट प्रस्तुत करे। और इसके अलावा ऐसी जहां भी बिल्डिंगें हैं जहां बच्चे एकत्र होते हैं या जहां पर भीड़ भाड़ वाला बिल्डिंग है वहां पर जो भी इंतजाम हैं वैकल्पिक निकलने के रास्ते के वो सुनिश्चित किए जाएं।
1: अग्निकांड की जांच के लिए सरकार ने 2 सदस्यीय एसआईटी का गठन किया है। जांच दल को 7 दिनों में विस्तृत रिपोर्ट सौंपने के निर्देश दिए गए हैं। एसआईटी आग लगने के कारणों, सुरक्षा मानकों के पालन, भवन की वैधानिक स्वीकृतियों और संभावित लापरवाही की जांच करेगी। हादसे के बाद 2 घंटे के अंदर अपने तमाम दौरे रद्द कर मौके पर पहुंचे सीएम योगी आदित्यनाथ ने साफ कर दिया है कि हादसे के लिए जिम्मेदार लोगों को किसी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट आज तक।
0: तो वही रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने घटनास्थल का दौरा किया, उन्होंने पीड़ित परिवारों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त की और कहा कि मुख्यमंत्री के निर्देश पर पूरे मामले की गहन जांच होगी, दोषियों पर सख्त एक्शन भी होगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह मौके पर पहुंचे, उन्होंने हालात का जायजा लिया और दोषियों पर सख्त एक्शन की बात उन्होंने कही। ये तस्वीरें मुलाकात की जब रक्षा मंत्री मौके पर पहुंचे और घायलों के परिवार वालों से उन्होंने वहां पर बातचीत की, अपनी संवेदना व्यक्त की और मुख्यमंत्री के निर्देश पर पूरे मामले की गहन जांच होगी, दोषियों पर सख्त एक्शन होगा, ये उन्होंने जो परिवार वाले थे उनको कहा।
3: पहले दुखद है, दुर्भाग्यपूर्ण है, पीड़ादायक है, कुछ भी कहा जाए एडमिनिस्ट्रेशन के स्तर पर और डॉक्टर्स के स्तर पर जो मैक्सिमम एफर्ट हो सकता है जो कुछ भी करना आवश्यक है सब किया है लोगों ने और मुख्यमंत्री जी ने स्वयं कहा भी है इस मामले की तह तक जाने की वो कोशिश करेंगे, प्रॉपरली इसकी जाँच कराई जाएगी और आवश्यक जहाँ हुआ तो रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स करने में गवर्नमेंट पीछे नहीं रहेगी।
4: सब परिवार वाले
5: परिजनों से भी मिले, किसकी गलती अभी प्राथमिक तौर पे?
3: देखिए मैं ऐसे नहीं कह सकते, ये तो जांच का विषय है।
4: सर परिजन लापरवाही का आरोप लगा रहे हैं लगातार कि
3: ठीक है स्वाभाविक है परिजन पीड़ा में है लेकिन जब तक मामले की पूरी तरह से जांच न हो जाए तब तक किसी के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स करना मैं समझता हूँ ये जल्दबाजी है।
0: लखनऊ के अलीपुर में कमर्शियल कॉम्प्लेक्स जिस वक्त धू धू कर जल रहा था वो मंजर दिल दहला देने वाला था क्योंकि अंदर फंसे लोग मदद के लिए पुकार रहे थे, चारों तरफ चीख पुकार मची थी।
1: लखनऊ का पुनरिया चौराहा जहां एक 2 मंजिला इमारत आग की लपटों में घिरी थी, चीख पुकार और सायरन की आवाजें दिल दहला रही थी। इमारत के अंदर करीब 20 से 22 लोग फंसे हुए थे। आग के लपटों से घबराकर एक शख्स ने पहली मंजिल की खिड़की खोली और सीधे नीचे छलांग लगा दी। इमारत की सबसे बड़ी खामी ये थी कि यहाँ एंट्री एग्जिट के लिए एक ही रास्ता था, उसी मेन गेट पर आग तांडव कर रही थी।
6: जब बाहर निकले हैं तो देखा कि वह पूरा ऑफिस धुएं से भरा हुआ था और नीचे से ही आग ऊपर की तरफ आ रही थी, तो धुआं से पूरा कॉरिडोर ब्लॉक हो गया था। हम लोग सांस भी नहीं ले पा रहे थे। हम लोग बिजली का तार पकड़ के बाहर लटक गया है, जब जल रहा था जैसे मेरी उंगलियां धुएं से जल गई।
1: इस बीच मौके पर पहुंचे दमकल कर्मियों ने आग बुझाने की कोशिश की लेकिन कामयाबी नहीं मिली। ऐसे में बगल के घर की दीवार तोड़कर अंदर फंसे लोगों को रेस्क्यू करने का फैसला किया गया। दीवार में दो बड़े छेद किए गए। यह रेस्क्यू ऑपरेशन करीब 3 घंटे तक चला। दमकल कर्मी और पुलिस की टीम जब तक अंदर दाखिल हुई काफी देर हो चुकी थी।
7: जब लोग यहाँ पे मरे हुए
8: और जो घायल आए उनकी क्या हालात?
7: घायल वाली एक लड़की थी जिसको जो घायल हुई उसको बहुत विशेष चोट नहीं आई है, बाएं दोर उसमें चोट आई है। और जो एक लड़का है उसमें से उसको रीढ़ की हड्डी फ्रैक्चर कर गई है।
1: अंदर फंसे लोगों का कहना है कि आग ग्राउंड फ्लोर पर स्थित पेट फूड के गोदाम में लगी और पूरी इमारत में फैल गई। ब्यूरो रिपोर्ट आज तक।
0: लखनऊ अग्निकांड में नगर निगम के हाउस टैक्स नोटिस से एक बड़ा खुलासा हुआ है कि जिस इमारत में आग लगी उसका नक्शा रिहायशी इमारत के लिए पास हुआ था लेकिन एलडीए की नाक के नीचे रेजिडेंशियल नक्शे पर कमर्शियल कॉम्प्लेक्स बन गया। अब एलडीए की भूमिका और लापरवाही सवालों के घेरे में है। इसके अलावा फायर एनओसी के लिए 15 मीटर ऊंची इमारत और 500 स्क्वायर मीटर से ज्यादा एरिया जरूरी माना जाता है। कॉम्प्लेक्स मालिक ने इसी नियम का फायदा उठाकर कमर्शियल कॉम्प्लेक्स बना दिया लेकिन फायर एनओसी के लिए कभी भी अप्लाई नहीं किया गया था। इस इमारत में आग लगी वो वीरेंद्र शुक्ला की इमारत बताई जा रही है और वीरेंद्र शुक्ला रामेश्वरम इंजीनियरिंग कॉलेज का एक मालिक है। एलडीए के दस्तावेजों में वीरेंद्र शुक्ला के दो अन्य भाइयों सुरेंद्र शुक्ला और धीरेंद्र शुक्ला का भी नाम दर्ज है। तो एलडीए की भूमिका पर सवाल इस बीच उठ रहे हैं। क्या कुछ एक्शन अभी तक इस पूरे मामले में लिया गया है, चलिए अब आपको वो समझा देते हैं। दरअसल इस पूरे मामले में कई लोगों पर कार्रवाई की गई है। 2 सदस्यीय एसआईटी टीम गठित की गई है। 7 दिन में रिपोर्ट सौंपने के निर्देश दिए गए हैं। ये जांच अभी तक इस पूरे मामले में कहां तक पहुंची वो आपको बता रहे हैं। एसआईटी टीम का गठन किया गया है और 7 दिन में रिपोर्ट सौंपने के निर्देश दिए गए हैं। इस पूरे हादसे में कई लोगों की मौत हो गई है, कई लोग घायल बताए जा रहे हैं। ऐसे में एआई और जेई सहित 4 अधिकारी इस बीच सस्पेंड कर दिए गए हैं और साथ ही बिल्डिंग मालिक सहित 4 आरोपी अभी तक गिरफ्तार कर लिए गए हैं। तो एक्शन में सरकार है क्योंकि खुद सीएम योगी आदित्यनाथ मौके पर पहुंचे जब ये पूरा हादसा हुआ और उन्होंने जायजा लिया इस पूरे हादसे का, परिवार वालों के प्रति संवेदना व्यक्त की और कहा है कि जल्द से जल्द आरोपियों को सजा दी जाएगी। आग लगने के कारण आपको बता दें कि सुरक्षा मानकों का पालन इस बीच नहीं किया गया, ये सबसे बड़ा कारण माना जा रहा है। भवन की वैधानिक स्वीकृतियां, एग्जिट गेट सही से नहीं बनाया गया, एक ही जगह से एंट्री और एग्जिट थी, संभावित लापरवाही सामने आ रही है और ऐसे में लगातार ये कहा जा रहा है कि जल्द से जल्द इन पर कार्रवाई की जाएगी। अभी फिलहाल गिरफ्तारी इस पूरे मामले में हो चुकी है, एसआईटी टीम का गठन कर दिया गया है और 7 दिन में रिपोर्ट भी मांगी गई है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं महाराष्ट्र की सियासत से जुड़ी एक खबर। महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे की मुश्किलें कम होती नजर नहीं आ रही। 6 सांसदों ने अभी शिंदे गुट में शामिल होने का ऐलान ही किया था कि सियासी गलियारे में नई बगावत की चर्चा तेज हो गई है। उद्धव की बैठक में विधायक शामिल नहीं हुए।

0: उद्धव ठाकरे ने मुंबई के शिवालय में पार्टी विधायकों और विधान परिषद सदस्यों की बैठक बुलाई थी। इस बैठक में विधानसभा सत्र के दौरान आगामी रणनीति, संगठन की मजबूती जैसे मुद्दों पर चर्चा होनी थी, लेकिन बैठक में 3 विधायक और 1 MLC नहीं पहुंचे। बैठक में जो चेहरे नजर नहीं आए उनमें यवतमाल से विधायक संजय देरकर, परभणी से विधायक राहुल पाटिल, कलीना मुंबई से विधायक संजय पौतनीस और MLC सुनील शिंदे शामिल हैं। हालांकि पार्टी सूत्रों के मुताबिक इन सभी नेताओं ने अपनी गैरहाजिरी को लेकर पहले से जानकारी दे दी थी, लेकिन संशय तब और बढ़ गया जब संजय राउत विधायकों को लेकर पूछे गए सवाल का जवाब दिए बिना ही निकल गए। ताज़ा हालात बता रहे हैं कि शिंदे का ऑपरेशन टाइगर अभी खत्म नहीं हुआ है।
1: अब देखना ये जरूरी है कि क्या इसके बाद फिर एक बार ये ऑपरेशन टाइगर कार्यरत रहेगा, क्योंकि बताया जा रहा है कि उद्धव ठाकरे के कुछ विधायक और उसके बाद मुंबई BMC के पार्षद भी एकनाथ शिंदे के पार्टी में जा सकते हैं। इस बारे में एकनाथ शिंदे को लगातार पूछा गया। एकनाथ शिंदे ने जवाब दिया है कि आगे आगे देखिए होता है क्या।
0: शिवसेना UPT के पास फिलहाल विधानसभा में 20 विधायक और 6 MLC हैं। करीब 1 घंटे चली बैठक के बाद मौजूद सभी विधायकों के साथ फोटो सेशन हुआ और उद्धव ठाकरे ने एकजुटता का संदेश देने की कोशिश की। ब्यूरो रिपोर्ट, आज तक।
2: अब बढ़ते आगे, सुपर 8 में वक्त हो गया है फटाफट खबरों का। दिल्ली के तकिया काले खां इलाके में झुग्गियों में भीषण आग लग गई। घटना के बाद मौके पर दमकल की कई गाड़ियां पहुंची और आग बुझाने का काम तेजी से जारी। उत्तराखंड के विकासनगर में टोल प्लाजा पर मारपीट का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। कहा सुनी के बाद कार सवार कुछ युवकों ने टोल कर्मी को जमकर पीटा। उत्तर प्रदेश के सीतापुर में समाजवादी पार्टी के कार्यालय पर प्रशासन ने बुलडोजर कार्रवाई की। टीएम कोर्ट के आदेश के बाद ध्वस्तीकरण किया गया। बिहार के मोतिहारी में एक बार फिर से भीषण सड़क हादसा हुआ। सामने 2 ट्रकों की आमने सामने की जोरदार टक्कर में एक व्यक्ति की मौके पर मौत। वलसाड में तेज रफ्तार ट्रक ने एक कार को मारी जोरदार टक्कर, कार दूसरी लेन में जा गिरी। हादसे में पूरी घटना CCTV में कैद। राजकोट में नल कनेक्शन काटने पहुंची नगर निगम टीम के दौरान हाई वोल्टेज ड्रामा। बुजुर्ग ने किया गड्ढे में लेट कर विरोध प्रदर्शन। गुजरात में बरस रही आसमानी आफत। अरावली में भारी बारिश से सड़कें तालाब में तब्दील। इस महीने जारी रहेगा बारिश का दौर। यूक्रेन ने रूस के एक सेमीकंडक्टर प्लांट को निशाना बनाया। दावा किया कि रूस के प्रमुख माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स फैक्ट्रियों में एक फैक्ट्री को ड्रोन हमले में उड़ाया। यहां वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, आप कहीं मत जाएगा, देखते रहिए आज तक।
3: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परो Chogan Perfumes, the French edition for him.
4: Hop on board and settle in for an easygoing cruise with sailing on TuneIn. Let the breeze roll in and the rhythm carry you along. Enjoy yacht rock classics from artists like Hall & Oates, oh, yeah, you make my dreams come. Steely Dan, oh, back, Jack, Loggins and Messina. Much more. Only smooth sailing ahead with songs that help you get away. Just search Sailing. Tell your device to play Sailing on TuneIn.
3: And her.

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल बोलो जुबान केसरी।
1: ओह नो, बहुत बोर लग रहा है।
2: Take a date, not bites.
3: No added sugar, preservative के बिना। Dates, बादाम, पिस्ता, काजू और शहद से तैयार किया गया Lion Dates Nut Bites.
2: Lion Date Nut Bites.
4: गोल्डी छोले मसाले जहाँ जाए रिश्ते बनाए।
5: गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश।
6: जब बात हो सोयाबीन के खेतों को खरपतवार से बचाने की, तो हर असली हीरो की पहली पसंद है क्रिस्टल क्रॉप का अमोरा। अमोरा तेज तरार वार, हारे अब खरपतवार। देश के हीरो की पहली पसंद।
7: 11 मई आज तक पर पेपर लीक कनेक्शन का पर्दाफाश।
8: नीट की परीक्षा से पहले एक गेस पेपर धड़ल्ले से मोबाइल पर बंटता है। 135 सवाल उसी गेस पेपर से हूबहू मिलते हैं।
9: 15 दिन पहले से पूरे देश में बट रहा था, एनटीए को पता नहीं।
7: 12 मई आज तक के खुलासे पर मुहर।
10: जिम्मेदारी लेते हैं कि जो हुआ गलत हुआ।
8: आज तक की खबर के बाद आज सरकार की तरफ से एक्शन हुआ, एनटीए जागी, पेपर रद्द हुआ। हमने आज तक पर लगातार दस्तक दी है, खबरदार किया है, हर दल की सरकार को जगाया है, बताया है कि पेपर लीक रोक लीजिए वरना बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ होता रहेगा।
7: जहां खबर वहां खबरदार।
11: इन एसोसिएशन विद E3 HDMR, ये रिश्ता लंबा चलेगा।
8: आज तक ला रहा है वीडियो वाला पेपर हर सुबह आपके मोबाइल में, वो भी आपके पुराने न्यूज़पेपर से पहले। पढ़ने के लिए अपने डिवाइस पर टाइप करें epaper.aajtak.in या स्क्रीन पर दिए गए QR कोड को अभी स्कैन करें।
12: वैभव इंडिया खेलेंगे ये सबको पता था, इतनी जल्दी खेलेंगे ये नहीं पता था।
13: हाँ सर, बहुत खुश हैं सर, और आपको भी प्रणाम करते हैं सर। वैभव के लिए आप जो बोलते हैं का स्पोर्ट्स तक की क्या पर्स पर।
12: जी,
13: हम पूरा सर आपका देखते रहते हैं, तो आपका भी सर आशीर्वाद वैभव को लगा और हम लोग बहुत खुश हैं सर। इसी के लिए इतना मेहनत बच्चा किया था सर।
14: जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए श्री संत का।
15: प्लीज बजी पर प्लीज डू ललन टॉक शो, इट्स अ रिक्वेस्ट एंड प्लीज टू स्पीक ट्रूथ।
16: अप्रैल 2026 में उन्होंने एक रिटेल कंपनी का ऐड किया।
15: ऐसे हरकतें आप करोगे आपकी बाइक के साथ? आई चैलेंज यू बजी पर, अगर आपको इतना प्रॉब्लम है तप्पड़ खांड से और आप इतना कमा रहे हो, हमें भी तो कमाने दो। आओ ना रिंग में, वेट कम।
17: समाजवादी पार्टी रामनवमी पर तो विरोध करती थी, श्री कृष्ण जन्माष्टमी के मनाने पर भी रोक लगाती थी, कावड़ यात्रा भी नहीं होने देती थी, गरीब को राशन नहीं मिलता था, गरीब को आयुष्मान की सुविधा का लाभ नहीं मिलता था, गरीब के लिए आवास की सुविधा नहीं थी, गरीब के घर में शौचालय की सुविधा भी नहीं थी, गरीब को एलपीजी के सिलेंडर की सुविधा भी नहीं थी, तब बिजली भी नहीं थी, क्योंकि ये कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के लोग और बहुजन समाज पार्टी के लोग तो अंधेरे में रहकर रहने के आदि थे, क्योंकि अंधेरे में ही इनकी डकैती कुशलता पूर्वक पड़ जाती थी, इसीलिए चाहते ही नहीं थे कि बिजली आए। गरीब को तबाह करते थे। आज मैं कह सकता हूं प्रदेश के अंदर 15 करोड़ गरीबों को फ्री में राशन की सुविधा का लाभ मिल रहा है, 10 करोड़ लोगों को आयुष्मान भारत में 5 लाख रुपए की मुफ्त में स्वास्थ्य की सुविधा प्राप्त हो रही है।
18: The question my party is asking now is whether I am best placed to lead us into the next general election. I have heard the answer of my parliamentary party to that question, and I accept that answer with good grace. Every decision I've taken has been about putting the country I love first. That is why I will resign as leader of the Labour Party. I have spoken to His Majesty the King this morning to inform him of my decision. I will ask the National Executive Committee of the Labour Party to set out a timetable with nominations opening on the 9th of July and completed by the summer recess.
19: क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।
20: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा।
21: Chogan Perfumes, the French edition for him and her.
22: लखनऊ के अलीगंज इलाके में कोचिंग गेमिंग सेंटर में लगी भीषण आग, 15 युवाओं की गई जान, 9 घायल। लखनऊ आग हादसे में जान बचाने के लिए पहली मंजिल से कूदे बच्चे, एक लोहे के ग्रिल पर गिरा। लखनऊ आग हादसे में आग से बचने के लिए बाथरूम में छुपे थे बच्चे, दम घुटने की वजह से गई जान, सीएम योगी ने 4 अधिकारी किए सस्पेंड। सीएम योगी ने घटनास्थल और अस्पताल में लिया जायजा, मुख्यमंत्री आवास पर की हाई लेवल मीटिंग, मृतकों के परिजनों के लिए 5-5 लाख के मुआवजे का ऐलान। लखनऊ आग हादसे पर मुख्यमंत्री योगी का सख्त एक्शन, जांच के लिए 2 सदस्यीय एसआईटी टीम गठित की गई, 7 दिन में रिपोर्ट देने के निर्देश, दोषियों पर होगी सख्त कार्रवाई। लखनऊ अग्निकांड पर सीएम योगी ने जताया दुख, मुख्यमंत्री ने अलीगढ़ आगरा दौरा समेत सभी कार्यक्रम रद्द किए। मुख्यमंत्री योगी ने घायलों के तत्काल उपचार के दिए निर्देश, पीड़ित परिवारों को हर संभव मदद का दिया भरोसा। लखनऊ अग्निकांड में लखनऊ विकास प्राधिकरण यानी एलडीए के कथित लापरवाही उजागर, आवासीय नक्शे पर बना कमर्शियल कॉम्प्लेक्स, अफसरों पर होगी कड़ी कार्रवाई। लखनऊ अग्निकांड में मृतक आदित्य की मां ने रेस्क्यू और इलाज में देरी का लगाया आरोप, कहा समय पर कार्रवाई होती तो कई जानें बच सकती थी। यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने घटनास्थल का दौरा कर स्थिति का जायजा लिया, कहा लखनऊ अग्निकांड की उच्च स्तरीय जांच के दिए गए आदेश। लखनऊ आग हादसे पर पीएम मोदी ने जताई संवेदना, प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख रुपए और घायलों को 50,000 रुपए की आर्थिक मदद का ऐलान। लखनऊ अग्निकांड पर उपराष्ट्रपति ने जताया दुख, मृतकों के परिजनों के प्रति संवेदना और घायलों के जल्द स्वस्थ होने की कामना की। राजनाथ सिंह ने भी लखनऊ आग हादसे पर दुख जताया, बोले पीड़ित परिवारों के साथ मेरी संवेदनाएं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह लखनऊ पहुंचे, अलीगंज अग्निकांड घटनास्थल का जायजा लेने के बाद अस्पताल में घायलों से की मुलाकात। लखनऊ अग्निकांड हादसे पर उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने जताया दुख। लखनऊ कोचिंग सेंटर अग्निकांड पर नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने भी शोक व्यक्त किया। राहुल गांधी ने मृतकों के परिवारों के प्रति जताई संवेदना।

यूपी के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने भी घटना पर शोक व्यक्त किया, कहा अलीगंज की यह दुर्घटना बहुत ही पीड़ादायक है। बीएसपी प्रमुख मायावती ने लखनऊ आग हादसे पर संवेदना व्यक्त करते हुए कहा कि यह दिल दहला देने वाली घटना है, भविष्य में ऐसी घटनाओं की रोकथाम के लिए ठोस कदम उठाने की अपील। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने लखनऊ में कई छात्रों की मौत पर गहरा शोक जताया और घायलों के स्वस्थ होने की कामना की। अखिलेश यादव ने लखनऊ आग हादसे के मृतकों को दी श्रद्धांजलि, बोले अग्निकांड के पीछे कारणों की ईमानदारी से जांच। इनोवेटिव व्यू पहले से कई राज्यों में ब्लैकलिस्टेड होने के बावजूद उसे बायोमेट्रिक का काम मिलना, ये पूरे सिस्टम की गंभीर लापरवाही या मिलीभगत का और इशारा। पीएमसीएच का थर्ड ईयर एमबीबीएस छात्र अश्विनी कुमार खुद बायोमेट्रिक स्टाफ बनकर सेंटर में घुसा और अंदर से संभाल रहा था पूरी सेटिंग, गैंग में पढ़े लिखे लोग भी शामिल। एक अभ्यर्थी को पास कराने के लिए 60 लाख तक की डील और देश के बड़े मेडिकल कॉलेज के छात्र स्कॉलर के रूप में शामिल। डमी बायोमेट्रिक में इसके बाद अंगूठे के निशान बिगाड़ना, फर्जी सिम नकली नाम से एंट्री, गैंग ने पकड़े जाने से बचने के लिए टेक्निकल और प्लैंड तरीके। यूपी के फिरोजाबाद अलीगढ़ को सीएम योगी ने दी विकास की सौगात, 1100 करोड़ से अधिक परियोजना का लोकार्पण और शिलान्यास किया। राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले की जांच की मांग, सुप्रीम कोर्ट पहुंची एफआईआर और सीबीआई एसआईटी जांच की याचिका दाखिल। राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले को लेकर यूपी कांग्रेस का कल पूरे राज्य में विरोध प्रदर्शन का ऐलान, निष्पक्ष जांच और एफआईआर की मांग। यूपी के सीतापुर में समाजवादी पार्टी कार्यालय पर बुलडोजर कार्रवाई, नजूल भूमि पर अवैध कब्जे के आरोप में प्रशासन ने भवन को ध्वस्त किया। हरिद्वार में उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी हरि सेवा आश्रम में आयोजित संत सम्मेलन में हुए शामिल। नगरासू गुरुद्वारा विवाद में दो निहंग सिख छत से उतरे, बाकी से प्रशासन पुलिस की वार्ता जारी। प्रशासन का दावा है हेमकुंड साहिब और चारधाम यात्रा पूरी तरह से सुचारू, गुरुद्वारे में लंगर आवागमन सामान्य। प्रशासन ने दी अफवाहों पर सख्त चेतावनी, न कब्जा न बंधक की घटना, मौके पर पुलिस प्रशासन की कड़ी निगरानी। पूर्व अग्निवीरों के लिए गुजरात सरकार का बड़ा फैसला, सरकारी विभागों में क्लास थर्ड पदों की सीधी भर्ती में 20% आरक्षण दिया जाएगा। भारतीय नौसेना के जहाज आईएनएस उदयगिरी और आईएनएस कवरत्ती वियतनाम के कोची मिन सिटी पहुंचे, जहां पर समुद्री सहयोग को और मजबूत करना इसका मकसद। समंदर में बढ़ेगी नौसेना की शक्ति, अगले महीने आईएनएस महेंद्रगिरी और आईएनएस मालवान नेवी में होंगे शामिल, निगरानी और युद्ध क्षमता में होगा इजाफा। एशियन रिले चैंपियनशिप में भारतीय महिला टीम ने जीता गोल्ड, 100 मीटर रिले में चीन को हराया, भारत ने कुल 3 पदक जीते। क्रिकेटर आकाशदीप का धूमधाम से हुआ तिलक, भोजपुरी गाने पर जमकर थिरके गेंदबाज, 24 जून को वाराणसी में होगी शादी। दिल्ली में अब खराब स्ट्रीट लाइट पर प्रति घंटा लगेगा जुर्माना, कंट्रोल रूम से होगी लाइव निगरानी, डिजिटल कंट्रोल रूम में मिलेगी ऑटोमेटिक अलर्ट सूचना। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किया कुनो नेशनल पार्क का दीदार, 1-to-1 बात कर चीता मित्रों के जज्बे को सराहा, भारत में जन्मे चीतों की संख्या हुई 32। जूनागढ़ के गिर सासन में जंगल के राजा एशियाई शेरों का वेकेशन शुरू हुआ, आज से 15 अक्टूबर तक गिर सफारी पर्यटकों के लिए रहेगा बंद, आखिरी दिन बड़ी संख्या में जुटे सैलानी। पटना में 8वीं तक के स्कूल 27 जून तक बंद, भीषण गर्मी के चलते एडीएम कुंदन कुमार ने जारी किया आदेश। मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट, आज यूपी दिल्ली बिहार समेत 15 राज्यों में बारिश और तूफान की चेतावनी। देशभर में मॉनसून पकड़ रहा रफ्तार, जुलाई के पहले हफ्ते तक दिल्ली पहुंचने के आसार। अगले 48 घंटों के दौरान दक्षिण पश्चिम मॉनसून के महाराष्ट्र, तेलंगाना, ओडिशा, छत्तीसगढ़, झारखंड और बिहार के कई हिस्सों में आगे बढ़ने का अनुमान। हफ्तों के इंतजार के बाद मुंबई पहुंचा प्री मॉनसून, कई इलाकों में हुई सीजन की पहली बारिश। मुंबई के बांद्रा में भी मूसलाधार बारिश, भारी बारिश से कई इलाकों में जलभराव, आवाजाही प्रभावित। महाराष्ट्र के पुणे में भी कई इलाकों में झमाझम बारिश हुई, कई जगहों पर भरा पानी। गुजरात के अमरेली में पिछले 3 दिनों से कई गांव में तेज हवा के साथ हो रही है बारिश, बुवाई का इंतजार कर रहे किसानों के खिले चेहरे। गुजरात के वलसाड में पहली बारिश में डूबा मोगरावाड़ी अंडरपास, प्री मॉनसून तैयारियों की खुली पोल, घुटनों तक भरे पानी की वजह से उसी पानी से होकर गुजर रहे हैं लोग। पहली बारिश में सूरत नगर निगम की खुली पोल, अंडरपास में जलभराव और धसी सड़कों से कई घायल, सीसीटीवी में कैद हुए हादसे। मौसम विभाग के मुताबिक कल नीनो की वजह से गुजरात में अब तक मॉनसून की शुरुआत नहीं हुई, अभी 3 से 5 दिनों तक करना होगा इंतजार। मौसम विभाग के अनुसार उत्तर गुजरात से सौराष्ट्र होते हुए पश्चिम मध्य अरब सागर तक कम दबाव का इलाका बना हुआ है, इसी के चलते कई शहरों में हो रही है बारिश। अहमदाबाद के रखियाल में बेकाबू कार का कहर, 5 वाहनों को मारी टक्कर, महिला की मौत, 6 घायल। रखियाल में सड़क पर मचा कोहराम, बेकाबू कार ने कई वाहनों को टक्कर मारने के बाद फूड लॉरी में मारी टक्कर।
ड्राइवर को दौरा पड़ने के कारण बेकाबू कार हुई। सीसीटीवी में कैद हुई खौफनाक हादसे की तस्वीर। देवबंद की एक शादी में डीजे पर चढ़कर तमंचो से हर्ष फायरिंग, वायरल वीडियो के बाद तीन आरोपी गिरफ्तार। हथियारों का खुला प्रदर्शन, पड़ा भारी अवैध तमंचे और कार समेत तीन युवक गिरफ्तार। वाराणसी में पिस्टल लहराकर रील बनाने वाला युवक गिरफ्तार, हथियार निकला टॉयगन। संभल में डॉग मैरी की सूझबूझ से ब्लाइंड रेप केस का खुलासा हुआ, आरोपी गिरफ्तार। जयपुर में मॉर्निंग वॉक के दौरान चेन स्नैचिंग, सीसीटीवी के पास कैद हुई वारदात, पास मौजूद पुलिसकर्मी देखता रह गया। मेरठ में युवक की ईंट से कुचलकर हत्या कर दी गई, खून से लथपथ शव मिलने की वजह से सनसनी, आरोपी गिरफ्तार। हरदोई में ब्रिज निर्माण के दौरान बड़ा हादसा, निर्माणाधीन पुल का 50 मीटर हिस्सा ढहा, मलबे में दबने की वजह से 3 मजदूर घायल। देहरादून के विकास नगर में फास्टैग कटने की वजह से भड़के कार सवार, धर्मवाला टोल प्लाजा कर्मी को बेरहमी से पीटा गया। ग्रेटर नोएडा में नशे में धुत युवती का हाई वोल्टेज ड्रामा, हाथ में सिगरेट और बगल में शराब की बोतल रखकर सड़क पर लेटी महिला। गाजियाबाद में 19 यात्रियों से भरी रोडवेज बस पलटी, ऋषिकेश से आई एसबीटी दिल्ली जा रही थी बस, ट्रक को बचाने में हुआ हादसा। हैदराबाद के आसिफ नगर में हिट एंड रन का मामला, किराए की एसयूवी चला रहा नाबालिग महिला को टक्कर मारकर फरार, इलाज के दौरान मौत। एमपी के छिंदवाड़ा में ट्रक और मजदूरों के बीच भारी पिकअप की वजह से टक्कर हुई, 5 की मौत, 20 घायल। जयपुर में मॉर्निंग वॉक पर निकली महिला से लूट, गले पर झपट्टा मारकर सोने की चेन तोड़कर बाइक सवार बदमाश फरार। सीकर के रिंग्स में आवारा कुत्तों ने बच्चे पर किया हमला, बचाने के लिए 2 लोगों को भी काटा, 2 बच्चों समेत 10 लोग घायल। जालंधर में होम्योपैथिक क्लिनिक पर नकाबपोश बदमाशों ने ताबड़तोड़ गोलियां चलाई, टूटा शीशा। यूपी के कौशाम्बी में भीषण सड़क हादसा, एम्बुलेंस और कार की टक्कर की वजह से मां बेटे की मौत हुई, पिता और मासूम बेटी की हालत गंभीर। ओडिशा के संबलपुर में चोरी के शक में प्रवासी मजदूर की बेरहमी से पिटाई कर दी गई, पुलिस ने भीड़ से बचाकर 5 से अधिक लोगों को किया गिरफ्तार। पश्चिम बंगाल के कूचबिहार में तेज रफ्तार बाइक हादसे में 18 साल के एक युवक की मौत, नियंत्रण खोने की वजह से बड़ी दुर्घटना। पंजाब के फाजिलका में आंधी तूफान का कहर, पेड़ गिरने से युवक की मौत, पूरी घटना सीसीटीवी में कैद। यूपी के सोनभद्र में अंतर्राज्यीय गांजा तस्करी का भंडाफोड़, 80 लाख से अधिक कीमत का गांजा बरामद, 6 तस्कर गिरफ्तार। इंदौर सोशल मीडिया पर युवतियों को बदनाम करने वाला साइबर अपराधी गिरफ्तार, पुलिस ने देवास से आरोपी को दबोचा। तो वहीं महाराष्ट्र के बीड में 2 वाहनों की भीषण टक्कर, हादसे में चालक की मौत, एक गंभीर रूप से घायल। सूरत नगर निगम की कथित प्रताड़ना से परेशान बुजुर्ग दंपति ने मांगी इच्छा मृत्यु, कलेक्टर को सौंपी अर्जी। सूरत में पुलिस थाने के बाहर बजरंग सेना का प्रदर्शन, शराब और गांजे की बिक्री बंद करने की मांग। अहमदाबाद क्राइम ब्रांच की बड़ी कामयाबी, 7 साल से फरार कुख्यात शूटर मोहम्मद तस्लीम को राजस्थान से किया गिरफ्तार। राजकोट में जर्जर आवास खाली कराने के विरोध में बुजुर्ग का अनोखा प्रदर्शन, खड्डे में लेटकर जताया विरोध, मेयर ने कार्रवाई रोकने के दिए आदेश।

नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं भाग्य चक्र और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। आज बात करेंगे 12 राशियों के दैनिक राशिफल की। ये जानेंगे कि आज का दिन कैसा जाने की संभावना बनती है और आज के दिन को बेहतर बनाने के उपाय क्या हैं। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जानते हैं पंचांग। दिनांक 23 जून 2026 दिन मंगलवार, तिथि है ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि, शाम के 4:39 तक। नक्षत्र है हस्त नक्षत्र, सुबह के 11:54 तक। चंद्रमा कन्या राशि में संचरण कर रहे हैं। राहु काल का समय शाम के 3:04 तक। उत्तर दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है तो जरा सा गुड़ खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। मेष राशि, स्वास्थ्य में सुधार होगा, रुके हुए काम पूरे होंगे, धन लाभ के योग बन रहे हैं। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा हरा। वृषभ राशि, यात्रा के योग बन रहे हैं, संपत्ति लाभ के योग हैं, खान पान में सावधानी रखें, अनाज का दान कर दें तो दिन और भी बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा सफेद। मिथुन राशि, स्वास्थ्य का ध्यान रखें, जल्दबाजी में निर्णय ना लें, परिवार में विवादों से बचाव करें, गुड़ का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा लाल। कर्क राशि, धन का लाभ होगा, कोई शुभ सूचना प्राप्त होगी, करियर की बाधा दूर होगी। हनुमान चालीसा का एक बार पाठ कर लें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा हरा। सिंह राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं, चिंताएं समाप्त होंगी, जल्दबाजी में निर्णय ना लें, अनाज का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं
वो शुभ रंग आज के लिए होगा क्रीम। कन्या राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं, करियर में सफलता मिलेगी, रुके हुए काम पूरे होंगे। हनुमान चालीसा का पाठ कर लें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा नारंग।

चिंता रह सकती है, धन की हानि हो सकती है, वाणी पर नियंत्रण बनाए रखें। गुड़ का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा पीला। वृश्चिक राशि, परिवार में मंगल कार्य होंगे, धन लाभ के योग बन रहे हैं, करियर में सुधार होगा। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा आसमानी। धनु राशि, काम के दबाव से राहत मिलेगी, धन लाभ के योग बन रहे हैं, करियर में नए अवसर मिल सकते हैं। अनाज का अगर दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा नीला। मकर राशि, करियर में सफलता मिलेगी, धन की स्थिति ठीक रहेगी, परिवार में शांति रखें। हनुमान चालीसा का अगर पाठ कर लें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा पीला।

रखें, दूसरों के विवाद में ना पड़ें, लिखा पढ़ी में सावधानी रखें। गुड़ का अगर दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा

की बाधा दूर होगी। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा गुलाबी। तो भाग्य चक्र में आज के लिए बस इतना ही। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, इसी कामना के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आज तक। नमस्कार।

प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच ड्यूरेबल पाइप्स फिटिंग्स एंड टैंक्स अ कंप्लीट रेंज ऑफ सैनिटरी सॉल्यूशंस चोगन परफ्यूम्स द फ्रेंच एडिशन फॉर हिम एंड हर

0: हर पल बनाओ केसरी त्योहार।
1: विमल बोलो जुबान केसरी।
2: गोल्डी छोले मसाले जहाँ जाए रिश्ते बनाए।
3: गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश।
4: मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री का ये मुस्कुराता चेहरा भले महाराष्ट्र की राजनीति में तोड़फोड़ वाले ऑपरेशन की कामयाबी का हो, मगर सोमवार का दिन उद्धव की पार्टी के लिए भी बड़ा दिन था, क्योंकि एक तरफ दिल्ली से लौटे 6 सांसद पार्टी का दामन छोड़ शिंदे वाली शिवसेना का दामन पकड़ते हैं, तो बची खुची पार्टी और बचे हुए विधायक लेकर उद्धव शिवालय में बैठके करते हैं। और सुबह के सक्सेसफुल ऑपरेशन वाले बयान पर उद्धव की पार्टी के नेता अपने गुस्से का इजहार करते हैं। जिनकी पार्टी टूटी वो कोस रहे हैं, जो टूट रहे हैं वो बहाने बताते हैं, लेकिन उद्धव का साथ छोड़कर जाने वाले सांसदों ने पार्टी क्यों छोड़ी इसके पीछे दोनों ओर से दावे पर दावे। उद्धव के नेता कहते कि सांसद पैसे से खरीदे गए, टूट चुके सांसद कहते हैं कि अपमान अनदेखी हुई। उद्धव के नेता कहते हैं कि सांसद ईडी और सीबीआई से डरे और डराए गए। टूट चुके सांसद कहते हैं कि विकास के लिए सरकार के साथ। उद्धव के नेता कहते हैं कि बेवफा गद्दार बीजेपी के गुलाम बन गए। टूट चुके सांसद कहते हैं इधर रहकर सरकारी फंड तक नहीं मिलता था। बागी सांसदों की फंड न मिलने वाली दलील तो उद्धव की पार्टी भी मान रही है और आदित्य ठाकरे ही भी। फंड की कमी और भेदभाव वाली शिकायत इससे पहले कई नेताओं ने की। बागी सांसद संजय जाधव ने पहले कहा था कि सांसद निधि के 5 करोड़ विकास के लिए कम पड़ रहे हैं, महायुति सरकार से फंड नहीं मिल रहा था। कांग्रेस से लेकर शरद पवार तक की पार्टी शिकायत करती है कि विपक्षी दलों को फंड में भेदभाव हो रहा है। विजय वृत्तिवार ने तो कहा है कि सत्ताधारी दल के नेताओं को जिला योजना और विकास परिषद के 200-250 करोड़ तक के फंड मिलते हैं। सुप्रिया सुले कह चुकी है कि गांव और आदिवासी विकास फंड भी सत्ताधारी दलों के प्रतिनिधियों को दिए जा रहे हैं। अंबादास दानवे कह चुके हैं कि नीतीश राणे ने खुलेआम नो फंड फॉर एमवीए का बयान तक दिया था। आरोप ये भी थे कि सत्ताधारी दल के नगर सेवकों को भी 2-2 करोड़ मिले, वहीं विपक्षी पार्षदों को केवल 25 लाख देकर छोड़ दिया गया। तो सवाल है कि क्या उद्धव या शरद पवार की पार्टी छोड़कर जाने वाले इन नेताओं की ये दलील मान लेनी चाहिए कि देश और अपने चुनाव क्षेत्र के विकास के लिए, जनता के कल्याण के लिए ये फंड की जरूरत की खातिर अपनी पार्टी, नेता, वफादारी और विचारधारा छोड़कर एनडीए में शामिल होने जा रहे हैं। मुंबई से ऋतिक भालेकर के साथ आज तक ब्यूरो।
5: लेबनान पर इसराइल के हमले लगातार जारी हैं। बेका घाटी में हुए भीषण हवाई हमले में 20 लोगों की मौत हो गई। इस बीच इसराइल ने एक वीडियो जारी कर दक्षिणी लेबनान में मजदल जॉन गांव के नीचे आतंकी सुरंग मिलने का दावा किया है। ये सुरंग इसराइली सीमा से कुछ ही किलोमीटर की दूरी पर मिली है। सुरंग में बड़ी संख्या में हथियार और इसराइल की ओर निशाना साधे

0: 4 लॉन्च शॉफ्ट भी बरामद हुए हैं। ये सुरंग 200 मीटर से ज्यादा लंबी और 25 मीटर से ज्यादा गहरी है। इस ऑपरेशन के दौरान इजरायली सेना ने हिजबुल्लाह के 20 से ज्यादा आतंकियों को मार गिराने का दावा किया है।
1: ואני מתחייב בפניכם, אזרחי ישראל, מדינת ישראל לא תהיה אפיזודה חולפת בתולדות עמנו. אנחנו עומדים איתן על האינטרסים החיוניים שלנו. השגנו הישגים כבירים ולא נוותר עליהם.
0: उधर हिजबुल्ला ने इसराइल को खुली चुनौती देते हुए कहा है कि वो इसराइल के हर हमले का मुंह तोड़ जवाब देने के लिए तैयार है।
2: इसराइल लन तबका फी लुबनान हत्ता लौ ज़ादत इजरामा ونحن سندافع اي وقفه لاطلاق النار।
0: ईरान अमेरिका में शांति वार्ता की कोशिशों के बीच इसराइल का यह आक्रामक रुख पूरे मध्य पूर्व को एक ऐसे चौराहे पर ले आया है जहां से शांति और युद्ध दोनों की राहें निकलती हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, आज तक।

क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com

प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच ड्यूरेबल पाइप्स फिटिंग्स एंड टैंक्स अ कंप्लीट रेंज ऑफ सैनिटरी सॉल्यूशंस।

लखनऊ अग्निकांड में 15 लोगों की मौत के बाद एक्शन, हादसे की जांच के लिए SIT गठित, 7 दिन में आएगी रिपोर्ट, बिल्डिंग मालिक समेत 4 गिरफ्तार, AE और JE समेत 4 अधिकारी सस्पेंड। भरत तिवारी एनकाउंटर को लेकर बिहार में सियासत तेज, पटना हाईकोर्ट में PIL दायर कर निष्पक्ष जांच की मांग, बिहार राज्य मानवाधिकार आयोग ने लिया संज्ञान, 13 जुलाई तक रिपोर्ट तलब। सांसदों की बगावत के बाद उद्धव को लग सकता है एक और झटका, बैठक में शामिल नहीं हुए 3 विधायक और 1 MLC, 6 सांसद पहले शिंदे शिवसेना में हो चुके हैं शामिल। फिराद हाकिम समेत TMC के 8 नेताओं को कारण बताओ नोटिस, बीजेपी खेमे में शामिल होने और पार्टी विरोधी गतिविधियों का आरोप, बागी विधायकों ने खुद को बताया असली TMC, ममता को अध्यक्ष पद से हटाया। देश के पश्चिमी इलाकों में मॉनसून देने वाला दस्तक, अगले 24 घंटों में बारिश से तरबतर होंगे गुजरात और महाराष्ट्र, झमाझम बरसात में भीगी मुंबई।

नमस्कार, स्वागत है आपका। घड़ी में 9 बज गए हैं, वक्त हो गया है आपके फेवरेट मॉर्निंग प्राइम टाइम शो 9 बज गए का। आपके साथ हूं मैं नेहा बाथम। सुबह का सबसे पहला संपूर्ण न्यूज बुलेटिन लेकर एक बार फिर से हम हाजिर हैं। बात करेंगे प्रमुख तौर पर लखनऊ अग्निकांड की, जिसमें 15 जिंदगियां जलकर राख हो गई। आखिर इन मौत का जिम्मेदार कौन है, गुनहगार कौन है, यह अग्निकांड है या हत्याकांड, तमाम पहलुओं पर हम करेंगे पड़ताल। खबरों का सिलसिला शुरू करें उससे पहले एक नजर खबरों की झलकियों पर। का सैलाब है लखनऊ के अलीगंज इलाके में, आखिर कब तक लापरवाही की आग में जाती रहेंगी जान। जिस बिल्डिंग में लगी आग, उस बिल्डिंग के अंदर से एक्सक्लूसिव ग्राउंड रिपोर्ट आपको दिखाएंगे। रेस्क्यू ऑपरेशन की हैरत अंगेज तस्वीर, जब दीवार तोड़कर बचाई गई जान। और ठीक आधे घंटे बाद यानी कि सुबह 9:30 बजे 100 शहर 100 खबर, लेकिन बुलेटिन की शुरुआत करें लखनऊ अग्निकांड की खबर के साथ।

0: तो दुनिया उजड़ गई।
1: सात दस दिन के बाद सब भूल जाते हैं।
2: तो 15 लोगों की जान लेने वाले लखनऊ अग्निकांड पर अब जवाबदेही तय करने का वक्त आ गया है। लगातार एक्शन जारी है। इस सिलसिले में बिल्डिंग के मालिक समेत 4 की गिरफ्तारी हुई है। इसके अलावा 4 अफसरों को सस्पेंड किया गया है। सीएम योगी के निर्देश पर 2 सदस्यों की एसआईटी बनाई गई है। एलडीए ने 5 सदस्यीय जांच कमेटी बनाई है।

0: तो अग्निकांड के तमाम पहलुओं पर हम बात करेंगे, लेकिन इससे पहले आपको दिखाते हैं लखनऊ के अलीगंज की उस बिल्डिंग के भीतर से एक्सक्लूसिव रिपोर्ट, जहां आग से 15 लोग की जान चली गई।
1: देखिए, बिल्कुल मैं इस समय पर उस कॉम्प्लेक्स के अंदर मौजूद हूं। आप देखिए किस तरीके का ये एंट्री एग्जिट पॉइंट था, और ये बहुत छोटा सा पहली बिल्डिंग है जो पेट शॉप जिसको कहा गया, इसी पेट शॉप में सामान रखा था। और यहां से ऊपर के फ्लोर पर जो स्टूडियो था, जो कोचिंग सेंटर था, जहां पर लोग फंसे थे, और उसके बाद ये अंदर का ये पूरा नजारा है। आपको तस्वीरों के जरिए दिखाते हैं कि पूरा सब कुछ तहस नहस हो गया, और तहस नहस होने के बाद ये पूरा 15 लोगों की जान चली गई। उत्तर प्रदेश सरकार ने इस मामले में SIT गठित की है, और ये छोटा सा रास्ता है, ये इस रास्ते से, यही एक एंट्री और एग्जिट पॉइंट था। इसी एंट्री एग्जिट पॉइंट से सिर्फ ये एक पूरा सा, एक छोटा सा, एक बॉक्स नुमा ये बिल्डिंग है। इस बॉक्स नुमा बिल्डिंग के अंदर ही लोग सिर्फ इसी से, जो बच्चे थे, जो लोग थे, वो इसी छोटे से रास्ते से, और कोई रास्ता था ही नहीं। ये उस बेसमेंट की तस्वीरें हैं, उस कॉम्प्लेक्स के बेसमेंट की तस्वीरें हैं जहां पर ये आग लगी। मतलब आप सोचिए कि तीन फ्लोर का बेसमेंट, तीन फ्लोर की पूरी बिल्डिंग और बेसमेंट अलग, चार फ्लोर का एक तरीके से कंस्ट्रक्शन था, और ये बॉक्स नुमा था। एंट्री और एग्जिट के लिए कोई व्यवस्था नहीं, तरीके से ये बॉक्स नुमा, ये डिब्बा नुमा, ये पूरे बिल्डिंग बनाई गई। आप सोचिए कि जो लोग आए थे, जो लोग फंसे थे, वो क्यों उनकी जान चली गई। फायर ब्रिगेड मौके पर पहुंची, फायर ब्रिगेड चाहकर भी कुछ नहीं कर पाई, क्योंकि उनको निकालने के लिए, जो लोग फंसे हुए थे पीछे की तरफ, उनको निकालने के लिए कोई जगह नहीं थी। और ये जो एंट्री एग्जिट पॉइंट है, इसी से लोग निकलने के लिए और बाहर आने के लिए रास्ता था। और अब ये एंट्री एग्जिट पॉइंट देख रहा हूँ, और ये देखिए, ये जो AC पैनल लगे हैं, मतलब एंट्री एग्जिट पॉइंट भी कोई फ्री नहीं था कि कोई फ्रीली आ सके जा सके। यहाँ पर भी AC के पैनल का पूरा जाल लगा हुआ है। तो आप समझिए कि किस तरीके के हालात, और किस तरीके से मानकों को, सुरक्षा मानकों की अनदेखी करने के बाद ये पूरा कॉम्प्लेक्स तैयार किया गया, और उस कॉम्प्लेक्स को तैयार करने के बाद यहाँ कमर्शियल एक्टिविटी हो रही थी।
0: और घटनास्थल से इस वक्त मेरे सहयोगी संतोष जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ, समझ जुड़ गए हैं पीड़ित के घर से। सबसे पहले संतोष, आपका रुख करते हैं, क्योंकि आपने पूरे घटनास्थल का जायजा लिया। तमाम लैप्सेस हैं, एक नहीं, अगर गिनाए जाएं तो कमियां ही कमियां हैं, लेकिन सबक लेने की बारी है, और सबक हर बार उसमें चूक हो जाती है, तभी ये हादसे रिपीट होते हैं। और जिस तरीके से आपने दिखाया, एक ही एग्जिट पॉइंट, वहां पर तमाम तरीके के अवरोध थे, जिसकी वजह से ये बच्चे अंदर फंस गए, और ज्यादातर की दम घुटने से मौत हुई है।
2: हो रही है FIR हो रही है, लेकिन ये एक हादसा हुआ एक कॉम्प्लेक्स में, ऐसा नहीं है कि ये अकेला था लखनऊ में। आप इसी जगह पर, इसी कॉम्प्लेक्स के बगल में आप देखिए तस्वीरें, वो कॉम्प्लेक्स है, आग लगी हुई है, पूरा रेजिडेंशियल है, उसके ठीक बगल में एंट्रेंस कंप्यूटर है, ये भी कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्स है। रेजिडेंशियल इलाके में ये कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्स मुंह बाय खड़े हैं, यमराज बन के खड़े हैं। छोटा सा हादसा, लोगों की जान लेने के लिए आतुर है, सुरक्षा के कोई इंतजाम नहीं है। जिस कॉम्प्लेक्स में आग लगी, वहां छोटा सा रास्ता एंट्री एग्जिट पॉइंट है, बॉक्स नुमा ये पूरा स्ट्रक्चर, अंदर बाहर जाने के लिए जो रास्ता है वो भी एक तरीके से सकरा है, क्योंकि AC पैनल, आठ आठ AC पैनल, दो एग्जॉस्ट, एक इलेक्ट्रिक पैनल, ये सब लगे हुए हैं। और यही वजह थी कि इसमें जब आग लगी तो 15 लोग सब दम घुटने से मर गए। जल करके मौत कम लोगों की हुई है, किसी की नहीं हुई है, दम घुटने से ज्यादातर लोगों की मौत हो गई। अगर यहाँ से इमरजेंसी गेट का एग्जिट कोई एक ऐसा गेट होता तो शायद वो जिंदा होते। और ये पूरे एक इलाके का है जहाँ घटना हुई है,
1: और ये पूरे एक इलाके का है जहाँ घटना हुई है। ऐसे लखनऊ में हजारों ऐसे कॉम्प्लेक्स होंगे जहाँ पर लखनऊ विकास प्राधिकरण ने नक्शा पास किए रेजिडेंशियल के, और यहाँ कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्स खड़े कर दिए गए। तो ये जिम्मेदारी LDA की, ये जिम्मेदारी जिला प्रशासन की, ये जिम्मेदारी नगर निगम की बनती है, फायर विभाग की बनती है, जो कि ऐसे कॉम्प्लेक्स खड़े हैं तो वहां पर सिक्योरिटी के क्या अरेंजमेंट्स हैं, ये नक्शा कैसे पास हो गया। रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स है, रेजिडेंशियल में कॉमर्शियल एक्टिविटी हो रही है, LDA को क्यों भनक नहीं लग पाई। और अब जब हादसा हुआ, 15 लोगों की जाने चली गई है, मुख्यमंत्री मौके पर आए, देश के रक्षा मंत्री लखनऊ से सांसद राजनाथ सिंह आए, तो कार्रवाई का दौर शुरू हुआ, FIR हुई, 6 लोगों में से 4 लोग गिरफ्तार कर लिए गए, दो अधिकारियों की एसआईटी बनाई गई, 7 दिन में एसआईटी अपनी रिपोर्ट देगी। लेकिन सवाल इस बात का है कि क्या इस एसआईटी के जरिए जो लखनऊ में हजारों पूरे उत्तर प्रदेश में जो ऐसे कॉम्प्लेक्स बने हैं नियमों कायदों को धज्जियां उड़ा करके जो रिहायशी इलाकों में जहां पे परिवार रहते हैं, ये देखिए ये पूरे परिवार रहते हैं यहां पर, ये कॉलोनी है और कॉलोनी के बीच में ये कैसे बन गया, ये सवाल खड़े करता है कि किस तरीके से नियमों की धज्जियां उड़ाई गई, अफसरों ने अपनी जेबें भरने के बाद ऐसे यमराज नुमा कॉम्प्लेक्स खड़े कर दिए गए और जब हादसे हुए तो आज 15 लोगों की जान के लिए हम और आप रूबरू हो रहे हैं। लेकिन भविष्य में जब ऐसे होंगे तो फिर ऐसी घटना होगी, तो जब तक ऐसे लोगों पर कार्रवाई नहीं होगी तब तक इनको रोक पाना बड़ा मुश्किल है।
0: ठीक है, मैं लौटूंगी आपके पास। समर्थ मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। समर्थ, आप पीड़ित के परिवार के साथ मौजूद हैं वहां पर, जाहिर तौर पर एक कसमसाहट, एक अफसोस और दुख के साथ साथ एक हमेशा के लिए टीस जो छोड़ गया है ये भयानक हादसा, इन परिवारों को कभी ना मिट पाने वाला ये गम।
3: नेहा, यहाँ रोते भी लगते परिवार है, उनकी चीख है। एक पिता बैठे हैं जो इस सवाल सिस्टम से कर रहे हैं कि आखिर इनकी और इनके परिवार की क्या गलती थी। एक माँ वहां रो रही है, बिलख रही है, उनका सवाल सिस्टम से है कौन सा विभाग करप्ट निकला, किसने पैसा खाया। ये इनके लिए बहुत जरूरी नहीं है, इनके लिए जरूरी इनका बेटा है। आपके घर का चिराग बुझ गया।
4: पैसे सब कुछ नहीं होता, बच्चा हमारा वापस मिला सकता है कोई? बच्चा तो नहीं मिला सकता है, दौलत उसके ऊपर रुपया दे दिया जाए फिर भी क्या खुशी वापस आ सकती है? नहीं आ सकती है।
3: आपके आंखों में आंसू भी देख रहा हूँ, मैं समझ सकता हूँ आपके लिए बहुत ही ये दर्द भरा क्षण है और हम लगातार सरकार से भी और प्रशासन से भी सवाल कर रहे हैं। लेकिन कैसा रहा, आपने बचपन से उसको खिलाया पढ़ाया?
4: जी, बचपन से पढ़ाया लिखाया खिलाया सब कुछ, सेवा पानी किया जो हो सका। अब जो सयान हुए कामयाबी के लिए उड़े तो पता चला कि वो हादसे में चले गए, इसका कौन जिम्मेदार है? हम जिम्मेदार हैं, सरकार जिम्मेदार है या प्रशासन जिम्मेदार है, कौन जिम्मेदार है?
3: बचपन की तस्वीरें, क्या वो सब क्षण दोबारा आंखों के सामने आ रहे हैं? और वो तस्वीर कल जब वो आपसे आपके पैर छूकर निकला होगा घर से, आप
4: वो तस्वीर तो हमें सब नाचेगी। वो तस्वीर जो कल निकले तो उस समय की तस्वीर तो हमेशा जब तक जिएंगे तब तक सामने दिखेगी हमको, लेकिन बच्चा नहीं दिखेगा, बेटा नहीं दिखेगा मेरा, दुनिया दिख सकती मेरा बेटा नहीं दिख सकता।
3: परिवार है और आपको मैं दिखाता हूँ उनकी माँ। हम इस वक्त नीलेश के परिवार के पास है। नीलेश कुमार 27 साल के, महज 27 साल की उम्र में उनका, आप तस्वीरें देखें और खुद समझें। यहाँ पर दिखाइए जरा, ये इनका, इनकी माँ है और बिलखता हुआ परिवार है। कुछ देर में दाह संस्कार के लिए निकलने वाले हैं और जिस तरह की खामोशी है, एक रो जरूर ये रही है लेकिन परिवार में और पूरे मोहल्ले में जिस तरह की खामोशी है उसको मैं यहाँ खड़े होकर महसूस कर सकता हूँ। और इन महिलाओं का जो दर्द है, इन घर वालों का जो दर्द है, उसकी जवाबदेही किसकी है, इसकी जिम्मेदारी भी तय होनी चाहिए। आदित्य को आप लोगों ने यहाँ देखा होगा, हमेशा यहाँ रहे, किस तरह से था और क्या लगता है किसकी जिम्मेदारी तय होनी चाहिए इस पूरे मामले में?
5: सरकार की जिम्मेदारी होनी चाहिए पूरी।
3: कैसा नेचर था इनका, नीलेश का?
5: बहुत बढ़िया नेचर था, किसी से मतलब नहीं, पढ़ने जाता था, पढ़ाता था, बढ़िया सबका वो था, नेचर बढ़िया था इसका।
3: कितने इनके बच्चे, अकेला नीलेश ही है और भी
5: है? जी नहीं पता अभी हमको।
3: पूरे मोहल्ले में आप देखें तो इस वक्त ये पूरा परिवार है, मातम छाया हुआ है और इस तरह के तमाम परिवार हैं, एक नहीं 15 कुछ परिवार हैं और 15 घरों की यही हालत है। कुछ परिवार जो अन्य जिलों से थे वो वहां निकल गए, कुछ लखनऊ के हैं तो वो दाह संस्कार की तैयारियां कर रहे हैं। ये एक पिता हैं और ये पूरा परिवार देखिए, सब इकट्ठा है, पारिवारिक लोग हैं, आप सब परिवार से ही हैं, मोहल्ले से ही हैं यहाँ पर। आदित्य को आप लोगों ने देखा होगा यहाँ पर, माफ कीजिएगा नीलेश को देखा होगा आप लोगों ने यहाँ पर। ये समाचार जब प्राप्त हुआ आपको कैसा, क्या कौन कसूरवार क्या है?
4: बहुत बड़ा दुख पहुंचा हम लोगों को, देखिए सुना है, बहुत बड़ा दुख पहुंचा हम लोग को। तुरंत उनके घर की तरफ भागे हम लोग, लेकिन बस यही संवेदना ही दे सकते हैं, उसके अलावा कुछ क्या कर सकते हैं।
3: कह रहे हैं कि बड़ी कार्रवाई होगी, प्रशासन कह रहा है बड़ी कार्रवाई करेंगे, आपको लगता है कुछ होगा धरातल पर और होगा भी, लोग याद रखेंगे?
6: वो हर मामले में होता है, लेकिन कागजी कार्रवाई में कुछ नहीं होता है, बाद में बस आश्वासन दे करके सरकार भूल जाती है।
7: शासन प्रशासन करता क्या है, खाली आश्वासन देता है, कुछ नहीं करता है, गरीबों के लिए कुछ नहीं करता हो। उनके घर की 60 कट बिजली खराब है, कहीं क्या है, सब रहता है और वो कुछ करता नहीं, एप्लीकेशन देते रहो बिजली विभाग में, कोई सुनता नहीं।
0: ठीक है, लौटेंगे आपके पास, लेकिन इस बीच ये बड़ा अग्निकांड जिसमें 15 लोगों की जान चली गई, आज तक ये तमाम सवाल पूछ रहा है, 15 मौत का कसूरवार कौन है? ये हादसा है या फिर हत्या है? क्योंकि कई मानकों को ताक पर रखा गया था। कैसा लाक्षाग्रह बन गई ये इमारत, पूरी की पूरी इमारत आपने देखी कैसे धू धू कर चंद सेकेंड चंद मिनट्स में जलकर खाक हो गई, कदम कदम पर घनघोर लापरवाही, एक ही एग्जिट पॉइंट वहां पर तारों का पूरा एक घना जंगल सा दिखाई दिया, ना फायर की NOC ली गई, ना तमाम मानकों को यहां पर लागू किया गया, आग बुझाने के इंतजाम में भी कमी दिखाई दी, फायर एक्सटिंग्विशर वहां पर मौजूद नहीं थे, निकास का कोई दूसरा रास्ता नहीं था, एक ही एग्जिट पॉइंट था। तो ये सवाल दरअसल इस वक्त सबसे अहम हो रहे हैं, और आपको जानकर हैरानी होगी कि जिस बिल्डिंग में आग लगी उसे गिराने के लिए LGA में 2016 में एक प्रस्ताव पास किया गया था, और इस भवन के लिए 20 अगस्त 2014 को आवासीय मानचित्र स्वीकृत किया गया। 2016 में प्राधिकरण ने भवन के खिलाफ अनाधिकृत निर्माण के आरोप में मुकदमा दर्ज कराया, और मामले की सुनवाई के बाद 10 मई 2016 को डिमोलिशन का आदेश पारित किया गया, लेकिन 5 जुलाई 2016 को ध्वस्तीकरण आदेश निरस्त कर दिया गया। तो लखनऊ अग्निकांड पर एक्शन तो हो रहा है, 4 गिरफ्तारी हुई हैं, 4 सस्पेंशन हुए हैं, क्या कुछ अब तक एक्शन सरकार द्वारा लिया गया है, रिपोर्ट के जरिए समझिए।
8: दुनिया उजड़ गई,
9: धू धू कर जलती इमारत, रस्सियों के सहारे जान बचाने की जद्दोजहद, शीशा तोड़कर ऊपरी मंजिल से कूदते छात्र, दिल दहलाने वाली ये चंद तस्वीरें हैं लखनऊ के उस अग्निकांड की जिसमें 15 जिंदगियां खाक हो गई जबकि 9 जख्मी हो गए। मारे गए ज्यादातर छात्र थे जिनकी उम्र 20 से 25 साल के बीच थी। आज सुबह की तस्वीर देखिए, इमारत में आग से हुई बर्बादी के निशान साफ नजर आ रहे हैं। लखनऊ के अलीगंज थाना क्षेत्र के पुरनिया चौराहे के पास स्थित बेसमेंट ग्राउंड और फर्स्ट फ्लोर वाली बिल्डिंग में नीचे पेट शॉप, क्लिनिक और ऊपर एनिमेशन ट्रेनिंग सेंटर चल रहा था, जहां गेमिंग इंडस्ट्री से जुड़े सॉफ्टवेयर डेवलप करने की ट्रेनिंग दी जाती थी। जो लोग मारे गए थे उनमें ज्यादातर एनिमेशन ट्रेनिंग सेंटर में उस वक्त मौजूद थे। शुरुआती जानकारी के मुताबिक इसी डक से लखनऊ की इसी बिल्डिंग में आग सोमवार करीब 2 बजे लगी, और अग्निकांड की खबर लगते ही अलीगढ़ दौरा छोड़कर CM योगी आदित्यनाथ मौके पर पहुंच गए।
10: मुझे दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि अभी मुझे तुरंत जानकारी मिली है, लखनऊ में एक दुर्घटना हुई है, वहां पर एक अग्निकांड की चपेट में कुछ बच्चे आए हैं और उसके कारण उनकी दुखद मौत, प्रशासन वहां पे राहत कार्यों में लगा हुआ है, लेकिन उस दुखद घटना के कारण मुझे तत्काल वापस लखनऊ जाना पड़ रहा है।
9: लखनऊ के सांसद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी देर शाम हालात का जायजा लेने लखनऊ पहुंचे।
11: यानी दुखद है, दुर्भाग्यपूर्ण है, वेदनादायक है, कोई भी कहा जाए वो कंपा एडमिनिस्ट्रेशन के स्तर पर और डॉक्टर्स के स्तर पर जो मैक्सिमम फॉल्ट हो सकता है, जो कुछ भी करना आवश्यक था सब किया है लोगों ने, और मुख्यमंत्री जी ने स्वयं कहा भी है कि इस मामले की तह तक जाने की वो कोशिश करेंगे, प्रॉपरली इसकी जांच कराई जाएगी, और आवश्यक जहां हुआ तो रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स करने में गवर्नमेंट पीछे नहीं है।
9: अलीगंज की आग शांत हो चुकी है और अब 15 मौत की जिम्मेदारी तय करने का दौर शुरू हो चुका है। अब तक 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जिनमें शामिल हैं रामकृष्ण उपाध्याय, वीरेंद्र प्रसाद शुक्ला, तुषांग कृष्णा जायसवाल और सुरेश कुमार शाहू। इसके अलावा सीएम योगी के निर्देश पर 4 अधिकारियों को भी तत्काल प्रभाव से सस्पेंड किया गया है। इनमें शामिल हैं गौरव कुमार, एक्सन कलेक्शन जानकीपुरम, कमलेंद्र कुमार सिंह, एफएसएसओ इंदिरा नगर, अनिल कुमार एई, प्रमोद पांडे जेई। योगी सरकार एक्शन में है। मौके का निरीक्षण और अस्पताल में जख्मी लोगों से मुलाकात के तुरंत बाद सीएम योगी ने हाई लेवल मीटिंग ली। अग्निकांड की जांच के लिए 2 सदस्यीय विशेष जांच दल का भी गठन किया। एसआईटी आग लगने के कारणों, सुरक्षा मानकों के अनुपालन, भवन की वैधानिक स्वीकृतियों और संभावित लापरवाही की भी जांच करेगी। जांच दल को 7 दिनों के भीतर अपनी रिपोर्ट देने को कहा गया है। उधर लखनऊ विकास प्राधिकरण ने भी ज्ञानेंद्र वर्मा के नेतृत्व में 5 सदस्यीय जांच कमेटी गठित की है। समर श्रीवास्तव और संतोष शर्मा के साथ आज तक ब्यूरो।
0: 20 से 25 साल की उम्र के युवा जो अपने भविष्य को संवारने का सपना लेकर उस बिल्डिंग में एनिमेशन की ट्रेनिंग ले रहे थे, अग्निकांड की भेंट चढ़ गए। 15 परिवारों में दर्द और गम का सैलाब उमड़ा हुआ है। देखिए ये रिपोर्ट

0: लखनऊ की इस बिल्डिंग में आग धधकी तो कई घरों के चिराग बुझ गए, कई परिवार तबाह हो गए, कई जिंदगियों का सहारा चला गया, कई लोगों को यह हादसा जीवन भर की त्रासदी दे गया। अपनों को खोने वालों की आंखों में अब आंसू हैं, चेहरे पर बेबसी है और जुबां पर यह सवाल कि आखिर उनका लाल क्यों लापरवाही की लपटों की भेंट चढ़ गया।
1: मेरा बेटा भी जिंदा होता, मेरा बेटा भी होता दुनिया में, मेरी तो दुनिया उजड़ गई।
0: इस लाचार माँ का ये भी सवाल है कि आखिर उसके बेटे को बचाया क्यों नहीं जा सका। अगर बिल्डिंग में इतनी कमियां थीं, तो पहले ध्यान क्यों नहीं दिया गया।
1: मैंने देखा है, मैंने सब देखा, मैं बराबर यही कह रही थी कि एकदम से देखा था मैंने सब। जिस तरह से इस समय भी मैंने देखा कि सीएम साहब आने वाले थे, किया जा रहा था, उस टाइम उस तरह से ये भी ध्यान दिया जाता तो हो सकता है बच्चे बच जाते।
2: मेहनत कर लिया थी,
1: बच्चे बचाए जा सकते थे। जॉब करता था,
2: किस चीज में कुछ आपको
1: एनिमेशन कोर्स का ये स्टूडियो है, वहीं पे जॉब करता था।
3: आप कितने बजे पहुंची हैं वहाँ पे?
1: मैं पहुंच गई हूँ वही 2:20 पर।
3: 2:20 पर तब तक धुआं आ रहा था, निकल रहा था,
1: उसके बाद तो निकलता रहा, ढाई घंटे निकलता रहा।
0: लखनऊ में हुए हादसे से जुड़े अब कई दर्दनाक कहानियां हैं। पीड़ा है, तकलीफ है, जिंदगी भर के जख्म हैं और सवाल पूरी व्यवस्था पर है।
4: अगर कई मंजिल की बिल्डिंग बनती है तो उसके साथ साथ क्या लिफ्टें चलने का सवाल नहीं था? कम से कम साथ में सीढ़ियां तो होनी ही चाहिए, आदमी कहीं से तो भाग सके। वेंटिलेशन बताते हैं उसमें था ही नहीं, और वो जब लगी है आग तो ये पता चला है कि वो ऑटोमेटिक लॉक हो गया गेट, जिसकी वजह से लोग निकल नहीं पाए। इस तरीके से भी दिल्ली में कांड हुआ और ये टाई टाई फिस हो जाएगी 4 दिन के बाद। वो अधिकारी वो कैसे नहीं, कैसे नक्शा पास कर दिए, कैसे क्या कर दिए, हाँ। और उसमें होता है कि अभी सब पनिश किए जाएंगे, सब कुछ किया जाएगा। अब उसके बाद
5: आपका कहना है कि 4 दिन में सब भूल जाएंगे?
4: 7-10 दिन के बाद सब भूल जाते हैं। हम दे आज जो है कि 65 साल का मैं हूँ, तो 65 साल से जो है कि सब देखते तो चले आ रहे हैं।
0: जब बिल्डिंग धू धू कर जल रही थी तो अंदर फंसे बच्चे मदद के लिए चिल्लाते रहे, बाथरूम में छिपते रहे, खिड़कियों से कूदते रहे, लेकिन बाहर निकलने का केवल एक रास्ता था, लिहाजा जिंदगी बचाना और ज्यादा मुश्किल हो गया।
6: मेरा भाई फोन करके बताया कि भैया आप फंस गए, 2 दिन पहले मेरा ऑपरेशन किडनी स्टोन को, हम बेड से सीधा भागे, बीघो निकालो मुझे जाना है, यहाँ है। उसके बाद बात नहीं हुई, वो बताए हम बाथरूम में हैं, इतनी बात बताई कि हम बाथरूम में 5-6 लोग आ गए हैं, भैया जल्दी आ जाना, बस इतनी बात, इसके बाद नहीं हुई।
0: जिन भी बच्चों ने लखनऊ में हुए इस हादसे में अपनी जान गंवाई, उनमें से कई अपने परिवार में इकलौते थे। कोई मेहनत कर परिवार को मदद कर रहा है, लेकिन इस अग्निकांड ने सब कुछ तबाह कर दिया।
1: हमारा बेटा है यहाँ
2: KGMU गए हम लोग,
1: हाँ कह रहे KGMU ले गए, तो वहाँ जा रहे हैं।
2: कांटेक्ट नहीं हो पा रहा?
1: नहीं, कुछ नहीं पता।
0: जिन परिवारों ने अपने बच्चों को खोया, उनके आंसू थम नहीं रहे। कई परिवार वाले बच्चों के शव लेने पोस्टमार्टम हाउस पहुँचे हैं। लखनऊ की हादसे की लपटों ने कई जिंदगियों को उम्र भर का गम दे दिया है। अब इसके दिल में सिर्फ दर्द है, कई सवाल हैं जिसका जवाब भी शायद ही इनके मन को शांति दे पाए। लखनऊ से समर श्रीवास्तव, संतोष शर्मा के साथ कुमार अभिषेक, आज तक।
7: तो इसे अग्निकांड के हैं या फिर हत्याकांड, लखनऊ की जिस इमारत में आग लगी उसमें घनघोर लापरवाही की बात सामने आई है। न फायर की NOC ली गई, न आग बुझाने के समुचित इंतजाम वहां पर थे। नियमों की धज्जियां उड़ाकर रेजिडेंशियल इलाके में अचानक कमर्शियल बिल्डिंग बना दी गई।
0: इस आग में खाक हो गई 15 जिंदगियां, 12 पुरुष और 3 महिलाएं, जिनमें शामिल थे कई छात्र और छात्राएं। आखिर ये इमारत देखते ही देखते कैसे लाक्षा गृह में तब्दील हो गई? ऐसा कैसे हुआ कि लोगों को भागने का मौका तक नहीं मिला? इस सवाल का जवाब है लापरवाही, लापरवाही और पूरी लापरवाही।
8: हम इस वक्त उसी मौकाए वारदात पर हैं, उसी जगह पर हैं जहां पर अलीगंज का ये अग्निकांड हुआ है। मेरे ठीक पीछे अगर आप इस बिल्डिंग को देखें तो ये बिल्डिंग अपने आप में ये बता रही है, चीख चीख करके कह रही है कि ये बिल्डिंग कैसी थी और इसमें बचने या निकलने का कोई रास्ता मौजूद नहीं था। तकरीबन 60 से 70 फुट गहरी ये बिल्डिंग और आप इसकी चौड़ाई देखें तो तकरीबन 40 फिट की इसकी चौड़ाई रही होगी, लेकिन अब ये बिल्डिंग पूरी तरीके से जलकर खाक हो चुकी है। बाहर आपको जो सामान बिखरे पड़े दिख रहे हैं ये इस बात की गवाही है कि किस तरीके का भीषण अग्निकांड ये हुआ है।
0: सबसे पहली लापरवाही, बिल्डिंग में निकास का कोई वैकल्पिक रास्ता नहीं था, एकमात्र रास्ता था और उसी रास्ते में एसी का जाल है और दुर्भाग्य से आग भी वहीं पर लगी। एनिमेशन ट्रेनिंग सेंटर चल रहा था जहां गेमिंग इंडस्ट्री से जुड़े सॉफ्टवेयर डेवलप करने की ट्रेनिंग दी जाती थी। जो लोग मारे गए उनमें ज्यादातर एनिमेशन ट्रेनिंग सेंटर में उस वक्त मौजूद थे।
9: लखनऊ के अलीगंज इलाके में जिस कॉम्प्लेक्स में आग लगी और 5 लोगों की जान चली गई, वो कॉम्प्लेक्स सारे नियम कायदे की धज्जियां उड़ाकर बनाया गया था। आपको तस्वीरें से समझाते हैं, ये पूरा कॉम्प्लेक्स है। सबसे बड़ी बात कि ये कॉम्प्लेक्स का जो नक्शा था वो रेजिडेंशियल नक्शे के तौर पर इसको पास कराया गया था LDA में और उसके बाद इसको कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्स में तब्दील कर दिया गया। कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्स के अलग नॉर्म्स होते हैं, रेजिडेंशियल के अलग नॉर्म्स होते हैं और ये इसके बाद आप देखिए कि किस तरीके से ये आपको थोड़ा सा इसके गेट की चौड़ाई कितना बड़ा है ये कि आप इधर से देखिए, ये सिर्फ एंट्री और एग्जिट भी समझाते हैं कि ये सिर्फ ये जो गेट आप देख रहे हैं यही एक एंट्री और एग्जिट पॉइंट था। और एंट्री और एग्जिट पॉइंट में कितने आपको ये एसी के पैनल्स दिख रहे हैं, एसी के पैनल हैं, ये एसी के पैनल लगे, यही एक एंट्री एग्जिट पॉइंट था और पीछे कोई एंट्री एग्जिट पॉइंट ही नहीं था।
10: पूरा रेजिडेंशियल एरिया है जितना भी है ये यहाँ पे कोई भी ना ऐसा कोचिंग संस्था है ना कुछ भी, पूरी रेजिडेंशियल एरिया।
11: इसको सरकार की नाकामी है कि जो
9: कैसे ये यहाँ पे रेजिडेंशियल में ये बन गया,
11: ये कोचिंग चलाने का जो परमिशन दिया है उसको और कोचिंग चलाने वाले संचालक को फांसी होना चाहिए।
10: गेमिंग जोन भी था ऊपर और नीचे पेट शॉप है, आप जैसे दिख रहे हैं ना कि आप खुद भी देख सकते हैं, कैमरा आप दिखाओ ना वहाँ से, आप इधर देखो पहले आप ये देखो ना, आप खुद सोचो यहाँ से कितने बच्चे भाग पाएंगे, कितने बच्चे भाग पाएंगे यहाँ पे, और जिस तरह एसी के आउटलेट्स यहाँ पे लगे हुए हैं, आप और मैं कितने भी फिट रहे हैं हम भाग नहीं सकते हैं।
0: रेसिडेंशियल इलाके में कोचिंग सेंटर आम है, आमतौर पर ऐसे कोचिंग सेंटरों में आग से बचाव के नियमों का पालन नहीं होता, लेकिन यहाँ ये लापरवाही जानलेवा हो गई।
12: ये रेजिडेंशियल में जो कमर्शियल एक्टिविटी हो रही है उसमें सबसे बड़ा व्यवसाय जिसमें कहीं मानक तय नहीं है सरकार के, वो कोचिंग व्यवसाय है। कोचिंग का न तो कहीं रजिस्ट्रेशन होता है सरकार के किसी विभाग में, कोचिंग यहाँ पर आप मान के चलो कि कक्षा 8 से लेकर IAS IPS की भी कोचिंग इस एरिया में है। अलीगंज और जानकीपुरम कोचिंग का हब बना हुआ है और कोचिंग में आपने मकान किराए पे लिया, फर्नीचर डाला, अगले दिन से पढ़ाना शुरू कर दिया।
0: किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज की वाइस चांसलर सोनिया नित्यानंद ने आज तक से बातचीत में एक हैरान करने वाला खुलासा किया। उनके मुताबिक जो 15 लोग मारे गए वो जलने से नहीं मरे बल्कि दम घुटने से उनकी मौत हुई।
13: 15 जो है वो डेड लाए गए और वो 15 के 15 स्मोक से चले भी
14: स्मोक से सबसे निकलने का कैसे कूदे बाहर कैसे निकल।
13: आई थिंक ये मिनटों का खेल हो, 11 लोग तो निकल आए बाकी 15
0: बताया जाता है कि आग लगने से एनिमेशन सेंटर का दरवाजा लॉक हो गया, इसी वजह से धुएं के चलते दम घुट गया। आशीष श्रीवास्तव, समर श्रीवास्तव और संतोष शर्मा के साथ कुमार अभिषेक, लखनऊ आज तक।
7: तो बिना ब्रेक के खबरों का सिलसिला लगातार 9 बजे में जारी रहेगा, वक्त हो गया है हेडलाइंस का।
15: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परो चोगन परफ्यूम्स, द फ्रेंच एडिशन फॉर हिम एंड हर।

चुनाव आयोग ने लिया संज्ञान, 13 जुलाई तक रिपोर्ट तलब। सांसदों की बगावत के बाद उद्धव को लग सकता है एक और झटका, बैठक में शामिल नहीं हुए 3 विधायक और एक एमएलसी, 6 सांसद पहले शिंदे की शिवसेना में हो चुके हैं शामिल।

TMC. देश के पश्चिमी इलाकों में मॉनसून देने वाला है दस्तक। अगले 24 घंटों में बारिश से तरबतर होंगे गुजरात और महाराष्ट्र। झमाझम बरसात से भीगी मुंबई।

अहमदाबाद के रखियाल में बेकाबू कार का कहर, 5 वाहनों को मारी टक्कर, महिला की मौत, 6 घायल। रखियाल में सड़क पर मचा कोहराम, बेकाबू कार ने कई वाहनों को टक्कर मारने के बाद फूड लॉरी में मारी टक्कर, ड्राइवर को दौरा पड़ते ही बेकाबू हुई कार, सीसी में कैद हुई खौफनाक हादसे की तस्वीर। देवबंद की एक शादी में डीजे पर चढ़कर तमंचों से हर्ष फायरिंग, वायरल वीडियो के बाद 3 आरोपी गिरफ्तार। हथियारों का खुला प्रदर्शन, बड़ा भारी, अवैध तमंचे और कार समेत 3 युवक गिरफ्तार। वाराणसी में पिस्टल लहराकर रील बनाने वाला युवक गिरफ्तार, हथियार निकला टॉयगन। संभल में डॉग मैरी की सूझबूझ से ब्लाइंड रेप केस का खुलासा, आरोपी गिरफ्तार। जयपुर में मॉर्निंग वॉक के दौरान चेन स्नैचिंग सीन में कैद हुई वारदात, पास मौजूद पुलिसकर्मी देखता रह गया। मेरठ युवक की ईंट से कुचलकर हत्या, खून से लथपथ शव मिलने से सनसनी। लखनऊ के अलीगंज इलाके में कोचिंग गेमिंग सेंटर में लगी भीषण आग, 15 युवाओं की गई जान, 9 घायल। लखनऊ आग हादसे में जान बचाने के लिए पहली मंजिल से कूदे बच्चे, एक लोहे के ग्रिल पर गिरा। लखनऊ आग हादसे में आग से बचने के लिए बाथरूम में छिपे थे बच्चे, दम घुटने से गई जान, 4 अधिकारी सस्पेंड। सीएम योगी ने घटनास्थल और अस्पताल का लिया जायजा, मुख्यमंत्री आवास पर हाई लेवल मीटिंग, मृतकों के परिजनों के लिए 5-5 लाख का मुआवजा। लखनऊ आग हादसे में मुख्यमंत्री योगी का सख्त आदेश, जांच के लिए 2 सदस्यीय एसआई टीम गठित, 7 दिन में रिपोर्ट देने के निर्देश, दोषियों पर होगी सख्त कार्रवाई, 7 दिन में सौंपी जाएगी जांच रिपोर्ट, बिल्डिंग मालिक समेत 4 की गिरफ्तारी। प्रशासन का बड़ा एक्शन, एईजेई समेत 4 अधिकारी सस्पेंड, जिम्मेदारी तय होगी। लखनऊ अग्निकांड पर सीएम योगी ने जताया दुख, मुख्यमंत्री ने अलीगढ़ आगरा दौरा समेत सभी कार्यक्रम रद्द किए। योगी ने घायलों के तत्काल उपचार के लिए निर्देश, पीड़ित परिवार को हर संभव मदद का भरोसा। यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने घटनास्थल का दौरा कर स्थिति का लिया जायजा, लखनऊ अग्निकांड के उच्चस्तरीय जांच के आदेश। लखनऊ आग हादसे पर पीएम मोदी ने जताई संवेदना, प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख रुपए और घायलों को 50,000 रुपए की आर्थिक मदद देने का ऐलान। लखनऊ अग्निकांड पर उपराष्ट्रपति ने जताया दुख, मृतकों के परिजनों के प्रति संवेदना और घायलों के जल्द स्वस्थ होने की कामना। राजनाथ सिंह ने लखनऊ आग हादसे पर दुख व्यक्त किया, बोले पीड़ित परिवारों के साथ मेरी संवेदनाएं हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह लखनऊ पहुंचे, अलीगंज अग्निकांड घटनास्थल का जायजा लेने के बाद अस्पताल में घायलों से मुलाकात। लखनऊ अग्निकांड हादसे पर उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने जताया खेद, लखनऊ कोचिंग सेंटर अग्निकांड पर नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जताया शोक, मृतकों के परिवार के प्रति जताई संवेदना। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने घटना पर शोक व्यक्त किया, कहा अलीगंज की दुर्घटना बेहद पीड़ादायक है। डीएसपी प्रमुख मायावती ने लखनऊ आग हादसे पर बोला, ये दिल दिलाने वाली घटना है, भविष्य में ऐसी घटनाओं की रोकथाम के लिए ठोस कदम उठाने की जरूरत है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने लखनऊ में कई छात्रों की मौत पर गहरा शोक व्यक्त किया, घायलों के स्वस्थ होने की कामना की। अखिलेश यादव ने लखनऊ आग हादसे में मृतकों को दी श्रद्धांजलि, बोले अग्निकांड के विषय कारणों की ईमानदारी से जांच होनी चाहिए। भरत तिवारी एनकाउंटर मामले को लेकर बिहार में सियासत तेज, विपक्ष ने उठाए सवाल, पटना हाईकोर्ट में पीआईएल दाखिल कर एनकाउंटर निष्पक्ष जांच की मांग, न्यायिक जांच की मांग हुई तेज। बिहार राज्य मानवाधिकार आयोग ने मामले का संज्ञान लिया, 13 जुलाई तक रिपोर्ट तलब। पटना में तेज प्रताप यादव के आवास से 20 लाख नकदी समेत कीमती सामान चोरी का आरोप, निजी सहायक मोतीलाल राय पर गंभीर आरोप। पूर्व मंत्री तेज प्रताप यादव की शिकायत पर पुलिस जांच में जुटी, जांच के लिए डीएसपी और थाना प्रभारी पहुंचे तेज प्रताप के आवास। इनोवेटिव व्यू पहले से कई राज्यों में ब्लैकलिस्टेड होने के बावजूद उसे बायोमेट्रिक का काम मिलना, ये पूरे सिस्टम की गंभीर लापरवाही और मिलीभगत की ओर इशारा। पीएमसीएच का थर्ड ईयर एमबीबीएस छात्र अश्विनी कुमार खुद बायोमेट्रिक स्टाफ बनकर सेंटर में घुसा और अंदर से संभाल रहा था पूरी सेटिंग। एक अभ्यर्थी को पास कराने के 7 लाख की कीमत और देश के बड़े मेडिकल कॉलेजेस के छात्र स्कॉलर के रूप में शामिल, ये रैकेट छोटे स्तर का नहीं बल्कि संगठित और बड़े नेटवर्क का हिस्सा है। डमी बायोमेट्रिक के बाद अंगूठे के निशान बिगाड़ना, फर्जी सिम, नकली नाम से एंट्री, गैंग ने पकड़े जाने से बचने के लिए टेक्निकल और प्लान तरीके अपनाए। नगरासू गुरुद्वारा विवाद में 2 निहंग सिख छत से उतरे, बाकी से प्रशासन पुलिस की वार्ता जारी। प्रशासन का दावा, हेमकुंड साहिब और चारधाम यात्रा पूरी तरह सुचारू, गुरुद्वारे में लंगर, आवागमन सामान्य। प्रशासन की अफवाहों पर सख्त चेतावनी, न कब्जा न बंधक की घटना, मौके पर पुलिस प्रशासन की कड़ी निगरानी। देश भर में मॉनसून पकड़ रहा है रफ्तार, जुलाई के पहले हफ्ते तक दिल्ली पहुंचने के आसार, अगले 48 घंटे के दौरान दक्षिण पश्चिम मॉनसून के महाराष्ट्र, तेलंगाना, ओडिशा, छत्तीसगढ़, झारखंड और बिहार के कई हिस्सों में पहुंचने के आसार। हफ्तों के इंतजार के बाद मुंबई पहुंचा प्री मॉनसून, कई इलाकों में सीजन की पहली बारिश। बांद्रा में मूसलाधार बारिश, कई इलाके जलमग्न, आवाजाही प्रभावित।
महाराष्ट्र के पुणे में कई इलाकों में झमाझम बारिश, कई जगहों पर भरा पानी। गुजरात के अमरेली में पिछले तीन दिन से गांव में तेज हवा के साथ हो रही बारिश, बुवाई का इंतजार करे किसानों से खिले चेहरे। गुजरात के वलसाड में पहली बारिश में डूबा मोगरावड़ी अंडरपास, प्री मॉनसून तैयारियों की खुली पोल, घुटने तक भरा पानी होने से आवाजाही में दिक्कत। पहली बारिश में सूरत नगर निगम की खुली पोल, अंडरपास में जलभराव और धसी सड़कों से कई घायल, सीसीटीवी में कैद हुई हादसे। मौसम विभाग के मुताबिक अल नीनो की वजह से गुजरात में अब तक मॉनसून की शुरुआत नहीं हुई है, तीन से पांच दिन करना होगा और इंतजार। मौसम विभाग के अनुसार उत्तर गुजरात की सौराष्ट्र होते हुए पश्चिम मध्य अरब सागर तक कम दबाव का इलाका बना है, इसी के चलते कई शहरों में हो रही है बारिश। हरदोई में ब्रिज निर्माण के दौरान बड़ा हादसा, निर्माणाधीन पुल का 50 मीटर हिस्सा डहा, तीन मजदूर घायल। देहरादून के विकास नगर में फास्टैग कटने पर भड़के कार सवार, धर्मा वाला टोल प्लाजा कर्मी को बेरहमी से पीटा गया। ग्रेटर नोएडा में नशे में दो युवती का हाई वोल्टेज ड्रामा, हाथ में सिगरेट और बगल में शराब की बोतल रखकर सड़क पर लेटी रही। गाजियाबाद में 19 यात्रियों से भरी रोडवेज बस पलटी, ऋषिकेश से आईएसबीटी दिल्ली जा रही थी बस, ट्रक को बचाने में हुआ हादसा।

हैदराबाद के आसिफ नगर में हिट एंड रन का मामला, किराए की एसयूवी चला रहा नाबालिग महिला को टक्कर मारकर फरार, इलाज के दौरान मौत। एमपी के छिंदवाड़ा में ट्रक और मजदूरों से भरी पिकअप की टक्कर, पांच की मौत, 30 घायल। जयपुर में मॉर्निंग वॉक पर निकली महिला से लूट, जयपुर में गले पर झपट्टा मारकर सोने की चेन तोड़कर बाइक सवार बदमाश फरार। सीकर के रिंग्स में आवारा कुत्तों ने बच्चे पर किया हमला, बचाने आए दोनों को काटा, दो बच्चों समेत 10 घायल। जलंधर में होम्योपैथिक क्लिनिक पर नकाबपोश बदमाशों ने ताबड़तोड़ गोलियां बरसाई, शीशा टूटा। यूपी के कौशाम्बी में भीषण सड़क हादसा, एम्बुलेंस सरकार की टक्कर में मां बेटे की मौत, पिता और मासूम बेटी की हालत गंभीर। उड़ीसा के संबलपुर में चोरी के शक में प्रवासी मजदूर की बेरहमी से पिटाई, पुलिस ने भीड़ से बचाकर 5 से अधिक लोगों को किया गिरफ्तार। पश्चिम बंगाल की कूचबिहार में तेज रफ्तार बाइक से 18 साल के युवक की मौत, नियंत्रण खोने से बड़ी दुर्घटना। फजिलका में आंधी तूफान का कहर, पेड़ गिरने से युवक की मौत, पूरी घटना सीसीटीवी में कैद। यूपी के सोनभद्र में अंतर्राज्यीय गांजा तस्करी का भंडाफोड़, 80 लाख से अधिक कीमत का गांजा बरामद, 6 तस्कर गिरफ्तार। इंदौर सोशल मीडिया पर युवतियों को बदनाम करने वाला साइबर अपराधी गिरफ्तार, पुलिस ने देवास से आरोपी को दबोचा। बनारस की भीड़ में दो वाहनों की टक्कर, हादसे में चालक की मौत, एक गंभीर रूप से घायल। सूरत नगर निगम में कथित प्रताड़ना से परेशान गुजर गणपति ने मांगी इच्छा मृत्यु, कलेक्टर को सौंपी अर्जी। सूरत पुलिस थाने के बाहर बजरंग सेना का प्रदर्शन, शराब और गांजे की बिक्री बंद करने की मांग। अहमदाबाद क्राइम ब्रांच की बड़ी कामयाबी, 7 साल से फरार कुख्यात शूटर मोहम्मद तस्लीम को राजस्थान से किया गया गिरफ्तार। राजकोट में जर्जर आवास खाली कराने के विरोध में बुजुर्ग कानों का प्रदर्शन, खड्डे में लेटकर जताया विरोध, मेयर ने कार्रवाई रोकने के दिया आदेश। अमेरिका में दलजीत दोसांझ का जलवा, सिंगर के नाम पर रखा जाएगा पब्लिक हॉलीडे। 6 जनवरी 2027 का दिन दलजीत दोसांझ डे के नाम से सेलिब्रेट किया जाएगा, दोसांझ हुए इमोशनल। फिल्म निर्माता बोनी कपूर की बेटी बनेगी दुल्हनिया, अंशुला कपूर का प्री वेडिंग सेलिब्रेशन शुरू। बॉक्स ऑफिस पर चला शाहिद कृति और रश्मिका का जादू, फिल्म कॉकटेल 2 ने 3 दिन में 75 करोड़ से ज्यादा की कमाई की। मां एटी बंगाराम पर हुई नोटों की बारिश, 3 दिन में 41 करोड़ से ज्यादा की कमाई। लेबनान को लेकर इसराइल के तेवर सख्त, सैन्य कार्रवाई जारी रखने का संकेत। इसराइली पीएम, रक्षा मंत्री और सेना प्रमुख का संयुक्त बयान, कहा सैनिकों और नागरिकों के खतरे को खत्म करने की कार्रवाई जारी रहेगी। दक्षिण लेबनान में सुरक्षा क्षेत्र बनाए रखने की बात दोहराई गई, आतंकवाद ढांचे को ध्वस्त करने के लिए अभियान जारी रखने का ऐलान। इसराइल ने कहा नागरिकों और सेना की सुरक्षा पर कोई समझौता नहीं होगा। शीर्ष सुरक्षा बैठक के बाद इसराइल का खड़ा संदेश, कहा लेबनान सीमा पर सुरक्षा बनाए रखने के लिए कार्रवाई जारी रहेगी। रूसी सरकार का यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की के बड़ा आरोप, कहा जेलेंस्की बेलारूस की संप्रभुता को दे रहे हैं चुनौती। ऑस्ट्रेलिया कनाडा के बीच हुआ बड़ा रक्षा समझौता, ऑस्ट्रेलिया से $2.5 अरब का ओवर द होराइजन रडार तकनीक खरीदेगा कनाडा। फिलीपींस के टाक्लोबन शहर में मौजूद एक स्कूल में हुई भीषण गोलीबारी, 3 छात्रों की मौत, 7 घायल। 14 और 15 साल के 2 छात्रों ने स्कूल के दूसरे छात्रों पर चलाई गोलियां। अपने पहले विदेशी दौरे पर मलेशिया पहुंचे बांग्लादेश प्रधानमंत्री तारिक रहमान, मलेशिया के पीएम से मुलाकात के दौरान तारिक रहमान ने उठाया बांग्लादेशी श्रमिकों की सुरक्षा का मुद्दा। भीषण गर्मी और तेज हवाओं के कारण अमेरिकी राज्य यूटा के जंगलों में भड़की आग, बेकाबू आग को देखते हुए सॉल्ट लेक सिटी प्रशासन ने घरों को खाली करने के आदेश दिए।

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार।
1: विमल बोलो जुबान केसरी।
2: ऊंचाई पर बने रहने के लिए जरूरी है इरादों का प्योर होना। गैलेंट एडवांस बनाते हैं ऐसा स्टील जो अंदर से है ज्यादा प्योर ज्यादा मजबूत। गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो।
3: अर्जुन कुछ भी पढ़े मेमोरी में नहीं रहता।
4: नो एडेड शुगर प्रिजर्वेटिव के बिना डेट्स बादाम पिस्ता काजू और शहद से तैयार किया गया लायन डेट्स नट बाइट्स।
5: लायन डेट नट बाइट्स।
6: जब धान के खेतों में जिद्दी खरपतवार दे चुनौती तो हर असली हीरो उठाता है एक ही हथियार, क्रिस्टल क्रॉप का सिकोसा। खरपतवार मारे उगने से पहले, भारत का सबसे ताकतवर धान का खरपतवार नाशक।
7: गोल्डी छोले मसाले जहाँ जाए रिश्ते बनाए।
8: गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश।
9: हनी इस घर में कुछ है जो टूटता नहीं।
10: ये पिलर कभी नहीं टूटेगा। रुंगटा स्टील TMT से बना।
11: रुंगटा नहीं तो घर स्ट्रॉन्ग नहीं। रुंगटा स्टील TMT बाय एकदम सॉलिड।

0: इन एसोसिएशन विद हिंट, बड़े आराम से शारदा यूनिवर्सिटी, द वर्ल्ड कम्स टुगेदर एट शारदा यूनिवर्सिटी, वेयर आर यू। विमल बोलो जुबा केसरी, कूल स्टाइलिश फैंस, एनहांस होम डेकोर विद ब्यूटीफुल फैंस। पंजाब नेशनल बैंक, भरोसे का प्रतीक।
1: आज तक ला रहा है वीडियो वाला पेपर हर सुबह आपके मोबाइल में, और वो भी आपके पुराने न्यूज़पेपर से पहले। पढ़ने के लिए अपने डिवाइस पर टाइप करें epaper.aajtak.in या स्क्रीन पर दिए गए QR कोड को अभी स्कैन करें।
2: जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए श्री संत का।
3: प्लीज बजीपा, प्लीज डू ललन टॉक शो, इट्स अ रिक्वेस्ट, एंड प्लीज टू स्पीक ट्रूथ।
4: अप्रैल 2026 में उन्होंने एक रिटेल कंपनी का ऐड किया।
3: ऐसे हरकतें आप करोगे आपकी बाइक के साथ? आई चैलेंज यू बजीपा, अगर आपको इतना प्रॉब्लम है तप्पट खांड से और आप इतना कमा रहे, हमें भी तो कमाने दो। आओ ना रिंग में, वेट कम।

0: ट्रंप मेलोनी के बीच जंग जारी। नाटो के बहाने आरोप लगाने की अब ट्रंप की बारी। अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप और इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी की सोशल मीडिया लड़ाई छोटी बातों से शुरू होकर ऐसी उलझी है कि फोटो सेशन से शुरू हुआ बवाल अब राष्ट्रीय सुरक्षा तक पहुंच गया है। मेलोनी ने डोनाल्ड ट्रंप को जमकर खरी खोटी सुनाई है। दरअसल ट्रंप बार बार G7 में मेलोनी के व्यवहार को लेकर सोशल मीडिया पोस्ट कर रहे हैं। पहले शनिवार को उन्होंने लिखा कि फ्रांस में G7 मीटिंग के दौरान इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने बार बार मेरे साथ तस्वीर खिंचवाने की गुजारिश की। इटली में उनकी लोकप्रियता का स्तर गिर रहा है। ऐसा शायद इसलिए क्योंकि जब ईरान को परमाणु हथियार बनाने से रोकने की बात आई तो उन्होंने अमेरिका का साथ देने से इनकार कर दिया था। मेलोनी ने हमें इटली के लैंडिंग स्ट्रिप्स या रनवे का इस्तेमाल नहीं करने दिया, जिससे बहुत बड़ी लॉजिस्टिकल दिक्कत हुई। ये तब हुआ जब अमेरिका इटली और दूसरे नाटो सहयोगियों की सुरक्षा के लिए हर साल अरबों डॉलर खर्च करता है। अमेरिका ने अब ईरान को सैन्य रूप से हरा दिया है तो मेलोनी अपनी लोकप्रियता बढ़ाने के लिए फिर से दोस्ती करना चाहती है, लेकिन नहीं शुक्रिया। मेलोनी ने इसके जवाब में लिखा, राष्ट्रपति ट्रंप, ये लगातार और बिना किसी उकसावे के किए जा रहे हमले बिल्कुल बेमतलब है। जहां तक मेरी लोकप्रियता की बात है तो आपका दोस्त होने से इसमें कोई मदद नहीं मिली है और न ही ये आपके साथ मेरे रिश्तों पर निर्भर करती है। मेरी लोकप्रियता इटली के राष्ट्रीय हितों की रक्षा करने की मेरी काबिलियत पर निर्भर करती है और मैंने हमेशा यही किया है। इटली में अमेरिकी सैन्य ठिकानों के मामले में भी हमने समझौतों का सम्मान किया है। जब तक मैं प्रधानमंत्री हूं, उनका उल्लंघन नहीं किया जा सकता। मेलोनी इससे पहले भी ट्रंप का साफ शब्दों में जवाब दे चुकी है।
1: कुछ बातों का तुरंत जवाब दिया जाना चाहिए। डोनाल्ड ट्रंप के बयान पूरी तरह से मनगढ़ंत है। मुझे समझ नहीं आता कि अमेरिका के राष्ट्रपति अपने सहयोगियों के साथ ऐसा व्यवहार क्यों करते हैं। दुख की बात है कि वे अमेरिका के दुश्मनों के साथ वैसी सख्ती नहीं दिखाते, बल्कि उनके प्रति वे कहीं ज्यादा नरम रुख अपनाते हैं। लेकिन उन्हें एक बात याद रखनी चाहिए, मैं और इटली कभी भी गिड़गिड़ाते नहीं हैं।
0: लेकिन अब ट्रंप ने फिर एक पोस्ट किया है। उन्होंने लिखा कि नाटो पर खरबों डॉलर खर्च करने के बाद भी इटली और उसकी प्रधानमंत्री इस्लामिक गणराज्य ईरान और उससे जुड़े गंभीर परमाणु खतरे के मुद्दे पर शामिल होने के बारे में सोचने तक को तैयार नहीं है। दशकों से हम उनकी रक्षा करते आए हैं, लेकिन जब हमारी और दुनिया की सुरक्षा की बात आती है तो वे हमारे साथ खड़े नजर नहीं आते। ये अच्छी बात नहीं है। यूरोपीय देशों के साथ ट्रंप की कई मुद्दों पर नहीं बनती, लेकिन इस बार इटली की पीएम के साथ ये तल्खी मिसाइलों के वार से कम नहीं है। आज तक ब्यूरो।

0: क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच ड्यूरेबल पाइप्स फिटिंग्स एंड टैंक्स अ कंप्लीट रेंज ऑफ सैनिटरी सॉल्यूशंस चोगन परफ्यूम्स द फ्रेंच एडिशन फॉर हिम एंड हर।

0: Pepsi Prebiotic Cola in original and cherry vanilla. That Pepsi taste you love with no artificial sweeteners, only 30 calories, just 5 grams of sugar, and 3 grams of prebiotic fiber. That great Pepsi taste with even more to love. Pepsi Prebiotic Cola. Unbelievably Pepsi.
1: All sports, all the time, right here on TuneIn. Catch live sports talk, expert analysis, and nonstop discussion from your favorite stations, like ESPN Radio.
2: Not missed out on one player that the Yankees wanted.
1: Big 12 Radio.
3: Today is Big 12 Insiders game day. We're breaking
1: and
3: down.
1: Talk sports.
4: I just can't see a turnaround in the way that we're going to perform and result.
1: And much more. Get your head in the game and never miss a minute of the action. Just search sports or ask your device to play your favorite sports talk station on TuneIn.
5: गोल्डी छोले मसाले जहाँ जाए रिश्ते बनाए
6: गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश
7: एक एनकाउंटर जिस पर अपनों के बीच ही घिर गई है सम्राट सरकार एक एनकाउंटर जिस पर बीजेपी के भीतर ही मोर्चा बंदी हो रही है 5 दिन पहले यानी 17 जून को भरत तिवारी पर बिहार पुलिस गोलियां बरसाती है और अब 5 दिन बाद खुद बिहार पुलिस और बिहार सरकार पर सवालों की बौछार हो रही है एक बड़ा और संगीन सवाल भरत तिवारी के इस वीडियो की बुनियाद पर भी हो रहा है जो अभी अभी सामने आया है तो क्या भरत तिवारी को अंदेशा था कि उसकी मौत करीब आ रही है क्या उसे एहसास हो गया था कि वो इस तरह एनकाउंटर में मारा जाएगा भरत तिवारी की शख्सियत और अतीत विवादों से भरा है इसलिए इस वीडियो को लेकर भी दावा जोखिम भरा हो सकता है बीजेपी के भीतर इस एनकाउंटर को लेकर किस कदर बेचैनी है ये आप सम्राट सरकार के 2 मंत्रियों के बयानों से समझ सकते हैं इस एनकाउंटर पर सवाल उठाने वाले आक्रोश जाहिर करने वाले सिर्फ ये 2 मंत्री ही नहीं है बीजेपी नेताओं की लंबी फेहरिस्त है जो खुलकर नाराजगी जता रहे हैं रोहित सिंह पटना आज तक

0: We're leaders of independent and proud countries. We stand for our interests. I stand for the interests of Israel.
1: इसराइल किसी भी कीमत पर हिजबुल्ला को बख्शने के मूड में नहीं है और ईरान तब तक अमेरिका से कोई डील करने के मूड में नहीं है जब तक इसराइल लेबनन में सैन्य कार्रवाई रोक नहीं देता। डील को सील करने के लिए आतुर बैठे ट्रंप के लिए ये एक नई मुश्किल है जो इतनी आसानी से हल होने वाली नहीं है। लेकिन सवाल फिर वही है कि आखिर अपने बेहद करीबी देशों के प्रमुखों के साथ ऐसा क्यों करते हैं ट्रंप? अपनी इमेज बनाने के लिए, अपनी इमेज को बदलने के लिए या फिर दोस्तों को उनकी हदें बताने के लिए? आज तक ब्यूरो।

प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच चोगन परफ्यूम्स द फ्रेंच एडिशन फॉर हिम एंड हर।

लखनऊ अग्निकांड में 15 लोगों की मौत के बाद एक्शन, हादसे की जांच के लिए एसआईटी का गठन, 7 दिन में आएगी रिपोर्ट। बिल्डिंग मालिक समेत 4 गिरफ्तार, असिस्टेंट इंजीनियर और जूनियर इंजीनियर समेत 4 अधिकारी भी सस्पेंड। अग्निकांड में आंखें खोलने वाली पड़ताल, बिल्डिंग में एंट्री एग्जिट के एक ही रास्ते पर लगे थे इलेक्ट्रॉनिक पैनल, रिहायशी इलाके में बनी थी कमर्शियल इमारत।

टीएमसी के बागियों ने बनाया नया अध्यक्ष, तो ममता बनर्जी ने नियुक्त किए पार्टी के नए पदाधिकारी, खुद चेयरपर्सन और भतीजे को महासचिव बताया। फिरहाद समेत 8 नेताओं को कारण बताओ नोटिस।

तेज। पटना हाईकोर्ट में पीआईएल दायर कर निष्पक्ष जांच की मांग। बिहार राज्य मानवाधिकार आयोग ने भी लिया संज्ञान। 13 जुलाई तक रिपोर्ट तलब। देश के पश्चिमी इलाकों में मॉनसून देने वाला है दस्तक। अगले 24 घंटों में बारिश से तरबतर होंगे गुजरात और महाराष्ट्र। झमाझम बरसात में भीगी मुंबई।

0: दुनिया उजड़ गई।
1: सात दस दिन के बाद सब भूल जाते हैं।
2: तो पानी को है।

का स्वागत है। शुरुआत कर रहे हैं बड़ी खबर के साथ। उत्तर प्रदेश के लखनऊ के अलीगंज की बिल्डिंग में आग लगी और इससे 15 लोगों की मौत हो गई, जिसमें ज्यादातर युवा छात्र थे। इस हादसे की जांच के लिए SIT का गठन किया गया है। उधर अब तक की जांच में लखनऊ डेवलपमेंट अथॉरिटी यानी कि LDA और प्रशासन की बड़ी लापरवाही सामने आई है। पता चला है कि जो बिल्डिंग जलकर खाक हुई वो कभी रेजिडेंशियल यानी कि रिहाइश के मकसद से बनाई गई थी, लेकिन 2014 में बिना सही नियम कानून के इसे कमर्शियल कॉम्प्लेक्स में बदल दिया गया और यही लापरवाही 15 लोगों की युवाओं की मौत की वजह बन गई।

0: और रुक करते हैं इसी से जुड़ी एक बड़ी खबर का। लखनऊ अग्निकांड की जांच के लिए इस वक्त फॉरेंसिक की टीम मौके पर पहुंच चुकी है। आग कैसे लगी, क्यों लगी, इस बात का पता लगाने के लिए फॉरेंसिक जांच बेहद अहम होती है। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जो फॉरेंसिक टीम को लेकर जो वाहन वहां पहुंचा है उसकी और वहां पर टीम की मौजूदगी की। सुबह से ही वहां पर प्रेस वालों की तैनाती है, सब जांच के ऊपर क्या किया जा रहा है इस पर नजर गड़ाए बैठे हैं। और खबर जो आ रही है फॉरेंसिक टीम इस वक्त जांच के लिए मौके में पहुंच चुकी है। अब इसमें अहम ये हो जाता है कि जो लापरवाहियां हुई वो हुई, उसकी जिम्मेदारी तो तय की जानी ही चाहिए। एलडीए में किसकी गलती थी, निगम में किसकी गलती थी, सरकारों में किसकी गलती थी, ये सब जांच की जानी चाहिए। लेकिन ये भी जांच की जानी चाहिए कि आखिर ये आग किस लिए लगी, ताकि इस तरह की जो गलतियां होती हैं या जो वजह होती है उन्हें बाकी की बिल्डिंगों से दूर किया जा सके। आसपास कई ऐसी इमारतें और भी हैं जो कमर्शियल हैं। ये इलाका वैसे रिहाइश का है लेकिन वहां पर कमर्शियल काम चल रहा था और वो भी अवैध तरीके से। और ऐसे में क्या हुआ कि ये आग इतनी भयानक हो गई। बिल्डिंग का जो स्ट्रक्चर था, जो मानचित्र था, जो मैप था, जो पास करवाया गया था, क्या उसमें भी खामियां थी, क्या उससे कुछ छेड़छाड़ कर कुछ बाद में बदलाव किए गए थे। रिहायशी एक बिल्डिंग का कमर्शियल इस्तेमाल किया जाना ये तो सबको पता ही था। ये तस्वीरें देखिए किस तरीके से धू धू करके ये जली है बिल्डिंग। क्या वजह रही होगी कि चिंगारी पैदा हुई, आग लगी और इतनी भयानक आग लग गई कि 15 लोगों की इसमें मौत हो गई। तो जांच के लिए इस वक्त फॉरेंसिक की टीम वहां पर पहुंच चुकी है, जिसकी तस्वीरें इस वक्त आपको हम दिखा रहे हैं। और ये जांच करने की कोशिश की जाएगी जब एक बार जो आग ठंडी पड़ जाती है उसमें सबूत ढूंढे जाते हैं, किसी तरीके से एक ट्रेल ढूंढने की कोशिश की जाती है कि आखिर आग कहां से शुरू हुई होगी। और यही जांचने के लिए फॉरेंसिक जांच बेहद अहम हो जाती है। तफ्तीश में भी इस फॉरेंसिक जांच का की मदद मिलती है, इससे कम से कम जिम्मेदारी तय करने में मदद मिलती है कि आखिर गलती, लापरवाही, चूक किससे हुई। और यही वजह कि वहां इस वक्त फॉरेंसिक की टीम पहुंच चुकी है। एक्शन सरकार की तरफ से कल कुछ दिखा, जो एलडीए है यानी कि लखनऊ डेवलपमेंट अथॉरिटी, उसके एक असिस्टेंट इंजीनियर, एक जूनियर इंजीनियर के खिलाफ कार्रवाई की गई। लेकिन इसमें बहुत से ऊंचे पदों पर बैठे लोग भी हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई का क्या। इस वक्त हमारे सहयोगी संतोष शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं। संतोष, फोरेंसिक की टीम वहां पहुंच चुकी है, उसकी कोशिश क्या रहेगी।
1: देखिए, फॉरेंसिक की टीम यहां पर पहुंची हुई है। डायरेक्टर एफएसएल अपनी 6 सदस्यीय टीम के साथ पहुंचे हैं। तस्वीरों के जरिए दिखाते हैं कि फॉरेंसिक की टीम उस फ्लोर पर मौजूद है जहां पर ये आग लगी और लोग फंसे थे, और वहीं से लोग जो जिसको जो चीज मिली, चाहे वो तार हो, रस्सी हो, उससे कूद करके बाहर निकले। और ये फॉरेंसिक की टीम जांच कर रही है इस बात की कि आखिर आग लगी तो कहां से लगी, कैसे लगी, क्या वजह थी। शॉर्ट सर्किट था, और शॉर्ट सर्किट का वो पॉइंट क्या था, एसी का पैनल था, इलेक्ट्रिकल पैनल था, या फिर जो कमर्शियल एक्टिविटी के लिए जो स्विचेस थे वहां से कोई ऐसे छोटे शॉर्ट सर्किट ने इतना विकराल रूप धारण कर लिया। लिहाजा यही वजह है कि फॉरेंसिक की टीमें लगातार जांच कर रही हैं। डायरेक्टर एफएसएल खुद पहुंचे हुए हैं, उनके साथ फोटोग्राफी वीडियोग्राफी भी करवाई जा रही है, एक एक कोने की फोटोग्राफी वीडियोग्राफी करवाई जा रही है, ताकि जब दोबारा से क्राइम सीन कहा जाए, जो प्लेस ऑफ इंसिडेंट है, उसको समझने की जरूरत पड़े तो उस वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी के जरिए समझा जा सके। तो एक एक चीज की फोटोग्राफी वीडियोग्राफी हो रही है, लोकल पुलिस मौजूद है, डायरेक्टर एफएसएल खुद पहुंचे हैं, उनके साथ उनके 6 सदस्यीय टीम पहुंची हुई है और ये पड़ताल कर रही है कि आखिर इस आग की वजह क्या थी, कैसे आग लगी, किस जगह से आग लगी, किन वजहों से आग लगी, और क्या वजह थी जिसकी वजह से आग और धुएं ने 15 लोगों की जान चली गई।
0: ये सबसे बड़ी, आप हमारे साथ बने रहे, आपके पास लौट कर आते हैं। बड़ी खबर इस वक्त दे देते हैं। लखनऊ में हुए दर्दनाक हादसे की जांच के लिए सरकार ने एसआईटी का गठन कर दिया है। इस बीच 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। साथ ही लखनऊ डेवलपमेंट अथॉरिटी यानी कि एलडीए के एक असिस्टेंट इंजीनियर, एक जूनियर इंजीनियर समेत 4 कर्मचारियों को सस्पेंड किया गया है। बिजली विभाग के अधिकारियों पर भी कार्रवाई की गई है। और और उधर लखनऊ अग्निकांड में 15 छात्रों की मौत के बाद बिल्डिंग के सह मालिक सुरेंद्र शुक्ल का पुराना रिकॉर्ड सामने आया है। सुरेंद्र शुक्ल का नाम साल 2015 के सीपीएमटी पेपर लीक मामले में भी सामने आया था। उस पर आरोप था कि अपनी बेटी को परीक्षा में पास कराने के लिए पेपर लीक की साजिश की थी।
2: गरीब जनता के, आम जनता के हित के लिए खड़ा किया और आज उन्हीं की देन है कि जम्मू कश्मीर भारत का सिरमौर बना है और हम सब उत्तर प्रदेश के लोग, लखनऊ के लोग आज दुख के क्षण में हैं। कल की घटना बहुत ही हृदय विदारक थी। घटना के जांच के आदेश उच्च स्तरीय दिए गए, एसआईटी बनाई गई है और जांच रिपोर्ट आने के बाद और भी कड़ी कार्रवाई होगी। संबंधित जिम्मेदार लोगों पर गिरफ्तारी हुई, कार्रवाई हुई है। हम पीड़ित परिवारों के साथ खड़े हैं। सरकार हर स्थिति में पीड़ित परिवारों के साथ खड़ी रहेगी। पुनरावृत्त ऐसी घटनाओं की न हो, ऐसी भी कार्रवाई करने के लिए संबंधित विभागों को कहा गया है।
3: घायलों के भी क्या,
2: जो दो घायल हैं, एक घायल, दोनों खतरे से बाहर है। एक घायल के अधिक चोट है, उसके रीढ़ की हड्डी में फ्रैक्चर है और एक घायल एकदम ठीक है, उसके टांग में रैप्चर है और दोनों घायल खतरे से बाहर है, लेकिन उनका बेहतर से बेहतर इलाज चल रहा है। 7 घायलों को अस्पताल से फर्स्ट एड के बाद छुट्टी दे दी।
0: तो सरकार की तरफ से कुछ भी कहा जाए, सवाल बड़ा यही है कि आखिर ये शख्स कौन था जिसकी ये बिल्डिंग थी। और अब सामने आ रहा है कि लखनऊ अग्निकांड में 15 छात्रों की मौत के बाद बिल्डिंग के सह मालिक सुरेंद्र शुक्ला का पुराना रिकॉर्ड भी है। सुरेंद्र शुक्ला का नाम साल 2015 के सीपीएमटी पेपर लीक मामले में सामने आया था। उन पर आरोप था कि बेटी को परीक्षा में पास कराने के लिए पेपर लीक की साजिश रची गई थी। इस मामले में एफआईआर दर्ज हुई थी, लेकिन एसटीएफ जांच में पर्याप्त साक्ष्य न मिलने पर सुरेंद्र शुक्ला को राहत मिल गई थी। अब जानकारी जो है उसके मुताबिक सुरेंद्र शुक्ला और उसके भाई वीरेंद्र शुक्ला पर प्रॉपर्टी कारोबार के जरिए करोड़ों रुपए गलत तरीके से कमाने के आरोप भी लगते रहे हैं। दोनों भाइयों ने कथित तौर पर किसानों से सस्ती जमीन खरीदकर बड़े पैमाने पर प्लॉटिंग का कारोबार किया। तो सवाल ये उठ रहे हैं कि आखिर सुरेंद्र शुक्ला क्या पहले से ही गलत कामों में लिप्त रहा और अब उसकी इस बिल्डिंग की आग से शिकंजा उस पर कस रहा। चलिए एक बार फिर से रुक करते हैं हमारे सहयोगी संतोष शर्मा का, जो इस वक्त उसी बिल्डिंग के बाहर मौजूद है कल जहां पर हादसा हुआ। संतोष, सवाल ये भी है कि सुरेंद्र शुक्ल और उसके साथ जो दूसरा बिल्डिंग का मालिक था, उन पर भी सवाल उठ रहे हैं कि ये बिल्डिंग 2014 के बाद बनकर तैयार हुई और इसको रिहाइश से कमर्शियल बनाया गया। ये दो आरोपी तो है ही, लेकिन वो आरोपी भी होने चाहिए जिन्होंने इनको ये मंजूरी दी।
1: देखिए बिल्कुल, ये बिल्डिंग जो बनाई गई वो रिहायशी इलाके में बनाई गई, पूरा रेजिडेंशियल इलाका है। अलीगंज के सेक्टर डी का ये इलाका है जहां पर रेजिडेंशियल है और ये तस्वीरों से भी आपको समझाते हैं। देखिए आसपास आपको जो रिहायशी इलाके हैं, यानी कि लोगों के मकान बने हुए हैं और इस रिहायशी इलाके में इस कॉम्प्लेक्स को बनाया गया, लेकिन इसका जो नक्शा था वो रेजिडेंशियल में पास करवाया गया। एलडीए के द्वारा ये नक्शा पास कराया गया 2014 में रेजिडेंशियल नक्शे में, लेकिन ये बनाया गया कॉमर्शियल एक्टिविटी के लिए और कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्स बना दिया गया। और ये अकेला नहीं है, इसके बगल में आप देखिए दूसरा कॉम्प्लेक्स भी, ये भी रेजिडेंशियल है, ये भी रेजिडेंशियल इलाके में ये कॉम्प्लेक्स बना हुआ है, यहाँ पे भी कॉमर्शियल एक्टिविटी हो रही है। तो जाहिर सी बात है कि ये अकेला नहीं है, यहाँ पे और तमाम रिहायशी परिवार रह रहे हैं। तो इसलिए इस पूरे मामले में जो लापरवाही है उन अधिकारियों की है जिन्होंने इस रेजिडेंशियल इलाके में रेजिडेंशियल नक्शे को पास तो किया, लेकिन ये देखने की जहमत नहीं उठाई कि यहाँ पर ये रेजिडेंशियल रेजिडेंसी बन रहा है या कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्स, इसको जहमत नहीं उठाई, या फिर जहमत उठाई भी तो कुछ ले देकर आंखें मूंद ली।
0: जी बिल्कुल, सवाल यही बनता है कि आखिर किस किस ने लापरवाही की, सरकार में, एलडीए में, सब ने, किसने लापरवाही की। अब बढ़ते हैं दूसरी बड़ी खबर की तरफ। साल 2022 में पार्टी टूटी, 40 विधायकों ने साथ छोड़ा। एक दिन पहले 6 सांसद भी उद्धव ठाकरे से अलग होकर एकनाथ शिंदे के साथ हो गए। लेकिन अब इस घटनाक्रम के बीच महाराष्ट्र की सियासत से बड़ी खबर आ रही है। उद्धव ठाकरे को एक और झटके की चर्चा तेज हो गई है। अटकलें हैं कि कुछ विधायक और एमएलसी उद्धव की पार्टी छोड़ सकते हैं। दरअसल सोमवार को 6 सांसदों की बगावत के बीच शिवसेना यूबीटी की अहम बैठक बुलाई गई थी, जिसमें 3 विधायक और विधान परिषद के 1 सदस्य नहीं पहुंचे, जिसे लेकर राज्य में चर्चाएं तेज हो गई हैं। हालांकि दावा यही है कि इन विधायकों ने अपनी गैर हाजिरी के बारे में पार्टी को पहले ही बता दिया था, लेकिन ये और वजह बता दी थी कि वो बैठक में क्यों नहीं आ पाएंगे। उन्होंने अपनी गैर मौजूदगी के लिए एमएलसी चुनाव, खराब सेहत और निजी कामों का हवाला दिया, यानी कुछ वैसा ही जैसा शिवसेना यूबीटी के 6 सांसदों की टूट से ठीक पहले हुआ था। तो शिवसेना यूबीटी के 6 सांसदों के पार्टी छोड़ने के बाद शिवसेना विधायक मुरजी पटेल के ओर से एक बड़ा दावा किया जा रहा है। मुरजी पटेल ने कहा कि एकनाथ शिंदे उद्धव ठाकरे की पार्टी के खिलाफ ऑपरेशन टाइगर 3 की तैयारी में हैं। क्या होगा ऑपरेशन टाइगर 3, ये बड़ा सवाल है।

0: इसके बाद ऑपरेशन तीन की तैयारी माननीय एकनाथ साहब की शिंदे साहब के नेतृत्व में होने जा रही है। अभी जब उनके साथ पास थे तभी अच्छे थे, अभी गए तो बुराई कर रहे, कहीं ना कहीं गलत है, उनको संभालने नहीं आया, इसके लिए हमारे पास आए हैं और पूरा ध्यान पार्टी उनका रखे।
1: और इस पर ज्यादा जानकारी के लिए आइए सीधा रुख करते हैं हमारे सहयोगी दीपेश त्रिपाठी का। दीपेश, बड़ा सवाल यह है कि ऑपरेशन थ्री क्या होगा? सांसद तोड़ लिए तो अब आगे किन्हें तोड़ा जाएगा?
2: जी अंजलि, बिल्कुल, देखिए भले ही कल एकनाथ शिंदे ने ये कहा हो कि ऑपरेशन टाइगर पूरा हुआ, लेकिन उन्होंने ये नहीं कहा कि इस पर पूर्ण विराम लग गया है। जबकि उन्होंने इस जब पत्रकार परिषद ली जब बात की तब उन्होंने कहा कि अभी और भविष्य में बहुत कुछ देखना बाकी है, ये तो सिर्फ ट्रेलर है। उन्होंने साफ तौर पर, एकनाथ शिंदे ने भी ये कल मंच से कहा था कि शिवसेना यूबीटी के कुछ विधायक जो हैं वो उनके संपर्क में हैं और वो भी आना चाहते हैं, कुछ एमएलसी हैं वो उनके संपर्क में हैं वो आना चाहते हैं। तो उन्होंने सबसे बड़ा एक चौंकाने वाला दावा एक और किया था जिसमें उन्होंने कहा था कि शिवसेना यूबीटी के एक और सांसद थे जो उनके संपर्क में थे पर वो कैबिनेट सीट मांग रहे थे, इसी पर लेकर चर्चा अटक गई और वो नहीं आए, वरना 6 की जगह 7 सांसद आज शिंदे गुट के साथ जुड़ जाते। तो कहीं ना कहीं एकनाथ शिंदे ने खुद भविष्य में किस तरीके से महाराष्ट्र की राजनीति अनिश्चित तौर पर चलेगी कुछ कहा नहीं जा सकता, क्या बड़े हलचले महाराष्ट्र की राजनीति में देखने को मिलेगी, इसके संकेत कल खुद ही साफ तौर पर दे दिए थे। अब देखना होगा शिवसेना यूबीटी इस आने वाले संकट को किस तरीके से टैकल करती है, क्या उनका प्लान होगा।
1: शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए। तो सिरदर्द अभी खत्म नहीं हुआ है उद्धव ठाकरे का। शिवसेना यूबीटी के 6 बागी सांसदों ने बगावत कर एकनाथ शिंदे का दामन थाम लिया। शिवसेना छोड़ने वाले सांसदों में संजय दीना पाटिल, संजय देशमुख, संजय जाधव, भाऊ साहेब वागचौरे, नागेश बापूराव पाटिल अष्टिकर और ओम प्रकाश राजे निम्बालकर शामिल हैं। इस दौरान एकनाथ शिंदे ने कहा कि ये सभी 6 सांसद असली शिवसेना में शामिल हुए हैं, उनके साथ सिर्फ एक नहीं बल्कि 6 टाइगर मौजूद हैं। एकनाथ शिंदे ने कहा कि हमने इस बार सिक्सर मारा है।
3: 4 वर्षापूर्वी 22 जून 2022 में लौटत शिवसेने आम्ही उठाव केला होता, तेव्हा 40 आमदार सोबत सुरुवातीला होते आणि पुन्हा चौकार नाही षटकार आता मारलेला आहे, म्हणजे काय म्हणतो त्याला, सिक्सर।
1: अब 6 सांसदों के शिंदे गुट में आने से एकनाथ शिंदे की सियासी ताकत में काफी इजाफा हुआ है, न केवल सूबे की सियासत में बल्कि एनडीए में भी एकनाथ शिंदे का कद बढ़ा है, जिसका असर आने वाले दिनों में प्रदेश के साथ साथ देश की सियासत पर भी दिख सकता है।
3: एकनाथ शिंदे तुमच्या पाठीशी खंबीरपणे उभा आहे, शिवसेना तुमच्या पाठीशी खंबीर, काही लोक म्हणतात आम्ही कोणालाही अडवायला नाही तुडवायला नाही, आम्ही शिवसेना वाढवायला आलेलो आहे, पण आम्ही कुणाचे आडवे जात नाही, पण आमच्याही कोणी आडवं येऊ नये, आडवं आलं तर बाळासाहेबांनी सांगितलं आहे, आलं अंगावर तर या शिंगावर। 40 आमदार होते, 60 आमदार निवडून आले, गावी गेलो की पोटदुखी होते काही लोकांना इकडे, ठीक आहे, पण लोकांच्या जनतेच्या दरबारामध्ये देखील लोकांनी आम्हाला स्वीकारलं, पाठिंबा दिला।
1: और अब बड़ी खबर बंगाल से। पुलिस ने गिरफ्तार तृणमूल नेता सब्यसाची दत्ता से जुड़े एक और तलाशी अभियान में करीब 3.5 किलो सोना बरामद किया है। सोमवार रात अधिकारियों ने करीमपुर में सब्यसाची दत्ता की परिचित एक महिला और उसके ससुराल की तलाशी ली थी, जहां से 3.5 किलो सोना बरामद किया गया है। तो ये तस्वीरों में आप देख रहे हैं 3.5 किलो सोने की रिकवरी हुई है पुलिस की तरफ से। सब्यसाची दत्ता के करीबी माने जाने वाले लोगों के घर से जांच के दौरान टीएमसी के नेता सब्यसाची दत्ता, जिनके खिलाफ पुलिस कार्रवाई कर रही है, वहां ये बरामदगी हुई है।
4: भी ना।
1: तो विधानसभा चुनाव हारने के बाद टीएमसी के भीतर चल रहा राजनीतिक विद्रोह और तेज हो गया है। एक दिन पहले बागी गुट ने, जो उनके नेता है मित्रव्रत बैनर्जी ने, टीएमसी की पैरेलल वर्किंग कमेटी का ऐलान कर दिया। विधायक अरूप रॉय अध्यक्ष चुने गए हैं। इसे ममता बैनर्जी को अब तक की सबसे बड़ी चुनौती माना जा रहा है। कोलकाता में हुए विशेष अधिवेशन में बागी खेमे के विधायक, पार्षद और दूसरे नेता उसमें शामिल हुए। बैठक के बाद ऋतव्रत ने इस बारे में जानकारी भी दी। उन्होंने ये भी कहा कि ममता दीदी चाहे तो हमारी मुख्य सलाहकार बन सकती हैं।
5: यहाँ पर ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस का जो स्पेशल सेशन का आयोजन किया गया था, उस स्पेशल सेशन में डेलीगेट लोग यूनानिमसली ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस कमेटी और NWC इसका चुनाव हुआ है, गठन हुआ है। श्री अरूप राय जो पहला दिन से 1998 का पहला दिन से जो 138 एविडेविट हुआ था, हर में अरूप राय जी का सिग्नेचर है। तो अरूप राय जी हमारा ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस का चेयरपर्सन चुने गए हैं। बार बार हम लोग पहले भी बोल चुके हैं, हम लोग चाहते हैं दीदी जो मार्गदर्शक का जिम्मेवारी निभाए, हमारा मार्गदर्शन करे।
1: तो इस बीच बड़ी खबर आ रही है कि ममता की टीएमसी ने भी अपनी राष्ट्रीय कार्यकारिणी का पुनर्गठन कर दिया है, जिसमें 24 सदस्य हैं। कमेटी में ममता बैनर्जी को अध्यक्ष और अभिषेक बैनर्जी को महासचिव बनाया गया है। इसकी जानकारी उन्होंने इलेक्शन कमीशन को भी दे दी। वक्त एक छोटे से ब्रेक, ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला जारी है, आप देखते रहिए आज तक।
6: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोस। चोगन परफ्यूम्स, द फ्रेंच एडिशन फॉर हिम एंड हर।
7: It's Stormy, and previously on my show, Carly Pearce shared why she loves award show season.
8: For me, celebrating the people who create country music is about celebrating each other and rooting each other on and being a country music family and community and knowing that we are the generation right now that is going to influence many generations to come.
7: Listen to the Stormy Warren Show on the Big 615 weekdays 7 a.m. to 1 p.m. Central right here on TuneIn.
9: Harpal banao, Kesri Tewahar. Vimal, bolo zuban Kesri.
10: Bahut tired ho gayi.
11: Take a date, not bites.
12: No added sugar, preservative के बिना डेट्स, बादाम, पिस्ता, काजू और शहद से तैयार किया गया लायन डेट्स नट बाइट्स।
11: लायन डेट नट बाइट्स।
13: जब बात हो सोयाबीन के खेतों को खरपतवार से बचाने की, तो हर असली हीरो की पहली पसंद है क्रिस्टल क्रॉप का अमोरा। अमोरा तेज तरार वार, हारे अब खरपतवार, देश के हीरो की पहली पसंद।
14: गोल्डी छोले मसाले जहाँ जाए रिश्ते बनाए।
15: गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश।
16: 11 मई आज तक पर पेपर लीक कनेक्शन का पर्दाफाश।
17: नीट की परीक्षा से पहले एक गेस पेपर धड़ल्ले से मोबाइल पर बंटता है, 135 सवाल उसी गेस पेपर से हूबहू मिलते हैं।
18: 15 दिन पहले से पूरे देश में बट रहा था, एनटीए को पता नहीं।
16: 12 मई आज तक के खुलासे पर मुहर।
19: जिम्मेदारी लेते हैं कि जो हुआ गलत हुआ।
17: आज तक की खबर के बाद आज सरकार की तरफ से एक्शन हुआ, एनटीए जागी, पेपर रद्द हुआ। हमने आज तक पर लगातार दस्तक दी है, खबरदार किया है, हर दल की सरकार को जगाया है, बताया है कि पेपर लीक रोक लीजिए वरना बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ होता रहेगा।
16: जहां खबर वहां खबरदार।
20: इन एसोसिएशन विद E3HDMR ये रिश्ता लंबा चलेगा।
21: आज तक ला रहा है आपके लिए वीडियो वाला पेपर, हर रोज सुबह आपके मोबाइल पर, वो भी आपके पुराने न्यूज़पेपर से पहले। इसे पढ़ने के लिए अपने डिवाइस पर epaper.aajtak.in टाइप करें या फिर स्क्रीन पर दिए हुए QR कोड को स्कैन करें।
22: जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए श्री संत का।
23: प्लीज बजीपा, प्लीज डू ललन टॉक शो, इट्स अ रिक्वेस्ट एंड प्लीज टू स्पीक ट्रूथ।
24: अप्रैल 2026 में उन्होंने एक रिटेल कंपनी का ऐड किया।
23: ऐसे हरकतें आप करोगे आपके भाई के साथ, आई चैलेंज यू बजीपा। अगर आपको इतना प्रॉब्लम है तप्पड़ खांड से और आप इतना कमा रहे हो, हमें भी तो कमाने दो। आओ ना रिंग में, वेट कम।
25: समाजवादी पार्टी
0: रामनवमी पर तो विरोध करती ही करती थी, श्री कृष्ण जन्माष्टमी के मनाने पर भी रोक लगाती थी, कावड़ यात्रा भी नहीं होने देती थी, गरीब को राशन नहीं मिलता था, गरीब को आयुष्मान की सुविधा का लाभ नहीं मिलता था, गरीब के लिए आवास की सुविधा नहीं थी, गरीब के घर में शौचालय की सुविधा भी नहीं थी, गरीब को एलपीजी के सिलेंडर की सुविधा भी नहीं थी, तब बिजली भी नहीं थी, क्योंकि ये कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के लोग और बहुजन समाज पार्टी के लोग तो अंधेरे में रहकर रहने के आदि थे, क्योंकि अंधेरे में ही इनकी डकैती कुशलता पूर्वक पड़ जाती थी, इसीलिए चाहते ही नहीं थे कि बिजली आए, गरीब को तबाह करते थे। आज मैं कह सकता हूं, आज मैं कह सकता हूं, प्रदेश के अंदर 15 करोड़ गरीबों को फ्री में राशन की सुविधा का लाभ मिल रहा है, 10 करोड़ लोगों को आयुष्मान भारत में 5 लाख रुपए की मुफ्त में स्वास्थ्य की सुविधा प्राप्त हो रही है।

प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा। चोगन परफ्यूम्स, द फ्रेंच एडिशन फॉर हिम एंड हर।

प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाएं स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा। चोगन परफ्यूम्स, द फ्रेंच एडिशन फॉर हिम एंड हर।

अग्निकांड अग्निकांड में 15 लोगों की मौत के बाद एक्शन। हादसे की जांच के लिए एसआईटी का गठन। 7 दिन में आएगी रिपोर्ट। बिल्डिंग मालिक समेत 4 गिरफ्तार। एई और जेई समेत 4 अधिकारी भी सस्पेंड। अग्निकांड में आंखें खोलने वाली पड़ताल। बिल्डिंग में एंट्री एग्जिट के एक ही रास्ते पर लगे थे इलेक्ट्रिक पैनल। रिहायशी इलाके में बनी थी कमर्शियल इमारत। अरबपति बिल्डिंग माफिया पर एफआईआर दर्ज। टीएमसी के बागियों ने बनाया नया अध्यक्ष, तो ममता बैनर्जी ने नियुक्त किए पार्टी में नए पदाधिकारी। खुद चेयरपर्सन और भतीजे को महासचिव बताया। फिरहाद समेत 8 नेताओं को कारण बताओ नोटिस जारी। भरत तिवारी एनकाउंटर को लेकर बिहार में सियासत तेज। पटना हाईकोर्ट में पीआईएल दायर कर निष्पक्ष जांच की मांग। बिहार राज्य मानवाधिकार आयोग ने भी लिया संज्ञान। 13 जुलाई तक रिपोर्ट तलब।

0: की आग लग गई भैया, जल्दी से आ जाओ, बस हम लोग भाग गए, बस इतना, बस उसके बाद बात नहीं हुई है।
1: सवाल है जो आज तक पूछ रहा है। पहला सवाल यह है कि 15 मौतें जो हुई है उसका आखिर कसूरवार कौन है? यह हादसा माना जाए या हत्या माना जाए, यह भी एक सवाल बनता है। कैसे लक्षागृह बन गई एक इमारत जो कमर्शियल तौर पर चल रही थी, कदम कदम पर घनघोर लापरवाही सामने आ रही है। बड़ा सवाल यह भी है कि इस बिल्डिंग का कोई फायर एनओसी भी नहीं था तो कैसे चल रही थी? ना कोई आग बुझाने के इंतजाम थे और ना बाहर निकलने का कोई दूसरा रास्ता था। ऐसे में यह अग्निकांड है या हत्याकांड, यह सवाल आज तक पूछ रहा है। तो लखनऊ अग्निकांड को लेकर उत्तर प्रदेश से दिल्ली तक अब हड़कंप मचा हुआ है। अब तक 15 लोगों की मौत हो चुकी है और 9 लोग गंभीर रूप से घायल है। लेकिन सवाल यह उठ रहा है आखिर इस अग्निकांड का कसूरवार कौन है? यूपी सरकार ने जांच के लिए एसआईटी टीम का गठन कर दिया है, साथ ही बिल्डिंग मालिक समेत 4 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है, वहीं 4 अफसरों को भी सस्पेंड कर दिया गया है। अब अग्निकांड को लेकर लखनऊ विकास प्राधिकरण यानी कि एलडीए की लापरवाही पर भी सवाल उठ रहे हैं, साथ ही सवाल उठ रहे हैं कि क्या सस्पेंड करने से इस अग्निकांड की भरपाई हो जाएगी। बड़ी खबर आ रही है कि लखनऊ अग्निकांड को लेकर हैरान करने वाला खुलासा सामने आ रहा है। आज तक से बातचीत में किंग जॉर्जेस मेडिकल कॉलेज की वाइस चांसलर सोनिया नित्यानंद ने कहा है कि 15 लोगों की मौत जलने से नहीं बल्कि दम घुटने से हुई है। बताया जाता है कि आग लगने से एनिमेशन सेंटर का दरवाजा लॉक हो गया था, इसकी वजह से धुएं से दम घुट गया। एनिमेशन सेंटर का जो दरवाजा था उसमें शायद ऑटोमेटिक एक्सेस सिस्टम था। तो सवाल ये उठ रहे हैं कि अगर जलने से मौत नहीं हुई दम घुटने से हुई तो क्या कोई एक्शन लिया जा सकता था?

0: एक लड़की थी जिसको जो घायल हुई, उसको बहुत विशेष चोट नहीं आई है, बाएं डोर उसमें चोट आई है। और जो एक लड़का है उसमें से, उसको रीढ़ की हड्डी फ्रैक्चर कर गई है और वो लोअर लिम्ब्स उसकी पैरालाइज्ड, और 15 जो है वो डेड लाए गए हैं, और वो 15 के 15 स्मोक से सड़क जले हुए नहीं आए।
1: तो सवाल ये बनता है कि अगर जले नहीं तो मौत कैसे हुई? डॉक्टर कहते हैं कि दम घुटने से हुई। तो ये लखनऊ के कमर्शियल कॉम्प्लेक्स में आग लगने के बाद जब अंदर हड़कंप मचने लगा और लोग जान बचाने की जद्दोजहद में लगे हुए थे और चीख पुकार मचने लगी, तब फायर ब्रिगेड और पुलिस की टीम ने पीछे की दीवार तोड़कर राहत और बचाव कार्य शुरू किया, जिसके बाद कई लोगों को बचाया गया। ये तस्वीर आपको तब की ही दिखा रहे हैं। वहीं उस जगह जाकर हमारे संवाददाता संतोष शर्मा ने जायजा लिया है, देखिए उनकी ये रिपोर्ट। तो ये तस्वीर पहले आपको एक बार दिखा देते हैं उस वक्त की जब दीवार तोड़ी गई और लोगों को निकाला गया। ये जो बिल्डिंग है ये सटी हुई बिल्डिंग थी जिस इमारत में आग लगी थी उसके साथ। पुलिस वाले वहां बड़ा हथौड़ा लेकर पहुंचे, किसी तरीके से उस दीवार को तोड़ा गया और उसके बाद साथ की बिल्डिंग को एक्सेस किया गया और वहां से लोगों को निकालने की कोशिश की गई। तो इससे एक बात साफ होती है कि जलती हुई बिल्डिंग में घुसने का न निकलने का कोई रास्ता रह गया था। एक ही रास्ता था जो संकरा था, उसमें भी चीजें रखी हुई थी और बंद हो जाने की वजह से वहां से कोई निकल नहीं पाया। कई सवाल उठ रहे हैं कि आखिर कैसे कमर्शियल ऑपरेशन चल रहा था इस बिल्डिंग में जो बनी तो रिहाइश के लिए थी। ऐसे में जाहिर तौर पर ना कोई फायर का एनओसी था।
2: मैं इस समय पर उसी कॉम्प्लेक्स के बगल की छत पर मौजूद हूं। ये सामने की सड़क है, सामने की सड़क से ये कॉम्प्लेक्स, और कॉम्प्लेक्स का जो एंट्री एग्जिट पॉइंट था वो एक था। अब जब फायर विभाग की टीम को इस पूरे मामले में जानकारी दी गई तो 2 मिनट में 2 गाड़ियां पहुंची, उसके बाद आसपास के इलाके की गाड़ियां पहुंचाई गई। फायर विभाग के लोग अंदर जाने के लिए मशक्कत कर रहे थे, अंदर नहीं जा पा रहे थे, धुआं इतना ज्यादा था। तब फायर विभाग के लोग इस बगल की छत पर चढ़े और ये छेद किए गए, या आप जो 2 छेद 1 2 3 ये 3 छेद किए गए। इन छेद के जरिए उन लोगों को निकाला गया, फायर विभाग के लोग अंदर जा सके। लेकिन जितनी आसानी से मैं बता रहा हूं कि ये दीवार तोड़कर छेद किए गए, इस पूरे काम को करने में घंटों की मशक्कत लग गई। दीवार तोड़कर छेद बनाने में मशक्कत लग गई। आपको दूसरे हिस्से में भी ले चलते हैं। ये पूरा इलाका है और कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्स बना करके तैयार किया गया था। आसपास आप देखिए, सिर्फ रेजिडेंशियल इलाका है, रेजिडेंशियल इलाका है, लोगों के घर बने हुए हैं, स्कूल बना हुआ है, ये तमाम लोगों के मकान बने हैं। और इसी मकान की कॉलोनी रिहायशी इलाके के बीच में ये एक कॉम्प्लेक्स था, वो उसी दूसरे हिस्से में आ गए हैं हम। ये जो छेद है, ये ऐसे 4 छेद बनाने पड़े फायर विभाग के लोगों को, आसानी से वो भी नहीं बने। और ये यहां से देखे, 3 यहां से देख रहे हैं, 1 उस तरफ है, तो 4 छेद बना करके जो ईंटें थी उनको हटाया गया ताकि जो धुआं था वो निकल सके, फायर विभाग के लोग अंदर जा सके, फायरमैन अंदर जा सके, लोगों को निकाला जा सके, और यहीं से उनको निकाला गया।
1: लखनऊ के इस अग्निकांड को लेकर अब कई सवाल उठ रहे हैं। पहला सवाल तो यह है कि अगर रेजिडेंशियल बिल्डिंग थी और उसी की परमिशन थी तो वहां पे कमर्शियल कॉम्प्लेक्स कैसे बन गया? दूसरा सवाल यह है कि नक्शा जो था उसके हिसाब से, जो कि एक रेजिडेंशियल नक्शा था, तो फिर कॉम्प्लेक्स कैसे बन गया? सवाल तीसरा यह कि बिल्डिंग के पास फायर एनओसी क्यों नहीं था? होता भी कैसे? रेजिडेंशियल की परमिशन थी। सवाल चौथा यह है कि फायर विभाग ने बिल्डिंग की जांच क्यों नहीं की? क्या उन्हें नहीं दिख रहा था कि यहां पे क्या चल रहा है? पांचवा सवाल, बिल्डिंग में कोई इमरजेंसी एग्जिट क्यों नहीं थी? उनकी भी जिम्मेदारी बनती है जो कमर्शियल कॉम्प्लेक्स चला रहे थे। सवाल छठवां कि बिल्डिंग के एकमात्र रास्ते पर इलेक्ट्रॉनिक पैनल क्यों रख दिए गए? क्यों रास्ता बाधित था? सवाल सातवां, LDA यानी कि लखनऊ विकास प्राधिकरण के अधिकारियों ने कॉम्प्लेक्स की जांच क्यों नहीं की? उन्हें मालूम था कि ये रेजिडेंशियल बिल्डिंग है और इस पर चल रही थी एक कमर्शियल व्यवस्था। और इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है, आइए सीधा रुक करते हैं उसी का। लखनऊ अग्निकांड को लेकर SIT टीम ने अपनी जांच, कहा जा रहा है कि तेज कर दी है। एक SIT को बनाया गया है, इसे गठित किया गया है और अब एसआईटी टीम घटना स्थल के लिए रवाना हो चुकी है। हमारे सहयोगी संतोष इस वक्त वहीं पर मौजूद है और सीधा उन्हीं का रुख करते हैं, तो एसआईटी टीम भी वहां पहुंचने वाली है। संतोष
2: देखिए, बिल्कुल एसआईटी की टीम पहुंचेगी, जांच करेगी। दो अधिकारियों के आईएएस अमृत अभिजात और आईपीएस प्रवीण कुमार की अगुवाई में एसआईटी गठित की गई है, जिसको 7 दिनों में ये रिपोर्ट देनी है कि आखिर ये कॉम्प्लेक्स कैसे बना, क्या इसमें खामियां थी, इसमें क्या सेफ्टी मेजर्स नहीं लिए गए और ये हादसे की वजह क्या थी और भविष्य में कैसे इन हादसों को रोका जाए। लेकिन उससे एसआईटी से पहले फॉरेंसिक की टीम अंदर है। फॉरेंसिक के डायरेक्टर एफएसएल अपने 6 सदस्यीय टीम के साथ एक एक चीज का बारीकी से मुआयना कर रहे हैं। फॉरेंसिक की टीम सबसे महत्वपूर्ण इसलिए हो जाती है क्योंकि यही वो टीम है जो बताएगी कि आखिर ये आग कहां से लगी, कहां से फायर का ओरिजिन हुआ, कहां से वो शॉर्ट सर्किट था तो एसी का पैनल शॉर्ट सर्किट हुआ या फिर इलेक्ट्रिकल जो कंट्रोल पैनल बनाया गया वो शॉर्ट सर्किट हुआ। यही वजह है कि एक एक पैनल के की जांच की जा रही है। जो फॉरेंसिक के एक्सपर्ट्स हैं, जो टीमें हैं, वो एक एक चीज की वीडियोग्राफी कर रही हैं, फोटोग्राफी कर रही हैं, ताकि ये समझा जा सके कि आखिर ये घटना हुई तो कैसे हुई और आग के साथ धुआं किस वजह से फैल गया। क्योंकि धुआं फैलने के भी अपने कारण होते हैं कि वहां पे प्लास्टिक ज्यादा था जिसकी वजह से आग के पहले धुआं इतना घनघोर हो गया और इसके बाद धुएं के अलावा जो फायर एग्जिट का जो नॉर्म्स होते हैं किसी भी बिल्डिंग से बाहर निकलने के वो कितना पालन किया गया, तो वो तो सामने ही दिख रहे हैं उसमें। ये देखिए सामने जिस जगह पर आपको फॉरेंसिक की टीम और लोकल पुलिस नजर आ रही है, यही एक एंट्री एग्जिट पॉइंट था और ऊपर एसी के पैनल एग्जॉस्ट लगाए हैं। वहां पे फॉरेंसिक की टीम जांच कर रही है कि यहां से तो नहीं फायर का ओरिजिन हुआ, यहां से तो आग लगना शुरू नहीं हुआ। लेकिन आग सबसे ज्यादा जो भयानक थी वो दूसरी मंजिल पर लगी थी और उसी दूसरी मंजिल से कूद कर लोग जान बचाई कुछ लोगों ने और 15 लोगों की दम घुटने से मौत हो गई। तो अब इस पूरे मामले में फॉरेंसिक की टीम यहां पर पहुंच चुकी है, एसआईटी की टीम पहुंचेगी, वो अपनी पड़ताल करेगी, लेकिन टेक्निकली फॉरेंसिक की टीम की पड़ताल शुरू हो चुकी है।
1: जी शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए। तो लखनऊ और अग्निकांड पर दनादन एक्शन अब हो रहा है, 4 गिरफ्तारी हो गई है, 4 लोगों को सस्पेंड कर दिया गया है और क्या कुछ हुआ है देखिए इस रिपोर्ट में।
3: धू धू कर जलती इमारत, रस्सियों के सहारे जान बचाने की जद्दोजहद, शीशा तोड़कर ऊपरी मंजिल से कूदते छात्र, दिल दहलाने वाली ये चंद तस्वीरें हैं लखनऊ के उस अग्निकांड की जिसमें 15 जिंदगियां खाक हो गई जबकि 9 जख्मी हो गए। मारे गए ज्यादातर छात्र थे जिनकी उम्र 20 से 25 साल के बीच थी। आज सुबह की तस्वीर देखिए, इमारत में आग से हुई बर्बादी के निशान साफ नजर आ रहे हैं। लखनऊ के अलीगंज थाना क्षेत्र के पुरनिया चौराहे के पास स्थित बेसमेंट ग्राउंड और फर्स्ट फ्लोर वाली बिल्डिंग में नीचे पेट शॉप, क्लिनिक और ऊपर एनिमेशन ट्रेनिंग सेंटर चल रहा था जहां गेमिंग इंडस्ट्री से जुड़े सॉफ्टवेयर डेवलप करने की ट्रेनिंग दी जाती थी। जो लोग मारे गए थे उनमें ज्यादातर एनिमेशन ट्रेनिंग सेंटर में उस वक्त मौजूद थे। शुरुआती जानकारी के मुताबिक इसी डक से लखनऊ की इसी बिल्डिंग में आग सोमवार करीब 2 बजे लगी और अग्निकांड की खबर लगते ही अलीगढ़ दौरा छोड़कर सीएम योगी आदित्यनाथ मौके पर पहुंच गए।
4: मुझे दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि अभी अभी मुझे तुरंत जानकारी मिली है लखनऊ में एक दुर्घटना हुई है, वहां पर एक अग्निकांड की चपेट में कुछ बच्चे आए हैं और उसके कारण उनकी दुखद मौत, प्रशासन वहां पे राहत कार्य में लगा हुआ है लेकिन उस दुखद घटना के कारण मुझे तत्काल वापस लखनऊ जाना पड़ रहा है।
3: लखनऊ के सांसद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी देर शाम हालात का जायजा लेने लखनऊ पहुंचे।
5: दुखद है, दुर्भाग्यपूर्ण है, वेदनादायक है, कोई भी कहानी आए वो कंपा एडमिनिस्ट्रेशन के स्तर पर और डॉक्टर्स के स्तर पर जो मैक्सिमम फर्ट हो सकता है जो कुछ भी करना आवश्यकता है सब किया है लोगों ने और मुख्यमंत्री जी ने स्वयं कहा भी है कि इस मामले की तह तक जाने की वो कोशिश करेंगे, प्रॉपरली इसकी जांच कराई जाएगी और अब शक जहां हुआ तो रिस्पॉन्सिबिलिटी शख्स करने में गवर्नमेंट पीछे नहीं है।
1: और इस वक्त आ रही है बड़ी खबर, एसआईटी की टीम मौके पर पहुंच चुकी है उसी इलाके में जहां ये अग्निकांड हुआ उस बिल्डिंग के पास, जांच के लिए अब वहां एसआईटी की टीम पहुंच गई है। मुख्यमंत्री की तरफ से एसआईटी की टीम को जांच तेज करने का आदेश दिया गया है और तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखाएंगे। इस वक्त एसआईटी की टीम वहां पर पहुंच चुकी है,
2: जांच के लिए पहुंच चुकी है। 7 दिन में एसआईटी की टीम अपनी रिपोर्ट देगी और तय होगा कि आखिर इस पूरी घटना के लिए लापरवाही कैसे और किसने बरती। कैमरा पर्सन संजय के साथ संतोष कुमार आज तक।
1: अरे है तो जो इस वक्त वहीं पर मौजूद है, एसआईटी की टीम पहुंचने पर वहां से रिपोर्ट भी दे रहे थे,
2: चुकी है उस जगह पर पहुंच चुकी है जहां पर यह अग्निकांड हुआ। आप देखिए एसआईटी के दोनों सदस्य एडीजी लखनऊ जोन प्रवीण कुमार और अमृत अभिजात है यहाँ पर।
6: पर गहराई से जांच करेंगे, हर डिपार्टमेंट की लायबिलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से और सभी आयामों पर विस्तार से देखेंगे और बहुत जल्दी अपनी रिपोर्ट जो कि निर्धारित समय सीमा में।
2: एडीजी जोन प्रवीण कुमार और अमृत अभिजात ये दोनों ही अधिकारी हैं, एसआईटी की टीम यहां पहुंची हुई है, जांच करेगी और जांच रिपोर्ट 7 दिन में सौंपी जाएगी। तय होगा कि किसकी लापरवाही थी। ये तमाम अधिकारी हैं पहुंचे हुए हैं और तमाम दोनों एसआईटी के सदस्य यहां पर हैं जो जांच करेंगे कि आखिर इस पूरी गड़बड़ी के लिए जिम्मेदार कौन था, किसकी वजह से ये पूरी घटना हुई और 15 लोगों की जान चली गई। कैमरा पर्सन संजय के साथ संतोष कुमार आज।
1: वक्त एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला जारी है, आप देखते रहिए आज।
7: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच, ड्यूरेबल पाइप्स, फिटिंग्स एंड टैंक्स, अ कंप्लीट रेंज ऑफ सैनिटरी सॉल्यूशंस।
8: हैंगिंग आउट एट द पूल इज ग्रेट, relaxing and playing Vegas style games on my phone at the same time. Drink in one hand and a blackjack in the other. It's all at SpinQuest. Over 1,000 games including your favorite slots and table games. Be cool with this summer special. New players get $30 coin packs for 10 at SpinQuest.com.
9: SpinQuest is a free-to-play social casino. Void where prohibited. Visit SpinQuest.com for more details.
10: Stay on top of the MLB season with ESPN Radio. Get daily sports talk covering every big moment from around the league.
11: Schwarber to right field, and it will leave.
10: From the first pitch of the season to the stretch run.
11: And that's the ball game.
10: We've got you covered with analysis, storylines, and insider perspective. And all season long, catch select live games so you can tune in for key matchups and hear the action unfold. Search ESPN Radio or tell your device to play ESPN Radio on TuneIn to listen.
12: Chogan Buffet.

0: लेबनान पर इसराइल के हमले लगातार जारी है। बेका घाटी में हुए भीषण हवाई हमले में 20 लोगों की मौत हो गई। इस बीच इसराइल ने एक वीडियो जारी कर दक्षिणी लेबनान में मजदल जॉन गांव के नीचे आतंकी सुरंग मिलने का दावा किया है। ये सुरंग इजरायली सीमा से कुछ ही किलोमीटर की दूरी पर मिली है। सुरंग में बड़ी संख्या में हथियार और इसराइल की ओर निशाना साधे 4 लॉन्च शॉफ्ट भी बरामद हुए हैं। ये सुरंग 200 मीटर से ज्यादा लंबी और 25 मीटर से ज्यादा गहरी है। इस ऑपरेशन के दौरान इजरायली सेना ने हिजबुल्लाह के 20 से ज्यादा आतंकियों को मार गिराने का दावा किया है।
1: ואני מתחייב בפניכם, אזרחי ישראל, מדינת ישראל לא תהיה אפיזודה חולפת בתולדות עמנו. אנחנו עומדים איתן על האינטרסים החיוניים שלנו. השגנו הישגים כבירים ולא נוותר עליהם.
0: उधर हिजबुल्लाह ने इसराइल को खुली चुनौती देते हुए कहा है कि वो इसराइल के हर हमले का मुंह तोड़ जवाब देने के लिए तैयार है।
2: इसराइल लन तबका फी लबनान हत्ता लो ज़ादत इजरामा ونحن سندافع اي وقف لاطلاق النار।
0: ईरान अमेरिका में शांति वार्ता की कोशिशों के बीच इसराइल का यह आक्रामक रुख पूरे मध्य पूर्व को एक ऐसे चौराहे पर ले आया है जहां से शांति और युद्ध दोनों की राहें निकलती हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, आज तक।

0: क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच। Chogan Perfumes, the French edition for him and her.

दफ्तर जाने की जल्दी हो या फिर देर रात एयरपोर्ट से घर लौटना हो, ओला उबर जैसी कैब सर्विसेज हमारी लाइफ का खास हिस्सा बन चुकी हैं। आरामदेह सफर और एक क्लिक पर गाड़ी हाजिर होने की सहूलियत ने आम आदमी को इसका आदि बना दिया है। लेकिन आने वाले दिनों में जेब ढीली करने के लिए तैयार हो जाइए। टैक्स के नए नियमों की वजह से ऐप बेस्ड टैक्सी सेवाएं काफी महंगी होने वाली हैं। दरअसल एक नए सर्वे से जो जानकारी बाहर आई है वो पैसेंजर्स के साथ साथ ड्राइवरों को भी बड़ी टेंशन देने वाली है, जिसके मुताबिक ऐप आधारित टैक्सी सेवाओं पर 5% एक्स्ट्रा GST लगाने की तैयारी चल रही है। इस अतिरिक्त टैक्स से पैसेंजर्स पर सीधे किराए का बड़ा बोझ बढ़ने की आशंका है। टैक्सी चलाने वाले ड्राइवरों को डर है कि इस नए बदलाव के बाद उनके लिए घर चलाना मुश्किल हो जाएगा। ज्यादातर ड्राइवर उन प्लेटफॉर्म्स को चुनना पसंद करते हैं जहां वो फिक्स चार्ज देकर जुड़ते हैं और पूरी कमाई अपने पास रखते हैं। नया टैक्स लागू होने के बाद उनका पूरा गणित गड़बड़ा सकता है। सर्वे में दावा किया गया है कि 75% से ज्यादा ड्राइवर्स को डर है कि नए टैक्स की वजह से उनकी कमाई घट जाएगी। कमाई कम होने के डर से कई ड्राइवरों ने कैब एग्रीगेटर के साथ काम छोड़कर दूसरा काम तलाशने की बात कही है। 2/3 से ज्यादा पैसेंजर्स का कहना है कि किराया बढ़ने पर वो ऐप से कैब बुक करना कम कर देंगे। टैक्स के इस नए बोझ के बाद मार्केट में एक बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। महंगे किराए की वजह से बड़ी संख्या में लोग और ड्राइवर दोनों ही दूसरे ऑप्शंस की तलाश में जुट जाएंगे। मौजूदा समय में टैक्स के सिस्टम को समझना बेहद जरूरी है। फिलहाल ओला और उबर जैसी कंपनियां जिस मॉडल पर काम कर रही हैं, उसमें टैक्स का पूरा जिम्मा कंपनियों के पास ही होता है। फिलहाल पैसेंजर्स अपनी कुल राइड वैल्यू पर 5% GST देते हैं। इस स्टैंडर्ड कमीशन बेस्ड मॉडल के तहत कंपनियां इनपुट टैक्स क्रेडिट का दावा नहीं कर सकती और कानूनी तौर पर ऐप एग्रीगेटर कंपनियां ही पैसेंजर्स से ये टैक्स वसूल कर सरकार को जमा करती हैं। इस पूरे सिस्टम में होने वाले किसी भी बदलाव का सीधा असर आपकी पॉकेट और ड्राइवरों की रोजी रोटी पर पड़ेगा। ऐसे में देखना होगा कि आम जनता को राहत देने के लिए आखिर क्या कदम उठाए जा सकते हैं। आदित्य किराणा, आज तक।

0: लखनऊ अग्निकांड में 15 लोगों की मौत के बाद एक्शन हादसे की जांच के लिए एसआईटी गठित, 7 दिन में आएगी रिपोर्ट। बिल्डिंग समेत मालिक समेत 4 गिरफ्तार, एई और जेई समेत 4 अधिकारी सस्पेंड।
1: अग्निकांड में आंखें खोलने वाली पड़ताल, बिल्डिंग में एंट्री एग्जिट एक ही रास्ते पर लगे थे इलेक्ट्रिक पैनल, रिहायशी इलाके में बनी हुई थी कमर्शियल इमारत, अरबपति माफिया पर एफआईआर दर्ज।
0: टीएमसी के बागियों ने बनाया नया अध्यक्ष, तो ममता बनर्जी नियुक्त किए। पार्टी में नए पदाधिकारी को चेयरपर्सन और भतीजे को महासचिव बताया, फिरहाद समेत 8 नेताओं को कारण बताओ नोटिस।
1: भरत तिवारी एनकाउंटर को लेकर बिहार में सियासत तेज, पटना हाईकोर्ट में पीआईएल दायर कर निष्पक्ष जांच की मांग, बिहार राज्य मानवाधिकार आयोग ने भी संज्ञान लिया, 13 जुलाई तक रिपोर्ट तलब।
0: देश के पश्चिमी हिस्सों में मॉनसून देने वाला है दस्तक, अगले 24 घंटों में बारिश से तरबतर होंगे गुजरात और महाराष्ट्र, झमाझम बरसात से भीगी मुंबई।
2: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।
0: नमस्कार, स्वागत है आपका, आप देख रहे हैं खबरों का डबल डोज 1 और 11, आपके साथ हूं मैं नेहा बाठो।
1: नमस्कार, आपके साथ मैं हूं राजीव ढौंडिया। शुरुआत इस बुलेटिन की हम बड़ी खबर से करेंगे, लखनऊ अग्निकांड को लेकर एसआईटी ने अब जांच शुरू कर दी है। लखनऊ के घटनास्थल पर एसआईटी की टीम पहुंची है, जो अब उस राख को कुरेदने के लिए पहुंची है, जांच करने वाली है कि इन 15 लोगों की जिंदगी कैसे गई, किस किस की लापरवाही नहीं। हर एक घटना के बाद हमारा सिस्टम सीखता ही नहीं है। एसआईटी की टीम अब जिसमें सीनियर आईएएस अमृत अभिजात हैं, सीनियर आईपीएस लखनऊ प्रवीण कुमार शामिल हैं।
0: एसआईटी की टीम कॉम्प्लेक्स परिसर में अंदर जाकर घटना स्थल का मुआयना करेगी। प्रवीण कुमार का कहना है कि हम हर पहलू की जांच करेंगे, सरकार की निर्धारित समय अवधि में एक डिटेल रिपोर्ट दी जाएगी। और ऐसा लगता है राजीव कि कल जिस तरीके से सीएम डिप्टी सीएम ने निरीक्षण किया, उसके बाद एसआईटी का गठन हुआ, तभी जांच की प्रक्रिया इतनी तेजी से चल रही है। वरना आए दिन इस तरह की घटनाएं जब होती हैं तो यही पता लगाने में वक्त लग जाता है कि आखिरकार मुख्य अपराधी कौन है।
1: आगे बढ़ते हैं और अब शुरुआत करेंगे शतक आज तक की। लखनऊ के अलीगंज इलाके की कोचिंग और गेमिंग सेंटर में भीषण आग, 15 युवाओं की गई जान, 9 घायल। लखनऊ आग हादसे में जान बचाने के लिए पहली मंजिल से कूदे बच्चे, एक लोहे की ग्रिड पर गिरा। लखनऊ आग हादसे में आग से बचने के लिए बाथरूम में छिपे थे बच्चे, दम घुटने से मौत हो गई। सीएम योगी ने घटनास्थल और अस्पताल में जायजा लिया, मृतकों के परिवार वालों के लिए 5-5 लाख के मुआवजे का ऐलान। लखनऊ आग हादसे पर मुख्यमंत्री योगी सख्त, घटनास्थल पर पहुंची 6 सदस्यीय टीम, एसआईटी कर रही जांच, कारणों की होगी जांच। पवित्र अमरनाथ यात्रा को लेकर जम्मू कश्मीर में तैयारियां, 3 जुलाई से शुरू हो रही है यात्रा। जम्मू में अमरनाथ यात्रा को लेकर एनएसजी ने मॉक ड्रिल की, जवानों ने इमरजेंसी की तैयारियों को परखा। अभ्यासों में आतंकी हमले, आईईडी विस्फोट, गोलीबारी, आपदा जैसी स्थिति का पूर्वाभ्यास किया गया। अमरनाथ यात्रा को लेकर भक्तों में जबरदस्त उत्साह, तक 4 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं ने रजिस्ट्रेशन करवाया। 28 अगस्त तक चलेगी पवित्र अमरनाथ यात्रा, श्रद्धालुओं में जबरदस्त उत्साह, बड़ी संख्या में पंजीकरण करवा रहे श्रद्धालु।
0: लखनऊ आग हादसे में पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए 6 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया, 7 बिल्डिंग मालिक समेत 4 लोगों की गिरफ्तारी। प्रशासन का बड़ा एक्शन, एजेई समेत 4 अधिकारी निलंबित, जिम्मेदारी तय होगी। लखनऊ की घटनास्थल पर पहुंची फोरेंसिक टीम, साक्ष्य जुटाकर जांच तेज। अलीगंज अग्निकांड में रेस्क्यू के लिए फायर टीम ने दीवार में किए 4 छेद, धुआं निकालकर बचाव अभियान चलाया। धुएं से गिरे कमर्शियल कॉम्प्लेक्स, फायर ब्रिगेड का बड़ा ऑपरेशन, पड़ोसी छत से शुरू हुआ रेस्क्यू। लखनऊ अग्निकांड में 15 छात्रों की मौत के बाद बिल्डिंग के सह मालिक सुरेंद्र शुक्ल का पुराना रिकॉर्ड आया सामने। सुरेंद्र शुक्ला का नाम साल 2015 के सीपीएमटी पेपर लीक मामले में शामिल था, आरोप था कि बेटी को परीक्षा में पास करने के पेपर लीक की साजिश रची। मामले में एफआईआर दर्ज हुई, लेकिन एसटीएफ जांच में पर्याप्त साक्ष्य न मिलने पर सुरेंद्र शुक्ला को मिली थी राहत। जानकारी के मुताबिक सुरेंद्र शुक्ला और उनके भाई वीरेंद्र शुक्ला पर प्रॉपर्टी कारोबार के जरिए करोड़ रूपये कमाने के लगते हैं आरोप। दोनों भाइयों ने कथित तौर पर किसानों से सस्ती जमीन खरीदकर बड़े पैमाने पर प्लॉटिंग का किया कारोबार।
1: लखनऊ वाहन हादसे पर पीएम मोदी ने जताई संवेदना। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय कोष से मृतकों के परिवार वालों को 2-2 लाख रुपए और घायलों को 50,000 की आर्थिक मदद का ऐलान। लखनऊ अग्निकांड पर उपराष्ट्रपति ने जताया दुख। मृतकों के परिजनों के प्रति संवेदनाएं और घायलों के जल्द स्वस्थ होने की कामना की। राजनाथ सिंह ने भी लखनऊ आग हादसे पर जताया दुख। बोले कि पीड़ित परिवारों के साथ संवेदनाएं हैं मेरी। कानपुर में कोचिंग संस्थानों और व्यावसायिक प्रतिष्ठानों पर अब केडीए की कार्रवाई की तैयारियां। कई संस्थान सील किए गए। नियमों के उल्लंघन पर कानपुर विकास प्राधिकरण भी अब थोड़ा सख्त हुआ। 16 प्रतिष्ठानों पर सीलिंग अभियान चलाया। इनोवेटिव व्यू पहले से कई राज्यों में ब्लैकलिस्टेड होने के बावजूद उसे बायोमेट्रिक का काम मिलना, यह पूरे सिस्टम की गंभीर लापरवाही और मिलीभगत की ओर इशारा। पीएमसीएच का थर्ड ईयर एमबीबीएस छात्र अश्विनी कुमार खुद बायोमेट्रिक स्टाफ बनकर सेंटर में घुसा। अंदर से संभाल रहा था पूरी सेटिंग। गैंग में पढ़े लिखे लोग शामिल। एक अभ्यर्थी को पास करवाने के लिए 60 लाख रुपए तक की डील हुई और देश के बड़े बड़े मेडिकल कॉलेजेस के छात्र स्कॉलर के रूप में शामिल। ये रैकेट छोटे स्तर पर नहीं, संगठित और बहुत बड़े नेटवर्क का हिस्सा। डमी बायोमेट्रिक के बाद अंगूठे के निशान बिगाड़ना, फर्जी सिम, नकली नाम से एंट्री। गैंग के पकड़े जाने से बचने के लिए भी टेक्निकल और प्लान तरीके अपनाए गए।
0: भरत तिवारी एनकाउंटर मामले को लेकर बिहार में सियासत तेज। विपक्ष ने उठाए सवाल। पटना हाईकोर्ट में पीआईएल दाखिल कर एनकाउंटर की निष्पक्ष जांच की मांग। न्यायिक जांच की मांग तेज। बिहार राज्य मानवाधिकार आयोग ने मामले का संज्ञान लिया। 13 जुलाई तक रिपोर्ट तलब। पटना में तेज प्रताप यादव के आवास से 20 लाख नकदी समेत कीमती सामान चोरी का आरोप। निजी सहायक मोतीलाल राय पर गंभीर आरोप। पूर्व मंत्री तेज प्रताप यादव की शिकायत पर पुलिस जांच में जुटी। जांच के लिए डीएसपी और थाना प्रभारी पहुंचे तेज प्रताप के आवास। टीएमसी ने 24 सदस्यीय राष्ट्रीय कार्य समिति का किया पुनर्गठन। ममता बैनर्जी फिर बनी चेयरपर्सन। अभिषेक बैनर्जी महासचिव नियुक्त। टीएमसी ने नई कार्य समिति की जानकारी चुनाव आयोग को दी। दिलीप घोष का बयान। टीएमसी ड्रामा पार्टी है। ममता को हटाने न हटाने से जनता को फर्क नहीं। अल्पसंख्यक के बजट कटौती पर टीएमसी के वार पर दिलीप घोष का पलटवार। कहा यह सरकार सभी के लिए है, सबका साथ सबका विकास।
1: नगरा से गुरुद्वारा विवाद में 2 निहंग सिख छत से उतरे। बाकी से पुलिस प्रशासन की बातचीत जारी है। प्रशासन का दावा कि हेमकुंड साहिब और चारधाम यात्रा पूरी तरह से सुचारू। गुरुद्वारे में लंगर आवागमन भी सामान्य है। प्रशासन ने अफवाहों पर सख्त चेतावनी दी कि न कब्जा न बंधक की घटना। मौके पर पुलिस प्रशासन है, निगरानी हो रही है। शिबू सोरेन को पद्म भूषण मिलने पर बीजेपी ने जताई खुशी और प्रतुल शाह देव ने इसका किया स्वागत। प्रतुल शाह देव ने कहा, संघर्ष से मुख्यमंत्री तक का सफर, शिव सोरेन पद्म भूषण के सच्चे हकदार। केंद्रीय मंत्री जॉर्ज कुरियन ने दिया इस्तीफा। राष्ट्रपति से तत्काल प्रभाव से मंजूर भी हुआ। राष्ट्रपति भवन की अधिसूचना भी जारी। कर्नाटक में क्रॉस वोटिंग पर बीजेपी सख्त। दिल्ली में आज अहम बैठक। क्रॉस वोटिंग करने वालों की पहचान करेगी 3 सदस्यीय समिति। 25 जून तक रिपोर्ट में देगी।
0: किसानों के हित में बड़ा कदम। अमित शाह करेंगे नेफेड के ऑक्शन पोर्टल नेफेक्स.इन का शुभारंभ। नेफेक्स पोर्टल से किसानों को मिलेगा फायदा। उपज की खरीद बिक्री आसान होगी। चमोली के हेमकुंड साहिब में भारी बर्फबारी। बर्फ गिरने से तापमान में गिरावट। बर्फीले नजारों के बीच हेमकुंड साहिब पहुंचे श्रद्धालु। रास्तों पर एसडीआरएफ और पुलिस श्रद्धालुओं की मदद में तैनात। जम्मू कश्मीर में बदला मौसम का मिजाज। अनंतनाग समेत कई इलाकों में झमाझम बारिश। तापमान में गिरावट। अरुणाचल में बारिश का कहर। लिकाबली बासर रोड भूस्खलन से बंद। चीन सीमा से जुड़ा मार्ग प्रभावित। प्रशासन ने जारी की एडवाइजरी। अगले 48 घंटों के दौरान दक्षिण पश्चिम मॉनसून में महाराष्ट्र, तेलंगाना, ओडिशा, छत्तीसगढ़, झारखंड और बिहार के कई हिस्सों में आगे बढ़ने का अनुमान। हफ्तों के इंतजार के बाद मुंबई पहुंचा मॉनसून। प्री मॉनसून बारिश में कई इलाके जलमग्न। मुंबई के बांद्रा में मूसलाधार बारिश। भारी बारिश से कई इलाकों में जलभराव। आवाजाही प्रभावित। पुणे में कई इलाकों में झमाझम बारिश। कई जगहों पर भरा पानी।
1: गुजरात के अमरेली में पिछले 3 दिनों से कई गांवों में तेज हवा के साथ जबरदस्त बारिश। बुआई का इंतजार कर रहे किसानों के खिले चेहरे। गुजरात के वलसाड में पहली बारिश में डूबा मोगरा बड़ी अंडा पास। प्री मॉनसून तैयारियों की खुली पोल। घुटनों तक भरे पानी से होकर गुजरने को मजबूर लोग। पहली बारिश में सूरत नगर निगम की पोल खुल गई। अंडा पास में जल भरा और सड़कें धंसी हुई दिखाई दी। घटना सीसीटीवी में कैद। मौसम विभाग के मुताबिक अल नीनो की वजह से गुजरात में अब मॉनसून की शुरुआत अभी नहीं हुई और पिछले अभी 3 से 4 दिनों तक इंतजार करना होगा बारिश का। मौसम विभाग के अनुमान के मुताबिक गुजरात से सौराष्ट्र होते हुए पश्चिम मध्य अरब सागर तक कम दबाव का इलाका बना है, इसके चलते ये बारिश हो रही है। अहमदाबाद के रखियाल में बेकाबू कार का कहर, 5 वाहनों को मारी टक्कर, महिला की मौत, 6 घायल। रखियाल में सड़क पर मचा कोहराम, बेकाबू कार ने वाहनों को मारी टक्कर और लॉरी को भी टक्कर मारी। ड्राइवर को दौरा पड़ने के चलते बेकाबू हुई कार, घटना सीसीटीवी में कैद। देवबंद की एक शादी में डीजे पर चढ़कर तमंचों से हर्ष फायरिंग, वीडियो वायरल, 3 आरोपी गिरफ्तार। हथियारों का खुला प्रदर्शन पड़ा भारी, अवैध तमंचे, कार समेत 3 युवक गिरफ्तार।
0: वाराणसी में पिस्टल लगाकर रील बनाने वाला युवक गिरफ्तार, हथियार निकला टॉय गन। संभल में डॉग मैरी की सूझबूझ से ब्लाइंड रेप केस का खुलासा, आरोपी गिरफ्तार। जयपुर में मॉर्निंग वॉक के दौरान चेन स्नैचिंग, सीसीटीवी में कैद हुई वारदात, पास मौजूद पुलिसकर्मी देखता रह गया। मेरठ में युवक की ईंट से कुचलकर हत्या, खून से लथपथ शव मिलने से सनसनी, आरोपी गिरफ्तार। अंबाजी पुलिस पर हमला करने वाले 3 आरोपी गिरफ्तार, घटनास्थल पर कराया गया रिकंस्ट्रक्शन। बरेली के सिटी सेंटर मॉल में बड़ा हादसा टला, बिजली गुलोने से लिफ्ट में फंसे 13 लोग आधे घंटे बाद सुरक्षित निकाले गए। देहरादून के विकास नगर में फास्टैग कटने पर भड़के कार सवार, धर्मावाला टोल प्लाजा कर्मी को बेरहमी से पीटा गया। ग्रेटर नोएडा में नशे में धुत युवती का हाई वोल्टेज ड्रामा, हाथ में सिगरेट और बगल में शराब की बोतल रखकर सड़क पर लेटी महिला। गाजियाबाद में यात्रियों से भरी रोडवेज बस पलटी, ऋषिकेश से आईएसबीटी दिल्ली जा रही थी बस, ट्रक से हुआ हादसा। हैदराबाद के आसिफ नगर में हिट एंड रन का मामला, किराए की एसयूवी चला रहा नाबालिग, महिला को टक्कर मारकर फरार, इलाज के दौरान मौत।
1: एमपी के छिंदवाड़ा में ट्रक और मजदूरों से भरी हुई पिकअप की टक्कर, 5 लोगों की मौत, 20 लोग घायल। जयपुर में मॉर्निंग वॉक पर निकली महिला से लूट, गले में झपट्टा मारकर सोने की चेन तोड़कर बाइक सवार बदमाश फरार। सीकर का रिंगस में आवारा कुत्तों ने बच्चे पर किया जानलेवा हमला, बचाने के लिए आए 2 लोगों को भी काट दिया, 2 बच्चों समेत 10 लोग घायल। जलंधर में होम्योपैथिक क्लिनिक पर नकाबपोश बदमाशों ने ताबड़तोड़ गोलियां चलाई, शीशा टूट गया। यूपी के कौशाम्बी में भीषण सड़क हादसे, एम्बुलेंस और कार की जबरदस्त टक्कर, मां बेटे की मौत, पिता और मासूम बेटी गंभीर रूप से घायल। ओडिशा के संबलपुर में चोरी के शक में प्रवासी मजदूर की बेरहमी से पिटाई, पुलिस ने भीड़ से बचाकर 5 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया। पश्चिम बंगाल के कूचबिहार में तेज रफ्तार बाइक हादसे में 18 साल के युवक की मौत, नियंत्रण खोने से यह बड़ी हादसा हुई। पंजाब के फाजिलका में आधी तूफान का कहर दिखा, पेड़ गिरने से युवक की मौत, घटना सीसीटीवी में कैद। यूपी के सोनभद्र में अंतर्राज्यीय गांजा तस्करी का भंडाफोड़, 80 लाख से ज्यादा की कीमत का गांजा बरामद, 6 तस्कर गिरफ्तार। इंदौर सोशल मीडिया पर युवतियों को बदनाम करने वाला साइबर अपराधी गिरफ्तार, पुलिस ने देवास से पकड़ा।
0: लेबनान को लेकर इजराइल के तेवर सख्त, सैन्य कार्रवाई जारी रखने के संकेत। इजरायली पीएम, रक्षा मंत्री और सेना प्रमुख का संयुक्त बयान जारी, कहा सैनिकों और नागरिकों पर खतरा खत्म करने की कार्रवाई जारी। दक्षिण लेबनान में सुरक्षा क्षेत्र बनाए रखने की बात दोहराई, आतंकवादी ढांचे को ध्वस्त करने के लिए अभियान जारी रखने का ऐलान। इजराइल ने कहा नागरिकों और सेना की सुरक्षा पर कोई समझौता नहीं होगा। शीर्ष सुरक्षा बैठक के बाद इजराइल का कड़ा संदेश, कहा लेबनान सीमा पर सुरक्षा बनाए रखने के लिए कार्रवाई जारी रहेगी।

0: लखनऊ अग्निकांड को लेकर एसआईटी ने जांच तेज कर दी है। घटना स्थल पर एसआईटी की टीम पहुंच चुकी है। इसमें सीनियर आईएएस अमृत अभिजात और सीनियर आईपीएस प्रवीण कुमार शामिल है। एसआईटी की टीम कॉम्प्लेक्स परिसर के अंदर जाकर घटना स्थल का मुआयना कर चुकी है। प्रवीण कुमार का कहना है कि हम हर पहलू की जांच करेंगे, सरकार की निर्धारित समयावधि में एक डिटेल रिपोर्ट दी जाएगी।
1: देश की राजधानी दिल्ली में मालवीय नगर की घटना हुई, वहां पर हर विभाग की लापरवाही, भ्रष्टाचार उजागर हुआ। उसके बाद हर राज्य सरकार ने दावा किया कि हम अपने यहां पर तैयारियों को देख रहे हैं, और उसके बाद एक बिल्डिंग में आग लगती जहां पर जो पढ़ने वाले छात्र थे उनकी मौत हो जाती, किसी के दम घुटने से, किसी की गिरने से, किसी की आग में झुलसने से, उसकी यानी कि सिस्टम कहीं भी जागा ही नहीं था। हमारे संवाददाता संतोष इस खबर पर हमारे साथ जुड़ गए हैं। संतोष, अब एसआईटी बनाए गए हैं, बड़े बड़े अधिकारी घटनास्थल पर पहुंचे हैं, क्या मिला उनको? इतनी बड़ी लापरवाही है, वो तो क्लियर दिखाई दे रहे हैं कि यहां पर भ्रष्टाचार तो स्वाभाविक हुआ, एंट्री एग्जिट गेट एक, यानी कि हर तरफ से क्लियरेंस तो मिली होगी पैसा देकर।
2: देखिए, एसआईटी गठित कर दी गई है। एसआईटी में सीनियर आईएएस अमृत अभिजात और आईपीएस प्रवीण कुमार हैं, दोनों ही अधिकारी अंदर हैं बिल्डिंग के अंदर, जांच की जा और इसके साथ ही फॉरेंसिक की टीम भी अंदर है। तो एसआईटी के पड़ताल एक तरफ, 7 दिन में अपनी रिपोर्ट देगी, वो बताएगी कि किस वजह से ये घटना हुई, और इतना ही नहीं यह भी बताया जाएगा कि एक रेजिडेंशियल इलाके में ये कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्स कैसे बनकर तैयार हो गया, किस अधिकारी ने एनओसी दी, अगर किसी ने नोटिस दिया तो उस नोटिस को अमल में क्यों नहीं लाया गया। ये तमाम जो पहलू हैं उस पर तब 7 दिन की रिपोर्ट के बाद, एसआईटी की रिपोर्ट के बाद कार्रवाई की दिशा तय होगी। लेकिन इतना जरूरी कि एक्शन शुरू हो चुका है इस मामले में। एलडीए के 2 अधिकारी, एक बिजली विभाग का अधिकारी, एक फायर डिपार्टमेंट के अधिकारी, कुल 4 लोगों को सस्पेंड किया जा चुका है। एफआईआर दर्ज हो गई है, 6 लोगों पर नामजद एफआईआर है, जिसमें इस कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्स को बनाने वाले वीरेंद्र शुक्ला और यहां पर कॉमर्शियल एक्टिविटी करने वाले तुषांत जायसवाल, सुरेश साहू समेत 4 लोग गिरफ्तार किए जा चुके हैं, 6 नामजद हैं। तो कहा जाए कि एक्शन का दौर शुरू है, लेकिन सवाल इस बात का है कि एक रेजिडेंशियल इलाके में कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्स खड़ा हो गया तो अधिकारियों को तब नजर क्यों नहीं आया। अब हादसे के बाद एसआईटी गठित हो रही है, फॉरेंसिक जांच हो रही है, फॉरेंसिक की टीम भी अंदर है, वो पड़ताल कर रही है कि आखिर ये आग लगी तो कैसे, शॉर्ट सर्किट है या फिर कोई और वजह, कोई एसी का कंप्रेसर फटा या कहीं पर कोई आग लगी जिसकी वजह से आग पकड़ती चली गई और धुआं फैल गया। सबसे बड़ी बात कि जो 15 लोगों की मौत हुई, उनमें सभी की मौत, जो लगभग अभी तक जानकारी मिल पा रही है कि सभी की मौत दम घुटने से हुई है, जलने से मौत नहीं, दम घुटने से। यानी कि अगर यहां वेंटिलेशन की व्यवस्था होती तो शायद बच जाते हो। देखिए, ये कॉम्प्लेक्स को भी समझिए कि ये कॉम्प्लेक्स है सिर्फ एंट्री और एग्जिट का, एक गेट, एक छोटा सा गेट, और उसी गेट से एंट्री भी है, एग्जिट भी है, और गेट के ऊपर ही एसी के पैनल लगे हैं, यानी कि वो भी फ्री नहीं है। अब अगर आदमी अफरा तफरी में आ जा रहा है तो कैसे एंट्री एग्जिट करेगा। इसके साथ ही जो रास्ता है वो बेहद सकरा है, और जब अफरा तफरी मची तो ऐसी परिस्थिति में कई लोग एक साथ अंदर बाहर जाने की कोशिश करते हैं।
0: आपको इस बीच बड़ी खबर आपको बता दे, अग्निकांड की शुरुआती जांच में बिजली ओवरलोडिंग का बड़ा खुलासा हुआ है। जिस इमारत में हादसा हुआ वहां 20 किलोवाट का कमर्शियल बिजली कनेक्शन स्वीकृत था। जांच में सामने आया कि वास्तविक बिजली लोड बढ़कर 34.10 KVA तक पहुंच गया था।
1: वही अप्रैल के महीने में इमारत का लोड 24.30 KVA दर्ज किया गया था, जो कि जून में और ज्यादा बढ़ गया। विशेषज्ञों के मुताबिक स्वीकृत क्षमता से कहीं ज्यादा लोड था, तारों और ट्रांसफार्मर पर काफी ज्यादा दबाव था।
0: भीषण गर्मी और ओवरलोडिंग की वजह से शॉर्ट सर्किट की आशंका कई गुना बढ़ गई। सवाल लगातार उठ रहे हैं कि 3 महीने तक ओवरलोड दर्ज होने के बावजूद बिजली विभाग ने कोई कार्रवाई नहीं की, ना तो लोड बढ़ाने के लिए कानूनी प्रक्रिया शुरू की गई और ना ही बिजली काटने का नोटिस जारी किया गया।
1: हमारे संवाददाता आशीष भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। आशीष, ये तो जो रिहायशी इलाका है वहां पर एक तो बिजली का कनेक्शन दिया कैसे गया, ये तो अपने आप में सवाल है। फिर उसके बाद से वहां पर ओवरलोडिंग भी चल रही थी, उसको भी नजरअंदाज किया गया बिजली विभाग की तरफ से? तो
3: राजीव, बिल्कुल नहीं, बहुत बड़ा खुलासा है कि जिस तरीके से ये रिहायशी बिल्डिंग थी और रिहायशी इलाका था यहाँ पर, और कॉमर्शियल यहाँ पर जो कनेक्शन था वो दिया गया था और उसको लेकर भी उस कनेक्शन पर ओवरलोड था, यानी कि कई अधिकारियों को चेक करना था लेकिन उन्होंने इसको चेक नहीं किया और जिसके बाद भी कहीं ना कहीं जो फॉल्ट का है वो भी बराबर आता रहा। जो MCVs हैं वो बार बार गिरती रही, इसकी शिकायत भी कई छात्रों ने कई बार की लेकिन इसके बावजूद भी कोई इस पर रुख लेने वाला नहीं था। और यही नहीं, जब कॉमर्शियल करेक्शन दिया गया तो आखिर उसकी मॉनिटर क्यों नहीं की, ये भी बहुत बड़ा सवाल उठ रहा है। और 21 किलोवाट का जो कॉमर्शियल कनेक्शन है उसमें करीब 8 से 10 AC चलाए जा रहे थे जो कि ऑलरेडी अपने आप ओवरलोड थे, यानी तकरीबन 33 किलोवाट तक का जो फिक्स किलोवाट है उस पर इतना ज्यादा लोड पड़ रहा था और कहीं ना कहीं इन बच्चों की जो जान है वो जोखिम में डाली जा रही थी। लेकिन जो अधिकारी हैं वो बिल्कुल भी सुध लेने को तैयार नहीं थे, ना ही बिजली विभाग के और ना ही किसी अन्य अधिकारी ने कभी जानने की कोशिश की कि इस तरीके की कोई भी घटना हो सकती है। और वही हुआ, 15 लोग काल के गाल में समा गए। वो बच्चे जो यहाँ पर पढ़ रहे थे शायद उन्होंने भी कई बार शिकायत की थी इसको लेकर कि बिजली ट्रिपिंग हो रही है, यहाँ पर ओवरलोड की समस्या है, लेकिन इसके बावजूद भी यहाँ पर किसी ने सुना नहीं। और ये अब निकल कर सामने आ रहा है और विभाग की भी कहीं ना कहीं खामियां नजर आ रही कि क्यों इस तरीके से
0: लौटेंगे आप सभी के पास। इस बीच बड़ी खबर आपको बता दें, लखनऊ अग्निकांड को लेकर हैरान करने वाला खुलासा हुआ है। आज तक से बातचीत में किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज की वाइस चांसलर सोनिया नित्यानंद ने कहा है कि 15 लोग की मौत जलने से नहीं बल्कि दम घुटने से हुई है। बताया जा रहा है कि आग लगने से एनिमेशन सेंटर का दरवाजा लॉक हो गया, इसी वजह से धुएं में दब घुट गया।
1: ये बड़ी खबर आपको बताते हैं कि जलने से किसी की जान नहीं गई, जान गई तो दम घुटने से, क्योंकि एंट्री और एग्जिट का पॉइंट एक ही था। जो भीतर लोग फंसे थे, जो बच्चे फंसे थे, वो दम घुटने से उनकी जान गई है। KGMU की तरफ से इसकी जानकारी दे दी गई है। यह बता दिया गया है कि मौत कैसे हुई है और इसको लापरवाही भी नहीं कहा जा सकता। यह भ्रष्टाचार का क्लियर उदाहरण है। रेजिडेंशियल एरिया में कमर्शियल कनेक्शन ऐसे तो नहीं मिलता, तो हर किसी का मुंह बंद किया गया, हर किसी की आंखें बंद कर दी गई, हर अधिकारी की आंखें बंद कर दी गई पैसा खिलाकर। ऑब्वियस है, वो क्लियर दिखाई दे रहा है, लेकिन इस मामले में छोटे छोटे लोगों पर कार्रवाई करके इस मामले पर भी किसी तरह से निपटा दिया जाएगा ताकि कुछ दिनों के बाद लोग उसे भूल जाए।
4: एक लड़की थी जो घायल हुई, उसको बहुत विशेष चोट नहीं आई है, बाएं डोर में उसमें चोट आई है। और जो एक लड़का है उसमें से उसको रीढ़ की हड्डी फ्रैक्चर कर गई है और वो लोअर लिम्ब्स उसकी पैरालाइज्ड, पर 15 जो है वो डेड लाए गए हैं और वो 15 के 15 स्मोक से जले हुए नहीं आए।
0: इस बीच जांच में लखनऊ डेवलपमेंट अथॉरिटी यानी कि LDA और प्रशासन की बड़ी लापरवाही सामने आ रही है। पता यह चला है कि जो बिल्डिंग जलकर खाक हुई वो कभी रेजिडेंशियल यानी रहने के मकसद से बनाई गई। 2014 में बना सही नियम कानून के इसे कमर्शियल कॉम्प्लेक्स में बदल दिया गया और यही लापरवाही 15 लोगों की मौत की वजह बन गई।
1: तो यही भ्रष्टाचार वाकई मौत की वजह बना है। 2014 में इसे कमर्शियल कॉम्प्लेक्स बना दिया गया क्योंकि यहां से कमर्शियल पैसा चाहिए था और उस वजह से बच्चों की जिंदगी यहां पर दांव पर लगा दी गई। और अब जब बच्चों की जान चली गई है तो इन अधिकारियों को पता चल रहा कि यहां तो लापरवाही थी, ये भ्रष्टाचार था और इस पर अब कार्रवाई का इंतजार ही है।
0: रुकना हो गया एक्चुअली से ब्रेक के लिए, देखते रहिए आज।
5: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा प्यार से परोस। चोगन परफ्यूम्स, द फ्रेंच एडिशन फॉर हिम एंड हर।
6: पेप्सी प्रीबायोटिक कोला इन ओरिजिनल एंड चेरी वनीला, दैट पेप्सी टेस्ट यू लव विद नो आर्टिफिशियल स्वीटनर्स, ओनली 30 कैलोरीज, जस्ट 5 ग्राम्स ऑफ शुगर एंड 3 ग्राम्स ऑफ प्रीबायोटिक फाइबर। That great Pepsi taste with even more to love. Pepsi Prebiotic Cola. Unbelievably Pepsi.
7: One second, you're enjoying your first day off in forever. Then, mid-lunch, your phone buzzes. A window's been broken at home, and you're miles away. In one second, everything can change. That's why ADT offers security systems with 24/7 monitoring, with tech that helps first responders prioritize your emergency. And with the ADT Plus app, you can stay informed and in control of your home from virtually wherever you are. When every second counts, count on ADT. Visit ADT.com to learn more.
8: Get into the huddle with TuneIn. TuneIn brings you nonstop sports talk, live games, and expert analysis all in one place. From kickoff to final whistle, follow your favorite teams all season long with ESPN Radio, Talk Sport, Big 12 Radio, and more. Plus, listen to your favorite sports broadcasts on over 200 devices, so you never miss a moment of sports action with TuneIn. Stay in the game with TuneIn and start listening now.

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: ऊंचाई पर बने रहने के लिए जरूरी है इरादों का प्योर होना। गैलेंट एडवांस बनाते हैं ऐसा स्टील जो अंदर से है ज्यादा प्योर, ज्यादा मजबूत। गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो।
3: जब धान के खेतों में जिद्दी खरपतवार दे चुनौती, तो हर असली हीरो उठाता है एक ही हथियार, क्रिस्टल क्रॉप का सिकोसा। खरपतवार मारे उगने से पहले, भारत का सबसे ताकतवर धान का खरपतवार नाशक।
4: हनी, इस घर में कुछ है जो टूटता नहीं।
5: ये पिलर कभी नहीं टूटेगा, रुंगटा स्टील TMT से बना।
6: रुंगटा नहीं तो घर स्ट्रॉन्ग नहीं, रुंगटा स्टील TMT बार एकदम सॉलिड।

0: इन एसोसिएशन विद हिंट, बड़े आराम से शारदा यूनिवर्सिटी, द वर्ल्ड कम्स टुगेदर एट शारदा यूनिवर्सिटी, वेयर आर यू? विमल, बोलो जुबां केसरी, कूल स्टाइलिश फैंस, एनहांस होम डेकोर विद ब्यूटीफुल फैंस, पंजाब नेशनल बैंक, भरोसे का प्रतीक।
1: पत्रकारिता के गुर यहां नहीं सीखे तो क्या सीखे, नाम ही काफी है। इंडिया टुडे मीडिया इंस्टीट्यूट रजिस्टर करने के लिए विजिट करें www.indiatodaymediainstitute.in या 9560065465 पर कॉल करें।
2: जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए श्री संत का।
3: प्लीज बजीपा, प्लीज डू ललन टॉक शो, इट्स अ रिक्वेस्ट, एंड प्लीज टू स्पीक ट्रूथ।
4: अप्रैल 2026 में उन्होंने एक रिटेल कंपनी का ऐड किया।
3: ऐसे हरकतें आप करोगे आपकी भाई के साथ? आई चैलेंज यू बजीपा, अगर आपको इतना प्रॉब्लम है तप्पड़ खांड से और आप इतना कमा रहे हो, हमें भी तो कमाने दो। आओ ना रिंग में, वेट कम।

0: क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com। क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोस। चोगन परफ्यूम्स, द फ्रेंच एडिशन फॉर हिम एंड हर।

प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा। चोगन परफ्यूम्स, द फ्रेंच एडिशन फॉर हिम एंड हर।

0: दिन में आएगी रिपोर्ट, बिल्डिंग मालिक समेत चार गिरफ्तार, चार अधिकारी सस्पेंड।
1: अग्निकांड में आंखें खोलने वाली पड़ताल, बिल्डिंग में एंट्री एग्जिट का एकमात्र रास्ता, इलेक्ट्रिक पैनल लगे थे, रिहायशी इलाके में बनी थी कमर्शियल इमारत, बिजली ओवरलोडिंग का भी खुलासा।
0: टीएमसी के बागियों ने बनाया नया अध्यक्ष, तो ममता बनर्जी नियुक्त किए, पार्टी में पदाधिकारी खुद चेयरपर्सन और भतीजे को महासचिव बताया, फिराद समेत आठ नेताओं को कारण बताओ नोटिस।
1: भरत तिवारी एनकाउंटर को लेकर बिहार में सियासत, पटना हाईकोर्ट में पीआईएल दायर, निष्पक्ष जांच की मांग, बिहार राज्य मानवाधिकार आयोग ने भी लिया संज्ञान, 13 जुलाई तक रिपोर्ट तलब।
0: देश के पश्चिमी इलाकों में मॉनसून देने वाला है दस्तक, अगले 24 घंटों में बारिश से तरबतर होंगे गुजरात और महाराष्ट्र, झमाझम बरसात से भीगी मुंबई।
2: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाएं स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा प्यार से परोस।
3: सारे बच्चे सब बच गए होते, मेरा बेटा भी जिंदा होता, मेरे तो दुनिया उजड़ गई।
4: ये सबसे बड़ी दर्दनाक घटना हुई कि माँ के सामने बेटा अंदर।
0: भीषण अग्निकांड के बाद एक बड़ा एक्शन सामने आया, इस बीच बड़ी खबर कानपुर से आ रही है जहां पर 22 अवैध कोचिंग सेंटर्स को सील कर दिया गया है, फायर एनओसी नहीं होने की वजह से या अन्य कारणों की वजह से इन 22 सेंटर्स को सील किया गया है। योगी सरकार का ये बड़ा एक्शन, जिस तरीके से वादा किया गया था सरकार की ओर से कि ऐसे अवैध निर्माण कोचिंग सेंटर्स, रेस्टोरेंट्स, किसी भी तरह की कमर्शियल गतिविधि जहां पर ठीक से नियमों का पालन नहीं किया जाएगा उन्हें बंद कर दिया जाएगा, कई अधिकारी इस कार्रवाई के दौरान शामिल रहे।
1: 15 बच्चों की मौत के बाद ये सिस्टम जागा, थोड़ा सा दिख रहा है लेकिन उसके लिए मौत हुई है उसके बाद जागा है। क्या एक्शन हुआ है, हमारे संवाददाता सिमर चावला हमारे साथ कानपुर से जुड़े, सिमर बताए क्या क्या एक्शन लिया है और यही तक सीमित है एक्शन या फिर और भी कार्रवाई होगी, और भी चेकिंग चल रही कहीं और?
5: सही, मैं आपको बता दूं कानपुर में जब से लखनऊ हादसा हुआ है उसके बाद से लगातार जो ड्राइव है वो जारी है, 22 कोचिंग सेंटर्स को सील कर दिया गया है, ये कल की खबर है। फिलहाल इस वक्त मैं मौजूद हूं कानपुर के कोचिंग सेंटर काकादेव इलाके में जहां पर हजारों कोचिंग सेंटर्स हैं और इस वक्त भी यहां पे आप देखेंगे तो केडीए की जो कार्रवाई है कानपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी की वो जारी है। पीछे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर पूरा जो सरकारी अमला है वो मौजूद है और जो अवैध कोचिंग सेंटर्स चल रहे थे उसको सील करने का काम किया गया है। मैं अपने कैमरा पर्सन से रिक्वेस्ट करूंगा कि आपको दिखाने पाए, मौके पे अधिकारी मौजूद है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो कानपुर विकास प्राधिकरण द्वारा ये परिसर जो है ये कोचिंग सेंटर उसको सील कर दिया गया है और ये ठीक उसी तरीके की बिल्डिंग है जैसे कल लखनऊ में हमने देखा आग लगी। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो बेसमेंट चल रहा था, अवैध रूप से पूरा इसका कंस्ट्रक्शन हुआ था, पैसेज जितना देना चाहिए था उतना पैसेज नहीं दिया गया था, सेफ्टी नॉर्म्स पूरे नहीं किए गए थे। यहाँ सामने अगर आप देखेंगे तो इसी तरीके की बिल्डिंग थी लखनऊ में जहां पर सेफ्टी एग्जिट नहीं था और बच्चों को जो बिल्डिंग है वहां से कूदना पड़ा था। इसी तरीके से आप देखेंगे आगे यहां पर एक बिलियर्ड्स क्लब है, ये स्पोर्ट्स क्लब है, इसको भी फिलहाल जस्ट अभी प्रशासन ने जो है वो सील किया है और अभी आप देखेंगे मेरे पीछे, मैं कोशिश करूंगा किसी अधिकारी से बात करने की जो यहाँ पर फिलहाल मौके पे मौजूद है कि क्या कार्रवाई आप लोग द्वारा की गई है, कितनी कोचिंग सेंटर सील करे गए।
6: देखिए कल लखनऊ में एक दुखद जो है घटना हुई है जिसमें 15 लोगों की जान चली गई है। यहाँ पर जैसे कि कानपुर में जो काकादेव क्षेत्र है वो कोचिंग के लिए जाना जाता है और यहाँ पर जो है कल भी रात में जो है ड्राइव चलाई गई थी और लगभग 22 जो है इस तरीके के अवैध रूप से जिनका बेसमेंट में गतिविधियां संचालित कर रहे थे उनको सील किया गया है और आज भी जो है प्राधिकरण की टीमें लगातार जो है ऐसे जगहों को चिन्हित कर रही हैं। और
5: अभय जी, एक सवाल ये है कि किस तरीके से ये कार्रवाई तब हम देख रहे हैं जब लखनऊ हादसा हुआ, इसके पहले भी ये अवैध रूप से चल रहे थे, इलीगल थे, तभी सील करे गए हैं, तो पहले कार्रवाई क्यों नहीं हुई, इस पर एक बड़ा सवाल था।
6: जी बिल्कुल, पहले भी आपको संज्ञान में होगा जो है कि पहले भी इसमें 6 महीना पहले भी एक स्पेशल ड्राइव चलाई गई थी और कई जगहों पर इसमें कार्रवाई की गई थी। कुछ जगहों पर अगर छूट गया था और इस तरीके की गतिविधि चल रही है तो प्राधिकरण के अधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि वो एक एक बिल्डिंग, एक एक रोड को देख लें। और चूंकि यहाँ पर तमाम बच्चे जो है कोचिंग इंस्टीट्यूट में पढ़ाई करते हैं तो इस चीज को हम लोग इंश्योर कराएंगे कि कहीं भी बिना मानक के अवैध तरीके से।
0: ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए आपका। तो सवाल बेहद संगीन यहाँ पर कि स्वतः संज्ञान क्यों नहीं लिया जाता है, जब हादसा हो जाता है उसका इंतजार किया जाता है या फिर योगी सरकार के आदेश होते हैं उसके बाद इस तरह की कार्रवाई की जाती है। लखनऊ अग्निकांड में 15 मौत के बाद अब सिस्टम और प्रशासन की नींद खुल गई है, अब एक्शन लिया जा रहा है, इंसाफ का वादा भी किया जा रहा है, लेकिन जिन छात्र नौजवानों की इस हादसे में जान गई वो सवाल पूछ रहे हैं उनके परिवार वाले।
1: बिल्कुल, नींद खुली है या सिर्फ आंखें खुलने की एक दिखावा किया जा रहा है, ये भी सवाल है। अब एक मां भी सवाल पूछ रही है कि आखिर इंतजाम पहले क्यों नहीं हुए। एक पिता का सवाल है, चंद दिनों के बाद इस हादसे को भी भुला तो नहीं दिया जाएगा। आज तक ने उन परिवार वालों से बातचीत की जिन्होंने अपनों को खोया है, उनके दर्द की कोई इंतहा नहीं है।
3: मेरी तो दुनिया उजड़ गई,
7: दुनिया उजड़ना इसे नहीं तो किसे कहेंगे।
3: मेरा बेटा भी जिंदा होता, मेरा बेटा।
7: एक माँ का बेटा बिछड़ जाए तो उसकी दुनिया में बचता ही क्या है। संतान के बिना माँ की जिंदगी सूनी और वीरान हो जाती है। इस माँ की जिंदगी भी वीरान हो चुकी है। इनका 25 साल का जवान बेटा इनकी नजरों के सामने आग की चपेट में आ गया और अब ये जिंदगी भर का दर्द लेकर अकेली रह गई है।
3: थोड़ा ध्यान दे लिए होते तो आज इतने सारे बच्चे सब बच गए होते, मेरा बेटा भी आज जिंदा होता, मेरा बेटा भी होता दुनिया में। मेरी तो दुनिया उजड़ गई।
7: ये कल्पना श्रीवास्तव है, आदित्य श्रीवास्तव की माँ। जब इस इमारत में आग लगी थी, जान बचाने की जद्दोजहद में यहाँ करने वाले लोग छलांग लगा रहे थे तो कल्पना श्रीवास्तव मौके पर ही मौजूद थी, लेकिन मजबूर और लाचार, इतनी लाचार कि अपनी आंखों के सामने बेटे को मौत का शिकार होते देखना पड़ा और वो कुछ नहीं कर पाई।
4: आग लग गई है बिल्डिंग में, उनके यहाँ कोचिंग वाले में, और उसमें जो है तो वो उसी के अंदर फंसा हुआ। तब छोटे बेटे को हमने आवाज दी, कहा कि भैया निकलो जल्दी, भागे, उसके बाद निकल लिए। ये सबसे बड़ी दर्दनाक घटना हुई कि माँ के सामने बेटा अंदर।
7: सीतापुर के श्रीवास्तव परिवार के साथ जो वाकया हुआ है वो भयावह है, लेकिन इस माँ के सवाल भी कम भयावह नहीं है। एक माँ पूछ रही है कि जब मुख्यमंत्री के लिए तमाम इंतजाम हो सकते हैं तो उनके बेटे को बचाने की कोशिश वक्त पर क्यों नहीं हुई।
8: मौके पर मौजूद थी माता
3: जी, मैंने देखा है, मैंने सब देखा। मैं बराबर यही कह रही थी कि एकदम से देखा था मैंने सब, जिस तरह से इस समय भी मैंने देखा कि सीएम साहब आने वाले थे, किया जा रहा था, उस टाइम उस तरह से ये भी ध्यान दिया जाता तो हो सकता है बच्चे बच जाते।
7: आज तक संवाददाता समर श्रीवास्तव कल रात जब पोस्टमार्टम हाउस के बाहर पहुंचे तो वहां का नजारा कलेजा चाक करने वाला था। इस माँ को उनके दो बेटे सहारा देकर ले जा रहे हैं, लेकिन दुनिया की कोई दवा इस माँ के दर्द को नहीं मिटा पाएगी। इस हादसे को चंद दिन बाद भुला दिया जाएगा, लेकिन 15 बेटों की माँ इस हादसे को कभी नहीं भूल पाएगी। समर श्रीवास्तव और संतोष शर्मा के साथ कुमार अभिषेक, लखनऊ आज तक।
0: समर्थ मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं इस वक्त तमाम जानकारी के साथ। समर्थ, आपने तो पीड़ित परिवारों से बातचीत की है, जाहिर तौर पर एक असहनीय दर्द, एक कभी ना मिटने वाली टीस इन परिवारों के मन में है, इनके जहन में है, और शायद एक गुस्सा भी है कि आखिरकार ये उनके साथ ही क्यों हुआ।
9: नहीं हाँ बिल्कुल, ये इस वक्त जो गुस्सा है, दर्द है, वो सब एक साथ निकल रहा है। आप सोचे ना कि एक जो
10: पेरेंट है वो बच्चों को पढ़ाता है, खिलाता है और इस लायक बनाता है वो कहीं नौकरी करे जाकर, और बच्चा जब नौकरी करने जाए और फिर घर ही वापस ना आ पाए, और क्यों? क्योंकि सिस्टम की लापरवाही, वो लैप्सेस जिन पर काम अगर समय रहते हर विभाग ने किया होता, चाहे बात आप विद्युत विभाग की करें, चाहे बात आप नगर निगम की करें, चाहे बात आप एलडीए की करें, आप सस्पेंशन जरूर अब हो सकते हैं, एसआईटी अब जरूर बन सकती है, लेकिन बड़ा सवाल ये है कि क्या वो 15 घरों के चिराग जो अब बुझ चुके हैं, क्या वो अब उनके पास वापस आएंगे? क्या अन्य लोग इससे सीख लेंगे? हम इस वक्त अलीगंज से रिपोर्ट कर रहे हैं, उसी स्थान से जहां पर एक घटना हुई है, महज 500 मीटर की दूरी पर है, और एक बार कैमरामैन गौरव से कहूंगा फ्रेम वाइड करके दिखाएं कॉम्प्लेक्सेस को, यहां पर यहां लाइन से तमाम कॉम्प्लेक्सेस बने हुए हैं और हार्डली ही कुछ होंगे जिन्होंने सारे फायर नॉर्म्स को पालन किया होगा, यानी कि जहां पर एग्जिट पॉइंट्स होंगे, जहां पर एक लैडर होगी अगर कोई घटना होती है, और इसी इलाके में लखनऊ का पौश इलाका अलीगंज है जहां इस तरह की घटना होती है, जो परिवार है, जो माता पिता है, वो आज बिलख रहे हैं, रो रहे हैं, उनके सवाल प्रशासन से, उनके सवाल सरकार से भी है कि आखिर मेरे बच्चे ने क्या बिगाड़ा था।
1: समर्थ, फिर तो ये लापरवाही नहीं, पहला तो सीधा भ्रष्टाचार है, और दूसरा जो 15 बच्चों की जान गए है वो कत्ले आम है, नरसंहार है, इसीलिए सवाल भी पूछा जा रहा है कि आपने कुछ बदलाव नहीं किए। लखनऊ अग्निकांड में किसी का बेटा गया है, किसी का भाई चला गया, किसी परिवार ने इकलौते सहारे को हमेशा के लिए खो दिया है, एक बेटा अपना अपने पिता का आशीर्वाद लेकर घर से तो निकला, चंद घंटे के बाद उसकी खबर आई तो मौत की।
0: और हम उन परिवारों का दर्द आपको इसलिए दिखा रहे हैं ताकि इस हादसे से सबक लिया जा सके, हालांकि इस पर भी संशय है क्योंकि भविष्य में ऐसे हादसे दोबारा ना हो इसका इंतजाम तो हो रहा है, लेकिन बड़ा सवाल यही है कि क्या ऐसा वाकई हो पाएगा।
11: किसी ने बेटा खोया, किसी की भाई ने जान गंवाई, इस अग्निकांड की चपेट में जो भी आए वो किसी न किसी के अपने थे, प्यारे थे, लाडले थे, घर के चिराग थे, जिंदगी का सहारा थे। अब इन तमाम परिजनों के एक ही सवाल है कि आखिर इस इमारत में जिंदगी की सुरक्षा के इंतजाम इतने ढीले और लचर क्यों थे?
12: घर से निकलने से पहले होता नहीं, आम दिनचर्या में बात होती है, ध्यान रखना था, कुछ बातचीत आखिरी लफ्ज याद है, आखिरी क्या बातचीत आपकी हुई?
13: यही मैं कहता हूँ, बच्चा बेटा ठीक से जाना, आराम से जाना, भले 2-4 मिनट लेट पहुँचो लेकिन सुरक्षित जाना, ढंग से जाना, बस यही बात होते हैं, जाओ बेटा बाय करके चला जाता है, हेलो करके।
12: लगता था कि ये उसकी जिंदगी का आपके लिए एक आखिरी बाय होगा?
13: नहीं, ये कभी महसूस नहीं किया हमने।
11: ये नीलेश के परिजन है, इसी घर से बड़ी उम्मीदों के साथ नीलेश नौकरी करने घर से निकला था, अब इसी घर के सामने नीलेश का शव रखा है अंतिम संस्कार के लिए। कल पिता ने घर से निकलते हुए बेटे को आशीर्वाद दिया था, आज उस क्षण को कोस रहे हैं। माँ शव के पास बैठी बेटे की मौत का मातम मना रही है।
12: परिवार में और पूरे मोहल्ले में जिस तरह की खामोशी है उसको मैं यहाँ खड़े होकर महसूस कर सकता हूँ, और इन महिलाओं का जो दर्द है, इन घरवालों का जो दर्द है, उसकी जवाबदेही किसकी है, इसकी जिम्मेदारी भी तय होनी चाहिए।
11: नीलेश अपने घर के इस कमरे में कभी वापस नहीं आएगा, ये कमरा इसके बगैर हमेशा सूना रहेगा, नीलेश की बनाई ये पेंटिंग भी यादों में ही रहेगी, बिल्कुल नीलेश की तरह। लखनऊ में हुए हादसे से जुड़ी अब कई दर्दनाक कहानियां हैं, पीड़ा है, तकलीफ है, जिंदगी भर के जख्म हैं, और सवाल पूरी व्यवस्था पर है। जब बिल्डिंग धू धू कर चल रही थी तो अंदर फंसे बच्चे मदद के लिए चिल्लाते रहे, बाथरूम में छिपते रहे, खिड़कियों से कूदते रहे, लेकिन बाहर निकलने का केवल एक रास्ता था, लिहाजा जिंदगी बचाना और ज्यादा मुश्किल हो गया।
14: करके बताया कि भैया आप फंस गए, 2 दिन पहले मेरा ऑपरेशन किडनी स्टोन को, हम बेड से सीधा भागे, हमने कहा बीगो निकालो मुझे जाना है, यहाँ है, उसके बाद बात नहीं हुई। वो बताया हम बाथरूम में हैं, इतनी बात बताई कि हम बाथरूम में 5-6 लोग आ गए हैं, भैया जल्दी आ जाना, बस इतनी बात हुई, उसके बाद नहीं हुई।
11: जिन भी बच्चों ने लखनऊ में हुए इस हादसे में अपनी जान गंवाई उनमें कोई परिवार निकलौता था, कोई मेहनत कर परिवार को मदद कर रहा था, लेकिन इस अग्निकांड में सब कुछ तबाह हो गया। तो क्या इन आंसुओं का सिस्टम पर कोई असर होगा? कोई सीख ली जाएगी कि आगे ऐसा दोबारा हादसा न हो पाए? लखनऊ से समर्थ श्रीवास्तव और संतोष शर्मा के साथ कुमार अभिषेक आज तक।
1: हमारे साथ हमारे संवाददाता समर्थ लगातार जुड़े। समर्थ, क्या सिस्टम सीख लेगा? यह बहुत बड़ा सवाल है, लेकिन इसका जवाब भी मिलता है कि सिस्टम कभी सीख लेगा ही नहीं, क्योंकि अगर इनका इरादा होता बदलने का, सिस्टम को ठीक करने का, तो बहुत सारी अग्निकांड की घटनाएं हुई उसके बाद सीख लेते। हाल में मालवीय नगर में इतने लोग मर गए तब सीख लेते, लेकिन इन्होंने कुछ नहीं सुधारा, इन्होंने कुछ ठीक नहीं किया। इनको हर जगह से सिर्फ पैसा चाहिए।
10: राजीव, देखिए अभी हाल ही में कई घटनाएं हुई हैं, गाजियाबाद की घटना, एक घटना का आप खुद जिक्र कर रहे हैं, मुझे बहुत अच्छे से याद है, लगभग 3 साल पहले की बात है। लेवाना यहाँ का एक बहुत बड़ा होटल हुआ करता था, वहां पर एक भीषण आग लगी थी, वहां पर भी ऐसी तस्वीरें आई थी, लोग वहां से छलांग लगा रहे थे, फांद रहे थे, लेकिन क्या एक्शन हुआ? जरूर होटल सील हो गया उस टाइम पर, ये चर्चा हुई कि होटल गिरा दिया जाएगा, इलीगल है, 10 कमियां निकल आई, लेकिन ठीक है, सब एक हफ्ते 10 दिन चला, सब भूल गए। और यही बात लगातार जो पेरेंट्स हैं बच्चों के, वो कह रहे हैं कि भैया सब कुछ होगा, सारी कार्रवाई होगी, मॉक ड्रिल्स हो जाएंगी, कई सस्पेंशंस भी हो जाएंगे, लेकिन एक हफ्ते के भीतर सब भूल जाएंगे। ये कहना है आदित्य श्रीवास्तव के परिवार का, जिसके परिवार वाले कल बिलख रहे थे, बात करते करते उनके आंसू छलक रहे थे। हम नीलेश के परिवार भी गए, जहां उनकी मां बेसुध पड़ी थी और जहां उनके ही 26 साल के बेटे की डेड बॉडी पड़ी थी, वो उसे देखकर निहार भी रही थी और उनके दिमाग में ये भी था कि यह आखिरी कुछ क्षण है जब एक तरीके से उनका बेटा किसी भी रूप में हो, लेकिन वो यहां पर है। उनके पिता ये कह रहे थे कि मेरे दिमाग में, मेरे जहन में अपने बेटे से आखिरी मुलाकात आ रही है, जब वो मेरे पैर छूकर घर से नौकरी करने निकला था। वो शौकीन था पेंटिंग्स का, नीलेश ने अपने माता पिता की पेंटिंग्स तक बनाए हैं। आप सोचे, एक टैलेंटेड लड़का, उसका क्या कसूर था? वो गेमिंग सॉफ्टवेयर बनाना सीख रहा था,
0: चढ़ गई और परिवार में मातम है और एक ऐसा माहौल है जो लंबे वक्त तक यूं ही जारी रहेगा। आज तक ने हादसे के शिकार कुछ परिवारों से बातचीत की, सबका एक ही सवाल है कि ऐसा भीषण कांड बार बार क्यों होता है?
3: मैंने देखा है, मैंने सब देखा, मैं बराबर यही कह रही थी कि एकदम से देखा था मैंने सब, मेरा बेटा भी होता दुनिया में, मेरी तो दुनिया उजड़ गई।
13: मौके कोई था ही नहीं, बंद था सब। अब जिस हिसाब से दिखाया गया उस हिसाब से बंद है, सब बाहर के आदमी खड़े क्या करें?
15: इसको सरकार की नाकामी है कि जो कि
16: कैसे ये यहाँ पे रेजिडेंशियल में ये बन गया,
15: ये कोचिंग चलाने का जो परमिशन दिया है उसको और कोचिंग चलाने वाले संचालक को फांसी होना चाहिए।
17: गेमिंग जोन भी था ऊपर और नीचे पेट शॉप है, आप जैसे दिख रहे हैं ना कि आप खुद भी देख सकते हैं, कैमरा आप दिखाओ ना वहाँ से, आप इधर देखो पहले, आप ये देखो ना, आप खुद सोचो यहाँ से कितने बच्चे भाग पाएंगे, कितने बच्चे भाग पाएंगे यहाँ पे, और जिस तरह एसी के आउटलेट्स यहाँ पे लगे हुए हैं, आप और मैं कितने भी फिट रहे हैं हम भाग नहीं सकते हैं।
18: वहाँ से सीढ़ियों के थ्रू आया था मैं प्रॉपर, और कुछ लोग विंडो के थ्रू आए और कुछ लोग पाइप के थ्रू, एक जना कूद गया था उसको लग गई थी,
19: एकदम से पता चला 5-6 बंदे ही भाग पाए, उसके अलावा सब बंदे ही
20: भाग नहीं पाए। कितने लोग मौजूद थे अंदर? लगभग
19: 25 बंदे थे।
20: 25 बंदे थे। आप लोग कैसे आग लग पाई? अचानक से काम करते
19: को नहीं पता कि कैसे लगी, नीचे से लगी आग, हम लोग किसी तरह इतने पतले से पाइप से निकले हैं,
20: पतले से पाइप से खुद के निकले हैं।
21: कैसे आग लगी नहीं पता चली आप लोगों को?
1: और अब रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन होंगे हाजिर, आप देखते रहिए आज तक।
2: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच, ड्यूरेबल पाइप्स, फिटिंग्स एंड टैंक्स, अ कंप्लीट रेंज ऑफ सैनिटरी सॉल्यूशन।
22: नीड बेटर इंटरनेट? Cox Internet has the fast, reliable speeds you're looking for. Perfect for seamless streaming, gaming, yeah! And working from home. And now get Cox 300 Meg Internet with a 2-year plan, price lock guarantee, plus equipment included. Oh, yeah! So get your household up to speed. Switch to Cox Internet today. Taxes and fees excluded from price guarantee.
4: Hot Mics with Billy Bush streaming on TuneIn, your front row seat to the American zeitgeist. Get engaged on sports, politics, entertainment, tech, pop culture, hosted by yours truly. It's funny, it's honest, provocative, unfiltered takes, and real talk. No fluff with guests like Megyn Kelly and Dr. Phil, Candace Owens, Jack Osborne, Will Arnett, Charlie Sheen, all engaging personalities who actually say what everyone else is afraid to. On the go, catch the show live or on demand on the TuneIn app. At home and want to listen on your connected device, just say, play Hot Mics with Billy Bush on TuneIn. If you missed the live show or want to catch up, listen on demand with the Hot Mics with Billy Bush podcast, available whenever you want.
5: Chogan Book.

एक एनकाउंटर जिस पर अपनों के बीच ही घिर गई है सम्राट सरकार, एक एनकाउंटर जिस पर बीजेपी के भीतर ही मोर्चा बंदी हो रही है। 5 दिन पहले यानी 17 जून को भरत तिवारी पर बिहार पुलिस गोलियां बरसाती है और अब 5 दिन बाद खुद बिहार पुलिस और बिहार सरकार पर सवालों की बौछार हो रही है। एक बड़ा और संगीन सवाल भरत तिवारी के इस वीडियो की बुनियाद पर भी हो रहा है जो अभी अभी सामने आया है। तो क्या भरत तिवारी को अंदेशा था कि उसकी मौत करीब आ रही है? क्या उसे एहसास हो गया था कि वो इस तरह एनकाउंटर में मारा जाएगा? भरत तिवारी की शख्सियत और अतीत विवादों से भरा है, इसलिए इस वीडियो को लेकर भी दावा जोखिम भरा हो सकता है। बीजेपी के भीतर इस एनकाउंटर को लेकर किस कदर बेचैनी है, ये आप सम्राट सरकार के 2 मंत्रियों के बयानों से समझ सकते हैं। इस एनकाउंटर पर सवाल उठाने वाले, आक्रोश जाहिर करने वाले सिर्फ ये 2 मंत्री ही नहीं है, बीजेपी नेताओं की लंबी फहरिस्त है जो खुलकर नाराजगी जता रहे हैं। रोहित सिंह, पटना, आज तक।

टेक्नोलॉजी की दुनिया में बदलाव की तेज रफ्तार से आईटी सेक्टर में नौकरियों का पूरा गणित बदलने लगा है। आज कंपनियों की नज़र उन लोगों पर है जो सीधे बिजनेस की ग्रोथ बढ़ा सके। इसी बदलाव की झलक मई 2026 के हायरिंग आंकड़ों में नजर आ रही है। दरअसल देश में कुल व्हाइट कॉलर हायरिंग सालाना आधार पर महज 1% बढ़ी है। वहीं आईटी सेक्टर की भर्ती में 7% की गिरावट दर्ज की गई है। सबसे ज्यादा दबाव एंट्री लेवल और कम स्किल वाली नौकरियों पर दिखाई दे रहा है। दिलचस्प बात यह है कि आईटी सेक्टर की सुस्ती पूरी कहानी नहीं बताती, क्योंकि तस्वीर का दूसरा हिस्सा कहीं ज्यादा खास है। जहां एक तरफ सामान्य टेक रोल्स में मौके कम हुए हैं, वहीं दूसरी तरफ नई टेक्नोलॉजी से जुड़े एक्सपर्ट्स की मांग लगातार बनी हुई है, जिनमें शामिल हैं AI, मशीन लर्निंग, डेटा इंजीनियरिंग, क्लाउड और साइबर सिक्योरिटी। क्योंकि कंपनियां ऐसे प्रोफेशनल्स की तलाश कर रही हैं जो ऑटोमेशन और AI प्रोजेक्ट्स को आगे बढ़ा सकते हैं। वहीं फोकस बड़ी टीम बनाने की जगह हाई स्किल टैलेंट पर है, यानी नौकरी बाजार में चुनौती स्किल की है। कंपनियों की प्राथमिकता का असर सैलरी ट्रेंड पर भी साफ नजर आ रहा है। कम अनुभवी कर्मचारियों की भर्ती घट रही है, जबकि अनुभवी लोगों पर खर्च बढ़ाया जा रहा है। आंकड़ों के मुताबिक 20 लाख रुपए सालाने से ज्यादा पैकेज वाली नौकरियों में 11% की बढ़ोतरी हुई है, जबकि मिड लेवल और एंट्री लेवल हायरिंग में कमजोरी बनी रही है। AI को लेकर शुरुआती उत्साह खत्म होने की बातें भी कई बार सामने आई, लेकिन हायरिंग डेटा कुछ और ही कहानी बता रहा है। फरवरी के रिकॉर्ड स्तर के बाद थोड़ी नरमी जरूर आई है, फिर भी AI से जुड़ी नौकरियां बाकी बाजार से बेहतर प्रदर्शन कर रही हैं। मई 2026 में AI और मशीन लर्निंग से जुड़ी हायरिंग 22% बढ़ी है। इस बदलाव के साथ IT कंपनियों का पुराना ढांचा भी बदलता दिख रहा है। लंबे समय तक IT इंडस्ट्री एक ऐसे मॉडल पर चलती रही जिसमें जूनियर कर्मचारियों की संख्या सबसे ज्यादा होती थी और अनुभवी प्रोफेशनल्स कम, लेकिन AI के दौर में ये समीकरण बदल रहा है। अब पारंपरिक पिरामिड मॉडल की जगह डायमंड मॉडल उभर रहा है। इस मॉडल में एक्सपर्ट्स और अनुभवी कर्मचारियों की हिस्सेदारी ज्यादा होती है। वहीं कंपनियां टेक्नोलॉजी खर्च को रिजल्ट देने वाली भूमिकाओं की तरफ मोड़ रही हैं। इसी ट्रेंड का फायदा उन IT कंपनियों को मिल सकता है जिनकी पकड़ AI, डिजिटल इंजीनियरिंग और इंजीनियरिंग रिसर्च एंड डेवलपमेंट जैसे क्षेत्रों में मजबूत है। आदित्य के राणा आज तक।

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच चोगन परफ्यूम्स द फ्रेंच एडिशन फॉर हिम एंड हर।
1: बड़ी खबर आपको देते हैं। एसआईटी ने प्रारंभिक जांच रिपोर्ट गृह सचिव संजय प्रसाद को सौंप दी है। अयोध्या चोरी मामले से जुड़ी हुई बड़ी खबर, चढ़ावा चोरी इस मामले में जो एसआईटी का गठन हुआ है उसको 7 दिनों में यूं तो अपनी प्रारंभिक रिपोर्ट सौंपनी थी, लेकिन आज उन्होंने अपनी रिपोर्ट सौंप दी है। गृह सचिव संजय प्रसाद को रिपोर्ट सौंपी गई है। जांच की कार्य अभी भी चल रही है। 15 दिन में पूरी की पूरी रिपोर्ट भी सौंपनी है। हमारे संवाददाता

0: दुश्मनों के साथ दुश्मनी और दोस्तों के साथ भी दुश्मनी, क्या यही है ट्रंप के रिश्तों का फॉर्मूला? क्या ट्रंप जानबूझकर ऐसा करते हैं या फिर अनजाने में रिश्ते तल्ख होते चले जाते हैं? अमेरिका के राष्ट्रपति के तौर पर पहले कार्यकाल में और फिर दूसरे कार्यकाल में भी ट्रंप की दोस्ती की यही तस्वीर उभर कर सामने आ रही है। दोस्तों के साथ क्यों तल्ख हो जाते हैं ट्रंप के रिश्ते? इसराइल की सुरक्षा के लिए निशाना बनाया था ईरान, अब नेतन्याहू को लेबनन पर मिल रहा ज्ञान, बढ़ रहा घमासान। शुरुआत करते हैं अमेरिका और इसराइल से या फिर ट्रंप और नेतन्याहू से। ट्रंप और नेतन्याहू की ये तस्वीरें उनके दोस्त होने, उनके करीबी होने की गवाही दे रही हैं। इतने करीबी कि एक साल में ट्रंप इसराइल का साथ देने के लिए दो बार ईरान पर हमला कर चुके हैं, पहला जून 2025 में, दूसरा 28 फरवरी 2026 को। इन हमलों में ईरान ने तो जो खोया सो खोया, अमेरिका भी हर रोज करोड़ों डॉलर का नुकसान झेलता आया है। इसराइल के साथ कंधे से कंधा मिलाकर युद्ध भूमि में उतरे ट्रंप को अपने ही देश में इसके लिए आलोचनाओं का सामना करना पड़ा, लेकिन उन्होंने परवाह नहीं की। तो सवाल यह है कि अपने पश्चिम एशिया के इस सबसे भरोसेमंद दोस्त को भी ट्रंप ने आलोचना करने से क्यों नहीं बख्शा? पिछले कुछ दिनों से नेतन्याहू ट्रंप की आलोचना का शिकार हो रहे हैं, कभी ट्रंप तो कभी जेडी वैंस इसराइल को खरी खोटी सुनाने में नहीं चूक रहे। हालात देखते हुए अब नेतन्याहू के भी सुर बदलने लगे हैं। वो साफ साफ कह रहे हैं कि दुनिया को बेशक जो लगता हो, लेकिन सच यही है कि मेरी और ट्रंप की सोच अलग है।
1: In the United States,

0: They say that President Trump does everything that I ask him to do. And in Israel, they say that I do everything he wants me to do. Well, neither is true. We're leaders of independent and proud countries. We stand for our interests. I stand for the interests of Israel.
1: इजराइल किसी भी कीमत पर हिजबुल्ला को बख्शने के मूड में नहीं है और ईरान तब तक अमेरिका से कोई डील करने के मूड में नहीं है जब तक इजराइल लेबनन में सैन्य कार्रवाई रोक नहीं देता। डील को सील करने के लिए आतुर बैठे ट्रंप के लिए ये एक नई मुश्किल है जो इतनी आसानी से हल होने वाली नहीं है। लेकिन सवाल फिर वही है कि आखिर अपने बेहद करीबी देशों के प्रमुखों के साथ ऐसा क्यों करते हैं ट्रंप? अपनी इमेज बनाने के लिए, अपनी इमेज को बदलने के लिए या फिर दोस्तों को उनकी हदें बताने के लिए? आज तक ब्यूरो।
2: क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com

0: क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।

रिहायशी इलाके में बनी थी कमर्शियल इमारत, बिजली ओवरलोडिंग की भी खुलासा हुआ। राम मंदिर चढ़ावा चोरी की जांच कर रहे एसआईटी ने गृह सचिव संजय प्रसाद को सौंपी अपनी प्रारंभिक रिपोर्ट। अभी भी होती रहेगी जांच, फाइनल रिपोर्ट के लिए टीम के पास 15 दिन का समय।

नियुक्ति पार्टी के नए पदाधिकारी खुद चेयरपर्सन और भतीजे को महासचिव बताया, फिर हाथ समेत 8 नेताओं को कारण बताओ नोटिस। भरत तिवारी एनकाउंटर को लेकर बिहार में सियासत, पटना हाईकोर्ट में PIL दायर, निष्पक्ष जांच की मांग, बिहार राज्य मानवाधिकार आयोग ने संज्ञान लिया, 13 जुलाई तक रिपोर्ट तलब।

0: नमस्कार, 12 बजे 12 रिपोर्टर देख रहे हैं आप, मैं हूं राजीव ढोंडियाल। शुरुआत करते हैं सिलसिले की राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले को लेकर। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है, एसआईटी ने अपनी प्रारंभिक जांच रिपोर्ट गृह सचिव संजय प्रसाद को सौंप दी है, जिस रिपोर्ट का इंतजार हो रहा था। एसआईटी टीम के मेंबर विजय विश्वास पंत और किरण एस ने अयोध्या प्रकरण में कथित दान चोरी की प्रारंभिक रिपोर्ट सौंपी है। चढ़ावा चोरी मामले को लेकर अभी भी जांच चल रही है, अपनी पूरी डिटेल रिपोर्ट 15 दिनों का समय है तब सौंपनी है इस टीम को, लेकिन जो प्रारंभिक रिपोर्ट है वो सौंप दी गई है। जांच के दरमियान ही कई बड़े बड़े खुलासे हुए हैं, SBI बैंक उनका निजी एक एजेंसी को ठेका दे देना, SOPs का पालन ना होना, चांदी का गायब हो जाना, लैब तक ना पहुंचना, बहुत बहुत सारे खुलासे हुए हैं। और जो चढ़ावा चोरी हुआ है वो किसका चढ़ावा था? आम आदमी का चढ़ावा था, और अभी रिपोर्ट सार्वजनिक नहीं की गई है।
1: देखिए, ये शासन द्वारा नियुक्त 3 सदस्यीय SIT की रिपोर्ट आज हमने अपर मुख्य सचिव गृह महोदय को सौंपी है। यह एक प्रारंभिक प्रतिवेदन है और उसके क्रम में आज अपर मुख्य सचिव गृह साहब को सौंप दिया गया है। देखिए, ये गोपनीय जांच है तो इसके लिए मतलब हम इस समय पर कुछ भी वक्तव्य देने के लिए अधिकृत नहीं है। जो हमारी फाइंडिंग्स थी वो हमने उपलब्ध करा दी हैं।
0: आम आदमी का पैसा किसने चुराया ये कैसे पता चलेगा? इसे कहा गया है अभी गोपनीय है, इसलिए जांच सार्वजनिक नहीं की। हमारे संवाददाता कुमार अभिषेक हमारे साथ जुड़ गए हैं। कुमार अभिषेक, ट्रस्ट का ट्रस्ट किसने तोड़ा, किसने चुराया आम आदमी का पैसा, ये पता कैसे चलेगा? फिर आपके पास क्या जानकारी है?
2: देखिए राजीव, निश्चित तौर पर ये गोपनीय है और रिपोर्ट जो दी गई है उसकी जानकारी अभी सार्वजनिक नहीं हो सकती। मुख्यमंत्री को ये रिपोर्ट सौंप दी गई है, ACS संजय प्रसाद को दे दी गई है, लेकिन शर्तिया तौर पर इस रिपोर्ट में क्या कहा गया है, कौन दोषी है, क्या सचमुच वो तमाम बड़े नाम, खास करके जो ट्रस्ट के बड़े नाम है, चंपत राय, अनिल मिश्रा, गोपाल राव, क्या ऐसे लोग भी इस रिपोर्ट में इंडिक्टेड हैं या नहीं है, या सिर्फ जो सेवादार या फिर ऐसे लोग जो कि इस पूरे चढ़ावा को की गिनती करते थे, बैंक तक ले जाते थे, या फिर जिनके CCTV में जिनके चेहरे दिखे हैं, क्या सिर्फ ऐसे लोगों तक को ही दोषी ठहराया गया है, ये अभी पता नहीं चलेगा। निश्चित तौर पर ये रिपोर्ट जब कुछ सार्वजनिक होगी, कुछ चीजें निकल करके आएंगी, तभी एग्जैक्टली इस रिपोर्ट में क्या है पता चल पाएगा। लेकिन बहुत सारी बातें निकल करके सामने आई हैं, उसमें इस SIT को यह जरूर पता चला है कि इसमें चोरी हुई है, चोरी की वीडियो फुटेज इन तक पहुंची है, यानी कि इन्हें इन्होंने रिट्रीव किया है, वो दिखाई दिए हैं। इसके अलावा जो सबसे बड़ी बात है, जो भूमिका इन बड़े ट्रस्ट के लोगों की है, क्या उनकी भूमिका पर कोई बात इस रिपोर्ट में है या नहीं, ये सबसे अहम होगा।
0: बड़ा सवाल है कि सिर्फ चोरी करने वाला चोर है या चोरी करवाने वाले को भी चोर इसमें माना जाएगा, निगाहें रहेंगी इस रिपोर्ट पर। बहुत शुक्रिया आपका जानकारी के लिए। अब बात करते हैं लखनऊ अग्निकांड की। इस कांड को लेकर SIT ने जांच तेज कर दी है। SIT के अधिकारी अब उस बिल्डिंग में पहुंचे हैं जहां पर 15 लोगों की मौत हुई, जहां पर दम घुटने से उनकी जान गई। 2 सदस्यीय SIT में सीनियर IAS अमृत अभिजात, सीनियर IPS लखनऊ प्रवीण कुमार इसमें शामिल हैं। दोनों ही अधिकारियों ने बिल्डिंग के भीतर जाकर घटनास्थल का मुआयना किया। प्रवीण कुमार का कहना कि हम तो हर पहलू से जांच करेंगे, सरकार की निर्धारित समय अवधि के भीतर हम डिटेल रिपोर्ट भी दे देंगे। इस मामले में अब तक 4 लोगों की गिरफ्तारी हुई है, 4 अधिकारियों को भी सस्पेंड किया गया है।
3: देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर सर SIT का गठन हुआ है, जिसमें हम लोग यहाँ पर आए हैं। हम लोग यहाँ पर आए हुए हैं, घटना के सभी पहलुओं पर गहराई से जांच करके प्रस्तुत करेंगे और कोई भी चीज ऐसी नहीं होगी जिसको इसमें रह जाए, कोई स्टोन अनटर्न नहीं रहेगा। हम लोग पूरी तरह से जांच करके फिर बताएंगे।
4: सर, 7 दिन में रिपोर्ट तैयार करने के लिए कहा है, 7 दिन में रिपोर्ट?
3: मैंने कहा कि निर्धारित समय में हर आयाम पर हम लोग जांच करेंगे और जांच के पश्चात निष्कर्ष को भेजा जाएगा।
4: थैंक यू।
2: अभी तक इस मामले में 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इन 4 लोगों में वीरेंद्र शुक्ला हैं, त्रिशांक कृष्णा हैं, रामकृष्ण उपाध्याय हैं और साथ साथ सुरेंद्र कुमार साहू हैं। 6 लोगों पर गैर इरादतन हत्या का मुकदमा दर्ज हुआ है और ये मुकदमा जो पुरनिया थाना के थाना प्रभारी हैं उन्होंने दर्ज कराया है। जितने लोगों को गिरफ्तार किया गया है उसमें ज़्यादातर मकान, एक तो मकान के मालिक और साथ साथ ज़्यादातर तमाम वो कंपनियाँ, वो पेट शॉप के मालिक जो वहाँ पर जिनकी दुकानें थीं या फिर जिनकी कंपनियाँ उस कमर्शियल कॉम्प्लेक्स में उस बिल्डिंग में कार्यरत थी। इन चार लोगों को गिरफ्तार किया गया है जबकि छह नामजद हैं। लेकिन बड़ा सवाल ये कि आखिर सरकारी कर्मचारियों का क्या? तो फिलहाल चार लोगों को सस्पेंड किया गया है जिसमें से बिजली विभाग के जो कनेक्शन के प्रभारी हैं जानकीपुरम के, उनके अधिशासी अभियंता को सस्पेंड किया गया है। एलडीए के सहायक अभियंता और जेई, इन दोनों को सस्पेंड किया गया है और साथ साथ फायर स्टेशन ऑफिसर को भी सस्पेंड किया गया है।
0: लग रहा होगा अग्निकांड में कदम कदम पर भ्रष्टाचार था, नियमों की धज्जियां उड़ाए जाने की बात सामने आई है। शुरुआती जांच में बिजली ओवरलोडिंग का भी खुलासा हुआ है। जिस इमारत में हादसा हुआ वहां 20 किलोवाट का कमर्शियल बिजली कनेक्शन लगा था, रेजिडेंशियल एरिया था लेकिन कनेक्शन कमर्शियल था। जांच में सामने आया कि वास्तविक बिजली लोड यहां बढ़कर 34.1 KVA तक पहुंच गया। भीषण गर्मी और ओवरलोडिंग के चलते शॉर्ट सर्किट की आशंका कई गुना बढ़ गई। बताया जा रहा है कि एसी डक्ट से आग की शुरुआत हुई थी। और क्या क्या लापरवाही सामने आई है हमारे संवाददाता संतोष शर्मा बता रहे हैं।
5: लखनऊ के जिस कमर्शियल कॉम्प्लेक्स में लगी आग ने 15 लोगों की जान ले ली, वो कमर्शियल कॉम्प्लेक्स लापरवाही और नियम कायदे की धज्जियां उड़ाकर बनाया गया था। इस कमर्शियल कॉम्प्लेक्स में एंट्री एग्जिट पॉइंट एक था, यानी कि एक ही रास्ते से एंट्री हो रही थी और एग्जिट हो रहा था, और उस एंट्री एग्जिट पॉइंट पर भी एसी के पैनल, इलेक्ट्रिकल पैनल, एग्जॉस्ट लगाए रखे थे, यानी कि एक रास्ता और वो भी सकरा कर दिया गया। और यही वजह थी कि जब आग लगी, धुआं फैला, तो जो लोग दूसरी और तीसरी मंजिल पर पढ़ाई करने, नौकरी करने के लिए पहुंचे थे, वो उस धुएं में फंस गए और दम घुटने से 15 लोगों की मौत हो गई। फिलहाल अब कार्रवाई का दौर शुरू हो चुका है, FIR दर्ज हो गई है, SIT गठित कर दी गई है, फॉरेंसिक की जांच शुरू हो चुकी है और चार अधिकारी सस्पेंड किए जा चुके हैं।
0: लखनऊ अग्निकांड में 15 छात्रों की मौत के बाद बिल्डिंग के सह मालिक सुरेंद्र शुक्ल का पुराना रिकॉर्ड सामने आया है। सुरेंद्र शुक्ला का नाम साल 2015 के CPMT पेपर लीक मामले में सामने आया था। उस पर आरोप था कि बेटी को परीक्षा में पास करवाने के लिए पेपर लीक की उसने साजिश रची। मामले में FIR भी दर्ज थी लेकिन ऐसी अब जांच में पर्याप्त साक्ष्य न मिलने पर सुरेंद्र शुक्ला को राहत मिल गई। जानकारी के मुताबिक सुरेंद्र शुक्ला और उसके भाई वीरेंद्र शुक्ला पर प्रॉपर्टी कारोबार के जरिए करोड़ों रुपए कमाने के आरोप लगते रहे। दोनों भाइयों ने कथित तौर पर किसानों से सस्ती जमीन खरीदी, बड़े पैमाने पर प्लॉटिंग का कारोबार किया। इसके अलावा और क्या क्या खुलासे हो रहे हैं बता रहे हैं आज तक संवाददाता आशीष श्रीवास्तव।
6: 15 लोगों की मौत की वजह बनी ये बिल्डिंग 2016 से ही विवादित थी। इसको लेकर लखनऊ डेवलपमेंट अथॉरिटी ने पहले ही बुलडोजर चलाने की कवायद की थी लेकिन अधिकारियों की मिली भगत से कहीं ना कहीं ये बिल्डिंग को ध्वस्तीकरण से रोक दिया गया था, जिसके बाद आज ये हाल हुआ कि तकरीबन 15 लोग इसी बिल्डिंग में काल का गाल बन गए। सही समय पर अगर इससे पहले कार्रवाई की जाती और इस बिल्डिंग को ध्वस्तीकरण किया जाता तो शायद आज ये 15 जिंदगियां बच जाती, लेकिन इसके बावजूद ये प्रक्रिया चलती रही।
0: 20 से 25 साल की उम्र के युवा, उनमें से कुछ अपने भविष्य को संवारने का सपना लेकर उस बिल्डिंग में एनिमेशन की ट्रेनिंग लेने के लिए गए थे, तो कुछ ऐसे थे जो कि उन्हें ट्रेनिंग दे रहे थे। बिल्डिंग में ऐसी आग लगी कि 15 परिवारों की खुशियां उजड़ गई।
7: लखनऊ के वीभत्स अग्निकांड में 15 घरों के चिराग बुझ गए हैं। अब वो चिराग कभी नहीं जल पाएंगे, चाहे बात नीलेश की हो या आदित्य की हो। परिवार बिलख रहे हैं, रो रहे हैं, सिस्टम से सवाल कर रहे हैं कि हमारे 25-26 साल के लड़कों की, लड़कियों की आखिर गलती क्या थी, आखिर क्यों उस बिल्डिंग में पहले जितने भी विभाग जिम्मेदार हैं उन्होंने चेकिंग नहीं की, क्यों सरकार अब SIT बना रही है, पहले सरकार क्यों नहीं जगी, क्या हर बार एक नई घटना होने का इंतजार होगा। कई माता पिता जिम्मेदार ठहरा रहे हैं उन अधिकारियों को जो भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। आखिर कैसे इतने सालों से अलीगंज जैसे पौश इलाके में वो बिल्डिंग अवैध रूप से चल रही थी, जिसके पास ना फायर NOC थी ना वो सारी चीजें जो एक बिल्डिंग में होनी चाहिए।
0: लखनऊ अग्निकांड पर विस्तृत कवरेज भी आप देख पाएंगे दोपहर 12:30 बजे। राज्य 12 रिपोर्टर में अब अगली खबर पटना से है। अग्निशमन विभाग की टीम ने यहां पर फैजन खान के मसलापुर स्थित खान ग्लोबल स्टडीज कोचिंग सेंटर पर जाकर फायर सेफ्टी सिस्टम की जांच की है। इससे पहले 7 जून को भी जांच की गई थी, उसमें कई कमियां मिली थी। विभाग ने 10 दिन में सुधार का नोटिस दिया था। उसकी मियाद खत्म होने के बाद दूसरी बार जांच के लिए अग्निशमन विभाग की टीम पहुंची थी और जांच में पाया गया कि फैजल खान के कोचिंग सेंटर में फायर स्टेयर बनाने का काम पूरा ही नहीं हुआ है। यहां पर स्प्रिंकलर और डिटेक्टर अभी भी ऑटोमेटिक नहीं है। पंप हाउस एक लगा है लेकिन इसे पर्याप्त माना नहीं जाएगा। विभाग ने फिर 10 दिन का समय दिया है और कहा है कि अगर मानक पूरे नहीं हुए तो नियमानुसार कार्रवाई होगी।
8: फैसल खान उर्फ खान सर के कोचिंग संस्थान के ऊपर ताला लगने का खतरा मंडरा रहा है, क्योंकि जब से खान सर का पूरा विवाद शुरू हुआ है उसके बाद पहली बार 7 जून को फायर डिपार्टमेंट ने खान सर के कोचिंग संस्थान की ऑडिटिंग की थी और वहां पर पाया था कई कई मानकों का उल्लंघन हो रहा है और उसी कारण से 15 दिनों का समय दिया गया था कोचिंग संस्थान को कि वो अपनी व्यवस्था को दुरुस्त करे, वरना कोचिंग संस्थान को सील कर दिया जाएगा। और फिर 21 जून को बताया जा रहा है कि दूसरी बार जब फायर डिपार्टमेंट की टीम वहां पर पहुंची थी तो फिर भी उन्होंने पाया कि कई मानकों का उल्लंघन वैसा ही जारी है और बहुत ज़्यादा व्यवस्था में परिवर्तन नहीं किया गया था। और उसके बाद एक बार फिर 10 दिनों का समय खान सर को दिया गया है, तो ऐसे माना जा रहा है कि अगर जल्द ही कोचिंग संस्थान में फायर सेफ्टी को लेकर जो है पूरे मानकों को पूरा नहीं किया गया तो खान सर के कोचिंग संस्थान पर ताला भी लटक सकता है।
0: अगली खबर भी पटना से ही है, जहां तेज प्रताप यादव के घर पुलिस पहुंची है। जी हां, चोरी की एक शिकायत की जांच करने के लिए तेज प्रताप यादव के घर ये पुलिस पहुंची थी। तेज प्रताप यादव ने अपने पीए मोतीलाल राय के खिलाफ चोरी की शिकायत दर्ज करवाई थी। तेज प्रताप ने 20 लाख रुपए नकद समेत कई कीमती सामान गायब होने की शिकायत पुलिस में करवाई थी।
9: आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे और जनशक्ति जनता दल के सुप्रीमो तेज प्रताप यादव ने अपनी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव और करीबी रहे मोतीलाल के ऊपर चोरी का आरोप लगाया है। दरअसल तेज प्रताप यादव ने बीती रात पुलिस में इस बात की शिकायत की कि उनका सहयोगी मोतीलाल 20 लाख रुपए के साथ साथ अन्य कीमती सामान लेकर उनके सरकारी आवास से फरार हो गया। इसके बाद पुलिस की टीम जांच के लिए तेज प्रताप यादव के उस आवास पहुंची जहां वो आजकल रह रहे हैं। सुबह भी पुलिस की टीम तेज प्रताप यादव के आवास पर पहुंची थी। पुलिस फिलहाल छानबीन में जुटी है लेकिन मीडिया के किसी सवाल का जवाब पुलिस के अधिकारी नहीं दे रहे हैं। तेज प्रताप यादव का कहना है कि मोतीलाल की नीयत बिगड़ गई थी इसलिए उसने चोरी की घटना को अंजाम दिया।
0: अब बात महाराष्ट्र की करते हैं। महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे की मुश्किलें कम होती नहीं दिख रहे हैं। 6 सांसदों ने अभी शिंदे गुट में शामिल होने का ऐलान ही किया था कि अब विधायकों में बगावत की खबर आ रही है। उद्धव ठाकरे की बैठक में 4 विधायक पहुंचे ही नहीं और इसमें शामिल हैं एमएलसी सुनीश शिंदे, इसके साथ साथ संजय देरकर, इसके साथ साथ राहुल पाटिल और कलीना के विधायक संजय पोटनिस।
10: जिस दिन शिवसेना यूपीटी के 6 सांसद एकनाथ शिंदे शिवसेना में शामिल हो रहे थे उसी दिन उद्धव ठाकरे ने अपने लेजिस्लेटिव बॉडी की मीटिंग बुलाई जिसमें 3 एमएलए और 1 एमएलसी न आने से कई तरह के सवाल उठने लगे। 2/3 स्प्लिट एमएलए में कराने के लिए कम से कम 16 एमएलए की जरूरत एकनाथ शिंदे को पड़ेगी। अब देखना यह है कि क्या ऑपरेशन टाइगर 2 भी महाराष्ट्र में शुरू होने वाला है और सांसदों के बाद विधायकों का झटका उद्धव ठाकरे को फिर से लगेगा। मुस्तफा शेख, मुंबई आज तक।
0: महाराष्ट्र में उद्धव परेशान है तो बंगाल में ममता बैनर्जी की मुश्किलें बागियों ने बढ़ा रखी है। ऋतुव्रत बैनर्जी की अगुवाई वाले गुट ने नई कार्य समिति का ऐलान कर दिया है और ममता को उनके पद से ही हटा दिया है।
11: पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस की अंदरूनी जो स्थिति है वो काफी पेचीदा है। कल अचानक से एक ज्वाइंट सेशन बुलाया गया, ऋतुव्रत बंदोपाध्याय और संदीपन साहा मौजूद थे। तमाम जो बड़े नेता तृणमूल कांग्रेस के थे जो ममता से हटकर ऋतुव्रत के साथ आए थे वो सारे लोग मिलकर एक नेशनल वर्किंग कमेटी ठीक किया और उन्होंने बताया कि बाकायदा आगे जाकर चुनाव को भी सूचित किया जाएगा। दूसरे छोर पर ममता बनर्जी की तरफ से आज एक चिट्ठी सामने लाया गया जहां ये कहा जा रहा है कि ऋतुव्रत फैक्शन ये मीटिंग करने से पहले ही ममता बनर्जी ने नेशनल वर्किंग कमेटी तय कर लिया था। अब ये कहा जा रहा है कि ममता बनर्जी की तरफ से भी ये चिट्ठी भेजा जाएगा चुनाव आयोग को। तो असल में असली तृणमूल कांग्रेस कौन है ये लेकर अभी एक विवाद खड़ा हो गया है। एक तरफ काकुली घोष दोस्तेदार का फैक्शन, एक तरफ ऋतुव्रतों का फैक्शन, दूसरे छोर पर ममता बनर्जी का फैक्शन। अब आगे जाकर चुनाव आयोग को तय करना होगा कि असल पार्टी कौन है तृणमूल कांग्रेस का और दावेदार कौन है।
0: 12:12 रिपोर्टर में आप खबर पंजाब की। पंजाब के बठिंडा में एक फायरिंग से सनसनी मच गई और पूरी खबर बता रहे आज तक संवाददाता अमन भारद्वाज।
12: बठिंडा में भाजपा नेता और चिकित्सक डॉक्टर तरसेम गर्ग के हैनीमैन क्लिनिक पर हमला किया गया। ये हमला पेट्रोल बम से था। हालांकि आगजनी की इस कोशिश में जानी नुकसान नहीं हुआ, लेकिन दफ्तर में क्लिनिक में पड़े जो गमले या बाहर का सामान था उनका काफी नुकसान हुआ। पुलिस की ओर से इस मामले में मामला दर्ज कर लिया गया है और एसपी सिटी बठिंडा जो नरेंद्र सिंह है उनका कहना है कि मामले में सीसीटीवी हो, मौके के एविडेंस हो और बयान हो जो तरसेम गर्ग के दर्ज किए गए हैं उस पर कार्रवाई की जाएगी। हालांकि बताया जा रहा है कि दो असेलेंट हमलावर थे जो मोटरसाइकिल पर आए, एक ने वीडियो बनाई और एक ने पेट्रोल बम फेंका और उसके बाद वहां से फरार हो गए। हालांकि ये इसलिए कंसर्निंग है क्योंकि बुधवार के दिन मुख्यमंत्री पंजाब की वहां पर बठिंडा में फेरी भी है, एक रोड शो है और सुरक्षा व्यवस्था कानून व्यवस्था को लेकर इससे इस हमले से बड़े सवाल खड़े हुए हैं।
0: 12:12 रिपोर्टर में रुकने छोटे से ब्रेक के लिए फौरन होंगे हाजिर। आप देखते रहिए आज तक।
13: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोस चोगन परफ्यूम्स, द फ्रेंच एडिशन फॉर हिम एंड हर।
14: Pepsi Prebiotic Cola, an original and cherry vanilla. That Pepsi taste you love with no artificial sweeteners, only 30 calories, just 5 grams of sugar, and 3 grams of prebiotic fiber. That great Pepsi taste with even more to love. Pepsi Prebiotic Cola. Unbelievably Pepsi.
15: Need better internet? Cox Internet has the fast, reliable speeds you're looking for. Perfect for seamless streaming, gaming, and working from home. And now get Cox 300 meg internet with a 2-year plan price lock guarantee, plus equipment included. Oh yeah! So get your household up to speed. Switch to Cox Internet today. Taxes and fees excluded from price guarantee.
16: Diehard music fan? Qello Concerts brings you thousands of full-length concert films and behind-the-scenes music documentaries. From today's icons to yesterday's legends, we have it all. Qello Concerts by Stingray. Now available for free on Pluto TV. Stream now, pay never.

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: जब बात हो सोयाबीन के खेतों को खरपतवार से बचाने की, तो हर असली हीरो की पहली पसंद है क्रिस्टल क्रॉप का अमोरा। अमोरा तेज तरार वार, हारे अब खरपतवार, देश के हीरो की पहली पसंद।
3: 11 मई आज तक पर पेपर लीक कनेक्शन का पर्दाफाश।
4: नीट की परीक्षा से पहले एक गेस पेपर धड़ल्ले से मोबाइल पर बंटता है। 135 सवाल उसी गेस पेपर से हूबहू मिलते हैं।
5: 15 दिन पहले से पूरे देश में बट रहा था, एनटीए को पता नहीं।
3: 12 मई आज तक के खुलासे पर मुहर।
6: जिम्मेदारी लेते हैं कि जो हुआ गलत हुआ।
4: आज तक की खबर के बाद आज सरकार की तरफ से एक्शन हुआ, एनटीए जागी, पेपर रद्द हुआ। हमने आज तक पर लगातार दस्तक दी है, खबरदार किया है, हर दल की सरकार को जगाया है, बताया है कि पेपर लीक रोक लीजिए वरना बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ होता रहेगा।
3: जहां खबर वहां खबरदार।
7: इन एसोसिएशन विद E3HDMR, ये रिश्ता लंबा चलेगा।
8: क्या कहती है आपकी राशि, कैसा बीतेगा आपका दिन, किस दिन क्या करें क्या ना करें, क्या है आपके लिए शुभ रंग, कौन सा उपाय आपके दिन को बनाएगा बेहतर, देखिए राशि चक्र सिर्फ एस्ट्रो तक पर।
9: जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए श्री संत का।
10: प्लीज बजीपा, प्लीज डू ललन टॉक शो, इट्स अ रिक्वेस्ट, एंड प्लीज टू स्पीक ट्रूथ।
11: अप्रैल 2026 में उन्होंने एक रिटेल कंपनी का ऐड किया।
10: ऐसे हरकतें आप करोगे आपकी बाइक के साथ? आई चैलेंज यू बजीपा, अगर आपको इतना प्रॉब्लम है तप्पड़ खांड से और आप इतना कमा रहे हो, हमें भी तो कमाने दो। आओ ना रिंग में, वेट कम।
12: The question my party is asking now is whether I am best placed to lead us into the next general election. I have heard the answer of my parliamentary party to that question, and I accept that answer with good grace. Every decision I've taken has been about putting the country I love first. That is why I will resign as leader of the Labour Party. I have spoken to His Majesty the King this morning to inform him of my decision. I will ask the National Executive Committee of the Labour Party to set out a timetable with nominations opening on the 9th of July and completed by the summer recess.

0: अब बात करते हैं वर्ल्ड कप फुटबॉल की। लियोनेल मेसी ने बनाया है नया रिकॉर्ड और इस पर और ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता नितिन श्रीवास्तव।
1: फीफा वर्ल्ड कप का खुमार सर चढ़कर बोल रहा है और इस वर्ल्ड कप में एक खिलाड़ी ऐसा है जो दनादन गोल कर रहा है। लियोनेल मेसी वो नाम है जिसने इस वर्ल्ड कप में 5 गोल करके एक इतिहास रच दिया है। लियोनेल मेसी अब एक ऐसे खिलाड़ी बन गए हैं जिनके नाम अब सबसे ज्यादा गोल करने का रिकॉर्ड है। लियोनेल मेसी ने इस वर्ल्ड कप में 5 गोल किए और इसी के साथ ही कुल गोलों की संख्या अब 18 हो चुकी है। ऑस्ट्रिया के साथ इस मुकाबले में लियोनेल मेसी ने 2 गोल दागे जिसकी बदौलत अब लियोनेल मेसी ऑल टाइम टॉप स्कोरर बन चुके हैं वर्ल्ड कप में। अगर वर्ल्ड कप की बात की जाए तो ऑस्ट्रिया या फिर आप देख सकते हैं कि अर्जेंटीना, ये सब सारी जो टीमें वो बेहतर कर रही हैं। 28 तारीख से जो है राउंड ऑफ 32 शुरू होगा, उसके बाद 16, फिर क्वार्टर फाइनल, सेमीफाइनल और फिर बारी आएगी फाइनल मुकाबले की। इस वक्त अगर देखें तो लियोनेल मेसी की चर्चा हर तरफ हो रही है।
0: अब एक छोटा सा ब्रेक, देखते रहिए आज तक।
2: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोस। चोगन परफ्यूम्स, द फ्रेंच एडिशन फॉर हिम एंड हर।

0: It's Stormy, and previously on my show, Carly Pearce shared why she loves award show season.
1: For me, celebrating the people who create country music is about celebrating each other and rooting each other on and being a country music family and community and knowing that we are the generation right now that is going to influence many generations to come.
0: Listen to the Stormy Warren Show on the Big 615 weekdays 7 a.m. to 1 p.m. Central right here on TuneIn.
2: मई आज तक पर पेपर लीक कनेक्शन का पर्दाफाश।
3: नीट की परीक्षा से पहले एक गेस पेपर धड़ल्ले से मोबाइल पर बंटता है। 135 सवाल उसी गेस पेपर से हूबहू मिलते हैं।
4: 15 दिन पहले से पूरे देश में बट रहा था, एनटीए को पता नहीं।
2: 12 मई आज तक के खुलासे पर मुहर।
5: जिम्मेदारी लेते हैं कि जो हुआ गलत हुआ।
3: आज तक की खबर के बाद आज सरकार की तरफ से एक्शन हुआ, एनटीए जागी, पेपर रद्द हुआ। हमने आज तक पर लगातार दस्तक दी है, खबरदार किया है, हर दल की सरकार को जगाया है, बताया है कि पेपर लीक रोक लीजिए वरना बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ होता रहेगा।
2: जहां खबर वहां खबरदार।
6: इन एसोसिएशन विद
7: E3 HDMR, ये रिश्ता लंबा चलेगा।
8: समाजवादी पार्टी रामनवमी पर तो विरोध करती ही करती थी, श्री कृष्ण जन्माष्टमी के मनाने पर भी रोक लगाती थी, कावड़ यात्रा भी नहीं होने देती थी, गरीब को राशन नहीं मिलता था, गरीब को आयुष्मान की सुविधा का लाभ नहीं मिलता था, गरीब के लिए आवास की सुविधा नहीं थी, गरीब के घर में शौचालय की सुविधा भी नहीं थी, गरीब को एलपीजी के सिलेंडर की सुविधा भी नहीं थी, तब बिजली भी नहीं थी, क्योंकि ये कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के लोग और बहुजन समाज पार्टी के लोग तो अंधेरे में रहकर रहने के आदि थे, क्योंकि अंधेरे में ही इनकी डकैती कुशलतापूर्वक पड़ जाती थी, इसीलिए चाहते ही नहीं थे कि बिजली आए। गरीब को तबाह करते थे। आज मैं कह सकता हूं प्रदेश के अंदर 15 करोड़ गरीबों को फ्री में राशन की सुविधा का लाभ मिल रहा है, 10 करोड़ लोगों को आयुष्मान भारत में 5 लाख रुपए की मुफ्त में स्वास्थ्य की सुविधा प्राप्त हो रही है।
9: क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।

0: क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com। क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाएं स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा।
2: अयोध्या चर्चित चढ़ावा चोरी मामले में एसआईटी ने अपनी प्रारंभिक जांच रिपोर्ट गृह सचिव संजय प्रसाद को सौंप दी है। जांच प्रक्रिया भी जारी है। अयोध्या एसआईटी ने अयोध्या मामले में प्रारंभिक रिपोर्ट सौंपी है, कहा कि जांच गोपनीय, निष्कर्ष सरकार के पास। अरविंद केजरीवाल का चढ़ावा चोरी मामले में बयान, चंपत राय को अभी तक हटाया क्यों नहीं गया पूछ। अयोध्या में सरयू नदी में 12 करोड़ की वाटर मेट्रो ठप, जल स्तर की कमी बनी बड़ी बड़ी बाधा, संचालन पर सीधे सवाल। प्रयागराज में शत और विकास का संगम श्रृंगवेरपुर में तैयार हुआ, राम वन गमन मार्ग अयोध्या से जुड़ने को तैयार, पौराणिक धरोहर। लखनऊ के अलीगंज इलाके में कोचिंग और गेमिंग सेंटर में भीषण आग, 15 युवाओं की गई जान, 9 घायल। लखनऊ आगाहत से में जान बचाने के लिए पहली मंजिल से कूदे बच्चे, एक लोहे की ग्रिल पर जाकर गिरा। लखनऊ आघात से में आग से बचने के लिए बाथरूम में छिपे थे बच्चे, दम घुटने से मौत हो गए। सीएम योगी ने घटनास्थल और अस्पताल के लिए जायजा, मृतकों के परिवार वालों के लिए 5-5 लाख का मुआवजा। लखनऊ अलीगंज अग्निकांड में एसआईटी जांच में बड़े खुलासे, प्रमुख सचिव अमृत अभिजात बोले कि जांच में कई कमियां सामने आई हैं। लखनऊ आघात से में पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए अब 6 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया, 7 के खिलाफ कुल मामला दर्ज है, बिल्डिंग मालिक समेत 4 लोगों की गिरफ्तारी भी हुई। प्रशासन का बड़ा एक्शन है, एई जेई समेत 4 अधिकारी अभी सस्पेंड है, जिम्मेदारी भी तय होगी, कहा जा रहा है। लखनऊ के घटनास्थल पर फॉरेंसिक टीम भी पहुंची, साक्ष्य जुटाकर जांच तेज। अलीगढ़ अग्निकांड में रेस्क्यू फायर टीम ने दीवार में 4 छेद भी किए, धुआं निकालकर बचाव अभियान चलाया गया। दुबई से घिरे कमर्शियल कॉम्प्लेक्स में फायर ब्रिगेड का बड़ा ऑपरेशन भी चला, पड़ोसी छत से रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया। लखनऊ अग्निकांड में 15 छात्रों की मौत के बाद बिल्डिंग के सह मालिक सुरेंद्र शुक्ला का पुराना रिकॉर्ड भी खंगाला गया। सुरेंद्र शुक्ला का नाम 2015 के CPMT पेपर लीक मामले में शामिल था, आरोप था कि बेटी को परीक्षा में पास करवाने के लिए पेपर लीक की साजिश रची गई। मामले में FIR दर्ज थी, लेकिन STF को जांच में पर्याप्त साक्षी नहीं मिले। जानकारी के मुताबिक सुरेंद्र शुक्ला और उसके भाई वीरेंद्र शुक्ला पर प्रॉपर्टी कारोबार के जरिए करोड़ों रुपए कमाने के भी आरोप। दोनों भाइयों ने कथित तौर पर किसानों से सस्ती जमीन ली और बड़े पैमाने पर प्लॉटिंग का कारोबार किया। लखनऊ आग हादसे पर प्रधानमंत्री ने भी जताई संवेदना, प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से मृतकों के परिवार वालों के लिए 2-2 लाख, घायलों के लिए 50,000 की आर्थिक मदद। लखनऊ अग्निकांड पर उपराष्ट्रपति ने जताया दुख, मृतकों के परिजनों के प्रति संवेदनाएं, घायलों के जल्द स्वस्थ होने की कामना। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने लखनऊ आग हादसे पर जताया दुख, बोले कि पीड़ित परिवारों के प्रति संवेदनाएं। कानपुर में कोचिंग संस्थानों, व्यावसायिक प्रतिष्ठानों पर अब KDA की कार्रवाई, कई संस्थान किए गए सील। नियमों के उल्लंघन पर कानपुर विकास प्राधिकरण की यह कार्रवाई, 16 प्रतिष्ठानों को सील किया गया।

0: उत्तर प्रदेश में हुई दो घटनाओं को लेकर एसआईटी जांच चल रही है और इस वक्त की बड़ी खबर सबसे पहले लखनऊ से देते हैं। अयोध्या के राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में एसआईटी ने अपनी शुरुआती रिपोर्ट सरकार के पास पहुंचा दी है। एसआईटी ने 7 दिनों तक चली जांच रिपोर्ट सरकार के अतिरिक्त गृह सचिव संजय प्रसाद को सौंप दी है। इस रिपोर्ट में क्या खुलासा हुआ इसके बारे में जानकारी नहीं दी गई, लेकिन लखनऊ मंडल के आयुक्त विजय विश्वास पंत और किरण एस ने यह रिपोर्ट अब सरकार को सौंप दी है। कहा कि रिपोर्ट गोपनीय है। तो चढ़ावा चोरी मामले में जो जांच है वो चल रही है, प्रारंभिक रिपोर्ट सौंप दी गई है। और लखनऊ से हमारे संवाददाता कुमार अभिषेक भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। कुमार अभिषेक, सबसे बड़ा सवाल तो यही कि इस रिपोर्ट में क्या है, आगे क्या कार्रवाई हो सकती है इस रिपोर्ट के आधार पर?
1: देखिए राजीव, कार्रवाई तो होगी, लेकिन इस रिपोर्ट में क्या है ये सबसे अहम सवाल है। 6 दिनों की मशक्कत के बाद ये रिपोर्ट तैयार हुई है और माना यह जा रहा है कि क्या चोरी जो हुई है, जो फर्स्ट हैंड चोरी जिसे कह रहे हैं कि जो दान पात्र था या फिर दान को चुराने की चीजें निकल करके सामने आई हैं उसके बारे में रिपोर्ट है, जो सीसीटीवी में जो लोग देखे गए हैं उनकी रिपोर्ट है। इसके अलावा शुरुआती रिपोर्ट में वो जो तमाम लोग इस पूरे दान प्रक्रिया से जुड़े हुए हैं उनके बातचीत के आधार पर, उनसे जो इन्वेस्टिगेट किया गया है उस आधार पर निकाली गई चीजें हैं कि आखिर चोरी और चोरी का लूप कहां कहां है।
0: क्या ट्रस्ट शुरुआती सदस्य का नाम है, क्या सूत्रों से कोई जानकारी मिली है?
1: देखिए ट्रस्ट का के 3 बड़े सदस्य हैं, 2 बड़े सदस्य हैं चंपत राय और गोपाल राव हैं, इसके अलावा अनिल मिश्रा, ये 2 बड़े सदस्य हैं ट्रस्ट के और गोपाल राव तीसरे। इनके नाम हैं या नहीं है, नाम तो जरूर होंगे, लेकिन क्या नाम जो पूरी गड़बड़ियां हुई हैं उसके जिम्मेदार के तौर पर हैं या फिर इनके नाम को इस तरह से रखा गया है कि कहीं क्लीन चिट तो नहीं मिली है। देखिए बहुत तेज चर्चा ये भी है कि क्योंकि चंपत राय को लेकर के बार बार कहा गया कि भाई वो निष्कलंक हैं, उनके ऊपर किसी तरह का भ्रष्टाचार का आरोप नहीं हो सकता, लेकिन अभी तक उन्हें इंडिक्ट किया गया है कि नहीं, ये इस रिपोर्ट में है या नहीं, इस बारे में साफ तौर पर सीधे तौर पर कहना नामुमकिन है। ये जरूर है कि प्रक्रियात्मक चीजें हुई हैं और इसमें इनके नाम जरूर होंगे।
0: ठीक है कुमार अभिषेक, आप हमारे साथ बने रहिए। और एक और बड़ी खबर अब आपको देते हैं, लखनऊ अग्निकांड से जुड़ी हुई बड़ी खबर है जिसे लेकर एसआईटी ने अपनी जांच तेज कर दी। 2 एसआईटी की जांच की हमने आपको जानकारी दी, एक अयोध्या मामला और दूसरा लखनऊ अग्निकांड का मामला। हादसे वाले जगह पर जाकर एसआईटी ने जायजा लिया।
2: सामने बेटा तो

0: दो एसआईटी उत्तर प्रदेश में जांच कर रहे हैं, एक एसआईटी लखनऊ अग्निकांड की जांच शुरू कर चुके हैं और एक एसआईटी ने अपनी प्रारंभिक रिपोर्ट सौंप दी है अयोध्या में चढ़ावा चोरी मामले में। दोनों ही एसआईटी अपनी इन्वेस्टिगेशन अभी भी जारी रखे हुए हैं। दोनों ही जगहों पर बहुत बड़े सवाल हैं। अयोध्या मामले में तो सवालों का सिलसिला थम नहीं रहा है। जिस ट्रस्ट को इतनी बड़ी जिम्मेदारी थी उस पर इतने गंभीर आरोप है कि चढ़ावा चोरी हो गया। दूसरा, उत्तर प्रदेश के लखनऊ में राजधानी में पॉश एरिया में आग लग जाती है, 15 लोगों की जान चली जाती है और इसको तो सीधा सीधा लोग हत्या ही कह रहे हैं, क्योंकि ये बहुत ये लापरवाही नहीं, एक भ्रष्टाचार का जीता जागता उदाहरण है। घटनास्थल पर एसआईटी के दो बड़े अधिकारी पहुंचे और वो अब कह रहे हैं कि खामियां मिली हैं। ये बड़े अधिकारी पहले क्यों नहीं देख पाए इन खामियों को? एसआईटी अपनी जांच कर रहे हैं, हादसे वाली जगह पर जाकर एसआईटी ने जायजा लिया, एसआईटी टीम को घटनास्थल पर खामियां भी मिली है। एसआईटी के सदस्य और प्रमुख सचिव अमृत अभिजात ने आज तक से विशेष बातचीत में बताया जांच के दौरान कई कमियां आई हैं। उन्होंने कहा कि फोरेंसिक टीम के साथ मिलकर घटनास्थल का निरीक्षण कर रहे हैं, हर पहलू की जांच कर रहे हैं। अमृत अभिजात के मुताबिक जांच में मिले तथ्यों के आधार पर रिपोर्ट तैयार कर रही। उन्होंने संकेत दिए कि जांच में जो खामियां सामने आई उसके आधार पर कार्रवाई करेंगे। एसआईटी सदस्य ने स्पष्ट किया कि प्रारंभिक जांच में कई गंभीर खामियां, कई लापरवाही उजागर हुई है और विस्तृत रिपोर्ट भी शासन को सौंपेंगे। हमारे संवाददाता आशीष श्रीवास्तव इस खबर पर हमारे साथ जुड़े। आशीष, खामियां हैं, त्रुटियां हैं, ये तो क्लियरली दिख रहा है, कार्रवाई किस पर करेंगे, क्या कुछ अब तक मिला इस जांच में?
1: देखिए राजेश, सबसे बड़ी बात है कि इस पूरे मामले पर एसआईटी की टीम जब अंदर पहुंचती है तो उसको कहीं ना कहीं शुरुआत में ही खामियां दिखना शुरू हो जाती हैं, क्योंकि जो एसी के पैनल बने हुए हैं वो बाहर हैं और कहीं ना कहीं उन पैनलों पर निकलने का स्पेस नहीं है, यानी कि जो खामियां हैं वो फोरेंसिक टीम के साथ दिखी हैं और इसी वजह से अब उनको भी ये लग रहा है कि इस एसआईटी रिपोर्ट में बड़ी कार्रवाई की जाएगी, क्योंकि जिस बिल्डिंग का जो मालिक है वो जरूर गिरफ्तार हुआ है, लेकिन उसके साथ साथ और कितने लोग इसके जिम्मेदार हैं, कंपनी का जो सीईओ है उसको भी गिरफ्तार किया गया, लेकिन क्या इसके अलावा जो और जिम्मेदार अधिकारी हैं जिन्होंने एनओसी चेक नहीं की, जिन्होंने यहाँ पर करेक्शन दिया, जिन्होंने इस बिल्डिंग को पास किया, इसके अलावा वो अधिकारी जो यहाँ पर इंस्पेक्शन करने नहीं पहुंचे, उन सभी पर कार्रवाई बनती थी। एक एसआईटी एक लंबी विस्तृत रिपोर्ट भी इसको बनाएगा, उसके बाद उन पर कार्रवाई संभव होगी।
0: बहुत बड़ा सवाल है कि आप किस किस पर कार्रवाई करेंगे? ऐसे तो पूरा के हर जितने भी विभाग हैं सारे विभाग के अधिकारियों को हटाना पड़ेगा, इतना भ्रष्टाचार यहाँ पर दिखाई देता है। आप बने रहे हमारे साथ। लखनऊ आघात से में जांच करने के लिए पहुंची है टीम, अब केजीएमयू भी बताया जा रहा है कि एसआईटी की टीम पहुंची है, क्योंकि जो घायल हुए उनको केजीएमयू में भर्ती कराया गया, वहां पर उपचार चल रहा है। 15 लोगों को तो बचाया नहीं जा सका, उनकी जान चली गई, दम घुटने से जान गई है। केजीएमयू के जो डॉक्टर्स हैं वो खुद इस बात की जानकारी दे रहे हैं और अब एसआईटी की टीम वहां पर पहुंची है, क्योंकि हादसे के चश्मदीद अभी वहां पर है, उनका इलाज चल रहा है और एसआईटी की टीम पहुंची आग हादसे की जांच करने के लिए केजीएमयू। तो लखनऊ आग हादसे मामले की जांच के लिए अब केजीएमयू भी पहुंची है, जहां पर जो घायल है उनका उपचार चल रहा है। लखनऊ के इस लाक्षाग्रह में 15 लोगों की जान चली गई, वो 15 नौजवान जो एक एक सांस के लिए घुट घुट कर मर गए, उसका जिम्मेदार कौन है? क्या उनकी जान बचाई जा सकती थी? उसका जवाबदेह कौन है? कैसा वो सिस्टम है जो मुसीबत के वक्त कान में तेल डालकर सोया रहता है? कैसी वो हुकूमत है जो सिर्फ हादसे के बाद 8-8 आंसू बहाती है? ये बहुत बड़े सवाल है और क्या इन सवालों का जवाब कभी मिल पाएगा?
2: सागर, नीलेश, अनामिका, संयम, अनुषा, सुखमनी, आदित्य, ज्योति, भविष्य, अब्दुल, सूरज, जैनील, अंबार, सुमल्या। लखनऊ में कल लगी आग में 15 घरों के चिराग बुझे हैं। उनका कोई कसूर नहीं था, कसूर बस इतना था कि उन्होंने सिस्टम पर भरोसा किया था।
3: फोन कर रहे थे सब, कोई
4: फोन कर रहे थे,
3: फोन रहे थे कि कोई बचा ले हमें, नहीं कोई फोन ही नहीं उठा रहा था।
2: इनका कसूर बस इतना था कि इन्हें अपनी हिफाजत का भरोसा था।
5: पूरा ऑफिस धुएं से भरा हुआ था और नीचे से ही आग ऊपर की तरफ आ रही थी, तो धुआं से पूरा कॉरिडोर ब्लॉक हो गया था, हम लोग सांस भी नहीं ले पा रहे थे।
2: इनका कसूर बस इतना था कि इन्होंने हुकूमत पर भरोसा किया था।
5: हम लोग बिजली का तार पकड़ के बाहर लटक के आए, जो जल रहा था, जैसे मेरी उंगलियां थोड़ी से जल गई, कोई एग्जिट नहीं था, कोई राह बाहर निकल आता है, बहुत मुश्किल से हम लोग निकल पाए।
2: इनका कसूर बस इतना था कि इन्होंने अपने सपने के लिए, अपनी तकदीर के लिए, अपने परिवार के लिए, दो वक्त की रोटी रोजगार के लिए अपनी जान की फिक्र छोड़ दी थी। लेकिन जब भ्रष्टाचार की इमारत में लापरवाही की आग सुलग रही थी, तो यहाँ ना तो सिस्टम था, न जान बचाने के रास्ते थे, न मौका था, न इंतजाम थे। ये नौजवान अपने हाल पर छोड़ दिए गए थे, जो बच सके तो बच लिए, जो फंस गए उनका दम घुट गया। इस बद इंतजाम तंत्र में धधक त्याग के बीच से अपनी जान बचाकर जीतने वाले नौजवानों को सुनिए और फैसला कीजिए कि इसका जिम्मेदार कौन था।
4: रास्ता खुलता है, एग्जिट विंडो वगैरह कोई नहीं था,
3: कोई नहीं थी, तो बस मैं तो खुलता था, पता नहीं कोई भी रास्ता ढूंढ रहा है, चेक करके निकले कैसे,
4: परिस्थिति क्या थी, क्या कोई बचाने के लिए आया, कैसे अंदर कुछ पहुंच पाए,
3: फोन कर रहे थे सब,
5: हम लोग बड़ी मुश्किल से निकल पाए थे, निकल नहीं पा रहे थे, आगे कोई रास्ता नहीं था,
4: कोई रास्ता नहीं था,
5: नहीं कोई एग्जिट नहीं था, कोई राह बाहर निकल आता है, बहुत मुश्किल से हम लोग निकल पाए, छोटी थी एक फिल्मी थी उसी के बाहर निकल के आना होगी, एक नहीं आता,
4: अचानक लगी कैसे आके, आपको पता कैसे लगा,
6: पता तो बहुत देर में लगा, जब तक हम हमारे टेक्निकल जो आर्टिस्ट है उसने बोला कि वहाँ पर तो पीसीज बंद करो, तो हमने पीसी बंद, जब तक बंद कर रहे थे हमने बोला कि पीसी बंद क्यों करा, जब तक हमने देखा बाहर तो बहुत धुआं धुआं होता था, तो फिर हमको तब जाके मतलब
4: तो बाकी लोग फंसे कैसे अंदर, मतलब किस वजह से, क्या वो भाग नहीं पाए,
6: भाग नहीं पाए क्योंकि बहुत ज़्यादा धुआं हो गया था, बहुत ज़्यादा, मैं जब निकला था तब भी बहुत ज़्यादा धुआं था, क्योंकि सांस लेने को पूरा इतना बुरा था कि मैं एक सांस में निकला हूँ।
2: ये वो खुशनसीब नौजवान थे जो बच गए, लेकिन 15 ऐसे लोग जिन्हें इस बंद इमारत के बर्बाद सिस्टम ने जान बचाने का रास्ता नहीं दिया, उनके शव निकालने के लिए भी सिस्टम को सुराखों वाले रास्ते बनाने पड़े। अफसोस बस इतना कि द्वापर के लाक्षागृह से भी 5 पांडव बच गए थे। इस लखनऊ के लाक्षागृह में 15 घरों के चिराग बुझा दिए गए। समर्थ श्रीवास्तव, संतोष शर्मा और आशीष श्रीवास्तव के साथ कुमार अभिषेक, लखनऊ आज तक।
0: तो आखिरकार फिर लखनऊ में वही हो रहा है जो देश के दूसरे हिस्सों में होता है, आग लगती है, जान जाती है, राख बुझाई जाती है, जांच बिठाई जाती है, मुकदमा कायम होता है और फिर सब रफा दफा। लेकिन सवाल रफा दफा नहीं होते, सवाल शाश्वत हैं, जिनका कोई समाधान ना हुआ है ना होगा। लेकिन जनता को पता है कि इन हादसों के लिए कौन जिम्मेदार होता है, जिम्मेदार वो सिस्टम है जो जनता, प्रशासन और हुकूमत की जिम्मेदारियों से बनता है, और इस हादसे में सबसे पहले जिम्मेदारी ऐसी मौत की इमारतें बनाने वालों की होती है, उनमें रहने वालों की होती है, दूसरी जिम्मेदारी पुलिस प्रशासन की होती है जिन्हें इसी काम की निगरानी का वेतन मिलता है, पैसा मिलता है, तीसरी जिम्मेदारी हुकूमत वालों की होती है जिन्हें जनता ने अपना जनादेश देकर सत्ता की कुर्सी पर बिठाया होता है। और लखनऊ में जब आग लगी और 15 ये नौजवान बेमौत मारे गए, तब ये पूरा सिस्टम जाग जाता है। इमारत का मालिक गिरफ्तार है क्योंकि वह मौत का मुनाफा वसूली कर रहा था, इमारत में दफ्तर का मालिक गिरफ्तार है क्योंकि वो मौत से सौदागरी कर रहा था, इमारत में दफ्तर के मैनेजर गिरफ्तार है क्योंकि वो मौत के धंधे का मैनेजर था। लेकिन सिस्टम के दूसरे सबसे बड़े जिम्मेदार पुलिस प्रशासन के लोगों की गैर जिम्मेदारी को गिरफ्तारी लायक ही नहीं माना जाता, जबकि सवाल यह कायम है कि आखिर रिहायशी इमारत का कमर्शियल इस्तेमाल कैसे हो रहा था, क्या इसका सवाल का जवाब देंगे कोई, लखनऊ विकास प्राधिकरण क्यों कुंभकर्णी नियम सो रहा था, वो टैक्स लेता है ना, स्थानीय पुलिस की नजर इस पर क्यों नहीं पड़ी थी, क्या वो तनख्वाह नहीं लेता, पूरी सैलरी लेता है, नगर निगम के अधिकारी क्यों कान में तेल डाले पड़े थे, वो टैक्स वसूलते हैं, दमकल विभाग की नजर ऐसी इमारतों पर क्यों नहीं पड़ती, उन्हें तनख्वाह मिलती है, विद्युत विभाग को दर्जनों एसी का कनेक्शन ओवरलोडेड नजर नहीं आ रहा था, वो बिल वसूलते हैं, उनके पास पैसा जाता है। अब जब 15 लोगों की जान चली गई तो कहने को जांच तंत्र एक्टिव हो गया, सक्रिय हो गया, मुख्यमंत्री योगी ने फिर एसआईटी जांच बिठा दी है, 2 अधिकारियों को एसआईटी को 7 दिनों का समय दिया गया, मोहलत मिली है कि जांच करिए। यह एसआईटी हादसों परांठी बना करती है, जांच भी करेगी, पता भी लगाएगी इन 15 लोगों की मौत का जिम्मेदार किन किन के कंधों पर बांटी जाए। बिजली विभाग के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, दमकल विभाग के फायर सेफ्टी ऑफिसर, लखनऊ विकास प्राधिकरण के असिस्टेंट इंजीनियर, लखनऊ विकास प्राधिकरण के जूनियर इंजीनियर सस्पेंड किए जा चुके हैं। लेकिन अगर हम सिस्टम की बात करें तो यूपी में हुकूमत का ये 5 लेयर सिस्टम पार्षद से प्रधानमंत्री तक ऐसा ही है, सारे इदारे एक पन्ने पर चलते हैं, फिर भी जिम्मेदारी लेने में सिस्टम का ये थर्ड फ्रंट सबसे आगे होता है और बाकी सबसे पीछे होते हैं। इलाके के पार्षद को गैर कानूनी इमारत की खबर तक नहीं थी, पहला प्रतिनिधि, इलाके के मेयर, इलाके के जो विधायक है मरणोपरांत चेक बांटने के लिए पहुंच गए थे, दूसरा प्रतिनिधि, इलाके के सांसद भी मातम कुर्सी में हाजिर थे, ये तीसरा प्रतिनिधि, और सूबे के डिप्टी सीएम तो फपक फपक कर रो पड़े थे, चौथे प्रतिनिधि, और सूबे के मुख्यमंत्री सिर्फ अफसोसनाक दर्दनाक हादसे पर व्यथित हो सकते थे, पांचवें प्रतिनिधि। और जब इस सिस्टम के दोनों लेयर फेल हो जाते हैं तब सुलगते सवालों की आंच तीसरे स्तर तक जाती है और यह तीसरा स्तर आज तक जवाबदेह नहीं हुआ है, न कानून की अदालत में न जनता की नजर में। आपने सुना होगा कि लखनऊ में जो आग लगी है उसकी जांच हो रही है, एसआईटी जांच, हफ्ते भर में जांच रिपोर्ट सामने आ जाएगी, एसआईटी की टीम मौके पर पहुंच भी गई, जांच के सुराग तथ्य सबूत खंगालने भी लगी है।
7: एसआईटी यहां पर आई है जो जांच करने, इस पूरी बिल्डिंग को किस तरीके से यहां पर जांच होगी ये भी यहां पर जांच करेगी, क्योंकि जिस तरीके से जो आपने एडीजी प्रवीण कुमार है वो पहुंचे हैं, इसके साथ साथ अमृत अभिजात जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं वो पहुंचे हैं, और यहीं पर एसआईटी टीम के जो सदस्य हैं वो अब पूरे मामले की जांच करेंगे कि आखिर इस पूरे मसले पर जिम्मेदारी किसकी है और कौन इसके जिम्मेदार हैं। इसी वजह से ये एसआईटी की टीम स्पॉट पर पहुंची है जो कि अब जांच कर रही है, ये अधिकारी के साथ साथ वो सभी अब जो एंगल है, जो अभी जिस तरीके से इस पूरा मामला सामने आया इसमें जिम्मेदार कौन है, इन सभी की पुख्ता जांच इस बिल्डिंग से की जाएगी
8: माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश।
0: तो लखनऊ में हुए हादसे की जांच रिपोर्ट एक हफ्ते में आएगी, फिर मुकदमा चलेगा, गिरफ्तारी होगी, फिर जमानत और उसके बाद सजा का इंतजार। आप जानकर हैरान रह जाएंगे कि दिल्ली के उपहार सिनेमा अग्निकांड के अलावा हमारे देश में बिरले ही ऐसे अग्निकांड के मामले होंगे जिसमें लोगों की जान चली गई और मजाल है कि किसी को सजा हो सके। मिसाल के तौर पर आपको कुछ वाक्य भी याद दिला देते हैं। 2014 में तमिलनाडु के कुंभकोणम स्कूल के अंदर आग लगी थी, भीषण आग में 1, 2 नहीं 94 बच्चे भस्म हो गए, सजा क्या हुई? 5 साल की जेल। 2017 में मुंबई के कमला मिल्स पब अग्निकांड में 14 लोग मारे गए, गैर इरादतन हत्या का मुकदमा दर्ज हुआ, सब जमानत पर हैं, सजा का इंतजार है। 2018 में इसी लखनऊ में चारबाग होटल में अग्निकांड में 5 लोग मरे थे, गैर इरादतन हत्या का केस हुआ, आरोपी सजा जमानत पर हैं, सजा का इंतजार है। 2019 सूरत में तक्षशिला कोचिंग में आग लगी, 22 बच्चे झुलसकर मर गए, 14 गिरफ्तार हुए, सब जमानत पर हैं, केस चल रहा है, सजा का इंतजार। 2019 दिल्ली के अनाज मंडी में फैक्ट्री में आग लगी, 43 गरीब मजदूर मर गए, फैक्ट्री मालिकों पर मुकदमा चला, केस चलता रहा, सजा का इंतजार। 2022 में फिर इसी लखनऊ के लेबाना स्वीट होटल में आग लगी, 4 लोग मरे, 24 बमुश्किल बचे, आरोपी जमानत पर है, सजा का इंतजार। अब रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए, आप देखते रहिए आज तक।
9: Presented by Patanjali Dant Kanti Toothpaste, complete oral health ka sach. Durable pipes, fittings and tanks, a complete range of sanitary solutions. Presented by Patanjali Dant Kanti Toothpaste, complete oral health ka sach.

0: Welcome back to Yeah, That's a Pepper Thing. First up, we've got Harrison wrapping his Dr. Pepper in a tiny quilt so it feels at home. Oh, how tender. That's a Pepper Thing! And over to Becca, who's whispering affirmations to her can.
1: You're sweet. You're unique. You're the best thing I ever poured over ice.
0: She swears it makes it taste better. It's not a science thing, but it's a Pepper Thing! Why do they all do it? All for that sweet, delicious, truly one-of-a-kind taste of Dr. Pepper. It's a Pepper Thing!
2: Soccer's biggest stage is here. And we've got everything you need to be plugged into the action. Stay connected to the World Cup with live commentary, expert analysis, and all the moments everyone's talking about. From pre-match buzz to post-match breakdowns, we bring you closer to the game with insights you won't want to miss. No matter where you are, take the World Cup with you. Search World Cup on TuneIn to find the stations and podcasts covering your favorite team.
3: अपनी पार्टी में टूट के बीच आज उद्धव ठाकरे ने अपने विधायकों की मीटिंग पार्टी दफ्तर शिवालय में बुलाई थी, जिसमें तीन विधायक नहीं पहुंचे, जिनमें संजय डेरकर, राहुल पाटिल, संजय पोतनिस हैं। वहीं एमएलसी सुनील शिंदे भी पार्टी की मीटिंग में शामिल नहीं हुए। महाराष्ट्र में शिवसेना यूबीटी के 20 विधायक और 6 एमएलसी हैं। उद्धव ठाकरे की मीटिंग एक घंटे तक चली। पार्टी में एकजुटता दिखाने के लिए उद्धव ने आदित्य ठाकरे और संजय राउत के साथ सभी विधायकों और एमएलसी के साथ एक ग्रुप फोटो भी खिंचवाई। हालांकि शिवसेना यूबीटी नेता कह रहे हैं कि जो विधायक नहीं पहुंच सके उनमें बगावत वाला एंगल ना तलाशा जाए, सबकी कुछ न कुछ मजबूरी थी। उद्धव ठाकरे खुद बगावत करने वाले सांसदों के चुनाव क्षेत्रों का दौरा करेंगे। इसके साथ ही उन्होंने पार्टी के वरिष्ठ नेताओं और विधायकों को भी बागी सांसदों के चुनाव क्षेत्र में जाकर पोल खोलने की बात कही है। उद्धव ठाकरे 4 साल में 2 बार पार्टी टूटने से काफी आहत है। वो मतदाताओं से माफी मांग रहे हैं कि उनके चुने सांसद शिंदे से मिल गए। उद्धव ने अपने बचे हुए सांसदों और विधायकों से सरकार को घेरने और जनता के मुद्दे पर आक्रामक रुख अख्तियार करने के निर्देश दिए हैं। उद्धव ये भी मान रहे हैं कि धोखेबाज सांसदों को टिकट देने में उनसे गलती हुई है। जिस तरह शिंदे कैंप के नेता दावा कर रहे हैं कि अभी ऑपरेशन टाइगर थमा नहीं है, यानी सांसदों के बाद अब विधायकों की बारी आने वाली है, तो सवाल उठता है कि क्या उद्धव ठाकरे अपने विधायकों को बगावत करने से रोक पाएंगे। दो गुटों में जमकर पत्थरबाजी हो रही है। गली के 2 छोर हैं, इधर वाले उधर वाले का सिर फोड़ देने के लिए पत्थर चला रहे हैं। उधर वाले छोर पर खड़े लोग इधर वालों का माथा फोड़ देने का इरादा रखते हैं। दोनों ओर से लाठी डंडे लिए बच्चे महिलाएं एक दूसरे का खून बहाने पर उतारू हैं। तस्वीरें बिहार के बेगूसराय के पखौल का है। बताया जा रहा है कि 2 परिवारों के बीच पानी की छींटे पड़ने को लेकर मामूली विवाद हुआ था, मगर 2 परिवारों का झगड़ा 2 समुदायों का विवाद हो गया और उसके बाद ये खून खराबी की तस्वीरें सामने आई हैं। इस पूरे विवाद में 5 लोगों को गंभीर चोटें आई हैं।
4: नॉर्मल से विवाद को लेकर के 2 पक्षों के बीच में झगड़ा हो गया था। विवाद पहले पानी बच्चे के पानी गिरने को लेकर के हुआ था, जो कि 2 परिवार से भिड़ के पूरे मोहल्ले के बीच में आ गया, जिसमें कि दोनों तरफ से पत्थर ईंट चली थी और 5 लोग इंजर्ड हुए, जिनकी हालत सेफ है।
3: तस्वीरें शनिवार की बताई जा रही है। तस्वीरें सामने आई तो कार्रवाई शुरू हुई। 9 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। अब कुछ अस्पताल में है, कुछ जेल में, वो भी मामूली से विवाद के चलते। सौरभ कुमार, बेगूसराय, आज तक।
5: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच। Durable pipes, fittings and tanks, a complete range of sanitary solutions. Chogan perfumes, the French edition for him and her. Presented by Patanjali Dant Kanti Toothpaste, complete oral health ka sach. Durable pipes, fittings and tanks, a complete range of sanitary solutions.

चार गिरफ्तार, चार अधिकारी सस्पेंड। अग्निकांड में आंखें खोलने वाली पड़ताल, बिल्डिंग में एंट्री एग्जिट के एकमात्र रास्ते पर लगे थे ट्रिक पैनल, रिहायशी इलाके में बनी थी कमर्शियल इमारत, बिजली ओवरलोडिंग का खुलासा। राम मंदिर शराबा चोरी की जांच कर रही एसआईटी ने यूपी सरकार को सौंपी अपनी प्रारंभिक रिपोर्ट, फिलहाल किसी को क्लीन चिट नहीं, कुछ कर्मचारियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की सिफारिश।

समेत 8 नेताओं को कारण बताओ नोटिस। भरत तिवारी एनकाउंटर को लेकर बिहार में सियासत तेज। पटना हाईकोर्ट में पीआईएल दायर कर निष्पक्ष जांच की मांग। बिहार राज्य मानवाधिकार आयोग ने लिया संज्ञान। 13 जुलाई तक रिपोर्ट तलब।

0: नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं लंच ब्रेक, आपके साथ हूं मैं नेहा बातम। वक्त हो गया है नॉन स्टॉप 100 कॉलिंग। इस बीच बड़ी खबर राम मंदिर से जुड़ी हुई, जिसके चढ़ावा चोरी मामले को लेकर एसआईटी ने गृह सचिव संजय प्रसाद को अपनी प्रारंभिक जांच रिपोर्ट सौंप दी है। सूत्रों के हवाले से खबर है कि रिपोर्ट में दान राशि की गणना और निगरानी व्यवस्था पर गंभीर सवाल उठाए गए हैं। एसआईटी ने दान की गिनती की प्रक्रिया में संभावित खामियों और अनियमितताओं का उल्लेख किया। सूत्रों के अनुसार अभी तक जांच में किसी भी व्यक्ति को क्लीन चिट नहीं है। रिपोर्ट सौंपे जाने के बाद अब शासन स्तर पर आगे की कार्रवाई पर निर्णय लिया जाएगा। जांच के दौरान गणना कर्मियों को चयन की प्रक्रिया की पड़ताल की गई है। एसआईटी ने गणना कर्मियों और ट्रस्ट पदाधिकारियों के बीच संबंधों की जांच की है। सूत्रों के मुताबिक कुछ कर्मचारियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की सिफारिश भी रिपोर्ट में है। मंदिर की आंतरिक व्यवस्था और संचालन के लिए जिम्मेदार कुछ पदाधिकारियों की भूमिका भी जांच के घेरे में है। रिपोर्ट में प्रशासनिक और निगरानी तंत्र की जवाबदेही से जुड़े कई बिंदुओं का उल्लेख किया गया। एसआईटी ने मामले की विस्तृत और व्यापक जांच के लिए अतिरिक्त समय मांगा है। जांच को आगे बढ़ाने के लिए सहयोगी अधिकारियों और अतिरिक्त संसाधनों की मांग की गई।
1: देखिए, ये शासन द्वारा नियुक्त 3 सदस्यीय एसआईटी की रिपोर्ट आज हमने अपर मुख्य सचिव गृह महोदय को सौंपी है। यह एक प्रारंभिक प्रतिवेदन है और उसके क्रम में आज अपर मुख्य सचिव गृह साहब को सौंप दिया गया है। देखिए, ये गोपनीय जांच है, तो इसके लिए मतलब हम इस समय पर कुछ भी वक्तव्य देने के लिए अधिकृत नहीं है। जो हमारी फाइंडिंग्स थी वो हमने उपलब्ध करा दी हैं।
0: और रुक करेंगे नॉन स्टॉप 100 का।

अयोध्या शराबा चोरी मामले में एसआईटी ने प्रारंभिक जांच रिपोर्ट गृह सचिव संजय प्रसाद को सौंपी। जांच प्रक्रिया अब भी जारी। एसआईटी ने अयोध्या मामले की प्रारंभिक रिपोर्ट सौंपी का जांच गोपनीय, निष्कर्ष सरकार के पास। एसआईटी ने मांगा अतिरिक्त समय, विस्तृत रिपोर्ट में बड़े खुलासों और कार्रवाई के संकेत। केजरीवाल का चढ़ावा चोरी मामले पर बयान, चंपत राय को अभी तक क्यों नहीं हटाया गया। अयोध्या में सरयू नदी में 12 करोड़ की वाटर मेट्रो ठप, जलस्तर की कमी बनी बड़ी बाधा, संचालन पर सवाल। लखनऊ के अलीगंज जिला के कोचिंग और गेमिंग सेंटर में लगी भीषण आग, 15 युवाओं की गई जान, 9 घायल। आग हादसे में जान बचाने के लिए पहली मंजिल से कूदे बच्चे, एक लोहे के ग्रिल पर गिरा। लखनऊ आग हादसे में बचने के लिए बाथरूम में छिपे थे बच्चे, दम घुटने से हुई मौत। सीएम योगी ने घटनास्थल अस्पताल में लिया जायजा, मृतकों के परिजनों को 5-5 लाख रुपए मुआवजे का ऐलान। लखनऊ अलीगंज अग्निकांड की एसआईटी जांच में बड़े खुलासे, प्रमुख सचिव अमृत अभिजीत बोले जांच में कई कमियां सामने आई। आघात से पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए 6 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया, बिल्डिंग मालिक समेत 4 लोगों की गिरफ्तारी। प्रशासन का बड़ा अक्षर, एईजीए समेत 4 अधिकारी लंबित, जिम्मेदारी तय होगी। लखनऊ की घटनास्थल पर पहुंची फॉरेंसिक टीम, साक्ष्य जुटाकर जांच तेज। अलीगंज अग्निकांड में रेस्क्यू के लिए फायर टीम ने दीवार में किए 4-6, धुआं निकालकर बचाव अभियान चलाया। धुएं से घिरे कमर्शियल कॉम्प्लेक्स में फायर ब्रिगेड का बड़ा ऑपरेशन, पड़ोसी छत से शुरू हुआ रेस्क्यू। अग्निकांड में 15 छात्रों की मौत के बाद बिल्डिंग के सह मालिक सुरेंद्र शुक्ला का पुराना रिकॉर्ड आया सामने। शुक्ला का नाम साल 2015 के सीपीएमटी पेपर लीक में था शामिल, आरोप था कि बेटी को परीक्षा पास कराने के लिए पेपर लीक की साजिश रची। मामले में एफआईआर दर्ज हुई थी, लेकिन एसटीएफ जांच में पर्याप्त साक्ष्य न मिलने से सुरेंद्र शुक्ला को मिली थी राहत। जानकारी के मुताबिक सुरेंद्र शुक्ला, उनके भाई वीरेंद्र शुक्ला पर प्रॉपर्टी कारोबार के जरिए करोड़ों रुपए कमाने के लगते थे आरोप। दोनों भाइयों ने कथित तौर पर किसानों से सस्ती जमीन खरीदकर बड़े पैमाने पर प्लॉटिंग का किया कारोबार। लखनऊ आग हादसे पर पीएम मोदी ने जताई संवेदना, प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख रुपए और घायलों को 50,000 रुपए की मदद का ऐलान। अग्निकांड पर उपराष्ट्रपति ने जताया खेल, मृतकों के परिजनों के प्रति संवेदना, घायलों के जल्द स्वस्थ होने की कामना। राजनाथ सिंह ने लखनऊ आग हादसे पर दुख जताया, बोले पीड़ित परिवारों के साथ मेरी संवेदनाएं। कानपुर में कोचिंग संस्थान और व्यावसायिक प्रतिष्ठानों पर केडीए की बड़ी कार्रवाई, कई संस्थान सील, नियमों के उल्लंघन पर सख्त हुआ कानपुर विकास प्राधिकरण, 16 प्रतिष्ठानों पर गिरी गाज। नीट पेपर में सॉल्वर गैंग का खुलासा, बायोमेट्रिक सिस्टम में सेल लगाकर स्कॉलर्स को बैठाया। इनोवेटिव व्यू पहले से कई राज्यों में ब्लैकलिस्टेड होने के बावजूद बायोमेट्रिक का काम उसे मिला, यह पूरा सिस्टम की गंभीर लापरवाही या मिली विगत की ओर इशारा। पीएमसीएच का थर्ड ईयर एमबीबीएस छात्र अश्विनी कुमार खुद बायोमेट्रिक स्टाफ बनकर सेंटर में घुसा, अंदर से संभाल रहा था पूरी सेटिंग। एक अभ्यर्थी को पास कराने के 7 लाख की थी डील, देश के बड़े मेडिकल कॉलेजेस के छात्र स्कॉलर के रूप में शामिल, रैकेट छोटे स्तर का नहीं, संगठित और बड़े नेटवर्क का हिस्सा। डमी बायोमेट्रिक के बाद अंगूठे के निशान बिगाड़ना, फर्जी सिम, नकली नाम से एंट्री, गैंग ने पकड़े जाने से बचने के लिए टेक्निकल और प्लान तरीके अपनाए। भरत तिवारी इनकाउंटर मामले को लेकर बिहार में सियासत तेज, विपक्ष ने उठाए सवाल। पटना हाईकोर्ट में पीएल दाखिल कर इनकाउंटर की निष्पक्ष जांच की मांग, न्यायिक जांच की मांग तेज। बिहार राज्य मानवाधिकार आयोग ने मामले का संज्ञान लिया, 13 जुलाई तक रिपोर्ट तलब। पटना में तेज प्रताप यादव के आवास से 20 लाख नकदी समेत कीमती सामान चोरी का आरोप, निजी सहायक मोतीलाल राय पर गंभीर आरोप। पूर्व मंत्री तेज प्रताप यादव की शिकायत पर पुलिस जांच में जुटी, जांच के लिए डीएसपी और थाना प्रभारी तेज प्रताप के आवास पहुंचे। टीएमसी ने 24 सदस्यीय राष्ट्रीय कार्य समिति का पुनर्गठन किया, ममता बैनर्जी फिर बनी चेयरपर्सन। अभिषेक बैनर्जी महासचिव नियुक्त, टीएमसी ने नई कार्य समिति की जानकारी चुनाव आयोग को दी। दिलीप घोष का बयान, टीएमसी ड्रामा पार्टी है, ममता को हटाने न हटाने से जनता को कोई फर्क नहीं पड़ता है। अल्पसंख्यक बजट कटौती पर टीएमसी के वार का दिलीप घोष का पलटवार, कहा यह सरकार सभी के लिए है, सबका साथ सबका विकास। नंदीग्राम चुनाव नतीजों में हेरफेर का आरोप मामले में ममता की याचिका पर हाईकोर्ट में सीसीटीवी और वीवीपैट सुरक्षित रखने की मांग। शिबू सोरेन को पद्म भूषण मिलने पर बीजेपी ने जताई खुशी, प्रतुल शाहदेव ने किया स्वागत। प्रतुल शाहदेव ने कहा संघर्ष से मुख्यमंत्री तक का सफर, शिबू सोरेन पद्म भूषण के सच्चे हकदार हैं। केंद्रीय मंत्री जॉर्ज कुरियन ने दिया इस्तीफा, राष्ट्रपति ने तत्काल प्रभाव से किया मंजूर। कर्नाटक में क्रॉस वोटिंग पर बीजेपी सख्त, दिल्ली में आज होगी अहम बैठक। क्रॉस वोटिंग करने वालों की पहचान करेगी 3 सदस्यीय कमेटी, 25 जून तक रिपोर्ट। नगर आसू गुरुद्वारा विभाग के 2 निहंग सिख छत से उतरे, बाकी से प्रशासन पुलिस की वार्ता जारी। प्रशासन का दावा, हेमकुंड साहिब और चारधाम यात्रा पूरी तरह सुचारू, गुरुद्वारे में लंगर आवागमन सामान्य। प्रशासन दी अफवाहों पर सख्त चेतावनी, न कब्जा न बंधक की घटना, मौके पर पुलिस प्रशासन की कड़ी निगरानी। सिक्किम से लेकर जलपाईगुड़ी तक तीस्ता नदी उफान पर, दार्जिलिंग रोड बंद, कई गांव डूबे, लोगों को सुरक्षित स्थान पर ले जाया गया। उत्तर सिक्किम और डुआर्स में तीस्ता नदी का रौद्र रूप, भारी बारिश से कई इलाके जलमग्न, प्रशासन ने जारी किया हाई अलर्ट।
किसानों के हित में बड़ा कदम, अमित शाह करेंगे नेफेड के ऑक्शन पोर्टल नेफेक्स.इन का शुभारंभ। नेफेक्स पोर्टल से किसानों को मिलेगा फायदा, उपज की खरीद बिक्री होगी आसान और पारदर्शी। चमोली के हेमकुंसार में भारी बर्फबारी, बर्फबारी से गिरा तापमान। बर्फीले नजारे के बीच हेमकुंसार पहुंचे श्रद्धालु, रास्तों पर SDRF और पुलिस बल की तैनाती। जम्मू कश्मीर में बदला मौसम, अनंतनाग समेत कई इलाकों में झमाझम बारिश, तापमान में गिरावट। अरुणाचल में बारिश का कहर, लिकाबली बासा रोड भूस्खलन से बंद, चीन सीमा से जुड़ा मार्ग प्रभावित। अगले 48 घंटे के दौरान दक्षिण पश्चिम मानसून के महाराष्ट्र, तेलंगाना, ओडिशा, छत्तीसगढ़, झारखंड और बिहार के कई हिस्सों में आगे बढ़ने का अनुमान। हफ्तों के इंतजार के बाद मुंबई पहुंचा प्री मानसून, कई इलाकों में सीजन की पहली बारिश। बांद्रा में मूसलाधार बारिश, भारी बारिश से कई इलाकों में जलभराव, आवाजाही प्रभावित। महाराष्ट्र के पुणे में कई इलाकों में झमाझम बारिश, कई जगहों पर भरा पानी। गुजरात के अमरेली में 3 दिन से गांव में तेज हवा के साथ बारिश, बुआई का इंतजार कर रहे किसानों के खिले चेहरे। गुजरात के वलसाड पहली बारिश में डूबा मोगरावड़ी अंडरपास, प्री मानसून तैयारियों की खुली पोल। पहली बारिश में सूरत नगर निगम की खुली पोल, अंडरपास में जलभराव और धंसी सड़कों से कई जगह लोग घायल, सिस्टम में कैद हुए हादसे। मौसम विभाग के मुताबिक अल नीनो की वजह से गुजरात में तक मानसून की शुरुआत नहीं, 3 से 5 दिन तक करना होगा इंतजार। मौसम विभाग के अनुसार उत्तर गुजरात के सौराष्ट्र होते पश्चिम मध्य अरब सागर तक कम दबाव का इलाका बना हुआ है। पवित्र अमरनाथ यात्रा को लेकर जम्मू कश्मीर में तैयारियां तेज, 3 जुलाई से शुरू हो रही है यात्रा। अमरनाथ यात्रा को लेकर एसजी ने किया मॉकड्रिल, जवानों ने इमरजेंसी की तैयारी को परखा। अभ्यासों में आतंकी हमले, IED विस्फोट, गोलीबारी और आपदा जैसी स्थितियों का किया पूर्वाभ्यास। अमरनाथ यात्रा को लेकर भक्तों में उत्साह, 4 लाख श्रद्धालुओं ने किया रजिस्ट्रेशन। 28 अगस्त तक चलेगी पवित्र यात्रा, श्रद्धालुओं में उत्साह, बड़ी संख्या में यात्रा के लिए पंजीकरण करा रहे हैं श्रद्धालु। अहमदाबाद के रखियाल में बेकाबू कार का कहर, 5 वाहनों को मारी टक्कर, महिला की मौत, 6 घायल। रखियाल में सड़क पर मचा कोहराम, बेकाबू कार से कई वाहनों को टक्कर, फूड लॉरी में मारी गई टक्कर। ड्राइवर को दौरा पड़ते ही बेकाबू कार, सीसीटीवी में कैद हुई खौफनाक हादसे की तस्वीरें। देवबंद की एक शादी में डीजे पर चढ़कर तमंचों में हर्ष फायरिंग, वीडियो वायरल होने के बाद 3 आरोपी गिरफ्तार। हथियारों का खुला प्रदर्शन पड़ा भारी, अवैध तमंचे और कार समेत 3 युवक गिरफ्तार। राजकोट में नेशनल हाईवे पर भादर डैम के पानी की लाइन टूटी, लाखों लीटर पानी बर्बाद। संभल में डॉग मेरी की सूझबूझ से ब्लाइंड रेप केस का खुलासा, आरोपी गिरफ्तार। जयपुर में मॉर्निंग वॉक के दौरान चेन स्नैचिंग, सीसीटीवी में कैद हुई वारदात। मेरठ में युवक की ईंट से कुचलकर हत्या, खून से लथपथ शव मिलने से संसदीय, आरोपी गिरफ्तार। अंबाजी पुलिस पर हमला करने वाले 3 आरोपी गिरफ्तार, घटनास्थल पर कराया गया रजिस्ट्रेशन। बरेली में सिटी सेंटर मॉल में बड़ा हादसा, बिजली गुल होने से लिफ्ट में फंसे 13 लोग आधे घंटे बाद सुरक्षित निकाले गए। छत्तीसगढ़ में बिलासपुर बीकानेर एक्सप्रेस में रेलवे की बड़ी लापरवाही, फर्स्ट AC कोच बना शावर, बारिश का पानी घुसने से यात्रियों का सामान भीगा, वीडियो हुआ वायरल। नोएडा के सेक्टर 126 थाना क्षेत्र में लेबर कैंप में भीषण आग, मौके पर दमकल की कई गाड़ियां तैनात। नोएडा में डीजी कनेक्शन विवाद, महिला की मेंटेनेंस कर्मचारी को जड़े थप्पड़, सीसीटीवी में वीडियो वायरल। हरिद्वार के खड़खड़ी क्षेत्र में देर रात बड़ा हादसा, बैटरी रिक्शा शोरूम में भीषण आग से हड़कंप। लेबनान को लेकर इसराइल के तेवर सख्त, सैनिक कार्रवाई जारी रखने का संकेत। इसराइली PM, रक्षा मंत्री और सेना प्रमुख का संयुक्त बयान जारी, कहा सैनिकों और नागरिकों पर खतरा खत्म करने की कार्रवाई जारी। दक्षिण लेबनान में सुरक्षा क्षेत्र बनाए रखने की बात दोहराई गई, आतंकवादी ढांचे को ध्वस्त करने के लिए अभियान जारी रखने का ऐलान। इसराइल का नागरिक और सेना की सुरक्षा पर कोई समझौता नहीं होगा। शीर्ष सुरक्षा बैठक के बाद इसराइल का कड़ा संदेश, कहा लेबनान सीमा पर सुरक्षा बनाए रखने के लिए कार्रवाई जारी रहेगी।

0: राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले को लेकर एसआईटी ने गृह सचिव संजय प्रसाद को अपनी प्राथमिक जांच रिपोर्ट सौंप दी है। सूत्रों के मुताबिक रिपोर्ट में दान राशि की गणना और निगरानी व्यवस्था पर गंभीर सवाल उठाए गए हैं। एसआईटी ने दान की गिनती की प्रक्रिया में संभावित खामियों और अनियमितताओं का उल्लेख किया है। सूत्रों के अनुसार अभी तक जांच में किसी भी व्यक्ति को क्लीन चिट नहीं दी गई। रिपोर्ट सौंपे जाने के बाद अब शासन स्तर पर आगे की कार्रवाई का निर्णय लिया जाएगा। जांच के दौरान गणना कर्मियों के चयन की प्रक्रिया की पड़ताल की गई। एसआईटी ने गणना कर्मियों और ट्रस्ट पदाधिकारियों के बीच संबंधों की जांच की है। सूत्रों के मुताबिक कुछ कर्मचारियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की सिफारिश भी रिपोर्ट में की गई है। मंदिर की आंतरिक व्यवस्था और संचालन के लिए जिम्मेदार कुछ पदाधिकारियों की भूमिका भी जांच के दायरे में है। रिपोर्ट में प्रशासनिक और निगरानी तंत्र की जवाबदेही से जुड़े कई बिंदुओं का उल्लेख किया गया। एसआईटी ने मामले की विस्तृत और व्यापक जांच के लिए अतिरिक्त वक्त मांगा। जांच को आगे बढ़ाने के लिए सहयोगी अधिकारियों और अतिरिक्त संसाधनों की मांग की गई है। विस्तृत जांच रिपोर्ट आने के बाद मामले में बड़े खुलासे और कार्रवाई की संभावना जताई जा रही है। आशीष श्रीवास्तव मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। आशीष, ये रिपोर्ट सार्वजनिक कब तक की जाएगी?
1: देखिए नेहा, सबसे बड़ी बात है कि रिपोर्ट अभी इनिशियल स्टेज पर है और अभी संजय प्रसाद जो ईसीएस गृह है उनको सौंप दी गई है। इस रिपोर्ट के मुताबिक अभी सार्वजनिक करने में थोड़ा समय इसलिए लगेगा क्योंकि अभी ये इंटरनल रिपोर्ट है और वो सीएम को जाएगी, सीएम जिसपे आगे अपना एक्शन लेंगे। लेकिन अभी चूंकि 15 दिन पूरे होने, इसलिए एसआईटी ने जो अपनी ज़रूरतें हैं वो भी रखी है। और सबसे बड़ी बात है जो आज तक पर हम एक्सक्लूसिव कह सकते हैं, किसी को भी क्लीन चिट नहीं दी गई है इसमें, इस पूरी रिपोर्ट में। यानी कि जो पदाधिकारी हैं, जो ट्रस्ट के लोग हैं, उन सभी पर जाँच की अभी भी तलवार लटकी हुई है। शासन स्तर पर इसमें आगे की कार्रवाई की जानी है। दूसरी सबसे बड़ी बात है कि जो पदाधिकारी वहां पर हैं, जो शक के दायरे में हैं, उनकी एक लिस्ट पूरी तैयार करके एसआईटी ने सौंपी है और वो उन लिस्टों पर ये कोऑर्डिनेशन एक दूसरे से समन्वय नहीं बन पाया। यानी कि जो बातें एक दूसरे से कही गई वो मिल नहीं पाई, मैच नहीं कर पाई, ये भी एसआईटी ने जिक्र किया है। एसआईटी रिपोर्ट में जिस तरीके से जो सामने निकल कर आ रहा है उसमें ये भी आ रहा है कि जो दान गिनने वाले लोग हैं उनकी भूमिका बहुत संदिग्ध है और उनकी भूमिका पर भी एसआईटी ने सवाल खड़े करके उस रिपोर्ट को एसीएस को दे दिया है। साथ ही साथ जो कार्मिक हैं वहाँ पर और ट्रस्ट के जो लोग हैं उनके बीच जो कोऑर्डिनेशन था वो एक जैसा नहीं था उसमें भी। और अब एसआईटी ने ये भी कहा है कि उसको मुकदमा दर्ज करना है तो उसकी संतुष्टि भी चाहिए। तो इसलिए क्योंकि एसआईटी अभी जांच कर रही है, मुकदमा नहीं किया था, अब मुकदमे के लिए बात कह दी गई है। यानी कि अब तो ये जाहिर हो गया है कि कथित दान चोरी की जो बात कही जा रही है वो कहीं ना कहीं पूरी तरीके से एसआईटी के साक्ष्य में मिला है और एसआईटी अब उस पर मुकदमा भी दर्ज करेगी और गिरफ्तारी भी होगी। तो ये तो साफ और क्लियर हो गया है। तीसरी सबसे बड़ी बात है कि जिस तरीके से रिपोर्ट में प्रशासन की निगरानी तंत्र और जवाबदेही से जुड़े कई ऐसे बिंदु थे जो लूपहोल पाए गए, यानी कि उन पर पूरी तरीके से सर्वेलेंस नहीं था, पूरा मॉनिटर जो था वो पूरा नहीं था, इस वजह से भी उसमें कहीं ना कहीं खामियां पाई गई हैं। तो ये जवाब भी देना होगा। एसआईटी ने इसको पूरी तरीके से ये भी कहा है कि जो सहयोगी अधिकारी हैं, अतिरिक्त संसाधनों की मांग की गई, यानी कि कहीं कहीं पर जो सीसीटीवी कैमरे हैं, एआई कैमरेज हैं, उनकी फुटेज जो बरामद करनी है उसके लिए अतिरिक्त फॉरेंसिक संसाधन भी चाहिए जिससे कि हम उस जो सबूत हैं उसको पूरी तरीके से रिकवर कर सकें। कुछ जो डिलीट हो गए हैं चीज़ें उनको लाने के लिए भी चाहिए इक्विपमेंट। यानी कि अब एसआईटी पूरे फुल मोड में आ गई है कि अब इसमें पूरे जो दान, कथित दान चोरी का मामला है उसमें जो जो आरोपी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी और उसको लेकर एसआईटी ने साफ कर दिया है। शासन स्तर पर यह कार्रवाई होनी है जिसको लेकर पूरी जवाबदेही बनाने के लिए पूरा लिस्ट उन्होंने सौंप दिए संजय।
0: लौटेंगे आपके पास। बीच लखनऊ अग्निकांड में 15 लोगों की मौत से यूपी में हड़कंप है और हादसे के बाद से शहर शहर फायर ऑडिट का काम हो रहा है। गाजियाबाद में यूपी पुलिस इमारतों की ऑडिट का एक बड़ा अभियान चला रही है। यहाँ पर पुलिस कोचिंग सेंटर, लाइब्रेरी, दूसरे संस्थानों में फायर सेफ्टी ऑडिट कर रही है। ये रिपोर्ट देखिए।

0: लखनऊ अग्निकांड हादसे के बाद पूरे उत्तर प्रदेश की पुलिस सतर्क है। जगह जगह पर जहां पर भी शहरों में कस्बों में कोचिंग क्लासेस चलाई जाती हैं, जिस तरह की लापरवाही लखनऊ में हुई कि वो रिहायशी इलाकों में हैं, उनमें एंट्री एग्जिट है नहीं, आगजनी से बचने की सुविधाएं हैं कि उसके लिए अब हम इसमें गाजियाबाद में हैं, जहां पर गाजियाबाद की जो पुलिस है वो अलग अलग इलाकों में जाकर के देख रही है, रजिस्ट्रेशन चेक कर रही है और ये देख रही है कि क्या उनके पास पर्याप्त व्यवस्थाएं हैं कि नहीं। एक बड़ी एक्सरसाइज गाजियाबाद में हम देख रहे हैं जो कि उत्तर प्रदेश के लगभग तमाम उन हर इलाकों में जो है शुरू की जा रही है, जहां पर पुलिस उन जगहों पर जा रही है कि एक दोबारा लखनऊ की ऐसी घटनाएं ना हो जो मासूम बच्चे जिसका शिकार हो गए, 15 बच्चे जलकर मर गए। और अब पूरे प्रदेश में पुलिस सतर्कता दिखा रही है शासन के आदेश के बाद। जगह जगह कोचिंग सेंटर हो, लाइब्रेरी हो, ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट हो, देखिए अब ये जो हम इलाके में जा रहे हैं कितना पतला इलाका है, ये जो सीढ़ियां हैं ऊपर एक कोचिंग इंस्टीट्यूट चलता है, एजुकेशन कमांडर, और यहां पर आप जाएंगे देखिए सिर्फ एक इलाका है, जाने के लिए है, एग्जिट नहीं है। और उसके बाद अब इन इलाकों पर जगह जगह पुलिस जो है मुआयना कर रही है। तो गाजियाबाद पुलिस इस समय उन इलाकों में जा रही है देखने के लिए कि जिन इमारतों में कोचिंग सेंटर, लाइब्रेरी, गेमिंग जोन या इस तरह की गतिविधियां होती हैं वो रिहायशी इलाकों में है, कमर्शियल इलाकों में है, एंट्री कितनी है, एग्जिट कितनी है। ये एक विजय लाइब्रेरी है गाजियाबाद में, जहां पर जो लोकल पुलिस है वो सर्वे के लिए जा रही है क्योंकि आदेश जिस तरह का, दोबारा ऐसी घटना ना हो। अब हम जिस इमारत में घुसे हैं, सीढ़ी जो है ये लगभग 3 फुट चौड़ी सीढ़ियां हैं जो आगे लाइब्रेरी की ओर जा रही हैं, लेकिन क्या यहां पर फायर एग्जिट है या फिर आपात निकासी, क्या यहां पर दूसरा आपात स्थिति की कोई जगह है, तो इस समय पुलिस का ध्यान जिसके हिसाब से वो रिकॉर्ड बनाएगी और उसकी जानकारी जो है आगे की कार्रवाई के लिए। सर इस एक्सरसाइज से क्या क्या चेक कर रहे हैं आप लोग, किस तरह के आदेश मिले जो आप कोचिंग क्या क्या चेक कर रहे हैं वहां पे?
1: बच्चों की संख्या, आने जाने के रास्ते, मतलब एग्जिट है कि नहीं है, फायर जो लगा रखा है, इंस्ट्रूमेंट है कि नहीं, वो जो किस कंपनी के बिजली उपकरण लगे हैं,
0: और उसी के साथ उनकी एक्सपायरी डेट या इमर, और जहां पर नहीं मिल रहे हैं वहां पर
1: वो नोटिस दिया जाएगा फिर।
0: तो कोचिंग इंस्टीट्यूट के साथ साथ जो है पुलिस अब जो लाइब्रेरी है, दूसरे इस तरह के इंस्टीट्यूशन से जहां बच्चे आते हो पढ़ने में बड़ी संख्या में, जहां पर बच्चों का जमावड़ा हो। अभी देखिए हम जिस इमारत में जा रहे हैं ये बहुत पतली सीढ़ियां हैं, तो सुरक्षा के लिहाज से अगर कोई हादसा हो तो सबसे जरूरी है कि यहां पर एग्जिट होना चाहिए, यानी यहां से निकलने का रास्ता होना चाहिए। आग बुझाने का सिलेंडर रखा हुआ है और इस पर आप देख सकते हैं डेट ऑफ रिफिलिंग 2023, ड्यू ऑफ रिफिलिंग 18 जून 2024, ठीक 2 साल पहले ये एक्सपायर हो चुका है। अगर यहाँ इतने सारे बच्चे हैं, आग लग जाती है कहीं से भी, ये सब ज्वलनशील होते हैं, बहुत तेज आग पकड़ती है, ये सब अगर जलना शुरू करेंगे तो आग बुझाने के लिए फायर एक्सटिंग्विशर एकदम यूजलेस है।
2: इसी के साथ यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन होंगे हाजिर, टिकते रहिए आज तक।
3: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोस Chogan Perfumes, the French edition for him and her.
4: Pepsi Prebiotic Cola in original and cherry vanilla. That Pepsi taste you love with no artificial sweeteners, only 30 calories, just 5 grams of sugar, and 3 grams of prebiotic fiber. That great Pepsi taste with even more to love. Pepsi Prebiotic Cola. Unbelievably Pepsi.
5: Sit back and relax with the smoothest hits with Coffee House Station on TuneIn. A carefully brewed mix of soft acoustic tracks made for slow moments and quiet focus. Featuring artists like James Bay, Norah Jones, and Daniel Caesar. Plus more of your Coffee House favorites. Perfect for getting lost in a good book or easing into your workday. Just search Coffee House or ask your device to play Coffee House on TuneIn.
6: ऊंचाई पर बने रहने के लिए जरूरी है इरादों का प्योर होना। कैलेंट एडवांस बनाते हैं ऐसा स्टील जो अंदर से है ज्यादा प्योर, ज्यादा मजबूत। कैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो।

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: शादी का किचन महके जहां, गोल्डी किचन किंग मसाले हो वहां।
3: गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश।
4: यानी इस घर में कुछ है जो टूटता नहीं।
5: ये पिलर कभी नहीं टूटेगा। रुंगटा स्टील TMT से बना।
6: रुंगटा नहीं तो घर स्ट्रॉन्ग नहीं। रुंगटा स्टील TMT बार एकदम सॉलिड।
7: In association with Hind, bade aaram se. Sharda University, the world comes together at Sharda University. Where are you? Vimal, bolo zubaan kesri.
8: Cool, stylish fans. Enhance home decor with beautiful fans.
9: Punjab National Bank, bharose ka prateek.
10: Hum sikhayenge aapko mass communication ke expert banne ka hunar. Join kijiye इंडिया टुडे मीडिया इंस्टीट्यूट।
11: रजिस्टर करने के लिए विजिट करें www.indiatodaymediainstitute.in या 9560065465 पर कॉल करें।
12: जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए श्री संत का।
13: प्लीज बजीपा, प्लीज डू ललन टॉक शो, इट्स अ रिक्वेस्ट एंड प्लीज टू स्पीक ट्रूथ।
14: अप्रैल 2026 में उन्होंने एक रिटेल कंपनी का ऐड किया।
13: ऐसे हरकतें आप करोगे आपकी बाइक के साथ? आई चैलेंज यू बजीपा, अगर आपको इतना प्रॉब्लम है तप्पड़ खांड से और आप इतना कमा रहे हो, हमें भी तो कमाने दो। आओ ना रिंग में। वेट कम

क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com। क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।

प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा। चोगन परफ्यूम्स, द फ्रेंच एडिशन फॉर हिम एंड हर।

0: उद्धव ठाकरे के 6 बागी सांसदों ने कई दिन की आंख मिचौली के बाद आखिरकार मुंबई में एकनाथ शिंदे की मौजूदगी में शिवसेना का दामन थाम लिया। अपना सियासी कुनबा बढ़ाने के लिए एकनाथ शिंदे बोले, मैं कोई काम अधूरा नहीं छोड़ता। पहले शिवसेना के 7 लोकसभा सांसद थे, लेकिन उद्धव ठाकरे की पार्टी शिवसेना यूबीटी के 6 सांसद शिंदे कैंप में आने के बाद अब लोकसभा में कुल शिंदे के 13 सांसद हो गए, जिससे एनडीए में शिंदे का सियासी कद भी काफी बढ़ गया है। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम और शिवसेना प्रमुख एकनाथ शिंदे ने ऑपरेशन टाइगर की कामयाबी पर फिल्मी अंदाज में कहा, एक बार जो मैंने कमिटमेंट कर दी उसके बाद मैं अपने आप की भी नहीं सुनता। शिंदे बोले, सीएम फडणवीस के साथ उनकी जोड़ी हिट है, क्योंकि दोनों का मकसद महाराष्ट्र का चौतरफा विकास करना है। ऑपरेशन टाइगर की सफलता पर महायुति सरकार जश्न मना रही है। विधानसभा सत्र की शुरुआत से पहले सीएम फडणवीस और डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे का जोश हाई दिखा। इससे पहले मुख्यमंत्री फडणवीस ने भी कहा कि ऑपरेशन टाइगर पूरा हुआ। वहीं आदित्य ठाकरे ने कहा, धोखेबाज सांसद उद्धव के चेहरे पर चुनकर आए थे, इसलिए हिम्मत है तो इस्तीफा देकर चुनाव लड़े। शिवसेना दावा कर रही है कि उद्धव के एक और सांसद शिंदे कैंप में आने को बेकरार थे, लेकिन वो कैबिनेट मंत्री बनाने के लिए दबाव बना रहे थे, जिसके बाद शिंदे ने उन्हें मना कर दिया।
1: लखनऊ अग्निकांड में 15 छात्रों की जान चली गई। आग के लपटों के बीच चीख पुकार और जिंदगी बचाने की जद्दोजहद की तस्वीरों ने लखनऊ ही नहीं बल्कि पूरे देश को एक बार फिर झकझोर कर रख दिया है। एनिमेशन सेंटर में हुए इस भीषण और दिल दहलाने वाले हादसे के बाद सरकार एक्शन में है। बिल्डिंग के मालिक वीरेंद्र शुक्ला सहित 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। एई और जेई सहित 4 अधिकारियों को तत्काल प्रभाव से सस्पेंड कर दिया गया है। सीएम योगी आदित्यनाथ देर शाम अस्पताल पहुंचे, घायलों से बातचीत की और मृतकों के परिजनों को हर संभव मदद का आश्वासन दिया।
2: बहुत ही बड़ी घटना है, ये झकझोर देने वाली घटना है और घटना की उच्च स्तरीय जांच के साथ साथ आज ही निर्देश दिए गए हैं ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो, तत्काल प्रशासन इसमें एक रिपोर्ट प्रस्तुत करे। और इसके अलावा ऐसी जहां भी बिल्डिंगें हैं जहां बच्चे एकत्र होते हैं या जहां पर भीड़ भाड़।
3: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा। चोगन परफ्यूम्स, द फ्रेंच एडिशन फॉर हिम एंड हर।

लखनऊ अग्निकांड 15 की मौत के बाद एक्शन, घटनास्थल पर एसआईटी की सघन पड़ताल, 7 दिन में आएगी रिपोर्ट, बिल्डिंग मालिक समेत 4 गिरफ्तार, 4 अधिकारी सस्पेंड। अग्निकांड में आखिर खोलने वाली पड़ताल, बिल्डिंग में एंट्री एग्जिट के एकमात्र रास्ते पर लगे थे इलेक्ट्रिक पैनल, रिहायशी इलाके में बनी थी कमर्शियल इमारत, बिल्डिंग ओवरलोडिंग का खुलासा। राम मंदिर चढ़ावा चोरी की जांच कर रही एसआईटी ने यूपी सरकार को सौंपी अपनी प्रारंभिक रिपोर्ट, फिलहाल किसी को क्लीन चिट नहीं, कुछ कर्मचारियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की सिफारिश। टीएमसी के बागियों ने बनाया नया अध्यक्ष, तो ममता बनर्जी ने नियुक्त किए पार्टी में नए पदाधिकारी, खुद चेयरपर्सन और भतीजे को महासचिव बताया, फिरहाद समेत 8 नेताओं को कारण बताओ नोटिस। भरत तिवारी इनकाउंटर को लेकर बिहार में सियासत तेज, पटना हाईकोर्ट में पीआईएल दायर कर निष्पक्ष जांच की मांग, बिहार राज्य मानवाधिकार आयोग ने लिया संज्ञान, 13 जुलाई तक रिपोर्ट तलब।

विशेष में आप सभी का स्वागत है, आपके साथ हूं मैं नेहा बाथम। लखनऊ के अलीगंज में हुए भीषण अग्निकांड में 15 की जान चली गई, कई परिवार उजड़ गए, कई घर बर्बाद हो गए। हादसे की SIT जांच भी शुरू हो गई, लेकिन शुरुआती जांच में बिल्डिंग में कई खामियां सामने आई। ना तो यहां सुरक्षा का कोई इंतजाम था, ना ही किसी नियम का पालन किया गया। ऐसे में जब बिल्डिंग में आग धधकी तो कई लोग लपटों के बीच फंस गए, धुएं के बीच जिंदगी बचाने की जद्दोजहद करने लगे। लेकिन पूरा ढांचा ऐसा था कि कईयों को निकलने का रास्ता तक नहीं मिला। करीब 32 मिनट लोग लपटों और धुओं के बीच घिरे रहे और 15 लोगों की इसी में जान चली गई।

0: लखनऊ में हुआ एक हादसा जिसमें देखते ही देखते बिल्डिंग आग की लपटों में घिर गई, देखते ही देखते पूरी बिल्डिंग धधक उठी और कुछ ही देर में चीख पुकार के बीच जिंदगी बचाने की जद्दोजहद की तस्वीरें सामने आने लगी। कोई शीशा तोड़कर ऊपरी मंजिल से कूदा, कोई तार के सहारे जान बचाने की कोशिश करता दिखा। आंखों के सामने इतना भयंकर मंजर था कि देखने वालों की भी सांसें थम गई। ये वो खौफनाक तस्वीरें हैं जो लोगों ने देखी, लेकिन इस अग्निकांड में बहुत कुछ ऐसा है जो दुनिया की नजरों में नहीं आ सका। वो है उन बच्चों की तड़प, उन बच्चों की छटपटाहट जो बिल्डिंग के भीतर ही घुटते रहे, जान बचाने के लिए बाहर आने की कोशिश करते रहे और अंत में दम घुटने से मौत के मुंह में पहुंच गए। अब इस अग्निकांड की पड़ताल के बीच जो बात सामने आ रही है उससे साफ है कि इस बिल्डिंग में ना ही नियमों का कोई ख्याल रखा गया, ना ही सुरक्षा के मानक का पालन किया गया।
1: लखनऊ के जिस कमर्शियल कॉम्प्लेक्स में लगी आग ने 15 लोगों की जान ले ली, वो कमर्शियल कॉम्प्लेक्स लापरवाही और नियम कायदे की धज्जियां उड़ाकर बनाया गया था। इस कमर्शियल कॉम्प्लेक्स में एंट्री एग्जिट प्वाइंट एक था, यानी कि एक ही रास्ते से एंट्री हो रही थी और एग्जिट हो रहा था, और उस एंट्री एग्जिट प्वाइंट पर भी एसी के पैनल, इलेक्ट्रिकल पैनल, एग्जॉस्ट लगाए रखे थे, यानी कि एक रास्ता और वो भी सकरा कर दिया गया। और यही वजह थी कि जब आग लगी, धुआं फैला, तो जो लोग दूसरी और तीसरी मंजिल पर पढ़ाई करने, नौकरी करने के लिए पहुंचे थे, वो उस धुएं में फंस गए और दम घुटने से 15 लोगों की मौत हो गई। फिलहाल अब कार्रवाई का दौर शुरू हो चुका है, FIR दर्ज हो गई है, SIT गठित कर दी गई है, फॉरेंसिक की जांच शुरू हो चुकी है और 4 अधिकारी सस्पेंड किए जा चुके हैं।
0: यानी बिल्डिंग की बनावट ही ऐसी थी कि अगर कोई हादसा हो तो अंदर मौजूद लोगों की जान मुश्किल में पड़ जाए। सिर्फ बाहर का हाल ही ऐसा नहीं, अंदर की तस्वीरें और भी लापरवाही की गवाही दे रही हैं। जलकर तबाह हुई बिल्डिंग के अंदर घुसते ही इस बात का अंदाजा लग जाता है कि आखिर आग के दौरान यहाँ किस तरह का आलम होगा, और सबसे बड़ी बात, फंसे लोगों के पास निकलने का कोई रास्ता ही नहीं होगा।
1: इस समय पर उस कॉम्प्लेक्स के अंदर मौजूद हूँ। आप देखिए किस तरीके का ये एंट्री एग्जिट पॉइंट था, और ये बहुत छोटा सा पहली बिल्डिंग है जो पेट शॉप जिसको कहा गया, इसी पेट शॉप में सामान रखा था, और यहाँ से ऊपर के फ्लोर पर जो स्टूडियो था, जो कोचिंग सेंटर था जहाँ पर लोग फंसे थे, और उसके बाद ये अंदर का ये पूरा नजारा है। आपको तस्वीरों के जरिए दिखाते हैं कि पूरा सब कुछ तहस नहस हो गया, और तहस नहस होने के बाद ये पूरा 15 लोगों की जान चली गई। उत्तर प्रदेश सरकार ने इस मामले में SIT गठित की है।
0: जानकारी के मुताबिक इस रिहायशी बिल्डिंग को 2014 में कमर्शियल कॉम्प्लेक्स बनाया गया था, यही वजह है कि यहाँ आने जाने के लिए केवल एक ही रास्ता था।
1: ये छोटा सा रास्ता है, ये इस रास्ते से यही एक एंट्री और एग्जिट पॉइंट था। इसी एंट्री एग्जिट पॉइंट से सिर्फ ये एक पूरा सा एक छोटा सा एक बॉक्स नुमा ये बिल्डिंग है। इस बॉक्स नुमा बिल्डिंग के अंदर ही लोग सिर्फ इसी से, जो बच्चे थे, जो लोग थे, वो इसी छोटे से रास्ते से, और कोई रास्ता था ही नहीं, ये इस रास्ते से अंदर जाना, बाहर जाना। और जब आग लग गई तो उसकी वजह से धुएं ने और आग ने अफरा तफरी मच गई और लोग फंस गए। और ये अब आपको रास्ता दिखाते हैं, ये रास्ता है, इस रास्ते के जरिए ये एक एंट्री एग्जिट पॉइंट है। मैं आपको दिखा रहा हूँ तस्वीरों के जरिए दिखाने की कोशिश कीजिए, ये एंट्री एग्जिट पॉइंट है।
0: जिस वक्त ये हादसा हुआ सबसे ज्यादा लोग बिल्डिंग के ऊपर वाले हिस्से में चलने वाले गेमिंग जोन में मौजूद थे। गेमिंग जोन में एनिमेशन सेंटर का पूरा ढांचा ऑटोमेटिक था, बायोमेट्रिक थंब इम्प्रेशन से दरवाजा खुलता बंद होता था। आग लगते ही ये लॉक सिस्टम फेल हो गया, जो लोग गेमिंग जोन में थे वो वहीं फंस गए और आग के बीच जिंदगी बचाने की जंग करने लगे। आग कुछ ही मिनटों में ऊंची लपटों में बदल गई, भयानक आग से लोग ऊपर नहीं जा पाए, फंसे बच्चों तक मदद पहुंचाने का कोई रास्ता नहीं था। कुछ लोगों ने पत्थर फेंककर खिड़की तोड़ने की कोशिश की लेकिन कामयाब नहीं हुए। इमारत में फंसे कई बच्चे बाथरूम में जाकर छिप गए ताकि गर्मी और आग की लपटों से बचा जा सके, लेकिन ये कदम आत्मघाती साबित हुआ। वो नल खोलकर पानी गिराते रहे ताकि आग अंदर तक ना आए, लेकिन धुआं भरने से उनका दम घुट गया। पूरी बिल्डिंग का ढांचा ऐसा था कि फंसे लोगों को बचने का कोई रास्ता नहीं मिला। बिल्डिंग का निर्माण ही कुछ ऐसा था कि बस इसे पैसे कमाने का जरिया बना रखा था, ना सुरक्षा का कोई ध्यान था, ना ही लोगों की जान की कोई परवाह।
1: जो बेसमेंट बनाया गया था, एक बेसमेंट भी बना हुआ है अंदर, देखिए आपको बेसमेंट भी ले चलते हैं। अंदर बेसमेंट है, ये नीचे मतलब 3 फ्लोर की ये बिल्डिंग, उसके बाद ये बेसमेंट। टोटली अगर कहा जाए तो सिर्फ और सिर्फ सुरक्षा मानकों को दरकिनार करके ये बनाया गया और ये बिल्डिंग बनी हुई है। ये नीचे आते हैं, नीचे आकर के रास्ता, ये बेसमेंट का है ये रास्ता, और इस बेसमेंट के रास्ते से आप देखिए, समझिए कि ये कैसे समझाने की कोशिश करते हैं। ये नीचे जब जा रहे थे, ये छोटे बच्चों का जो शॉप है, कपड़ों की शॉप है, टॉयज शॉप है, ये तमाम चीजें यहाँ गोडाउन में रखी गई हैं, इकट्ठा की गई हैं। तो ये टोटल ये एक छोटा सा बॉक्स नुमा ये कॉम्प्लेक्स है। इस कॉम्प्लेक्स में सिर्फ और एंट्री और एग्जिट का एक गेट। तो ऐसे में जब हादसा हुआ तो 15 लोगों की दम घुटने से जान चली गई।
0: इस हादसे की शुरुआती जांच में बिजली ओवरलोडिंग का खुलासा हुआ है। जिस बिल्डिंग में खुलासा हुआ वहां 20 किलोवाट के कमर्शियल बिजली कनेक्शन की मंजूरी थी, लेकिन पता चला है कि वास्तविक बिजली लोड बढ़कर 34.10 किलोवाट तक पहुंच गया था। तो क्या बिजली ओवरलोडिंग की वजह से शॉर्ट हुआ जो इतने भयावह हादसे की वजह बन गया?
1: एसआईटी से पहले फॉरेंसिक की टीम अंदर है। फॉरेंसिक के डायरेक्टर एफएसएल अपने 6 सदस्यीय टीम के साथ एक एक चीज का बारीकी से मुआयना कर रहे हैं। फॉरेंसिक की टीम सबसे महत्वपूर्ण इसलिए हो जाती है क्योंकि यही वो टीम है जो बताएगी कि आखिर ये आग कहां से लगी, कहां से फायर का ओरिजिन हुआ, कहां से वो शॉर्ट सर्किट था, तो एसी का पैनल शॉर्ट सर्किट हुआ या फिर इलेक्ट्रिकल जो कंट्रोल पैनल बनाया गया वो शॉर्ट सर्किट हुआ। यही वजह है कि एक एक पैनल के की जांच की जा रही है। जो फॉरेंसिक के एक्सपर्ट्स हैं, जो टीमें हैं, वो एक एक चीज की वीडियोग्राफी कर रही है, फोटोग्राफी कर रही है, ताकि ये समझा जा सके कि आखिर ये घटना हुई तो कैसे हुई और आग के साथ धुआं किस वजह से फैल गया। क्योंकि धुआं फैलने के भी अपने कारण होते हैं कि वहां पे प्लास्टिक ज्यादा था जिसकी वजह से आग के पहले धुआं इतना घनघोर हो गया और इसके बाद धुएं के अलावा जो फायर एग्जिट का जो नॉर्म्स होते हैं किसी भी बिल्डिंग से बाहर निकलने के, वो कितना पालन किया गया, तो वो तो सामने ही दिख रहे हैं।
0: लखनऊ में हुए हादसे की जांच के लिए एसआईटी का गठन कर दिया गया। 4 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। निगम के अधिकारियों पर कार्रवाई भी हुई है। अब जांच के बाद आग की असल वजह सामने आएगी, साथ ही उन लोगों पर एक्शन की उम्मीद है जिनकी लापरवाही 15 लोगों की मौत की वजह बन गई। आशीष श्रीवास्तव और समर्थ श्रीवास्तव के साथ संतोष शर्मा, लखनऊ आज तक।
2: तो इसे अग्निकांड कहें या फिर हत्याकांड, क्योंकि लखनऊ की जिस इमारत में आग लगी उसमें घनघोर लापरवाही की बातें सामने आ रही हैं। ना फायर की एलओसी ली गई, ना आग बुझाने के कोई इंतजाम किए गए, नियमों की धज्जियां उड़ाकर रेजिडेंशियल इलाका अचानक कमर्शियल बन गया।
3: इस आग में खाक हो गई 15 जिंदगियां, 12 पुरुष और 3 महिलाएं जिनमें शामिल थे कई छात्र और छात्राएं। आखिर ये इमारत देखते ही देखते कैसे लाक्षागृह में तब्दील हो गई? ऐसा कैसे हुआ कि लोगों को भागने का मौका तक नहीं मिला? इस सवाल का जवाब है लापरवाही, लापरवाही और पूरी लापरवाही।
4: हम इस वक्त उसी मौकाए वारदात पर हैं, उसी जगह पर हैं जहां पर अलीगंज का ये अग्निकांड हुआ है। मेरे ठीक पीछे अगर आप इस बिल्डिंग को देखें तो ये बिल्डिंग अपने आप में ये बता रही है, चीख चीख करके कह रही है कि ये बिल्डिंग कैसी थी और इसमें बचने या निकलने का कोई रास्ता मौजूद नहीं था। तकरीबन 60 से 70 फुट गहरी ये बिल्डिंग, और आप इसकी चौड़ाई देखें तो तकरीबन 40 फिट की इसकी चौड़ाई रही होगी। लेकिन अब ये बिल्डिंग पूरी तरीके से जलकर खाक हो चुकी है। बाहर आपको जो सामान बिखरे पड़े दिख रहे हैं ये इस बात की गवाही है कि किस तरीके का भीषण अग्निकांड ये हुआ है।
3: सबसे पहली लापरवाही, बिल्डिंग में निकास का कोई वैकल्पिक रास्ता नहीं था। एकमात्र रास्ता था और उसी रास्ते में एसी का जाल है और दुर्भाग्य से आग भी वहीं पर लगी। एनिमेशन ट्रेनिंग सेंटर चल रहा था जहां गेमिंग इंडस्ट्री से जुड़े सॉफ्टवेयर डेवलप करने की ट्रेनिंग दी जाती थी। जो लोग मारे गए उनमें ज्यादातर एनिमेशन ट्रेनिंग सेंटर में उस वक्त मौजूद थे।
1: लखनऊ के अलीगंज इलाके में जिस कॉम्प्लेक्स में आग लगी और 5 लोगों की जान चली गई, वो कॉम्प्लेक्स सारे नियम कायदे की धज्जियां उड़ाकर बनाया गया था। आपको तस्वीरें से समझाते हैं, ये पूरा कॉम्प्लेक्स है। सबसे बड़ी बात कि ये कॉम्प्लेक्स का जो नक्शा था वो रेजिडेंशियल नक्शे के तौर पर इसको पास कराया गया था एलडीए में, और उसके बाद इसको कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्स में तब्दील कर दिया गया। कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्स के अलग नॉर्म्स होते हैं, रेजिडेंशियल के अलग नॉर्म्स होते हैं, और ये इसके बाद आप देखिए कि किस तरीके से ये आपको थोड़ा सा इसके गेट की चौड़ाई कितना बड़ा है ये कि आप इधर से देखिए, ये सिर्फ एंट्री और एग्जिट भी समझाते हैं कि ये सिर्फ ये जो गेट आप देख रहे हैं यही एक एंट्री और एग्जिट पॉइंट था। और एंट्री और एग्जिट पॉइंट में कितने आपको ये एसी के पैनल्स दिख रहे हैं, एसी के पैनल हैं, ये एसी के पैनल लगे, यही एक एंट्री एग्जिट पॉइंट था और पीछे कोई एंट्री एग्जिट पॉइंट ही नहीं था।
5: पूरा रेजिडेंशियल एरिया है जितना भी है ये यहाँ पे कोई भी ना ऐसा कोचिंग संस्था है ना कुछ भी, पूरी रेजिडेंशियल एरिया।
6: इसको सरकार की नाकामी है कि जो कि
1: कैसे ये यहाँ पे रेजिडेंशियल में ये बन गया,
6: ये कोचिंग चलाने का जो परमिशन दिया है उसको और कोचिंग चलाने वाले संचालक को फांसी होना चाहिए।
5: गेमिंग जोन भी था ऊपर और नीचे पेट शॉप है, आप जैसे दिख रहे हैं ना कि आप खुद भी देख सकते हैं, कैमरा आप दिखाओ ना वहाँ से, आप इधर देखो पहले आप ये देखो ना, आप खुद सोचो यहाँ से कितने बच्चे भाग पाएंगे, कितने बच्चे भाग पाएंगे यहाँ पे, और जिस तरह एसी के आउटलेट्स यहाँ पे लगे हुए हैं, आप और मैं कितने भी फिट रहे हैं हम भाग नहीं सकते हैं।
3: रेसिडेंशियल इलाके में कोचिंग सेंटर आम है, आमतौर पर ऐसे कोचिंग सेंटरों में आग से बचाव के नियमों का पालन नहीं होता, लेकिन यहाँ ये लापरवाही जानलेवा हो गई।
7: ये रेजिडेंशियल में जो कमर्शियल एक्टिविटी हो रही है उसमें सबसे बड़ा व्यवसाय जिसमें कहीं मानक तय नहीं है सरकार के, वो कोचिंग व्यवसाय है। कोचिंग का न तो कहीं रजिस्ट्रेशन होता है सरकार के किसी विभाग में, कोचिंग यहाँ पर आप मान के चलो कि कक्षा 8 से लेकर आईएएस आईपीएस की भी कोचिंग इस एरिया में है। अलीगंज और जानकीपुरम कोचिंग का हब बना हुआ है, और कोचिंग में आपने मकान किराए पे लिया, फर्नीचर डाला, अगले दिन से पढ़ाना शुरू कर दिया।
3: किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज की वाइस चांसलर सोनिया नित्यानंद ने आज तक से बातचीत में एक हैरान करने वाला खुलासा किया। उनके मुताबिक जो 15 लोग मारे गए वो जलने से नहीं मरे बल्कि दम घुटने से उनकी मौत हुई।
8: 15 जो है वो लेट लाए गए और वो 15 के 15 स्मोक से चले गए,
9: स्मोक से सब गए, निकल नहीं पाए, कैसे कूदे बाहर, कैसे निकल।
8: आई थिंक ये मिनटों का खेल हो, 11 लोग तो निकल आए, बाकी 15।
3: बताया जाता है कि आग लगने से एनिमेशन सेंटर का दरवाजा लॉक हो गया, इसी वजह से धुएं के चलते दम घुट गया। आशीष श्रीवास्तव, समर श्रीवास्तव और संतोष शर्मा के साथ कुमार अभिषेक, लखनऊ आज तक।
2: लखनऊ अग्निकांड पर दनादन एक्शन जारी है, 4 गिरफ्तारियां, 4 सस्पेंड, और क्या कुछ एक्शन लिया गया देखिए।
10: दुनिया उजड़ गई,
3: धू धू कर जलती इमारत, रस्सियों के सहारे जान बचाने की जद्दोजहद, शीशा तोड़कर ऊपरी मंजिल से कूदते छात्र, दिल दहलाने वाली ये चंद तस्वीरें हैं लखनऊ के उस अग्निकांड की जिसमें 15 जिंदगियां खाक हो गई जबकि 9 जख्मी हो गए। मारे गए ज्यादातर छात्र थे जिनकी उम्र 20 से 25 साल के बीच थी। आज सुबह की तस्वीर देखिए, इमारत में आग से हुई बर्बादी के निशान साफ नजर आ रहे हैं। लखनऊ के अलीगंज थाना क्षेत्र के पुरनिया चौराहे के पास स्थित बेसमेंट ग्राउंड और फर्स्ट फ्लोर वाली बिल्डिंग में नीचे पेट शॉप, क्लिनिक और ऊपर एनिमेशन ट्रेनिंग सेंटर चल रहा था जहां गेमिंग इंडस्ट्री से जुड़े सॉफ्टवेयर डेवलप करने की ट्रेनिंग दी जाती थी। जो लोग मारे गए थे उनमें ज्यादातर एनिमेशन ट्रेनिंग सेंटर में उस वक्त मौजूद थे। शुरुआती जानकारी के मुताबिक एसी डक से लखनऊ की इसी बिल्डिंग में आग सोमवार करीब 2 बजे लगी और अग्निकांड की खबर लगते ही अलीगढ़ दौरा छोड़कर सीएम योगी आदित्यनाथ मौके पर पहुंच गए।
11: मुझे दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि अभी मुझे तुरंत जानकारी मिली है, लखनऊ में एक दुर्घटना हुई है, वहां पर एक अग्निकांड की चपेट में कुछ बच्चे आए हैं और उसके कारण उनकी दुखद मौत, प्रशासन वहां पे राहत कार्य में लगा हुआ है, लेकिन उस दुखद घटना के कारण मुझे तत्काल वापस लखनऊ जाना पड़ रहा है।
3: लखनऊ के सांसद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी देर शाम हालात का जायजा लेने लखनऊ पहुंचे।
10: यानी दुखद है, दुर्भाग्यपूर्ण है, वेदनादायक है, कोई भी कहा जाए वो कम बात है। एडमिनिस्ट्रेशन के स्तर पर और डॉक्टर्स के स्तर पर जो मैक्सिमम एफर्ट हो सकता है जो कुछ भी करना आवश्यकता है सब किया है लोगों ने, और मुख्यमंत्री जी ने स्वयं कहा भी है कि इस मामले की तह तक जाने की वो कोशिश करेंगे, प्रॉपरली इसकी जांच कराई जाएगी और आवश्यक जहां हुआ तो रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स करने में गवर्नमेंट पीछे नहीं है।
3: अलीगंज की आग शांत हो चुकी है और अब 15 मौत की जिम्मेदारी तय करने का दौर शुरू हो चुका है। अब तक 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया है जिनमें शामिल हैं रामकृष्ण उपाध्याय, वीरेंद्र प्रसाद शुक्ला, तुषांग कृष्णा जायसवाल और सुरेश कुमार शाहू। इसके अलावा सीएम योगी के निर्देश पर 4 अधिकारियों को भी तत्काल प्रभाव से सस्पेंड किया गया है। इनमें शामिल हैं गौरव कुमार एक्सन कलेक्शन जानकीपुरम, कमलेंद्र कुमार सिंह एफएसएसओ इंदिरा नगर, अनिल कुमार एई, प्रमोद पांडे जेई। योगी सरकार एक्शन में है। मौके का निरीक्षण और अस्पताल में जख्मी लोगों से मुलाकात के तुरंत बाद सीएम योगी ने हाई लेवल मीटिंग ली। अग्निकांड की जांच के लिए 2 सदस्यीय विशेष जांच दल का भी गठन किया। एसआईटी आग लगने के कारणों, सुरक्षा मानकों के अनुपालन, भवन की वैधानिक स्वीकृतियों और संभावित लापरवाही की भी जांच करेगी। जांच दल को 7 दिनों के भीतर अपनी रिपोर्ट देने को कहा गया है। उधर लखनऊ विकास प्राधिकरण ने भी ज्ञानेंद्र वर्मा के नेतृत्व में 5 सदस्यीय जांच कमेटी गठित की है। समर श्रीवास्तव और संतोष शर्मा के साथ आज तक ब्यूरो।
2: इस खास पेशकश में साथ अभी के लिए बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आज तक।
12: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच, ड्यूरेबल पाइप्स, फिटिंग्स एंड टैंक्स, अ कंप्लीट रेंज ऑफ सैनिटरी सॉल्यूशन।
13: नीड बेटर इंटरनेट? Cox Internet has the fast, reliable speeds you're looking for. Perfect for seamless streaming, gaming, and working from home. And now get Cox 300 Meg Internet with a 2-year plan price lock guarantee, plus equipment included. Oh, yeah. So get your household up to speed. Switch to Cox Internet today. Taxes and fees excluded from price guarantee.
12: Presented by Patanjali Dant Kanti Toothpaste, complete oral health ka sach. Durable pipes, fittings and tanks, a complete range of sanitary solutions. Chogan Perfumes, the French edition for him and her.
14: Pepsi Prebiotic Cola in original and cherry vanilla. That Pepsi taste you love with no artificial sweeteners, only 30 calories, just 5 grams of sugar, and 3 grams of prebiotic fiber. That great Pepsi taste with even more to love. Pepsi Prebiotic Cola. Unbelievably Pepsi.
15: One second, you're enjoying your first day off in forever. Then, mid-lunch, your phone buzzes. A window's been broken at home, and you're miles away. In one second, everything can change. That's why ADT offers security systems with 24/7 monitoring, with tech that helps first responders prioritize your emergency. And with the ADT Plus app, you can stay informed and in control of your home from virtually wherever you are. When every second counts, count on ADT. Visit ADT.com to learn more.
16: TuneIn's How To, a brief look at all the special functions and things you might not know we have.
17: TuneIn is your MVP for everything sports audio. With live sports and a full lineup of podcasts and sports talk shows, you'll get all the sports action you'll ever need. Get updates on your favorite sports teams and alerts when they play. Just follow your favorite teams on TuneIn and you'll receive notifications. Plus, you'll also get recommendations based on your favorite teams. Start following your team and stay in the loop.
18: अपनी पार्टी में टूट के बीच आज उद्धव ठाकरे ने अपने विधायकों की मीटिंग पार्टी दफ्तर शिवालय में बुलाई थी, जिसमें 3 विधायक नहीं पहुंचे, जिनमें संजय डेरकर, राहुल पाटिल, संजय पोतनीस हैं। वहीं एमएलसी सुनील शिंदे भी पार्टी की मीटिंग में शामिल नहीं हुए। महाराष्ट्र में शिवसेना यूबीटी के 20 विधायक और 6 एमएलसी हैं। उद्धव ठाकरे की मीटिंग एक घंटे तक चली। पार्टी में एकजुटता दिखाने के लिए उद्धव ने आदित्य ठाकरे और संजय राउत के साथ सभी विधायकों और एमएलसी के साथ एक ग्रुप फोटो भी खिंचवाई। हालांकि शिवसेना यूबीटी नेता कह रहे हैं कि जो विधायक नहीं पहुंच सके उनमें बगावत वाला एंगल ना तलाशा जाए, सबकी कुछ न कुछ मजबूरी थी। उद्धव ठाकरे खुद बगावत करने वाले सांसदों के चुनाव क्षेत्रों का दौरा करेंगे। इसके साथ ही उन्होंने पार्टी के वरिष्ठ नेताओं और विधायकों को भी बागी सांसदों के चुनाव क्षेत्र में जाकर पोल खोलने की बात कही है। उद्धव ठाकरे 4 साल में 2 बार पार्टी टूटने से काफी आहत है।

क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।

0: क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।
2: Durable pipes, fittings and tanks, a complete range of sanitary solutions.

अग्निकांड में 15 लोगों की मौत के बाद एक्शन, घटनास्थल पर एसआईटी को मिली कई खामियां, 7 दिन में आएगी रिपोर्ट, बिल्डिंग मालिक समेत 4 गिरफ्तार, 4 अधिकारी सस्पेंड। अग्निकांड में आंखें खोलने वाली पड़ताल, बिल्डिंग में एंट्री एग्जिट के एकमात्र रास्ते पर लगे थे इलेक्ट्रॉनिक पैनल, रिहायशी इलाके में बनी थी कमर्शियल इमारत, बिजली ओवरलोडिंग का भी खुलासा। राम मंदिर चढ़ावा चोरी की जांच कर रही एसआईटी।

0: यूपी सरकार को सौंपी अपनी प्रारंभिक रिपोर्ट। फिलहाल किसी को क्लीन चिट नहीं, कुछ कर्मचारियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की सिफारिश। नीट पर आज तक से बोले शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, दोबारा गड़बड़ी न हो इसकी पूरी कोशिश करेंगे। लीक के मुजरिमों को छोड़ेंगे नहीं, कांग्रेस की रैली पर राहुल को घेरा। टीएमसी के बागियों ने बनाया नया अध्यक्ष, तो ममता बैनर्जी ने नियुक्त किए पार्टी के नए पदाधिकारियों, खुद चेयरपर्सन और भतीजे को महासचिव बताया। फिरहाद समेत 8 नेताओं को कारण बताओ नोटिस।
1: Presented by पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच, ड्यूरेबल पाइप।

0: नमस्कार, मैं हूं अंजलि इस्टवाल। आज तक के न्यूज रूम से लाइव आपके साथ जुड़ गए हैं। बड़ी खबरें आपके लिए लेकर आ रहे हैं। सबसे पहले बात करते हैं लखनऊ की, जहां पर एक इमारत जलकर भस्म हो गई और उसका नतीजा ये हुआ कि 15 युवा जाने चली गई। ये इमारत जो थी, इसको लेकर अब SIT जांच हो रही है और SIT की टीम आज वहां पहुंची भी। सुबह के वक्त SIT की टीम वहां पर पहुंची और उसने जांच के बारे में कुछ खुलासे भी किए हैं। पता चल रहा है कि कई अनियमितताएं थी इस बिल्डिंग को लेकर के, और इस पर सवाल भी उठ रहे हैं। सवाल हर तरफ से उठ रहे हैं, न सिर्फ माता पिता की तरफ से बल्कि कई सियासी गलियारों से भी। अब पूछा ये जा रहा है कि अगर 2014 से इस बिल्डिंग को बनाया गया और एक रिहायश इमारत के तौर पर इसका नक्शा पास किया गया, तो फिर कमर्शियल काम कैसे चल रहा था। तो कई ऐसे सवाल हैं जो अब पूछे जा रहे हैं और इनको लेकर आपको ये तस्वीरें भी दिखा रहे हैं, जिसमें आप देख सकते हैं कि SIT की टीम पहुंची मौके पर जहां बिल्डिंग जली थी और ये जांच करने की कोशिश की गई फोरेंसिक टीम के साथ कि आखिर क्या वजह रही होगी इस आग की और इस तरीके से, भयंकर तरीके से इसके भड़कने की। साथ ही आपको एक तस्वीर उस दिन की भी दिखा रहे हैं जब ये आग लगी थी और उस वक्त जो दमकल के कर्मचारी थे उन्होंने 7 की इमारत की दीवार तोड़कर लोगों को बचाने की कोशिश की थी। तो आइए आपको बताते हैं कि ये जो अग्निकांड हुआ है, इसमें बड़े बड़े अपडेट कौन से आ रहे हैं। तो पहला अपडेट, SIT ने इस हादसे की जांच को अब तेज कर दिया है। दरअसल मुख्यमंत्री की तरफ से आदेश आए और उसके बाद तेजी आई है जांच में। उधर जो अस्पताल जहां पर ज्यादातर जो पीड़ित हैं, 2 जो लोग अभी भी घायल हैं वो वहां पर एडमिट हैं, वहां पे भी SIT की टीम पहुंची जांच के लिए। साथ ही में अब ये खुलासा हो रहा है कि जो इमारत थी उसका जो कमीशन्ड या ऑथराइज्ड लोड था वो अलग था, लेकिन जो इस्तेमाल हो रहा था बिजली का लोड वो अलग था, यानी कि ओवरलोडिंग चल रही थी और जून के महीने में ये बढ़ती ही जा रही थी। मंजूरी से ज्यादा बिजली का इस्तेमाल यहाँ हो रहा था, यानी कि जितना किलोवाट, यानी कि 20 किलोवाट की कमर्शियल अलाउड थी, उससे ज्यादा का इस्तेमाल हो रहा था। उधर ही बात करें लखनऊ डेवलपमेंट अथॉरिटी यानी कि लखनऊ विकास प्राधिकरण की, तो उसके 5 सदस्यीय टीम का गठन किया गया है, क्योंकि जांच ये भी की जानी चाहिए कि आखिर कौन कौन से लोग थे जो कि इसको परमिशन देने के और मैप के ना होने के बावजूद इस बिल्डिंग के चलने में लिप्त हो सकते हैं, ये जांच की जाए। तो ये सारे सवाल हैं जो उठ रहे हैं। और आपको बता दें कि इस अग्निकांड को लेकर अब जो SIT गठित की गई थी उसकी जांच अब तेज हो गई है। दावा ये किया जा रहा है कि जांच को गहन तरीके से और तेज किया जाएगा। अग्निकांड की जांच के लिए आज सुबह ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं टीम की हैं, 2 सदस्यीय टीम जो कि मौका वारदात पे पहुंची थी, वहां उन्होंने फोरेंसिक टीम के साथ मिलकर जानने की कोशिश की कि आखिर क्या खामियां हैं। और ये दावा उनकी तरफ से किया गया है कि खामियां पाई गई हैं, तो आखिर क्या हुआ ये जानने की कोशिश SIT की तरफ से की जा रही है। तो हमारे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं हमारे सहयोगी, हमारे साथ हैं समर श्रीवास्तव, आशीष है हमारे साथ, और हमारे साथ जुड़ेंगे हमारे कुछ और दूसरे संवाददाता, उनके पास रुक करेंगे। लेकिन सबसे पहले चलते हैं आशीष के पास। आशीष, आपसे जानना चाहेंगे कि SIT की जो जांच है उसको लेकर ये दावा किया जा रहा है कि उसमें तेजी आई है और SIT भी दावे कर रही है कि अनियमितताएं मिल रही हैं, तो क्या पता चल रहा है अभी इसको लेकर।
1: देखिए अंजलि, सबसे बड़ी बात है कि SIT जब जांच करने पहुंची तो उसको खामियों का अंबार मिला है। आज तक से बात करते हुए प्रिंसिपल सेक्रेटरी अमृत अभिजात ने साफ कहा है कि हमने जो जांच की है उसमें कई चीजें हैं, हम उसकी रिपोर्ट बना रहे हैं। इस समय अगर आप देखेंगी तो ये वही जगह है जहां पर पुलिस ने कॉर्डन ऑफ कर दिया है पूरी तरीके से, इस बिल्डिंग को अंदर अभी जाने को मनाही नहीं किसी को है। लेकिन ये तो जरूर है कि SIT ने जिस तरीके से देखा, क्योंकि वो बिल्डिंग के फर्स्ट फ्लोर से लेकर सेकेंड फ्लोर तक जो जली हुई बिल्डिंग आप तस्वीर में देख रही होंगी, ये वहां पर जब पहुंचते हैं तो भौचक्के रह जाते हैं, क्योंकि ऐसी स्थिति, भयावह स्थिति हो गई इसको जलकर। तो सोचिए अंदर जो लोग मौजूद मौजूद थे उनकी हालत क्या हुई होगी। और ये जो आप तस्वीर देख रही हैं, ये नीचे यहाँ पर पेट शॉप थी, उसके ऊपर एनिमेशन का ऑफिस था, वहां से पूरी तरीके से 30 बच्चे लगभग अंदर मौजूद थे, जिनकी 15 की जलकर मौत हो गई और तकरीबन 9 अभी भी घायल हैं। ऐसी स्थिति में जो आप सामान अभी भी जो पेट शॉप के नीचे जो चैन्स होंगी डॉग्स की, वो अभी भी दिखाई दे रही हैं कि वैसे के वैसे ही लटकी हुई हैं, जली हुई हैं, पूरा ऑफिस जला हुआ है। यहाँ पर जीने का कितना सा कम एरिया है, अगर आप देखेंगी तो अंदर घुस नहीं सकते हैं, अगर 4 आदमी एक साथ खड़े हो जाएं तो नहीं जा सकते हैं, ये इतना छोटा सा एरिया है। और उसके ऊपर भी कोई लिफ्ट नहीं है, एसी का जो वेंटिलेशन है वो बाहर है। और ऐसे में यहाँ पर जब आग लगी तो लोग ऊपर से कूदने लगे, यहाँ पे कूदने के बाद ये जो आप ग्रिल देख रही होंगी, इस ग्रिल पे लोग गिरे हैं, यानी कि जो छात्र थे, बच्चे थे, वो इस पर गिरे हैं, जिनसे उनकी रीढ़ की हड्डी तक टूट गई है। और ये हालात थे जब वो अपने बचने की कोशिश कर रहे थे, तो कहीं ना कहीं ये पुलिस अभी जो रोकने की कोशिश कर रही है, आप तस्वीरों में देख रहे हैं कि अगर पुलिस ने पहले अगर इस तरह रोका होता तो शायद इतना बड़ा ये नहीं हुआ होता, 15 लोगों की मौत नहीं होती। आज पुलिस जरूर रोकने की कोशिश कर रही है, शायद ये छिपाने की कोशिश कर रही है कि अंदर क्या हो रहा था, और इसी वजह से इसके जिम्मेदार यहाँ के पुलिस प्रशासन सहित यहाँ का प्रशासन और यहाँ पर जो एलडीए की अथॉरिटी है या यहाँ की जो अथॉरिटीज है वो जिम्मेदार है कि आखिर इसमें इतनी समय से अगर ये कॉमर्शियल यूज हो रहा था तो क्यों इसका पहले से नहीं बताया गया, क्यों इसके अधिकारियों ने जाँच नहीं की, क्यों पुलिस ने यहाँ पर ऑडिट नहीं किया, क्यों यहाँ पर पहुंच के नहीं जाँच की गई। इन सभी मानकों पर जो बड़े अधिकारी हैं उनकी भी जिम्मेदारी तय होती है और छोटे पर भी। आप अगर इसका नक्शा देखेंगी तो पाएंगे शीशे तक काले हो गए हैं अंदर के जलकर, और ऊपर का जो एरिया है टीन शेड का वो तोड़ा गया है पूरी तरीके से, पूरी बिल्डिंग काली पड़ गई है सिर्फ इस वजह से क्योंकि जब ये जल रही थी तो अंदर जो बच्चे मौजूद थे वो बचने की कोशिश कर रहे थे।
0: एसआईटी जो है उसने अब केजीएमयू यानी कि किंग जॉर्जेस अस्पताल में जाकर के जांच की है, क्योंकि यही वह अस्पताल है जहां पर जो घायल हैं उन्हें भर्ती कराया गया, साथ ही जो शव भी हैं वो वहीं पहुंचे थे हादसे के बाद, और अब जो टीम है वहां पहुंची है, वहां जाकर उन्होंने अपनी जांच को आगे बढ़ाया है, जानने की कोशिश की होगी कि आखिर जो लोग वहां पर मौजूद हैं वो क्या बताते हैं, क्या वो बयान देने की स्थिति में है, उनसे जानकारी लेने की कोशिश की जाएगी, जो पूरा हादसा हुआ है उसकी कड़ी को एक तैयार करने की कोशिश की जाएगी। तो चलिए एक बार फिर से रुक करते हैं हमारे सहयोगियों का, कुमार अभिषेक हमारे साथ जुड़ गए हैं। कुमार अभिषेक, आपसे जानना चाहेंगे कि जो ये हादसा हुआ है उस बिल्डिंग के बारे में कई ऐसी बातें और कई खुलासे हो रहे हैं जो उसके मालिकों पर भी सवाल उठाते हैं और उन एजेंसियों पर भी जो वहां पर इस काम को होने दे रहे थे, क्या पता चल रहा है?
2: बिल्कुल अंजलि, देखिए एक तो ये जो पूरा का पूरा कॉम्प्लेक्स है, ये अगर इसे बनाया गया है इस रिहायशी इलाके में तो ये लीगल नहीं था, हालांकि नगर निगम ने किस तरीके से इसे कमर्शियल कर दिया ये भी अपने सवालों के घेरे में है। आप देख लीजिए, आपको मैं दिखा दूं कि बगल में लोगों के रिहायशी मकान हैं, एक मंजिला मकान, दो मंजिला मकान भी आपको जल्दी नहीं दिखाई देंगे, लेकिन सटा हुआ ये कमर्शियल कॉम्प्लेक्स आपको दिखाई देगा। तो एक तो ये कि जो ये इलाका है ये पूरी तरीके से रेसिडेंशियल है या फिर सरकारी दफ्तर हैं, लेकिन जब आप इसको देखेंगी तो साफ साफ दिख जाएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी जब कल पहुंचे थे तो उन्होंने चारों तरफ इसका मुआयना किया था, लेकिन दो बातें बहुत अहम हैं। एक तरफ जो तमाम जो जांचें चल रही हैं वो अपनी जगह है, लेकिन शायद दो बातें अगर इसमें हो गई होती तो इतने बच्चों की जान नहीं जाती। एक, जो बायोमेट्रिक जिसके जरिए एक्सेस था उस एनिमेशन का जो इंस्टीट्यूट है उसके भीतर जाने और आने का, अगर वो बायोमेट्रिक लॉक नहीं हुआ होता यानी कि, तो शायद बच्चे निकल सकते थे। दूसरी बात, ऊपर अगर आपको दिखाएं तो आप देखिए ऊपर में एक पेंट हाउस जैसा है, यानी कि वो मकान मालिक जो है उसका अपना घर है, और कहा यह जा रहा है कि अगर ऊपर का घर का अगर सीढ़ी का रास्ता खुला होता तो भी ऊपर बच्चे भाग कर जान बचा सकते थे, यानी कि न तो वो बायोमेट्रिक के उस लॉक से निकल पाए और जो निकल पाए वो भी ऊपर भागने की स्थिति में नहीं थे। तो ये तमाम बातें ऐसी हैं जो एसआईटी के जांच में भी आई हैं, कल अधिकारियों ने इसकी ओर इशारा भी किया था, और डब्बा नुमा ये पूरा का पूरा कॉम्प्लेक्स रिहायशी इलाकों के बीचों बीच
0: आपको रोकेंगे इस वक्त, क्योंकि इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है, आइए सीधा उसका रुख करते हैं। खबर ये है कि पता चल रहा है कि बिजली की ओवरलोडिंग ये एक वजह हो सकती है, और सवाल यही उठ रहे हैं कि आखिर एक बिल्डिंग जो कि रेजिडेंशियल प्लान पर निकली उस पे एक व्यावसायिक कनेक्शन मिला बिजली का, 20 किलोवाट का कनेक्शन था, लेकिन उसके बावजूद भी ओवरलोडिंग की खबरें आ रही हैं। जुलाई के महीने में ही उनकी पिछले साल की लोडिंग को अगर देखें तो 30 किलोवाट से ऊपर चली गई थी। ऐसे में सवाल ये उठता है कि बिजली ओवरलोडिंग क्या ये एक वजह हो सकती है? और रुक करते हैं हमारे सहयोगी संतोष का, जो इस वक्त एक पीड़ित परिवार के साथ मौजूद है। संतोष, जो परिवार के साथ हुआ है उनका दुख जो है उसका अंदाजा लगाना भी मुश्किल है, लेकिन आज कई परिवारों ने अपने प्रियजनों को आखिरी विदाई भी दी है। फिलहाल स्थिति कैसी है उनकी?
3: देखिए, मैं जिस परिवार के साथ हूँ उसके ऊपर दुख नहीं, दुखों का पहाड़ टूटा है। वजह, इस परिवार का तो बेटा खोया ही, इस हादसे ने उनकी होने वाली बहू भी चली गई। दरअसल मैं नीलेश के परिवार के साथ हूँ। नीलेश उसमें काम करता था और उसके साथ जो उसकी मंगेतर थी वो भी काम करती थी, और इस दुखद हादसे में दोनों की जान चली गई। नीलेश की माँ है, बिलकत बुरा हाल है। आपकी नीलेश से कब आखिरी बार बात हुई थी, कब देखा था आपने?
4: कल सुबह 10 बजे गए घर से, ऑफिस से गया था, ऑफिस गया था सुबह।
3: बात नहीं हुई आपकी?
4: उसके बाद नहीं बात हुई पूरा दिन।
3: वो जो लड़की से शादी होने वाली थी वो भी साथ में ही काम कर रही थी?
4: जी।
3: कभी जब आपसे बात हुई, आप भाई हैं उनके, जब वहाँ पे हादसा हुआ तब क्या नीलेश ने मदद के लिए कोई फोन किया, आपसे बात हुई, आप लोगों को कब जानकारी मिली?
5: मुझे शाम को जानकारी मिली जब हॉस्पिटल से कॉल आया हमारे पास, तब मुझे जानकारी मिली। दिन में ये पता चला था कि अलीगंज में किसी बिल्डिंग में आग लगी है, लेकिन ये नहीं पता था कि ये उसी बिल्डिंग में आग लगी है इस वजह से। और मेरा भाई, मुझे लगता है ऐसी स्थिति में फंस गया है कि वो कॉल ही नहीं कर पाया, वरना वो फोन जरूर करता मुझे कि भैया कि ऐसी सी दिक्कत है, वो फोन कर ही नहीं पाया। पता नहीं कैसी स्थिति में रहा होगा वो।
3: वो जो लड़की थी वो भी साथ में काम करती जिससे शादी होने वाली?
5: जी।
3: उसका क्या नाम है? वो कब?
5: अनामिका सामंत।
3: वो कब हुई थी इंगेजमेंट?
5: पिछले हफ्ते बातचीत हुई थी हमारी, सब कंफर्म हो गए थे, सब पूरी बात कंफर्म हो गई थी कि हाँ बस अब शादी कब करनी है, ये बातें हो रही थी, ये सब डिसाइड करना था कि कब करनी है, बाकी सारी बात तय हो गई थी।
3: नीलेश नौकरी करता था और उसके साथ स्केच आर्टिस्ट भी था, और ये तस्वीर नीलेश की बनाई हुई, ये स्केच अपने माँ बाप का स्केच ये बनाया हुआ, अब ये नीलेश की यादें लेकर है। नीलेश की एक और, ये स्केच बनाने का शौक
6: बचपन से ही था। आर्टिस्ट जो है 3D का काम करते थे, तो जो है बचपन से ही था काम।
3: ये बहनें हैं जिनका रो रो कर हाल। भाई से आखिरी बार कब बात हुई?
7: संडे को बात हुई थी मेरी वीडियो कॉल पे, फिर मैं ससुराल में रहती हूँ ना, तो मैं संडे को बात हुई थी, मंडे को मेरी बात नहीं हुई। पर जब न्यूज इंस्टाग्राम पे रील मैंने देखा, मैंने अपने भाई को रील भेजा कि मतलब कि आप काम करते हो वहाँ, देखो जाके बगल में अगल बगल आग लग गई। मुझे ये थोड़ी पता था कि उसी बिल्डिंग में मेरा भाई में लग गई आग, कि बच्चा कि नहीं बच्चा। बाद में पता चला कि उसी बिल्डिंग में आग लग गई जिस बिल्डिंग में मेरा भाई काम करता था।
0: जी, इस वक्त आपके पास लौटेंगे संतोष थोड़े वक्त बाद, लेकिन इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है, आइए सीधा रुक करते हैं उसी बड़ी खबर का। अब मुख्यमंत्री ने आदेश दिए हैं और लगता है कि इस वक्त प्रशासन भी जागरूक हो गया, क्योंकि अब उन्होंने कई ऐसी इमारतों पर दबिश शुरू कर दी है और जांच कार्रवाई शुरू कर दी है जहां पर इस तरह के कोचिंग सेंटर चलते थे। अब ये कार्रवाई उत्तर प्रदेश में हो रही है, पहले भी हमने कानपुर जैसे शहर में भी वहां पर प्रशासन की तरफ से कार्रवाई देखी थी, और अब खबरें आ रही हैं कि लखनऊ में भी कुछ सेंटर्स पर कार्रवाई हो रही है। रुक करते हैं हमारे सहयोगी समर्थ श्रीवास्तव का। समर्थ, क्या पता चल रहा है इस कार्रवाई के बारे में?
8: यूपी में कार्रवाइयां तो पहले भी अक्सर हुई हैं, लेकिन बड़ी बात यह है कि क्या लखनऊ की उन जगहों पर जहां पर अधिकतर कोचिंग सेंटर्स हैं वहां तक ये कार्रवाइयां पहुंच पाएंगी। हम इस वक्त रिपोर्ट कर रहे हैं लखनऊ के नवल किशोर रोड से, और आपको तस्वीरों में पहले दिखा देते हैं जो ये बिजली के तारों का मकर जाल है। एक खबर ये भी सामने आ रही है कि जो ओवरलोडिंग था वो भी एक कारण बना शॉर्ट सर्किट का। तो आप इस तस्वीर को देखें और फिर खुद अंदाजा लगा लें कि यहाँ पर कोचिंग सेंटर्स का हब है, यानी कि सैकड़ों कोचिंग सेंटर्स हैं। और अब जहां से मैं आपको अपने तस्वीर दिखा रहा हूं, यानी कि मेरे ठीक पीछे आप एक गली नुमा जगह देख रहे हैं पूरी, अब ये खुद देखें और खुद जायजा लें और बताएं कि यहां पर अगर कोई अप्रिय घटना होती है या आग जैसी घटना होती है तो क्या कोई फायर टेंडर यहां पर घुस भी पाएगी और आग को बुझा भी पाएगी। देखिए पतली सी स्पेस, ऊपर से पूरी की पूरी यहां पर आपको पार्किंग दिखाई पड़ेगी, पूरा पार्क्ड एरिया है। और आप यहां पर देखें तो जो वायर्स हैं, जो इलेक्ट्रिक वायर्स हैं, उनका मकर जाल है। ये देखिए कुछ नीचे निकल रहे हैं, मेरी हाइट के जो मेरा गला है वहां तक भी आपको कुछ वायर आते दिखाई पड़ेंगे। बारिश का सीजन आने वाला है, यहां क्या कोई करंट नहीं खा सकता है। नीचे जमीन पर देखें, ये वायर जमीन पर भी आपको फैले हुए कुल मिलाकर नजर आएंगे। यहां आपको गंदगी नजर आएगी। अब मैं आपको लेकर चलता हूं जो मैं आपको दिखाना चाहता हूं। अब यहां पर आप आए तो देखें, यहां पर एक के बाद एक कोचिंग सेंटर्स के यहां पर पोस्टर्स लगे हुए हैं। यहां तमाम कोचिंग सेंटर्स हैं, और इतना ही नहीं, कोचिंग सेंटर्स ही नहीं, यहाँ पर गर्ल्स बॉयज के हॉस्टल्स भी हैं। अब आपको मैं एक छोर पर यहाँ पर दिखाऊं तो ये भी एक सक्रिय गली है। यहाँ कई लड़के लड़कियों के हॉस्टल्स हैं जो कोचिंग में पढ़ाई करते हैं, और ये सब केवल लखनऊ के नहीं है, ये अलग अलग जिलों से, क्योंकि यहाँ की कोचिंग फेमस है नीट क्रैक करने के लिए या IIT JEE क्रैक करवाने के लिए फेमस है यहाँ की कोचिंग। अब यहाँ पर आप देखें और बोर्ड्स लगे हैं, मैं आपको थोड़ा सा और करीब लेकर आऊंगा और दिखाऊंगा कि किस तरीके की यहाँ पर मिसमैनेजमेंट है। जो इलेक्ट्रिक वायर, ये देखिए इस वायर को, ये ऊपर से निकला, ये वायर नीचे तक निकल कर आता है। ये कोचिंग का, ये मैं आसान भाषा में आपसे कहूं तो दिल्ली का राजेंद्र नगर एक तरफ और लखनऊ का नवल किशोर रोड एक तरफ। अब आपको मैं यहां लेकर आता हूं, ये देखिए ये इलेक्ट्रिक वायर्स जो हैं, ये किस तरीके से यहां मकर जाल लगा हुआ है, कौन आंसरेबल है, क्या लेसा तब जागेगा जब कोई घटना हो जाएगी।
0: बिल्कुल समझ था, जाहिर तौर पर ये एक चिंताजनक बात है कि इस तरीके से इन कोचिंग सेंटर्स का चलना और फिर बाद में मौत की वजह बनना। और आपको बता दें कि इस वक्त एक और बड़ी खबर आ रही है, गाजियाबाद में भी कार्रवाई हुई है, कई ऐसे कोचिंग सेंटर्स के ऊपर शिकंजा कस रहा है। दरअसल वजह यही है कि आखिर किस तरीके से रिहायशी इमारतों में व्यवसायिक काम हो जाता है, इलीगल तरीके से वहां बिजली के कनेक्शन भी मिल जाते हैं, और यही सवाल जो है उनको लेकर दबिश हो रही है, कई शहरों में हुई है, और गाजियाबाद में भी खबरें आ रही हैं कि पुलिस प्रशासन की तरफ से वहां पर कार्रवाई की जा रही है।
9: गाजियाबाद पुलिस इस समय उन इलाकों में जा रही है देखने के लिए कि जिन इमारतों में कोचिंग सेंटर, लाइब्रेरी, गेमिंग जोन या इस तरह की गतिविधियां होती हैं वो रिहायशी इलाकों में है, कमर्शियल इलाकों में है, एंट्री कितनी है, एग्जिट कितनी है। ये एक विजय लाइब्रेरी है गाजियाबाद में, जहां पर जो लोकल पुलिस है वो सर्वे के लिए जा रही है, क्योंकि आदेश जिस तरह का, दोबारा ऐसी घटना ना हो। अब हम जिस इमारत में घुसे हैं, सीढ़ी जो है ये लगभग 3 फुट चौड़ी है, 3 फुट चौड़ी सीढ़ियां हैं जो आगे लाइब्रेरी की ओर जा रही हैं, लेकिन क्या यहां पर फायर एग्जिट है या फिर आपात निकासी, क्या यहां पर दूसरा आपात स्थिति की कोई जगह है, तो इस समय पुलिस का ध्यान जिसके हिसाब से वो रिकॉर्ड बनाएगी और उसकी जानकारी जो है आगे की कार्रवाई के लिए। इस एक्सरसाइज से क्या क्या चेक कर रहे हैं आप लोग, किस तरह के आदेश मिले, जो आप कोचिंग इंस्टीट्यूट क्या क्या चेक कर रहे हैं वहां पे?
10: बच्चों की संख्या, आने जाने के रस्ते, मतलब एग्जिट है कि नहीं है, फायर जो लगा रखा है, इंस्ट्रूमेंट है कि नहीं, और जो किस कंपनी के बिजली उपकरण लगे हैं,
9: और उसी के साथ उनकी एक्सपायरी डेट या और जहां पर नहीं मिल रहे हैं वहां पर
10: वो नोटिस दिया जाएगा। फिर
0: तो बड़ी खबर ये आ रही कि कानपुर में भी एक्शन हुआ है, 22 कोचिंग सेंटर्स को सील कर दिया गया है, उनमें किसी तरह की अनियमितताएं पाई गई थी जिसकी वजह से ये एक्शन लिया गया है, और हमारे सहयोगी सुमित चावला इस पर दे रहे हैं ताजा जानकारी।
11: कानपुर में जब से लखनऊ हादसा हुआ है उसके बाद से लगातार जो ड्राइव है वो जारी है, 22 कोचिंग सेंटर्स को सील कर दिया गया है, ये कल की खबर है। फिलहाल इस वक्त मैं मौजूद हूँ कानपुर के एक कोचिंग सेंटर काकादेव इलाके में, जहां पर हजारों कोचिंग सेंटर्स है, और इस वक्त भी यहां पे आप देखेंगे तो KDA की जो कार्रवाई है कानपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी की वो जारी है। पीछे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर पूरा जो सरकारी अमला है वो मौजूद है, और जो अवैध कोचिंग सेंटर्स चल रहे थे उसको सील करने का काम किया गया है। मैं अपने कैमरा पर्सन से रिक्वेस्ट करूंगा कि आपको दिखाने पाए, मौके पे अधिकारी मौजूद है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो कानपुर विकास प्राधिकरण द्वारा ये परिसर जो है, ये कोचिंग सेंटर, उसको सील कर दिया गया है, और ये ठीक उसी तरीके की बिल्डिंग है जैसे कल लखनऊ में हमने देखा आग लगी। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो बेसमेंट चल रहा था, अवैध रूप से पूरा इसका कंस्ट्रक्शन हुआ था, पैसेज जितना देना चाहिए था उतना पैसेज नहीं दिया गया था, सेफ्टी नॉर्म्स पूरे नहीं किए गए थे। यहाँ सामने अगर आप देखेंगे तो इसी तरीके की बिल्डिंग थी लखनऊ में, जहां पर सेफ्टी एग्जिट नहीं था, और बच्चों को जो बिल्डिंग है वहां से कूदना पड़ा था। इसी तरीके से आप देखेंगे आगे यहाँ पर एक बिलियर्ड्स क्लब है, ये स्पोर्ट्स क्लब है, इसको भी फिलहाल जस्ट अभी प्रशासन ने जो है वो सील किया है। और अभी
0: तो जब हादसा होता है उसके बाद प्रशासन चौकन्ना हो जाता है, और ऐसा ही हुआ है सिर्फ लखनऊ शहर में नहीं, कानपुर शहर में नहीं, सिर्फ गाजियाबाद में नहीं, बल्कि भोपाल में भी यही देखा जा रहा है। हमारे सहयोगी रवीश पाल सिंह की ये रिपोर्ट।
12: लखनऊ में हादसे के बाद भोपाल नगर निगम की टीम मैदान पर उतरी है और कोचिंग संस्थानों की जांच की जा रही है। इस वक्त हम एक एक्सक्लूसिव तस्वीर आपको दिखा रहे हैं कैसे नगर निगम की टीम भोपाल के कोचिंग हब कहे जाने वाले एमपी नगर में पहुंची है। और जो सबसे बड़ा खतरा इनको दिखा है यहाँ पे, वो छतों पे इस तरीके से रखे हुए एयर कंडीशन और उनसे निकला हुआ बिजली के तारों का पूरा गुच्छा जो है, हम बात करने की कोशिश करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन फिलहाल आप देखिए जो नगर निगम की टीम है वो एंट्री और एग्जिट को देख रही है कोचिंग में। सर क्या दिखा आपको अभी यहाँ पे, ये फेवरेबल कंडीशन है या फिर आपको लग रहा है कि ये खतरनाक है?
13: सर ये खतरनाक है वाकई में। और यहाँ पे देखा कि पूरे तार क्या है, देखिए आजू बाजू सर लिखने पूरी है, देखिए पूरा ओपन पड़ा हुआ पूरा तार भी। और यहाँ पे जबकि ऑक्सीजन सिलेंडर जो कि सिलेंडर जो होना चाहिए वो मतलब थोड़ा बाहर होना चाहिए ताकि कभी कोई हादसा हो जाए तो व्यक्ति क्या उसको कम से कम उसका उपयोग भी कर सके। और ये तार पूरे देखिए पूरे नंगे पड़े हुए हैं ना, इसका कोई
12: तार दिखाइए
13: देखिए पूरे। अब यहाँ पे लोहे की ये भी है, अगर स्पार्किंग हुई
12: अगर यहाँ से कोई भागने की कोशिश करे तार में तो यहाँ करंट फैलेगा
13: ना सर, पूरा देखिए लोहे का है, नुकसान ही होगा उसको जो भी हो।
12: और आप जो आए ये जो एंट्री एग्जिट आपको अलग अलग दिखाया गया है?
13: नहीं नहीं सर सिंगल ही है, भी एक ही है, इन्होंने हमें पूरा एक ही बताया है। और अभी हम लोग अभी मतलब मुश्किल से भी 10 मिनट हुए, हम लोग पूरा और सर्च कर रहे हैं, बता रहे हैं कि विंडो से एक ही है जाने का रास्ता जो है।
0: लखनऊ के इस अग्निकांड पर हमारी महाकवरेज जारी है, फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला जारी है, आप देखते रहिए आज तक।
14: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा प्यार से परो। Chogan Perfumes, the French edition for him and her.
15: Need better internet? Cox Internet has the fast, reliable speeds you're looking for. Perfect for seamless streaming, gaming, and working from home. And now get Cox 300 meg internet with a 2-year plan price lock guarantee, plus equipment included. So get your household up to speed. Switch to Cox Internet today. Taxes and fees excluded from price guarantee.
16: Hey, this is Freddie Coleman from Freddie and Harry. Stay connected to the sports world with ESPN Radio on TuneIn.
17: Third period comes to an end. Game two headed to overtime.
16: Whether you're listening to game coverage or expert analysis, ESPN Radio is your go-to for everything sports. Listen to your favorite radio personalities and nonstop sports talk so you don't miss a section of action.
17: They score!
16: Search ESPN Radio or tell your device to play ESPN Radio on TuneIn to listen.

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: ऊंचाई पर बने रहने के लिए जरूरी है इरादों का प्योर होना। कैलेंट एडवांस बनाते हैं ऐसा स्टील जो अंदर से है ज्यादा प्योर, ज्यादा मजबूत। कैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो।
3: जब धान के खेतों में जिद्दी खरपतवार दे चुनौती, तो हर असली हीरो उठाता है एक ही हथियार, क्रिस्टल क्रॉप का सिकोसा। खरपतवार मारे उगने से पहले, भारत का सबसे ताकतवर धान का खरपतवार नाशक।
4: शादी का किचन महके जहां, गोल्डी किचन किंग मसाले हो वहां।
5: गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश।
6: 11 मई आज तक पर पेपर लीक कनेक्शन का पर्दाफाश।
7: नीट की परीक्षा से पहले एक गेस पेपर धड़ल्ले से मोबाइल पर बंटता है, 135 सवाल उसी गेस पेपर से हूबहू मिलते हैं।
8: 15 दिन पहले से पूरे देश में बट रहा था, NTO को पता नहीं।
6: 12 मई आज तक के खुलासे पर मुहर।
9: जिम्मेदारी लेते हैं कि जो हुआ गलत हुआ।
7: आज तक की खबर के बाद आज सरकार की तरफ से एक्शन हुआ, NTA जागी, पेपर रद्द हुआ। हमने आज तक पर लगातार दस्तक दी है, खबरदार किया है, हर दल की सरकार को जगाया है, बताया है कि पेपर लीक रोक लीजिए वरना बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ होता रहेगा।
6: जहां खबर वहां खबरदार।
10: इन एसोसिएशन विद E3 HDMR, ये रिश्ता लंबा चलेगा।
11: जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए श्री संत का।
12: प्लीज बजीपा, प्लीज डू ललन टॉक शो, इट्स अ रिक्वेस्ट, एंड प्लीज टू स्पीक ट्रूथ।
11: अप्रैल 2026 में उन्होंने एक रिटेल कंपनी का ऐड किया।
12: ऐसे हरकतें आप करोगे आपकी बाइक के साथ? आई चैलेंज यू बजीपा, अगर आपको इतना प्रॉब्लम है तप्पड़ खांड से और आप इतना कमा रहे हो, हमें भी तो कमाने दो। आओ ना रिंग में, वेट कम।
13: 25 सालों से जहां टिकी है देश की नजर, मेरे साथ फिर से शुरू हो रहा है वही सफर। ये है खबरें 7 तक, देखते रहिए आज तक।

0: या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट, तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा।
2: चोगन परफ्यूम्स, द फ्रेंच एडिशन फॉर हिम एंड हर।

लखनऊ अग्निकांड में 15 लोगों की मौत के बाद एक्शन, घटनास्थल पर एसआईटी को मिली कई खामियां, 7 दिन में आएगी रिपोर्ट, बिल्डिंग मालिक समेत 4 गिरफ्तार, 4 अधिकारी सस्पेंड। अग्निकांड में आंखें खोलने वाली पड़ताल, बिल्डिंग में एंट्री एग्जिट के एकमात्र रास्ते पर लगे थे इलेक्ट्रिक पैनल, रिहायशी इलाके में बनी थी कमर्शियल इमारत, बिजली ओवरलोडिंग का भी खुलासा। राम मंदिर चढ़ावा चोरी की जांच कर रही एसआईटी ने यूपी सरकार को सौंपी अपनी प्रारंभिक रिपोर्ट, फिलहाल किसी को क्लीन चिट नहीं, कुछ कर्मचारियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की सिफारिश। नीट पर आज तक से बोले शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, दोबारा गड़बड़ी न हो इसकी पूरी कोशिश करेंगे, लीक के मुजरिमों को छोड़ेंगे नहीं, कांग्रेस की रैली पर राहुल को घेरा, अभी देखिए पूरा इंटरव्यू। टीएमसी के बागियों ने बनाया नया अध्यक्ष, तो ममता बैनर्जी ने नियुक्त किए पार्टी के नए पदाधिकारी, खुद चेयरपर्सन और भतीजे को महासचिव बताया, फिरहाद समेत 8 नेताओं को कारण बताओ नोटिस।

0: पिछले दिनों में जो चुनौती रहा नीट को लेके, इस बार सारे विषयों को सावधानीता बरतते हुए इसको निभाया गया है, उसको पूरा किया गया है।
1: हमारे साथ है बातचीत करने के लिए देश के शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान। नीट मामले से लेकर तमाम पेपरों पर आज बातचीत करेंगे। धर्मेंद्र जी, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको कि नीट का जो पेपर है वो सफल हो गया। तमाम लोग कयास लगा रहे थे, उनको डर था, लोगों को, छात्रों को डर था कि कहीं इस बार फिर से कोई पेपर लीक जैसा मामला ना हो। इस बार आपने पूरी सुरक्षा के तहत जो है ये इंश्योर किया कि पेपर लीक ना हो। कैसे किया इसको?
0: मैं सबसे पहले जिन विद्यार्थियों ने नीट परीक्षा की अंदर अपियर हुए, जो परीक्षार्थी बनकर बैठे, उनके पेरेंट्स, उनके अभिभावक, उनको पढ़ाने वाले सारे टीचर्स और इस व्यवस्था में लगने वाले सारे अधिकारी और शिक्षक, सभी को मैं आभार प्रकट करता हूं। हम सबने मिलकर जिम्मेवारी लिया, सबकी छोटे छोटे दायित्व से बड़ा दायित्व पूरा हो पाया। विद्यार्थियों ने अपना काम किया, अभिभावकों ने अपना काम किया, शिक्षक इन्विजिलेटर आपने काम किया, जिला प्रशासन की तमाम टीम परीक्षा केंद्रों को निगरानी करने से लेके सुपरिचालना करना, राज्य की सारी तमाम टीम और केंद्र स्तर पे अनेकों विभागों की कोऑर्डिनेशन के कारण ये उपलब्धि हो पाई है। एक सामूहिक दायित्व है, मैं सबको धन्यवाद देता हूं। सबकी सामूहिक प्रयास से ये काम को हमने कर पाए हैं और निश्चित रूप में ये एक आत्मसंतोष की विषय है। पिछले दिनों में जो चुनौती रहा नीट को लेकर, इस बार सारे विषयों को सावधानीता बरतते हुए इसको निभाया गया है, उसको पूरा किया गया है, इसलिए एक सामूहिक उपलब्धि है।
1: सामूहिक उपलब्धि है, लेकिन इस बार क्योंकि नीट का जो पेपर लीक हुआ उसके बाद प्रधानमंत्री भी इन्वॉल्व हो गए इसमें, ये इंश्योर क्यों करना पड़ा कि प्रधानमंत्री की भी इन्वॉल्वमेंट आ जाए?
0: नहीं, प्रधानमंत्री जी के सभी विषय में इन्वॉल्वमेंट रहता है। माननीय प्रधानमंत्री देश की सेवा करने को उनको देश ने जनादेश दिया है, उनको आशीर्वाद किया है, इसलिए सबकी दायित्व है। जब देश की प्रमुख सेवक के नाते उनकी भी एक दायित्व है, उन्होंने भी अपना चिंता जताया है, दायित्व निभाया, चिंता ने दायित्व निभाया, इसलिए सबकी भूमिका है। मैंने कहा इसके सारे स्टेक होल्डर्स को मैं आभार प्रकट करता हूं। निश्चित रूप में इस देश की नीति निर्धारक करने वाले व्यवस्था के प्रधानमंत्री जी प्रमुख है, इसलिए उनकी भी एक भूमिका रहती है, वो अपना भूमिका निभाए, वो तो दायित्व है उनका।
1: आगे इस तरीके के पेपर लीक ना आए इसको लेकर क्या आप कड़े कदम उठा रहे हैं?
0: देखिए, इस प्रकार की जो परीक्षा नीट होती है, इसको राधाकृष्ण कमेटी ने पिछले दिनों में भी कहा था, ये स्वास्थ्य विभाग की परीक्षा है। हम एनटीए उसको आयोजन करता है, उसको इम्प्लीमेंट करता है। स्वास्थ्य विभाग को हमने पिछले एक दो सालों से कह रहे थे इसको हम लोग सीबीटी की ओर ले जाए, राधाकृष्ण कमेटी ने उसको रिकमेंड किया था, स्वास्थ्य विभाग की एक मत था, लेकिन इस बार वो भी सहमत हो चुके हैं। अगले बार जब हम परीक्षा नीट की करेंगे उसको कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट करेंगे और एक भी मत आ रहा है कि इसको और कुछ नए तरीके से किया जा सकता है, क्या डिसेंट्रलाइज किया जा सकता है, किस भी एक प्रकार के एक मत आ रहा है। मैं आपके माध्यम से देश के विद्यार्थियों को, देश के अभिभावकों को, देश की शिक्षा जगत से जुड़े सभी स्टेक होल्डर्स को मैं ये कहना चाहूंगा कि अगले साल निश्चित रूप में निर्भुल करेंगे, संभवतः कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट की ओर जाएंगे। विद्यार्थी अभी से उसकी तैयारी करें। देश की अंदर लगभग सभी परीक्षा धीरे धीरे सीबीटी की ओर हो चुका है और सीबीटी होने से थोड़ा तुलनात्मक और अच्छा होता है, उसमें भी अनेक प्रकार की चुनौती रहता है, उसको भी संभालने की सारे प्लानिंग किया जा रहा है। आने वाले दिनों में परीक्षा जेई हो, नीट हो या नेट यूजीसी हो, ये सारे परीक्षा को निर्भुल करने का हमारी दायित्व और हम वेयर कमिटेड फॉर दैट।
1: लेकिन राहुल गांधी है वो लगातार सवाल उठा रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि देखिए नीट का मामला है, वो कह रहे हैं सीबीएसई का है, वो कह रहे हैं यूजीसी का मामला है, ये सारे विवादों को लेकर वो लगातार हमले बोल रहे हैं। वो कोटा जा रहे हैं, वो प्रयागराज जाएंगे, उन जगहों पर जा रहे हैं जहां पर छात्र तैयारी करते हैं,
0: देखिए,
1: और सवाल उठा रहे हैं आपके मंत्रालय के ऊपर।
0: राहुल गांधी जी को सवाल उठाने का उनके एज ए नेता प्रतिपक्ष के नाते पूरा भूमिका है, लेकिन उनको मेरा सुझाव रहेगा, वो कितना समझ पाते हैं विषय को, भारत की आत्मा को कितना जानते हैं, भारत के नौजवानों की धड़कन को कितना समझ पाते मैं नहीं जानता हूं, क्योंकि जो आचरण ऐसे नहीं दिखता है वो बच्चों के मन में अनावश्यक डर पैदा ना करवाए। नीट परीक्षा होगा उसके कुछ दिन पहले जाके नीट में जहां ज्यादा बच्चे बैठेंगे उस प्रकार की शहरों में जाके दहशत खड़ा करना। इस सारे सीमा को तोड़े, सारे हद को उन्होंने तोड़ा। जब नागपुर में जो घटना हुई, नागपुर के एक बच्चा ने अपने ही चॉइस से, अपने पिताजी की आईपी एड्रेस से, उन्होंने जब उनको अवसर मिला दोबारा परीक्षा केंद्र कहां हो, इस प्रकार की जब एनटीए ने अपना प्रश्न पूछा, उन्होंने अपने चॉइस से उसको आबूधाबी लिखा था। ये प्रमाणित हो चुका है। उसके पिताजी भी स्वीकार करें, हाँ हमने तो एनटीए ने तो कुछ ऐसे नहीं किया, शायद होगा कोई और, कोई क्या होगा।
1: लास्ट टाइम फिर सेंटर चेंज किया,
0: लास्ट टाइम उन्होंने नहीं कहा था एनटीए को, एनटीए के कान पे कहीं से खबर है कि इस प्रकार की एक नागपुर में बच्चा है जो शायद कह रहा है कि मेरे परीक्षा केंद्र तो आबूधाबी हो गया। एनटीए ने अपने से उस अभिभावक को संपर्क किया, बच्चे को संपर्क किया, क्या आप देना चाहते हो नागपुर में। उन्होंने खुद लिखा है, तीन बार लिखा है लॉग इन करके कि मैं आबूधाबी में देना चाहता हूं। उसको फिर एंड मोमेंट में, लास्ट समय में हमने उनको अवसर दिया नागपुर में परीक्षा देने का। लेकिन उसके पिताजी फिर भी आए, किसी मजबूरी होगा उनका, फिर आए कहने के लिए, नहीं तो हमारा आबूधाबी कैसे हो गया। हमने उनको प्रमाण दिखा भी, आपने खुद ही कहा है, ये जानते हुए भी राहुल गांधी कूद पड़े उसमें से। ये लंबा ट्वीट किए हैं उन्होंने, पोस्ट एक्स में पोस्ट किया है। मेरा अपेक्षा है राहुल गांधी जी, अगर थोड़ा भी नैतिकता बचा है, थोड़ा भी जवाबदेही बचा, वो देश के सामने क्षमा मांगना चाहिए। ये सारे हद पार हो गया जब उन्हीं की पार्टी की एक पॉलिटिकल रैली के कारण कर्नाटक में व्यवधान खड़ा हुआ, और उसकी अशर्मनाक बातें उनकी नेताओं ने बेहुदी तर्क दिया कि बच्चे पहले क्यों नहीं गए। आपको बुद्धि नहीं है कि आपको थोड़ा जाके अलग रैली करना, रैली करने को मजबूरी था, आपकी राष्ट्रीय अध्यक्ष उस रैली में उपस्थित है।
1: आपको लग रहा है कि राजनीति कर रहे हैं पेपर लीक जैसे मामलों को लेकर, नीट को लेकर, छात्रों के भविष्य को लेकर राहुल गांधी राजनीति कर रहे हैं।
0: राहुल गांधी दहशत खड़ा करना चाहते हैं, उनको देश की व्यवस्था पे भरोसा नहीं है, देश की नौजवानों पे भरोसा नहीं है। नौजवान अगर उनकी बात में रत्ती भर जाते हैं तो इतने संख्या में लोग व्यवस्थित नीट परीक्षा में अपीयर ना करते। वो तो चाहते हैं, वो ताक देके बैठे थे कि भाई इंतजार करके बैठे थे कब नीट में फिर कुछ गड़बड़ी हो जाए कि फिर मैं राजनीति करना शुरू कर दूं। ये उनकी बहुत ही शर्मनाक, निंदनीय और गैर जिम्मेवार व्यवहार है। वो एक इन्फेरिटी कॉम्प्लेक्स में चलने वाले व्यक्तित्व तो है।
1: कुछ संगठन है वो जंतर मंतर पे आ रहे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं, वो नीट सीबीएसई इस तरीके के जो मुद्दे हैं आपके मंत्रालय के, उनको लेकर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं।
0: देखिए मैंने कहा ना, देखो प्रजातंत्र में सभी को अपनी बातों को रखने का अधिकार है, लेकिन क्या रखना चाहते हो, उद्देश्य क्या है, कैसे रखते हो। जो लोग देश को टुकड़े टुकड़े करना चाहते हैं वही लोग आज डफली बजा रहे हैं जंतर मंतर में। कोई विद्यार्थी है क्या वहां? वहां एक निर्दिष्ट प्रकार के विद्यार्थी के नाम पे कुछ लोग इकट्ठा होते हैं, हमें कोई आपत्ति नहीं, वो आपका अधिकार जताए, लेकिन देश भी तो उसको समीक्षा कर रहा है। आपने जिस प्रकार की एक भय करना पैदा करना चाहते थे विद्यार्थियों के अंदर, भ्रम पैदा करना चाहते थे, उसमें आप सफल नहीं हो रहे हो। देश के विद्यार्थी आपकी बातों पे बहक बहक बहक नहीं जा रहा है, वो अपना परीक्षा केंद्र में बैठ रहा है, अपने कामों में लगा है। ये तो दहशतगर्दों का बी टीम है।
1: एक सवाल ये भी है कि जो बाकी विपक्ष है वो इस चीज को क्यों इतना बड़ा इश्यू बनाना चाहते हैं। कई उनका ये कहना है कि ये पहली बार नहीं हुआ, नीट का मामला इससे पिछली बार भी हुआ था, इस बार भी हो गया। इस तरीके के मुद्दे फिर सीबीएसई के मुद्दे पे आ जाते हैं कि स्टूडेंट्स को जो है ऑन स्क्रीन उस पर एग्जाम के लिए।
0: देखिए मैं पहले भी कहा हूं, आज भी कह रहा हूं कि देखो ये कोई राजनीतिक वाद विवाद की विषय नहीं है, व्यवस्था को सुधारनी पड़ेगी। 3 तारीख को जो हुआ वो अच्छा नहीं था, उसको सुधारनी पड़ेगी। सीबीएसई की कुछ अबनॉर्मैलिटी और अनामोलीज ध्यान में आया, उसको हम लोगों ने सुधारा। सुधार के लिए कोशिश करने में कोई आपत्ति या कोई दिक्कत और कोई जवाबदेही लेने में हमें कोई कुंठा नहीं है। इसलिए मैंने डे वन कहा, सारे व्यवस्था में हमारी एक दायित्व है, उसको ठीक करने की दायित्व हमारी, उसको सुव्यवस्थित करने की दायित्व है, हमने उसी पे कॉन्सेंट्रेट किया। इसीलिए आज सीबीएसई बच्चों की रिजल्ट निकल पाई, आज इसीलिए नीट की परीक्षा सुव्यवस्थित हो पाई, और आने वाले दिनों में व्यवस्था को सुधारने में हमें कोई दायित्व लेने में आपत्ति नहीं है। व्यवस्था में कुछ बीच बीच में चुनौती हो ही जाता है, इसको सुधारना, सबके परामर्श में सुधारना, ये हमारे दायित्व है। उस दायित्व से हम पीछे नहीं हट रहे हैं, लेकिन मैं इसको राजनीतिक भाषा फिर भी नहीं कहना चाहता हूं। इस देश में पीढ़ी दर पीढ़ी किसी के घर में शासन रहा, किसी निर्दिष्ट पार्टियों के हाथ में राज्यों में शासन रहा, वहां क्या हुई होगी? वहां इस प्रकार की घटना नहीं हुई थी क्या? ये सारा विषय जनता के सामने डॉक्यूमेंट में है। ये इस विषय को लेकर राजनीतिक भाषा में बोलना हमें आपत्ति नहीं है, लेकिन दहशतगर्द खड़ा करना, विशेष करके छोटे बच्चों के मन में भय पैदा करना, वो मेंटल स्ट्रेस में आ जाए ऐसे वातावरण खड़ा करना, ये अनुचित है, ये पाप है। जो लोग पाप कर रहे हैं उनको भुगतना पड़ेगा वो पाप के कारण।
2: एक सवाल ये है, आपने कहा कि पूरी तरीके से इंश्योर रहा इस बार, लेकिन एक घटना आई, सॉल्वर गैंग है, जिस कंपनी को झारखंड में, तेलंगाना में, उत्तर प्रदेश में बैन किया गया, उसको जो है उसके बारकोड सिस्टम के लिए दिया गया, उससे कई मामले देखने में आए,
0: जो कई विसंगति ध्यान में आ रही। लेकिन हमने इस बार कहा परीक्षा को हमने मल्टी लेयर फुल प्रूफ किया था, मान लो कोई भी लेयर टूट गया तो उसके आगे दूसरे तीसरे चौथे लेयर तक वो पकड़ में आ गया। मैं धन्यवाद दूंगा बिहार की व्यवस्था को, वहां की लखीसराय जिले में कुछ इस प्रकार की फर्जी सल्वर, ये परीक्षा में फर्जी सल्वर पहुंचना ये एक पैटर्न रहा है। इसको ध्यान में रखते हुए हमने मल्टी लेयर व्यवस्था किया था, फेस आइडेंटिटी, आधार और उसके बियॉन्ड थोड़ा निगरानी रखना। इसीलिए तो लखीसराय जिले में कुछ सल्वर नकली परीक्षार्थी पकड़ में आए, सभी को बिहार प्रशासन ने जेल में डाला है, कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। देश की अन्य एक दो जगह पर इस प्रकार की नाकाम कोशिश करने वाले लोग भी ध्यान में आए हैं, उनको भी पकड़ा गया है, किसी को स्पेयर नहीं किया। इसलिए हमारी व्यवस्था फुल प्रूफ था, कोई भी लेयर टूट गया तो दूसरे लेयर उसको पकड़ लिया। ये तो इसी के लिए से मल्टी लेयर, मैंने कहा कि इसके लिए धन्यवाद के पात्र राज्य भारत की सभी जिला के अधिकारी है, जिला प्रशासन के अधिकारी है, सभी राज्यों के अधिकारी है, सभी राज्यों की जो स्टेट कोऑर्डिनेटर रहे, सभी राज्यों के मुख्यमंत्री, कोई भी पार्टी का, सबने जिम्मेदारी लिया है। ये सबके कारण इस बार परीक्षा को निर्भुल किया गया है।
2: एक सवाल यह है धर्मेंद्र जी कि कई ऐसे सेंटर थे जहां बच्चे 2 या 3 मिनट लेट हो गए, उनको जो है जो एग्जाम सेंटर है उसमें एंट्री नहीं करने दिया गया, इसको लेकर आप बच्चों को कुछ
0: देखिये, ये कुछ इस प्रकार की भावनात्मक चित्र हमारे सामने भी आई है। लेकिन हिमांशु जी, एक व्यवस्था कोई अनुशासन से ही चलती है। बच्चों को आने का अनुमति सुबह से ही था, आप ही की टीवी में मैं देख रहा था, अनेक सेंटर्स की लाइव टेलीकास्ट आपने 9 बजे से शुरू किया था, बच्चे आ ही रहे थे। 1:30 तक बच्चों को भी वहां की व्यवस्थापकों ने, सेंटर सुपरिटेंडेंट ने आने का अनुमति दिया है। इसकी भी चित्र मेरे को याद है, त्रिवेंद्रम की एक चित्र मैं किसी टीवी में देखा, एकदम 1:30 तक बच्चों को एकदम तैनात करके उनको भर्ती किया जा रहा था, उनका टीचर वहीं खड़ा होकर कर रहा था। लेकिन एक समय तो 1:30 डेडलाइन था, उसके अंदर जो आया है कुछ जगह पे इसके बाहर भी बच्चे आ गए, जो कर्नाटक में ध्यान में आए, तो कुछ राजनीतिक कारण से बच्चों को आना संभव नहीं हुआ। लेकिन डिसिप्लिन तो डिसिप्लिन है ना, कोई व्यवस्था चलने के लिए कोई तो डेडलाइन और कॉटअप तो रहेगा ना। इसको देखा आगे आने वाले दिनों में, कई मैंने देख रहा था आज के अखबार में, अनेक एक्सपर्ट्स ने, विशेषज्ञों ने उसके ऊपर भी कुछ सुझाव दिया है। इस बार मैं आपके माध्यम से देश की लार्जर स्टेक होल्डर्स को एक अपेक्षा रखता हूं, हमें परीक्षा को सहज करना है, गुणात्मक करना है और निर्भुल करना है। इसके लिए जिसकी भी जिस प्रकार की सजेशन हो, हमने राधाकृष्ण कमेटी बनाई थी एनटीए की परामर्श के लिए, इसको फिर हमने अपेक्षा रखेंगे और समाज में और एक बार विमर्श हो, सारे एक्सपर्ट्स उसमें सुझाव दे। इस प्रकार की जो अनमोली जिस पर ध्यान में कि एकदम 131 में पहुंचे तो क्या करना, अभी की प्रोसेस में तो उसको बाहर रखना पड़ा, आने वाले दिनों में इस प्रकार की चीजों के लिए फिर क्या करना, इसकी व्यवस्था बनाएंगे, उसको सुधारने का कोशिश करेंगे।
2: अगली बार सीबीटी के तहत एग्जाम होंगे?
0: इस बार हमने स्वास्थ्य विभाग को सहमत करवा पाया है, वो लोग भी राजी हुए हैं, आने वाले वर्षों में इसको कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट की ओर ले जाएंगे, ये हमारी योजना है।
2: इस बार जब नीट का पेपर लीक हुआ था तो आपको लगता है कि स्वास्थ्य मंत्रालय, आपके मंत्रालय और एनटीए के बीच में कुछ कोऑर्डिनेशन की कमी रह गई?
0: ना,
2: जिससे पेपर सेट,
0: देखो पेपर सेट की करने की दायित्व तो एनटीए का था, इस बार रक्षक भक्षक ही हो गया। जिस लोगों पे हमने भरोसा किया था कि ये निर्भुल तरीके से प्रश्न पत्र बनाएंगे, उन्हीं लोगों ने बदमाशों के साथ सांठगांठ कर ली, दहशतगर्दियों के साथ सांठगांठ कर दिए, जो भ्रष्ट लोग परीक्षा को तोड़ना चाहते हैं अपने निहित स्वार्थ के लिए, आर्थिक हितों के लिए, अपने संस्था की मार्केटिंग बढ़ाने के लिए, टीआरपी बढ़ाने के लिए जो संस्था लाखों करोड़ रुपया खर्चा करके इन लोगों को तोड़ने का कोशिश किया, इनकी कमी के कारण इस बार घटना हुई 3 मई को। इसको सीबीआई ने एकदम अंत तक पहुंचा है, सारे लोगों को उनके पीछे, उनकी बहुत दूर पीछे जो लोग हैं सबको आइडेंटिफाई कर लिया गया है। हमारा तो अपेक्षा सीबीआई से है इन सबको, जिनको पकड़ा गया इनको फास्ट ट्रैक कोर्ट में ट्रायल किया जाए।
2: ये जो नेक्सस है इसको तोड़ देंगे,
0: बिल्कुल भारत सरकार राज्य सरकार दोनों इसमें कटिबद्ध है। ये जो नेक्सस है, पैरेलल दुनिया चलाने वाले लोग हैं, चंद पैसे के चक्कर में जो व्यवस्था को अपने हाथ लेना चाहते हैं, दहशतगर्दी करना चाहते हैं, उनके ऊपर कार्रवाई होगी।
2: एक सवाल और है, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि जब भी पेपर लीक होता है उस आम आदमी प्रभावित होता है, बच्चे प्रभावित होते हैं, ये इंश्योर आप कर देंगे कि अब आगे से भविष्य में ऐसी कोई पेपर लीक नहीं होगा? क्योंकि पेपर लीक के कानून में जो प्रोविजन है सजा का, आपको लगता है कि उतना काफी नहीं है? या
0: देखो हिमांशु जी, 302 धारा अभी भी है, उसके बाद भी घटनाएं होती है, ये एक सामाजिक प्रश्न है। मैं पिछले 5 साल से शिक्षा विभाग के काम में हूं, अनेक चीज शिक्षा विभाग में जब घटना हम सुनते हैं, कोई कैंपस में कोई बच्चा का जान चली जाती है, दुखद है, नहीं होनी चाहिए, उसकी पीड़ा होती है, इसकी जिम्मेवारी भी हम लेते हैं, लेकिन एक सामाजिक विषय है, परिवारों की दायित्व है, विद्यार्थी की अपना एक मानसिक स्थिति कैसे ठीक रहे, शिक्षकों की दायित्व है, इंस्टीट्यूशन की दायित्व है, व्यवस्था चलाने वाले हम जैसे लोगों की भी दायित्व है और आप जैसे जिम्मेवार लोगों की भी दायित्व है,
2: अवेयरनेस करना चाहिए,
0: उसको संभालना पड़ेगा, अवेयरनेस से बियॉन्ड है, इसको मेंटरिंग करना पड़ेगा, इसको एक राइट कॉन्फिडेंस देना पड़ेगा। एक दो घंटे एक आधा इंसिडेंट की विषय नहीं है, इसको एक नया कल्चर लाना पड़ेगा, एक पैराडाइम शिफ्ट की ओर ले जाना पड़ेगा, जो एनईपी ने आखिर मातृभाषा आधारित प्रारंभिक शिक्षा क्यों कहा गया है, बच्चे को शिक्षा बोझ नहीं होनी चाहिए। प्रधानमंत्री जी परीक्षा पे चर्चा में नेतृत्व खुद क्यों करते, कई लोग उनको परिहास करते हैं, कई लोग उस व्यवस्था में उंगली उठाते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री जी हर एक साल आके बच्चों के मनोबल बढ़ाते हैं, ये दायित्व है, व्यवस्था में रहने वाले लोगों की दायित्व है, समस्या को मुंह नहीं मोड़ देना है, उसके अंदर जाकर उसको समाधान करना, उसको संभालना है, हम संभालने वाले लोग हैं, हम चीजों को एकदम ये नहीं कह सकते आगे नहीं होगा, हम संभालेंगे चीजों को, समाज को साथ लेकर संभालेंगे, विद्यार्थी को पहले लेंगे, स्टूडेंट सेंट्रिक करेंगे व्यवस्था को, पेरेंट्स को समझाएंगे, टीचर्स को समझाएंगे, जो दहशतगर्द है उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई करेंगे, जैसे वो आने माफिया उसमें सक्रिय ना हो पाए, ये मल्टी डायमेंशनल अप्रोच में चलना पड़ेगा।
2: ये थे देश के शिक्षा मंत्री जिन्होंने ये इंश्योर किया है कि नीट जैसे पेपर लीक के मामले को लेकर अगर कोई भी ऐसी चीज होगी तो उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी, और पेपर लीक ना हो इसके लिए सरकार हर उचित कदम जो है वो उठा रही है। देखते रहिए आज तक,
3: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच, durable pipes, fittings and tanks, a complete range of sanitary solutions.
4: The great thing about Atlas Butler is they do it all. Heating, cooling, plumbing. Look, I'm busy with work. I don't have time to wait around or deal with lots of people. One company, one call, and they do it all. Wonder if they'll clean out my inbox. Seriously, offer that service. Please.
5: Feeling a bit nostalgic for the 90s? TuneIn has got you covered with 90s hits. Jam out to your favorite artists from the 90s, like pop stars, NSYNC, and Britney Spears. Or rock artists, like Sublime and Third Eye Blind. Reminisce about the good old days of the 90s. Just search 90s hits or ask your device to play 90s hits on TuneIn.

इस आग में खाक हो गई 15 जिंदगियां, 12 पुरुष और 3 महिलाएं, जिनमें शामिल थे कई छात्र और छात्राएं। आखिर ये इमारत देखते ही देखते कैसे लाक्षागृह में तब्दील हो गई? ऐसा कैसे हुआ कि लोगों को भागने का मौका तक नहीं मिला? इस सवाल का जवाब है लापरवाही, लापरवाही और पूरी लापरवाही। सबसे पहली लापरवाही, बिल्डिंग में निकास का कोई वैकल्पिक रास्ता नहीं था, एकमात्र रास्ता था और उसी रास्ते में एसी का जाल है और दुर्भाग्य से आग भी वहीं पर लगी। एनिमेशन ट्रेनिंग सेंटर चल रहा था जहां गेमिंग इंडस्ट्री से जुड़े सॉफ्टवेयर डेवलप करने की ट्रेनिंग दी जाती थी। जो लोग मारे गए उनमें ज्यादातर एनिमेशन ट्रेनिंग सेंटर में उस वक्त मौजूद थे। रेसिडेंशियल इलाके में कोचिंग सेंटर आम है, आमतौर पर ऐसे कोचिंग सेंटरों में आग से बचाव के नियमों का पालन नहीं होता, लेकिन यहां ये लापरवाही जानलेवा हो गई। किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज की वाइस चांसलर सोनिया नित्यानंद ने आज तक से बातचीत में एक हैरान करने वाला खुलासा किया। उनके मुताबिक जो 15 लोग मारे गए वो जलने से नहीं मरे, बल्कि दम घुटने से उनकी मौत हुई। बताया जाता है कि आग लगने से एनिमेशन सेंटर का दरवाजा लॉक हो गया, इसी वजह से धुएं के चलते दम घुट गया। आशीष श्रीवास्तव, समर श्रीवास्तव और संतोष शर्मा के साथ कुमार अभिषेक, लखनऊ आज तक।

0: presented by Patanjali Dant Kanti Toothpaste, complete oral health ka sach. Chogan Perfumes, the French edition for him and her.
1: लखनऊ अग्निकांड में अब तक 15 लोगों की मौत हो चुकी है और हादसे की जांच के लिए एसआईटी और फोरेंसिक की टीम ने घटनास्थल का दौरा कर जांच की। शुरुआती जांच में एसआईटी को कई खामियां मिली, साथ ही बिल्डिंग में बिजली के ओवरलोडिंग की बात भी सामने आ रही है। जांच में पता चला है कि जिस बिल्डिंग में आग लगी वो अवैध थी, 2016 में गिराने का आदेश हुआ था, बाद में आदेश निरस्त कर दिया गया। योगी सरकार ने इस मामले में 4 अफसरों को सस्पेंड कर दिया है, वहीं बिल्डिंग के मालिक समेत 4 लोगों की गिरफ्तारी भी हुई है।
0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच। चोगन परफ्यूम्स, द फ्रेंच एडिशन फॉर हिम एंड हर।
2: The world's biggest soccer tournament has arrived, and you can trade the entire tournament on Kalshi. Spain is currently trading at over 17% to win it all, meaning a $100 trade pays out over $530 if they win soccer's biggest prize. On Kalshi, you're trading against other people in a live market. No house, no odds makers. For a limited time, download the Kalshi app and use code JUMP to get $10 when you trade $10. K-A-L-S-H-I. Kalshi. Trade the beautiful game. 18 plus only. Restrictions and eligibility requirements apply. Event contract trading involves risk and may not be suitable for all investors. Prices, values, and available markets may differ from those mentioned. For more information, see kalshi.com/regulatory.
3: Tune in's How To, a brief look at all the special functions and things you might not know we have.
4: Get into the game with your favorite teams and never miss a game. Follow your teams on TuneIn and get live updates. Just select teams you want to follow on TuneIn and you'll get notifications like when the games start. Enjoy all the recommended stations, sports talk, and podcasts. Just favorite your teams and start listening.

0: Pepsi Prebiotic Cola in original and cherry vanilla. That Pepsi taste you love with no artificial sweeteners, only 30 calories, just 5 grams of sugar, and 3 grams of prebiotic fiber. That great Pepsi taste with even more to love. Pepsi Prebiotic Cola. Unbelievably Pepsi.
1: Want to hear something funny? Check out Just for Laughs Radio, your destination for all things comedy. Enjoy nonstop stand-up from your favorite comics, plus the ones you haven't discovered yet. Get your daily dose of laughter on Just for Laughs Radio, now on TuneIn.
2: लेबनान पर इसराइल के हमले लगातार जारी हैं। बेका घाटी में हुए भीषण हवाई हमले में 20 लोगों की मौत हो गई। इस बीच इसराइल ने एक वीडियो जारी कर दक्षिणी लेबनान में मजदल जॉन गांव के नीचे आतंकी सुरंग मिलने का दावा किया है। ये सुरंग इसराइली सीमा से कुछ ही किलोमीटर की दूरी पर मिली है। सुरंग में बड़ी संख्या में हथियार और इसराइल की ओर निशाना साधे 4 लॉन्च शॉफ्ट भी बरामद हुए हैं। ये सुरंग 200 मीटर से ज्यादा लंबी और 25 मीटर से ज्यादा गहरी है। इस ऑपरेशन के दौरान इजरायली सेना ने हिजबुल्लाह के 20 से ज्यादा आतंकियों को मार गिराने का दावा किया है।
3: ואני מתחייב בפניכם אזרחי ישראל, מדינת ישראל לא תהיה אפיזודה חולפת בתולדות עמנו. אנחנו עומדים איתן על האינטרסים החיוניים שלנו. השגנו הישגים כבירים ולא נוותר עליהם.
2: उधर हिजबुल्लाह ने इसराइल को खुली चुनौती देते हुए कहा है कि वो इसराइल के हर हमले का मुंह तोड़ जवाब देने के लिए तैयार है।
4: इसराइल लन तबका फी लबनान हत्ता लो ज़ादत इजरामा ونحن سندافع اي وقفه لاطلاق النار।
2: ईरान अमेरिका में शांति वार्ता की कोशिशों के बीच इसराइल का यह आक्रामक रुख पूरे मध्य पूर्व को एक ऐसे चौराहे पर ले आया है जहां से शांति और युद्ध दोनों की राहें निकलती हैं। ब्यूरो रिपोर्ट आज तक।

0: क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।

लखनऊ अग्निकांड में 15 लोगों की मौत के बाद एक्शन, घटनास्थल पर एसआईटी को मिली कई खामियां, 7 दिन में आएगी रिपोर्ट, बिल्डिंग मालिक समेत 4 गिरफ्तार, 4 अधिकारी भी सस्पेंड। अग्निकांड में आंखें खोलने वाली पड़ताल, बिल्डिंग में एंट्री एग्जिट के एकमात्र रास्ते पर लगे थे इलेक्ट्रिक पैनल, रिहायशी इलाके में बनी थी कमर्शियल इमारत, बिजली ओवरलोडिंग का भी खुलासा। राम मंदिर चढ़ावा चोरी की जांच कर रही एसआईटी ने यूपी सरकार को सौंपी अपनी प्रारंभिक रिपोर्ट, फिलहाल किसी को क्लीन चिट नहीं, कुछ कर्मचारियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की सिफारिश। नीट पर आज तक से बोले शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, दोबारा गड़बड़ी न हो इसकी पूरी कोशिश करेंगे, लीक के मुजरिमों को छोड़ेंगे नहीं, कांग्रेस की रैली पर राहुल को घेरा, अभी देखिए। टीएमसी के बागियों ने बनाया नया अध्यक्ष, तो ममता बैनर्जी ने नियुक्त किए पार्टी में नए पदाधिकारी, खुद चेयरपर्सन और भतीजे को महासचिव बताया, फिरहाद समेत 8 नेताओं को कारण बताओ नोटिस।

0: फेस्टिवल। शुरुआत करते हैं इस बुलेटिन की 100 खबर 100 शहर से। अयोध्या छड़ावा चोरी मामले में एसआईटी ने प्रारंभिक जांच रिपोर्ट गृह सचिव संजय प्रसाद को सौंपी। जांच प्रक्रिया अभी भी जारी। एसआईटी ने अयोध्या मामले की प्रारंभिक रिपोर्ट सौंपी, कहा जांच गोपनीय, निष्कर्ष सरकार के पास। एसआईटी ने मांगा अतिरिक्त समय, विस्तृत रिपोर्ट में बड़े खुलासों और कार्रवाई के संकेत। अरविंद केजरीवाल का चढ़ावा चोरी मामले पर बयान, चंपत राय को अभी तक क्यों नहीं हटाया गया। अयोध्या जांच पर अखिलेश यादव का तंज, बोले परतें खुलती रहीं तो जांच नहीं, ढांकने का काम तेज होगा। लखनऊ में बीते दिन एक कोचिंग सेंटर में लगी भीषण आग, आग की चपेट में आने से 15 की मौत, 9 घायल। कोचिंग संस्थान में आग के बाद जान बचाने के लिए कुछ बच्चों ने पहली मंजिल से लगाई छलांग, कुछ बाथरूम में थे छिपे। आग के धुएं के चलते दम घुटने से बच्चों की गई जान, मौके पर पहुंचकर दमकल विभाग ने आग पर पाया था काबू। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने घटनास्थल और अस्पताल में लिया जायजा, मृतकों के परिजनों के लिए 5 लाख के मुआवजे का ऐलान। लखनऊ के अलीगंज अग्निकांड की एसआईटी जांच में बड़े खुलासे, प्रमुख सचिव अमृत अभिजात बोले जांच में कई कमियां सामने आई। लखनऊ आग हादसे में पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए 6 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया, बिल्डिंग मालिक समेत 4 लोगों की गिरफ्तारी। प्रशासन का बड़ा एक्शन, एई असिस्टेंट इंजीनियर और जेई जूनियर इंजीनियर समेत 4 अधिकारी निलंबित, जिम्मेदारी तय होगी। लखनऊ के घटनास्थल पर पहुंची फोरेंसिक टीम, साक्ष्य जुटाकर जांच तेज। लखनऊ अग्निकांड में रेस्क्यू के लिए फायर टीम ने दीवार में किए 4 छेद, धुआं निकालकर बचाव अभियान चलाने की कोशिश की। धुएं से घिरे कमर्शियल कॉम्प्लेक्स में फायर ब्रिगेड का बड़ा ऑपरेशन, पड़ोसी छत से कूद शुरू हुआ रेस्क्यू। लखनऊ अग्निकांड में 15 छात्रों की मौत के बाद बिल्डिंग के सह मालिक सुरेंद्र शुक्ल का पुराना रिकॉर्ड भी आया सामने। सुरेंद्र शुक्ला का नाम साल 2015 के सीपीएमटी पेपर लीक मामले में था शामिल, आरोप था कि बेटी को परीक्षा में पास कराने के लिए पेपर लीक की साजिश रची। मामले में एफआईआर दर्ज हुई थी लेकिन एसटीएफ जांच में पर्याप्त साक्ष्य न मिलने पर सुरेंद्र शुक्ला को मिली थी राहत। जानकारी के मुताबिक सुरेंद्र शुक्ला और उनके भाई वीरेंद्र शुक्ला पर प्रॉपर्टी कारोबार के जरिए करोड़ों रुपए कमाने के भी लगते रहे आरोप। दोनों भाइयों ने कथित तौर पर किसानों से सस्ती जमीन खरीद कर बड़े पैमाने पर प्लॉटिंग का किया कारोबार। लखनऊ आग हादसे पर पीएम मोदी ने जताई संवेदना, प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख रुपए और घायलों को 50,000 रुपए की आर्थिक मदद देने का ऐलान। लखनऊ अग्निकांड पर उपराष्ट्रपति ने जताया दुख, मृतकों के परिजनों के प्रति संवेदना और घायलों के जल्द स्वस्थ होने की कामना की। राजनाथ सिंह ने भी लखनऊ आग हादसे पर दुख जताया, बोले पीड़ित परिवारों के साथ मेरी संवेदनाएं। कानपुर में कोचिंग संस्थानों और व्यावसायिक प्रतिष्ठानों पर केडीए की बड़ी कार्रवाई, कई संस्थान सील। नियमों के उल्लंघन पर सख्त हुआ कानपुर विकास प्राधिकरण यानी केडीए, 16 प्रतिष्ठानों पर सीलिंग अभियान। नीट पेपर में सॉल्वर गैंग का बड़ा खुलासा, बायोमेट्रिक सिस्टम में सेंध लगाकर स्कॉलर्स को बिठाया। इनोवेटिव व्यू पहले से कई राज्यों में ब्लैकलिस्टेड होने के बावजूद बायोमेट्रिक का काम संभाल रही थी, ये पूरे सिस्टम की गंभीर लापरवाही या मिलीभगत की ओर इशारा। पीएमसीएच का थर्ड ईयर एमबीबीएस छात्र अश्विनी कुमार खुद बायोमेट्रिक स्टाफ बनकर सेंटर में घुसा और अंदर से संभाल रहा था पूरी सेटिंग, गैंग में पढ़े लिखे लोग भी शामिल। एक अभ्यर्थी को पास करवाने के लिए 60 लाख रुपए तक की डील और देश के बड़े मेडिकल कॉलेजों के छात्र स्कॉलर के रूप में शामिल। ये रैकेट छोटे स्तर का नहीं बल्कि संगठित और बड़े नेटवर्क का हिस्सा। डमी बायोमेट्रिक के बाद अंगूठे के निशान बिगाड़ना, फर्जी सिम नकली नाम से एंट्री, गैंग ने पकड़े जाने से बचने के लिए टेक्निकल और प्लान तरीके अपनाए। भरत तिवारी एनकाउंटर मामले को लेकर बिहार में सियासत तेज, विपक्ष ने उठाए सवाल। पटना हाईकोर्ट में जनहित याचिका दाखिल कर एनकाउंटर की निष्पक्ष जांच की मांग, न्यायिक जांच की मांग हुई तेज। बिहार राज्य मानव अधिकार आयोग ने मामले का संज्ञान लिया, 13 जुलाई तक रिपोर्ट तलब। पटना में तेज प्रताप यादव के आवास से 20 लाख रुपए नकद समेत कीमती सामान चोरी का आरोप, निजी सहायक मोतीलाल राय पर गंभीर आरोप। पूर्व मंत्री तेज प्रताप यादव की शिकायत पर पुलिस जांच में जुटी, जांच के लिए डीएसपी और थाना प्रभारी पहुंचे तेज प्रताप के आवास। टीएमसी ने 24 सदस्यीय राष्ट्रीय कार्य समिति का किया पुनर्गठन, ममता बनर्जी फिर बनी चेयरपर्सन। अभिषेक बनर्जी महासचिव नियुक्त, टीएमसी ने नई कार्य समिति की जानकारी चुनाव आयोग को भी दी। दिलीप घोष का बयान, टीएमसी ड्रामा पार्टी है, ममता को हटाने न हटाने से जनता को फर्क नहीं। अल्पसंख्यक के बजट कटौती पर टीएमसी के वार पर दिलीप घोष का पलटवार, कहा यह सरकार सभी के लिए है, सबका साथ सबका विकास। नंदीग्राम चुनाव नतीजों में हेरफेर का आरोप, मामले में ममता की याचिका पर हाईकोर्ट में सीसीटीवी और वीवीपैट सुरक्षित रखने की मांग। शिबु सोरेन को पद्म भूषण मिलने पर बीजेपी ने जताई खुशी, प्रतुल शाहदेव ने किया स्वागत। प्रतुल शाहदेव ने कहा संघर्ष से मुख्यमंत्री तक का सफर शिबु सोरेन पद्म भूषण के सच्चे हकदार। केंद्रीय मंत्री जॉर्ज कुरियन ने दिया इस्तीफा, राष्ट्रपति ने तत्काल प्रभाव से किया मंजूर, राष्ट्रपति भवन की अधिसूचना जारी। कर्नाटक में क्रॉस वोटिंग पर बीजेपी सख्त, दिल्ली में आज होगी अहम बैठक। क्रॉस वोटिंग करने वालों की पहचान करेगी 3 सदस्यीय समिति, 25 जून तक रिपोर्ट। नगरासू गुरुद्वारे की छत पर निहंगों के प्रदर्शन का आज चौथा दिन, अब कुल 4 निहंग छत पर हैं, वहीं 3 नीचे आ चुके हैं, क्षेत्र में फिलहाल शांति। प्रशासन का दावा हेमकुंड साहिब और चारधाम यात्रा पूरी तरह सुचारू, गुरुद्वारे में लंगर आवागमन सामान्य। प्रशासन ने दी अफवाहों पर सख्त चेतावनी, न कब्जा न बंधक की घटना, मौके पर पुलिस प्रशासन की कड़ी निगरानी। सिक्किम से लेकर जलपाईगुड़ी तक तीस्ता नदी उफान पर, दार्जिलिंग रोड बंद, कई गांव डूबे, लोगों को सुरक्षित स्थानों पर जाने के निर्देश। उत्तर सिक्किम और डुआस में तीस्ता नदी का रौद्र रूप, भारी बारिश से कई इलाके जलमग्न, प्रशासन ने जारी किया हाई अलर्ट और रेड अलर्ट। किसानों के हित में बड़ा कदम, अमित शाह करेंगे नैफेड के ऑक्शन पोर्टल nafix.in का शुभारंभ। नैफिक्स पोर्टल से किसानों को मिलेगा फायदा, उपज की खरीद बिक्री होगी आसान और पारदर्शी। चमोली के हेमकुंड साहिब में भारी बर्फबारी, बर्फ गिरने से तापमान में आई गिरावट। बर्फीले नजारों के बीच हेमकुंड साहिब पहुंचे श्रद्धालु, रास्तों पर एसटीआरएफ और पुलिस श्रद्धालुओं की मदद के लिए तैनात। जम्मू कश्मीर में बदला मौसम का मिजाज, अनंतनाग समेत कई इलाकों में झमाझम बारिश, तापमान में गिरावट। अरुणाचल में बारिश का कहर, लिकाबाली बासर रोड भूस्खलन से बंद, चीन सीमा से जुड़ा मार्ग प्रभावित, प्रशासन ने जारी की एडवाइजरी। अगले 48 घंटों के दौरान दक्षिण पश्चिम मानसून के महाराष्ट्र, तेलंगाना, ओडिशा, छत्तीसगढ़, झारखंड और बिहार के कई हिस्सों में आगे बढ़ने का अनुमान। हफ्तों के इंतजार के बाद मुंबई पहुंचा प्री मानसून, कई इलाकों में हुई सीजन की पहली बारिश। मुंबई के बांद्रा में भी मूसलाधार बारिश, भारी बारिश से कई इलाकों में जलभराव, आवाजाही प्रभावित। महाराष्ट्र के पुणे में भी कई इलाकों में हुई झमाझम बारिश, कई जगहों पर भरा पानी। गुजरात के अमरेली में पिछले 3 दिनों से कई गांवों में तेज हवा के साथ हो रही बारिश, बुआई का इंतजार कर रहे किसानों के खिले चेहरे। गुजरात के वलसाड़ में पहली बारिश में डूबा मोगरावड़ी अंडरपास, प्री मॉनसून तैयारियों की खुली पोल, घुटनों तक भरे पानी से होकर गुजरने को लोग मजबूर। पहली बारिश में सूरत नगर निगम की भी खुली पोल, अंडरपास में जलभराव और धसी सड़कों से कई घायल, सीसीटीवी में कैद हुए हादसे। मौसम विभाग के मुताबिक एल नीनो की वजह से गुजरात में अब तक मॉनसून की शुरुआत नहीं हुई, अभी 3 से 5 दिनों तक करना होगा इंतजार। मौसम विभाग के अनुसार उत्तर गुजरात के सौराष्ट्र होते हुए पश्चिम मध्य अरब सागर तक कम दबाव का इलाका बना है, इसी के चलते कई शहरों में हो रही है बारिश। पवित्र अमरनाथ यात्रा को लेकर जम्मू कश्मीर में तैयारियां तेज, 3 जुलाई से शुरू हो रही है ये यात्रा। जम्मू में अमरनाथ यात्रा को लेकर एनएसजी ने किया मॉक ड्रिल, जवानों ने इमरजेंसी की तैयारी को परखा। अभ्यासों में आतंकी हमले, आईईडी विस्फोट, गोलीबारी और आपदा जैसी स्थितियों का किया गया पूर्वाभ्यास। अमरनाथ यात्रा को लेकर भक्तों में जबरदस्त उत्साह, अब तक करीब 4 लाख श्रद्धालुओं ने कराया रजिस्ट्रेशन। 28 अगस्त तक चलेगी पवित्र अमरनाथ यात्रा, श्रद्धालुओं में जबरदस्त उत्साह, बड़ी संख्या में यात्रा के लिए पंजीकरण करा रहे हैं श्रद्धालु। अहमदाबाद के रखियाल में बेकाबू कार का कहर, 5 वाहनों को मारी टक्कर, महिला की मौत, 6 घायल। रखियाल में सड़क पर मचा कोहराम, बेकाबू कार ने कई वाहनों को टक्कर मारने के बाद फूड लॉरी में भी मारी टक्कर। ड्राइवर को दौरा पड़ते ही ये कार हुई बेकाबू, सीसीटीवी में कैद हुई खौफनाक हादसे की तस्वीरें। देवबंद की एक शादी में डीजे पर चढ़कर तमंचों से हर्ष फायरिंग, वायरल वीडियो के बाद 3 आरोपी गिरफ्तार। हथियारों का खुला प्रदर्शन पड़ा, भारी अवैध तमंचे और कार समेत 3 युवक गिरफ्तार। राजकोट में नेशनल हाईवे पर भादर डैम की पानी की लाइन टूटी, लाखों लीटर पानी बर्बाद। संबल में डॉग मेरी की सूझबूझ से ब्लाइंड रेप केस का खुलासा, आरोपी गिरफ्तार। जयपुर में मॉर्निंग वॉक के दौरान चेन स्नैचिंग, सीसीटीवी में कैद हुई वारदात, पास मौजूद पुलिसकर्मी देखता रह गया। मेरठ में युवक की ईंट से कुचलकर हत्या, खून से लथपथ शव मिलने से सनसनी, आरोपी गिरफ्तार। अंबाजी में पुलिस पर हमला करने वाले 3 आरोपी गिरफ्तार, घटनास्थल पर कराया गया रिकंस्ट्रक्शन। बरेली के सिटी सेंटर मॉल में बड़ा हादसा टला, बिजली गुल होने से लिफ्ट में फंसे 13 लोग आधे घंटे बाद सुरक्षित निकाल लिए गए। छत्तीसगढ़ में बिलासपुर बीकानेर एक्सप्रेसवे में रेलवे की बड़ी लापरवाही, फर्स्ट एसी कोच बना शावर, बारिश का पानी घुसने से यात्रियों का सामान भीगा और ये वीडियो हुआ वायरल। नोएडा के सेक्टर 126 थाना क्षेत्र में लेबर कैंप में भीषण आग, मौके पर दमकल की कई गाड़ियां तैनात, राहत बचाव कार्य जारी। नोएडा में डीजी कनेक्शन विवाद में महिला ने मेंटेनेंस कर्मचारी को जड़े थप्पड़, सीसीटीवी वीडियो वायरल। हरिद्वार के खड़खड़ी क्षेत्र में देर रात बड़ा हादसा, बैटरी रिक्शा शोरूम में भीषण आग से मचा हड़कंप, कई वाहन जलकर राख। लेबनान को लेकर इसराइल के तेवर सख्त, सैन्य कार्रवाई जारी रखने का संकेत। इसराइली प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री और सेना प्रमुख का संयुक्त बयान जारी, कहा सैनिकों और नागरिकों पर खतरे खत्म होने करने की कार्रवाई जारी रहेगी। दक्षिणी लेबनान में सुरक्षा क्षेत्र बनाए रखने की बात दोहराई, आतंकवादी ढांचे को ध्वस्त करने के लिए अभियान जारी रखने का ऐलान। इसराइल ने कहा नागरिकों और सेना की सुरक्षा पर कोई समझौता नहीं होगा। शीर्ष सुरक्षा बैठक के बाद इसराइल का कड़ा संदेश, कहा लेबनान सीमा पर सुरक्षा बनाए रखने के लिए कार्रवाई जारी रहेगी। हुमा कुरैशी की आगामी फिल्म बेबी डू डाई डू का धमाकेदार ट्रेलर रिलीज, 3 जुलाई को फिल्म सिनेमाघरों में होगी रिलीज। फिल्म रू में इमरान हाशमी की एंट्री, फिल्म का पहला लुक जारी, अगले साल 2027 में फिल्म होगी रिलीज। निधि दत्त की फिल्म बॉर्डर 3 का ऐलान, सनी देओल की होगी दमदार वापसी, जनरल हरबख्श सिंह जिनकी जिंदगी पर बनेगी ये बॉर्डर 3। फिल्म तेरा यार हूं मैं का टाइटल सॉन्ग जारी, 24 जुलाई को फिल्म सिनेमाघरों में देगी दस्तक। फिल्म महाप्रभु जगन्नाथ का ट्रेलर लॉन्च, 10 जुलाई को 3 भाषाओं में सिनेमाघरों में होगी रिलीज।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा प्यार से परोस।
0: रुक करते बड़ी खबर का। लखनऊ में हुए भीषण अग्निकांड ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया है। इस हादसे ने प्रशासन और सिस्टम की लापरवाही का पर्दाफाश कर दिया है। SIT ने इस हादसे की जांच तेज कर दी है। पहले SIT की टीम हादसे वाले लोकेशन पर पहुंची, फिर KGMU अस्पताल जाकर जांच की। जब हादसा हो गया है तो गंभीर अनियमितताओं के भी खुलासे हो रहे हैं। तो लखनऊ अग्निकांड में 15 लोगों की मौत के बाद यूपी सरकार का कई जिलों में एक्शन शुरू हुआ है। हादसे के बाद शहर शहर फायर ऑडिट का काम शुरू हो गया है। गाजियाबाद में यूपी पुलिस इमारतों की ऑडिट का बड़ा अभियान चला रही है। गाजियाबाद पुलिस कोचिंग सेंटर्स, लाइब्रेरी और दूसरे संस्थान में चेकिंग कर रही है। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला जारी है।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा प्यार से परोस। Chogan Perfumes, the French edition for him.
2: Need better internet? Cox Internet has the fast, reliable speeds you're looking for. Perfect for seamless streaming, gaming, and working from home. And now get Cox 300 meg internet with a 2-year plan, price lock guarantee, plus equipment included. So get your household up to speed. Switch to Cox Internet today. Taxes and fees excluded from price guarantee.
3: Turn it up with today's hits on TuneIn. We're bringing you the songs everyone's talking about all in one place. Hear the biggest tracks right now from today's top artists. Day or night, today's hits keeps the energy going. Start listening now. Just search today's hits or ask your device to play today's hits on TuneIn.
1: And her.
4: ऊंचाई पर बने रहने के लिए जरूरी है इरादों का प्योर होना। गैलेंट एडवांस बनाते हैं ऐसा स्टील जो अंदर से है ज्यादा प्योर, ज्यादा मजबूत। गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो।

0: हर पल बनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: शादी का किचन महके जहां, गोल्डी किचन किंग मसाले हो वहां।
3: गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश।
4: जब बात हो सोयाबीन के खेतों को खरपतवार से बचाने की, तो हर असली हीरो की पहली पसंद है क्रिस्टल क्रॉप का अमोरा। अमोरा तेज तरार वार, हारे अब खरपतवार, देश के हीरो की पहली पसंद।
5: हनी, इस घर में कुछ है जो टूटता नहीं।
6: ये पिलर कभी नहीं टूटेगा, रुंगटा स्टील TMT से बना।
7: रुंगटा नहीं तो घर स्ट्रॉन्ग नहीं, रुंगटा स्टील TMT बार एकदम सॉलिड।
8: इन एसोसिएशन विद हिंट, बड़े आराम से शारदा यूनिवर्सिटी, द वर्ल्ड कम्स टुगेदर एट शारदा यूनिवर्सिटी। वेयर आर यू?
1: विमल बोलो जुबा केसरी।
9: कूल स्टाइलिश फैंस, एनहांस होम डेकोर विद ब्यूटीफुल फैंस।
10: पंजाब नेशनल बैंक, भरोसे का प्रतीक।
11: जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए श्री संत का।
12: Please, Bajipa, please do Lalan Talk Show. It's a request. And please to speak truth.
11: April 2026 में उन्होंने एक रिटेल कंपनी का ऐड किया।
12: ऐसे हरकतें आप करोगे आपकी बाइक के साथ? I challenge you, Bajipa. अगर आपको इतना प्रॉब्लम है तप्पट खांड से और आप इतना कमा रहे हो, हमें भी तो कमाने दो। आओ ना रिंग में। Wait. Come.
13: 25 सालों से जहां टिकी है देश की नजर, मेरे साथ फिर से शुरू हो रहा है वही सफर। ये खबरें 7 तक, देखते रहिए आज तक।

प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा। चोगन परफ्यूम्स, द फ्रेंच एडिशन फॉर हिम एंड हर।

0: इन एसोसिएशन विद हिंट बड़े आराम से शारदा यूनिवर्सिटी द वर्ल्ड कम्स टुगेदर एट शारदा यूनिवर्सिटी वेयर आर यू विमल बोलो जुबा केसरी कूल स्टाइलिश फैंस एनहांस होम डेकोर विद ब्यूटीफुल फैंस पंजाब नेशनल बैंक भरोसे का प्रतीक
1: राम की अमानत में खयानत का मामला सियासी गलियारे से होते हुए अब सुप्रीम कोर्ट तक जा पहुंचा है। अयोध्या राम मंदिर में चंदा चोरी और वित्तीय अनियमितताओं के मामले में सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दाखिल की गई है। सुप्रीम कोर्ट में दायर PIL में जांच के लिए CBI के नेतृत्व में विशेष जांच दल गठित करने की मांग की गई है। याचिका में कहा गया है कि जांच में पारदर्शिता जरूरी है क्योंकि दान करोड़ों भक्तों की आस्था से जुड़ा है। याचिकाकर्ता ने कोर्ट से अपील की है कि चंदा चोरी की FIR आर्थिक गड़बड़ियों की तय समय सीमा में जांच और संभावित गबन या भ्रष्टाचार की जांच को लेकर दिशा निर्देश जारी किए जाएं। राम मंदिर के चढ़ावे में चोरी का मामला दिनों दिन बढ़ता जा रहा है लेकिन अब तक सवालों के जवाब नहीं मिले हैं।
2: हमको रामलला के सामने कोई चोरी हो ही नहीं सकती। जब चोरी होगा तो अपने आप वो आ ही जाएगा, चोर भी ईमानदार बन जाएगा।
1: विपक्ष लगातार चंदा चोरी और उसकी जांच को लेकर सवाल खड़े कर रहा है। हालांकि CM योगी आदित्यनाथ ने साफ किया है कि SIT की जांच रिपोर्ट सामने आने के बाद सच सामने आ जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट आज तक। TMC के लिए लड़ाई तेज हो गई है। इस बार रिताब्रता बनर्जी के नेतृत्व वाले बागी विधायकों के गुट ने ममता बनर्जी के नेतृत्व को सीधे चुनौती दी है। बागी गुट ने एक नई राष्ट्रीय कार्यकारी समिति बनाई है और ममता बनर्जी को अध्यक्ष पद से हटा दिया है। बागी गुट ने ममता की जगह अरूप रॉय को TMC का अध्यक्ष चुना है। अभिषेक बनर्जी को सस्पेंड कर दिया गया है। बागी गुट का दावा है कि वे ही असली TMC है। बागी गुट का दावा है कि पार्टी के भीतर संवैधानिक संकट की वजह से ये बैठक बुलाई गई थी। रिताब्रता बनर्जी ने कहा है कि पार्टी संविधान के मुताबिक हर 3 साल में राष्ट्रीय कार्यकारी समिति का गठन जरूरी है और आखिरी बार यह समिति फरवरी 2022 में बनाई गई थी। ऐसे में पार्टी के राष्ट्रीय नेतृत्व के पुनर्गठन की प्रक्रिया शुरू करना जरूरी हो गया था। कोलकाता के पूर्व मेयर फरहाद हकीम बागी गुट में शामिल हो गए हैं जिसके बाद दीदी ने सख्त रुख अपनाते हुए हाकिम सहित 8 शीर्ष नेताओं को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। ममता गुट ने पलटवार करते हुए बागियों को गद्दार कहा है और कोई भी कार्रवाई करने के उनके अधिकार पर सवाल उठाए हैं।
3: जो बहिष्कृत लीडर है, जो बहिष्कृत आदमी है, एक चोर दूसरे को चोर कैसे बता सकता है? वो तो अपने ही सस्पेंडेड है। एक सस्पेंडेड आदमी दूसरे को कैसे सस्पेंड कर सकता है? ममता बनर्जी चेयरपर्सन है, अभिषेक बनर्जी जनरल सेक्रेटरी है।
1: उधर बागी सांसदों ने संकेत दिए हैं कि वे पार्टी के चुनाव चिन्ह पर दावा करने के लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे। बागी विधायकों ने भी पार्टी के नाम और सिंबल पर अपना दावा ठोका है। ब्यूरो रिपोर्ट आज तक।

प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा। चोगन परफ्यूम्स, द फ्रेंच एडिशन फॉर हिम एंड हर।

0: हत्या के बाद एसआईटी का बड़ा एक्शन, मौके पर मिली भारी खामियां, अब तक 4 गिरफ्तार, 4 सस्पेंड, 7 दिन में आएगी रिपोर्ट। लखनऊ अग्निकांड में आंखें खोलने वाला खुलासा, एकमात्र एंट्री एग्जिट पर ही लगे थे इलेक्ट्रिक पैनल, रिहायशी इलाके में चल रही थी कमर्शियल बिल्डिंग। राम मंदिर चढ़ावा मामले में एसआईटी ने यूपी सरकार को सौंपी प्रारंभिक रिपोर्ट, फिलहाल किसी को क्लीन चिट नहीं, कुछ कर्मचारियों पर केस की सिफारिश। नीट पर आज तक से बोले धर्मेंद्र प्रधान, लीक के मुजरिमों को छोड़ेंगे नहीं, दोबारा गड़बड़ी रोकने की पूरी कोशिश, राहुल पर लगाया छात्रों को भड़काने का आरोप। टीएमसी के बागियों ने बनाया नया अध्यक्ष, तो ममता बनर्जी ने नियुक्त किए पार्टी में नए पदाधिकारी, खुद चेयरपर्सन और भतीजे को महासचिव बताया, फिरहाद समेत 8 नेताओं को कारण बताओ नोटिस।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा चोगन परफ्यूम।

0: लखनऊ अग्निकांड को लेकर यूपी से दिल्ली तक हड़कंप है। अब तक 15 लोगों की मौत हो चुकी है, 9 लोग गंभीर रूप से घायल हैं, लेकिन सवाल उठ रहा है कि आखिर इस अग्निकांड का कसूरवार कौन। अग्निकांड की जांच को लेकर बनी एसआईटी की टीम ने हादसे वाली जगह जाकर मुआयना किया। वहां एसआईटी को कई गंभीर खामियां मिली हैं। फोरेंसिक टीम के साथ एसआईटी ने कई सबूत भी जुटाए हैं। लखनऊ अग्निकांड को लेकर यूपी सरकार ने 4 अफसरों को सस्पेंड कर दिया है। बिल्डिंग के मालिक समेत 4 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। एसआईटी ने अपनी जांच तेज की। हादसे वाली जगह पर जाकर एसआईटी ने पूरे इलाके का मुआयना किया है। एसआईटी टीम को घटना स्थल पर कई गंभीर खामियां मिली हैं। एसआईटी के सदस्य और प्रमुख सचिव अमृत अभिजात ने आज तक से बातचीत की है और बताया है कि जांच के दौरान कई कमियां स्पष्ट रूप से दिख रही हैं। उन्होंने कहा कि फोरेंसिक टीम के साथ मिलकर बारीकी से निरीक्षण किया गया है, हर पहलू की जांच की गई है, खामियों के आधार पर जल्द ही आगे की कार्रवाई की जाएगी। एसआईटी सदस्य ने स्पष्ट कहा कि प्रारंभिक जांच में कई गंभीर कमियां सामने आई हैं, लापरवाही सामने आई है।
1: माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर एसआईटी का गठन हुआ है, जिसमें हम लोग यहाँ पर आए हैं। हम लोग यहाँ पर आए हुए हैं, घटना के सभी पहलुओं पर गहराई से जांच करके प्रस्तुत करेंगे और कोई भी चीज ऐसी नहीं होगी जिसको इसमें रह जाए, कोई स्टोन अनटर्न नहीं रहेगा। हम लोग पूरी तरह से जांच करके फिर बताएंगे।
2: सर, 7 दिन में रिपोर्ट तैयार करने के लिए कहा है, 7 दिन में रिपोर्ट?
1: मैंने कहा कि निर्धारित समय में हर आयाम पर हम लोग जांच करेंगे और जांच के पश्चात निष्कर्ष को भेजा जाएगा।
2: थैंक यू।
0: जैसे ही आग लगी थी उसको देखकर यह स्पष्ट समझ में आ रहा था कि जो आग के लिए, जो फायर सेफ्टी के लिए सबसे जरूरी होता है कि आपके पास एंट्री और एग्जिट हो, वो यहां पर मौजूद नहीं था। रेसिडेंशियल बिल्डिंग कैसे, एक रेसिडेंशियल इलाके में किस तरीके से ऐसी एक अनुमति दी गई कमर्शियल स्पेस के लिए, बिल्डिंग के पास फायर एनओसी क्यों नहीं थी, लखनऊ नरसंहार के बाद ये सवाल उठ रहे हैं। फायर विभाग ने बिल्डिंग की समय समय पर जांच क्यों नहीं की थी, बिल्डिंग में कोई इमरजेंसी एग्जिट क्यों नहीं था, और यहां तक कि अब तो एंट्री पे ही इलेक्ट्रिकल फिटिंग की बात सामने आ रही है। हमारे साथ हमारे संवाददाता संतोष इस समय जुड़ रहे हैं। संतोष, ये आग लगी, इस आग के बाद केवल ऐसा नहीं है कि उसमें कितना नुकसान हुआ ये गिनना है, बल्कि ये देखना है कि कैसे आगे कहीं किसी रिहायशी इलाके में इस तरह की बिना इजाजत बिना अनुमति कोई बिल्डिंग ऐसी न खड़ी हो जो लोगों की जीवन के साथ आगे चल के खिलवाड़ कर सके। क्या हम वो तेज एक्शन ग्राउंड पे देख रहे हैं इस समय?
3: बिल्कुल, ये 15 जाने जाने के बाद तो ये एक्शन नजर आ रहा है, लेकिन ये एक्शन असरदार होगा ये बड़ी बात है, क्योंकि एक्शन होगा कब, जब उन जिम्मेदार अधिकारियों पर एक्शन होगा जिनकी वजह से ऐसे रिहायशी इलाके में कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्सेस बनकर खड़े हो गए। एक बॉक्स के स्ट्रक्चर का, एक डिब्बे के तरीके से ये स्ट्रक्चर खड़ा हो गया, और एलडीए जो एक ईंट लगाने पर नोटिस भेज देता है, ध्वस्तीकरण का नोटिस भेजता है, उसको भनक तक नहीं लगी। उसी से इस जो कॉम्प्लेक्स बनाने वाले मालिक हैं वीरेंद्र शुक्ला, उन्होंने रिहायशी एक रेजिडेंशियल नक्शा पास कराया लेकिन बना दिया कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्स। एलडीए के अधिकारियों ने इसका मतलब सर्वे नहीं किया मौके पर, सिर्फ कागजों में इसका नक्शा पास हुआ और उसके बाद अफसरों ने आंखें बंद कर ली। बिजली विभाग की लापरवाही कि वहां पर जब हम एंट्री गेट पर गए तो वहां पर 6 से 7 एसी के पैनल लगे हुए थे, यानी कि और उसके साथ 2 एग्जॉस्ट लगे थे, इलेक्ट्रिकल पैनल लगा था। पूरी बिल्डिंग में सिर्फ एक एंट्री एग्जिट पॉइंट, और उसमें भी सिर के ऊपर आप जब जाएंगे तो सिर से थोड़ा सा ऊंचे पर 7 एसी के पैनल, 2 एग्जॉस्ट पैनल, 1 इलेक्ट्रिकल पैनल लगा हुआ है, वो भी पूरा तरीके से सकरा कर दिया गया, पहले से सकरा और इनकी वजह से और सकरा, तो एंट्री एग्जिट गायब ही था, तो जिसकी वजह से ये हादसा हुआ। रही बात फायर एनओसी की, तो फायर एनओसी में नियम कायदे आड़े आ गए। एनबीसी यानी नेशनल बिल्डिंग कोड 2016 में जो बना, उसमें कहा गया कि 15 मीटर से अधिक की ऊंचाई या 500 वर्ग मीटर तक के ही कमर्शियल अगर कोई कॉम्प्लेक्स बनता है तो उसमें फायर एनओसी फायर डिपार्टमेंट देगा और वो सर्वे कर पाएगा। अगर उससे कम की कोई कॉम्प्लेक्स बना है, कोई इमारत बनी है, तो उस कॉम्प्लेक्स या उस इमारत को बनाने वाले की जिम्मेदारी बनती है कि वो फायर ऑडिट कराए, फायर डिपार्टमेंट उसको नोटिस नहीं देगा। तो अब ये नियम फायर डिपार्टमेंट के आगे आड़े आ गया, तो उसने इसमें फायर एनओसी देने की जहमत नहीं उठाई है, फायर एनओसी ली ही नहीं गई। ये कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्स बनाने वाले जो मालिक हैं उनकी जिम्मेदारी, एलडीए के अफसर जिन्होंने
0: स्तर पर कहीं पर लापरवाही है, कहीं पर लालच है, और उस सब के बीच ये 15 जिंदगियां जो आज हमारे बीच रही नहीं। बहुत शुक्रिया संतोष इस पूरी जानकारी के लिए। लखनऊ के अलीगंज में हुए भीषण अग्निकांड में 15 लोगों की जान गई है, कई परिवार उजड़ गए हैं, कई घर बर्बाद हो गए हैं। हादसे की एसआईटी जांच शुरू हो गई है और शुरुआती जांच में बिल्डिंग में कई खामियां सामने आई हैं। न तो यहां पर सुरक्षा का कोई इंतजाम था, न किसी नियम का पालन किया गया। जब बिल्डिंग में आग लगी तो कई लोग लपटों के बीच फंस गए, धुएं के बीच जिंदगी बचाने की जद्दोजहद करने लगे, लेकिन पूरा ढांचा ऐसा था कि कईयों को निकलने का रास्ता तक नहीं मिला। 32 मिनट तक लोग लपटों और धुएं के बीच घिरे रहे।

0: लखनऊ में हुआ एक हादसा जिसमें देखते ही देखते बिल्डिंग आग की लपटों में घिर गई, देखते ही देखते पूरी बिल्डिंग धधक उठी और कुछ ही देर में चीख पुकार के बीच जिंदगी बचाने की जद्दोजहद की तस्वीरें सामने आने लगी। कोई शीशा तोड़कर ऊपरी मंजिल से कूदा, कोई तार के सहारे जान बचाने की कोशिश करता दिखा। आंखों के सामने इतना भयंकर मंजर था कि देखने वालों की भी सांसें थम गई। ये वो खौफनाक तस्वीरें हैं जो लोगों ने देखी, लेकिन इस अग्निकांड में बहुत कुछ ऐसा है जो दुनिया की नजरों में नहीं आ सका। वो है उन बच्चों की तड़प, उन बच्चों की छटपटाहट जो बिल्डिंग के भीतर ही घुटते रहे, जान बचाने के लिए बाहर आने की कोशिश करते रहे और अंत में दम घुटने से मौत के मुंह में पहुंच गए। अब इस अग्निकांड की पड़ताल के बीच जो बात सामने आ रही है उससे साफ है कि इस बिल्डिंग में ना ही नियमों का कोई ख्याल रखा गया, ना ही सुरक्षा के मानक का पालन किया गया।
1: लखनऊ के जिस कमर्शियल कॉम्प्लेक्स में लगी आग ने 15 लोगों की जान ले ली, वो कमर्शियल कॉम्प्लेक्स लापरवाही और नियम कायदे की धज्जियां उड़ाकर बनाया गया था। इस कमर्शियल कॉम्प्लेक्स में एंट्री एग्जिट प्वाइंट एक था, यानी कि एक ही रास्ते से एंट्री हो रही थी और एग्जिट हो रहा था, और उस एंट्री एग्जिट प्वाइंट पर भी एसी के पैनल, इलेक्ट्रिकल पैनल, एग्जॉस्ट लगाए रखे थे, यानी कि एक रास्ता और वो भी सकरा कर दिया गया। और यही वजह थी कि जब आग लगी, धुआं फैला, तो जो लोग दूसरी और तीसरी मंजिल पर पढ़ाई करने, नौकरी करने के लिए पहुंचे थे, वो उस धुएं में फंस गए और दम घुटने से 15 लोगों की मौत हो गई। फिलहाल अब कार्रवाई का दौर शुरू हो चुका है, FIR दर्ज हो गई है, SIT गठित कर दी गई है, फॉरेंसिक की जांच शुरू हो चुकी है और 4 अधिकारी सस्पेंड किए जा चुके हैं।
0: यानी बिल्डिंग की बनावट ही ऐसी थी कि अगर कोई हादसा हो तो अंदर मौजूद लोगों की जान मुश्किल में पड़ जाए। सिर्फ बाहर का हाल ही ऐसा नहीं, अंदर की तस्वीरें और भी लापरवाही की गवाही दे रही हैं। जलकर तबाह हुई बिल्डिंग के अंदर घुसते ही इस बात का अंदाजा लग जाता है कि आखिर आग के दौरान यहाँ किस तरह का आलम होगा, और सबसे बड़ी बात, फंसे लोगों के पास निकलने का कोई रास्ता ही नहीं होगा।
1: इस समय पर उस कॉम्प्लेक्स के अंदर मौजूद हूँ। आप देखिए किस तरीके का ये एंट्री एग्जिट पॉइंट था, और ये बहुत छोटा सा पहली बिल्डिंग है जो पेट शॉप जिसको कहा गया, इसी पेट शॉप में सामान रखा था, और यहाँ से ऊपर के फ्लोर पर जो स्टूडियो था, जो कोचिंग सेंटर था जहाँ पर लोग फंसे थे, और उसके बाद ये अंदर का ये पूरा नजारा है। आपको तस्वीरों के जरिए दिखाते हैं कि पूरा सब कुछ तहस नहस हो गया, और तहस नहस होने के बाद ये पूरा 15 लोगों की जान चली गई। उत्तर प्रदेश सरकार ने इस मामले में SIT गठित की है।
0: जानकारी के मुताबिक इस रिहायशी बिल्डिंग को 2014 में कमर्शियल कॉम्प्लेक्स बनाया गया था, यही वजह है कि यहाँ आने जाने के लिए केवल एक ही रास्ता था।
1: ये छोटा सा रास्ता है, ये इस रास्ते से यही एक एंट्री और एग्जिट प्वाइंट था। इसी एंट्री एग्जिट प्वाइंट से सिर्फ ये एक पूरा सा एक छोटा सा एक बॉक्स नुमा ये बिल्डिंग है। इस बॉक्स नुमा बिल्डिंग के अंदर ही लोग सिर्फ इसी से, जो बच्चे थे, जो लोग थे, वो इसी छोटे से रास्ते से, और कोई रास्ता था ही नहीं, ये इस रास्ते से अंदर जाना, बाहर जाना। और जब आग लग गई तो उसकी वजह से धुएं ने और आग ने अफरा तफरी मच गई और लोग फंस गए। और ये अब आपको रास्ता दिखाते हैं, ये रास्ता है, इस रास्ते के जरिए ये एक एंट्री एग्जिट पॉइंट है। मैं आपको दिखा रहा हूँ तस्वीरों के जरिए दिखाने की कोशिश की, ये एंट्री एग्जिट पॉइंट है।
0: जिस वक्त ये हादसा हुआ सबसे ज्यादा लोग बिल्डिंग के ऊपर वाले हिस्से में चलने वाले गेमिंग जोन में मौजूद थे। गेमिंग जोन में एनिमेशन सेंटर का पूरा ढांचा ऑटोमेटिक था, बायोमेट्रिक थंब इम्प्रेशन से दरवाजा खुलता बंद होता था। आग लगते ही ये लॉक सिस्टम फेल हो गया, जो लोग गेमिंग जोन में थे वो वहीं फंस गए और आग के बीच जिंदगी बचाने की जंग करने लगे। आग कुछ ही मिनटों में ऊंची लपटों में बदल गई, भयानक आग से लोग ऊपर नहीं जा पाए, फंसे बच्चों तक मदद पहुंचाने का कोई रास्ता नहीं था। कुछ लोगों ने पत्थर फेंककर खिड़की तोड़ने की कोशिश की लेकिन कामयाब नहीं हुए। इमारत में फंसे कई बच्चे बाथरूम में जाकर छिप गए ताकि गर्मी और आग की लपटों से बचा जा सके, लेकिन ये कदम आत्मघाती साबित हुआ। वो नल खोलकर पानी गिराते रहे ताकि आग अंदर तक ना आए, लेकिन धुआं भरने से उनका दम घुट गया। पूरी बिल्डिंग का ढांचा ऐसा था कि फंसे लोगों को बचने का कोई रास्ता नहीं मिला। बिल्डिंग का निर्माण ही कुछ ऐसा था कि बस इसे पैसे कमाने का जरिया बना रखा था, ना सुरक्षा का कोई ध्यान था, ना ही लोगों की जान की कोई परवाह।
1: जो बेसमेंट बनाया गया था, एक बेसमेंट भी बना हुआ है अंदर, देखिए आपको बेसमेंट भी ले चलते हैं। अंदर बेसमेंट है, ये नीचे मतलब 3 फ्लोर की ये बिल्डिंग, उसके बाद ये बेसमेंट। टोटली अगर कहा जाए तो सिर्फ और सिर्फ सुरक्षा मानकों को दरकिनार करके ये बनाया गया और ये बिल्डिंग बनी हुई है। ये नीचे आते हैं, नीचे आकर के रास्ता, ये बेसमेंट का है ये रास्ता, और इस बेसमेंट के रास्ते से आप देखिए, समझिए कि ये कैसे समझाने की कोशिश करते हैं। ये नीचे जब जा रहे हैं तो ये छोटे बच्चों का जो शॉप है, कपड़ों की शॉप है, टॉय शॉप है, ये तमाम चीजें यहाँ गोडाउन में रखी गई हैं, इकट्ठा की गई हैं। तो ये टोटल ये एक छोटा सा बॉक्स नुमा ये कॉम्प्लेक्स है। इस कॉम्प्लेक्स में सिर्फ और एंट्री और एग्जिट का एक गेट। तो ऐसे में जब हादसा हुआ तो 15 लोगों की दम घुटने से जान चली गई।
0: इस हादसे की शुरुआती जांच में बिजली ओवरलोडिंग का खुलासा हुआ है। जिस बिल्डिंग में खुलासा हुआ वहां 20 किलोवाट के कमर्शियल बिजली कनेक्शन की मंजूरी थी, लेकिन पता चला है कि वास्तविक बिजली लोड बढ़कर 34.10 किलोवाट तक पहुंच गया था। तो क्या बिजली ओवरलोडिंग की वजह से शॉर्ट हुआ जो इतने भयावह हादसे की वजह बन गया?
1: एसआईटी से पहले फॉरेंसिक की टीम अंदर है। फॉरेंसिक के डायरेक्टर एफएसएल अपने 6 सदस्यीय टीम के साथ एक एक चीज का बारीकी से मुआयना कर रहे हैं। फॉरेंसिक की टीम सबसे महत्वपूर्ण इसलिए हो जाती है क्योंकि यही वो टीम है जो बताएगी कि आखिर ये आग कहां से लगी, कहां से फायर का ओरिजिन हुआ, कहां से वो शॉर्ट सर्किट था तो एसी का पैनल शॉर्ट सर्किट हुआ या फिर इलेक्ट्रिकल जो कंट्रोल पैनल बनाया गया वो शॉर्ट सर्किट हुआ। यही वजह है कि एक एक पैनल के की जांच की जा रही है। जो फॉरेंसिक के एक्सपर्ट्स हैं, जो टीमें हैं, वो एक एक चीज की वीडियोग्राफी कर रही है, फोटोग्राफी कर रही है, ताकि ये समझा जा सके कि आखिर ये घटना हुई तो कैसे हुई और आग के साथ धुआं किस वजह से फैल गया। क्योंकि धुआं फैलने के भी अपने कारण होते हैं कि वहां पे प्लास्टिक ज्यादा था जिसकी वजह से आग के पहले धुआं इतना घनघोर हो गया और इसके बाद धुएं के अलावा जो फायर एग्जिट का जो नॉर्म्स होते हैं किसी भी बिल्डिंग से बाहर निकलने के, वो कितना पालन किया गया, तो वो तो सामने ही दिख रहे हैं।
0: लखनऊ में हुए हादसे की जांच के लिए एसआईटी का गठन कर दिया गया। 4 लोगों की गिरफ्तारी हुई है, निगम के अधिकारियों पर कार्रवाई भी हुई है। अब जांच के बाद आग की असल वजह सामने आएगी, साथ ही उन लोगों पर एक्शन की उम्मीद है जिनकी लापरवाही 15 लोगों की मौत की वजह बन गई। आशीष श्रीवास्तव और समर्थ श्रीवास्तव के साथ संतोष शर्मा, लखनऊ आज तक।
2: जब तक हादसा होता नहीं है तब तक लगता है कि मामूली उल्लंघन है नियमों का, लेकिन जब हादसा हो जाता है तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। इस मामले में भी ऐसा ही हुआ।
3: इस आग में खाक हो गई 15 जिंदगियां, 12 पुरुष और 3 महिलाएं जिनमें शामिल थे कई छात्र और छात्राएं। आखिर ये इमारत देखते ही देखते कैसे लाक्षागृह में तब्दील हो गई? ऐसा कैसे हुआ कि लोगों को भागने का मौका तक नहीं मिला? इस सवाल का जवाब है लापरवाही, लापरवाही और पूरी लापरवाही।
4: हम इस वक्त उसी मौकाए वारदात पर हैं, उसी जगह पर हैं जहां पर अलीगंज का ये अग्निकांड हुआ है। मेरे ठीक पीछे अगर आप इस बिल्डिंग को देखें तो ये बिल्डिंग अपने आप में ये बता रही है, चीख चीख करके कह रही है कि ये बिल्डिंग कैसी थी और इसमें बचने या निकलने का कोई रास्ता मौजूद नहीं था। तकरीबन 60-70 फुट गहरी ये बिल्डिंग, और आप इसकी चौड़ाई देखें तो तकरीबन 40 फुट की इसकी चौड़ाई रही होगी, लेकिन अब ये बिल्डिंग पूरी तरीके से जलकर खाक हो चुकी है। बाहर आपको जो सामान बिखरे पड़े दिख रहे हैं, इस बात की गवाही है कि किस तरीके का भीषण अग्निकांड ये हुआ है।
3: सबसे पहली लापरवाही, बिल्डिंग में निकास का कोई वैकल्पिक रास्ता नहीं था। एकमात्र रास्ता था और उसी रास्ते में एसी का जाल है और दुर्भाग्य से आग भी वहीं पर लगी। एनिमेशन ट्रेनिंग सेंटर चल रहा था जहां गेमिंग इंडस्ट्री से जुड़े सॉफ्टवेयर डेवलप करने की ट्रेनिंग दी जाती थी। जो लोग मारे गए उनमें ज्यादातर एनिमेशन ट्रेनिंग सेंटर में उस वक्त मौजूद थे।
1: लखनऊ के अलीगंज इलाके में जिस कॉम्प्लेक्स में आग लगी और 5 लोगों की जान चली गई, वो कॉम्प्लेक्स सारे नियम कायदे की धज्जियां उड़ाकर बनाया गया था। आपको तस्वीरें से समझाते हैं, ये पूरा कॉम्प्लेक्स है। सबसे बड़ी बात कि ये कॉम्प्लेक्स का जो नक्शा था वो रेजिडेंशियल नक्शे के तौर पर इसको पास कराया गया था LDA में, और उसके बाद इसको कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्स में तब्दील कर दिया गया। कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्स के अलग नॉर्म्स होते हैं, रेजिडेंशियल के अलग नॉर्म्स होते हैं, और ये इसके बाद आप देखिए कि किस तरीके से ये आपको थोड़ा सा इसके गेट की चौड़ाई कितना बड़ा है ये कि आप इधर से देखिए, ये सिर्फ एंट्री और एग्जिट भी समझाते हैं कि ये सिर्फ ये जो गेट आप देख रहे हैं यही एक एंट्री और एग्जिट पॉइंट था। और एंट्री और एग्जिट पॉइंट में कितने आपको ये एसी के पैनल्स दिख रहे हैं, एसी के पैनल हैं, ये एसी के पैनल लगे, यही एक एंट्री एग्जिट पॉइंट था और पीछे कोई एंट्री एग्जिट पॉइंट ही नहीं था।
5: पूरा रेजिडेंशियल एरिया है जितना भी है ये यहाँ पे कोई भी ना ऐसा कोचिंग संस्था है ना कुछ भी, पूरी रेजिडेंशियल एरिया।
6: इसको सरकार की नाकामी है कि जो कि
1: कैसे ये यहाँ पे रेजिडेंशियल में ये बन गया,
6: ये कोचिंग चलाने का जो परमिशन दिया है उसको और कोचिंग चलाने वाले संचालक को फांसी होना चाहिए।
5: गेमिंग जोन भी था ऊपर और नीचे पेट शॉप है, आप जैसे दिख रहे हैं ना कि आप खुद भी देख सकते हैं, कैमरा आप दिखाओ ना वहाँ से, आप इधर देखो पहले आप ये देखो ना, आप खुद सोचो यहाँ से कितने बच्चे भाग पाएंगे, कितने बच्चे भाग पाएंगे यहाँ पे, और जो जिस तरह एसी के आउटलेट्स यहाँ पे लगे हुए हैं, आप और मैं कितने भी फिट रहे हैं हम भाग नहीं सकते हैं।
3: रेसिडेंशियल इलाके में कोचिंग सेंटर आम है, आमतौर पर ऐसे कोचिंग सेंटरों में आग से बचाव के नियमों का पालन नहीं होता, लेकिन यहाँ ये लापरवाही जानलेवा हो गई।
7: ये रेजिडेंशियल में जो कमर्शियल एक्टिविटी हो रही है उसमें सबसे बड़ा व्यवसाय जिसमें कहीं मानक तय नहीं है सरकार के, वो कोचिंग व्यवसाय है। कोचिंग का न तो कहीं रजिस्ट्रेशन होता है सरकार के किसी विभाग में, कोचिंग यहाँ पर आप मान के चलो कि कक्षा 8 से लेकर आईएएस आईपीएस की भी कोचिंग इस एरिया में है। अलीगंज और जानकीपुरम कोचिंग का हब बना हुआ है। और
2: इधर पटना में खान ग्लोबल स्टडीज में फायर सेफ्टी का मामला गर्मा गया है। खान ग्लोबल स्टडीज ने फायर सेफ्टी डिपार्टमेंट के गाइडलाइन को अभी तक पूरा नहीं किया है। हमारे संवाददाता शशि भूषण की ये रिपोर्ट।
8: सेंटर है वहां पर चेकिंग हो रही है। सर आप लोग आज आए हैं फायर सेफ्टी को लेकर के, क्या मतलब आप लोग देख कर रहे हैं?
9: हम लोग यहाँ पे जो न्यूनतम फायर सेफ्टी की व्यवस्था होनी चाहिए उसको अभी हम लोग देख रहे हैं कि नहीं हो पाया है, तो एक हफ्ते का हम लोग इनको समय देंगे कि कर ले अनुपालन ताकि किसी भी तरह की दुखद घटना को यहाँ पे रोका जा सके।
8: अंदर आपने अभी क्या देखा सर, थोड़ा सा अगर आप बता पाए, चूंकि फायर सेफ्टी को लेकर के जो
9: हम लोग यहाँ की कैपेसिटी जोड़े हैं कि इस हॉल में कितने बच्चे पढ़ सकते हैं उसके हिसाब से जो मिनिमम फायर की व्यवस्था होनी चाहिए, जैसे फायर अलार्म सिस्टम होना चाहिए, स्मोक डिटेक्शन होना चाहिए, वो व्यवस्था हम लोग नहीं पाए, तो एक हफ्ता 10 दिन का हम लोग समय दे रहे हैं इनको अनुपालन करने के लिए।
8: कमियां पाई गई?
9: निश्चित रूप से कमियां पाई गई हैं।
8: ये देखिए यहाँ फायर सेफ्टी की पूरी टीम पहुंची है और अलग अलग जगह पे चेकिंग हो रही है। यहाँ पे ये खान ग्लोबल स्टडीज का ये स्टडी सेंटर है और यहाँ देखिए जो ऊपर में स्प्रिंकलर लगे होने चाहिए थे, जो स्मोक डिटेक्टर होना चाहिए वो नहीं है, और सिर्फ जो यहाँ पर फायर की स्थिति में जो सिलेंडर इस्तेमाल किए जाते हैं वो सिलेंडर यहाँ पे लगे हैं। तो यहाँ पर चेकिंग की है अग्निशमन विभाग की टीम ने। ये बोरिंग रोड सेंटर है केजीएस का और ये यहाँ पर सिर्फ जो गैस सिलेंडर्स हैं फायर की स्थिति में कंट्रोल के लिए वो लगाए गए हैं, लेकिन बाकी कहीं कोई सुविधा दिखती नहीं है और ये दरवाजे जो हैं उसमें भी कमी यहाँ पाई है। हम और आगे की तरफ चलते हैं और थोड़ा दिखाते हैं जो दूसरे जगह पर चेकिंग इस वक्त यहाँ पे हो रही है वो। ये देखिए खान ग्लोबल स्टडीज का ये ऑफिस है और यहाँ पर भी देखिए मेजरमेंट यहाँ पर किया जा रहा है कि सीढ़ियों की चौड़ाई क्या है, कितनी चौड़ाई है, चूंकि लखनऊ में जो कल घटना हुई है उसके बाद भी प्रशासन यहाँ सचेत है। मुसल्लापुर स्थित केजीएस के सेंटर में पहले से ही गाइडलाइंस को लेकर के नोटिस दिया जा चुका है। अब बोरिंग रोड सेंटर जो केजीएस का है वहाँ पर इस वक्त चूंकि जो स्टूडेंट्स जाते हैं उनके लिए ये सीढ़ियाँ हैं, सीढ़ियों की चौड़ाई और स्ट्रेंथ जो स्टूडेंट्स का है वो कितना है, इन तमाम चीज़ों को यहाँ पर मेज़र करने का तरीका है।
2: वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।
10: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच, ड्यूरेबल पाइप्स, फिटिंग्स एंड टैंक्स, अ कंप्लीट रेंज ऑफ सैनिटरी सॉल्यूशंस।
11: Hey, it's Billy Bush. Tune into my show, Hot Mics, Monday to Thursday at noon Eastern, 9 a.m. Pacific for the latest in politics, entertainment, tech, sports, pop culture, and much more. Just tell your device to play Hot Mics on TuneIn to listen.
10: Chogan Buffet.

उद्धव ठाकरे के 6 बागी सांसदों ने कई दिन की आंख मिचौली के बाद आखिरकार मुंबई में एकनाथ शिंदे की मौजूदगी में शिवसेना का दामन थाम लिया। अपना सियासी कुनबा बढ़ाने के लिए एकनाथ शिंदे बोले, मैं कोई काम अधूरा नहीं छोड़ता। पहले शिवसेना के 7 लोकसभा सांसद थे, लेकिन उद्धव ठाकरे की पार्टी शिवसेना यूबीटी के 6 सांसद शिंदे कैंप में आने के बाद अब लोकसभा में कुल शिंदे के 13 सांसद हो गए हैं, जिससे एनडीए में शिंदे का सियासी कद भी काफी बढ़ गया है। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम और शिवसेना प्रमुख एकनाथ शिंदे ने ऑपरेशन टाइगर की कामयाबी पर फिल्मी अंदाज में कहा, एक बार जो मैंने कमिटमेंट कर दी उसके बाद मैं अपने आप की भी नहीं सुनता। शिंदे बोले, सीएम फडणवीस के साथ उनकी जोड़ी हिट है, क्योंकि दोनों का मकसद महाराष्ट्र का चौतरफा विकास करना है। ऑपरेशन टाइगर की सफलता पर महायुती सरकार जश्न मना रही है। विधानसभा सत्र की शुरुआत से पहले सीएम फडणवीस और डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे का जोश हाई दिखा। इससे पहले मुख्यमंत्री फडणवीस ने भी कहा कि ऑपरेशन टाइगर पूरा हुआ। वहीं आदित्य ठाकरे ने कहा, धोखेबाज सांसद उद्धव के चेहरे पर चुनकर आए थे, इसलिए हिम्मत है तो इस्तीफा देकर चुनाव लड़े। शिवसेना दावा कर रही है कि उद्धव के एक और सांसद शिंदे कैंप में आने को बेकरार थे, लेकिन वो कैबिनेट मंत्री बनाने के लिए दबाव बना रहे थे, जिसके बाद शिंदे ने उन्हें मना कर दिया।

0: क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच। Chogan Perfumes, the French edition for him and her.

0: क्या उद्धव की पार्टी में एक और टूट होगी? क्या सांसदों के बाद विधायक भी टूटेंगे? उद्धव की बैठक में क्यों नहीं आए तीन विधायक? कहते हैं दूध का जला छाछ भी फूक फूक कर पीता है। उद्धव ठाकरे के साथ कुछ ऐसा ही हो रहा है। सांसदों की बगावत झेल चुके उद्धव ठाकरे की कोशिश है अपने विधायकों पर पकड़ बनाए रखने की। कल मुंबई में उद्धव ने विधायकों की बैठक बुलाई, लेकिन इस बैठक से नए सवाल निकले। बैठक में तीन विधायक और एक एमएलसी नहीं पहुंचे। यवतमाल से विधायक संजय देरकर, परभरी से विधायक राहुल पाटिल, कलीना मुंबई से विधायक संजय पुतनिस और एमएलसी सुनील शिंदे इस बैठक से नदारद रहे। हालांकि पार्टी सूत्रों के मुताबिक इन सभी नेताओं ने अपनी गैर हाजिरी को लेकर पहले से जानकारी दे दी थी, लेकिन संशय तब बढ़ गया जब संजय राउत विधायकों को लेकर पूछे गए सवाल का जवाब दिए बिना ही निकल गए। थोड़ी देर बाद शिवसेना विधायक मुरजी पटेल की ओर से बड़ा दावा किया गया। मुरजी पटेल ने कहा कि एकनाथ शिंदे उद्धव की पार्टी के खिलाफ ऑपरेशन टाइगर 3 की तैयारी में है।
1: इसके बाद ऑपरेशन 3 की तैयारी माननीय एकनाथ साहब शिंदे साहब के नेतृत्व में होने जा रही है। अभी जब उनके साथ पास थे तभी अच्छे थे, अभी गए तो बुराई कर रहे, कहीं ना कहीं गलत है, उनको संभालने नहीं आया, इसके लिए हमारे पास आए हैं और पूरा ध्यान पार्टी उनका रखे।
0: कल ही मुंबई में उद्धव के 6 सांसदों ने शिंदे की शिवसेना में शामिल होने की घोषणा की। इसके बाद शिंदे का हौसला 7वें आसमान पर है।
2: 4 वर्ष पूर्वी 22 जून 2022 में लौटता शिवसेने आम्ही उठाव केला होता, तेव्हा 40 आमदार सोबत सुरुवातीला होते आणि पुन्हा चौकार नाही षटकार आता मारलेला आहे, म्हणजे काय म्हणतो त्याला सिक्सर।
0: शिवसेना युबीटी के पास फिलहाल विधानसभा में 20 विधायक और 6 एमएलसी हैं, लेकिन इन पर शिंदे की गहरी नजर है। आज तक ब्यूरो। एक एनकाउंटर जिस पर अपनों के बीच ही घिर गई है सम्राट सरकार। एक एनकाउंटर जिस पर बीजेपी के भीतर ही मोर्चाबंदी हो रही है। 5 दिन पहले यानी 17 जून को भरत तिवारी पर बिहार पुलिस गोलियां बरसाती है और अब 5 दिन बाद खुद बिहार पुलिस और बिहार सरकार पर सवालों की बौछार हो रही है। एक बड़ा और संगीन सवाल भरत तिवारी के इस वीडियो की बुनियाद पर भी हो रहा है जो अभी अभी सामने आया है। तो क्या भरत तिवारी को अंदेशा था कि उसकी मौत करीब आ रही है? क्या उसे एहसास हो गया था कि वो इस तरह एनकाउंटर में मारा जाएगा? भरत तिवारी की शख्सियत और अतीत विवादों से भरा है, इसलिए इस वीडियो को लेकर भी दावा जोखिम भरा हो सकता है। बीजेपी के भीतर इस एनकाउंटर को लेकर किस कदर बेचैनी है, ये आप सम्राट सरकार के 2 मंत्रियों के बयानों से समझ सकते हैं। इस एनकाउंटर पर सवाल उठाने वाले, आक्रोश जाहिर करने वाले सिर्फ ये 2 मंत्री ही नहीं है, बीजेपी नेताओं की लंबी फहरिस्त है जो खुलकर नाराजगी जता रहे हैं। रोहित सिंह, पटना, आज तक।

पैनल रिहायशी इलाके में चल रही थी कमर्शियल बिल्डिंग। राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में एसआईटी ने उत्तर प्रदेश सरकार को सौंपी प्रारंभिक रिपोर्ट। फिलहाल किसी को क्लीन चिट नहीं, कुछ कर्मचारियों पर केस दर्ज करने की सिफारिश। नीट परीक्षाओं पर आज तक से बोले धर्मेंद्र प्रधान, लीक के मुजरिमों को छोड़ेंगे नहीं, दोबारा गड़बड़ी रोकने की पूरी कोशिश। राहुल गांधी पर लगाया छात्रों को भड़काने का आरोप।

0: ट्रंप का दांव या इसराइल से दगाबाजी। ईरान से यारी, पक्के दोस्त से बेरुखी। ट्रंप की डील, ईरान की मौज ही मौज। तेल बेचने की छूट, डॉलर्स की भारी बरसात। हुर्मुज पर ईरान का बढ़ता दबदबा। इसराइल के बांधे हाथ, हिजबुल्ला को मौका। लेबनन में क्यों खामोश हैं इजरायली सैनिक। ट्रंप के चक्रव्यूह में फंसे, घर में घिरे नेतन्याहू। क्या फिर मंडराया 7 अक्टूबर जैसा भयानक खतरा। सुपर पावर की सौदेबाजी में इजरायल की बलि।
1: नमस्कार, मैं हूं गौरव सावंत, आप देख रहे हैं रणभूमि। क्या अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका के सबसे भरोसेमंद दोस्त इजरायल की पीठ में छुरा घोंप दिया है? क्या व्हाइट हाउस में बैठकर एक ऐसी सौदेबाजी की जा रही है जिसमें अमेरिका के दुश्मन को तो रियायत पर रियायत मिल रही है, लेकिन अमेरिका के सबसे पक्के दोस्त के हाथ बांधे जा रहे हैं? यह सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि पश्चिम एशिया में, मध्य पूर्व से जो खबरें आ रही हैं समय, वो हैरान कर देने वाली हैं। और आज मैं आपके सामने 4 तस्वीरें रखने जा रहा हूं, निर्णय आप कीजिएगा। ये जो 4 तस्वीरें आप इस समय देख रहे हैं, सुपर पार डिप्लोमेसी का जो सच है ना, ये आपके सामने खोल कर रख देंगे। जो पहली तस्वीर है वो लेबनान के मैदान की है, जहां इसराइल की सेना के पराक्रम पर युद्ध विराम की बेड़ियां इस समय डाल दी गई हैं। आरोप ये कि हिजबुल्ला के आतंकी सामने दिख भी रहे हैं, लेकिन इसराइल के सैनिकों के हाथ बांध दिए गए हैं, वो कुछ कर नहीं सकते। दूसरी तरफ इसराइल के जो प्रधानमंत्री है बेंजामिन नेतन्याहू, दुनिया के सामने दावा कर रहे हैं कि इसराइल लेबनान में डटा हुआ है, सुरक्षा के मुद्दे पर कोई समझौता नहीं होगा, लेकिन नेतन्याहू पर उन्हीं के देश में, उन्हीं की सत्ता के लोग, विपक्ष, यहां तक कि सड़कों के लोग भी, सड़कों पर भी लोग झूठ बोलने का अब संगीन आरोप लगा रहे हैं। तीसरी ओर ईरान, कल तक 47 सालों के प्रतिबंधों से जूझ रहा था, आज ईरान के लिए एक नए दिवाली की तरह मौज ही मौज है। अगस्त तक तेल बेचने की खुली छूट है, जब्त संपत्ति की पहली किश्त रिलीज होने वाली है, 60 दिन बाद स्ट्रेट ऑफ होर्मूज पर ईरान का कंट्रोल होगा, और न्यूक्लियर मॉनिटरिंग पर अमेरिका पूरी तरह से समय चुप है। अमेरिका और ईरान के बीच इस पर समझौता फिलहाल नहीं है। जो चौथी तस्वीर आपके सामने है, यह अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की है। कहने को तो बहुत बड़े डील मेकर है, लेकिन क्या इस बार उनका जो दाव है वो बिजनेस का वो खतरनाक असूल है जिसमें दुश्मन से फायदे के लिए दोस्ती की जा रही है, फायदे के लिए, लेकिन दोस्त के फायदे नहीं देखे जा रहे हैं, उसके साथ दगाबाजी हो रही है? क्या डोनाल्ड ट्रंप में जाने अनजाने में इसराइल पर एक और 7 अक्टूबर जैसे भयानक हमले का रास्ता खोल दिया है? यह बेहद गंभीर आरोप इस समय अमेरिका के राष्ट्रपति पर लग रहा है। लेकिन इस वक्त की जो सबसे बड़ी खबर है, अंतर्राष्ट्रीय ब्रेकिंग न्यूज इस समय जो है, इसराइल के पूर्व प्रधानमंत्री और इसराइल में विपक्ष के नेता नेफ्ताली बेनेट ने बेंजामिन नेतन्याहू के दावों की धज्जियां उड़ाकर रख दी हैं। नेफ्ताली बेनेट ने सीधे लेबनान के मोर्चे से वो सच उजागर किया है जिसने पूरी दुनिया को हिला दिया है। इसराइल के पूर्व प्रधानमंत्री नेफ्ताली बेनेट ने दावा किया है कि लेबनान में इसराइल की जो सेना है उसके हाथ पूरी तरह से बांध दिए गए हैं और उनके सिर पर इस समय मौत का खतरा मंडरा रहा है। नेफ्ताली बेनेट का जो खुलासा है वो ये है कि देर रात 2 बजे तक उनकी लेबनान में मौजूद सैनिकों और कमांडरों से बात हो रही थी। जमीनी हकीकत यह है कि इसराइल के सैनिकों के सामने हिजबुल्ला के आतंकी बंकर बनाते नजर आ रहे हैं, हथियार लाते नजर आ रहे हैं, दूरबीन से सैनिकों की रेकी कर रहे हैं हिजबुल्ला के जो लड़ाके हैं, लेकिन इसराइल के सैनिकों पर पाबंदी है, उन्हें गोली चलाने की इजाजत नहीं है, वो केवल तस्वीरें खींचकर अपने हायर कमांड को भेज रहे हैं। अब हम आपको विस्तार से दिखाते हैं कि किस तरह से इसराइल के पूर्व प्रधानमंत्री नफ्ताली बेनेट ने वो विस्फोटक खुलासा किया है। नफ्ताली बेनेट ने बकायदा एक पोस्ट किया है, बेनेट का वो महाविस्फोट, इसराइल की सेना के साथ दगाबाजी हो रही है। क्या कहा? सामने ठिकाना बना रहे हैं आतंकी, लेकिन फायरिंग पर इस समय रोक लगी हुई है। ये रात 2 बजे उनकी सैनिकों से जो बातचीत हुई, उनके कमांडरों से बातचीत हुई, उसके बाद उन्होंने खुलासा किया। फिर उन्होंने कहा कि सैनिकों के पास इसकी जानकारी है कि हिजबुल्ला के जो लड़ाके हैं वो हथियार जुटा रहे हैं, वो बंकर बना रहे हैं, अपनी मोर्चाबंदी कर रहे हैं हर मोर्चे पर, लेकिन रेकी करते हुए वो हिजबुल्ला के लड़ाकों को देख तो रहे हैं लेकिन फायर नहीं कर सकते। वो देखते हैं कि हिजबुल्ला के जो लड़ाके हैं वो दूरबीन से उनकी पोजीशन को देख रहे हैं, उसको नाप रहे हैं, लेकिन फिर भी इसराइल के सैनिक उन पर गोली चलाने की पाबंदी है। पहले जो फैसले, जो टैक्टिकल डिसीजंस जिन्हें कहा जाता है, एक कंपनी कमांडर यानी एक कप्तान या मेजर रैंक का अधिकारी, एक कंपनी कमांडर फील्ड में जो निर्णय लेता था, अब ओपन फायर करना है या नहीं, नफ्ताली बेनेट के मुताबिक उसके लिए अब उसे जेरूसलम में अपने कमांडरों से मंजूरी लेनी होती है। इतनी लाल फीताशाही हो गई है कि अगर कंधे पर मिसाइल लेकर सामने हिजबुल्ला का लड़ाका दिख भी जाता है तो जब तक वो तस्वीरें कमांड पोस्ट नहीं भेज जाती, वहां से ऑर्डर नहीं आता, तब तक गोली नहीं चला सकते, और इसमें वो हिजबुल्ला के लड़ाके वहां से भाग जाते हैं। दुश्मन, ये उनकी भाषा है, नफ्ताली बेनेट इसराइल के पूर्व प्रधानमंत्री की भाषा है, कि दुश्मन हमारी मजबूरी को समझ रहा है और ये मजबूरी हमारे सैनिकों के लिए जानलेवा हो सकती है। वायुसेना के विमानों ने उड़ान भरना पूरी तरह से बंद कर दिया है, यानी अब इजरायली एयरफोर्स ना हेलीकॉप्टर ना लड़ाकू विमान वो क्लोज एयर सपोर्ट और कवर फायर दे ही नहीं पा रहे हैं। भारी गोलाबारी कर हम अपने घायल सैनिकों को पहले निकाल तो लिया करते थे, लेकिन अब ऐसा भी नहीं कर सकते। अब अगर किसी इजरायली सैनिकों को वो घायल अवस्था में वहां मिले तो उसे दम तोड़ने के लिए वहीं छोड़ दिया जाएगा। कल रात 11 बजे जब बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा कि इसराइल की सेना को कार्रवाई की छूट है ग्राउंड जीरो पर, तो नफ्ताली बेनेट का कहना यह है कि उन्होंने झूठ बोला। सच यह है कि लेबनान में इसराइल के सैनिकों के हाथ बांध दिए गए हैं, और इससे बुरा कुछ नहीं हो सकता कि नफ्ताली बेनेट के मुताबिक इसराइल की सेना ने हिजबुल्ला के सामने अपने सैनिकों को हाथ बांध कर एक तरह से मौत से लड़ने के लिए भेज दिया गया है। यह बेहद संगीन आरोप है, सैनिकों को मरने के लिए वहां छोड़ दिया है, इस तरह की बातें वो कर रहे हैं। नफ्ताली बेनेट का यह जो हमला है, यह कल रात बेंजामिन नेतन्याहू के एक ऐसे ऐलान के बाद हुआ जिसने न केवल कल इसराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने बल्कि उनके रक्षा मंत्री ने भी लेबनान को लेकर एक बड़ा ऐलान किया था। यह लेबनान के मोर्चे से सबसे बड़ी और सबसे विस्फोटक खबर है। ईरान के साथ शांति के लिए डोनाल्ड ट्रंप की जो महासौदेबाजी है उसके खिलाफ इसराइल में एक तरह से बगावत का बिगुल फूंक दिया गया है। कल रात इसराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू, रक्षा मंत्री इसराइल काट्स और चीफ ऑफ जनरल स्टाफ ने एक इमरजेंसी मीटिंग की, और इस मीटिंग के बाद जो संयुक्त बयान जारी किया गया उसने व्हाइट हाउस में बैठे डोनाल्ड ट्रंप के होश उड़ा दिए। इसराइल ने दो टूक अब कह दिया है कि अमेरिका और ईरान के बीच बंद कमरों में क्या खिचड़ी पक रही है, इससे इसराइल को कोई लेना देना नहीं है। IDF यानी इसराइली डिफेंस फोर्सेज यानी इसराइल की सेना दक्षिणी लेबनान में अपना जो सुरक्षा क्षेत्र है, सिक्योरिटी जोन, उसे खाली नहीं किया जाएगा। बेंजामिन नेतन्याहू और उनके सेना प्रमुख ने साफ कर दिया है कि आतंकवादियों के खात्मे और इसराइल के नागरिकों की सुरक्षा के लिए इसराइल की सेना का ऑपरेशन पूरी ताकत से जारी रखा जाएगा। यानी एक तरफ जहां डोनाल्ड ट्रंप दावा कर रहे हैं कि उन्होंने पूरे के पूरे मध्य पूर्व में सीज फायर करा दिया है, वहीं इसराइल ने बागी तेवर ले लिए हैं और कहा है कि अगर इसराइल पर बमबारी होती है, गोलाबारी होती है, गोलियां भी बरसती हैं, तो इसराइल जबरदस्त पलटवार करेगा, उसी समय पलटवार करेगा। आप सुनिए इसराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने बीती रात क्या ऐलान किया इस बैठक के बाद।
2: הנחיה שלי ושל שר הביטחון לצה"ל היא ברורה והיא לא השתנתה. ללוחמים שלנו בדרום לבנון יש חופש פעולה מלא לסכל כל איום ישיר ומתהווה עליהם או על תושבי הצפון. אין לצה"ל שום הגבלה בעניין זה. אני עומד מאחריהם, העם כולו עומד מאחריהם, ואני עומד איתן על כך שנשאר ברצועת הביטחון בדרום לבנון ככל שידרש כדי להגן על תושבי הצפון ועל כל אזרחי המדינה.
1: नेतन्याहू ने बयान सार्वजनिक तौर पर दिया, लेकिन इस पर अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का जो बयान आया वो एक तरह से, और कई विशेषज्ञ उसे बेपरवाह और आक्रामक डील मेकर जैसा बता रहे हैं। लेबनान के मोर्चे पर इजराइल के बागी तेवर पर अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का अब तक का सबसे बड़ा बयान सामने आया है। जब डोनाल्ड ट्रंप से सीधा सवाल किया गया कि इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू अब सरेआम कह रहे हैं कि उनकी सेना लेबनान नहीं छोड़ेगी, तो डोनाल्ड ट्रंप ने सवाल पूछने वाले पत्रकार पर ही पलटवार कर दिया। ट्रंप ने पत्रकार से पूछा, क्या यह बात नेतन्याहू ने तुम्हें कही है? और जब पत्रकार ने कहा कि नेतन्याहू ने यह बात सार्वजनिक तौर पर कही, इजराइल के लोगों से कही, तो ट्रंप ने अपने जाने पहचाने सौदेबाजे वाले अंदाज में कहा, अच्छा हम भी इसे देख लेंगे। लेकिन देखिए अपने सबसे भरोसेमंद सहयोगी इजराइल को लेकर ट्रंप अपना रुख कैसे बदल रहे हैं। कभी गाली गलौच पर उतर आते हैं, कभी जिस तरह की बातें करते हैं कि ये कहते हैं कि मेरे बिना ना इजराइल का अस्तित्व है ना बेंजामिन नेतन्याहू का। सुनिए।
3: Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu said his forces are not leaving Lebanon. That is a sticking point.
4: Who did he tell that to you?
3: He said it publicly in Israel.
4: Well, we're going to take a look at it.
3: Well, what would you do to make sure that he doesn't?
4: Well, I'm not going to tell you what I'm going to do, but it gets solved. I'm a problem solver. I get problems solved real fast, including with Bibi. Go ahead.
1: तो उन्होंने कहा, मैं तो problem solver हूँ, मैं समस्याओं को सुलझा देता हूं। डोनाल्ड ट्रंप की सौदेबाजी और अमेरिका की दगाबाजी, इसराइल में से दगाबाजी कहा जा रहा है, उसके खिलाफ इसराइल का अब तक का सबसे बड़ा कड़ा और ऐतिहासिक कदम सामने आ रहा है। इसराइल के सैनिकों ने एक अज्ञात ठिकाने पर बात करते हुए प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू का एक वीडियो अभी सामने आया है। इसमें सीधे तौर पर उन्होंने कहा कि इसराइल को अमेरिका पर अपनी निर्भरता आने वाले समय में खत्म कर देनी होगी। सैनिकों का हौसला बढ़ाते हुए बेंजामिन नेतन्याहू ने हिब्रू भाषा में दो टूक कहा, मैं अपने अमेरिकी दोस्तों से पिछले कई सालों से मिले समर्थन की सराहना करता हूं, लेकिन अब हमें खुद को इस निर्भरता से आजाद करना होगा। इसराइल को अब खुद को स्वतंत्र हथियार उद्योग अपना खड़ा करना होगा। और नेतन्याहू का यह बयान साफ कर रहा है कि इसराइल डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन की असलियत को समझ गया है, क्योंकि कुछ यही अंदाज जो बाइडेन का अपने आखिरी समय में था, और अब जाकर यही अंदाज डोनाल्ड ट्रंप का होता जा रहा है। इसराइल ये समझ भी गया है कि अपनी डील्स के लिए अमेरिका कभी भी किसी की पीठ में छुरा घोंप सकता है, इसीलिए इसराइल अब अमेरिका के रहमो करम पर जीने के बजाय अपने दम पर हिजबुल्ला और ईरान के खिलाफ मोर्चा खोल देना चाहता है। इसकी वो कसम खा चुका है। ये ट्रंप की अमेरिका फर्स्ट नीति को नेतन्याहू का इजराइल फर्स्ट का करारा जवाब इस रूप में देखा जा रहा है। तो बेंजामिन नेतन्याहू, नफ्ताली बेनेट और डोनाल्ड ट्रंप सभी के बयान इशारा साफ कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं अमेरिका ने ऐसी गुप्त सौदेबाजी की है जिसके तहत फायदा तो ईरान को मिल रहा है। लेबनान में इजरायली सैनिक हिजबुल्ला के आतंकवादियों को देखकर भी गोली नहीं चला पा रहे हैं। दूसरी तरफ वो हिजबुल्ला उसके जो आका है यानी ईरान, अमेरिका की मेहरबानियों की उस पर बरसात हो रही है। डोनाल्ड ट्रंप की इस तथाकथित शांति डील के पीछे जो आर्थिक खेल है उसकी इनसाइड स्टोरी भी अब खुलकर सामने आ गई है। अमेरिका का दावा भले ही परमाणु कार्यक्रम रोकने का हो, लेकिन जमीन पर ईरान की चांदी हो रही है। डोनाल्ड ट्रंप के इस चक्रव्यूह को इसराइल को एक कोने में धकेल दिया गया है चक्रव्यूह की वजह से, और ईरान के लिए तिजोरी के दरवाजे एक तरह से पूरी तरह से खुल गए हैं। और अब हम आपको बड़े पर स्क्रीन पर ये दिखाते हैं कि कैसे इस डील से ईरान में डॉलरों की बरसात हो रही है। सबसे पहले यूएस ट्रेजरी ने 7 दिनों का एक जनरल लाइसेंस वेवर जारी कर दिया है। ये बड़ी बात है। क्या है ये जनरल लाइसेंस वेवर? तेल बेचने पर लगे कड़े प्रतिबंधों से छूट मिल गई है। अगस्त 2026 तक यानी अगले लगभग 60 दिनों तक ईरान कच्चा तेल बेच सकता है, पेट्रोकेमिकल बेच सकता है, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स को धड़ल्ले से बाजार में उतार सकता है, कोई प्रतिबंध नहीं। एमओयू साइन होते ही यह तुरंत भाव से प्रभावी हो चुका है। इससे ग्लोबल ऑयल सप्लाई बढ़ेगी, कीमतों का दबाव बहुत कम होगा। इसके अलावा ईरान को तमाम देशों से उसकी जब्त जो उसकी संपत्ति है उसमें से शुरुआती तौर पर $12 बिलियन, जी हां $12 बिलियन उसे मिल जाएंगे जो कतर में इस समय बंद है, वो वापस मिल जाएंगे। $12 बिलियन बहुत बड़ी राशि है। बाकी के जो $12 बिलियन हैं वो 60 दिन बाद जब हस्ताक्षर होने वाले होंगे उस समय बाकी $12 बिलियन भी उसे मिल जाएंगे। इससे बड़ा फायदा ईरान को और मिला है। हॉर्मूज 60 दिनों के लिए तो सबके लिए खुला है। 60 दिनों तक हॉर्मूज जलडमरू मध्य पर कोई नियंत्रण किसी का नहीं है, लेकिन 60 दिन बाद ईरान का वर्चस्व उस पर स्थापित हो जाएगा और तब ईरान यह निर्णय करेगा कि कौन सा देश कब उसको पार करेगा, कितने पैसे देगा। वो ये कह रहे हैं कि हम मुनाफा नहीं चाहते, लेकिन हम जो आपको सर्विस देंगे उस सर्विस की कीमत आप हमको देंगे। ओमान के जरिए अमेरिका को भी कुछ हिस्सा मिल जाएगा, यानी अमेरिका की भी चांदी, ईरान की भी चांदी और नुकसान बाकी देशों का। रही बात परमाणु निगरानी की, तो डोनाल्ड ट्रंप और जेडी वैंस कह रहे हैं कि IAEA यानी इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, उसके इंस्पेक्टर जो हैं वो संवर्धित यूरेनियम को डाइल्यूट करने के लिए वापस आएंगे। डोनाल्ड ट्रंप इसे अपनी बड़ी कामयाबी बता रहे हैं, लेकिन IRGC ने साफ कर दिया है कि अभी तो इस पर बातचीत शुरू हुई है। कब आएंगे इंस्पेक्टर? संवर्धित यूरेनियम पर कोई बात फाइनल नहीं हुई है कि कब उसको कम उसकी शक्ति की जाएगी और कब उसे ईरान में ही रखा जाएगा, लेकिन वो हथियारों के लिए नहीं, एनर्जी के लिए, बिजली उत्पादन के लिए या मेडिकल काम के लिए उसका इस्तेमाल हो सकता है। अमेरिका और ईरान दोनों ही दावे कर रहे हैं कि लेबनान सहित सभी मोर्चों पर पूरी तरह से युद्ध विराम होगा। असलियत यह है कि ईरान के प्रॉक्सी हिजबुल्ला के लिए यह एक जीवन दान है, इसराइल के लिए एक बहुत बड़ा खतरा है, लेकिन इससे भी बड़ी बात जो बहुत सता रही है इसराइल को कि लेबनान में ईरान की वापसी एक बड़े तरीके से हो गई है, यानी अब ईरान यह तय करेगा कि लेबनान में शांति होगी, हिजबुल्ला का कि क्या भूमिका वहां पर रहेगी। अच्छा, एक और बात मैं यहां आपको बता दूं, डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन जिस ईरान को इतनी बड़ी आर्थिक रियायत दे रहा है, वही ईरान पलटकर अमेरिका के सामने अकड़ दिखा रहा है, अमेरिका का सम्मान नहीं कर रहा है। ईरान अब अमेरिका को सरेआम न केवल आंखें दिखा रहा है बल्कि दुनिया भर में कह रहा है कि अमेरिका तो हार चुका है और इसीलिए अमेरिका गिड़गिड़ा रहा था एक डील के लिए। सबसे बड़ी खबर यह है कि अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वैंस ने खुद इस बात का विस्फोटक खुलासा किया कि इतनी बड़ी डील और रियायतों के बावजूद ईरान की अकड़ कम नहीं हुई है और वो अमेरिका का सम्मान नहीं कर रहा है, वो सम्मान नहीं दे रहा है। जेडी वैंस से जब पूछा गया कि ईरान का जो प्रतिनिधि मंडल था उसने मुलाकात या उनके उनका अभिवादन तक क्यों नहीं किया, तो जेडी वैंस ने बेहद तल्ख लहजे में कहा, नहीं, उन्होंने ऐसा नहीं किया, मेरा यकीन मानिए, मैंने कुछ महीनों में ईरानियों के साथ बातचीत करने के लिए बहुत समय बिताया और कई बार बातचीत के दौरान एक नेगोशिएटर के तौर पर मुझे वो बहुत कंफ्यूजिंग लगते हैं। जेडी वैंस का यह बयान न केवल उनकी अपनी फजीहत का प्रमाण है बल्कि ट्रंप की महासौदेबाजी की भी हवा निकाल देता है। और मोहम्मद बगैर गलीबाफ जो स्पीकर हैं ईरान के, उन्होंने तो दो टूक ईरान के मीडिया को बोल दिया कि जैसे ही डोनाल्ड ट्रंप की धमकी आई और उनको डोनाल्ड ट्रंप की धमकी के बारे में पता चला, वो वहां से उठकर चले गए और फिर बातचीत के लिए लौटे ही नहीं। फिर पाकिस्तान और कतर ने जाके बातचीत के लिए मनाया और पाकिस्तान और कतर की बातचीत मध्यस्थता से ही यह समझौता हुआ, क्योंकि अमेरिका ये जंग हार चुका है. सुनिए जेडी वेंस ने क्या कहा.
5: Trust me, I've spent a lot of time dealing with the Iranians over the last few months. Sometimes I find them extremely confusing as negotiators. But look, we had a little press conference. They obviously don't quite have the same First Amendment protections in Iran that we have in the United States of America. We talked to you guys and then had a series of really good meetings. What I did find kind of funny is that after that initial meeting, there was this, you know, sort of social media firestorm where everybody said the Iranians are going to leave. And then we proceeded to talk to them for like the next 9 hours.
1: अब सवाल यह है कि ईरान को लेकर जो जेडी वेंस के मन में कंफ्यूजन है, जो संदेह है, जो संशय है, वो क्यों है. क्योंकि हम जेडी वेंस का एक और बयान आपको सुनाने वाले हैं. अमेरिका के रवैये की वो बानगी है. अमेरिका कल तक पूरी दुनिया में आतंकवाद के खिलाफ जंग का झंडा उठाए फिर रहा था. अब एक डील के लिए अपने ही शहीदों के खून को वो बुलाने को तैयार है. स्विट्जरलैंड में ईरान के साथ चल रही बातचीत के बीच अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने सरेआम बयान दिया कि अमेरिका पाकिस्तान से प्यार करता है. उन्होंने पाकिस्तानी सेना के प्रमुख आसिम मुनीर की प्रशंसा की. अमेरिका के लिए कहना कितना शर्मनाक है कि वो अमेरिका से प्यार करता है. वो पाकिस्तान जिसने अमेरिका के सबसे बड़े दुश्मन और 9/11 के मास्टरमाइंड ओसामा बिन लादेन को अपने एबटाबाद मिलिट्री गैरिसन के ठीक सामने वर्षों तक छुपा के रखा. वो पाकिस्तान जिसने अमेरिका के हजारों सैनिकों को अफगानिस्तान में मरवाया. वो पाकिस्तान जो दुनिया में आतंकवाद फैलाता है. अमेरिका के उपराष्ट्रपति को उस पाकिस्तान से प्यार है. उस पाकिस्तान के आर्मी चीफ की तुलना वो अपनी पत्नी से करते हैं कि मैं बस दो एशियंस को अच्छी तरह जानता हूं, एक भारतीय और एक पाकिस्तानी, एक उनकी पत्नी और एक आसिम मुनीर. सुनिए अमेरिका के उपराष्ट्रपति ने क्या कहा. सोचिए शहीदों के परिवार क्या सोच रहे होंगे जिनको पाकिस्तानियों ने मरवाया, कि अमेरिका एक सौदे के लिए उसी पाकिस्तान से प्यार भी कर सकता है. इस खबर पर रहेगी नजर. फिलहाल एक ब्रेक. देश और दुनिया की ताजा खबरों के लिए देखते रहिए आज तक.
6: Presented by पतंजलि गाय का घी. लगाए स्वाद और सेहत का तड़का हर माँ का भरोसा प्यार से परोस. Chogan Perfumes, the French edition for him and her. Presented by पतंजलि गाय का घी. लगाए स्वाद और सेहत का तड़का हर माँ का भरोसा प्यार से परोसा. Chogan Perfumes, the French edition for him and her.

रिपोर्ट। लखनऊ अग्निकांड में आंखें खोलने वाला खुलासा, एकमात्र एंट्री एग्जिट पर ही लगे थे इलेक्ट्रिक पैनल, रिहायशी इलाके में चल रही थी कमर्शियल बिल्डिंग।

केस दर्ज करने की सिफारिश। नीट परीक्षा पर आज तक से बोले धर्मेंद्र प्रधान, लीक के मुजरिमों को नहीं छोड़ेंगे, दोबारा गड़बड़ी रोकने की पूरी कोशिश। राहुल गांधी पर लगाया छात्रों को भड़काने का आरोप।

0: वैकल्पिक रास्तों को खोला गया।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोस चोगन परफ्यूम्स, द फ्रेंच एडिशन फॉर हिम।
2: बताया कि भैया आप फंस गए, दो दिन पहले मेरा ऑपरेशन किडनी स्टोन को हुआ, आप बेड से सीधा भागे, मेरा बीगो निकालो, मुझे जाना है।
3: पापा मुझे बचा लो, बेबस पिता की बदनसीब कहानी।
4: ये पापा बचाओ कैसे भी करके, आग लग गए।
3: लखनऊ का लाक्षा गृह राख, 15 परिवारों के सपने खाक। पिता के बाद बेटे भी चल बसे, कानपुर की रुलाने वाली दास्तान। घर घर कोहराम, लापरवाही से गई 15 जान।

0: अलग रणभूमि है, एक ऐसी रणभूमि जिसमें कौन जिम्मेदार है इस लापरवाही के लिए, यही सबसे बड़ा प्रश्न है। आपके साथ मैं हूं गौरव सावंत। हर दिल में समय न केवल गम है बल्कि गुस्सा है। लापरवाही ने उत्तर प्रदेश में 15 घरों के चिराग बुझा दिए। लखनऊ में ये जो इमारत थी ये लाक्षाग्रह बन गई और इन घरों के सपने जलकर खाक हो गए हैं। कोई अपने दिव्यांग पिता का सहारा था तो कोई अपनी मां का सहारा था। किसी के पिता कुछ समय पहले ही गुजरे थे तो वो अपने परिवार का सहारा था, तो कोई अपनी मंगेतर के साथ अपने सपनों को बुन रहा था, कोई सीख रहा था कि जिंदगी को आगे कैसे जीना है। जिंदगी एक अलग ही सबक परिवारों को सिखा गई। ऐसे 15 लोग अपनी जान गंवा बैठे हैं और अगले आधे घंटे में हम आपको दर्द की एक ऐसी दास्तान दिखाएंगे जिससे दिलो दिमाग सब सन्न रह जाएगा, क्योंकि जिन परिवारों ने अपनों को खोया है उनके लिए दुख 2-4 दिनों का नहीं है, जिंदगी भर का है। जिस बिल्डिंग में यह अग्निकांड हुआ है वहां SIT जो स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम है उसे अब जाकर कई खामियां मिली हैं। रिपोर्ट 7 दिन में आ जाएगी, कई बातें भी बताएगी। बिल्डिंग के मालिक समेत 4 लोग गिरफ्तार हो तो गए हैं, 4 अधिकारियों को फिलहाल सस्पेंड कर दिया गया है, लेकिन सस्पेंड सजा नहीं है। बताया जा रहा है कि बिल्डिंग में एक ही एंट्री और एग्जिट का रास्ता था और उसी इकलौते रास्ते पर इलेक्ट्रिक पैनल लगे हुए थे। इसके अलावा बिल्डिंग में बिजली का ओवरलोड है, ऐसा इसका भी खुलासा हुआ। लेकिन सवाल यह कि जब यह आखिरकार सब हो रहा था तो प्रशासन क्या कर रहा था? यहां पर जांच क्यों नहीं की गई, और अगर जांच हुई तो क्लीन चिट कैसे दे दी गई? यह सिर्फ लापरवाही नहीं है, यह चंद पैसों की खातिर एक बड़ी साजिश है जिसका खामियाजा 15 लोगों ने अपनी जान देकर और उनके परिवारों के लिए जिंदगी भर का दर्द देकर उन्हें अब चुकाना पड़ेगा। अब हम आपको सुनाते हैं एक बेबस पिता की बदकिस्मती वाली दास्तान। वो चाह कर भी अपने बेटे को नहीं बचा पाए। बेटे की गुहार सुनने के बाद वो भागे भागे उस घटना स्थल पर गए तो, लेकिन आग की इतनी बड़ी लपटें थी कि उन लपटों के सामने वो भी विवश थे। बाराबंकी के इस पिता की कहानी के अलावा हम कानपुर के 2 दोस्तों के परिवारों का दर्द भी आपको सुनाएंगे और बहुत हृदय विदारक है, आपको रुला देगा। ये दोनों ही पिता के गुजर जाने के बाद बेटा ही एकमात्र सहारा था, इस हादसे में वो भी छिन गया।
1: ये पापा बचाओ कैसे भी करके, आग लग गई।
2: जरा सोच कर देखिए, जब एक पिता के पास उसके बेटे का फोन आया हो और मौत को सामने देखकर वो आग से बचाने की गुहार लगा रहा। बेबस पिता के पास बदहवासी में हादसा स्थल तक जाने के अलावा कोई चारा न बचा हो और वो अपने सामने अपने बेटे की जान आग की लपटों में जाता हुआ देख रहे हैं। ये सब सोचकर ही दिमाग सुन्न हो जाता है, दिल धक से बैठ जाता है, और जिस शख्स ने इसे अपनी आंखों के सामने झेला होगा उसके लिए तो वो हर लम्हा अब जिंदगी भर का दर्द है, कभी ना खत्म होने वाली यातना है। लखनऊ का लाक्षागृह लापरवाहियों की आग में जल रहा था और अपना भविष्य बुनने आए बच्चों की सांसें घुट रही थी। बच्चे चीख रहे थे, जिंदगी बचाने के लिए निकलने का एक अदद रास्ता तलाश रहे थे। चारों तरफ आग की लपटें थी और धुएं का गुबार मुश्किलें बढ़ाता जा रहा था। कोई बाथरूम में बचने की जद्दोजहद कर रहा था तो कोई ऊपर से कूदकर अपनी जान बचाने का संघर्ष। किसी का बेटा चला गया,
3: मेरा बेटा भी जिंदा होता, मेरा बेटा।
2: किसी का भाई चला गया,
4: मेरे भाई ने क्यों नहीं बचाया।
2: किसी के अरमान राख हो गए तो किसी के सपने जलकर खाक हो गए। कई बच गए लेकिन सबकी किस्मत एक जैसी नहीं होती। बदकिस्मती की आग इतनी बदहवास थी कि एक के बाद एक 15 बच्चों को लील गए। इन्हीं बदकिस्मतों में शामिल थे बाराबंकी के शाहजान और अम्मा। आग लगने पर शाहजान ने अपने पिता को फोन भी किया था, पापा मुझे बचा लो, बेटे की आवाज सुनकर उनके पिता महज 10 मिनट में कोचिंग सेंटर भी पहुंच गए, लेकिन तब तक आग की लपटें और विकराल हो चुकी थी। पिता ने अंदर जाने की कोशिश की, लोगों से मदद मांगी, मिन्नतें की, लेकिन आग की लपटों के सामने हर कोई बेबस था। आखिरकार शाहजान और अम्मार समेत 15 लोगों की जान चली गई। बाराबंकी के दोनों परिवारों में अब मातम पसरा है। इकलौते बेटे शाहजान को खोने के बाद मां सदमे में है और पिता का रो रो कर बुरा हाल है।
1: 10 मिनट के बाद हम पहुंच गए सर, फायर ब्रिगेड जो है वो 20-25 मिनट बाद आई बचाने।
5: फोन जब किया क्या कहा उन्होंने भैया ने?
1: भैया ने फोन किया था 2:20 कि पापा बचाओ कैसे भी करके, आग लग गए।
5: आप अकेला बेटा है?
1: मेरा एक लड़का था बस, दूसरा कोई नहीं।
2: कानपुर के संयम और सूरज के परिवारों की कहानी भी रुला देगी। गोविंद नगर के रहने वाले 28 साल के संयम विज और बर्रा सात के रहने वाले 25 साल के सूरजभान सिंह इस हादसे में अपनी जान गंवा बैठे। दोनों दोस्त थे और एक ही एनिमेशन स्टूडियो में काम करते थे। दोनों के पिता पहले ही गुजर चुके हैं। संयम के परिवार पर तो जैसे मुश्किलों का पहाड़ टूट पड़ा है। आज यानी मंगलवार को उनकी दादी की 13वीं होनी थी। सब उनके आने का इंतजार कर रहे थे, लेकिन उनकी जगह उनकी मौत की खबर आ गई।
6: बच्चे का ऐसा मालूम चला है कि उसके ऑफिस में आग लग गई थी एसी के शॉर्ट सर्किट की वजह से, जिस वजह से बच्चे बाहर नहीं आए और किसी वजह से उनको मृत बता दिया गया। शाम को लगभग 7-8 बजे के आसपास सूचना हम लोग को मिली।
7: बहुत हसमुख लड़का था, बहुत अच्छे, सबके रिस्पेक्ट भी करता था, जॉब के लिए भी बहुत अच्छा बढ़िया काम कर लड़का था, नेचर भी अच्छा था। 3 साल होगा, 2.5 से 3 साल जॉब कर रहा था। अच्छा व्यवहार था, घर आता था डेली, जब भी आया हफ्ते में भी मिलता है, अच्छे से मिलता है।
2: उधर सूरजभान के परिवार पर भी गमों के बादल छाए हैं। वो नौकरी की वजह से लखनऊ में रहते थे और हर हफ्ते घर लौटते थे, लेकिन परिवार का इकलौता सहारा बने सूरजभान अब कभी नहीं लौटेंगे। अब लखनऊ के 27 साल के नीलेश कुमार के परिवार की दर्द भरी दास्तान सुनिए। नीलेश कुमार अपने माता पिता के पैर छूकर घर से नौकरी के लिए निकले थे, लेकिन अब कभी वापस नहीं लौटेंगे। पिता की आंखों में आंसू है और माँ अपने बेटे के शव को देखकर बिलख रही है। यह हादसा उन्हें जिंदगी भर का दर्द दे गया है।
8: पैसे सब कुछ नहीं होता, बच्चा हमारा वापस मिला सकता है कोई? बच्चा तो नहीं मिला सकता है, दौलत उसके ऊपर रुपया दे दिया जाए फिर भी क्या खुशी वापस आ सकती है? नहीं आ सकती है।
9: आपके आंखों में आंसू भी देख रहा हूँ, मैं समझ सकता हूँ आपके लिए बहुत ही ये दर्द भरा क्षण है और हम लगातार सरकार से भी और प्रशासन से भी सवाल कर रहे हैं, लेकिन कैसा रहा, आपने बचपन से उसको खिलाया पढ़ाया?
8: जी बचपन से पढ़ाया लिखाया खिलाया, सब कुछ सेवा पानी किया जो हो सका। अब जो सयान हुए कामयाबी के लिए उड़े तो पता चला कि वो हादसे में चले गए।
2: लापरवाही की आग में जलकर 15 लोग इस दुनिया से चले गए। उनके परिवारों में अब सन्नाटा पसरा है और गमों का ऐसा पहाड़ टूटा है जिसके नीचे जिंदगी भर की खुशियां दबी रहेंगी। बाराबंकी से सैयद रेहान मुस्तफा, कानपुर से सिमर चावला और लखनऊ से समर्थ श्रीवास्तव के साथ आज तक ब्यूरो।
0: और लखनऊ अग्निकांड पर समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव का एक बड़ा बयान सामने आया है। अखिलेश यादव ने मांग की है कि बीजेपी सरकार के दौरान पास हुए सभी नक्शों की जांच की जाए। अखिलेश यादव ने गंभीर आरोप लगाया है कि अफसर भ्रष्टाचार कर रहे हैं, एनओसी दे रहे हैं और इसी वजह से घटनाएं हो रही हैं। उन्होंने भ्रष्टाचार और उसके कारण हुए अग्निकांड के लिए सरकार को जिम्मेदार ठहराया है।
10: कोई सरकार नहीं है, सरकार की जिम्मेदारी क्या बनती है? और एनओसी देने वाले लोग आखिरकार भ्रष्टाचार कर करके एनओसी क्यों दे रहे हैं, उसके लिए जिम्मेदार कौन है? और अगर कार्रवाई हुई है, ये सामान्य घटना नहीं है। जब आप फायर के मानकों पर कोचिंग बंद कर रहे हैं, तो कम से कम सरकार को देखना तो चाहिए था कि और जगह जांच करते। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में जो नक्शे पास हुए हैं, जिनको एनओसी मिला है फायर का, कम से कम उनकी ठोस जांच होनी चाहिए। जो घटना आज हुई है, कल हुई है, वो दोबारा घटना ना हो।
0: यहां सवार एक और है। जब आप इस तस्वीर को देखते हैं कि कुछ बच्चे तो निकल पाए, लेकिन एक ही रास्ता था, उस पर भी बायोमेट्रिक का जो प्रारंभिक जांच में आ रहा है वो दरवाजा जाम हो गया, बच्चे निकल ही नहीं पा रहे थे, कुछ बाथरूम में छिप गए, छत पर गए तो वहां भी ताला लगा था। प्रश्न ये कि इन बच्चों का कसूर क्या था? ये जो 15 नाम है ना, और जो तस्वीरें हम आपको दिखाने जा रहे हैं, ये वो बेकसूर हैं कि अपने जीवन में कुछ करना चाहते थे, कुछ नया सीख रहे थे, कुछ सिखा रहे थे, अग्निकांड में उनकी जान चली गई। सागर, नीलेश, अनामिका, संयम, अनुछा, सुखमणि, आदित्य, ज्योति, भविष्य, रहमान, सूरज, शाहजान, जनिल, अम्मार, सुमाल्या, ये नाम कुछ लोगों के लिए केवल नाम हो सकते हैं, लेकिन इनके परिवारों का घर का इकलौता चिराग था वो बुझ गया, और अब परिवार न्याय की मांग कर रहा है। हमने आपको एक बेबस पिता का दर्द तो दिखाया, अब आपको एक ऐसी मां की विवशता दिखाते हैं जिसके सामने उसके दिल का टुकड़ा जुदा हो गया। वो चीखती रही लेकिन बच्चा बच नहीं पाया। अब जिंदगी भर ये पल जो है ना, ये आंसू बनकर उनकी आंखों से लगातार बहता रहेगा।
11: लखनऊ अग्निकांड में जान गंवाने वाले अब्दुल रहमान अपने परिवार का एकलौता सहारा थे। दिव्यांग पिता और बहन की जिम्मेदारी पिछले कई सालों से उनके कंधों पर थी। एनिमेशन का कोर्स करने के बाद उन्हें उसी संस्थान में नौकरी मिल गई थी और वो पिछले 4 साल से यहाँ काम कर रहे थे। अब उसी सेंटर में लगी आग में उनकी जान चली गई। उनके परिवार पर तो जैसे दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है।
12: ये बताइए कि आप लोग कैसे पता लगा और कब से जॉब कर रहा था?
13: ये 3 बजे जब आग लगी है तब तो हमने खुद ही सोशल साइट पे डाला था, तब तक हमें नहीं पता था। अभी 8 बजे पता चला कि हमारा भतीजा रहमान भी इस आग का शिकार हो गया।
12: तो घर में क्या स्थिति है उनके घर?
13: घर में पिताजी विकलांग हैं, माँ टीचरिंग करती थी, बच्चा अभी दो ही तीन महीने हुए जॉब पे था, काम भी करता था, वहीं पढ़ाई भी करता था नीचे छोड़।
12: अब परिवार की कैसे जिम्मेदारियाँ पूरी होंगी और क्या चाहते हैं आप लोग इस पूरी घटना पर?
13: कि हम लोग चाहते हैं इस पर जांच हो और ज्यादा से ज्यादा परिवार को मुआवजा दिया जाए, ताकि उसकी माँ की भी कोई ऐसी स्थिति नहीं है, और परिवार में कोई दूसरा कमाने वाला नहीं था, इकलौता बच्चा था।
11: लखनऊ के आदित्य श्रीवास्तव ने तो अपनी माँ के सामने ही दम तोड़ दिया। माँ बिल्डिंग में फंसे अपने बेटे की बेबसी को देखने के अलावा कुछ नहीं कर सकी। वो मदद के लिए चिल्लाती रही, इधर उधर भागती रही, लेकिन अपने बेटे को नहीं बचा पाई। ये दुख, ये दर्द, बेटे को खोने की एक यातना अब इस माँ को जिंदगी भर के लिए सताती रहेगी।
14: मी और आग में अंतर है, कभी सोचा नहीं होगा शायद कि आग,
15: अब ये सोच रहे तो सब भगवान ने जो है,
14: गुस्सा है क्यों हुआ, लापरवाही क्योंकि है,
15: लापरवाही। जब ये पता चला कि लिफ्ट है, कोई भी बिल्डिंग अगर कई मंजिल की बिल्डिंग बनती है तो उसके साथ साथ क्या लिफ्टें चलने का सवाल नहीं था? कम से कम साथ में सीढ़ियां तो होनी ही चाहिए, आदमी कहीं से तो भाग सके। वेंटिलेशन बताते हैं उसमें था ही नहीं।
11: लखनऊ का पोस्टमार्टम हाउस इस अग्निकांड में अपनी जान गंवाने वाले लोगों के परिवारों के बिलखने का गवाह बना रहा।
14: वैसी ही तस्वीरें आपको हम एक माँ की दिखाएंगे जिसने अपने बेटे को खो दिया है। आप केवल तस्वीरें देखें और ये दर्द देखें और समझें कि सिस्टम की लापरवाही के चलते एक माँ आज बिलखने को तैयार है, मजबूर है। कुछ इस तरह की तस्वीरें आपको इस वक्त हम पोस्टमार्टम हाउस से दिखा रहे हैं और परिवार एकजुट है, लेकिन सवाल
16: पूछे जाएंगे लापरवाही क्यों हुई, आखिर मासूमों की क्या गलती थी, ये भी सवाल होंगे। इतनी बड़ी घटना हो गई है, लापरवाही की जिम्मेदारी कौन लेगा?
17: सर क्या बताएं, किसका बताएं, किसका बता, कुछ समझ में नहीं आ रहा।
16: परिवार को देखिए आप, जरा तस्वीरें दिखाइए, कैसे एक माँ को जो है दो बेटे लेकर यहाँ जा रहे हैं और उसने अपनी एक औलाद खो दी है।
11: लखनऊ के अग्निकांड में ज्योति की भी दर्दनाक मौत हो गई। उनके भाई सत्यम को बहन की मौत का सदमा है तो सिस्टम से नाराजगी भी। उनका साफ कहना है कि ये सब कभी नहीं रुकेगा क्योंकि भ्रष्टाचार ने सब कुछ बर्बाद कर दिया है।
0: कभी उपहार कांड तो कभी दिल्ली में मालविया नगर तो कभी लखनऊ में यह अग्निकांड। सबसे बड़ा सवाल, दोषियों के खिलाफ कार्रवाई कब होगी? इस खबर पर रहेगी नजर। फिलहाल एक ब्रेक, देखते रहिए आज तक।
18: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच, ड्यूरेबल पाइप्स, फिटिंग्स एंड टैंक्स, अ कंप्लीट रेंज ऑफ सैनिटरी सॉल्यूशंस।
19: Tune in How To, a brief look at all the special functions and things you might not know we have.
20: Get into the game with your favorite teams and never miss a game. Follow your teams on TuneIn and get live updates. Just select teams you want to follow on TuneIn and you'll get notifications like when the games start. Enjoy all the recommended stations, sports talk, and podcasts. Just favorite your teams and start listening.
18: Shogunpur.

उद्धव ठाकरे के 6 बागी सांसदों ने कई दिन की आंख मिचौली के बाद आखिरकार मुंबई में एकनाथ शिंदे की मौजूदगी में शिवसेना का दामन थाम लिया। अपना सियासी कुनबा बढ़ाने के लिए एकनाथ शिंदे बोले, मैं कोई काम अधूरा नहीं छोड़ता। पहले शिवसेना के 7 लोकसभा सांसद थे, लेकिन उद्धव ठाकरे की पार्टी शिवसेना यूबीटी के 6 सांसद शिंदे कैंप में आने के बाद अब लोकसभा में कुल शिंदे के 13 सांसद हो गए, जिससे एनडीए में शिंदे का सियासी कद भी काफी बढ़ गया है। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम और शिवसेना प्रमुख एकनाथ शिंदे ने ऑपरेशन टाइगर की कामयाबी पर फिल्मी अंदाज में कहा, एक बार जो मैंने कमिटमेंट कर दी उसके बाद मैं अपने आप की भी नहीं सुनता। शिंदे बोले, सीएम फडणवीस के साथ उनकी जोड़ी हिट है, क्योंकि दोनों का मकसद महाराष्ट्र का चौतरफा विकास करना है। ऑपरेशन टाइगर की सफलता पर महायुति सरकार जश्न मना रही है। विधानसभा सत्र की शुरुआत से पहले सीएम फडणवीस और डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे का जोश हाई दिखा। इससे पहले मुख्यमंत्री फडणवीस ने भी कहा कि ऑपरेशन टाइगर पूरा हुआ। वहीं आदित्य ठाकरे ने कहा, धोखेबाज सांसद उद्धव के चेहरे पर चुनकर आए थे, इसलिए हिम्मत है तो इस्तीफा देकर चुनाव लड़े। शिवसेना दावा कर रही है कि उद्धव के एक और सांसद शिंदे कैंप में आने को बेकरार थे, लेकिन वो कैबिनेट मंत्री बनाने के लिए दबाव बना रहे थे, जिसके बाद शिंदे ने उन्हें मना कर दिया।

0: या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट, तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच। Chogan Perfumes, the French edition for him and her.

0: When your business grows, communication can get messy fast. Calls come in, texts stack up, and suddenly your team is working in different places without the full picture. That's where Quo comes in. Quo gives your business one shared number, so every call and text lives in one place. Your whole team can see the entire history. Everything stays connected, and nothing falls through the cracks. Money is on the line. Always say hello with Quo. Get started free, plus get 20% off your first 6 months at Quo.com/tunein. That's Quo.com/tunein.
1: Want to hear something funny? Check out Just for Laughs Radio, your destination for all things comedy. Enjoy nonstop stand-up from your favorite comics, plus the ones you haven't discovered yet. Get your daily dose of laughter on Just for Laughs Radio, now on TuneIn.
2: अपनी पार्टी में टूट के बीच आज उद्धव ठाकरे ने अपने विधायकों की मीटिंग पार्टी दफ्तर शिवालय में बुलाई थी, जिसमें तीन विधायक नहीं पहुंचे, जिनमें संजय डेरकर, राहुल पाटिल, संजय पोतनिस हैं। वहीं एमएलसी सुनील शिंदे भी पार्टी की मीटिंग में शामिल नहीं हुए। महाराष्ट्र में शिवसेना यूबीटी के 20 विधायक और 6 एमएलसी हैं। उद्धव ठाकरे की मीटिंग एक घंटे तक चली। पार्टी में एकजुटता दिखाने के लिए उद्धव ने आदित्य ठाकरे और संजय राउत के साथ सभी विधायकों और एमएलसी के साथ एक ग्रुप फोटो भी खिंचवाई। हालांकि शिवसेना यूबीटी नेता कह रहे हैं कि जो विधायक नहीं पहुंच सके उनमें बगावत वाला एंगल ना तलाशा जाए, सबकी कुछ न कुछ मजबूरी थी। उद्धव ठाकरे खुद बगावत करने वाले सांसदों के चुनाव क्षेत्रों का दौरा करेंगे। इसके साथ ही उन्होंने पार्टी के वरिष्ठ नेताओं और विधायकों को भी बागी सांसदों के चुनाव क्षेत्र में जाकर पोल खोलने की बात कही है। उद्धव ठाकरे 4 साल में 2 बार पार्टी टूटने से काफी आहत है। वो मतदाताओं से माफी मांग रहे हैं कि उनके चुने सांसद शिंदे से मिल गए। उद्धव ने अपने बचे हुए सांसदों और विधायकों से सरकार को घेरने और जनता के मुद्दे पर आक्रामक रुख अख्तियार करने के निर्देश दिए हैं। उद्धव ये भी मान रहे हैं कि धोखेबाज सांसदों को टिकट देने में उनसे गलती हुई है। जिस तरह शिंदे कैंप के नेता दावा कर रहे हैं कि अभी ऑपरेशन टाइगर थमा नहीं है, यानी सांसदों के बाद अब विधायकों की बारी आने वाली है, तो सवाल उठता है कि क्या उद्धव ठाकरे अपने विधायकों को बगावत करने से रोक पाएंगे?
3: लेबनान पर इजराइल के हमले लगातार जारी हैं। बेका घाटी में हुए भीषण हवाई हमले में 20 लोगों की मौत हो गई। इस बीच इजराइल ने एक वीडियो जारी कर दक्षिणी लेबनान में मजदल जॉन गांव के नीचे आतंकी सुरंग मिलने का दावा किया है। ये सुरंग इजरायली सीमा से कुछ ही किलोमीटर की दूरी पर मिली है। सुरंग में बड़ी संख्या में हथियार और इजरायल की ओर निशाना साधे 4 लॉन्च शॉफ्ट भी बरामद हुए हैं। ये सुरंग 200 मीटर से ज्यादा लंबी और 25 मीटर से ज्यादा गहरी है। इस ऑपरेशन के दौरान इजरायली सेना ने हिजबुल्लाह के 20 से ज्यादा आतंकियों को मार गिराने का दावा किया है।
4: ואני מתחייב בפניכם, אזרחי ישראל, מדינת ישראל לא תהיה אפיזודה חולפת בתולדות עמנו. אנחנו עומדים איתן על האינטרסים החיוניים שלנו. השגנו הישגים כבירים ולא נוותר עליהם.
3: उधर हिजबुल्ला ने इजराइल को खुली चुनौती देते हुए कहा है कि वो इजराइल के हर हमले का मुंह तोड़ जवाब देने के लिए तैयार है।
5: इसराइल लन तबका फी लुबनान हत्ता लौ ज़ादत इजरामा ونحن سندافع اي وقف لاطلاق النار।
3: ईरान अमेरिका में शांति वार्ता की कोशिशों के बीच इजराइल का यह आक्रामक रुख पूरे मध्य पूर्व को एक ऐसे चौराहे पर ले आया है जहां से शांति और युद्ध दोनों की राहें निकलती हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, आज तक।
6: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।

0: नमस्कार, मैं हूं साहिल जोशी। दंगल में आपका स्वागत है। आज का दंगल कल लखनऊ में हुए आग हादसे को लेकर, क्योंकि हमारे देश में न तो करप्शन खत्म हो सकता है न आग हादसे। वरना लखनऊ जैसे शहर में जहां सरकार ही बैठती है, वहां अलीगंज जैसे पॉश इलाके में ये हादसा नहीं होता। अब सरकार ने फिर से एक SIT बना दी है। वो जांच कर रही है। सबसे पहले इमारत के मालिक, दफ्तर के मालिक समेत 4 लोग जेल भेज दिए गए। अब जांच हो रही है तो पता चल रहा है कि इमारत रिहायशी थी, काम कमर्शियल चल रहा था। बिजली का कनेक्शन 20 KV का था, लोड 34 KV पार था। न नक्शा पास, न कमर्शियल लाइसेंस, न फायर NOC। फिर अलीगंज में पॉश रेसिडेंशियल इलाके में कमर्शियल एक्टिविटी कैसे चल रही थी? न लखनऊ विकास प्राधिकरण को फिक्र, न नगर निगम को चिंता। पुलिस वालों की तो पूछिए ही बात, सब कुंभकर्ण की नींद सो रहे थे, तो दमकल विभाग भी सो रहा था। जब आग लगी, 15 बेगुनाह नौजवान नौकरी करते करते दम तोड़ गए। तब अधिकारियों का निलंबन हुआ है। हर विभाग के एक अधिकारी निलंबित किया गया है। लेकिन सवाल अभी भी बड़ा है और कायम है। सवाल सिस्टम का है, जो सुधरता ही नहीं है, जिम्मेदारी नहीं लेता है, कार्रवाई नहीं करता है, हर हादसे के बाद जागने की नौटंकी करता है और फिर वही ढाक के 3 पात। वो 15 नौजवान जो कल मारे गए हैं, उनकी मौत के कौन जिम्मेदार है और कितने जिम्मेदार है, कितने गुनेगार, और क्या उन्हें कभी कोई सजा मिल पाएगी? इसी पर हम दंगल करेंगे, इसी पर चर्चा करेंगे। लेकिन पहले यह रिपोर्ट देखते हैं।
1: सागर, नीलेश, अनामिका, संयम, अनुषा, सुखमनी, आदित्य, ज्योति, भविष्य, अब्दुल, सूरज, जैनेल, अम्मार, सुमल्या, सारे के सारे नौजवान। सारे के सारे ऊर्जावान, सबके सब अब सारे सपने झुलस गए, सारी उम्मीदें टूट गई, 15 परिवारों के चिराग बुझ गए। इनका क्या कसूर था? अपनी हिफाजत का भरोसा करना, अपनी हुकूमत पर भरोसा करना, अपने सपनों, तकदीर, परिवार, रोटी रोजगार के लिए जान की फिक्र छोड़कर सिस्टम पर भरोसा करना?
2: फोन कर रहे थे सब, फोन कर रहे थे कि कोई पहचाने हमें नहीं, पर फोन ही नहीं उठा रहा था।
1: क्या इनका कसूर था उस सिस्टम पर भरोसा करना जिसका भ्रष्ट होना आसान, जिम्मेदार होना मुश्किल, जो जानलेवा बनता रहा, महफूज नहीं बन सका। फिर जब 15 चिताएं एक दिन सुलगती हैं, तो वही उत्तर समेत दागा जाने वाला यक्ष प्रश्न, जिम्मेदार कौन? आग लगे ऐसे सिस्टम को जो इंसानों को निगल जाता है, किसी की कोख, किसी की मांग, किसी का आंगन, किसी की जिंदगी, फिर भी सिस्टम यही है, ये तो ऐसे ही चलेगा।
3: नीलेश को क्या, उसमें जितने बेचारे बच्चे थे उनको सुख सुविधा देते तो आज फायर ब्रिगेड टाइम से पहुंच जाती।
1: ऐसे ही कॉम्प्रोमाइज सिस्टम में लाक्षाग्रह बनेंगे, ऐसे ही करप्ट सिस्टम में आगे लगेंगे, ऐसे ही बेकसूर बेमौत मरेंगे। हुकूमत जांच कराएगी, गिरफ्तारी कराएगी, मुकदमा चलेगा, जमानत होगी, लेकिन सजा वो भी जाए तो क्या? डरता कौन? क्योंकि यही तो सिस्टम है जहां जुर्म ही नहीं, डर भी मैनेज हो जाता है। वरना क्या दिल्ली, क्या गाजियाबाद, क्या लखनऊ, क्या कानपुर, क्या प्रयागराज, क्या सहारनपुर, मजाल कहीं भी नरसंहार वाला ये सिस्टम आउट ऑफ सिस्टम हो? दिल्ली में सरेआम हजारों कोचिंग चल रहे हैं, बिजली और केबल तारों का मकड़जाल, दड़बे नुबा

0: इमारतें, दो हाथ सकरी गलियां, आग लगे तो कोई बच के दिखा दे। कानपुर में तो दर्जन भर से अधिक ब्रांडेड कोचिंग वालों के दरवाजे पर सीलिंग हो गई, क्योंकि सिस्टम एक्शन में आया है। मौतों के बाद बच्चे कुछ दिनों के लिए यहाँ बाल बाल बचे। गाजियाबाद में भी सिस्टम जाग गया, काम कर गया तो जान बचेगी, वरना हादसे का इंतजार कीजिए। वाराणसी में भी जांच पड़ताल शुरू है, अब तक जोखिम में चल रही जान आगे कुछ दिनों तक महफूज रहेगी। प्रयागराज में भी बच्चों की फिक्र सिस्टम को है, शायद हालात सुधर जाए। उत्तर भारत से दूर दक्षिण भारत तक शहर शहर यही हालात, कहां तक गिनेंगे, ये सिस्टम सुधरता नहीं, और अगर नहीं सुधरा तो हादसे फिर होंगे, फिर SIT बैठ जाएगी।
1: SIT का गठन हुआ है जिसमें हम लोग यहाँ पर आए हुए हैं। घटना के सभी पहलुओं पर गहराई से जांच करके प्रस्तुत करेंगे और कोई भी चीज ऐसी नहीं होगी जिसको इसमें रह जाए।
0: जांच तो होगी, जांच होगी तो पता चलेगा रिहायशी मकान में दफ्तर दुकान कैसे बन गए, मौत की सौदागरी करके मुनाफा वसूली में कौन कौन शामिल था, लखनऊ विकास प्राधिकरण क्या कर रहा था, नगर निगम क्या कर रहा था, पुलिस क्या कर रही थी, दमकल विभाग वाले क्या कर रहे थे, बिजली विभाग क्यों सन्नाटे में था, और तो और पार्षद से लेकर मेयर तक, विधायक से लेकर सांसद तक, और मंत्री से लेकर मुख्यमंत्री तक, सारा सिस्टम एक साथ क्यों फेल हो गया, ये सब जांच के बाद ही पता चलेगा। फिर रिपोर्ट आ जाएगी, मुकदमा होगा, जमानत होगी, बात रफा दफा। वरना इसी सिस्टम में 2014 में तमिलनाडु में कुंभकोणम स्कूल के अंदर 94 बच्चे जलकर मर गए, सजा क्या हुई, 5 साल की जेल। 2017 मुंबई के कमला मिल्स पब अग्निकांड में 14 लोग मरे, सजा आज तक नहीं मिली। 2018 में इसी लखनऊ में चारबाग होटल अग्निकांड में 5 लोग मर गए, आरोपी जमानत पर मौज कर रहे हैं। 2019 सूरत में तक्षशिला कोचिंग में 22 बच्चे बेमौत मरे, सारे आरोपी जमानत पर हैं। 2019 में ही दिल्ली के अनाज मंडी में फैक्ट्री की आग में 43 गरीब जलकर मर गए, सजा अब तक किसी को नहीं मिली। 2022 में फिर इसी लखनऊ के लेवाना स्वीट होटल में 4 लोग मरे, सजा अब तक नहीं मिली। और सजा मिल भी गई तो सबसे निचले पायदान के उसी वोटर को मिलती है जो हर हादसे का सबसे बुनियादी जिम्मेदार होता है, क्योंकि इस भयानक सिस्टम को जिम्मेदार ठहरा देना जमहूरी निजाम के खिलाफ बगावत हो जाएगी। ये सिस्टम कभी खुद को जवाबदेह नहीं बना सकता, क्योंकि सिस्टम में सबका सिस्टम ठीक है, बस हिंदुस्तान की आम आवाम, बेगुनाह सामान्य वोटर, टैक्स पेयर इस सिस्टम से दूर है, और वही बेमौत मारा जाएगा, 5 लाख का मुआवजा पाएगा, गम के आंसू पोछेगा और अगले हादसे के लिए छोड़ दिया जाएगा। आज तक ब्यूरो।
1: 2024 की रिपोर्ट है कि पूरे देश भर में 6000 इस तरीके से हादसे हुए थे और करीब करीब उतने ही लोगों की मौत भी हुई थी, लेकिन उसके बावजूद दिल्ली का हादसा होता है, एक बार फिर SIT बिठा दी जाती है, लखनऊ का हादसा होता है, SIT बिठा दी जाती है। सालों साल यही सिलसिला पूरे देश में चल रहा है और कब तक यह सिलसिला चलेगा, यही सवाल के साथ दरअसल इस चर्चा की हम शुरुआत करेंगे। हमारे साथ इस पूरी चर्चा में खास मेहमान जुड़ रहे हैं, राजेश परमार जुड़ रहे हैं, पूर्व चीफ फायर ऑफिसर है दिल्ली के, पूर्व फॉर्मर प्रोफेसर है नेशनल फायर सर्विस कॉलेज के, नवीन भट्टागर है फॉर्मर DIG NDRF के, दीक्षु कुकरेजा है आर्किटेक्ट है, अर्बन डिजाइनर है। हर शहर में देश के इसी तरीके के स्ट्रक्चर्स हमें देखने को मिलेंगे, जहां हजारों बच्चे कोचिंग क्लासेस में हो या कहीं छोटे छोटे दुकानों में हो या ऑफिस में काम करते हैं, क्या वो फायर सेफ्टी हजार्ड बन चुके हैं। विजय राठी समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता इस चर्चा में जुड़ रहे हैं, प्रोफेसर संगीत रागी पॉलिटिकल एनालिस्ट भी इस चर्चा में शामिल होंगे। हालांकि लखनऊ नगर निगम हो, लखनऊ डेवलपमेंट बोर्ड हो, हमने उनसे भी पूछने की कोशिश की कि वो भी इस चर्चा में शामिल हो, लेकिन उनकी तरफ से फिलहाल कोई भी आगे आने को तैयार नहीं है, इस बात को का जिक्र इसमें यहां पर करना होगा चर्चा शुरू होने से पहले। पहला सवाल मैं दरअसल इस पूरे पैनल के सामने रखूंगा, 3 सवाल जो इस चर्चा में शामिल होंगे। पहला सवाल, क्या लखनऊ में सरकारी भ्रष्टाचार से बनी इमारत में 15 नौजवानों की जान ले ली है, क्योंकि कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार इसके पीछे है। इसी इमारत को 2016 में डिमोलिशन की नोटिस दी गई थी, वापस ली गई, 10 साल हो गए, अभी भी वो बिल्डिंग वहीं पर कायम थी और वहां पर हादसे में 15 लोगों की जान जाती है। दूसरा सवाल, क्या हर हादसे के बाद जांच और खानापूर्ति की कार्रवाई से आग हादसे रुकेंगे, क्योंकि कार्रवाई तो खानापूर्ति की होती है, अगर खानापूर्ति नहीं होती तो शायद ही हादसे रुके होते। तीसरा सवाल, क्या लखनऊ हादसे में जिम्मेदार सरकारी अफसरों को भी कभी सजा मिल पाएगी, क्योंकि अब तक किसी भी सरकारी अधिकारी पर कार्रवाई नहीं हो पाई है, और यही सबसे बड़ा सवाल यहां पर रहता है। विजय राठी जी, शुरुआत आज आपसे करेंगे, क्योंकि शुरुआत आप ही के सरकार के समय पे हुई है। आज समाजवादी पार्टी आगे आकर ये कह रही है कि सभी नक्शों की जांच होनी चाहिए, लेकिन 2016 का मामला है। 2016 में इसी इमारत को डिमोलिशन की नोटिस दी गई थी क्योंकि किसी भी तरीके से कोई भी इजाजत लिए बिना इस इमारत के भीतर कमर्शियल ऑफिसेस चल रहे थे, लेकिन डिमोलिशन नहीं हुआ। 2 महीने के भीतर डिमोलिशन की कार्रवाई रुक जाती है और उसके बाद 10 साल तक इस इमारत में लोग काम करते रहते और आज वहां पर हादसा हो जाता है कल। विजय राठी,
2: नहीं देखिए, बड़े ताज्जुब की बात है कि 2016 की बात है और अब सरकार को चले हुए दूसरा टेन्योर चल रहा है भारतीय जनता पार्टी का, लेकिन सवाल फिर भी समाजवादी पार्टी से पूछा जा रहा है कि इसमें हादसे में ऐसे क्या हुआ कि अब तो देखिए कितने साल हो गए इसको भारतीय जनता पार्टी को, अब तो सवाल उससे भी पूछा जाना चाहिए ना। अगर हमारे अंदर कोई कमी थी हम तो लोगों ने हटा दिया, हम तो चले गए, मैं ये मानता हूं। और जब जनता मैंडेट देती है तो शायद कहीं ना कहीं किसी ना चीज नाराजगी होती है उनके अंदर, लेकिन अब जो मौजूदा सरकार है सवाल तो उससे होना चाहिए ना कि उसकी नाक के नीचे क्या चल रहा है, क्या इसकी एनओसी फायर ब्रिगेड से एनओसी ली। और देखिए मैं बता दूं, 2 स्तर पे लापरवाही होती है और भारतीय जनता पार्टी के राज में तो खास तौर पर। सबसे पहली बात तो ये है कि एजुकेशन सिस्टम जब इन्होंने खराब कर दिया, आप एक चीज देखना, कोचिंग में एक तरीके से बच्चे इसलिए जा रहे हैं क्योंकि उत्तर प्रदेश में खास तौर पे जो स्कूल कॉलेजेस यूनिवर्सिटी है वो धीरे धीरे बंद होते जा रहे हैं। अभी 2 दिन पहले एक खबर थी कि 465 विद्यालय माध्यमिक के वो बंद हो गए क्योंकि उसमें स्टूडेंट्स नहीं है। और स्टूडेंट्स क्यों नहीं है? क्योंकि टीचर नहीं है। और टीचर क्यों नहीं है? क्योंकि भर्तियां सारी कोर्ट में अटकी हुई है। पहली बात तो ये है कि मेरी भावभीनी श्रद्धांजलि है, जो हमारे होनहार बच्चे चले गए हमारे बीच से, नहीं होना चाहिए था। यहां बात सरकार की किसी पार्टी की नहीं है, यहां बात यह है कि कोई भी हो तो किसी के साथ ऐसा हादसा नहीं होना चाहिए। दूसरी बात यह है कि जब यह हो गया, अगले स्तर पर आप देखिए फायरमैन की जो भर्ती है वो भी हाई कोर्ट ने रद्द कर दी 2025 में। जो रेडियो ऑपरेटर है, टेक्नीशियन, जो फायर में जो इनका काम होता है वो भी कोर्ट में। तो जो बाद का हादसे के बाद का जो काम होता है, जो रेस्पॉन्ड करता है सिस्टम, वो भी ठीक से रेस्पॉन्ड नहीं कर रहा। दूसरी बात जो भारतीय जनता पार्टी जो
1: सवाल यहां पर समाजवादी पार्टी के जमाने में क्या हुआ या इस सरकार के जमाने में क्या हो रहा है, ये बात नहीं है। सवाल यहां पर यह है कि जो सिस्टम आपके समय पे चल रहा था वही सिस्टम आज भी चल रही है, वही भ्रष्टाचार शायद आज भी चल रहा है और इसीलिए इस तरीके की इमारत वहां पर बनी हुई है। रिहायशी इलाके में बिना किसी इजाजत के वहां पर कमर्शियल कॉम्प्लेक्स चलाया जा रहा है, यह बात ज्यादा जरूरी है। सबसे बड़ी बात तो यहां पर यह आके रुक जाती है।
2: साहिल जी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी तो ये कहते कि भ्रष्टाचार खत्म हो गया, हमने सब कुछ सही कर दिया। अगर वही चीजें थी जो हमारे, मान लो हमारे राज्य में कुछ खराब चीजें थी, तो इनके पास तो ये जिम्मेदारी थी कि उसको सुधारें। हम लोगों ने तो मेट्रो भी चलाई, हम लोगों ने तो एक्सप्रेसवे भी बनाया, हम लोगों ने जितनी 4000 एम्बुलेंस दी थी, आप मुझे बता दीजिए एक एम्बुलेंस क्या उत्तर प्रदेश सरकार ने खरीदी है?
1: प्रोफेसर संगीत,
2: हमने जो पुलिस की गाड़ियां खरीदी,
1: समाजवादी पार्टी तो आप कह रही है कि जो अगर उनके वक्त पे भ्रष्टाचार हुआ था तो आज की सरकार में यह रुक सकता था। सरकार अगर बुलडोजर कार्रवाई के लिए इतनी उत्तेजित रहती है, क्यों नहीं जो इल्लीगल इस तरीके से एक्टिविटी चलती है जिसके वजह से 15 लोगों की जान गई है, उसको लेकर इतनी उत्तेजना क्यों नहीं दिखाई देती?
3: साहिल, सबसे पहले तो जो बच्चे मृत हुए हैं उनके लिए और उनके परिवारों के लिए बहुत बहुत संवेदना, लेकिन यह वाकई राजनीति करने का वक्त नहीं है। हम आज चर्चा कर रहे हैं साहिल, 4 दिन बाद फिर हम सब भूल जाएंगे। समाजवादी पार्टी राजनीति कर लेगी, कांग्रेस राजनीति कर लेगी, कल कांग्रेस के राज में होगा तो भारतीय जनता पार्टी राजनीति कर लेगी, लेकिन मुद्दा वहीं का वहीं रह जाता है। ये एक सिस्टेमिक फेलियर है और ये हमारे पूरे शहरों को, कोई यहां नहीं है कि उत्तर प्रदेश के अंदर है, महाराष्ट्र के अंदर है, बिहार के अंदर है, ये पूरे देश भर में है। हम सोशल ऑडिट कर, हम जिसे हम कहते हैं फायर ऑडिट सिस्टम को हम पुख्ता करते ही नहीं है। हम यदि करने भी जाएंगे तो समाज करने नहीं देता है, सिविल सोसाइटी करने नहीं देती है। यदि कोई एडमिनिस्ट्रेशन इसके लिए खड़ा भी हो जाता है, ये सवाल तो पूछा जाना चाहिए था ना कि 2016 में जब हुआ था तो रोक क्यों दी गई थी? ये ठीक है कि बाद में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, उसने भी उस पर आगे नहीं कार्रवाई की, तो आखिर ऐसी कौन सी ताकतें हैं जो 2016 में जब अखिलेश यादव की सरकार के समय थी तो इसकी शुरुआत नहीं? क्या अखिलेश यादव की सरकार के समय शहरों में ऐसे कमर्शियल कॉम्प्लेक्सेस में आग नहीं लगे थे? ज्यादा मैं उसका लिस्ट आउट करना शुरू करूंगा तो समय खत्म हो जाएगा, इसलिए जिक्र नहीं करना चाहता हूं। मूल मुद्दे पर आना चाहता हूं। हम अपने शहरों में इस प्रकार की व्यवस्था नहीं कर रहे हैं, और इसलिए नहीं कर रहे हैं कि जब भी हम इस प्रकार का अभियान छेड़ते हैं तो डिमोलिशन तो होगा, उनके खिलाफ कार्रवाई जब होती है उनको बचाने वाले कौन हो जाते हैं। आज जाकर के जब अयोध्या के अंदर या वाराणसी के अंदर, हम जानते थे एक समय वाराणसी के अंदर पूरा तार लटका हुआ होता था, जब वहां पर डिमोलिशन ड्राइव हुआ और तारों को, बिजली के तारों को अंदर करने की बात आई, तब उसका विरोध सड़कों पर करने कौन आया था? समाजवादी पार्टी आई थी ना। जाकर के यदि अयोध्या के अंदर हो रहा था तो उसका विरोध करने के लिए सड़कों पर कौन आई थी? अतिक्रमण के खिलाफ या इस प्रकार की चीजों के खिलाफ। यहां पर हमने देखा कि कोचिंग से 10 सेकंड में साहिल आप जरूर आ जाइएगा, कोचिंग दिल्ली के अंदर सदर बाजार आप चले जाइए, आप चांदनी चौक चले जाइए, कई बार आदमी को उन गलियों से गुजरते हुए होकर के डर लगता है। लेकिन क्या किसी सरकार में, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार आज है, ठीक है, क्या कांग्रेस की सरकार की तो हिम्मत थी कि उसको बदल देता? आज कोचिंग सेंटर्स इतने ज्यादा हैं पटना के अंदर जो हैं, पटना हो, लखनऊ हो, प्रयाग हो, दिल्ली हो, उनके यहां फायर सेफ्टी ऑडिट क्या होता है? क्या नहीं होता है? कॉमर्शियल लेन कॉम्प्लेक्सेस में भी आप चांदनी चौक में जाए, सदर बाजार में चले जाएंगे, होगा क्या? कल जाकर कोई सरकार हिम्मत ऐसी जुटा ले तो ये सारे लोग जो है ना ये सड़कों पर आ जाएंगे। मैं इसलिए ये राजनीति
4: तो भ्रष्टाचार का मुद्दा नहीं है कोई, संगीत रागी जी,
3: हाथों की ये कठपुतली बन गई है।
4: संगीत रागी जी,
3: बिल्कुल
4: आपने कहा कि राजनीति नहीं होनी चाहिए, लेकिन नहीं बोलते बोलते आपने राजनीति ला ही दी उसमें। भ्रष्टाचार तो होता है ना, वो कॉम्प्लेक्स वहां पर खड़ा है, कमर्शियल कॉम्प्लेक्स
3: के प्रवक्ता
2: मैं 2 सेकंड दे दीजिएगा मुझे,
4: वो कमर्शियल कॉम्प्लेक्स वहां पर खड़ा है
3: आपसे। मैं साहिल मैं तो शुरू से कह रहा हूं, दिल्ली के अंदर यदि अवैध निर्माण हुए हैं तो उसके लिए जिम्मेदार कौन है? उसके लिए जिम्मेदार यहां की पुलिस है, कॉरपोरेटर है, और मैं फिर सब पार्टियों को इसमें जिम्मेवार मानता हूं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी के काउंसिलर जो हैं वो इसके हिस्से नहीं रहे होंगे, मैं सबको जिम्मेवार मानता हूं। वैसे ही लखनऊ के अंदर यदि है तो सारी पार्टियां उसके लिए जिम्मेदार हैं, यदि वाराणसी के अंदर है वो सारी पार्टियां जिम्मेदार हैं। और मैं फिर ये कह रहा हूं, डिमोलिशन ड्राइव यदि कल शुरू होता है तो देखिएगा यही समाजवादी पार्टी जो है वो सड़क पर आकर को उतर करके विरोध कर देगी, क्योंकि इनको इससे मतलब नहीं है, संवेदना मरे हुए लोगों के साथ, मृत आत्माओं के प्रति इनकी संवेदना।
4: लेकिन संगीत रागी जी,
3: उसकी अग्नि और
4: ये, चिता ये, पर, इसका, इसका, पर, इसके सवाल का जवाब संगीत रागी जी, आप जो सवाल उठा रहे हैं, आप जो सवाल उठा रहे हैं उसका जवाब सत्ताधारी पार्टी को देना चाहिए। सत्ताधारी पार्टी ऐसे मंच पर आती ही नहीं है। देखिए, हमने नगर निगम के लोगों को बुलाया, मेयर को बुलाया, अच्छा लखनऊ की मेयर, बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि जब बंगाल में चुनाव हो रहे थे, असम में चुनाव हो रहे थे, तब वो गली कूची में घूम रही थी, सबके आई कार्ड चेक कर रही थी ये जांचने के लिए कि कोई घुसपैठिया तो नहीं घुसा है। उसी के जगह पे अगर रिहायशी इलाकों में जाके अगर चेकिंग कर लेती कि कोई इल्लीगल कंस्ट्रक्शन तो नहीं बना है, बिना इजाजत के फायर सेफ्टी नॉर्म्स को दरकिनार करके वहां पर कोई कोचिंग सेंटर तो नहीं चल रहा है, तो शायद यह हादसा रुक सकता था। तब भी तो विरोध हुआ था, लेकिन तब तो नहीं रोका गया। राजनीति होती है तो रोका नहीं जाता है, जब राजनीति नहीं होती है तब तो आपको बड़ी फिक्र होती है कि समाजवादी पार्टी विरोध करेगी। ये बड़ी दिलचस्प बात है संगीत रागी जी।
3: साहिल आपने बिल्कुल सही कहा, SIR के मुद्दे पर उन दोनों के बीच में तुलना मत कीजिए, वो इसलिए क्योंकि वो विदेशी घुसपैठियों का मामला था, उनको जो हमारे
4: पे उनका कोई लेना देना नहीं था,
3: उनके जांच पड़ताल का मामला था
4: जिसपे उनका कोई लेना देना नहीं था, ना उन्हें उसका अधिकार था। जो उनका काम है, जो उनका काम है नगर निगम की पार्षद होने के वजह से, वो काम छोड़कर बाकी चीजें वो करने के लिए उनके पास राजनीतिक समय था। लेकिन यहाँ पर 15 बच्चों की जान जाने के बाद अगर ये सवाल उठाया जाता है कि आप वहां क्यों नहीं गई, तो ये गलत है सवाल। कैसे कंपैरिजन नहीं करें?
3: नहीं, नहीं साहिल, सवाल गलत नहीं है, मैंने दोनों के बीच में अंतर आपको सिर्फ ये जिक्र किया, और मैं आपकी बात से पूरी तरीके से सहमत हूं कि ये मामला भ्रष्टाचार का है और इस भ्रष्टाचार में पूरे अधिकारी शामिल हैं, चाहे वो लखनऊ नगर निगम हो, चाहे वो गाजियाबाद नगर निगम हो, हर जगह ये आपको मिलेगा और हर सरकारों ने इसको संरक्षण दिया।
4: यही तो बात है,
3: हर सरकारों में
4: हादसे के बाद सवाल पूछने के लिए अधिकारी कहाँ है?
3: मैं बार बार कह रहा
4: हूँ, सवाल पूछने के लिए नगर निगम की अगुवाई करने वाले नेता कहाँ है? सवाल पूछने के लिए वहां के लोकल बोर्ड के नेता कहाँ हैं, जो चुनाव के समय तो आगे आकर इंटरव्यूज देते हैं लेकिन ऐसे हादसों के समय पे डिबेट पे शामिल नहीं होना चाहते? यही तो सबसे बड़ी बात है। विजय राठी आप जवाब दीजिए, उसके बाद मुझे जरा एक्सपर्ट्स के पास भी जाना है क्योंकि ये पूरे देश भर में चल रहा है। विजय राठी आप जवाब दीजिए।
3: साहिल 10 सेकंड,
4: विजय राठी जी को जवाब देने दीजिए, उसके बाद आपके पास आऊंगा।
2: संजय जी, देखिए मैं बता दूं कि भले ही घोषित प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के ना हो लेकिन संगीत राजगी जी को आप समझिए वो उनके घोषित प्रवक्ता ही है। एक बात आप देखिए, बेशर भी देखिए इन लोगों की, 2 साल होने वाले समाजवादी पार्टी को सत्ता से बाहर उत्तर प्रदेश में, आज भी हादसा हो गया, कह रहे हैं राजनीति नहीं है, प्योर राजनीति है, कह रहे हैं 2016 में समाजवादी की जिम्मेदारी है। मतलब तुम क्या करने आओ सरकार में? अरे इंस्पेक्टर तुम्हारे, कमिश्नर तुम्हारे, मेयर तुम्हारे, सब कुछ तुम्हारे, अगर हमने कुछ बना भी रख दिया वहां तो भाई वो जो 10-10 हजार तुम्हारे इंस्पेक्टर लेकर के जाते हैं घूम फिर के कोचिंगों से, जाना फायर ब्रिगेड की एनओसी है, इल्लीगल कोचिंग सेंटर चल रहे हैं, तो वहां क्या कर रहे हैं आपके इंस्पेक्टर? ये उदाहरण है इस देश में इंस्पेक्टर राज जो आपने स्थापित किया इस समय पे। आप कहिए ना समाजवादी पार्टी काम नहीं करने दे रही हमें, उतरिए छोड़ दीजिए, गति मुख्यमंत्री जी से इस्तीफा दे देंगे। लेकिन सवाल ये नहीं है, सवाल ये है कि मुख्यमंत्री और पूरी भारतीय जनता पार्टी आज विधायक सांसदों की खरीद फरोख्त में लगी है, एजुकेशन सिस्टम को खराब करने पे लगी है। नीति आयोग ने क्या कहा, उत्तर प्रदेश में शिक्षा और स्वास्थ्य आज जमीन पे लुढ़के हुए हैं। आपको तो पार्टी तोड़नी है, हिंदू मुसलमान करना, पाकिस्तान करना, आपको ध्यान ही नहीं है उत्तर प्रदेश में, जहां भी भारतीय जनता पार्टी का शासन है आपका ध्यान नहीं है। आपने यहां समाजवादी पार्टी को दोषी ठहराया, गोरखपुर याद कीजिए 2017 अगस्त, जब ऑक्सीजन की कमी से गोरखपुर में BRD कॉलेज में बच्चों की मृत्यु हुई थी, उसमें भी समाजवादी पार्टी जिम्मेदार थी क्या? अभी दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, जल करके लोग मर गए, उसमें भी समाजवादी पार्टी जिम्मेदार थी क्या? अगर सारे हादसों के लिए समाजवादी पार्टी जिम्मेदार है तो तुम्हारी बेशर्मी का कोई कोई जवाब नहीं है इस चीज का। कम से कम आज तो ये कहिए कि आज
4: ठीक है, संगीत रागी जवाब दीजिए,
2: जांच कीजिए उसकी, आप देखिए कि कौन सी पेंटिंग ऐसी है, क्या उन पर कार्रवाई कीजिए। लेकिन वो जो मोटा माल मिलता है ना 10-10 हजार की गट्टी, जो काम कहते हैं ना हम आम जनमानस कहता है कि जो काम 100 में होता था आज वो 10 हजार में होता है, ये जो पैसा लेकर के आप जाते हैं ये भ्रष्टाचार की पराकाष्ठा। इसी बच्चे
4: 100 में भी काम होता था,
2: इन मजदूरों की जिंदगी चली गई,
4: सिर्फ रेट बढ़ गया है। मुझे बड़ा आश्चर्य है राठी जी, ये बड़ा आश्चर्य की बात है कि आप मान रहे हैं कि पहले 100 में काम होता था, ये तो और भी आश्चर्य की बात है, कमाल की बात है।
2: साहिल भाई झूठ नहीं बोलेंगे आप लोग।
3: साहिल
2: जो भ्रष्टाचार की पराकाष्ठा पार कर दी थी समय में,
4: ठीक है संगीत रागी।
3: साहिल समाजवादी पार्टी के नैतिकता और चरित्र का एक सिर्फ एक उदाहरण दे रहा हूं। जब कल्याण सिंह की सरकार थी और राजनाथ जी शिक्षा मंत्री थे, उन्होंने नकल के खिलाफ एक बहुत स्ट्रिक्ट कानून लाया था, और जानते हैं जब इसका विरोध सड़कों पर आकर के किसने किया था? यह समाजवादी पार्टी, क्योंकि उसको लगा कि जो छात्रों को के बीच में, इन छात्रों को उकसा करके हम वोट बैंक खड़ा कैसे कर सकते हैं? तो शिक्षा जैसे जिसके बारे में ये बोल रहे हैं, अपवित्र करने का धंधा समाजवादी पार्टी का उत्तर प्रदेश के अंदर रहा है। यही काम लालू प्रसाद यादव ने बिहार के अंदर किया था। ये जो सामाजिक न्याय के आधार पर ये परिवारवादी पार्टियां जो है ना,
4: ये जो इमारत है,
3: चरित्र का आकलन यही है,
4: इस इमारत को तोड़ने के बीच में
3: ये
4: कौन सी पॉलिटिकल पार्टी आई थी? इस इमारत को डिमोलिश करने के बीच में कौन सी पॉलिटिकल पार्टी आई थी? इस इमारत को डिमोलिश करने के बीच में कौन सी राजनीतिक पार्टी आई थी?
3: बिल्कुल आपने सही कहा, गाजियाबाद के अंदर डिमोलिशन ड्राइव हुआ था,
5: हाल ही में हुआ है उसके खिलाफ क्या समाजवादी पार्टी स्टेटमेंट नहीं दे रही थी, सड़कों पर नहीं उतरी है? जरा पूछे समाजवादी पार्टी से, काशी के अंदर डिमोलिशन ड्राइव हुआ था, क्या समाजवादी पार्टी ने इसका विरोध नहीं किया था? जरा बताए तो समाजवादी पार्टी ने इनके समय में आग नहीं लगे थे क्या? क्या इन्होंने फायर ऑडिट सिस्टम किया था? मैं 14 से 17 तक के बीच में फायर ऑडिट देख रहा था, उसकी रिपोर्ट में देखने की कोशिश किया।
4: बड़ी दिलचस्प बात यह है
5: कि समाजवादी पार्टी ने करवा
4: रखा। चलिए, आरोप प्रत्यारोप हो गया, जरा सिस्टम सुधारने की भी बात कर लेते हैं। राजेश पनवर जी, आप डिबेट तो सुनी रहे हैं, पॉलिटिकल डिबेट तो ऐसी ही होती रहेगी, लेकिन बड़ी दिलचस्प बात यह है, मुझे ये बात मैं समझ नहीं पा रहा हूं, क्योंकि अगर सेफ्टी ऑडिट तो पूरे शहर में किया जाता है, लेकिन उसके बावजूद इस तरीके के कंस्ट्रक्शंस क्यों रहते हैं? दिल्ली में तो पता चला कि पूरा होटल चलाया जा रहा था वहां पर, और उसके बावजूद कोई कार्रवाई नहीं होती है, और हर बार कि एसआईटी बिठा दी जाती है, उसके रिपोर्ट कब आती है, क्या होता है, कभी समझ में नहीं आता है, ये सिस्टम चलता कैसे है आखिरकार?
6: साहिल जी, सबसे प्रथम तो मैं आपको ये बता दूं कि दिल्ली फायर सर्विस या किसी भी फायर सर्विस का प्रथम कार्य आग बुझाने का है, चाहे वो किसी इलीगल बिल्डिंग में हो या किसी इलीगल बिल्डिंग में हो। मैं सर्वप्रथम ये देखूंगा कि मुझे वहां पे जान और माल की जो है रक्षा करनी है पहुंचने के बाद में। बिल्डिंग कैसे बनी और क्यों बनी इसका मेरे ऊपर कोई वो अफेक्ट नहीं आता है कि भाई मुझे उसको जो है आग को देखना है, और जिस बिल्डिंग को मैंने फायर सेफ्टी सर्टिफिकेट दिया है उसको देखने का दायित्व मेरा है। हर 3 साल के बाद में उसकी जो है रिन्यूअल जाता है, और हर साल उसके मालिक को अपना लिख करके भेजना होता है कि मेरी बिल्डिंग के अंदर सभी सिस्टम मैंने खुद से चेक किए हैं या चेक करवाए हैं और वो जो है कार्य योग्य हैं। तो ये इल्लीगल का मेरा नहीं है। बहुत पहले भी एक सरकार हमारे पास दिल्ली में थी, जब दिल्ली में कोचिंग सेंटर में हुआ था तो उन्होंने कहा था जी हम अपने सारे स्कूल जो है कोचिंग सेंटर के लिए खोल देंगे, लेकिन शायद मुझे आज तक कोई ऐसा स्कूल नजर नहीं आया जिसमें कि कोई प्राइवेट कोचिंग के लिए जो है खोला गया हो जहां पे कि इतने बच्चे चले जाए। इन कोचिंग सेंटर्स में मैंने भी देखा है
4: तौर पर
6: हमारे भी बच्चे। हाँ सर
4: राजेश जी, सवाल यहाँ पर यह भी उठता है कि जब आग लग जाती है उसके बाद फायर अधिकारियों को कहा जाता है कि जाके आप जरा ऑडिट कराइए उस इलाके में पूरे इमारतों का, कभी ऐसा हुआ है कि आपके तरफ से रिपोर्ट गई है कि यहाँ पर फायर सेफ्टी नॉर्म्स का फॉलो नहीं किया गया है और उसके बाद नगर निगम ने जाके उन पर कार्रवाई की है, उनको तोड़ने की कोशिश की, उनको कहा है कि फायर सेफ्टी नॉर्म्स को फॉलो करिए, ऐसा कभी आज तक हुआ है इतनी साल की आपकी?
6: साहिल जी जो भी कार्य होते हैं वो आपदा हो जाने के बाद में होते हैं, और ये सेफ्टी और फायर ऑडिट का काम जो है आपदा विभाग का भी है, जो आपदा प्रबंधन करता है उसके पास दिल्ली फायर सर्विस या किसी भी फायर सर्विस से ज्यादा पावर है। आपदा प्रबंधन वालों के पास, डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के पास जो है फायर सर्विस से ज्यादा पावर है, और डीएम के पास ये ज्यादा पावर है कि वो किसी भी बिल्डिंग का जो है सेफ्टी ऑडिट करा लेता है। जब भी कोई डिजास्टर होता है तो उसी के बाद में जो है कोई राशन, कोई पानी, ये चीज दिया जाता है। पहले तो नहीं पड़ता है कि जी अर्थक्वेक आएगा आप ये खाना लेके रख लीजिए, आप ये चावल लेके रख लीजिए। तो ऑडिट जो है आसपास का एहतियात के तौर पे ये किया जाता है, और इसमें कोई बुराई भी नहीं है, इसमें कोई बुराई भी नहीं है, चाहे वो हादसा होने के बाद में किया जाए, और निरंतर चलता भी रहता
4: होना
6: है,
4: चाहिए। लेकिन उस ऑडिट का क्या होता है ये सबसे बड़ा सवाल है, क्योंकि जिस इमारत की हम बात कर रहे हैं सबसे बड़ी बात ये है कि इसमें फायर एग्जिट के सिग्नेचर नहीं थे बिल्कुल भी, जो मैंडेटरी है एनबीसीसी 2016 के गाइडलाइंस के मुताबिक बिल्कुल नहीं थे। किसी भी तरीके से एग्जिट के लिए कोई बेसिक वेंटिलेटर्स वहां पर नहीं थे। उसके साथ साथ हमने देखा कि पिछली तरफ यानी एग्जिट के लिए भी कोई वहां पर रास्ता नहीं रखा गया था। ये तो पूरा ग्लेरिंग मिस्टेक्स यहां पर नजर आती है, यानी कोई भी किसी भी तरीके से नियम या कानून को फॉलो करना है ये बात ही नहीं है।
6: साहिल जी, जब बिल्डिंग बनती है तो उसमें साथी बैठे हुए दीक्षु जी, इनका रोल काफी महत्वपूर्ण होता है कि कितने एरिया है बिल्डिंग का, उसमें कितने स्टेयर केस आएंगे। अगर आप आज भी लुटियंस जोन में ग्राउंड प्लस फर्स्ट फ्लोर के एमपी फ्लैट्स देख लें, उसके पीछे भी एक स्टेयर केस है, एक एस्केप स्टेयर केस एक पीछे भी है। लेकिन आजकल जितने भी बिल्डिंग बन रही है वो ज्यादा से कम स्टेयर केस के आधार पर जो है बनाए जा रहे हैं, जो रूल्स रेगुलेशन है शायद इसी प्रकार से उनको परमिट कर रहे होंगे। और इसका जो है फायर सर्विस से अगर वो चेक कराएंगे तो फायर सर्विस उसको जो है जरूर बताएगी कि उसको दूसरा एग्जिट कहां पे लेना होगा, लेकिन हमारे पास कोई आए तो सही,
4: ठीक है,
6: उसको बिल्डिंग उसको एफएसए की जरूरत है या नहीं है, लेकिन वो हमसे वैसे भी आके पूछ सकता है, हम उसको बताएंगे, क्यों नहीं बताएंगे, जरूर बताएंगे हम उसको, वेंटिलेशन का प्रोग्राम बताइए
4: राजेश जी, मुझे ये पूछना है दरअसल आपसे, लेकिन उससे पहले जरा नवीन भटनागर जी से मुझे एक बात जाननी है, ये बात भी मुझे जाननी है दरअसल राजेश जी आपसे, लेकिन दोबारा मैं आपके पास आऊंगा तब मुझे जाननी है कि दरअसल राजनीतिक जो नेतृत्व है वहां का, नगर निगम का हो या वहां के लोकल डेवलपमेंट बोर्ड का, वो कितना नजरअंदाज करता है इन सारी चीजों को, क्योंकि इसका कोई राजनीतिक लाभ उन्हें मिलता नहीं है और इसी के वजह से इसको इस तरफ ध्यान भी नहीं दिया जाता, यह भी आमतौर पर माना जाता है। लेकिन नवीन भटनागर जी 2024 में, जुलाई 2024 में 5,887 करोड़ रुपए फायर सेफ्टी को स्ट्रेंथन करने के लिए, मजबूत करने के लिए 15th फाइनेंस कमीशन के रिपोर्ट के आधार पर दिए गए थे। क्या आपको लगता है कि दो साल में पूरे देश भर में कोई ऐसा काम हुआ है कि जिसके वजह से फायर सर्विसेज या बाकी सारी चीजें हर स्टेट में ताकतवर करने की कोशिश की गई हो या मजबूत करने की कोशिश की गई हो?
7: देखिए, ये डिपेंड करता है स्टेट गवर्नमेंट में जो फायर डिपार्टमेंट के डायरेक्टरेट हैं वो कितने इंटेलिजेंट हैं, कितने एफिशिएंट हैं और कितनी इनकी रिक्वायरमेंट है और किस प्रकार से वो लोग वर्क करते हैं, तो उसके हिसाब से वो अपना उस बजट को जो हम एलोकेट करते हैं उसको यूज करते हैं। अभी तो बहुत से ऐसे डिपार्टमेंट है फायर के जिनको यही नहीं पता अभी लेटेस्ट क्या रिसर्च हुई है फायर में, कैसे हम उस एरिए के अंदर कौन कौन सी चीजें रिक्वायर्ड है जो हम क्विक। अब देखिए, जितनी फायर की घटनाएं हुई हैं, फायर टेंडर बड़ी देर से पहुंचता है क्योंकि वहां रास्ते संकरे हो गए, लोग गाड़ियां रोड पर खड़ी कर देते हैं, फायर टेंडर पहुंच नहीं पाते, तो इसको देखते हुए अभी छोटी गाड़ियां बना दी गई हैं जिसके अंदर केमिकल लोड होता है और वो हाफ टाइम के अंदर पहुंच जाती हैं। अगर जितनी जल्दी फायर का नियम है, जितना जल्दी हम उस पर एक्ट करेंगे उतनी जल्दी आग जो है बुझा सकते हैं और जितना जल्दी हम रेस्क्यू ऑपरेशन करेंगे उतनी जाने हम बचा सकते हैं। इसके अलावा स्काई लैडर्स हमारे पास एक दो रखे हैं, बाकी है ही नहीं, क्यों नहीं मंगाते भाई स्काई
4: लैडर? कौन जिम्मेदार है
7: जी? इसके अलावा और बहुत से नए
4: जिम्मेदार कौन है?
7: एस्बेस्टस सूट है और आपका जो ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स हैं कि हम लोग एनडीआरएफ में हमारे पास सारी चीज है, एनडीआरएफ वाले कैसे पहुंच जाते हैं?
4: नहीं नहीं, जिम्मेदार कौन है ये सारी चीजें ना लागू होने के लिए, जिम्मेदार कौन है?
7: बिल्कुल दिल्ली का चीफ मिनिस्टर से दिल्ली कह रहा हूं मैं, जो भी आपके कंसर्न गवर्नमेंट है उनके चीफ मिनिस्टर है, फायर वाले हैं, उनका पुलिस है, उनका जो है जो नगर पालिका होती है, ये सब जिम्मेदार है। फिर सबसे बड़ी जिम्मेदारी तो उन माँ बाप की है जो बगैर इस चीज से को देखे हुए बच्चों की सेफ्टी के और वो कम पैसे के लालच में ऐसे इंस्ट्रूमेंट में अपने बच्चों को दाखिल।
4: क्या चारा है उनके पास आज की स्थिति में?
7: कमाल है भाई,
4: क्या चारा है उनके पास नवीन जी आज की स्थिति में? क्या चारा है उनके पास?
7: किसको
4: पता है कि किस तरह, अगर नगर निगम वहां का फायर सेफ्टी नॉर्म्स को दरकिनार करने वाले इस तरीके के कंस्ट्रक्शन को जारी रखता है वहां पर, उन पर कार्रवाई नहीं करता है, माँ बाप जाकर कहां से ढूंढेंगे नौकरी? ढूंढेंगे कि फायर सेफ्टी नॉर्म्स जाकर चेक करेंगे किसी इमारत में?
7: सारी चीज,
4: हजारों बच्चे दिल्ली के अलग अलग इलाकों में पढ़ने के लिए आकर बैठ जाते हैं, देश के हर शहर में इस तरीके के लोग दिखाई देते हैं जो हॉस्टल में रह रहे हैं, पता नहीं वहां पर फायर सेफ्टी नॉर्म्स को फॉलो किया गया है कि नहीं किया गया है। लेकिन और एक बड़ा सवाल, क्योंकि
7: ये पुलिस किस लिए है, नगर निगम किस लिए है, आप जरा सा रोड पे खुदाई करके देखिए सारे डिपार्टमेंट इकट्ठे हो जाएंगे, उनको कैसे पता लग जाता है ये गलत काम हो रहा है और आपको ये इतना बड़ा जो गलत काम हो रहा है वो नहीं दिख रहा आपको? बड़े शर्म की बात है। और मैं कह रहा हूं आपको कि आप ये जो रिटायर हो गए ना और जो अभी सर्विस में
4: है, और ये लखनऊ का पॉश इलाका है, ये लखनऊ का पॉश रिहायशी इलाका है, उसके बावजूद लखनऊ नगर निगम को इस बारे में भनक भी नहीं थी। और इसीलिए दीक्षु कुकरेजा जी, सबसे बड़ा सवाल, इस देश में नई सरकार आने के बाद, दीक्षु कुकरेजा जी, नई सरकार आने के बाद स्मार्ट सिटीज की बड़ी चर्चा हो रही थी, जब तक इस तरीके के हादसे होते रहेंगे स्मार्ट सिटी की बात हम कहां से कर पाएंगे? कैसे ये स्मार्ट सिटी में ये सारी चीजें कवर नहीं होती है जबकि इस देश में अर्बनाइजेशन रैपिडली बढ़ रहा है?
8: बिल्कुल साहिल जी, और मैं ये कहूंगा कि सबसे बड़ी अगर हम सिस्टमिक पहले बात करें तो वो ये है कि हमारे देश में जो एक विकसित भारत की हम बात कर रहे हैं, यहाँ पे ह्यूमन लाइफ की वैल्यू क्या है? कोई वैल्यू नहीं है। और अगर हम प्लानिंग की इंपॉर्टेंस दें सिटीज की या स्मार्ट सिटी की बात करें, तो आपकी आज की चर्चा में देख लीजिए, एक प्लानर को फाइनली वॉइस मिलता है राइट एट द एंड आफ्टर हाफ एन आवर ऑफ लिस्टिंग टू सेम जो पॉलिटिकल स्लग फेस्ट हम हमेशा सुनते रहते हैं, एक पार्टी दूसरे पे आरोप लगा रही है। इतने ट्रेजिक हादसे के बाद कम से कम हमें ये सोचना चाहिए, हमारी लीडरशिप जो प्रवक्ता सामने आ रहे हैं पार्टी के, वो ये बात करें कि आगे हम कैसे इस चीज को, ताकि दोबारा ना ये हो, उसके लिए कुछ बात करी जाए, बजाय एक दूसरे को ब्लेम करने की। जब तक ये माइंडसेट रहेगा, कैसे देश में सुधार आ सकता है, कैसे इन चीजों पे हम ध्यान दे सकते हैं। और जहां तक की स्मार्ट सिटी की मैं बात करूं, सबसे पहले मैं कहूंगा कि स्मार्ट सिटीजन हमें क्रिएट करने हैं। सिर्फ हम टॉप डाउन पॉलिसी पे चलें और सोचें हमारी सरकार ही सब कुछ हमारे लिए करेगी, उससे देश स्मार्ट नहीं होता। अब हमारी आंखों के सामने अनऑथराइज कंस्ट्रक्शन होती है, अनऑथराइज इलीगल यूज पे, ऑक्यूपेंसी पे बिल्डिंग चलती है। हम क्यों नहीं उस चीज के ऊपर शोर करते, क्यों नहीं उस टाइम पे आप जैसे प्राइम मीडिया ग्रुप्स इस चीज पे ध्यान दें। तो मेरा कहने का ये मतलब है, ऑल ऑफ अस समवेयर और द अदर हम इस चीज को नहीं उतनी इंपॉर्टेंस दे रहे, जब तक बड़े बड़े और भयानक हादसे नहीं उठ के आते हमारे सामने। तो हम सभी को सोचना है कि हम किस तरीके से कंट्रीब्यूट करें। और जहां तक की स्मार्ट सिटी की बात कर रहे हैं जी,
4: और एक बात मुझे पूछना है आपसे, आप स्मार्ट सिटी पर जवाब दीजिए, मुझे एक बात आपसे पूछनी है। आपने अनऑथराइज कंस्ट्रक्शन की बात करी और आपने कहा कि अनऑथराइज कंस्ट्रक्शन के बारे में आवाज क्यों नहीं उठती, क्यों नहीं उसको लेकर लोग सड़क पर उतरते हैं और कहते हैं कि इस तरीके का इलीगल कंस्ट्रक्शन, अनऑथराइज कंस्ट्रक्शन हमारे इसमें नहीं चाहिए, गैर कानूनी चीजें नहीं चलनी चाहिए। लेकिन सवाल यहां पर यह भी उठता है, आपको नहीं लगता कि इसके पीछे कोई भ्रष्टाचार है? क्योंकि जितना अनऑथराइज कंस्ट्रक्शन होगा उतना ही राजनीतिक भ्रष्टाचार को मौका मिलेगा, सही है ना?
8: नहीं, आपका सवाल बहुत जाहिज है, क्योंकि देखिए अगर आप हमारे बिल्डिंग बायलॉज देखें, अभी नेशनल बिल्डिंग कोड जो नया निकल के आया, 2016 वाले की बात हो रही थी अभी आपके चैनल पे, 2026 अब नया कोड भी निकल आया है। तो कोड वाइज हम इस दुनिया में, मैं ये कह सकता हूँ कि बहुत एडवांस्ड है, ब्लैक एंड व्हाइट में सब कुछ लिखा हुआ है, प्रैक्टिकली कुछ होता नहीं है। तो जो चीजें इनकॉर्पोरेट करनी पड़ती हैं डिजाइन में वो करी जाती है। आज की डेट में मैं लखनऊ की सबसे ऊंची इमारत बना रहा हूँ, अयोध्या की मैंने पूरी जब स्मार्ट प्लानिंग करी थी, पूरी सिटी का विजन क्रिएट किया था, वही जो अभी चर्चा हो रही थी नंगी तारों को हटाने का, ये सब विजन डॉक्यूमेंट्स में हमने क्रिएट किए थे। लेकिन रियलिटी ये है कि हम आंखें बंद कर देते हैं और जो चीज सुधार लाना है उस पर ध्यान नहीं दिया जाता। जहां तक कि फायर सेफ्टी की बात करें, कोई ऐसा दुनिया का शहर नहीं, चाहे वो वॉशिंगटन डीसी, सिंगापुर या टोक्यो या कोई भी लंदन आप शहर पकड़ें, जहां बिल्डिंग में आग नहीं लगती। इंपॉर्टेंट चीज ये होती है एज डिजाइनर भी समझना और एज सिटीजन समझना कि अगर आग लग जाए तब हमें क्या करना चाहिए। उसके लिए मेजॉरिटी लोग जो हादसे होते हैं मौत के, वो आग से नहीं होते, वो स्मोक से होते हैं। तो इसलिए जो अभी आपने भी मेंशन किया, वेंटिलेशन सिस्टम, कंपार्टमेंटेशन सिस्टम, की बिल्डिंग को अगर उसके एक हिस्से में आग लगे तो वो आग फैले ना, बिल्डिंग को कंपार्टमेंट कैसे किया जाए, स्मोक को एक्सट्रैक्ट कैसे किया जाए, ये सब हमारे नियम हैं, सब कोड्स नेशनल बिल्डिंग कोड में हैं। लेकिन इन पे ध्यान नहीं दिया जाता, इलीगल चीजें बना दी जाती हैं और उसके लिए सबकी इन्वॉल्वमेंट है कि वो चीज को फिर हम आंखें बंद करके एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो
4: पेपर पे सारी चीजें मौजूद है, हमारे एक्सपर्ट्स भी इस बात को बताने की कोशिश कर रहे हैं, ब्लैक एंड व्हाइट में सफेद पेपर पर सारी चीजें आपको लिखी हुई मिल जाएंगी। लेकिन जब इंप्लीमेंटेशन की बात आती है तब वहां पर राजनीति घुसती है या राजनीतिक इच्छा शक्ति का सवाल भी उसमें खड़ा होता है। और एक सवाल इसमें होता है, जब आग लगने के बाद कार्रवाई होती है, जरा एक बार नजर डालते हैं कि इससे पहले जब बड़े बड़े हादसे हुए थे तब कितने लोगों पर कार्रवाई हुई थी और आज उसका क्या हाल है। तमिलनाडु में 2014 में कुंभकोणम स्कूल में 94 बच्चे भस्म हो गए थे, 5 साल की सिर्फ सजा हुई है जिन्होंने नियमों का फॉलो नहीं किया है। 2017 में मुंबई के कमला मिल्स में आग लगी थी, आज तक वो मामला चल रहा है, कोई सजा नहीं हो पाई है। 2018 में देखिएगा, इसी लखनऊ में चार बाग होटल अग्निकांड में 5 लोग मारे गए थे, आरोपी जमानत पर बाहर चल रहे हैं। 2019 में सूरत में तक्षशिला कोचिंग सेंटर में 22 बच्चे बेमौत मारे गए थे, सारे आरोपी जमानत पर इस वक्त बाहर है। 2019 में ही दिल्ली के अनाज मंडी में इसी तरीके का हादसा हुआ था। 43 गरीब मजदूर उसमें स्वाह हो गए थे, लेकिन सजा आज तक नहीं मिल पाई। और 2022 में लखनऊ के लेवाना स्वीट होटल में 4 लोग मारे गए थे, आज तक उसकी सजा नहीं हो पाई है। ये सच्चाई है इस देश में, जिस तरीके से फायर सेफ्टी नॉर्म्स को फॉलो किया जाता है और उसके बाद एक्शन जो फॉलो किया जाता है। नजर बनाए रखेंगे कैसे कार्रवाई होती है इस पूरे हादसे पर। फिलहाल लेंगे एक ब्रेक, ब्रेक के बाद भी खबरें जारी रहेंगे, आप देखते रहिए।

ऊंचाई पर बने रहने के लिए जरूरी है इरादों का प्योर होना। कैलेंट एडवांस बनाते हैं ऐसा स्टील जो अंदर से है ज्यादा प्योर, ज्यादा मजबूत। कैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो।

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: जब धान के खेतों में जिद्दी खरपतवार दे चुनौती तो हर असली हीरो उठाता है एक ही हथियार, क्रिस्टल क्रॉप का सिकोसा। खरपतवार मारे उगने से पहले भारत का सबसे ताकतवर धान का खरपतवार नाशक।
3: नहीं, इस घर में कुछ है जो टूटता नहीं।
4: ये पिलर कभी नहीं टूटेगा, रुंगटा स्टील TMT से बना।
5: रुंगटा नहीं तो घर स्ट्रॉन्ग नहीं, रुंगटा स्टील TMT बार एकदम सॉलिड।
6: In association with Hint, बड़े आराम से Sharda University, the world comes together at Sharda University. Where are you? Vimal, bolo zuba kesri.
7: Cool, stylish fans. Enhance home decor with beautiful fans.
8: Punjab National Bank, भरोसे का प्रतीक।
9: 20 साल से India Today Media Institute देश को दे रहा है बेहतरीन पत्रकार। अगर आपका लक्ष्य भी है पत्रकारिता तो फिर सोचना क्या। रजिस्टर करने के लिए विजिट करें www.indiatodaymediainstitute.in या 9560065465 पर कॉल करें।
10: पच्चीस सालों से जहां टिकी है देश की नजर, मेरे साथ फिर से शुरू हो रहा है वही सफर। ये खबरें 7 तक, देखते रहिए आज तक।

0: गए, पापा बचाओ कैसे भी करके, आग लग गए।
1: जरा सोच कर देखिए, जब एक पिता के पास उसके बेटे का फोन आया हो और मौत को सामने देखकर वो आग से बचाने की गुहार लगा रहा हो, बेबस पिता के पास बदहवासी में हादसा स्थल तक जाने के अलावा कोई चारा ना बचा हो, और वो अपने सामने अपने बेटे की जान आग की लपटों में जाता हुआ देख रहे हो। ये सब सोच कर ही दिमाग सुन्न हो जाता है, दिल धक से बैठ जाता है, और जिस शख्स ने इसे अपनी आंखों के सामने झेला होगा उसके लिए तो वो हर लम्हा अब जिंदगी भर का दर्द है, कभी ना खत्म होने वाली यातना है। लखनऊ का लाक्षा गृह लापरवाहियों की आग में जल रहा था और अपना भविष्य बुनने आए बच्चों की सांसें घुट रही थी, बच्चे चीख रहे थे, जिंदगी बचाने के लिए निकलने का एक अदद रास्ता तलाश रहे थे। चारों तरफ आग की लपटें थी और धुएं का गुबार मुश्किलें बढ़ाता जा रहा था। कोई बाथरूम में बचने की जद्दोजहद कर रहा था तो कोई ऊपर से कूद कर अपनी जान बचाने का संघर्ष। किसी का बेटा चला गया,
2: मेरा बेटा भी आज जिंदा होता, मेरा बेटा।
1: किसी का भाई चला गया,
3: मेरे भाई ने क्यों नहीं बचाया।
1: किसी के अरमान राख हो गए तो किसी के सपने जलकर खाक हो गए। कई बच गए लेकिन सबकी किस्मत एक जैसी नहीं होती। बदकिस्मती की आग इतनी बदहवास थी कि एक के बाद एक 15 बच्चों को लील गए। इन्हीं बदकिस्मतों में शामिल थे बाराबंकी के शाहजान और अम्मा। आग लगने पर शाहजान ने अपने पिता को फोन भी किया था, पापा मुझे बचा लो। बेटे की आवाज सुनकर उनके पिता महज 10 मिनट में कोचिंग सेंटर भी पहुंच गए, लेकिन तब तक आग की लपटें और विकराल हो चुकी थी। पिता ने अंदर जाने की कोशिश की, लोगों से मदद मांगी, मिन्नतें की, लेकिन आग की लपटों के सामने हर कोई बेबस था। आखिरकार शाहजान और अम्मार समेत 15 लोगों की जान चली गई। बाराबंकी के दोनों परिवारों में अब मातम पसरा है। इकलौते बेटे शाहजान को खोने के बाद मां सदमे में है और पिता का रो रो कर बुरा हाल है। कानपुर के संयम और सूरज के परिवारों की कहानी भी रुला देगी। गोविंद नगर के रहने वाले 28 साल के संयम विज और बर्रा 7 के रहने वाले 25 साल के सूरजभान सिंह इस हादसे में अपनी जान गंवा बैठे। दोनों दोस्त थे और एक ही एनिमेशन स्टूडियो में काम करते थे। दोनों के पिता पहले ही गुजर चुके हैं। संयम के परिवार पर तो जैसे मुश्किलों का पहाड़ टूट पड़ा है। आज यानी मंगलवार को उनकी दादी की 13वीं होनी थी। सब उनके आने का इंतजार कर रहे थे, लेकिन उनकी जगह उनकी मौत की खबर आ गई। उधर सूरजभान के परिवार पर भी गमों के बादल छाए हैं। वो नौकरी की वजह से लखनऊ में रहते थे और हर हफ्ते घर लौटते थे, लेकिन परिवार का इकलौता सहारा बने सूरजभान अब कभी नहीं लौटेंगे। अब लखनऊ के 27 साल के नीलेश कुमार के परिवार की दर्द भरी दास्तान सुनिए। नीलेश कुमार अपने माता पिता के पैर छूकर घर से नौकरी के लिए निकले थे, लेकिन अब कभी वापस नहीं लौटेंगे। पिता की आंखों में आंसू है और माँ अपने बेटे के शव को देखकर बिलख रही है। यह हादसा उन्हें जिंदगी भर का दर्द दे गया है। लापरवाही की आग में जलकर 15 लोग इस दुनिया से चले गए। उनके परिवारों में अब सन्नाटा पसरा है और गमों का ऐसा पहाड़ टूटा है जिसके नीचे जिंदगी भर की खुशियां दबी रहेंगी। बाराबंकी से सैयद रेहान मुस्तफा, कानपुर से सिमर चावला और लखनऊ से समर्थ श्रीवास्तव के साथ आज तक ब्यूरो।

0: सागर, नीलेश, अनामिका, संयम, अनुषा, सुखमनी, आदित्य, ज्योति, भविष्य, अब्दुल, सूरज, जैनेल, अम्मार, सुमल्या, सारे के सारे नौजवान। सारे के सारे ऊर्जावान, सब के सब अब सारे सपने झुलस गए, सारी उम्मीदें टूट गई, 15 परिवारों के चिराग बुझ गए। इनका क्या कसूर था? अपनी हिफाजत का भरोसा करना, अपनी हुकूमत पर भरोसा करना, अपने सपनों, तकदीर, परिवार, रोटी रोजगार के लिए जान की फिक्र छोड़कर सिस्टम पर भरोसा करना? क्या इनका कसूर था उस सिस्टम पर भरोसा करना जिसका भ्रष्ट होना आसान, जिम्मेदार होना मुश्किल, जो जानलेवा बनता रहा महफूज नहीं बन सका? फिर जब 15 चिताएं एक दिन सुलगती है तो वही उत्तर समेत दागा जाने वाला यक्ष प्रश्न, जिम्मेदार कौन? आग लगे ऐसे सिस्टम को जो इंसानों को निगल जाता है, किसी की कोख, किसी की मांग, किसी का आंगन, किसी की जिंदगी, फिर भी सिस्टम यही है, ये तो ऐसे ही चलेगा। ऐसे ही कॉम्प्रोमाइज सिस्टम में लाक्षाग्रह बनेंगे, ऐसे ही करप्ट सिस्टम में आगे लगेंगे, ऐसे ही बेकसूर बेमौत मरेंगे। हुकूमत जांच कराएगी, गिरफ्तारी कराएगी, मुकदमा चलेगा, जमानत होगी, लेकिन सजा वो भी जाए तो क्या? डरता कौन? क्योंकि यही तो सिस्टम है जहां जुर्म ही नहीं डर भी मैनेज हो जाता है। वरना क्या दिल्ली, क्या गाजियाबाद, क्या लखनऊ, क्या कानपुर, क्या प्रयागराज, क्या सहारनपुर, मजाल कहीं भी नरसंहार वाला ये सिस्टम आउट ऑफ सिस्टम हो? दिल्ली में सरेआम हजारों कोचिंग चल रहे हैं, बिजली और केबल तारों का मकड़ जाल, दड़बे नुबा इमारतें, दो हाथ सकरी गलियां, आग लगे तो कोई बच के दिखा दे। कानपुर में तो दर्जन भर से अधिक ब्रांडेड कोचिंग वालों के दरवाजे पर सीलिंग हो गई, क्योंकि सिस्टम एक्शन में आया है मौतों के बाद, बच्चे कुछ दिनों के लिए यहाँ बाल बाल बचे। गाजियाबाद में भी सिस्टम जाग गया, काम कर गया तो जान बचेगी, वरना हादसे का इंतजार कीजिए। वाराणसी में भी जांच पड़ताल शुरू है, अब तक जोखिम में चल रही जान आगे कुछ दिनों तक महफूज रहेगी। प्रयागराज में भी बच्चों की फिक्र सिस्टम को है, शायद हालात सुधर जाए। उत्तर भारत से दूर दक्षिण भारत तक शहर शहर यही हालात, कहां तक गिनेंगे? ये सिस्टम सुधरता नहीं, और अगर नहीं सुधरा तो हादसे फिर होंगे, फिर SIT बैठ जाएगी। जांच तो होगी, जांच होगी तो पता चलेगा रिहायशी मकान में दफ्तर दुकान कैसे बन गए, मौत की सौदागरी करके मुनाफा वसूली में कौन कौन शामिल था, लखनऊ विकास प्राधिकरण क्या कर रहा था, नगर निगम क्या कर रहा था, पुलिस क्या कर रही थी, दमकल विभाग वाले क्या कर रहे थे, बिजली विभाग क्यों सन्नाटे में था, और तो और पार्षद से लेकर मेयर तक, विधायक से लेकर सांसद तक, और मंत्री से लेकर मुख्यमंत्री तक, सारा सिस्टम एक साथ क्यों फेल हो गया, ये सब जांच के बाद ही पता चलेगा। फिर रिपोर्ट आ जाएगी, मुकदमा होगा, जमानत होगी, बात रफा दफा। वरना इसी सिस्टम में 2014 में तमिलनाडु में कुंभकोणम स्कूल के अंदर 94 बच्चे जलकर मर गए, सजा क्या हुई? 5 साल की जेल। 2017 मुंबई के कमला मिल्स पब अग्निकांड में 14 लोग मरे, सजा आज तक नहीं मिली। 2018 में इसी लखनऊ में चारबाग होटल अग्निकांड में 5 लोग मर गए, आरोपी जमानत पर मौज कर रहे हैं। 2019 सूरत में तक्षशिला कोचिंग में 22 बच्चे बेमौत मरे, सारे आरोपी जमानत पर हैं। 2019 में ही दिल्ली के अनाज मंडी में फैक्ट्री की आग में 43 गरीब जलकर मर गए, सजा अब तक किसी को नहीं मिली। 2022 में फिर इसी लखनऊ के लेवाना स्वीट होटल में 4 लोग मरे, सजा अब तक नहीं मिली। और सजा मिल भी गई तो सबसे निचले पायदान के उसी वोटर को मिलती है जो हर हादसे का सबसे बुनियादी जिम्मेदार होता है, क्योंकि इस भयानक सिस्टम को जिम्मेदार ठहरा देना जमहूरी निजाम के खिलाफ बगावत हो जाएगी। ये सिस्टम कभी खुद को जवाबदेह नहीं बना सकता, क्योंकि सिस्टम में सबका सिस्टम ठीक है, बस हिंदुस्तान की आम आवाम बेगुनाह सामान्य वोटर टैक्स पेयर इस सिस्टम से दूर है और वही बेमौत मारा जाएगा, 5 लाख का मुआवजा पाएगा, गम के आंसू पोछेगा और अगले हादसे के लिए छोड़ दिया जाएगा। आज तक ब्यूरो।
1: एक एनकाउंटर जिस पर अपनों के बीच ही घिर गई है सम्राट सरकार, एक एनकाउंटर जिस पर बीजेपी के भीतर ही मोर्चा बंदी हो रही है। 5 दिन पहले यानी 17 जून को भरत तिवारी पर बिहार पुलिस गोलियां बरसाती है और अब 5 दिन बाद खुद बिहार पुलिस और बिहार सरकार पर सवालों की बौछार हो रही है। एक बड़ा और संगीन सवाल भरत तिवारी के इस वीडियो की बुनियाद पर भी हो रहा है जो अभी अभी सामने आया है। तो क्या भरत तिवारी को अंदेशा था कि उसकी मौत करीब आ रही है? क्या उसे एहसास हो गया था कि वो इस तरह एनकाउंटर में मारा जाएगा? भरत तिवारी की शख्सियत और अतीत विवादों से भरा है, इसलिए इस वीडियो को लेकर भी दावा जोखिम भरा हो सकता है। बीजेपी के भीतर इस एनकाउंटर को लेकर किस कदर बेचैनी है ये आप सम्राट सरकार के 2 मंत्रियों के बयानों से समझ सकते हैं। इस एनकाउंटर पर सवाल उठाने वाले, आक्रोश जाहिर करने वाले सिर्फ ये 2 मंत्री ही नहीं है, बीजेपी नेताओं की लंबी फहरिस्त है जो खुलकर नाराजगी जता रहे हैं। रोहित सिंह, पटना, आज तक।

लखनऊ अग्निकांड की एसआईटी जांच शुरू। पुलिस दमकल विभाग के अधिकारियों के दर्ज किए जा रहे बयान। अखिलेश ने सरकार को घेरा, कहा योगी राज में पास सभी नक्शों की हो जांच। राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में एसआईटी ने यूपी सरकार को सौंपी प्रारंभिक रिपोर्ट। फिलहाल किसी को क्लीन चिट नहीं, कुछ कर्मचारियों पर केस की सिफारिश। नीट पर आज तक से बोले

0: बच्चे थे, जो लोग थे, वो इसी छोटे से रास्ते से, और कोई रास्ता था ही नहीं। सुरक्षा मानकों को दरकिनार करके ये बनाया गया।
1: कोई देखने वाला नहीं यहाँ की, आके देख सके, कौन जिम्मेदार है? सरकार जिम्मेदार है।
2: परिवार में कोई दूसरा कमाने वाला नहीं था, इकलौता बच्चा था।
3: ये सबसे बड़ी दर्दनाक घटना हुई कि माँ के सामने बेटा अंदर।
4: मेरे भाई के क्यों नहीं बचाए? मेरे भाई के क्यों नहीं बचाए?
5: अभी तो जो देखा है वो FSL के साथ, पुलिस वालों के साथ, डेवलपमेंट अथॉरिटी सबके साथ मिल बैठ के उसका फिर पता करेंगे।
6: घटना के सभी पहलुओं पर गहराई से जांच करके प्रस्तुत करेंगे।
7: नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। आंसू है, गम है, गुस्सा है, बस अगर कुछ नहीं है तो जवाबदेही नहीं है। लखनऊ अग्निकांड में 15 मौतों पर पूरे देश में उबाल है। उत्तर प्रदेश सरकार की SIT जांच में जुट गई है। देश के अन्य शहरों में फायर सेफ्टी ऑडिट शुरू हो गया है, लेकिन सवाल यही है कि क्या दोषी पकड़े जाएंगे? क्या अगली बार ऐसा हादसा होने से यही सरकारें, यही पुलिस, यही प्रशासन रोक पाएगी? बड़ा सवाल यह है कि क्या हमारे देश में इमारतों में बस एक चिंगारी कई घरों के चिराग बुझा सकती है? क्यों शहर शहर ऐसी इमारतें हैं जहां बिल्डिंग सेफ्टी रूल्स, सुरक्षा के नियमों का पालन नहीं होता? क्यों इमारतों में आग बुझाने के सही इंतजाम नहीं है? आखिर जो भारत विकसित होने के सपने देख रहा है, उस भारत में लोगों को जान माल की गारंटी क्यों नहीं मिलती? क्या सिस्टम सिर्फ अपने मुनाफे की सोचता है, आम लोगों की जान की परवाह नहीं करता? इसीलिए आज हल्ला बोल में सीधा सवाल, भ्रष्टाचार की ये आग बुझती क्यों नहीं? हल्ला बोल की ये बहस शुरू करें, उससे पहले ये रिपोर्ट देखिए। फिर शासन जगा है, प्रशासन जगा है, चीख गूंजी है, आंख सूजी है, संवेदना के बोल फूटे हैं।
8: मेरा बेटा भी आज जिंदा होता, मेरा बेटा।
7: कार्रवाई होने के ढोल बजे हैं। दिल चीरने वाला हादसा हुआ है। हाँ, लखनऊ की फिजा में आज आंसुओं पर हलचल दिखी है, लेकिन चिंगारी की तरह सुलगता मुद्दा तो वही है कि काश कानून अपना काम करता होता, सिस्टम जागरूक हुआ होता, भ्रष्टाचार और लापरवाही पर चाबुक चली होती, तो कल ये लपटे नहीं होती, वो 15 जाने सलामत रही होती। लखनऊ अग्निकांड की परतें जब एक एक कर खुल रही है तो साफ नजर आता है कि ये हादसा नहीं, हत्या है।
0: एक बॉक्स नुमा ये बिल्डिंग है, इस बॉक्स नुमा बिल्डिंग के अंदर ही लोग सिर्फ इसी से, जो बच्चे थे, जो लोग थे, वो इसी छोटे से रास्ते से, और कोई रास्ता था ही नहीं, ये इस रास्ते से अंदर जाना, बाहर जाना। और जब आग लग गई तो उसकी वजह से धुएं ने और आग ने अफरा तफरी मच गई और लोग फंस गए। मतलब 3 फ्लोर की ये बिल्डिंग, उसके बाद ये बेसमेंट, टोटली अगर कहा जाए तो सिर्फ और सिर्फ सुरक्षा मानकों को दरकिनार करके ये बनाया गया।
7: लखनऊ में 15 हत्याओं का सबब बने इस अग्निकांड की जांच यूपी सरकार की SIT कर रही है। SIT को 7 दिनों में रिपोर्ट देनी है।
5: सब सारे फ्लोर्स पे गए हैं और जो घटना स्थल है वो भी देखा है, लेकिन तो अभी कुछ निर्णायक बताने की स्थिति में नहीं, क्योंकि अभी सारी जांचें हो रही हैं FSL वगैरह का। अभी तो जो देखा है वो FSL के साथ, पुलिस वालों के साथ, डेवलपमेंट अथॉरिटी सबके साथ मिल बैठ के उसका फिर पता करेंगे।
6: घटना के सभी पहलुओं पर गहराई से जांच करके प्रस्तुत करेंगे और कोई भी चीज ऐसी नहीं होगी जिसको इसमें रह जाए, कोई स्टोन अनटर्न्ड नहीं रहेगा। हम लोग पूरी तरह से जांच करके फिर पता।
7: अग्निकांड में दर्ज FIR में 4 नामजद आरोपी हैं। बिल्डिंग के कोओनर वीरेंद्र शुक्ला समेत तुषांक कृष्ण, जायसवाल रामकृष्ण उपाध्याय और सुरेश कुमार के खिलाफ BNS की धाराओं में केस दर्ज हुआ है। जिस इमारत

0: में आग लगी, उसका नक्शा रिहायशी मानकों के मुताबिक पास हुआ, फिर कमर्शियल गतिविधियां शुरू हुई। जिस इमारत में हादसा हुआ वहां 20 किलोवाट का कमर्शियल बिजली कनेक्शन स्वीकृत था। जांच में सामने आया है कि वास्तविक बिजली लोड बढ़कर 34.10 किलोवाट तक पहुंच गया था। अप्रैल महीने में इमारत का लोड 24.30 केवीए दर्ज किया गया था, जो जून में और बढ़ गया। जानकारों के मुताबिक स्वीकृत क्षमता से कहीं अधिक लोड होने से तारों और ट्रांसफार्मर पर भारी दबाव था। भीषण गर्मी और ओवरलोडिंग के कारण शॉर्ट सर्किट की आशंका कई गुना बढ़ गई। बात सिर्फ इतनी भर नहीं है, लखनऊ के अलीगंज की ये इमारत 2016 में ध्वस्तीकरण की जद में आई थी। मई 2016 में गैरकानूनी निर्माण के चलते बिल्डिंग को गिराने का आदेश पास हुआ, लेकिन जुलाई 2016 में ये आदेश निरस्त हो गया। सोचिए किस किस स्तर पर नियमों को ताक पर रखा गया होगा। हादसे के बाद बगल की इमारत में छेद कर कुछ लोगों की बचाने की कोशिश हुई। जो मौतें हुई हैं उसकी वजह जलना नहीं बल्कि दम घुटना है।
1: 15 की 15
2: निकल नहीं पाए, कैसे कूदे बाहर, कुछ कैसे निकल।
1: आई थिंक ये मिनटों का खेल हो, 11 लोग तो निकल आए, बाकी 15।
0: हर हादसा अपने पीछे चुभने वाली कहानियां छोड़ जाता है। इस आग में जल गए नीलेश और अनामिका एक दूसरे के साथ जिंदगी बिताने के ख्वाब सजा बैठे थे। अब्दुल रहमान अपने परिवार के इकलौता सहारा थे। दिव्यांग पिता और बहन की जिम्मेदारी पिछले कई वर्षों से उनके कंधों पर थी। सीतापुर का आदित्य श्रीवास्तव अपने पीछे रोते बिलखते माँ बाप छोड़ गया है। सिर्फ 15 मौतें नहीं हुई है, 15 परिवारों पर दुखों का आसमान गिरा है।
3: मेरा भाई मुझे लगता है ऐसी स्थिति में फंस गया है कि वो कॉल ही नहीं कर पाया, वरना वो फोन जरूर करता मुझे कि भैया कि ऐसी ऐसी दिक्कत है, वो फोन कर ही नहीं पाया।
4: हम लोग चाहते हैं इस पर जांच हो और ज्यादा से ज्यादा परिवार को मुआवजा दिया जाए, ताकि उसकी माँ की भी कोई ऐसी स्थिति नहीं है और परिवार में कोई दूसरा कमाने वाला नहीं था, इकलौता बच्चा था।
0: लखनऊ हादसे के बाद क्या यूपी, क्या देश के अन्य शहर इमारतों का सेफ्टी ऑडिट कर रहे हैं? कानपुर और इंदौर में कुछ कोचिंग संस्थानों पर सीलिंग की गई है, लेकिन सवाल वही है कि क्या व्यवस्था बदलेगी? आज तक ब्यूरो। जो खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं उसमें सुषमा खरकवाल जी हमारे साथ मेयर लखनऊ की जुड़ रही हैं, सोनिया विज मृतक संयम की मां है। मेरी पूरी मतलब मैं क्या कहूं मैम, सोचकर सिर्फ कल्पना करके हम लोगों की रूहें कांप रही हैं कि आप पर इस वक्त क्या बीत रही होगी। सोनिया जी मतलब कोई शब्दों में नहीं बता सकता है, कोई माँ कल्पना नहीं कर सकती है कि कैसे इस वक्त आपका हृदय फट रहा होगा। मतलब सोनिया जी मेरी पूरी संवेदनाएं आपके साथ हैं, हम सब की आज तक की तरफ से संवेदनाएं आपके साथ हैं। सुधीर सिंह भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, जो कि ऐसे ही एक सूरज जी जिनकी इसमें मृत्यु हो गई उनके बड़े भाई हैं। विक्रम सिंह साहब पूर्व डीजीपी उत्तर प्रदेश के हमारे साथ हैं। अनुराग भदौरिया प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के हैं। सत्यप्रकाश मिश्रा जी राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। लेकिन सबसे पहले मैं संयम की मां के पास जाना चाहती हूं, क्योंकि सोनिया जी क्या कहिएगा, आज पूरा देश आपको सुन रहा है।
5: मेरा बच्चा, मेरा बच्चा चला गया, मेरी जिम्मेदारी, मेरा जीने का सहारा था सैया, मेरा जीने का सहारा था सैया, मेरी जिम्मेदारी कौन निभाएगा, मेरा जीने का सहारा था। अरे क्या बताऊ, मेरा बच्चा तो चला गया, मेरी जिम्मेदारी कौन करे, उसको तो कोई ला नहीं पाएगा। अरे भगवान, मेरा बच्चा, मेरा
0: बच्चा। कि आपसे मैं क्या बात करूं, क्या पूछूं, मतलब लेकिन आपके आंसू, आपकी सूजी हुई आंखें बता रही हैं कि आपके लिए कितना मुश्किल समय है। हम लोग बस दूर बैठे कल्पना कर सकते हैं, लेकिन सिर्फ इसलिए आज आपसे बात कर रहे हैं मैम, ताकि आप लोगों की आवाज दब ना जाए। कहीं कहीं अलग अलग जगहों पर घटनाएं होती हैं, बस नंबर बन के रह जाता है, 19 लोगों की यहां जान गई, 21 लोगों की वहां जान गई, किसी का संयम, किसी का अपना, किसी का बेटा चला जाता है। इसीलिए सोनिया जी आज आप आ रही हैं सामने बात करने के लिए, तो हम तो आपकी हिम्मत की भी बहुत दाद देते हैं। आज क्या चाहती हैं आप सरकार से, प्रशासन से, क्या चाहती हैं?
5: मेरा बच्चा तो चला गया, मेरी जिम्मेदारियां कौन निभाएगा? बस मेरी एक ही माँ की गुहार है, जासन और प्रशासन से जो मेरे लिए हो सके वो कर दो। मेरी जिम्मेदारियां कौन निभाएगा? मेरा बच्चा तो चला गया, मैं उसके बिना कैसे जीऊंगी? उसके बिना मैं कैसे जीऊंगी? बस मेरा जीने का सहारा था सही है, मेरा जीने का सहारा सही है, मेरा जीने का सहारा था सही है, मैं कैसे चलूंगी उसके बिना? बहुत सी जिम्मेदारियां जो वही पूरी करता। आए मेरा बच्चा।
0: सोनिया जी कितनी उम्र थी संयम की? आपसे क्या कहता था? आखिरी बार क्या बात हुई थी? क्या सपने थे उसके?
5: सपने तो उसके बहुत बड़े थे मैम, क्या बताया। मैं इस समय कुछ बयान नहीं कर सकती, बस मेरे मैं बयान नहीं कर पाऊंगी। उम्र उसकी 27 साल थी। हाय मेरा बच्चा, मेरा छोटा सा सही क्या उसका बताऊं? उसकी उम्र छोटी है अभी, मेरा बच्चा।
0: सोनिया जी क्या कहता था संयम आपसे? कुछ कुछ बताना चाहेंगी? कुछ कैसे अपने बेटे को याद कर रही हैं? कुछ कहना चाहेंगी?
5: बच्चे को कभी भूल पाऊंगी अपनी? कैसे नहीं भूल पाऊंगी अपने बच्चे को? कोई मैं कहता क्या था, वो तो उसकी जिम्मेदारी अपने पूरा करता था। बस आए मेरा बच्चा था, मैं क्या बयान करूं क्या ना बयान करूं? इस स्थिति में नहीं हूँ मैं, बिल्कुल इस स्थिति में नहीं हूँ मैं, आपसे क्या कहूँ?
0: बिल्कुल सोनिया जी, हम आपका दर्द समझते हैं। बहुत धन्यवाद आपका, कोटि कोटि धन्यवाद। आपने ये मुद्दा उठाया, आप देश के सामने आने की हिम्मत दिखा रही हैं। हम उम्मीद करते हैं कि संयम और उसकी आत्मा को इंसाफ मिले। बस यही कोशिश है, यही मुहिम है आज तक की, कि संयम और उसके जैसे जो अनछात्र वहां पर इस तरह से चले गए हैं। जी
5: मेरा जीने का सहारा बनाए, जो भी बनाए। मेरा बच्चा तो नहीं आ सकता, लेकिन कोई मेरा सहारा बने। बस मेरी एक यही अपील है सबसे, बस मेरा और कुछ नहीं। मेरा बच्चा तो नहीं आ सकता, लेकिन मैं कैसे जीऊंगी उसके बिना? बस मुझे यही समझ आ रही थी, उसके बिना कैसे?
0: हिम्मत रखिए सोनिया जी, हम सब आपके साथ हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, आप थोड़ा पानी पीजिए, आराम कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद सोनिया जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। संयम की माँ हमारे साथ थी, आपने उनकी बातों को सुना है। कोई मुआवजा, कोई जांच इनके संयम को वापस ला सकता है क्या? एक छोटा सा सवाल है। जिन लोगों ने अपनी आंखों पर पट्टियां बांधी ताकि ये संस्था यहां पर चलती रहे बिना सही परमिट के, बिना सुरक्षा के नियमों के, आज उनकी आंखों तक ये खबरें जानी चाहिए, आज उनके कानों तक क्या ये गूंज पहुंच रही है? और पहुंचेगी भी तो शायद एक दिन अपना कुछ कर लेंगे, इधर उधर भाग कर कुछ जगहों पर चेकिंग हो जाएगी, फिर वही गहरी नींद जिसमें पुलिस प्रशासन सरकारें सो जाती हैं। मतलब इससे ज्यादा दर्दनाक क्या हो सकता है कि बच्चे जिनकी उम्र सपने देखने की होती है वो कुछ सीखने जाए, कोचिंग सेंटर में पढ़ने जाए, एनिमेशन सीखने जाए, गेमिंग के लिए जाए, और वहां से वो लौटे ना घर। हमारे साथ सुधीर सिंह जी जुड़ रहे हैं जो कि सूरज सिंह के बड़े भाई हैं, दिखाइए उनको भी। और हमारे साथ सुषमा जी जुड़ रही हैं। सुषमा खरकवाल जी, आप मेयर हैं लखनऊ की, ऐसा हादसा क्यों हुआ? मतलब इस तरह से अवैध रूप से सही परमिशन के बिना ऐसी इमारतें चल रही हैं, बच्चों की जिंदगियां खतरे में डाली जा रही हैं, आप मेयर हैं, क्या वजह है?
6: नमस्कार, यह बहुत दुखद घटना है, इसमें मैं निशब्द हूं। एक मां का दर्द, जिस मां ने उसको जन्म दिया है उस मां के चिता के ही साथ वो दर्द समाप्त होगा। आज वो मां दर्द से तड़प रही है। मैंने शब्द नहीं है कहने के लिए, लेकिन मुझे माननीय मुख्यमंत्री जी पे पूरा विश्वास है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्वयं अपने कार्यक्रम कैंसिल करके आए हैं, और अब की बार मुझे पूरी उम्मीद है कि माननीय मुख्यमंत्री जी कोई कठोर से कठोर निर्णय इस पे लेंगे।
0: मतलब मुझे ये बताइए कि सुषमा जी, मेयर की भूमिका क्या होती है, मेयर का काम क्या होता है? ये जो काउंसलर्स होते हैं, ये जो एमसीडी चलता है, ये जो अलग म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन होगा लखनऊ का, जैसे यहाँ दिल्ली में एमसीडी है, इन लोगों का काम क्या होता है? इस तरह से अवैध तरीके से ये चल रहा था बिना सुरक्षा के नियमों के, आप लोग का काम क्या है मैम?
6: मेरा वहां पे, हमारा नगर निगम का काम सफाई, साफ सफाई का है, और कहीं अतिक्रमण है तो उसमें है। बाकी नक्शा पास करना लखनऊ विकास प्राधिकरण का काम है कि नक्शा कैसा बना है, नक्शा सही बना है कि नहीं बना है, ये नगर निगम का नहीं है।
0: पर इलीगल कंस्ट्रक्शन का तो काम आपका है ना मैम, तो कोई तो चेकिंग करने।
6: ये इनलीगल जो इमारतें बनती है ये एलडीए करता है इसको।
0: अच्छा, एलडीए करता है।
6: हाँ, एलडीए करता है।
0: तो मेयर का इसमें कोई भी भूमिका नहीं है?
6: मेयर का इसमें, नगर निगम की कोई भूमिका नहीं है। नगर निगम का ये सिर्फ ये है कि मैंने पता किया है कि 2014 में इसको कमर्शियल करके, हम लोगों अगर कमर्शियल है तो हम टैक्स ले लेते हैं, लेकिन अगर इनलीगल बना है, गलत तरीके से बना है,
0: यही तो है सुषमा जी। अगर कमर्शियल चल रहा था रेसिडेंशियल इलाके में, उसका टैक्स भी लिया जा रहा था, किसी ने जांच करने की जहमत नहीं उठाई कि ये कमर्शियल कैसे हो गया, कैरेक्टर कैसे बदल गया बिल्डिंग का?
6: नहीं मैम, ये नगर निगम का नहीं है, ये एलडीए का ही नक्शा होता है। एलडीए ही इसमें सब कुछ करता है कि नक्शा पास करके उसे कमर्शियल बनाया जाए या रेजिडेंशियल रखा जाए।
0: पर आप मेयर हैं, आप एक राजनीतिक भूमिका भी आपकी है, आपको नहीं लगता आपकी आवाज की ताकत तो होगी? सब कहते होंगे ना कि सुषमा जी आ गई हैं, मेयर है लखनऊ की, तो आप लोग कुछ कर नहीं सकते? मतलब माननीय मुख्यमंत्री जी आएंगे, माननीय मुख्यमंत्री जी ये कर देंगे? अरे भाई, मुख्यमंत्री जी तो घटना के बाद कर रहे हैं ना कुछ, कितना भी सख्ती दिखा दीजिए, बच्चे थोड़ी वापस आएंगे। आप लोग मिलकर, चाहे आप हैं मेयर, काउंसलर्स हैं, ये जो एलडीए है लखनऊ डेवलपमेंट अथॉरिटी है, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन है, सब कुछ नहीं कर सकते? ऐसे ही चलता रहेगा?
6: नहीं मैम, करना चाहिए, क्योंकि किसी घर का चिराग बुझा है, हमारे लखनऊ के हैं बच्चे, बहुत कष्टदायक है ये।
0: तो कुछ आप लोग अब कर रहे हैं, कुछ जांच उच अगल बगल हो रही है, कुछ सक्रियता बढ़ी है नहीं बढ़ी है मेयर जी?
6: जी बिल्कुल बिल्कुल बढ़ी है। मैं बाहर थी अभी, मैं कल रात को वहां फ्लाइट में थी जब एक घटना घटी, जब मैं देहरादून पहुंची तो पता चला घटना घट गई, तो मैं अभी वापस आ गई हूँ, 2 घंटे में मैं लखनऊ पहुंच रही हूँ। और जो भी नगर निगम से होगा, आप विश्वास करिए मुझ पे, मैं इस पे कोई भी ऐसा नहीं, मतलब कुछ भी नगर निगम के द्वारा जो कार्य किया जाता है वो किया जाएगा।
0: अच्छा, एक बार सुधीर सिंह जी हमारे साथ जुड़े हैं, मृतक सूरज सिंह के बड़े भाई हैं, और सुधीर जी मेयर लखनऊ की हमारे साथ है, क्या कहना चाहते हैं आप? सीधा पुलिस प्रशासन, सरकार, म्यूनिसिपैलिटी, सबसे सब हैं, बताइए क्या है आपके मन में, सीधा बोलिए।
7: कहीं ना कहीं जिम्मेदारों की कुछ कमियां रह गई हैं, जिसके कारण इतना बड़ा हादसा हुआ है। अगर जिम्मेदार अगर सही समय पे सही नियम कायदा कानून बना देते और जांच करके सही से अगर वो बिल्डिंग को देखते तो आज इतना बड़ा हादसा ना होता।
0: बिल्कुल, खैर ये तो वो भी कह रही है, लेकिन वही है कि कोई जानता ही नहीं किसको करना था, किसने पास किया, किसने यहाँ पर ये सब कुछ होने दिया, कौन लिया। जब आग लगती है, जब बच्चे मतलब चले जाते हैं, कोई कल्पना कर सकता है कि उसका अपना बच्चा ऐसे जिंदा जल जाए? मतलब इससे बड़ा दर्द क्या हो सकता है? उसके बाद सारे जागते हैं, 2-3 दिन चेकिंग वेकिंग होती है सुधीर जी, फिर वही हाल हो जाता है। क्या बोलिएगा, मतलब क्या आप लोगों को क्या समझ में आ रहा है, किसकी लापरवाही से हुआ है ये?
7: हम लोगों के समझ में समय इतना मानसिक कुछ होशो आवास नहीं कि कुछ कह सके।
0: बिल्कुल,
7: जिसका एक भाई जाएगा तो उसके पूछा जाएगा क्या है उसके अंदर का दर्द?
0: नहीं, हम लोग तो सोच ही सकते हैं सिर्फ। सुधीर जी, सूरज कितने बड़े थे और क्या सपना था उनका, क्या कहते थे?
7: सूरज का सपना तो एक अच्छा था कि कभी उसने अपनी फरमाइश नहीं रखी, जब जब फोन पे हमारी बात होती थी तो कैसे हो सूरत, तो बस भैया बढ़िया है, बस यही हंस के ही बताता था, कभी उस तरीके का उसका इमोशनल इफेक्ट नहीं रहा। और उम्र लगभग 24 साल रही उसकी,
0: 24 साल
7: हमारे छोटे भाई सूरज की।
0: वो एनिमेशन सीखने जाता था या गेमिंग जोन में जाता था वहां?
7: नहीं, एनिमेशन सीखने नहीं जाता था, तो एनिमेशन को लेकर के जो कंपनी है तो उस पे
0: हाँ
7: ये जॉब करता था।
0: अच्छा, ये सिखाते थे
7: हाँ
0: मतलब?
7: हाँ ये सिखाते।
0: तो क्या था वहां पर, कितने बच्चे आते थे, कुछ आपको आइडिया है? कितने टीचर्स थे, कितने बच्चे आते थे, कंपनी का नाम कौन था, कंपनी का मालिक कौन था?
7: इसके लिए अभी कोई भी डिटेल्स नहीं मैडम,
0: आपके पास डिटेल नहीं
7: नथिंग,
0: है?
7: कोई भी डिटेल नहीं है कि उसमें कितने स्टाफ में थे, कौन क्या था, कौन मैनेजर था कि कौन डायरेक्टर था, या फाउंडर कितने थे, ये जानकारी अभी बिल्कुल कुछ भी नहीं है।
0: विक्रम सिंह जी, पूर्व डीजीपी उत्तर प्रदेश के, हमारे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं। विक्रम जी, जो आलम है लापरवाही का, मतलब ये मौतें नहीं, हत्या इसको कहा जाएगा अगर छात्र टीचर इस तरह से वहां पर, मतलब कोई इमरजेंसी एस्केप रूट नहीं था। ये किस किस की आंख पे पट्टी बंधा हुआ है सर, ताकि ये चलता रहे आराम से? और मैं तो सीधा यहां तक कहती हूं कि भ्रष्टाचार का पूरा रैकेट है ये, क्योंकि कई जेबें गर्म की जाती होंगी ताकि ये इस तरह से चलता रहे।
8: अंजना जी, इसमें दरअसल किसी की गलती नहीं है, ना फायर डिपार्टमेंट की है, ना एलडीए की है, ना पुलिस की है। गलती तो हमारे बच्चों की है जो वहां चले गए।
0: बिल्कुल,
8: ये इस तरीके की बेशर्मी और इस तरीके का मैं समझता हूँ भ्रष्टाचार, इसकी जितनी भी निंदा की जाए, आपने बिल्कुल सही कहा, इसमें कल्पेबल होमसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर का मुकदमा कायम हो, पहले सस्पेंड हो, बर्खास्त हो, अनुच्छेद 311 के अंतर्गत ये बर्खास्त हो। दिल्ली की जब दुर्घटना हुई थी तो मुख्यमंत्री जी ने, योगी आदित्य ने कहा था कि अपने यहां सब लोग इसको चेक कर लें, हाइड्रेंट और जो भी इसकी डिले इसको पूरी कर लें, जिससे कि उत्तर प्रदेश में दुर्घटना ना, और हमने दुर्घटना को दावत दे दी और कोई जिम्मेदार नहीं। अंजना जी, मैं आपकी विद्या समझता हूँ, और जिस तरीके से परिवार के जो सदस्य है, मैं समझता हूँ कि छाती फट जाती है उनकी बातें सुनने के बाद, और हमारे हर विभाग ये कह रहा है कि हम जिम्मेदार नहीं। ये इस तरीके की बेशर्मी हम कब तक और देखेंगे? मैं, आपने बिल्कुल सही कहा, ये हमारे बच्चों की हत्या हुई है, ये कोई सामान्य घटना नहीं, ये हमारे बच्चों की हत्या हुई है, और इसमें तीन वही कल्पेबल होमसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर का मुकदमा लिख के अगर इनको 24 घंटे में हमने जेल नहीं भेजा, और हमने देखा नक्शा एलडीए, आप एक जरा से अतिक्रमण कर दीजिए, उनके एलडीए के 6 अधिकारी आकर के हूटर बजाने लगते हैं, और यहां पर खुलेआम
0: लेकिन सिंह
8: नक्शे का
0: साहब, एक बार
8: अतिक्रमण
0: उनकी जेब गर्म
8: अतिक्रमण
0: दी
8: के साथ
0: जाए,
8: साथ
0: सिंह साहब एक बार इनकी जेब गर्म कर दी जाए तो फिर वापस भी चले जाते हैं।
8: निश्चित, और यही हुआ है अंजना जी,
0: एक्सटॉर्शन
8: दुर्भाग्य से यही
0: रैकेट,
8: हुआ है।
0: विक्रम सिंह साहब, एक्सटॉर्शन रैकेट चलता
8: सरासर
0: है,
8: एक्सटॉर्शन,
0: इलीगल
8: सरासर
0: कंस्ट्रक्शन के
8: एक्सटॉर्शन
0: नाम
8: है,
0: पर
8: बताऊं।
0: इस देश में रैकेट चलता है जिसमें अलग अलग महकमे अपनी अपनी रेट फिक्स करते हैं, इलीगल कंस्ट्रक्शन चलता है, पूरी जगह का प्रॉपर्टी का कैरेक्टर बदल दिया जाता है, रेसिडेंशियल से वो कमर्शियल भी हो जाता है, कमर्शियल यूज में इस्तेमाल होता है। बस जेब गर्म होनी चाहिए अलग अलग विभागों की, क्या मैं सही नहीं कह रही हूं?
8: आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, 100% नहीं 200%, लेकिन हमारी बेहयाई और हमारी जो है मोटी चमड़ी, कम से कम इसका तो उम्मीद करती है कि मैडम बेयर अगर सुन रही मेरी बात तो योगी आदित्यनाथ जी तक पहुंचा, कम से कम अब लखनऊ और देश कुर्बानी मांग रहा है, इन भ्रष्ट अफसरों की इनकी कुर्बानी तो कर दे, लेकिन जब हो जाए तब समझिए। मैं बहुत ही ज्यादा निराश, हताश और दुखी।
0: अभी तो मेयर जी पहुंची भी नहीं है लखनऊ, मेयर जी हैं क्या हमारे साथ, एक बार फिर से कनेक्ट कीजिए, किसी तरह गाड़ी से जुड़ी है, मुख्यमंत्री कल पहुंच गए, ये अभी तक पहुंच नहीं पाई, अभी कह रही है 2 घंटे में पहुंचूंगी, इनसे पूछिए तो हमारी नहीं एलडीए की है, एलडीए वालों से पूछेगा तो किसी और की कहानी सुना देंगे, अभी की सरकार से पूछिएगा तो सरकार वाले कहेंगे समाजवादी पार्टी वालों से पूछिए तब की बनी है, उनसे पूछिएगा तो वो इस सरकार पर हमला शुरू कर देंगे, यही खेल है, इस खेल में उलझाया जाता है और हर घटना को बस खत्म होने और भूल जाने तक का इंतजार कराया जाता है, क्या मैं सही नहीं कह रही हूं अनुराग भदौरिया जी? सबको अपनी अपनी रोटी सेकनी है।
9: ये इसमें कोई दो राय नहीं है कि बहुत ही दर्दनाक और बहुत ही तकलीफदायक, जिनके साथ गुजरी होगी मैं समझ सकता हूँ किस दर्द से गुजर रहे होंगे, लेकिन ये आसान होता है मेयर साहब को कह देना कि मेरी जिम्मेदारी नहीं बनती है, वो लखनऊ की मेयर हैं और उनकी पूरी जिम्मेदारी बनती है, और ये भी कह रही है कि अतिक्रमण हटाना मेरी जिम्मेदारी है, तो उस बिल्डिंग के नीचे जो अतिक्रमण था, एक बच्चा जो कूदा ऊपर से कूदा, वो वहाँ पे जो जिस तरह की वहाँ लोहा लंगड़, वो जो अतिक्रमण अगर हटा दिया होता तो शायद वो बच गया होता। तो ये हाल है उत्तर प्रदेश की सरकार का, और इसमें हम कोई राजनीति की बात नहीं कर रहे हैं। इसके पहले भी घटनाएं घटी थी, जैसे अभी वो हमारे विक्रम जी कह रहे थे, जब दिल्ली की घटना घटी थी तब भी ये सवाल उठा था, और उसके पहले भी जब एक बार चर्चा हुई थी तो हमने बोला था 2020, 2021, 2022 में जिस तरह से इंसानों में जिससे आग लगने से, आग से जिन लोगों की मौतें हुई थी, 2020 में 312 थी, 2021 में 358 थी, 401 थी 2022 में, तब भी आवाज़ उठाई गई थी कि आग से इतनी बिल्डिंगों में जो आग लग रही है भ्रष्टाचार की आग है, भ्रष्टाचार की आग की लपटों में ये सब सुहा हो रहा है। लेकिन उसके बाद भी यहाँ पे लेवाना वाली घटना हुई थी, एक होटल में आग लगी थी, अगर याद होगा 2022 की घटना है, चार लोगों की मौत हुई थी, तब भी आवाज उठी थी कि सारी बिल्डिंगों को चेक कर लिया जाए, तो कम से कम ये उस समय भी इसी तरह की बात हुई थी जो बातें अभी हो रही है।
0: अनुराग जी,
9: मैं कह रहा था
0: एक सवाल पूछूं आपसे,
9: मेरी एक बात पूरी, एक लाइन पूछे फिर सवाल
0: पूछे, जरूर
9: सवाल जिनसे पूछना है वो तो सामने आ ही नहीं रहे, दिक्कत तो ये है, सवाल जिनको जवाब देना वो नहीं आएंगे सामने। सवाल ये है, मेरा सीधा सा सवाल ये है कि जो एलडीए के अधिकारी है उनकी क्या कोई जिम्मेदारी नहीं है? आपने छोटे अधिकारियों को तो सस्पेंड और टर्मिनेट या जो करना कर दीजिए, सबसे बड़ी जिम्मेदारी होती है भ्रष्टाचार जो बैठे अधिकारी हैं, जो ये इस डिपार्टमेंट से संबंधित हैं, इन बड़े अधिकारियों पे गाज क्यों नहीं गिरती है? ये बच जाते हैं, यहाँ कोई बिल्डिंग बनती है, मैं लखनऊ में देखता हूँ, पहले उसको सील किया जाता है, उसके बाद फिर वो जो आप कह रहे हो किस तरह से जेब गर्म या पॉकेट गर्म या क्या गर्म होता है, उसके बाद फिर उनकी वो बिल्डिंग खुल भी जाती है कुछ दिनों बाद,
0: पता चलता है वो बिल्डिंग खुल गई,
9: वही भ्रष्टाचार की आग में सब लिपटा हुआ है ना।
0: लेकिन मेरा सवाल तो ये है कि भ्रष्टाचार जो है अनुराग जी, दिक्कत ये भी है कि इलीगल कंस्ट्रक्शन को हटाना इस देश में एक बहुत बड़ा चैलेंज है, जिस पर मैं विक्रम जी से के पास भी जाऊंगी, और इलीगल कंस्ट्रक्शन को जब हटाने के लिए पहुंचा जाता है तो वहां पर जाके कहा जाता है कि भाई किसी की रोजी रोटी पर तुम पेट पर लात मार रहे हो, तरह तरह की बातें होती हैं। क्या ये भी एक बहुत बड़ा चैलेंज नहीं है अनुराग जी, जिसमें पक्ष विपक्ष व्यवस्था सबको ताकत हिम्मत दिखानी होगी, इलीगल कंस्ट्रक्शन को इस देश में खत्म करना होगा। तारों का हाल देखिए, जहां तहां से तारे खींची होती है, मतलब वेटिंग फॉर अ डिजास्टर टू हैपन। बोलिए अनुराग जी।
9: वही मैं आपसे कह रहा हूं, जिम्मेदारी जिस तरह आपने कहा कि बिल्डिंग गिराई जाती तो लोग पहुंच जाते, कोई नहीं पहुंचता है, इस तरह की बिल्डिंग जब गिराई जाती तो कहीं कोई नहीं पहुंचता है, इनके पास समय होता है बस्तियां उजाड़ने का, वो समय है इनके पास, उसके लिए बुलडोजर भी है, सब कुछ है, बस्ती उजाड़ देंगे। लेकिन इस तरह की बिल्डिंग है जहां इलीगल कंस्ट्रक्शन है, जहां लोग जिस तरह से हमारे आपके बच्चे किस तरह से उनके साथ जो जिस तरह की घटना घटी है, क्या इस शब्दों में बयान किया जा सकता है? सिर्फ इतना कह देना कि हम दो घंटे दूर हैं, या हम कल पहुंचेंगे, या हम अभी नहीं पहुंचे, या कुछ लोग पहुंच गए, भाई ये चीज तो पहले हो जानी चाहिए थी। जो जो इस तरह की बिल्डिंग है,
0: जब यहां पे अनुराग जी साल 2016 में ऑर्डर आया था इसको ध्वस्त करने का, लेकिन फिर वो ऑर्डर पता नहीं कौन से चमत्कार से पलट गया और वो नहीं हो पाया। इसी पर एक बार जी कहा देखिए सत्यप्रकाश मिश्रा जी को, मिश्रा जी आज बड़ा सवाल ये है कि देखिए सरकार अपने आप को जिस तरह से भी बताए जांच कर देंगे, सख्त कार्रवाई कर देंगे, अरे इनका बच्चा थोड़ी लौटेगा, मतलब किसकी जिम्मेदारी है भाई? सब कुछ है जवाबदेही छोड़कर।
10: अंजना जी बहुत पीड़ादायक है, और कितनी भी संवेदना व्यक्त कर ली जाए, आंसू बहा लिया जाए, ये कह दिया जाए दोबारा नहीं होगा, भारत ने और किसी राज्य ने कोई नजीर पेश नहीं किया कि हमारे प्रदेश में, हमारे देश में दुर्घटना नहीं घटेगी। क्या हुआ था उपहार सिनेमा कांड में, आग लगी थी ना, कितना दौड़े थे लोग, उन्होंने संगठन बनाया, लंबी लड़ाई लड़ी, तब जाकर थोड़ा बहुत कुछ न्याय मिला। क्या हुआ था इसी गाजियाबाद में, एक मेला लगा था बहुत बड़ा, उसमें सिंथेटिक कपड़ों का मेला लगा दिया गया था, मुलायम सिंह जी मुख्यमंत्री थे, 100 लोग मर गए थे जिंदा जल करके। क्या हुआ, नजीर पेश किया गया। भवाना के फैक्ट्री में आग लग गया, 40 मजदूर मर गए। मोतीनगर ब्लास्ट में एक फैक्ट्री में आग लगी, 4 मजदूर बिहार के मर गए। क्या हुआ, कुछ नहीं होता है। मालवीय नगर में होटल में लोग आग में मर गए, वो एक शो चल रहा था किसी का, जिसको बैंकॉक से पकड़ के लाए थे, आग ही लगी थी ना। एक बात समझिए, हम एक देश के नाम पर दुर्घटना को रोकने में कहीं ना कहीं फेल हैं। कुंभ मेले में भी आग लगी थी, आग लगती रहती है, बस लोग आगे बढ़ जाते हैं, लोग मर जाते हैं, और रोने आंसू पोंछने वाले लोग बहुत खड़े होते हैं। आपने बहुत अच्छा कार्यक्रम रखा, मीडिया में मुझे बुलाया, मैं बिल्कुल आपकी तमाम जो भी लोग यहां बैठे हैं सिर्फ मेयर की बात से सहमत, उन्होंने कहा हमारा काम नहीं, हाँ आंसू बहाइए, आपका काम तो आंसू बहाना है, बहाते रहिए, फिर जाके आंसू पोंछ करके नौटंकी करिए। एक सवाल बहुत बड़ा है, क्या योगी आदित्यनाथ जी की सरकार इस बार एक नजीर पेश करेगी तो उन तमाम बड़े अधिकारियों को बर्खास्त कर जेल भेजेगी? ये सवाल जनता पूछे ना पूछे, मैं पूछूंगा। क्या ये वो नजीर पेश करेंगे कि उत्तर प्रदेश के जितने भी भवन इस तरह के बने हैं उसके ऊपर फायर सेफ्टी का प्रोटोकॉल फॉलो है नहीं है, उसका साइन बोर्ड चिपकेगा? क्या इस देश के जितने भी भवन हैं इस देश में कोई कानून पास होगा कि कहीं आग न लगे उसका फायर सेफ्टी प्रोटोकॉल कौन है, किस अधिकारी ने साइन करके इसके सेफ्टी प्रोटोकॉल को लागू किया है? क्या ये जरूरी मैंडेटरी नहीं होगा कि किसी भी बिल्डिंग में आग बुझाने वाला यंत्र है या नहीं है उसको चेक करने वाली कोई संस्था बनेगी? अब ये देख बहुत देर हो चुका है, जितने बच्चे आग में जले, जो यात्री आए थे मालवीय नगर में जले, मजदूर जले, उपहार सिनेमा कांड में जले, मेले में जले, ना जाने कहां कहां जल के मर गए इस देश में, उनका कोई दोष नहीं था। उन्होंने सही कहा कि विक्रम जी ने, नहीं उनका दोष था, वो गए थे। तो क्या ये हमारा दोष है कि हम इस देश के नागरिक हैं? क्या ये हमारा दोष है कि हम कहीं पढ़ने जाते हैं उस बिल्डिंग में आग लग जाएगी, कभी पानी बेसमेंट में चला जाएगा तो स्टूडेंट मर जाएगा? ये कौन सा इलेक्ट्रॉनिक ताला ईजाद किया है भाई कि जैसी कुछ घटना होती है वो दरवाजा बंद हो जाता है? अरे ऐसा ताला ईजाद करो कि कोई घटना घटे तो वो दरवाजा खुल जाए, नहीं बंद हो जाएगा। ऐसे ऐसे को लगाने, ऐसे ताले को लगाने की इजाजत देता कौन है? और अगर देता है तो प्रोटोकॉल फॉलो क्यों नहीं होता है? वही आपने कहा ना, जेब गरम, जब जब वो कहते हैं ना लगेगी आग तो आएंगे जद में सभी के घर, इस देश में सिर्फ हमारा मकान नहीं है। मैं बिल्कुल, किसी की सरकार हो, मेरी उसकी इसकी उसकी किसी की सरकार हो, अगर देश की जनता के प्रति वो जवाबदेह नहीं है तो सरकारों की जिम्मेदारी बनती है और गुस्सा सरकार के प्रति बताया जाएगा, दिखाया जाएगा। ये मेयर साहिब आप क्या बढ़िया मुस्कुरा रहे थे, अरे नहीं माँ का ये चला जाता है। अरे मेयर साहिब आप शहर में नहीं थे, राजनाथ सिंह जी तो तुरंत पहुंचे, वहां के सांसद है, योगी आदित्यनाथ जी पहुंचे, ब्रजेश पाठक जी पहुंचे, लेकिन सवाल है लखनऊ में दोबारा आग नहीं लगना चाहिए? सवाल है उत्तर प्रदेश के किसी भी इमारत में कोई व्यक्ति जिंदा ना जल जाए? ये सवाल है। अगर इस सवाल को पीछे करेंगे योगी आदित्यनाथ जी और उसका उस पर काम करेंगे तो सलाम पेश होगा, नहीं करेंगे तो जनता गुस्सा तो दिखाएगी। और क्या कर सकती है जनता? रो सकती है, गा सकती है, गिड़गड़ा सकती है, गुस्सा कर सकती है, इससे ज्यादा जनता करेगी क्या? यही है मेरा।
0: और विक्रम सिंह साहब को दिखाई, विक्रम सिंह साहब को दिखाई। विक्रम जी आपने देखा होगा जब ये बच्चे उतरने की कोशिश कर रहे हैं तो कैसे साइड से रस्सी, मतलब जो कलैप्सिबल बड़े बड़े ग्लास के वो हैं और अंदर पूरा जैसे वो खुलता है धुएं का गुबार निकलता है, मतलब कैसे घुटन हो रही होगी, रस्सी से कुछ बच्चे बस निकल पाए। और आप सोचिए
8: और ये बिल्कुल टावरिंग इन्फर्नो जिससे स्मोक से और पेंट की शॉप, तीन तल्ले में पेंट की शॉप, आपने बच्चों के लिए मौत का इमारत तैयार कर दी थी, एक तरीके से मकबरा तैयार कर दिया था हमारे बच्चों के लिए। और इस बेहयाई के साथ जैसे हर आदमी जिम्मेदारी से और हाथ झाड़ के खड़ा हो रहा है, मैं ये उम्मीद करता हूं कि जो हमारे नेता गण है और मंत्री गण अगर सुन रहे हैं आपके प्रोग्राम को, कम से कम आज जो बड़े अफसर हैं उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। SIT का तो हमने बहुत देख लिया है, SIT का मतलब क्या होता है मुझे बता दें
0: क्या है सर? ये SIT हर जगह SIT बना दी, ये क्या सिर्फ मीडिया ग्लेयर रिफ्लेक्टिंग टैक्टिक्स है कि भाई कुछ दिन तक बता दिए SIT बताते रहिए, एक एक इन्फॉर्मेशन देते रहिए, SIT ने आज ये किया, SIT ने जांच की, SIT वहां पहुंची, SIT यहां पहुंची, कहां होता है एक्शन?
8: SIT जितनी बनी है उनका अगर आप 15 महीने का रिकॉर्ड देख लें आप अगर संतुष्ट हो जाए, मैं तो संतुष्ट नहीं हूं। अगर SIT बनाने का मतलब ये होता, इसका मतलब प्रशासनिक अगर आप चाहें तो प्रथम दृष्टया एक चीज होती है, प्राइम ऑफ SIT जितनी एविडेंस है चूक हुई है, इसमें कोई दो राय नहीं, जिम्मेदारी किसकी है, जो जिम्मेदारी थी और चूक के आधार पहलू करें निलंबित और भेजे जेल, बाद में अगर बच जाते हैं सुप्रीम कोर्ट से तब की तब देखें, फिलहाल इनके ऊपर कार्रवाई पहले, जिसको कहते हैं अंजना जी। जी
0: जी विक्रम जी, आपको पता है ये कौन चलाता था, किसकी थी ये बिल्डिंग या कुछ आप जानकारी हासिल कर पाए हैं?
8: जी अंजना जी, मुझे ये मालूम पड़ गया था बिल्कुल टोटली, एक तरीके से जो कॉम्प्लिसेट है, नाम लेना ठीक नहीं है, लेकिन पूरी तरीके से इसने नाजायज इमारत खड़ी की थी और इसके बारे में जो शोहरत आम है जनरल रेपुटेशन अंजना जी ये है, ये फिक्सर था अव्वल दर्जे का और फिक्सर होने की वजह से ये सक्सीड कर गया। अब तक इसके जो कुकृत्य थे ये प्रकाश में नहीं आए, या प्रकाश में जब आए तो इसने बकौल आपकी जैसे जेब गर्म कर दी थी, विभिन्न भागों के जेब गर्म करके इसने बच्चों के लिए मौत की खाई बना दी थी। पेंट की दुकान के ऊपर लेके नीचे तक आपने बिल्कुल एक ज्वलनशील पदार्थ के ऊपर टिंडर बॉक्स के ऊपर आपने बच्चों को बैठा दिया। तो अंजना जी ये तो बिल्कुल सही है, फिक्सर था, अपने रिश्वत दे करके आगे बढ़ने की जिम्मेदारी थी। और आपके नेशनल प्रतिष्ठित चैनल में जब मैं कह रहा हूँ, कम से कम इतना तो कर लीजिए कि इनके ऊपर कार्रवाई तो कर दीजिए, SIT किसकी जरूरत नहीं है, ऐसे दोषी लोगों को प्राइम ऑफ निलंबित करके जेल भेजने में SIT की जरूरत नहीं है, इच्छा शक्ति की जरूरत।
0: ऐसा लगता है कि जैसे वहां जाके और सब समझ रहे हैं कि कैसे ये घटना घटी, क्या हो गया, मतलब क्या नहीं समझ में आ रहा है कि अभी तक जो मुख्य आरोपी वीरेंद्र शुक्ला को इस मामले में बनाया गया है विक्रम जी, और पहले बताया जा रहा है कि उसका जो एक भाई है वो पेपर लीक के मामले में भी ये हुआ था, हालांकि बाद में फिर वो छूट भी गया था, कैसे ये सब जुड़ता हुआ दिख रहा है आपको?
8: जुड़ता हुआ अनजाने से दिख रहा है कि जब एक आदमी की आप इतिहास को कुरेदती है, उसका आपराधिक इतिहास होता है, मुझसे बेहतर आप जानती हैं कि जब प्याज की परत दर परत खुलती है तो एक के बाद अपराध दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, तीसरे के बाद चौथा, उस श्रृंखलाबद्ध तरीके से। तो शुक्ला जी और उनके परिवार में पेपर लीक के साथ साथ इस तरीके के नाजायज कामों में एक बहुत बड़ा इतिहास रहा है, और मैं ये बहुत प्रसन्न होता कि पहले इनके ऊपर, जैसे कि पुलिस के उप संरक्षक टूट फर्स्ट अपोलोजाइज लेटर, हम माफी पहले मांग रहे हैं और उसके बाद हम एसआईटी बना रहे हैं, ये चीज देखिए अब बिल्कुल अस्वीकार्य है। अब अंजना जी इसमें कार्रवाई पहले कीजिए, बाद में एसआईटी जो बनाना बनाइए।
0: एक बार जल्दी से हमारे साथ जो जुड़े हुए थे एक परिवारजन, उनको एक बार फिर से दिखा दीजिए, क्योंकि मैं ही चाहती हूँ कि आपसे इस पर बात करूं। सुधीर सिंह हमारे साथ जो जुड़े हुए हैं, सुधीर जी मतलब आप लोग भी देखे होंगे तो आप लोग को समझ में तो आ ही गया होगा कि भाई क्या यहाँ पर चल रहा था। अब बुलडोजर तो हर जगह जस्टिस के लिए पहुंच जाता है, यहां पर त्वरित न्याय की कुछ बात समझ नहीं आ रही है। बोलिए सुधीर जी, आवाज आ रही है?
7: तो बोलना यह है कि वहां न्याय के लिए अब जो भी है शासन ही प्रशासन ही कर सकता है, हम लोग तो गुजारिश ही कर सकते हैं।
0: बिल्कुल, हमारे साथ इस वक्त एक और छात्र जिनकी मौत हुई है, नीलेश, दरअसल वो वहां पर मुझे बताया गया है कि वो काम भी करते थे, नीलेश, उनके भाई अभिषेक जुड़ रहे हैं। अभिषेक जी, बहुत मुश्किल घड़ी है, मतलब क्या कल्पना की जाए, क्या पूछा जाए आपसे, लेकिन ये शो करना इसलिए जरूरी है ताकि आप लोगों की आवाज और जो इस दुनिया को छोड़कर चले गए इस नाकामी और निकम्मे व्यवस्था की वजह से, उनकी आवाज को शांत नहीं किया जाए, इंसाफ उनको मिले। क्या आप बता सकते हैं क्या हुआ था, कैसे हुआ था?
3: जी, अब वहां पे ये चीजें कैसे हुई ये तो मैं भी नहीं बता सकता, बस जो हुआ है वो बहुत ही बड़ी लापरवाही का नतीजा है, जो इतने बड़े हादसे का आकार लिया जिसमें 15-18 परिवार उजड़ गए, इसमें से एक मेरा भाई भी था।
0: आप अपने भाई के साथ, नीलेश जी के साथ साथ ही रहते थे और अब वो एनिमेशन सीख रहे थे, क्या करते थे?
3: जी, हमारा घर है जहाँ पे हम रहते हैं, घर में अच्छा। तो साथ में ही रहते हैं, कोई बहुत बड़ा घर नहीं है हमारा, तो एक ही रूम में रहते थे, साथ में बैठते थे, बातचीत होती थी, गेम खेलते थे, साथ में चीजें सीखते थे।
0: उम्र कितनी थी उनकी?
3: 27।
0: हमारी आज के हल्ला बोल में इतना ही, देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक, लेकिन आज रात 9 बजे ब्लैक एंड व्हाइट में आपको बताएंगे कि कहीं आप भी दवा के नाम पर धोखा तो नहीं खा रहे, क्योंकि नामी कंपनियों की 157 दवाएं क्वालिटी टेस्ट में फेल हो गई हैं। इसके बाद लखनऊ अग्निकांड के गुनहगारों को बेनकाब करते हुए बताएंगे कि क्या ऑटोमेटिक गेट भी मौत की वजह बन रहे हैं। इसके बाद आपको बताएंगे कि टीएमसी में टूट के बाद पार्टी के खजाने की लूट क्यों मची है, और आखिर में आपको बताएंगे कि गाड़ी में एथेनॉल वाला पेट्रोल डलवाना आपकी मर्जी होनी चाहिए या मजबूरी। देखते रहिए आज तक।

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: ऊंचाई पर बने रहने के लिए जरूरी है इरादों का प्योर होना। गैलेंट एडवांस बनाते हैं ऐसा स्टील जो अंदर से है ज्यादा प्योर ज्यादा मजबूत। गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो।
3: गोल्डी हिंग का तड़का लगे तो सभी दबा के खाते हैं। गोल्डी हिंग कण कण में जान।
4: हनी इस घर में कुछ है जो टूटता नहीं।
5: ये पिलर कभी नहीं टूटेगा। रुंगटा स्टील TMT से बना।
6: रुंगटा नहीं तो घर स्ट्रॉन्ग नहीं। रुंगटा स्टील TMT बार एकदम सॉलिड।
7: 11 मई आज तक पर पेपर लीक कनेक्शन का पर्दाफाश।
8: नीट की परीक्षा से पहले एक गेस पेपर धड़ल्ले से मोबाइल पर बंटता है। 135 सवाल उसी गेस पेपर से हूबहू मिलते हैं।
9: 15 दिन पहले से पूरे देश में बंट रहा था, NTO को पता नहीं।
7: 12 मई आज तक के खुलासे पर मुहर।
10: जिम्मेदारी लेते हैं कि जो हुआ गलत हुआ।
8: आज तक की खबर के बाद आज सरकार की तरफ से एक्शन हुआ, NTA जागी, पेपर रद्द हुआ। हमने आज तक पर लगातार दस्तक दी है, खबरदार किया है, हर दल की सरकार को जगाया है, बताया है कि पेपर लीक रोक लीजिए वरना बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ होता रहेगा।
7: जहां खबर वहां खबरदार।
11: इन एसोसिएशन विद E3 HDMR ये रिश्ता लंबा चलेगा।
12: तक डिजिटल फर्स्ट चैनल्स, 11 बिलियन व्यूज, 85 million unique viewers, one-stop solution for your brand, regional or hyper-local reach. Har shahar, har kasbe tak, advertise karne ke liye email karein.
13: Bachche is saalon se jahan tiki hai desh ki nazar. Mere saath phir se shuru ho raha hai wahi safar. ये खबरें सात तक, देखते रहिए आज तक।

0: जिस भरत तिवारी के एनकाउंटर पर बिहार में सियासी बवाल मचा है, क्या उसे किसी अनहोनी का अंदाजा पहले ही हो गया था?
1: अब कर देना चाहिए, बता देना चाहिए लोगों को। मेरे इस त्याग बलिदान के बाद मेरे इस शरीर को दान कर दिया जाए।
0: मौत से महीने भर पहले वो क्यों त्याग बलिदान में जान देने की बात कह रहा था?
1: इस पर सबसे प्राथमिकता हमारी देश की सेना, हमारे आन बान शान भारतीय सेना इंडियन आर्मी को दान कर दिया जाए।
0: भरत तिवारी के एनकाउंटर से कुछ महीने पहले का वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें वो अपनी मौत के बाद सेना को अंग दान करने की बात कर रहा है।
1: अब कर देना चाहिए, बता देना चाहिए लोगों को। मेरे इस त्याग बलिदान के बाद मेरे इस शरीर को दान कर दिया जाए। इस पर सबसे प्राथमिकता हमारी देश की सेना, हमारे आन बान शान भारतीय सेना इंडियन आर्मी को दान कर दिया जाए। दूसरे स्थान पर प्रशासन को, तीसरे स्थान पर पब्लिक को, उसमें भी जो गरीब लोग हैं।
0: इसी वीडियो में भरत तिवारी अपने मोबाइल में कुछ सबूतों को लेकर भी कुछ ऐसा दावा करता है जिसे लेकर कई सवाल उठ रहे हैं। भरत वीडियो में साफ कहता है कि उसके जाने के बाद उसका मोबाइल माता पिता के अलावा किसी और के हाथ में नहीं जाना चाहिए। उसका दावा था कि फोन में ऐसे सबूत हैं जिन्हें झुठलाया नहीं जा सकता।
1: इस सेल फोन को, मेरे इस मोबाइल को दूसरे मेरे जाने के बाद किसी और के हाथ में ये मोबाइल नहीं लगना चाहिए, मेरे घर वाले को छोड़कर, और वो भी मेरे मोबाइल ये सेफ रहना चाहिए, वरना जो भी ऐसे लोग हैं वो हर तरह से प्रयास करेंगे भाला फुसला कर या किसी भी तरह से चोरी, मतलब किसी भी तरह से बहुत प्रयास करेंगे कि ये, क्योंकि एक साक्ष्य के रूप में है।
0: ऐसे में सवाल है कि आखिर भरत तिवारी किन सबूतों की बात कर रहा था, आखिर उसके मोबाइल में ऐसा क्या था? भरत तिवारी एनकाउंटर की न्यायिक जांच जारी है, उम्मीद है कि इस जांच में वीडियो के पीछे का सच सामने आ सके। उधर इस एनकाउंटर को लेकर लोगों का आक्रोश बढ़ता जा रहा है। सड़क पर उतरे लोगों ने पुलिस कार्रवाई के खिलाफ जमकर विरोध जताया और नारेबाजी करते हुए आरोपियों पर सख्त कार्रवाई की मांग की। मार्च के दौरान लोगों ने दोषी पुलिस कर्मियों पर हत्या का केस दर्ज करने और फांसी की मांग उठाई। वहीं दूसरी तरफ मार्च में शामिल लोगों ने सरकार से भरत तिवारी के परिवार को 1 करोड़ के मुआवजा देने की मांग की। लोगों का कहना है कि भरत तिवारी की हत्या हुई है, उनका एनकाउंटर नहीं हुआ है। इस केस को लेकर सियासत पहले ही भड़की हुई है, ऐसे में भरत तिवारी एनकाउंटर को लेकर सम्राट सरकार सवालों में घिरती दिख रही है। आज तक ब्यूरो।
2: क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।

0: क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।
1: Presented by पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच
2: इन एसोसिएशन विद
3: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो
4: ड्यूरेबल पाइप्स फिटिंग्स एंड टैंक्स अ कंप्लीट रेंज ऑफ सैनिटरी सॉल्यूशंस चोगन परफ्यूम्स द फ्रेंच एडिशन फॉर हिम एंड हर।

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार।
1: विमल बोलो जुबान केसरी।
2: सागर, नीलेश, अनामिका, संयम, अनुषा, सुखमनी, आदित्य, ज्योति, भविष्य, अब्दुल, सूरज, जैनेल, अम्मार, सुमल्या, सारे के सारे नौजवान। सारे के सारे ऊर्जावान, सबके सब अब सारे सपने झुलस गए, सारी उम्मीदें टूट गई, 15 परिवारों के चिराग बुझ गए। इनका क्या कसूर था? अपनी हिफाजत का भरोसा करना, अपनी हुकूमत पर भरोसा करना, अपने सपनों, तकदीर, परिवार, रोटी रोजगार के लिए जान की फिक्र छोड़कर सिस्टम पर भरोसा करना? क्या इनका कसूर था उस सिस्टम पर भरोसा करना जिसका भ्रष्ट होना आसान, जिम्मेदार होना मुश्किल, जो जानलेवा बनता रहा महफूज नहीं बन सका। फिर जब 15 चिताएं एक दिन सुलगती है तो वही उत्तर समेत दागा जाने वाला यक्ष प्रश्न, जिम्मेदार कौन? आग लगे ऐसे सिस्टम को जो इंसानों को निगल जाता है, किसी की कोख, किसी की मांग, किसी का आंगन, किसी की जिंदगी, फिर भी सिस्टम यही है, ये तो ऐसे ही चलेगा। ऐसे ही कॉम्प्रोमाइज सिस्टम में लाक्षाग्रह बनेंगे, ऐसे ही करप्ट सिस्टम में आगे लगेंगे, ऐसे ही बेकसूर बेमौत मरेंगे। हुकूमत जांच कराएगी, गिरफ्तारी कराएगी, मुकदमा चलेगा, जमानत होगी, लेकिन सजा वो भी जाए तो क्या? डरता कौन? क्योंकि यही तो सिस्टम है जहां जुर्म ही नहीं डर भी मैनेज हो जाता है। वरना क्या दिल्ली, क्या गाजियाबाद, क्या लखनऊ, क्या कानपुर, क्या प्रयागराज, क्या सहारनपुर, मजाल कहीं भी नरसंहार वाला ये सिस्टम आउट ऑफ सिस्टम हो? दिल्ली में सरेआम हजारों कोचिंग चल रहे, बिजली और केबल तारों का मकड़ जाल, दड़बे नुबा इमारतें, दो हाथ सकरी गलियां, आग लगे तो कोई बच के दिखा दे। कानपुर में तो दर्जन भर से अधिक ब्रांडेड कोचिंग वालों के दरवाजे पर सीलिंग हो गई, क्योंकि सिस्टम एक्शन में आया है मौतों के बाद। बच्चे कुछ दिनों के लिए यहाँ बाल बाल बचे। गाजियाबाद में भी सिस्टम जाग गया, काम कर गया तो जान बचेगी, वरना हादसे का इंतजार कीजिए। वाराणसी में भी जांच पड़ताल शुरू है, अब तक जोखिम में चल रही जान आगे कुछ दिनों तक महफूज रहेगी। प्रयागराज में भी बच्चों की फिक्र सिस्टम को है, शायद हालात सुधर जाए। उत्तर भारत से दूर दक्षिण भारत तक शहर शहर यही हालात, कहां तक गिनेंगे? ये सिस्टम सुधरता नहीं, और अगर नहीं सुधरा तो हादसे फिर होंगे, फिर SIT बैठ जाएगी। जांच तो होगी, जांच होगी तो पता चलेगा रिहायशी मकान में दफ्तर दुकान कैसे बन गए, मौत की सौदागरी करके मुनाफा वसूली में कौन कौन शामिल था, लखनऊ विकास प्राधिकरण क्या कर रहा था, नगर निगम क्या कर रहा था, पुलिस क्या कर रही थी, दमकल विभाग वाले क्या कर रहे थे, बिजली विभाग क्यों सन्नाटे में था, और तो और पार्षद से लेकर मेयर तक, विधायक से लेकर सांसद तक, और मंत्री से लेकर मुख्यमंत्री तक, सारा सिस्टम एक साथ क्यों फेल हो गया, ये सब जांच के बाद ही पता चलेगा। फिर रिपोर्ट आ जाएगी, मुकदमा होगा, जमानत होगी, बात रफा दफा। वरना इसी सिस्टम में 2014 में तमिलनाडु में कुंभकोणम स्कूल के अंदर 94 बच्चे जलकर मर गए, सजा क्या हुई? 5 साल की जेल। 2017 मुंबई के कमला मिल्स पब अग्निकांड में 14 लोग मरे, सजा आज तक नहीं मिली। 2018 में इसी लखनऊ में चारबाग होटल अग्निकांड में 5 लोग मर गए, आरोपी जमानत पर मौज कर रहे हैं। 2019 सूरत में तक्षशिला कोचिंग में 22 बच्चे बेमौत मरे, सारे आरोपी जमानत पर हैं। 2019 में ही दिल्ली के अनाज मंडी में फैक्ट्री की आग में 43 गरीब जलकर मर गए, सजा अब तक किसी को नहीं मिली। 2022 में फिर इसी लखनऊ के लेवाना स्वीट होटल में चार लोग मरे, सजा अब तक नहीं मिली। और सजा मिल भी गई तो सबसे निचले पायदान के उसी वोटर को मिलती है जो हर हादसे का सबसे बुनियादी जिम्मेदार होता है, क्योंकि इस भयानक सिस्टम को जिम्मेदार ठहरा देना जमहूरी निजाम के खिलाफ बगावत हो जाएगी। ये सिस्टम कभी खुद को जवाबदेह नहीं बना सकता, क्योंकि सिस्टम में सबका सिस्टम ठीक है, बस हिंदुस्तान की आम आवाम, बेगुनाह सामान्य वोटर, टैक्स पेयर इस सिस्टम से दूर है, और वही बेमौत मारा जाएगा, 5 लाख का मुआवजा पाएगा, गम के आंसू पोछेगा और अगले हादसे के लिए छोड़ दिया जाएगा। आज तक ब्यूरो।
3: लेबनान पर इजराइल के हमले लगातार जारी है। बेका घाटी में हुए भीषण हवाई हमले में 20 लोगों की मौत हो गई। इस बीच इसराइल ने एक वीडियो जारी कर दक्षिणी लेबनान में मजदल जॉन गांव के नीचे आतंकी सुरंग मिलने का दावा किया है। ये सुरंग इजरायली सीमा से कुछ ही किलोमीटर की दूरी पर मिली है। सुरंग में बड़ी संख्या में हथियार और इसराइल की ओर निशाना साधे 4 लॉन्च शॉफ्ट भी बरामद हुए हैं। ये सुरंग 200 मीटर से ज्यादा लंबी और 25 मीटर से ज्यादा गहरी है। इस ऑपरेशन के दौरान इजरायली सेना ने हिजबुल्लाह के 20 से ज्यादा आतंकियों को मार गिराने का दावा किया है।
4: ואני מתחייב בפניכם אזרחי ישראל, מדינת ישראל לא תהיה אפיזודה חולפת בתולדות עמנו. אנחנו עומדים איתן על האינטרסים החיוניים שלנו. השגנו הישגים כבירים ולא נוותר עליהם.
3: उधर हिजबुल्लाह ने इसराइल को खुली चुनौती देते हुए कहा है कि वो इसराइल के हर हमले का मुंह तोड़ जवाब देने के लिए तैयार है।
5: इसराइल लन तबका फी लबनान हत्ता लौ ज़ादत इजरामा ونحن سندافع اي وقف لاطلاق النار।
3: ईरान अमेरिका में शांति वार्ता की कोशिशों के बीच इसराइल का यह आक्रामक रुख पूरे मध्य पूर्व को एक ऐसे चौराहे पर ले आया है जहां से शांति और युद्ध दोनों की राहें निकलती हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, आज तक।

लखनऊ अग्निकांड में एसआईटी की जांच से पकड़ी रफ्तार, अधिकारियों के दर्ज किए जा रहे हैं बयान। अखिलेश सरकार को घेरा, कहा योगी राज में पास सभी नक्शों की हो जांच। राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में एसआईटी ने यूपी सरकार को सौंपी प्रारंभिक रिपोर्ट, फिलहाल किसी को क्लीन चिट नहीं, कुछ कर्मचारियों पर केस की सिफारिश। भोजपुर के भरत तिवारी एनकाउंटर में एक्शन, जगदीशपुर के एसडीपीओ शाहपुर थानाध्यक्ष समेत कई पुलिसकर्मियों पर एफआईआर, बवाल के बाद बैकफुट पर बिहार पुलिस। पद्म पुरस्कार से 65 हस्तियां सम्मानित, शिबू सोरेन को मिला मरणोपरांत पद्म भूषण, रोहित शर्मा अलका याग्निक, ममूटी को राष्ट्रपति ने दिया सम्मान। पीओके में विद्रोह का ठीकरा, भारत पर फोड़ने वाले ख्वाजा आसिफ को भारत का करारा जवाब, विदेश मंत्रालय ने कहा अपनी नाकामियों को छिपाने के लिए मनगढ़ंत दावे कर रहा है पाकिस्तान। नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख

0: और अंत में दम घुटने से मौत के मुंह में पहुंच गए। वो इसलिए मरे क्योंकि इस इमारत में ना नियमों को माना गया था, ना सुरक्षा मानकों का पालन हुआ था।
1: लखनऊ के जिस कमर्शियल कॉम्प्लेक्स में लगी आग ने 15 लोगों की जान ले ली, वो कमर्शियल कॉम्प्लेक्स लापरवाही और नियम कायदे की धज्जियां उड़ाकर बनाया गया था। इस कमर्शियल कॉम्प्लेक्स में एंट्री एग्जिट पॉइंट एक था, यानी कि एक ही रास्ते से एंट्री हो रही थी और एग्जिट हो रहा था, और उस एंट्री एग्जिट पॉइंट पर भी एसी के पैनल, इलेक्ट्रिकल पैनल, एग्जॉस्ट लगाए रखे थे, यानी कि एक रास्ता और वो भी सकरा कर दिया गया। और यही वजह थी कि जब आग लगी, धुआं फैला, तो जो लोग दूसरी और तीसरी मंजिल पर पढ़ाई करने, नौकरी करने के लिए पहुंचे थे, वो उस धुएं में फंस गए और दम घुटने से 15 लोगों की मौत हो गई। फिलहाल अब कार्रवाई का दौर शुरू हो चुका है, FIR दर्ज हो गई है, SIT गठित कर दी गई है, फॉरेंसिक की जांच शुरू हो चुकी है और 4 अधिकारी सस्पेंड किए जा चुके हैं।
0: यानी बिल्डिंग की बनावट ही ऐसी थी कि अगर कोई हादसा हो तो अंदर मौजूद लोगों की जान मुश्किल में पड़ जाए। सिर्फ बाहर का ही हाल ऐसा नहीं, अंदर की तस्वीरें तो और भी लापरवाही की गवाही दे रही हैं। जलकर तबाह हुई बिल्डिंग के अंदर घुसते ही इस बात का अंदाजा लग जाता है कि आखिर आग के दौरान यहाँ किस तरह का आलम होगा, और सबसे बड़ी बात, फंसे लोगों के पास निकलने का कोई रास्ता ही नहीं होगा।
1: देखिए, बिल्कुल मैं इस समय पर उस कॉम्प्लेक्स के अंदर मौजूद हूं। आप देखिए किस तरीके का ये एंट्री एग्जिट पॉइंट था, और ये बहुत छोटा सा पहली बिल्डिंग है जो पेट शॉप जिसको कहा गया, इसी पेट शॉप में सामान रखा था, और यहां से ऊपर के फ्लोर पर जो स्टूडियो था, जो कोचिंग सेंटर था जहां पर लोग फंसे थे, और उसके बाद ये अंदर का ये पूरा नजारा है। आपको तस्वीरों के जरिए दिखाते हैं कि पूरा सब कुछ तहस नहस हो गया, और तहस नहस होने के बाद ये पूरा 15 लोगों की जान चली गई। उत्तर प्रदेश सरकार ने इस मामले में SIT गठित की है।
0: इस रिहायशी बिल्डिंग को 2014 में कमर्शियल कॉम्प्लेक्स बनाया गया था, यही वजह है कि यहाँ आने जाने के लिए केवल एक ही रास्ता था।
1: और ये छोटा सा रास्ता है, ये इस रास्ते से, यही एक एंट्री और एग्जिट पॉइंट था, इसी एंट्री एग्जिट पॉइंट से सिर्फ ये एक पूरा सा एक छोटा सा एक बॉक्स नुमा ये बिल्डिंग है। इस बॉक्स नुमा बिल्डिंग के अंदर ही लोग सिर्फ इसी से, जो बच्चे थे, जो लोग थे, वो इसी छोटे से रास्ते से, और कोई रास्ता था ही नहीं, ये इस रास्ते से अंदर जाना, बाहर जाना। और जब आग लग गई तो उसकी वजह से धुएं ने और आग ने अफरा तफरी मच गई और लोग फंस गए। और ये अब आपको रास्ता दिखाते हैं, ये रास्ता है, इस रास्ते के जरिए ये एक एंट्री एग्जिट पॉइंट है। मैं आपको दिखा रहा हूँ तस्वीरों के जरिए दिखाने की कोशिश की, ये एंट्री एग्जिट पॉइंट है।
0: मतलब बच्चों को मरने से बचाने का कोई इंतजाम नहीं था, और हैरानी की बात ये कि गैर कानूनी तरीके से यहाँ कोचिंग चल रही थी, और उत्तर प्रदेश के नीति नियंताओं को कानों कान खबर नहीं थी। नींद तब टूटी जब 15 बच्चों की जान चली गई। संतोष शर्मा, लखनऊ आज तक।
2: और इस बीच बड़ी खबर आपको बता दें, इस अग्निकांड में SIT की जांच शुरू हो गई है और बयान दर्ज करना भी SIT ने शुरू कर दिया है। लखनऊ के चीफ फायर ऑफिसर के साथ साथ घटनास्थल पर पहुंचने वाले पुलिसकर्मी और दमकल कर्मियों के बयान लिए जा रहे हैं। कितने बजे पुलिस को सूचना मिली, कितनी देर बाद फायर ब्रिगेड पहुंची, ये तमाम सवाल किए जा रहे हैं। सब कुछ पुलिस के दस्तावेजों से, पुलिस कर्मियों के बयान से मिलाया जाएगा। सघन जांच इस वक्त SIT कर रही है। 2 सदस्यीय ये जांच कमेटी है जिसको मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने स्वयं गठित किया है। पुलिस दस्तावेज से अब मिलान किया जाएगा बयानों का।

और इस बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें, इस पूरे मामले में कार्रवाई शुरू हो चुकी है। 4 आरोपियों को न्यायिक हिरासत में भेजा गया है, 3 को सलाखों के पीछे भेज दिया गया है। सभी आरोपियों को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। गिरफ्तार 4 में से 3 को जेल भेज दिया गया है। मालिक वीरेंद्र शुक्ला अस्पताल में भर्ती हैं और इस बीच 4 में से 3 आरोपियों को जेल भेज दिया गया है। तो भ्रष्टाचार और लापरवाही की आप इंतहा देखिए कि जिस इमारत में

0: किलोवाट के कमर्शियल बिजली कनेक्शन की मंजूरी मिली थी, वहां बिजली का लोड 34 किलोवाट से ज्यादा का था। बिजली का लोड बढ़ा हुआ था और ऊर्जा मंत्री को कानो कान खबर नहीं थी। यही वजह है कि एक शॉर्ट सर्किट ने 15 बच्चों की निर्मम तरीके से जान ले ली। काश ये जिम्मेदार लोग पहले जाग जाते तो बच्चे शायद आज जिंदा होते।
1: है किसी की जुबान में ये ताक कि बता सके कि इन बच्चों की क्या खता थी जो इन्हें ये सजा मिली। अरे ये तो तैयार हो रहे थे नई जिंदगी को जीने के लिए, ये तो सपने बुन रहे थे बेहतरीन जिंदगी के, लेकिन लापरवाही की आग ने सब फूंक दिया सपने अपने। जिस वक्त यह हादसा हुआ, सबसे ज्यादा लोग बिल्डिंग के ऊपरी वाले हिस्से में चलने वाले गेमिंग जोन में मौजूद थे। गेमिंग जोन में एनिमेशन सेंटर का पूरा ढांचा ऑटोमेटिक था। बायोमेट्रिक थंब इम्प्रेशन से दरवाजा खुलता बंद होता था। आग लगते ही लॉक सिस्टम फेल हो गया। जो लोग गेमिंग जोन में थे वो वहीं फंस गए और आग के बीच जिंदगी बचाने की जंग करने लगे। आग कुछ मिनटों में ही ऊंची लपटों में बदल गई। भयानक आग से लोग ऊपर नहीं जा पाए। फंसे बच्चों तक मदद पहुंचाने का कोई रास्ता नहीं था। कुछ लोगों ने पत्थर फेंककर खिड़की तोड़ने की कोशिश की लेकिन कामयाब नहीं हुए। इमारत में फंसे कई बच्चे बाथरूम में जाकर छिप गए ताकि गर्मी और आग की लपटों से बचा जा सके, लेकिन ये कदम आत्मघाती साबित हुआ। वो नल खोलकर पानी गिराते रहे ताकि आग अंदर तक न आए, लेकिन धुआं भरने से उनका दम घुट गया। पूरी बिल्डिंग का ढांचा ऐसा था कि फंसे लोगों को बचने का रास्ता ही नहीं मिला। बिल्डिंग का निर्माण ही कुछ ऐसा था, बस इसे पैसे कमाने का जरिया बनाया गया था। न सुरक्षा का कोई ध्यान था, न ही लोगों की जान की कोई परवाह।
2: जो बेसमेंट बनाया गया था, एक बेसमेंट भी बना हुआ है अंदर, देखिए आपको बेसमेंट भी में भी ले चलते हैं। अंदर बेसमेंट है, ये नीचे मतलब तीन फ्लोर की ये बिल्डिंग, उसके बाद ये बेसमेंट। टोटली अगर कहा जाए तो सिर्फ और सिर्फ सुरक्षा मानकों को दरकिनार करके ये बनाया गया और ये बिल्डिंग बनी हुई है। ये नीचे आते हैं, नीचे आकर के रास्ता, ये बेसमेंट का है ये रास्ता। और इस बेसमेंट के रास्ते से आप देखिए, समझिए कि ये कैसे समझाने की कोशिश करते हैं। ये नीचे जब जा रहे हैं तो ये छोटे बच्चों का जो शॉप है, कपड़ों की शॉप है, टॉय शॉप है, ये तमाम चीजें यहाँ गोडाउन में रखी गई हैं, इकट्ठा की गई हैं। तो ये टोटल ये एक छोटा सा बॉक्स नुमा ये कॉम्प्लेक्स है। इस कॉम्प्लेक्स में सिर्फ और एंट्री और एग्जिट का एक गेट। तो ऐसे में जब हादसा हुआ तो 15 लोगों की दम घुटने से जान चली गई।
1: इस हादसे की शुरुआती जांच में बिजली ओवरलोडिंग का खुलासा हुआ है। जिस बिल्डिंग में हादसा हुआ वहां 20 किलोवाट के कमर्शियल बिजली कनेक्शन की मंजूरी थी, लेकिन पता चला है कि वास्तविक बिजली लोड बढ़कर 34.10 किलोवाट तक पहुंच गया था। तो क्या बिजली ओवरलोडिंग की वजह से शॉर्ट सर्किट हुआ जो इतने भयावह हादसे की वजह बन सका? और अगर हाँ तो ऊर्जा मंत्री ए के शर्मा की ऊर्जा कहाँ थी? उनके शासन में यह सब चल रहा था, उन्हें खबर क्यों नहीं थी? क्या बिजली मंत्री अरविंद कुमार शर्मा पर कोई कार्रवाई होगी? क्या घुट कर मर जाने वाले इन बच्चों की मौत के लिए ऊर्जा मंत्री को भी जिम्मेदार नहीं माना जाना चाहिए?
2: फोरेंसिक की टीम अंदर है, फोरेंसिक के डायरेक्टर FSL अपने 6 सदस्यीय टीम के साथ एक एक चीज का बारीकी से मुआयना कर रहे हैं। फोरेंसिक की टीम सबसे महत्वपूर्ण इसलिए हो जाती है क्योंकि यही वो टीम है जो बताएगी कि आखिर ये आग कहां से लगी, कहां से फायर का ओरिजिन हुआ, कहां से। वो शॉर्ट सर्किट था तो AC का पैनल शॉर्ट सर्किट हुआ, या फिर इलेक्ट्रिकल जो कंट्रोल पैनल बनाया गया वो शॉर्ट सर्किट हुआ। यही वजह है कि एक एक पैनल के की जांच की जा रही है। जो फॉरेंसिक के एक्सपर्ट्स हैं, जो टीमें हैं, वो एक एक चीज की वीडियोग्राफी कर रही है, फोटोग्राफी कर रही है, ताकि ये समझा जा सके कि आखिर ये घटना हुई तो कैसे हुई और आग के साथ धुआं किस वजह से फैल गया। क्योंकि धुआं फैलने के भी अपने कारण होते हैं कि वहां पे प्लास्टिक ज्यादा था जिसकी वजह से आग के पहले धुआं इतना घनघोर हो गया और इसके बाद धुएं के अलावा जो फायर एग्जिट का जो नॉर्म्स होते हैं किसी भी बिल्डिंग से बाहर निकलने के, वो कितना पालन किया गया, तो वो तो सामने ही दिख रहे हैं।
1: लखनऊ में हुए हादसे की जांच के लिए SIT का गठन कर दिया गया है। 4 लोगों की गिरफ्तारी भी हुई है, निगम के अधिकारियों पर भी कार्रवाई हुई है, मगर उन सबका क्या जो ऊपर बैठे हैं? उन पर कार्रवाई कब होगी? आशीष श्रीवास्तव और समर्थ श्रीवास्तव के साथ संतोष शर्मा, लखनऊ आज तक।
0: इस बीच बड़ी खबर आपको बता दें, लखनऊ अग्निकांड वाले कॉम्प्लेक्स को एलडीए ने भी अब जांच के दायरे में लाया है। फोरेंसिक और एसआईटी के बाद एलडीए की टीम ने वहां निरीक्षण किया। एलडीए के अधिकारी हर बिल्डिंग के फ्लोर का निरीक्षण कर चुके हैं।
3: जो रिपोर्ट देनी होगी हम अपना अपने आप वाइस चेयरमैन को देंगे, उनको जो हमने देखा।
4: आप सर आपने क्या देखा, ये तो बता दीजिए।
3: हम जो देखे वो हम रिपोर्ट बनाएं भाई। पूरी कमेटी, कमेटी पूरा कमेटी है, सारी कमेटी जो है सब लोग मिलके अभी हम रिपोर्ट बनाएंगे। अभी चीजें आप देख देख कर वहाँ बात करेंगे उसको।
0: हादसा होता है उस पर अफसोस भी जताया जाता है, फिर जांच बिठाई जाती है, फिर नीचे के कुछ कर्मचारियों पर कार्रवाई भी कर दी जाती है और मामला ठंडा पड़ जाता है। सवाल यही कि किसी भी हादसे में मंत्रियों और बड़े अधिकारियों की जवाबदेही तय क्यों नहीं की जाती है?
1: एक ये जो अपने को खोने वाली एक महिला के बहे, लेकिन सरकारी सिस्टम की अंधेरगर्दी देखिए। अपनी नाकामी पर पर्दा डालने वाले सिस्टम को ये बर्दाश्त नहीं कि दुनिया इनका दर्द देखे। महिला को पुलिस हटा देती है। अब एक और आंसू देखिए, ये उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक हैं, मीडिया के कैमरे के सामने हैं, फफक फफक कर रो पड़े। इन्हें न कोई रोकने वाला और कोई न हटाने वाला। क्या अंधेरगर्दी की आग पर डिप्टी सीएम के आंसू से सरकार की घोर नाकामी के दाग धुल जाएंगे? क्योंकि सवाल अब एक दो नहीं बल्कि 15 जिंदगियों का है। 15 जिंदगियों को सोई हुई सरकार ने बेमौत मार दिया।
5: अभी टोटल 21-22 लोग आए हैं, जिसमें 15 ब्रॉडेड मृत अवस्था में हमारे पास आए हैं और बाकी जो 5-6 लोग घायल हैं वो एकदम ठीक हैं, स्टेबल हैं। एक बच्चा जो ऊपर से कूदा था उसकी कमर में थोड़ी चोट आई है, पर डॉक्टर्स का इलाज कर रहे हैं।
1: दिल और दिमाग को हिला देने वाले इस खौफनाक दृश्य को देखिए। लेकिन हादसे के बाद घटना स्थल पर जिम्मेदारों की मौजूदगी पर सवाल है। ऐसा तो है नहीं कि रातों रात इतनी बड़ी बिल्डिंग खड़ी हो गई, लेकिन लखनऊ के अलीगंज में एक बड़ा हादसा हुआ तो पूरा सरकारी अमला मानो एक पैरों पर खड़ा हो गया। काश इनकी नींद वक्त रहते टूटी होती तो आज 15 घरों में मातम नहीं होता। संजय प्रसाद एडिशनल चीफ सेक्रेटरी होम है, घटना स्थल पर मुआयना करने पहुंचे। पहले नींद टूटी होती तो हादसा नहीं होता। राजीव कृष्ण डीजीपी उत्तर प्रदेश हैं, घटना स्थल पर मुआयना करने पहुंचे। पहले नींद टूटी होती तो हादसा नहीं होता। सुजीत पांडे डीजी फायर उत्तर प्रदेश हैं, खाना पूर्ति नहीं की होती तो हादसा नहीं होता। विशाख जी लखनऊ के कलेक्टर हैं, पहले नींद टूटी होती तो हादसा नहीं होता। ब्रजेश पाठक उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम हैं, सिस्टम के दुश्मनों को रुलाया होता तो खुद नहीं रोते। अरविंद कुमार शर्मा उत्तर प्रदेश के ऊर्जा मंत्री, जिम्मेदारी निभाते तो बच्चे बच जाते। दरअसल एक सेट पैटर्न चल रहा है, हादसा होता है उस पर अफसोस जताया जाता है, फिर मंत्री मुख्यमंत्री हादसे की जगह पर पहुंचते हैं, एक जांच समिति बनती है और फिर सन्नाटा। इस बार भी जिम्मेदारों पर बड़े और कड़े एक्शन का दावा मुख्यमंत्री योगी ने किया है। पीड़ितों की आप बीती भी सुनी है, सवाल यही है कि जांच की फाइलों में 15 मौतों की सच्चाई दम तोड़ देगी या सच में कोई सख्त कार्रवाई भी होगी। लखनऊ से कुमार अभिषेक, समर्थ श्रीवास्तव और संतोष शर्मा के साथ आज तक ब्यूरो।
0: इस बीच बड़ी खबर आपको बता दें, लखनऊ के केजीएमयू में पीड़ित परिवारों से मिलने पहुंचे हैं समाजवादी पार्टी सुप्रीमो अखिलेश यादव। अखिलेश ने योगी सरकार पर निशाना साधा है। अखिलेश ने कहा कि बड़े अधिकारियों के खिलाफ एक्शन क्यों नहीं हो रहा। जाहिर तौर पर विपक्ष भी अब हमलावर है इस अग्निकांड।
6: ये जो घटना है जिम्मेदारी बड़े अधिकारियों की बनती है और बड़े अधिकारियों क्यों बचा रहे हैं? देखिए, बड़े अधिकारी बड़े होशियार होते हैं, वो सीधे घटना में मुख्यमंत्री जी को ले आए। अब मुख्यमंत्री जी फेस बन गए। जिन अधिकारियों की वजह से घटना हुई वो मुख्यमंत्री जी को सामने आगे कर दिए। अब मुख्यमंत्री जी को जवाब देना पड़ेगा। कम से कम मुख्यमंत्री जी को ये तो होशियारी अधिकारियों की समझनी चाहिए कि फायर एनओसी की वजह से या नक्शे की गलत होने की वजह से या दुष्टीकरण की वजह से वो क्यों उनको आगे कर रहे हैं। और लखनऊ में पता कर लेना आप, जितने बीजेपी की सरकार में नक्शे पास हुए हैं सबकी जांच होनी चाहिए, फायर एनओसी जहां पर हुआ उसकी भी जांच होनी चाहिए।
0: और जांच में ये पता चला कि जिस इमारत में आग लगी वो अवैध थी, 2016 में गिराने का आदेश हुआ था, बाद में आदेश निरस्त भी कर दिया गया। लखनऊ विकास प्राधिकरण यानी कि एलडीए के वीसी प्रथमेश कुमार ने बताया कि बिल्डिंग मालिक को नोटिस जारी कर 15 दिन में जवाब मांगा गया है।
1: दर्द की ये चीखें सिस्टम को क्यों नहीं हिला पाती? धुएं का ये गुबार किसी नेता के दामन को मैला क्यों नहीं लगा पाता? एसआईटी गठित हो जाती है, एक्शन के नाम पर कुछ बलि के बकरे तलाश लिए जाते हैं, लेकिन ना किसी बड़े अधिकारी की जिम्मेदारी तय होती है, ना ही किसी मंत्री की। क्यों अधिकारियों को जेल नहीं भेजा जाता? क्यों नेताओं के इस्तीफे नहीं लिए जाते?
7: बिल्डिंग के ओनर के विरुद्ध तथा उस बिल्डिंग में चल रहे 3 प्रतिष्ठान के ओनर्स के विरुद्ध जो है मुकदमा दर्ज किया गया है।
1: क्या सिर्फ मालिक ही जिम्मेदार है? उन अधिकारियों पर एक्शन क्यों नहीं जो मोटा पैसा वसूलते हैं? रिहायशी मकान में दफ्तर दुकान कैसे बन गए? मौत की सौदागरी कर मुनाफा वसूली में कौन कौन शामिल था? लखनऊ विकास प्राधिकरण क्या कर रहा था? नगर निगम क्या कर रहा था? पुलिस क्या कर रही थी? दमकल विभाग क्या कर रहा था? बिजली विभाग क्यों सन्नाटे में था? और तो और, पार्षद से लेकर मेयर तक, विधायक से लेकर सांसद तक और मंत्री से लेकर मुख्यमंत्री तक,
6: क्या 10 साल से कोई सरकार नहीं है? सरकार की जिम्मेदारी क्या बनती है? और एनओसी देने वाले लोग आखिरकार भ्रष्टाचार कर करके एनओसी क्यों दे रहे हैं? उसके लिए जिम्मेदार कौन है? और अगर कार्रवाई हुई है, ये सामान्य घटना नहीं है। जब आप फायर के मानकों पर कोचिंग बंद कर रहे हैं तो कम से कम सरकार को देखना तो चाहिए था कि और जगह जांच करते। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में जो नक्शे पास हुए हैं, जिनको एनओसी मिला है फायर का, कम से कम उनकी ठोस जांच होनी चाहिए। जो घटना आज हुई है, कल हुई है, वो दोबारा घटना ना हो।
0: फिलहाल वक्त एक ब्रेक का उछला है, बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आज तक।
8: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाएं स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा प्यार से परोस, इन एसोसिएशन विद
9: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
8: चोगन परफ्यूम्स, द फ्रेंच एडिशन फॉर हिम एंड हर।

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: ऊंचाई पर बने रहने के लिए जरूरी है इरादों का प्योर होना। कैलेंट एडवांस बनाते हैं ऐसा स्टील जो अंदर से है ज्यादा प्योर ज्यादा मजबूत। कैलेंट एडवांस TMT रीबार निर्माण का रियल हीरो।
3: Where the software engineer meets the gifted content writer, meets the cool UI UX designer, meets the talented photographer to create the big dream. The world comes together at Sharda University. So where are you?
4: Oh no, बहुत बोर लग रहा है।
5: Take it, date, not bites.
6: No added sugar, preservative के बिना dates, बादाम, पिस्ता, काजू और शहद से तैयार किया गया Lion Dates Nut Bites.
5: Take it, Lion Date, not bites.
7: गोल्डी हिंग का तड़का लगे तो सभी दबा के खाते हैं। गोल्डी हिंग कण कण में जान।
8: जिंदल साथी सील है तो असली स्टेनलेस स्टील है।
9: तो जब भी आप स्टेनलेस स्टील पाइप्स एंड ट्यूब्स खरीदें, जिंदल साथी सील जरूर चेक करें।
8: जिंदल स्टेनलेस, इंडियाज लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ स्टेनलेस स्टील।
10: जब बात हो सोयाबीन के खेतों को खरपतवार से बचाने की, तो हर असली हीरो की पहली पसंद है क्रिस्टल क्रॉप का अमोरा। अमोरा तेज तरार वार, हारे अब खरपतवार। देश के हीरो की पहली पसंद।
11: इन एसोसिएशन विद हिंट, बड़े आराम से शारदा यूनिवर्सिटी। द वर्ल्ड कम्स टुगेदर एट शारदा यूनिवर्सिटी। वेयर आर यू?
12: विमल बोलो जुबां केसरी।
13: Cool, stylish fans. Enhance home decor with beautiful fans.
14: Punjab National Bank, भरोसे का प्रतीक।
15: जो निवेश का खेल है वो प्रोबेबिलिटी का खेल है। जो जितना भी निवेश है उसका 90% या 100% भारत में नहीं होना चाहिए। क्यों होना चाहिए जब भारत 3% है? गोल्ड बहुत ही ज्यादा वॉलेटाइल कमोडिटी है। आप डॉलर टर्म्स में देखें,
16: स्किल बहुत इंपॉर्टेंट है या फिर लक बहुत इंपॉर्टेंट है?
15: आप गलत टाइम पे बाजार से बाहर जाते हो और गलत टाइम पे अंदर आते हो। अब आपको खेलना कैसे है, नॉट टू लूज, कि अपने कैपिटल पे बड़ा हिट नहीं लेना है। उसको तरफ जाइए ही मत, ये पूरा स्कैम है। और मैं इससे स्पष्ट शब्दों में नहीं कह सकती हूँ।
17: जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए श्री संत का।
18: Please, Bajipa, please do Lalan Talk Show. It's a request. And please to speak truth.
17: April 2026 में उन्होंने एक रिटेल कंपनी का ऐड किया।
18: ऐसे हरकतें आप करोगे आपके भाई के साथ? I challenge you, Bajipa. अगर आपको इतना प्रॉब्लम है तप्पड़ खांड से और आप इतना कमा रहे हो, हमें भी तो कमाने दो। आओ ना रिंग में। Wait. Come.
19: 25 सालों से जहां टिकी है देश की नजर, मेरे साथ फिर से शुरू हो रहा है वही सफर। ये है खबरें 7 तक, देखते रहिए आज तक।

0: लखनऊ अग्निकांड में जान गंवाने वाले अब्दुल रहमान अपने परिवार का एकलौता सहारा थे। दिव्यांग पिता और बहन की जिम्मेदारी पिछले कई सालों से उनके कंधों पर थी। एनिमेशन का कोर्स करने के बाद उन्हें उसी संस्थान में नौकरी मिल गई थी और वो पिछले 4 साल से यहाँ काम कर रहे थे। अब उसी सेंटर में लगी आग में उनकी जान चली गई। उनके परिवार पर तो जैसे दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। लखनऊ के आदित्य श्रीवास्तव ने तो अपनी मां के सामने ही दम तोड़ दिया। मां बिल्डिंग में फंसे अपने बेटे की बेबसी को देखने के अलावा कुछ नहीं कर सकी। वो मदद के लिए चिल्लाती रही, इधर उधर भागती रही, लेकिन अपने बेटे को नहीं बचा पाई। ये दुख, ये दर्द, बेटे को खोने की एक यातना अब इस मां को जिंदगी भर के लिए सताती रहेगी। लखनऊ का पोस्टमार्टम हाउस इस अग्निकांड में अपनी जान गंवाने वाले लोगों के परिवारों के बिलखने का गवाह बना रहा।
1: वैसे ही तस्वीरें आपको हम एक माँ की दिखाएंगे जिसने अपने बेटे को खो दिया है। आप केवल तस्वीरें देखें और ये दर्द देखें और समझें कि सिस्टम की लापरवाही के चलते एक माँ आज बिलखने को तैयार है, मजबूर है। कुछ इस तरह की तस्वीरें आपको इस वक्त हम पोस्टमार्टम हाउस से दिखा रहे हैं और परिवार एकजुट है, लेकिन सवाल पूछे जाएंगे लापरवाही क्यों हुई, आखिर मासूमों की क्या गलती थी, ये भी सवाल होंगे। इतनी बड़ी घटना हो गई है, लापरवाही की जिम्मेदारी कौन लेगा?
2: सर क्या बताएं, किसका बताएं, किसका बता, कुछ समझ में नहीं आ रहा।
1: परिवार को देखिए आप, जरा तस्वीरें दिखाइए कैसे एक माँ को जो है दो बेटे लेकर यहाँ जा रहे हैं और उसने अपनी एक औलाद खो दी है।
0: लखनऊ के अग्निकांड में ज्योति की भी दर्दनाक मौत हो गई। उनके भाई सत्यम को बहन की मौत का सदमा है तो सिस्टम से नाराजगी भी। उनका साफ कहना है कि ये सब कभी नहीं रुकेगा क्योंकि भ्रष्टाचार ने सब कुछ बर्बाद कर दिया है। लखनऊ अग्निकांड ने कई परिवारों के चिराग बुझा दिए। अब सपनों की राख है, जांच के दावे हैं, दोषियों के खिलाफ कार्रवाई के वादे हैं, लेकिन जिनके मासूम बच्चे हमेशा हमेशा के लिए चले गए उन घरों में खुशियां लौटने की गारंटी देने वाला कोई नहीं है। लखनऊ से समर श्रीवास्तव और आशीष श्रीवास्तव के साथ आज तक ब्यूरो।
3: के पहले बहन और भाइयों, आज आप देख रहे होंगे ये डबल इंजन की भारतीय जनता पार्टी की सरकार वन डिस्ट्रिक्ट वन मेडिकल कॉलेज दे रही है, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट दे रही है, वन डिस्ट्रिक्ट वन कुजीन दे रही है, और समाजवादी पार्टी देती थी वन डिस्ट्रिक्ट वन माफिया, यानी हर जिले का एक चिन्हित माफिया था। वो चिन्हित माफिया अराजकता फैलाता था, गरीब के मकान पर कब्जा करता था, गरीब की जमीन पर कब्जा करता था, अपने गुर्गों के माध्यम से व्यापारियों से चौद वसूली करता था, अराजकता का माहौल पैदा करता था। वह माफिया प्रदेश को तबाह करके रखा हुआ था। सरकारी जमीनों पर कब्जा करना, अराजकता पैदा करना उसकी पहचान बन चुकी थी। आज मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि हमारा प्रदेश अब माफिया मुक्त है, गुंडा मुक्त है, उपद्रव से मुक्त है। अब उत्तर प्रदेश में नो कर्फ्यू नो दंगा, अब तो यूपी में है सब चंगा, और जब होता है चंगा तो तब उपद्रव नहीं, तब उत्साह होते हैं। आप सोचो ये समाजवादी

क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।

प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा। चोगन परफ्यूम्स, द फ्रेंच एडिशन फॉर हिम एंड हर।

0: लखनऊ अग्निकांड में एसआईटी की जांच में पकड़ी रफ्तार अधिकारियों के दर्ज किए जा रहे बयान। अखिलेश ने सरकार को घेरा, कहा योगी राज में पास सभी नक्शों की हो जांच। राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में एसआईटी ने यूपी सरकार को सौंपी प्रारंभिक रिपोर्ट। फिलहाल किसी को क्लीन चिट नहीं, कुछ कर्मचारियों पर केस की सिफारिश। भोजपुर के भरत तिवारी इनकाउंटर में एक्शन। जगदीशपुर के एसडीपीओ, शाहपुर थानाध्यक्ष समेत कई पुलिसकर्मियों पर एफआईआर। बवाल के बाद बागफुट पर बिहार पुलिस। पद्म पुरस्कार से 65 हस्तियां सम्मानित। शिव सोरेन को मिला मरणोपरांत पद्म भूषण। रोहित शर्मा, अलका याग्निक, ममूटी को राष्ट्रपति ने दिया सम्मान। पीओके में विद्रोह का ठीकरा। भारत पर फोड़ने वाले ख्वाजा आसिफ को भारत का करारा जवाब। विदेश मंत्रालय ने कहा अपनी नाकामियों को छिपाने के लिए मनगढ़ंत दावे कर रहा है पाकिस्तान।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी। लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा प्यार से परो। चोगन परफ्यूम्स, द फ्रेंच एडिशन फॉर हिम एंड हर।
0: नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं विशेष, आपके साथ मैं नेहा बाथम। लखनऊ के अग्निकांड में इन सवालों की जांच तो अब होती ही रहेगी कि क्या यह इमारत अवैध रूप से बनी थी, फायर एसओपी था या फिर नहीं था, या जितना लोड सैंक्शन था उससे ज्यादा बिजली चल रही थी। लेकिन क्या इन सवालों के जवाब खोजने से उन 15 परिवारों को इंसाफ मिल पाएगा जिन्होंने इस हादसे में अपनों को खो दिया। सोचिए उस मां पर क्या बीत रही होगी जिसने अपने बेटे के वीडियो कॉल करके ये कहा कि अब वो बच नहीं पाएगा, और फिर घर पर बेटे की लाश आई। ऐसी एक नहीं, ऐसी 15 घर की कहानियां हैं। पूरी रिपोर्ट देखिए।
2: लखनऊ में भ्रष्टाचार की आग में मरने वाले 15 लोगों की यही कहानी। किसी का बेटा गया, किसी की बेटी गई, किसी का भाई, किसी की बहन। इन 15 परिवारों की तो दुनिया ही उजड़ गई।
3: बेटा भी आज जिंदा होता, मेरा बेटा भी होता दुनिया में, मेरी तो दुनिया उजड़ गई, मेरा बेटा भी होता दुनिया में।
2: सोचिए उस माँ पर क्या बीती होगी जिसके सामने उसका बच्चा अंदर आग में फंसा हुआ था और वो कुछ नहीं कर पाई। सोचिए उस पिता पर क्या बीती होगी जिसे आग में फंसे उसके बच्चे ने फोन किया कि पापा मुझे बचा लो। क्या गलती थी इन बच्चों की? कोई पढ़ता था, कोई पढ़ाता था, आंखों में सपने लिए एनिमेशन सीख रहे थे। उन्हें क्या पता था कि भ्रष्टाचार की ईंटों और रिश्वतखोरी के सीमेंट और रेत से बनी ये इमारत एक दिन उनकी जान ले लेगी। मौत भी ऐसी कि पहले बेबस, असहाय, मजबूर बने और फिर घुट घुट कर मर गए। संसार का कौन माता पिता ऐसा होगा जो ये दिन देखना चाहता है, लेकिन लखनऊ के नीलेश के अभागे माता पिता को ये देखना पड़ रहा है। सामने बेटे की लाश पड़ी है, बगल में अर्थी तैयार की जा रही है, माँ तो संभाले नहीं संभल रही। पिता सिस्टम पर सवाल उठा रहे हैं, लेकिन हिंदुस्तान में एक आम आदमी कर भी क्या सकता है?
4: सरकार को जिम्मेदार मानते हैं और किसको मानेंगे हम? क्यों इसकी कोई देखभाल या इस तरीके की व्यवस्था ही नहीं होती है जो कि बिल्डिंगों की चेकअप कराए जाएं, शॉर्ट सर्किट ना हो, देख देख सुविधा असुविधा की बात है।
5: कोई एग्जिट नहीं था, होता तो बच्चे निकल सकते थे आदित्य।
4: मौके कोई था ही नहीं, बंद था सब। अब जिस हिसाब से दिखाया गया उस हिसाब से बंद है सब, बाहर के आदमी खड़े क्या करें, कुछ कर ही नहीं सकते थे।
2: 27 साल का नीलेश लखनऊ का ही रहने वाला था, बचपन से आर्टिस्ट था, हुनरमंद था, अच्छे स्केच बनाता था, वो तो एनिमेशन सीख गया, इंस्टीट्यूट में पढ़ाता था। परिवार लोअर मिडिल क्लास है, जिस कंप्यूटर पर बैठकर नीलेश एनिमेशन बनाता था वहाँ भाई मिला, लेकिन भाई हमसे बात ही नहीं कर पाया।
6: बैठ के कभी गेम खेला करता था, हम लोग बातचीत किया करते, रात के दो दो तीन तीन बजे तक साथ में समय बिताते थे। यहाँ गर्मी लगती तो दोनों भाइयों ने मिलकर एसी लगाया, तो इसी तरह हम लोग यहाँ सारा समय हम लोग यहीं बिताते थे। छुट्टी का दिन भी पूरा यहीं बीतता था हमारा उसके साथ।
5: हम समझ सकते हैं, बहुत आपके लिए बहुत ही दर्द भरा क्षण है।
6: मुझे जाना पड़ेगा।
2: नीलेश की क्या गलती थी, रोजाना की तरह अपने ऑफिस गए थे, भरा पूरा परिवार था, माता पिता भाई भाभी भतीजे सब कुछ तो था, अभी भी है, बस नीलेश नहीं है। नीलेश की भाभी बहुत आक्रोशित दिखाई।
3: बहुत अच्छी स्केचिंग पेंटिंग करते थे, बहुत अच्छी फाइलें बनाते थे, इतने अच्छे अच्छे सिस्टम पे, बहुत बढ़िया।
5: जिम्मेदारी तय होनी चाहिए जो घटना हुई है उसकी।
3: उसकी जिम्मेदारी गवर्नमेंट है, ये शासन प्रशासन है जो हमारे नीलेश को क्या, उसमें जितने बेचारे बच्चे थे उनको सुख सुविधा देते तो आज फायर ब्रिगेड टाइम से पहुंच जाते गवर्नमेंट बचाने। लेकिन नहीं, शासन प्रशासन की गलती है, योगी दोषी है, मोदी दोषी है इसके।
5: कह रहे हैं SIT बना ली है हमने,
3: SIT बनाए चाहे कुछ भी बनाए, लेकिन मेरे देवर को तो वापस नहीं दे सकते ना वो।
2: हादसे में परिवार ने नीलेश को ही नहीं खोया है बल्कि अपनी होने वाली बहू को भी खोया है। नीलेश और अनामिका सामंत एक साथ काम करते थे, पिछले हफ्ते ही दोनों की शादी की बात घर वालों ने तय की थी, बस अब तारीख निकलनी बाकी थी और कल खबर आई कि हादसे में दोनों की ही मौत हो
5: गई। इंगेजमेंट
6: पिछले हफ्ते बातचीत हुई थी हमारी, सब कंफर्म हो गए थे, सब पूरी बात कंफर्म हो गई थी कि हाँ बस अब शादी कब करनी है, ये बातें हो रही थी, ये सब डिसाइड करना था कि कब करनी है, बाकी सारी बात तय हो गई थी।
2: ऐसी एक नहीं कई कहानियां हैं। ये लखनऊ का पोस्टमार्टम हाउस है जहां कल रात उन शवों को भिजवाया गया जिनकी इस हादसे में मौत हो गई। लगातार परिवार आते जा रहे थे, रोते बिलखते, जिन्हें विश्वास ही नहीं हो रहा था कि जिन अपनों को उन्होंने सुबह घर से विदा किया है वो उन्हें पोस्टमार्टम हाउस में आखिरी बार मिल रहे हैं।
5: हम इस वक्त मर्चरी के बाहर है, यानी कि पोस्टमार्टम हाउस, यहाँ वो परिवार आते हैं जिन्होंने अपनों को खो दिया होता है। वैसी ही तस्वीर आपको हम एक माँ की दिखाएंगे जिसने अपने बेटे को खो दिया है। आप केवल तस्वीरें देखें और ये दर्द देखें और समझें कि सिस्टम की लापरवाही के चलते एक माँ आज बिलखने को तैयार है, मजबूर है। कुछ इस तरह की तस्वीरें आपको इस वक्त हम पोस्टमार्टम हाउस से दिखा रहे हैं और परिवार एकजुट है, लेकिन सवाल पूछे जाएंगे लापरवाही क्यों हुई, आखिर मासूमों की क्या गलती थी।
2: ऐसी ही एक कहानी आदित्य श्रीवास्तव की भी है।
5: आप लोग कभी फैमिली?
3: हमारा बेटा है।
2: आदित्य की माँ को जैसे ही पता चला कि आग लगी है वो तुरंत घटनास्थल पर पहुंच गई, उनके साथ छोटा बेटा था। कल हमारे संवाददाता समर्थ श्रीवास्तव को रिपोर्टिंग के दौरान आदित्य की माँ यहीं पर मिली।
5: मैडम आप लोग कभी फैमिली है?
3: हमारा बेटा है।
5: KGMU गए आप लोग?
3: हाँ, कह रहे KGMU ले गए तो वहाँ जा रहे हैं।
5: कॉन्टेक्ट नहीं हो पा रहा?
3: नहीं, कुछ नहीं पता।
5: क्या नाम है बेटे का आपके?
3: आदित्य श्रीवास्तव।
5: यहाँ गेमिंग जोन में काम करता था?
3: हाँ, यही जॉब करता था।
5: गेमिंग जोन है?
3: गेमिंग वाला नहीं था वो, एनिमेशन।
2: सोचिए, माँ बाहर से देख रही है बेबस मजबूर, उसे पता है कि बेटा अंदर इस भीषण आग में फंसा है। शायद वो अंजाम भी जान रही थी लेकिन वो कुछ नहीं कर पाई, सिर्फ और सिर्फ इस मर चुके सिस्टम के सामने अपने बेटे की मौत देखती रही।
7: माँ जब गई है तो वहाँ लपटे उठ रहे हैं।
5: मतलब उनकी मदर अपने बेटे के ऑफिस पहुंची तो देखा कि ऑफिस के बाहर लपटे,
7: वो सब लपटे वहाँ, सब वो बुझाने जाने को चल रहा। तब तक हम घर पर थे तो मंजिले वाले बेटे पास फोन, भाई भैया, तो वो करने लगा, हाय अरे क्या हुआ, हाय तो हमने कहा क्या हुआ क्या, तो वो कहे कि बुआ क्या आदित्य वहाँ आग लग गई है बिल्डिंग में, उनके यहाँ कोचिंग वाले, और उसमें जो है तो वो उसी के अंदर फंसा हुआ। तब छोटे बेटे को हमने आवाज दी, कहा कि भैया निकलो जल्दी, भागे, उसके बाद निकल लिए। ये सबसे बड़ी दर्दनाक घटना हुई। कि माँ के सामने बेटा अंदर।
5: मतलब माँ आदित्य की उस वक्त जहाँ पर वो पूरा संस्थान बना है वहाँ मतलब बाहर मौजूद हैं और सामने उनका जहाँ पर वो ऑफिस बना है वो धधक रहा है।
7: तो वो आग लग चुकी थी जब पहुंची, आग लग चुकी थी, फिर उसके बाद जो है बुझाने का और निकलने का काम हो रहा था। जो कुछ
2: ज्योति भी इस हादसे का शिकार हुई है। ज्योति सुबह इसी स्कूटी से कोचिंग सेंटर पहुंची थी लेकिन हादसे में ज्योति की मौत हो गई। ज्योति के भाई सत्यम आज सुबह उसकी स्कूटी लेने के लिए आए थे।
8: ऐसा चलता रहेगा, मेरे को कोई उम्मीद नहीं है, कच्चा जो गवर्नमेंट आ जाए, लोग ही ऐसे हैं, पैसे दे के सब पास हो जाता है, अब वो ऐसे होता रहेगा, तो इसमें मुझे उम्मीद नहीं है।
5: दम घुटने से मौत हुई है यहाँ बताया गया है,
8: मेरा लॉस है और किसी का सबका फायदा है।
5: ठीक है, ठीक है, मैं समझ सकता हूँ, आप परिवार को देख रहे हैं, समझ रहे हैं, भाई हैं ज्योति के, आंखों में आंसू लिए हैं, उनकी ये स्कूटी है, इसी स्कूटी से सोचिए वो लड़की इसी स्कूटी से आई थी और इस स्कूटी से आ तो गई लेकिन अब ये स्कूटी यहीं खड़ी रहेगी या इनके भाई ले जाएंगे। किसी को उम्मीद नहीं थी घर पर कि जिस स्कूटी से वो यहाँ आएगी उस स्कूटी को वो वापस कभी नहीं ला पाएगी। ज्योति जैसे तमाम चिराग अब बुझ चुके हैं, इन परिवारों में कुछ बचा है तो बस खामोशी और इस इमारत में केवल सन्नाटा।
2: लखनऊ अग्निकांड में जान गंवाने वाले अब्दुल रहमान अपने परिवार के इकलौते सहारा थे। दिव्यांग पिता और बहन की जिम्मेदारी पिछले कई वर्षों से उनके कंधों पर थी। एनिमेशन का कोर्स करने के बाद उन्हें उसी संस्थान में नौकरी मिली थी जहां वो पिछले 4 साल से काम कर रहे थे।
9: ये 3 बजे जब आग लगी है तब तो हमने खुद ही सोशल साइट पे डाला था, तब तक हमें नहीं पता था। अभी 8 बजे पता चला कि हमारा भतीजा रहमान भी इस आग का शिकार हो गया। तो
10: घर में क्या स्थिति है उनके घर?
9: घर में पिताजी विकलांग है, माँ टीचरिंग करती थी, बच्चा अभी दो ही तीन महीने हुए, जॉब पे था, काम भी करता था, वहीं पढ़ाई भी करता था।
10: अब परिवार की कैसे जिम्मेदारी और क्या चाहते हैं आप लोग इस पूरी घटना पर?
9: हम लोग चाहते हैं निष्पक्ष जाँच हो और ज़्यादा से ज़्यादा परिवार को मुआवजा दिया जाए ताकि उसकी माँ की भी कोई ऐसी स्थिति नहीं हो। परिवार में कोई दूसरा कमाने वाला नहीं था, इकलौता बच्चा था, यही का पालन पोषण करता था, घर की देखभाल करता था।
0: रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन होंगे हाजिर, आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आज तक।

0: क्या उद्धव की पार्टी में एक और टूट होगी? क्या सांसदों के बाद विधायक भी टूटेंगे? उद्धव की बैठक में क्यों नहीं आए तीन विधायक? कहते हैं दूध का जला छाछ भी फूक फूक कर पीता है। उद्धव ठाकरे के साथ कुछ ऐसा ही हो रहा है। सांसदों की बगावत झेल चुके उद्धव ठाकरे की कोशिश है अपने विधायकों पर पकड़ बनाए रखने की। कल मुंबई में उद्धव ने विधायकों की बैठक बुलाई, लेकिन इस बैठक से नए सवाल निकले। बैठक में तीन विधायक और एक एमएलसी नहीं पहुंचे। यवतमाल से विधायक संजय देरकर, परभरी से विधायक राहुल पाटिल, कलीना मुंबई से विधायक संजय पोतनीस और एमएलसी सुनील शिंदे इस बैठक से नदारद रहे। हालांकि पार्टी सूत्रों के मुताबिक इन सभी नेताओं ने अपनी गैर हाजिरी को लेकर पहले से जानकारी दे दी थी, लेकिन संशय तब बढ़ गया जब संजय राउत विधायकों को लेकर पूछे गए सवाल का जवाब दिए बिना ही निकल गए। थोड़ी देर बाद शिवसेना विधायक मुरजी पटेल की ओर से बड़ा दावा किया गया। मुरजी पटेल ने कहा कि एकनाथ शिंदे उद्धव की पार्टी के खिलाफ ऑपरेशन टाइगर 3 की तैयारी में है।
1: इसके बाद ऑपरेशन 3 की तैयारी माननीय एकनाथ साहब शिंदे साहब के नेतृत्व में होने जा रही है। अभी जब उनके साथ पास थे तभी अच्छे थे, अभी गए तो बुराई कर रहे, कहीं ना कहीं गलत है। उनको संभालने नहीं आया, इसके लिए हमारे पास आए हैं और पूरा ध्यान पार्टी उनका रखे।
0: कल ही मुंबई में उद्धव के 6 सांसदों ने शिंदे की शिवसेना में शामिल होने की घोषणा की। इसके बाद शिंदे का हौसला 7वें आसमान पर है।
2: 4 वर्ष पूर्वी 22 जून 2022 में लौटते शिवसेने आम्ही उठाव केला होता, तेव्हा 40 आमदार सोबत सुरुवातीला होते आणि पुन्हा चौकार नाही षटकार आता मारलेला आहे, म्हणजे काय म्हणतो त्याला सिक्सर।
0: शिवसेना यूबीटी के पास फिलहाल विधानसभा में 20 विधायक और 6 एमएलसी हैं, लेकिन इन पर शिंदे की गहरी नजर है। आज तक ब्यूरो। अपनी पार्टी में टूट के बीच आज उद्धव ठाकरे ने अपने विधायकों की मीटिंग पार्टी दफ्तर शिवालय में बुलाई थी, जिसमें 3 विधायक नहीं पहुंचे, जिनमें संजय डेरकर, राहुल पाटिल, संजय पोतनीस हैं। वहीं एमएलसी सुनील शिंदे भी पार्टी की मीटिंग में शामिल नहीं हुए। महाराष्ट्र में शिवसेना यूबीटी के 20 विधायक और 6 एमएलसी हैं। उद्धव ठाकरे की मीटिंग 1 घंटे तक चली। पार्टी में एकजुटता दिखाने के लिए उद्धव ने आदित्य ठाकरे और संजय राउत के साथ सभी विधायकों और एमएलसी के साथ एक ग्रुप फोटो भी खिंचवाई। हालांकि शिवसेना यूबीटी नेता कह रहे हैं कि जो विधायक नहीं पहुंच सके उनमें बगावत वाला एंगल ना तलाशा जाए, सबकी कुछ न कुछ मजबूरी थी। उद्धव ठाकरे खुद बगावत करने वाले सांसदों के चुनाव क्षेत्रों का दौरा करेंगे। इसके साथ ही उन्होंने पार्टी के वरिष्ठ नेताओं और विधायकों को भी बागी सांसदों के चुनाव क्षेत्र में जाकर पोल खोलने की बात कही है। उद्धव ठाकरे 4 साल में 2 बार पार्टी टूटने से काफी आहत है। वो मतदाताओं से माफी मांग रहे हैं कि उनके चुने सांसद शिंदे से मिल गए। उद्धव ने अपने बचे हुए सांसदों और विधायकों से सरकार को घेरने और जनता के मुद्दे पर आक्रामक रुख अख्तियार करने के निर्देश दिए हैं। उद्धव ये भी मान रहे हैं कि धोखेबाज सांसदों को टिकट देने में उनसे गलती हुई है। जिस तरह शिंदे कैंप के नेता दावा कर रहे हैं कि अभी ऑपरेशन टाइगर थमा नहीं है, यानी सांसदों के बाद अब विधायकों की बारी आने वाली है, तो सवाल उठता है कि क्या उद्धव ठाकरे अपने विधायकों को बगावत करने से रोक पाएंगे?
3: Presented by पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
4: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो
3: ड्यूरेबल पाइप्स फिटिंग्स एंड टैंक्स अ कंप्लीट रेंज ऑफ सैनिटरी सॉल्यूशंस चोगन परफ्यूम्स द फ्रेंच एडिशन फॉर हिम एंड हर।

0: कानपुर में जब से लखनऊ हादसा हुआ है उसके बाद से लगातार जो ड्राइव है वो जारी है। 22 कोचिंग सेंटर्स को सील कर दिया गया है, ये कल की खबर है। फिलहाल इस वक्त मैं मौजूद हूँ कानपुर के कोचिंग सेंटर काकादेव इलाके में, जहाँ पर हजारों कोचिंग सेंटर्स हैं और इस वक्त भी यहाँ पे आप देखेंगे तो केडीए की जो कार्रवाई है कानपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी की वो जारी है। पीछे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर पूरा जो सरकारी अमला है वो मौजूद है और जो अवैध कोचिंग सेंटर्स चल रहे थे उसको सील करने का काम किया गया है। मैं अपने कैमरा पर्सन से रिक्वेस्ट करूंगा कि आपको दिखाने पाए, मौके पर अधिकारी मौजूद है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो कानपुर विकास प्राधिकरण द्वारा ये परिसर जो है ये कोचिंग सेंटर उसको सील कर दिया गया है और ये ठीक उसी तरीके की बिल्डिंग है जैसे कल लखनऊ में हमने देखा आग लगी। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो बेसमेंट चल रहा था, अवैध रूप से पूरा इसका कंस्ट्रक्शन हुआ था। पैसेज जितना देना चाहिए था उतना पैसेज नहीं दिया गया था, सेफ्टी नॉर्म्स पूरे नहीं किए गए थे। यहाँ सामने अगर आप देखेंगे तो इसी तरीके की बिल्डिंग थी लखनऊ में, जहां पर सेफ्टी एग्जिट नहीं था और बच्चों को जो बिल्डिंग है वहां से कूदना पड़ा था। इसी तरीके से आप देखेंगे आगे यहाँ पर एक बिलियर्ड्स क्लब है, ये स्पोर्ट्स क्लब है, इसको भी फिलहाल जस्ट अभी प्रशासन ने जो है वो सील किया है। और अभी आप देखेंगे मेरे पीछे, मैं कोशिश करूंगा किसी अधिकारी से बात करने की जो यहाँ पर फिलहाल मौके पे मौजूद है, कि क्या कार्रवाई आप लोग द्वारा की गई है, कितनी कोचिंग सेंटर सील करे गए।
1: देखिए कल लखनऊ में एक दुखद जो है घटना हुई है जिसमें 15 लोगों की जान चली गई है। यहाँ पर जैसे कि कानपुर में जो काकादेव क्षेत्र है वो कोचिंग के लिए जाना जाता है और यहाँ पर जो है कल भी रात में जो है ड्राइव चलाई गई थी और लगभग 22 जो है इस तरीके के अवैध रूप से जिनका बेसमेंट में गतिविधियां संचालित कर रहे थे उनको सील किया गया है। और आज भी जो है प्राधिकरण की टीमें लगातार जो है ऐसे जगहों को चिन्हित कर रही हैं। और
0: अभय जी, एक सवाल ये है कि किस तरीके से ये कार्रवाई तब हम देख रहे हैं जब लखनऊ हादसा हुआ, इसके पहले भी ये अवैध रूप से चल रहे थे, इलीगल थे, तभी सील करे गए हैं, तो पहले कार्रवाई क्यों नहीं हुई, इस पर एक बड़ा सवाल है।
1: जी बिल्कुल, पहले भी आपको संज्ञान में होगा जो है कि पहले भी इसमें 6 महीना पहले भी एक स्पेशल ड्राइव चलाई गई थी और कई जगहों पर इसमें कार्रवाई की गई थी। कुछ जगहों पर अगर छूट गया था और इस तरीके की गतिविधि चल रही है तो प्राधिकरण के अधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि वो एक एक बिल्डिंग एक एक रोड को देख लें। और चूंकि यहाँ पर तमाम बच्चे जो है कोचिंग इंस्टीट्यूट में पढ़ाई करते हैं तो इस चीज़ को हम लोग इंश्योर कराएंगे कि कहीं भी बिना मानक के अवैध तरीके से संचालन।
2: एक एनकाउंटर जिस पर अपनों के बीच ही घिर गई है सम्राट सरकार, एक एनकाउंटर जिस पर बीजेपी के भीतर ही मोर्चा बंदी हो रही है। 5 दिन पहले यानी 17 जून को भरत तिवारी पर बिहार पुलिस गोलियां बरसाती है और अब 5 दिन बाद खुद बिहार पुलिस और बिहार सरकार पर सवालों की बौछार हो रही है। एक बड़ा और संगीन सवाल भरत तिवारी के इस वीडियो की बुनियाद पर भी हो रहा है जो अभी अभी सामने आया है। तो क्या भरत तिवारी को अंदेशा था कि उसकी मौत करीब आ रही है? क्या उसे एहसास हो गया था कि वो इस तरह एनकाउंटर में मारा जाएगा? भरत तिवारी की शख्सियत और अतीत विवादों से भरा है, इसलिए इस वीडियो को लेकर भी दावा जोखिम भरा हो सकता है। बीजेपी के भीतर इस एनकाउंटर को लेकर किस कदर बेचैनी है ये आप सम्राट सरकार के 2 मंत्रियों के बयानों से समझ सकते हैं। इस एनकाउंटर पर सवाल उठाने वाले, आक्रोश जाहिर करने वाले सिर्फ ये 2 मंत्री ही नहीं है, बीजेपी नेताओं की लंबी फेहरिस्त है जो खुलकर नाराजगी जता रहे हैं। रोहित सिंह, पटना, आज तक।

क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।

लखनऊ अग्निकांड में एसआईटी जांच के बीच भड़की सियासी चिंगारी। अखिलेश ने मांगा योगी राज में पास नक्शों का हिसाब। ब्रजेश पाठक का पलटवार, मौत पर राजनीति न करें एसपी अध्यक्ष। राम मंदिर चढ़ावा मामले में एसआईटी ने यूपी सरकार को सौंपी प्रारंभिक रिपोर्ट। फिलहाल किसी को क्लीन चिट नहीं, कुछ कर्मचारियों पर केस की सिफारिश। बिहार के भरत तिवारी एनकाउंटर में एक्शन। जगदीशपुर के एसडीपीओ, शाहपुर थाना अध्यक्ष समेत कई पुलिसकर्मियों पर एफआईआर। बवाल के बाद बैकफुट पर बिहार पुलिस। पद्म पुरस्कार से 65 हस्तियां सम्मानित। शिबू सोरेन को मिला मरणोपरांत पद्म भूषण।

0: हुए नेता मुआवजे का ऐलान करते हैं और फिर एसआईटी के हाथ में जांच सौंप दी जाती है। लेकिन न किसी मंत्री पर कार्रवाई होती है, न किसी बड़े अधिकारी पर कार्रवाई होती है। हाल की किसी भी हादसे को याद कर लीजिए, अगर कोई बड़ा अधिकारी, बड़ा मंत्री, बड़ा सरकारी बाबू सजा पाया हो, कुर्सी से हटाया गया हो, सस्पेंड तो दूर की बात है, यहां तक कि जेल भी कुछ दिन के लिए मोहरों के नाम पर। छोटे कर्मचारी अगर गए तो चंद दिन में फिर जमानत पर बाहर आ जाते हैं। इसीलिए सोमवार को जो 15 परिवारों ने अपने बेटे बेटियों को खोया, उनकी बात आज यूपी की सरकार सुने, क्योंकि परिवारों को लगता है कि इस बार भी कुछ नहीं होगा सिवाय कुछ दिन जांच जांच खेलने के।
1: मैंने उठाया, मम्मी मम्मी कर रहा था, कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, फिर मां मेरी तस्वीर नहीं दिखाई दे रही थी, फिर बोला कि मम्मी थोड़ा चेहरा दिखाई दिया, उसने आगे आके करके दिखाया, मम्मी आग लगी, मेरा दम घुट गया, मेरे को बचा लो मम्मी, मैं बचा भी नहीं पाई अपने बच्चे को।
2: जवां बेटा गुजर जाए तो कंधा टूट जाता है, 15 परिवार टूट चुके हैं, लेकिन इन 15 परिवारों का आज सीधे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से सवाल।
1: तो आज इतने सारे बच्चे सब बच गए होते, मेरा बेटा भी आज जिंदा होता, मेरा बेटा भी होता दुनिया में, मेरी तो दुनिया उजड़ गई।
2: मुख्यमंत्री से 15 परिवार पूछते हैं, क्या वाकई बेईमानी की माचिस से फिर कहीं आग नहीं लगने दी जाए, कि एसआईटी केवल सवालों की सुलगती आग पर फिलहाल पानी डालने वाला जरिया नहीं बने, केवल निचले मोहरे नहीं बल्कि बड़े अधिकारी, मंत्री और भ्रष्टाचार के मगरमच्छों तक जांच पहुंचेगी, या फिर 4 दिन सवाल उठते हैं उठने दो और फिर सब भूल जाएंगे वाली रवायत चलेगी। उत्तर प्रदेश सरकार को इस बार बताना पड़ेगा, क्योंकि 10 दिन पहले नौकरी ज्वाइन करने वाले भविष्य शर्मा के पिता कहते हैं कुछ नहीं होने वाला, जांच में कुछ नहीं निकलने वाला।
3: जांच कुछ नहीं होगी, सिर्फ कागजी कार्रवाई होगी और कुछ नहीं होगा, वहाँ पे ना आज तक हुआ ना आगे ऐसा होगा।
2: 24 साल के आदित्य श्रीवास्तव के मामा ने सीधे मुख्यमंत्री के नाम अपना संदेश भेजा है, सुन लीजिए मुख्यमंत्री। भांजे को खोने वाले मामा को लगता सरकार कुछ नहीं करने वाली।
4: मंत्री जी से ये तो हम जरूर कहना चाहेंगे कि ये तरीके से भी दिल्ली में कांड हुआ और ये टाई टाई फीस हो जाएगी 4 दिन के बाद, वो अधिकारी वो कैसे नहीं, कैसे नक्शा पास कर दिए, कैसे क्या कर दिए, हाँ, और उसमें होता है कि अभी सब पनिश किए जाएंगे, सब कुछ किया जाएगा, अब उसके बाद
5: आपका कहना है कि 4 दिन में सब भूल जाएंगे।
4: 7-10 दिन के बाद सब भूल जाते हैं, हम दे आज जो है कि 65 साल का मैं हूँ, तो 65 साल से जो है कि सब देखते तो चले आ रहे हैं आप।
2: अपने माता पिता की तस्वीर रचने वाले नीलेश के पिता बेटे को खोने के बाद कहते हैं आश्वासन के सिवाय सरकार कुछ नहीं कर सकती।
6: हादसा हो जाने के बाद किस चीज कोई बात करे, क्या वापस कर सकता है? वो वापस तो नहीं कर सकता, केवल समस्या को समाधान करने के लिए, सुलझाने के लिए केवल आश्वासन देंगे। फिर
2: जो बच्चे बस परिवार की उम्मीदों का भार संभालने के लिए पहला कदम ही उठाए, उनके घर वालों को लगता है कि हमारे देश में जनता की मौत के बाद जांच वो झुनझुना है जिसे बजाकर फुसलाया जाता है, बहलाया जाता है। यही वजह है कि अपनी बहन को खोने वाले भाई सत्यम को सरकार की जांच वाले ऐलान से रत्ती भर उम्मीद नहीं।
7: ऐसा चलता रहेगा, मेरे को कोई उम्मीद नहीं है, चाहे जो गवर्नमेंट आ जाए, लोग ही ऐसे हैं, पैसे दे के सब पास हो जाता है, अब वो ऐसे होता रहेगा, तो इसमें मुझे उम्मीद नहीं है।
2: वो 15 लोग एक बार नहीं, दो दो बार जलाए गए, पहले लखनऊ के अलीगंज की इस बिल्डिंग में सरकारी लापरवाही के हाथ, सरकारी नीम बेहोशी के कारण, और फिर दूसरी बार हिंदू धर्म की मान्यता के मुताबिक चिता पर उन्हें अग्नि दी गई। जिनको न्याय दिलाने के लिए उच्च स्तरीय बैठक की बात कर दी गई, बीच में दौरा छोड़कर पहुंचने की बातें बताई गई, अधिकारियों को फटकार से लेकर किसी को बख्शेंगे नहीं वाली बातें भीतर से बाहर तक आई, लेकिन वो आम आदमी, वो मिडिल क्लास जिसका अपना जल कर मरा है, वो अब की किसी हालत में विश्वास नहीं करना चाहता।
8: किसी भी तरह नहीं दे सकते, शासन प्रशासन की गलती है।
2: नीलेश की भाभी पूछती है, बताइए सरकार कब तक उजड़ेंगे घर बार?
8: एसआईटी बनाए चाहे कुछ भी बनाए, लेकिन मेरे देवर को तो वापस नहीं दे सकते ना, किसी भी तरह नहीं दे सकते, शासन प्रशासन की गलती है, अभी अपने को कुछ होता तो

0: ये VIP यहाँ पर जब मंत्री निकलते हैं तो तुरंत रास्ता बंद कर दिया जाता है, आम आदमी खड़ा रहता है, बच्चे धूप में स्कूल चलाते भी लगते, तब गवर्नमेंट को तरस नहीं आता जनता पे, और वहाँ देवर जल गया जनता को तरस नहीं आया गवर्नमेंट प्रशासन को, वहाँ इतने बेचारे कितनों के घर उजड़ गए, कितने देवर, कितने भाई बहन, किसके किसके बच्चे होंगे सर, वो बेचारे नहीं रहे अब इस दुनिया में, क्या करेंगे उनके माँ, किसी का वो एक सहारा, किसी के इकलौते बच्चे होंगे।
1: 15 के 15 परिवार मानते हैं सरकार किसी की भी हो कुछ नहीं होने वाला। हो सकता है कुछ लोगों को लगे कि ये लोग गुस्से में हैं, ये परिवार दुख में है इसलिए बोल दिया, लेकिन हकीकत ये है कि सच अब सब जानते हैं, क्योंकि हम लोग यही तो देखते आए हैं। पहले कहीं आग लगती है, फिर वहाँ नेताओं का दौरा होता है, फिर मुआवजे का चेक देने के नाम पर सियासी फोटो सेशन होता है, SIT जांच का ऐलान करके चंद दिन धूम धड़ाके से जांच दिखाई जाती है, और फिर या तो निचले स्तर का कर्मचारी, कोई गार्ड, कोई मैनेजर पकड़कर पीठ थपथपा ली जाती है, या फिर जांच जारी है वाली पिपहरी बजाई जाती है, ना कोई उच्च अधिकारी सजा पाता है, ना किसी का मंत्री पद जाता है, ना किसी को जेल होती है, छोड़ दिया जाता है जनता को फिर से भ्रष्टाचार के मुंह में, कहीं जलने, कहीं डूबने, कहीं गिरने, कहीं मरने के लिए।
2: याद करिए नोएडा में क्या हुआ था। युवराज मेहता का नाम याद है, वो युवा इंजीनियर जो उत्तर प्रदेश की शो विंडो सिटी कहे जाने वाले नोएडा में सरकारी लापरवाही के नाले में गिरकर अपनी जान से हाथ धो बैठा। सरकारी सख्ती की बातें बहुत हुई, लखनऊ से गुस्सा भी बहुत दिखाया गया, SIT बनी, लेकिन क्या किसी को याद है उसमें किसी बड़े अधिकारी जो जिम्मेदार हुआ उनको सजा मिली हो? क्या किसी को याद है SIT रिपोर्ट में क्या है? इसीलिए पीड़ित परिवार कहते हैं देख लीजिएगा कुछ नहीं होगा। कुछ हादसे हम आपको याद कराते हैं। 2014 में तमिलनाडु में कुंभकोणम स्कूल के अंदर 94 बच्चे भस्म हो गए थे, दोषियों को केवल 5 साल की सजा हुई। 2017 में मुंबई के कमला मिल्स पब अग्निकांड में 14 लोग मरे, सजा आज तक नहीं मिली। 2018 में इसी लखनऊ में चारबाग होटल अग्निकांड में 5 लोग मर गए, आरोपी जमानत पर बाहर है। 2019 सूरत में तक्षशिला कोचिंग में 22 बच्चे बेमौत मारे गए, सारे आरोपी जमानत पर हैं। 2019 में ही दिल्ली के अनाज मंडी में फैक्ट्री की आग में 43 गरीब मजदूर स्वाहा हो गए, सजा आज तक नहीं मिली। 2022 में फिर इसी लखनऊ के लेवाना स्वीट होटल में 4 लोग मरे, सजा आज तक नहीं मिली। और तब परिवार पूछते हैं कि क्या मजबूत कानून व्यवस्था वाला बुलडोजर केवल मच्छर माफिया और शोधों के खिलाफ चलता है और भ्रष्टाचारियों को किसी स्कीम में छूट मिल जाती है?
3: हमने इन सौदों को तो ठीक किया है, और जो ठीक नहीं हुआ है, बोली से नहीं माना है तो गोली से जरूर मान गया है।
1: तो फिर मुख्यमंत्री ये भी बताएं कि शोधे अगर डर जाते हैं तो आग में जलाकर मार देने वाले भ्रष्टाचारी कैसे बच जाते हैं?
3: उत्सव के रंग में किसी ने भंग करने का काम किया तो फिर वर्तमान तो जाएगा ही जाएगा, भविष्य भी स्वाहा हो जाएगा।
1: तो फिर मुख्यमंत्री से यह सवाल जनता का है कि भ्रष्टाचारी का भविष्य क्यों नहीं स्वाहा हो पाता?
3: हमने माफिया को भी समाप्त किया और मच्छर को भी समाप्त किया।
1: माफिया और मच्छर अगर योगी राज में खत्म हो सकते हैं तो जनता की जान लेता भ्रष्टाचार का राक्षस क्यों नहीं खत्म हो पाता है?
4: ये जो बुलडोजर है ये उत्तर प्रदेश का वही प्रतीक है, दुष्टों के लिए ये उसका उपचार है।
1: दुष्टों का उपचार करने वाला बुलडोजर क्या भ्रष्टाचारियों पर चलने से पहले रुक जाता है? 22 जून के इस वीडियो को देखकर सरकार की नींद उड़ जानी चाहिए, क्योंकि जिस राज्य की राजधानी में सरकार की नाक के नीचे भ्रष्टाचारी बुलडोजर के सीने पर चढ़कर सारे नियम तोड़कर रिहायशी इलाके में कमर्शियल इंस्टीट्यूट चलाएं और कुछ बच्चे जिंदगी बचाने के लिए तार का सहारा लेकर आग के बीच से कूदते दिखें, बाकी धुएं की वजह से घुटकर मर जाएं, तो पूछना जरूरी हो जाता है बुलडोजर वाली कानून व्यवस्था क्या भ्रष्टाचारियों के आगे बेबस हो जाती है? परिवार को अपने दम पर रोशनी देना चाहता था। वो माँ बिलख कर तब रोने लगती हैं जब अर्थी बेटे को ले जाने के लिए आती। बहन एक शब्द बिना आंसू नहीं बोल पाती।
2: जिस तरह के सवाल उठ रहे हैं, जिस तरह का ये पूरा हादसा हुआ और जिस तरह से कार्रवाई उसके बाद चलती है, ये हर व्यक्ति को सोचना है, हर व्यक्ति की जिम्मेदारी। 3 जून को दिल्ली में आग लगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ही निर्देश दिया था कि हर जगह नियम कायदे का पालन होना चाहिए, लेकिन क्या मुख्यमंत्री की इस बात को उनके ही आवास विभाग के अधीन आने वाले एलडीए के वीसी प्रथमेश कुमार को नहीं सुनाई पड़ी, या फिर एलडीए के जो सर्वे सर्वा हैं उन्हें अपनी जिम्मेदारी का एहसास नहीं? क्या मुख्यमंत्री की बात ऊर्जा विभाग के मंत्री, यूपी पावर कॉरपोरेशन के अधिकारी एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल दिए? वरना लखनऊ में सरकार की नाक के नीचे कैसे एक बिल्डिंग अवैध खड़ी रही? क्या इसीलिए क्योंकि कुछ लोगों की जेब गर्म होती रही?
5: भैया वो तैयार ही नहीं, वो जॉब आ गया था, वो ऑफिस था, वो कोचिंग इंस्टीट्यूट नहीं था, वो लाइब्रेरी नहीं थी, वो बच्चे नहीं थे, वो सब सपने तो जाने दूर से, कोई उत्तराखंड से, कोई पंजाब से, कोई तमिलनाडु से, हर बच्चा दूर से आया था भैया, किसी का कोई नहीं था, एक एक का नाम पता है मुझे, सही हम का। हाँ मेरे भाई का ही ऑफिस, मेरा एक भाई हेड था वहाँ पे, दूसरा जो मरा है वो काम करता था।
1: ये परिवार आज रो नहीं रहे होते अगर उत्तर प्रदेश की सरकार की बुलडोजर वाली कानून व्यवस्था, एनकाउंटर वाले लॉ एंड ऑर्डर का डर भ्रष्टाचारियों को भी होता। पुलिस ने जो एफआईआर दर्ज की, एक एक लाइन पर खुद गौर करें, मानो खुद को ही मुंह चिढ़ाने या आईना दिखाने का काम सरकार करती है, जिसमें लिखा है फायर सेफ्टी की कोई व्यवस्था नहीं की गई, इमरजेंसी में बाहर निकलने या भीतर जाने का इंतजाम नहीं था, आने जाने का एक ही रास्ता था, न कोई एग्जिट गेट अलग था, न कोई इमरजेंसी रूट अलग था, बिजली की व्यवस्था अत्यंत अनियमित तरीके से थी, ऐसा कोई इंतजाम नहीं था जिससे धुआं बाहर निकल सके, असुरक्षित तरीके से भीतर ही एसी के आउटर और बिजली उपकरण लगे थे, दुर्घटना की हालत में बचने का कोई सुरक्षा इंतजाम नहीं था। मुख्यमंत्री, मंत्री, अधिकारी की आवभगत में कुर्सियों की तौलिया तक का ध्यान रखने वाली सरकारी व्यवस्था आंख पर पट्टी बांधे बैठी रही और आवासीय इलाके में मानो तमाम विभागों के सर्वे सर्वा की आंख पर नोट की गड्डियों की पट्टी बांधकर जानलेवा कमर्शियल कॉम्प्लेक्स चलता रहा।
6: लखनऊ के जिस कमर्शियल कॉम्प्लेक्स में लगी आग ने 15 लोगों की जान ले ली, वो कमर्शियल कॉम्प्लेक्स लापरवाही और नियम कायदे की धज्जियां उड़ाकर बनाया गया था। इस कमर्शियल कॉम्प्लेक्स में एंट्री एग्जिट पॉइंट एक था, यानी कि एक ही रास्ते से एंट्री हो रही थी और एग्जिट हो रहा था, और उस एंट्री एग्जिट पॉइंट पर भी एसी के पैनल, इलेक्ट्रिकल पैनल, एग्जॉस्ट लगाए रखे थे, यानी कि एक रास्ता और वो भी सकरा कर दिया गया। और यही वजह थी कि जब आग लगी, धुआं फैला, तो जो लोग दूसरी और तीसरी मंजिल पर पढ़ाई करने, नौकरी करने के लिए पहुंचे थे, वो उस धुएं में फंस गए और दम घुटने से 15 लोगों की मौत हो गई।
1: पहला सवाल है, ध्यान से सुनिएगा, एलडीए नाम सुना होगा, लखनऊ विकास प्राधिकरण, इसके प्रमुखों का कितना विकास हो चुका है, कभी इसकी सरकार बस जांच करा ले, क्योंकि जिस एलडीए के लोग, आम आदमी का छज्जा कितना बाहर निकला है, रैंप कितना बाहर निकला है, इसका हिसाब किताब जोड़कर, उसे तोड़कर या फिर कुछ ले देकर हिसाब बराबर कर लेते हैं, वही प्रथमेश कुमार की अगुवाई वाला एलडीए मुख्यमंत्री के निर्देश के बावजूद कभी ये नहीं देख पाया कि कैसे रिहायशी इलाके में कमर्शियल कॉम्प्लेक्स चलता रहा, कैसे घर का नक्शा पास करा के बेसमेंट से 2 फ्लोर ऊपर तक मौत की दुकान और इंस्टीट्यूट चलता रहा। क्या मुख्यमंत्री जिनके अधीन एलडीए आता है, उनके वीसी प्रथमेश कुमार और दूसरे जिम्मेदारों को चिन्हित करके एक लकीर मुख्यमंत्री खींचेंगे, या फिर चुन्नू मुन्नू टाइप के कर्मचारियों पर गाज गिरा के हो गया वाला बोल बोला जाएगा?
7: बिल्डिंग आवासी में पहले पास थी, बाद में उन्होंने कमर्शियल रूप में उसका इस्तेमाल करना जब शुरू कर दिया है, वहाँ पर जो बिजली विभाग था उन्होंने उनका लोड सैंक्शन किया होगा कि कितनी एसी चल रही है, कितना बिजली का खर्चा इनका आ रहा है, उस हिसाब से उनको वहाँ पर देखना चाहिए था, लेकिन उन्होंने मुझे लगता है देखा नहीं ध्यान से। और जो एलडीए है, एलडीए की एरिया में आता है, तो एलडीए ने क्या चीज देखा है, ये उनकी जिम्मेदारी बनती है।
1: एलडीए वाले बिना पैसा खाए तो आंख बंद नहीं किए होंगे, बिजली विभाग वाले भी बिना पैसा दबाए चुप तो बैठे नहीं रहे होंगे, और इन भ्रष्टाचारियों को तो किसी बुलडोजर एनकाउंटर का भी डर नहीं, क्योंकि ये लोग तो बचते ही आए हैं। यही वजह है सीधे आज मुख्यमंत्री पीड़ित परिवार की सुने, जिन्हें लगता है जिम्मेदार कोई है तो वो सरकार है।
8: सरकार को जिम्मेदार मानते हैं और किसको मानेंगे हम, क्यों इसकी कोई देखभाल या इस तरीके की व्यवस्था ही नहीं होती है जो कि बिल्डिंगों की चेकअप कराए जाएं या शॉर्ट सर्किट ना हो, देख रेख सुविधा असुविधा की बात है। कौन जिम्मेदार है? सरकार जिम्मेदार है या अधिकारी जिम्मेदार है वहाँ के?
9: हर मामले में होता है, लेकिन कागजी कार्रवाई में कुछ नहीं होता है, बाद में बस आश्वासन दे करके सरकार भूल जाती है।
10: शासन प्रशासन करता क्या है? खाली आश्वासन देता है, कुछ नहीं करता है, गरीबों के लिए कुछ नहीं करता हूँ।
0: उसके जिम्मेदारी गवर्नमेंट है, ये शासन प्रशासन है जो हमारे नीलेश को क्या, उसमें जितने बेचारे बच्चे थे उनको सुख सुविधा देते तो आज फायर ब्रिगेड टाइम से पहुँच जाती। शासन प्रशासन की गलती है।
2: लखनऊ अग्निकांड की शुरुआती जांच में बिजली ओवरलोडिंग पर बड़ा खुलासा हुआ है। जिस इमारत में हादसा हुआ वहां 20 किलोवाट का कमर्शियल बिजली कनेक्शन स्वीकृत था, लेकिन वास्तविक बिजली लोड बढ़कर 34.10 किलोवाट तक पहुंच गया। अप्रैल महीने में इमारत का लोड 24.30 केवीए दर्ज किया गया था, जो जून में और बढ़ गया। इस तरह स्वीकृत क्षमता से कहीं अधिक लोड होने से तारों और ट्रांसफार्मर पर भारी दबाव था। भीषण गर्मी और ओवरलोडिंग के कारण शॉर्ट सर्किट की आशंका कई गुना बढ़ गई थी। अब सवाल ये उठ रहे हैं कि लगातार 3 महीने तक ओवरलोड दर्ज होने के बावजूद बिजली विभाग ने कार्रवाई क्यों नहीं की? न तो लोड बढ़ाने के लिए कानूनी प्रक्रिया शुरू की गई, न ही बिजली काटने का नोटिस जारी किया गया। जांच में यह भी देखा जा रहा है कि अधिक लोड होने के बावजूद बिजली आपूर्ति क्यों नहीं रोकी गई। स्थानीय लोगों के अनुसार किराएदारों ने कई बार एमसीबी ट्रिप होने और बिजली संबंधी समस्याओं की शिकायत की थी। आरोप है कि इस इमारत के मालिक ने इन शिकायतों को गंभीरता से नहीं लिया। जैसे जैसे भवन के हिस्से किराए पर दिए गए, बिजली की खपत लगातार बढ़ती गई। अधिकारियों पर भी समय रहते निरीक्षण और कार्रवाई न करने के आरोप लग रहे हैं। लखनऊ में 2 मंजिला इमारत में आग लगने के बाद 15 लोगों की जान जा चुकी है। अगर लखनऊ के अफसरों ने दिल्ली के अग्निकांड से सबक सीखा होता तो 15 घरों के चिराग बुझने से बचाए जा सकते थे, लेकिन सरकारी अफसर वक्त रहते चेत जाएं तो रिकॉर्ड बन जाए। लखनऊ में हो सकता है कि जिम्मेदार अफसरों पर कार्रवाई भी हो जाए, लेकिन हमारी मांग है कि दोषी अफसरों पर FIR दर्ज हो ताकि देश में नजीर बने, क्योंकि लखनऊ हो या फिर दिल्ली, हादसों से सरकारी सिस्टम सबक नहीं सीखता। दिल्ली जैसा हादसा लखनऊ में हो गया और लखनऊ जैसे हालात कभी भी दिल्ली में बन सकते हैं, जहां जगह जगह लाक्षागृह चल रहे हैं, जिनसे आपको खबरदार करने के लिए आज तक ने खुफिया कैमरे से स्टिंग ऑपरेशन किया है। इससे खुलासा हुआ है कि बेसमेंट में अवैध तरीके से लाइब्रेरी और कोचिंग चलाई जा रही है। 6 कमरों की इजाजत की जगह 15-20 कमरों के होटल चलाए जा रहे हैं और दिल्ली के अलग अलग इलाकों में इस तरह की चीजें साफ दिख रही हैं।
1: लखनऊ के अलीगंज की इस इमारत में 15 परिवारों की चिराग बुझ गए। सरकारी व्यवस्था की इस घोर लापरवाही से पूरा देश विचलित। देश भर में ऐसी बेबसी 27 जुलाई 2024 को भी लोगों ने महसूस की। तब देश की राजधानी में सरकारी अंधेर गर्दी से ऐसा ही हादसा हुआ, जब ओल्ड राजेंद्र नगर की राउज IAS स्टडी सर्कल के बेसमेंट में डूबकर 3 UPSC अभ्यर्थियों की मौत ने पूरे देश को हिला दिया।
11: बेसमेंट के अंदर इट इज नॉट अलाउड एज पर द फायर NOC एंड एज पर द MCD नॉर्म्स। बेसमेंट के अंदर यू कैनॉट हेल्ड एनी क्लासेस।
12: सो हम लोग नीचे उस टाइम पे थे, तभी एक मेरे गार्डमैन थे, जो मेरे गार्डमैन है वहाँ पर बाहर ऊपर ही थे उस टाइम पे, वो भाग के नीचे आए एंड ही शाउटेड दैट हरी अप, जल्दी करो और बैग लगाओ और पानी आ रहा बहुत तेज।
1: जिस बेसमेंट को पार्किंग और स्टोरेज के लिए मंजूरी मिली थी, वहां लाइब्रेरी चलाकर सैकड़ों छात्र छात्राओं की जिंदगी को खतरे में डाला जा रहा था। जगह के अवैध इस्तेमाल, बायोमेट्रिक एक्सेस सिस्टम और सुरक्षा खामियों की घातक तिकड़ी ने 3 नौजवानों को तब बेमौत मार डाला। उस हादसे के बाद भी वायदे हुए जांच बैठी, कार्रवाई की लाठी पीटी गई और कहा गया कि अब ऐसे हादसे दोबारा नहीं होंगे। लेकिन जिन सरकारी विभागों की लापरवाही से यह हादसा हुआ, क्या उन्होंने कोई सबक सीखा? आज तक की स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम की पड़ताल जो सामने आया वो पूरे देश को खबरदार करता है। आज तक ने अपनी पड़ताल में पाया कि उत्तर पूर्वी दिल्ली के यमुना विहार के एजुकेशन हब में आज भी बेसमेंट का इस्तेमाल नियमों के विपरीत किया जा रहा है। ये फ्यूचर वर्ल्ड टेक्निकल इंस्टीट्यूट है जिसके बेसमेंट में महज 10x10 फुट के कमरे को लाइब्रेरी में बदल दिया गया, जहां करीब 25 स्टडी क्यूबिकल बनाए गए। हैरानी की बात यह कि इस लाइब्रेरी में प्रवेश बायोमेट्रिक सिस्टम के जरिए मिलता है, एक ऐसा सिस्टम जिसकी विफलता राजेंद्र नगर हादसे के दौरान भी सवालों के घेरे में आई। हमारी मुलाकात वहां के मैनेजर राकेश से होती। इसी बेसमेंट में SSC का कोचिंग सेंटर भी चलता है और इस बेसमेंट के 3 हिस्से कर मोटा किराया वसूला जा रहा। दिल्ली के यमुना विहार में नियमों की धज्जियां उड़ाते हुए ये कोई इकलौती लाइब्रेरी नहीं चल रही। इसी से कुछ कदम की दूरी पर हॉरिजन एकेडमी नाम का एक कोचिंग सेंटर बच्चों को नीट और IIT की तैयारी करवा रहा है, जहां छात्रों की क्लास टॉप फ्लोर से बेसमेंट तक चलती है। हमारी टीम को यहां पर सेंटर संचालक नवनीत गुप्ता मिलते हैं, जिन्होंने देश भर से आने वाले छात्रों की जिंदगी को खतरे में डालकर कोचिंग चलाने का काम जारी रखा है।
13: और यही 4 सब्जेक्ट हैं जो इम्पोर्टेंट है बच्चों को पढ़ने के लिए। 36,000 की फीस लगी है, 4 से 6 क्लास होगी, हफ्ते में 6 दिन, मंडे टू सैटरडे। जरूरत पड़ी तो संडे को बुलाएंगे, अन्यथा संडे को छुट्टी रहेगी।
14: एक क्लास में कितने बच्चे रहते हैं?
13: 10th में रहता सर, 30 जाएगा। इनकी क्लास ही ऊपर चलते हैं, आपको अगर ऊपर गएंगे ऊपर भी मैं भेज दूंगा, क्योंकि ये क्लास है टॉप फ्लोर की, ये एरिया है और ये क्लास है 10th की।
1: सोचिए इतनी छोटी जगह में एक बार में जहां 30 छात्रों की क्लास चलाई जा रही, वो भी बिना सुरक्षा की चिंता की। सुरक्षा के नाम पर इस कोचिंग सेंटर में हमें CCTV दिखाया गया। हमारी संतुष्टि के स्टाफ के एक आदमी को साथ भेजकर टॉप फ्लोर पर चलने वाली क्लास दिखाई, जो एक क्लास कम भूल भुलैया ज्यादा लगी। इसके बाद फिर नीचे बेसमेंट दिखाया गया, जहां 2-2 क्लास चलती। सवाल है कि जब राजेंद्र नगर जैसी त्रासदी के बाद बेसमेंट के इस्तेमाल को लेकर पूरे शहर सख्ती बरतने के दावे किए गए, तो फिर छात्रों को क्यों दोबारा उन्हीं संभावित खतरों के बीच मौत के डर के साथ पढ़ने के लिए मजबूर किया जा रहा है? ये तस्वीर बताती है कि नियमों को लागू करवाने की बात सिर्फ हादसों के बाद मामले को रफा दफा करने के लिए की जाती है, वरना आज तक की पड़ताल में ये सब नहीं मिलता। सवाल है कि क्या जिन सरकारी विभागों पर ये सब रोकने की जिम्मेदारी, उन्हें ये सब नजर नहीं आता? नितिन जैन के साथ अरविंद ओझा, दिल्ली आज तक।
2: दिल्ली में पार्किंग में पानी भरने से 3 छात्र इसीलिए मारे गए थे क्योंकि भागने का रास्ता नहीं था। इसके बाद मालवीय नगर में 21 लोगों को इसीलिए बेमौत मरना पड़ा क्योंकि वो आग लगने के बाद सुरक्षित नहीं निकल पाए। लखनऊ में भी दर्दनाक हादसे में 15 लोग इसीलिए मारे गए क्योंकि नियमों की धज्जियां उड़ाई जा रही थी। दुर्भाग्य देखिए, इतने बड़े हादसे होने के बावजूद कहीं कुछ नहीं बदला। इसी महीने की शुरुआत में देश की राजधानी दिल्ली में 21 लोगों को जिंदा जलते लोगों ने देखा, लेकिन दिल्ली में क्या बदला? आज तक के स्टिंग ऑपरेशन में हमने आपको दिखाया कि बेसमेंट में नियमों की धज्जियां उड़ाई जा रही है, कोचिंग और लाइब्रेरी चलाई जा रही है। बेसमेंट से आने और जाने का एक ही रास्ता है जो बहुत सकरा है। आग लगने की स्थिति में अगर यह बंद हो जाए तो फिर अंदर फंसे लोग कैसे निकलेंगे? फिर भी नियमों की धज्जियां उड़ाकर आम लोगों की जान खतरे में डाली जा रही। दिल्ली के मालवीय नगर में आग लगने से जब 21 लोग मारे गए, तब पता चला कि जो होटल था उसमें 6 कमरों की इजाजत थी, लेकिन वहां पर 25 कमरों में लोगों को ठहराया जा रहा था। इतने बड़े हादसे के बाद दिल्ली सरकार और एमसीडी की तरफ से बड़े बड़े दावे किए गए, लेकिन मामला ठंडा होते ही सब कुछ पहले की तरह चलने लगा, मानो कुछ नहीं हुआ। तकरीबन 20 दिन पहले दिल्ली में आग एक ही परिवार के 8 लोगों को खा गई। जब अग्रवाल परिवार के सदस्यों की 5 चिताएं जली, तो इस आपराधिक लापरवाही के बाद सवाल सुलगने लगे। अकेली इस तस्वीर ने 140 करोड़ से ज्यादा देशवासियों को एक झटके में एहसास करवाया कि वो चाहे जितना भी ईमानदारी से टैक्स भर ले, उनकी सुरक्षा की ना तो किसी को फिक्र है और ना ही उनकी हिफाजत करना कोई भी सरकारी विभाग अपनी जिम्मेदारी समझता है। जून की शुरुआत में दिल्ली के मालवीय नगर के फ्लोरिश स्टे नाम के होटल में आग लगी, तो हर बार की तरह नियमों को सख्ती से लागू करने के सरकारी दावे हुए। 21 लोगों की मौत के बाद जागी एमसीडी ने बुलडोजर चलाकर अपनी मौजूदगी दर्ज करवाई, लेकिन इससे हासिल क्या हुआ? क्या कुछ बदला भी? ये सवाल लेकर आज तक की स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम पड़ताल के लिए निकलती तो पता चलता है कि वादे और दावों के उलट जमीनी हकीकत तो कुछ और ही है। 21 लोगों की मौत के बाद भी सरकारी एजेंसियां उस हकीकत को बदल नहीं पाई, इसीलिए सुरक्षा मानकों की अनदेखी बदस्तूर जारी है। पहाड़गंज के तेलमंडी इलाके में हमारी इन्वेस्टिगेशन टीम को कई ऐसी प्रॉपर्टीज मिलती हैं जहां गंभीर सवाल खड़े होते हैं। पहाड़गंज में द युवान B&B नाम से चल रही इस प्रॉपर्टी को देखिए। दिल्ली में जिस बेड एंड ब्रेकफास्ट योजना का उद्देश्य पर्यटकों को अपने घर के सीमित हिस्से में ठहराने की अनुमति देना था, लेकिन उसकी आड़ में देखिए कैसे होटल चलाए जा रहे हैं। सबसे पहले इस प्रॉपर्टी तक पहुंचने का रास्ता देखिए, इतनी सकरी और घुमावदार गलियां कि दो लोग मुश्किल से एक दूसरे को पार कर सके। ऐसे में अगर आग लग जाए या कोई आपात स्थिति पैदा हो जाए तो क्या दमकल कर्मियों की टीम समय पर मौके तक पहुंच पाएगी? जवाब ना मिले, लेकिन फिर भी यहां लोगों को ठहरा कर उनकी जान से खेला जा रहा है।
15: मतलब ये ऐसी हो रहा रहेंगे, पंखा रहेंगे,
16: एसी रहेगा और
15: फ्रिज रहेगा सर,
16: और ब्रेकफास्ट
15: किचन नहीं है, बाद में बोलेंगे सर के हैं।
16: कितने कमरे आपके?
15: हमारे पास यहाँ पे है 16 रूम।
16: 16 रूम है,
15: सब की लेके गया था एक दिन की।
16: 16 रूम है। हाँ, कितने फ्लोर का है?
15: ये 4 फ्लोर है।
16: 4 फ्लोर। एक फ्लोर कितने कम का है?
15: 4 रूम।
16: 4 फ्लोर
15: ये तो कह नहीं सकता सर, हम लोग क्या रेट लगा
16: रहे हैं।
15: सुल्तान सर।
16: सुल्तान।
2: तो जिस बेड एंड ब्रेकफास्ट योजना का मकसद ही मेहमानों को घर जैसा किफायती आवास और भोजन देना है, उसके नाम पर चल रहे द युवान B&B में ब्रेकफास्ट नहीं मिलता। नियमों के तहत 1 से 6 कमरों वाले होम स्टे के संचालन की इजाजत है, लेकिन हमारी पड़ताल 16 कमरे किराए पर चढ़े मिले। चिंता की बात ये कि ऐसा सिर्फ इसी प्रॉपर्टी में नहीं हो रहा, हमें पड़ताल के दौरान एक और ऐसी ही प्रॉपर्टी मिलती। ब्लूबेरी नाम का ये होटल पहाड़गंज की मुल्तानी ढांडा इलाके में, यहाँ पर पहुँचने के लिए भी एक बेहद सकरी सीढ़ी से गुजरना पड़ता है। यहाँ हमारी मुलाकात नदीम से होती।
17: मुझे करीब 20 गेस्ट आ रहे हैं।
18: आपको चाहिए कब? आज या कल?
17: कल चाहिए।
18: कल चाहिए 20% के लिए कम से कम। आपको हम लोगों के पास 4 बेड रूम नहीं है, डबल बेड ही है।
17: आप कितने रूम है आपके?
18: हम लोगों के पास रूम है 8 रूम ही है।
17: रूम दिखा दो मैं इस बारी।
18: रूम तो भी लगे हुए
19: सारे लगे हुए आठ क्या रेंट क्या है
18: सर वैसे हम लोग 1995 का टेरिफ है डिस्काउंट करके 1500 में एक रूम देते हैं
19: और क्या क्या खाने में क्या क्या है
18: सर हम लोग के पास तो वैसे ब्रेकफास्ट इंक्लूड नहीं है अगर अदरवाइज आपको हम लोग का किचन है अगर आपको चाहिए तो आपको प्रोवाइड हो जाएगा
19: पहला काटा चलेगा
1: अब जरा इस दस्तावेज को देख पहली नजर में ये किसी सरकारी लाइसेंस की तरह दिखाई देता है इस पर दिल्ली टूरिज्म और NIDHI पोर्टल का लोगो लगा है लेकिन प्रमाण पत्र को गौर से पढ़ने पर पता चलता है कि इसे अंतिम सरकारी मंजूरी या संचालन की स्वीकृति नहीं माना जा सकता सवाल आता है कि क्या इस तरह के प्रमाण पत्र को दिखाकर प्रॉपर्टी को होटल की तरह संचालित किया जा रहा है क्योंकि किसी भी होटल या गेस्ट हाउस के संचालन के लिए केवल NIDHI पंजीकरण पर्याप्त नहीं होता फायर सेफ्टी भवन उपयोग स्थानीय निकायों की अनुमति और दूसरे सुरक्षा मानकों का पालन भी जरूरी होता है अब इस जगह पर गौर करिएगा उपलब्ध दस्तावेज और स्थानीय रिकॉर्ड के मुताबिक ये लगभग 50 वर्ग गज के भूखंड पर निर्मित बहुमंजिला इमारत इमारत के ग्राउंड फ्लोर पर गत्ते का गोदाम दिखाई देता है जो आग लगने की स्थिति में जोखिम बढ़ा सकता है इसी परिसर में लेजर आधारित प्लास्टिक कटिंग मशीनें संचालित होती दिखाई दी अब आप सोचिए जिस इमारत में आने जाने का एक ही रास्ता हो वहां अगर आग लग जाए तो फिर क्या होगा सवाल है कि मालवीय नगर के दुर्भाग्यपूर्ण हादसे से संबंधित विभागों ने क्या कुछ नहीं सीखा सबसे चौंकाने वाली बात यह कि बिजली का एक पोल इमारत की संरचना के भीतर दिखाई देता है दस्तावेज बताते हैं कि इस संबंध में BSES ने नबी करीम थाना पुलिस को शिकायत भेजकर कानूनी कार्रवाई की मांग भी की थी लेकिन कुछ नहीं हुआ और बिजली का खंभा प्रॉपर्टी के अंदर शामिल कर लिया गया खबरदार करता सवाल आता है कि अगर सुरक्षा से जुड़े इतने गंभीर मुद्दे मौजूद हैं तो क्या संबंधित एजेंसियों ने समय रहते कभी कार्रवाई की और क्या बेड एंड ब्रेकफास्ट योजना की आड़ में ऐसे प्रतिष्ठान उन नियमों से बच रहे हैं जिनका पालन सामान्य होटलों के लिए अनिवार्य है पहाड़गंज की एक तस्वीर एक बार फिर सवाल खड़ा करती है जो हर बड़े हादसे के बाद उठता है क्या कार्रवाई किसी दुर्घटना के बाद होगी या फिर खतरे को पहले ही पहचाना जाएगा
2: देश में कहीं भी कोई हादसा हो जाए तो फौरन SIT का गठन कर दिया जाता है विपक्ष सरकार से जवाब मांगता है वहीं सरकार विपक्ष के कार्यकाल की याद दिलाने लगती है इस हो हल्ले में आम आदमी की सुरक्षा कहीं पीछे छूट जाती है जो कभी दिल्ली तो कभी लखनऊ में बेमौत मारा जा रहा है लेकिन हादसे के बाद न तो कभी किसी मंत्री की कुर्सी जाती है न ही अफसरों के खिलाफ केस दर्ज होता है
1: दिल्ली के उत्तम नगर इलाके में भी बेड एंड ब्रेकफास्ट योजना के नाम पर चल रही प्रॉपर्टियों की पड़ताल में कई सवाल खड़े करने वाली तस्वीर सामने आती है इनमें से एक है SJ रेजिडेंस कागज में ये प्रॉपर्टी बेड एंड ब्रेकफास्ट योजना के तहत रजिस्टर्ड लेकिन मौके पर पहुंचकर हमें ये किसी होटल की तरह चलती दिखती है यहाँ मुलाकात मैनेजर अनामिका से हुई जो बताती है कि एक दिन के रूम का किराया 800 रुपए है
20: एक दिन के लिए चाहिए क्या सारे क्या रेंट लगेगा
21: पर रूम का आपको पड़ेगा 800
20: रूम
21: पर कुछ है क्या मेरे को बताओ मैंने तो सारे पैक करना
20: कितने रूम है
21: अभी आप यहाँ पे 27 रूम बस सारे पैक अगर आप थोड़ी देर बाद आओगे तो मैं आपको सारे रूम दिखा दूंगी 5 बजे तक रूम में अगर AC रहेगी पंखा रहेगा और जो खाने पीने का अगर आप बाहर से मंगा रहे हो तो बाहर से मिल जाएगा ऐसा है बस
20: ब्रेकफास्ट वगैरह ब्रेकफास्ट
21: यहाँ तो कुछ नहीं
20: कितने फ्लोर पर है आपका
21: फर्स्ट फ्लोर
1: इस मैनेजर के मुताबिक प्रॉपर्टी में 27 कमरे हैं और 4 मंजिल पर कमरे किराए पर दिए जा रहे हैं जो बेड एंड ब्रेकफास्ट योजना की मूल भावना और शर्तों के मुताबिक बिल्कुल नहीं फिर भी योजना के बहाने गैर कानूनी रूप से होटल चलाकर लोगों की जान खतरे में डाली जा रही क्योंकि इसमें भी वही सारी कमियां हैं जो मालवीय नगर के होटल में थी इस प्रॉपर्टी में भी निकलने का एक ही रास्ता है आग लगने की हालत में अगर वो बंद हो जाए तो इसे भट्टी बनते देर नहीं लगेगी जान बचाने के लिए कूदना भी मुश्किल होगा क्योंकि चारों तरफ तारों का घेरा है कुल मिलाकर दिल्ली में इतना बड़ा हादसा होने पर भी कुछ भी नहीं बदला इसलिए मालवीय नगर जैसा हादसा दिल्ली में कभी भी और कहीं भी हो सकता है दिल्ली वालों को सोते सिस्टम से खबरदार करने के लिए ही हमने अपनी पड़ताल जारी रखी और नियमों की धज्जियां उड़ा के एक और प्रॉपर्टी ढूंढने में हमें ज्यादा वक्त नहीं लगा। ब्लू मून होटल के नाम से चल रही ये प्रॉपर्टी हमें बेड एंड ब्रेकफास्ट योजना के तहत रजिस्टर्ड बताई गई, लेकिन यहाँ लगाए गए अनुमति पत्र में स्पष्ट रूप से लिखा है मालिक मनोज आहूजा को हर एक मंजिल पर सीमित संख्या में कमरे किराए पर देने की अनुमति है। इसके बावजूद मौके पर जो जानकारी दी गई उसने नए सवाल खड़े कर दिए।
19: करीब कितने रूम है आपके?
3: 14 रूम
19: है।
3: हमारे में 7 रूम ही है।
19: ब्रेकफास्ट वगैरह हो जाएगा उसी में?
1: अगर अनुमति सीमित कमरों के लिए है और उससे कमरे किराए पर देकर कमाई की जा रही तो फिर सवाल तो बनता है। बड़ी बात यह कि दोनों प्रॉपर्टियों में बेड एंड ब्रेकफास्ट योजना के नाम पर ऐसे संचालन की तस्वीर दिखाई दी जो एक नियमित होटल व्यवसाय से मेल खाती है। कानून के मुताबिक होटल चलाने के लिए फायर सेफ्टी, भवन मानकों, व्यावसायिक उपयोग की अनुमति, पार्किंग, सुरक्षा व्यवस्था और दूसरी सरकारी शर्तों का पालन करना पड़ता है। वहीं बेड एंड ब्रेकफास्ट योजना का उद्देश्य घर के सीमित हिस्से में पर्यटकों को ठहराने की सुविधा देना है। ऐसे में सवाल आता है कि क्या कुछ प्रॉपर्टियां बेड एंड ब्रेकफास्ट योजना की अपेक्षाकृत आसान व्यवस्था का लाभ उठाकर खुद को होटल की तरह चला रही है, और अगर ऐसा है तो संबंधित एजेंसियां इस पर निगरानी क्यों नहीं रख पाती। हमारी जांच में सामने आया कि नियमों की धज्जियां सिर्फ दो प्रॉपर्टियों पर नहीं उड़ रही, सवाल पूरी व्यवस्था पर है। बेड एंड ब्रेकफास्ट योजना को पर्यटन बढ़ाने के लिए बनाया गया, लेकिन संबंधित विभाग और अफसरों की आंख मूंद लेने की वजह से कई लोगों के लिए होटल चलाने का आसान रास्ता बन गया है, जहां आम लोगों की जिंदगी खतरे में डाल दी जा रही है। नितिन जैन के साथ अरविंद ओझा, दिल्ली आज तक।
2: जनता के मन में ये बात आती है कि सरकार सोती रहती है तो देश का मीडिया क्यों नहीं जगाता। हम आपको विश्वास दे रहे हैं, आज तक लगातार खबरदार करता है। खबर जर्जर पुल की हो, गड्ढे वाली सड़क की खबर हो, मौत को न्योता देते स्कूल, अस्पताल, कोचिंग की हो, हम लगातार खबरदार करते हैं। यही इस बार भी किया है। उत्तर प्रदेश, राजस्थान, दिल्ली, बिहार, मध्य प्रदेश, तेलंगाना तक हमारे साथी संवाददाता निकले ताकि सरकार और सरकारी व्यवस्था को जगाएं, बताएं कि किस तरह भ्रष्टाचारियों के हाथों सब कुछ बेचकर आम लोगों और उनके बच्चों की जान को खतरे में डाला जा रहा है।
4: रिवोल्यूशनरी लाइब्रेरी है और जब हमने रियलिटी चेक करने की कोशिश की कितनी पंत्री और संकली गली है यहाँ पर, और यहाँ से हम नीचे की तरफ जाते हैं, आपको दिखाते हैं, एग्जिट एंट्री गेट ये है और निकलने का कोई रास्ता नहीं है।
22: कितना पतला इलाका है ये, जो सीढ़ियां है ऊपर एक कोचिंग इंस्टीट्यूट चलता है, एजुकेशन कमांडर, और यहां पर आप जाएंगे देखिए सिर्फ एक इलाका है जाने के लिए है, एग्जिट नहीं है। और उसके बाद अब इन इलाकों पे जगह जगह पुलिस जो है मुआयना कर रही है।
23: चल रहे हैं आप देखिए कितनी संकरी गलियां हैं, ये तार लगे हुए हैं, इनमें आग लग गई तो यहाँ से निकलने का कोई भी रास्ता नहीं बनता, कोई और एग्जिट नहीं है, कोई खिड़कियां नहीं है।
24: हाँ, इतना सफोकेशन है कि मुझे यहाँ खड़े होके सांस लेने में दिक्कत हो रही है। बड़ी बात यह है कि यहाँ पर एग्जिट के लिए कुछ नहीं है, केवल एंट्री पॉइंट है।
25: चलो हो गया, रिपोर्टिंग हो गई, चलो रिपोर्टिंग हो गई, चलो।
2: तो आइए कोचिंग क्लासेस के मामले में सबसे पहले दिल्ली की तस्वीर दिखाते हैं, क्योंकि देश की राजधानी में हादसे होते रहेंगे तो बाकी का हाल सोचिए। लेकिन यहां भी कुछ दिन जागकर फिर सब सो जा रहे हैं। दिल्ली के ओल्ड राजेंद्र नगर इलाके में साल 2024 में राव आईएएस कोचिंग सेंटर की लाइब्रेरी में बारिश का पानी भरने से यूपीएससी की तैयारी कर रहे 3 छात्रों की मौत हुई थी। आज भी हालात बदले नहीं है। सकरे रास्ते वाली इमारतों में लाइब्रेरी या कोचिंग चल रही है, जहां न एग्जिट अलग है न इमरजेंसी अलग है।
4: ये ओल्ड राजेंद्र नगर की लाइब्रेरी है, यहां पर जो छात्र है वो तैयारियां करते हैं। लाइब्रेरी है, जरा देखिए कितनी पतली संकरी लाइब्रेरी है, जिसमें अभी भी बच्चे पढ़ रहे हैं, और सिर्फ लकड़ी। अगर आप यहां पर देखेंगे तो जो अलमीरा है वो सब कुछ लकड़ी का है। एंट्री एग्जिट गेट एक ही है यहाँ पर। ये अपने आप में बड़ी सोचने वाली बात है। बच्चे तो बच्चे हैं, तैयारी करते हैं, पैसे देते हैं, जहां तैयारी करने को मिलेगा वहां पर तैयारी करेंगे। जरा मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ कैमरामैन संजय के जरिए। संजय आप इधर आइए। और हमारी जो एंट्री हुई है वो इस जगह से हुई है, इस जगह से, ये एक पतला सा रास्ता है, यहां से हम आते हैं और इस तरीके से हम अंदर की तरफ आते हैं। तो एग्जिट एंट्री गेट यहां पर एक ही है और कुल मिलाकर 37 बच्चे यहां पर पढ़ते हैं, जिसमें बच्चे बच्चियां भी हैं।
25: चलो हो गया रिपोर्टिंग हो गई, चलो
5: रिपोर्टिंग हो गई,
25: बहुत रिपोर्टिंग हो गई, चलो चलो
4: सर
25: धक्का तो बहुत सम्मान के साथ
4: जी जी सम्मान के साथ। तो ये देखिए, अच्छा धक्का क्यों दे रहे भैया, एक मिनट आइए, शाबाशी भी दी जा रही है?
6: नहीं नहीं, आप हमें आवश्यकता नहीं है ना,
4: सर को सर जो धक्का दिया शाबाशी भी दे रहे क्या सर?
6: नहीं हम आवश्यकता नहीं है,
25: चलो चलो पढ़ाई का टाइम है, डिस्टर्ब मत करो,
6: डिस्टर्ब नहीं की,
25: मेंस आ रहा
4: है। अच्छा मेंस आ रहा है, ठीक है।
6: थैंक यू।
4: स्थिति है यहाँ पर,
6: आपका नाम? नहीं हमारा नाम जो भी आप जाइए, थैंक यू सो मच,
4: ठीक है। ये देखिए ये स्थिति है यहाँ पर, ये देखिए, थैंक यू, ये स्थिति है यहाँ पर, बिल्कुल बिल्कुल हम जा रहे हैं। ये देखिए ये स्थिति है यहाँ पर, कैमरामैन संजय दिखाएंगे, ये लाइब्रेरी है और ये दिखाना बहुत जरूरी है, दिल्ली सरकार भी देखे, रिवोल्यूशनरी लाइब्रेरी है। और जब हमने रियलिटी चेक करने की कोशिश की, कितनी पंतरी और संकली गली है यहाँ पर, और यहाँ से अब हम नीचे की तरफ जाते हैं, आपको दिखाते हैं, एग्जिट एंट्री गेट ये है और निकलने का कोई रास्ता नहीं है। अब बच्चे जो पढ़ाई करते हैं कुछ इस तरीके से, हम नीचे की तरफ आपको जाकर दिखाते हैं। जब हमने रियलिटी चेक करने की कोशिश की तो आप देख पा रहे हैं किस तरह से कैमरे के सामने हाथ मारा जा रहा है। तो
2: ये वो रियलिटी चेक है जो समय समय पर करने के लिए जनता के पैसे से सरकारी कर्मचारियों को तनख्वाह दी जाती है, लेकिन वो जनता को भगवान भरोसे छोड़ देते हैं।
7: इस वक्त हम कोचिंग सेंटर के हब लक्ष्मी नगर में मौजूद हैं, और अगर मैं आपको लक्ष्मी नगर की स्थिति दिखाऊं तो यहाँ भी स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। यहाँ भी किसी भी दिन कोई भी बड़ा हादसा हो सकता है, कई बच्चों की जान जा सकती है, कई लोगों की जान जा सकती है। आप देखें किस तरीके से ये जो कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं ये बिल्कुल तंग गलियों में बने हुए हैं, एंट्री एग्जिट का एक ही जरिया है, ये कुछ 2-2.5 फीट की सीढ़ी है या उससे भी कम है, और यही एक एंट्री एग्जिट का रूट है, और ऐसे हजारों कोचिंग सेंटर्स जो हैं यहाँ पर चल रहे हैं। आप देखिए कितनी संघड़ी गलियां हैं, और अगर आप कोचिंग के इसके बाहर भी देखें तो यहाँ एसी का आउटलेट लगा हुआ है। पिछले कई हादसों में हमने देखा है कि जो हादसा हुआ है, जो आग की शुरुआत हुई है, वो इसी एसी के आउटलेट से होती है। अगर मान लीजिए यहाँ पर एसी आउटलेट में आग लग गई, या ये जो मीटर लगे हुए हैं, ये तार लगे हुए हैं, इनमें आग लग गई, तो यहां से निकलने का कोई भी रास्ता नहीं बनता, कोई और एग्जिट नहीं है, कोई खिड़कियां नहीं है, कोई अन्य दरवाजे भी नहीं है। लेकिन इसके बाद भी पिछले कई सालों से ऐसे कई कोचिंग सेंटर्स हैं जो धड़ल्ले से चल रहे हैं। आप देखें ये कितनी संघड़ी सीढ़ियां हैं, करीब 1 से 1.5 फुट की सीढ़ी है बस, और आप देखें ये बिल्कुल एग्जिट पर ये इतने सारे मीटर लगे हुए हैं। किसी भी मीटर में अगर हल्का सा भी शॉर्ट सर्किट हुआ तो एक लौता जो एग्जिट है ये पूरे तरीके से बंद हो सकता है। जिस तरीके से पिछले कई दिनों में हमने देखा है कि दिल्ली में और अन्य राज्यों में आग की घटनाएं बढ़ी हैं, गर्मी काफ़ी है दिल्ली में, एसी कॉन्टीन्यूसली चलते हैं जिसकी वजह से एसी गर्म होके कभी कभी शॉर्ट करते हैं और फिर इन आग की घटनाओं को अंजाम देते हैं।
2: यही हाल लखनऊ में दिखता है, जहां न जाने कितनी बार सरकार कार्रवाई को कह चुकी है लेकिन बदलाव नजर नहीं आता।
8: बच्चे यूजुअली आम दिनों में जब पढ़ाई होती है नीट की या फिजिक्स केमिस्ट्री की, तो यहां पर आते हैं। ये करियर इंस्टीट्यूट आपको हम दिखा रहे हैं, और यहां सामने उस करियर इंस्टीट्यूट का एक गेट बना हुआ है, यानी कि ये वो गेट आपको मैं दिखा रहा हूं। सर्वश्रेष्ठ जो भी है कोचिंग सेंटर, ये आप देखिए, ये फिलहाल बंद है क्योंकि नीट का एग्जाम हो चुका है, तो ये कोचिंग बंद है। लेकिन यहाँ इतना सफोकेशन है कि मुझे यहाँ खड़े होकर सांस लेने में दिक्कत हो रही है। ऊपर भी यहाँ पर काफी इस कॉम्प्लेक्स में ये भी बंद पड़ा है फिलहाल, लेकिन आपको यहाँ पर कोई फायर एक्सटिंग्विशर फिलहाल अभी यहाँ पर बाहर के क्षेत्र पर तो नजर नहीं आएगा। कि जिस तरह की घटना हुई है लखनऊ के अलीगंज में, वो यहाँ भी हो सकती है। ये बताइए यहाँ से निकलने की कौन सी जगह है दूसरी?
9: यही जाने का रास्ता भी
8: यही है।
9: हाँ।
8: तो आना भी यहीं से, जाना भी यहीं से।
9: हाँ।
8: अगर आंख लग गई तो कहाँ से जाएंगे?
9: अभी क्या मालूम है, तो कोचिंग के बाद जाने मालिक जाने, हम तो गार्ड है सर ना।
8: तो कुछ दिन पहले, लगभग 1 साल पहले, यहाँ पर भी एक कोचिंग चलती थी फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी की, उसको यहाँ पर सील किया गया था, और उसके बाद दोबारा यहाँ पर देखें तो स्टोर रूम काइंड ऑफ यहाँ पर बना हुआ है। यहाँ बिजली के सारे इक्विपमेंट्स लगे हुए हैं, सारी चीजें हैं, लेकिन मुझे अभी तक यहाँ पर एक सिंगल फायर एक्सटिंग्विशर दिखाई नहीं पड़ रहा है। और एंट्री का पॉइंट जैसे गार्ड साहब ने बताया वही है, एग्जिट का पॉइंट वही है, यहीं पर फिजिक्स केमिस्ट्री की क्लास चलती थी। इसको इन्होंने फिलहाल, क्योंकि यहां कार्रवाई पिछले साल हुई, तो उसको शट कर दिया, लेकिन धीरे से दूसरे इंस्टीट्यूट वालों ने ऊपर खोल लिया। लेकिन सवाल तो यही है, जब इमारत में ही गड़बड़ी है, जब बिल्डिंग में ही दिक्कत है, एंट्री एग्जिट पॉइंट्स है ही नहीं, लैडर है ही नहीं, सीढ़ियां उतनी है ही नहीं जो आने के लिए होनी चाहिए, तो कैसे इन बच्चों की सुरक्षा होगी, इन कोचिंग जो पढ़ने आते हैं।
2: और अब उस बीमारी से खबरदार करते हैं जिसमें जान भी जा सकती है। डेंगू के मामले में भारत का नंबर सबसे ज्यादा प्रभावित देशों में आता है, लेकिन ये साल खास तौर से डेंगू के मच्छर से खबरदार रहने का है। भारत में तेजी से शहरीकरण हो रहा है, मानसून के बदलते पैटर्न और बढ़ते तापमान के कारण भारी बारिश और हाई ह्यूमिडिटी के बाद 4 से 6 सप्ताह के अंतराल पर डेंगू के मामलों में अक्सर बढ़ोतरी देखी जाती है। भारत के कई हिस्सों में बरसात हो रही है, कई में मानसून का इंतजार है। मानसून और उसके ठीक बाद डेंगू का खतरा सबसे ज्यादा बढ़ जाता है। हालांकि सरकार दावा करती है कि नवंबर 2025 तक देश भर में डेंगू के मामलों में 48.85% और डेंगू से होने वाली मौतों में 64.15% की गिरावट दर्ज की गई है, लेकिन एक स्टडी डेंगू डायनामिक्स इन इंडिया का दावा चिंता पैदा करता है, जिसके मुताबिक इस साल डेंगू के अनुमानित मामले 3,09,836 और डेंगू की वजह से 533 लोगों की जान पर सीधा खतरा रहने की आशंका है। अगर ऐसा हुआ तो ये पिछले कई सालों में सबसे ज्यादा होगा, इसीलिए सावधानी और सफाई के साथ लड़ेंगे डेंगू से। रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप रहिए खबरदार।

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: जब धान के खेतों में जिद्दी खरपतवार दे चुनौती तो हर असली हीरो उठाता है एक ही हथियार, क्रिस्टल क्रॉप का सिकोसा। खरपतवार मारे उगने से पहले, भारत का सबसे ताकतवर धान का खरपतवार नाशक।
3: ऊंचाई पर बने रहने के लिए जरूरी है इरादों का प्योर होना। कैलेंट एडवांस बनाते हैं ऐसा स्टील जो अंदर से है ज्यादा प्योर, ज्यादा मजबूत। कैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो।
4: गोल्डी हिंग का तड़का लगे तो सभी दबा के खाते हैं। गोल्डी हिंग कण कण में जान।
5: ये मजबूर हैं पर आप नहीं। बीटेक्स मलहम, दांत खाज खुजली से छुटकारा।
6: अब वही बीटेक्स मलहम ट्यूब में भी उपलब्ध।
7: यानी इस घर में कुछ है जो टूटता नहीं।
8: ये पिलर कभी नहीं टूटेगा। रुंगटा स्टील TMT से बना।
9: रुंगटा नहीं तो घर स्ट्रॉन्ग नहीं। रुंगटा स्टील TMT बार एकदम सॉलिड।
10: अर्जुन कुछ भी पढ़े मेमोरी में नहीं रहता।
11: नो एडेड शुगर प्रिजर्वेटिव के बिना डेट्स, बादाम, पिस्ता, काजू और शहद से तैयार किया गया लायन डेट्स नट बाइट्स।
12: लायन डेट नट बाइट्स।
13: केंट से पानी होता है 100% प्योर।
14: केंट आरो प्योरिटी दिखाता भी है।
13: केंट देता है सबसे शुद्ध पानी।
15: साथी हाथ बढ़ाना साथी रे। जिंदल साथी सील साथी रे।

0: जिंदल साथी सील है तो असली स्टेनलेस स्टील है।
1: तो जब भी आप स्टेनलेस स्टील पाइप्स एंड ट्यूब्स खरीदें, जिंदल साथी सील जरूर चेक करें।
0: जिंदल स्टेनलेस, इंडियाज लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ स्टेनलेस स्टील।
2: ग्यारह मई आज तक पर पेपर लीक कनेक्शन का पर्दाफाश।
3: नीट की परीक्षा से पहले एक गेस पेपर धड़ल्ले से मोबाइल पर बंटता है। 135 सवाल उसी गेस पेपर से हूबहू मिलते हैं।
4: 15 दिन पहले से पूरे देश में बंट रहा था, एनटीए को पता नहीं।
2: 12 मई आज तक के खुलासे पर मुहर।
5: जिम्मेदारी लेते हैं कि जो हुआ गलत हुआ।
3: आज तक की खबर के बाद आज सरकार की तरफ से एक्शन हुआ, एनटीए जागी, पेपर रद्द हुआ। हमने आज तक पर लगातार दस्तक दी है, खबरदार किया है, हर दल की सरकार को जगाया है, बताया है कि पेपर लीक रोक लीजिए वरना बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ होता रहेगा।
2: जहां खबर वहां खबरदार।
6: इन एसोसिएशन विद E3 HDMR, ये रिश्ता लंबा चलेगा।
7: जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए श्री संत का।
8: प्लीज बजीपा, प्लीज डू ललन टॉक शो, इट्स अ रिक्वेस्ट एंड प्लीज टू स्पीक ट्रूथ।
9: अप्रैल 2026 में उन्होंने एक रिटेल कंपनी का ऐड किया।
8: ऐसे हरकतें आप करोगे आपकी बाइक के साथ? आई चैलेंज यू बजीपा, अगर आपको इतना प्रॉब्लम है तप्पड़ खांड से और आप इतना कमा रहे हो, हमें भी तो कमाने दो। आओ ना रिंग में, वेट कम।

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
1: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो
0: ड्यूरेबल पाइप्स फिटिंग्स एंड टैंक्स अ कंप्लीट रेंज ऑफ सैनिटरी सॉल्यूशंस चोगन परफ्यूम्स द फ्रेंच एडिशन फॉर हिम एंड हर

0: Looking to trade in your current vehicle? We'll get you the most for your trade. At Byers Volkswagen, we've been putting customers first since 1897. And when you're ready to buy, our team will do whatever it takes to help you drive home in the Volkswagen that's right for you.
1: Drive home a new 2026 Volkswagen Tiguan S for $212 for 24 months with $49.99 due at signing.
0: Experience the Byers difference and see why generations of customers continue to choose us. Visit us at columbusvw.com or by the airport.
2: See dealer for details. Offer ends 6/30/2026.
3: Catch up on what's hot with TikTok Radio, curated by Stingray Music. Your destination for trending hits and must-see videos. Stay in the loop one viral moment at a time. TikTok Radio, now available for free on Pluto TV. Stream now, pay never.
4: Where the software engineer meets the cool UI UX designer, meets the gifted content writer. To create the big dream, the world comes together at Sharda University. So where are you?
5: Phir shasan jagah hai. Prashasan jagah hai. चीख गूंजी है, आंख सूजी है, संवेदना के बोल फूटे हैं,
6: मेरा बेटा भी अजिन्ना होता, मेरा बेटा,
5: कार्रवाई होने के ढोल बजे हैं, दिल चीरने वाला हादसा हुआ है, हाँ लखनऊ की फिजा में आज आंसुओं पर हलचल दिखी है, लेकिन चिंगारी की तरह सुलगता मुद्दा तो वही है कि काश कानून अपना काम करता होता, सिस्टम जागरूक हुआ होता, भ्रष्टाचार और लापरवाही पर चाबुक चली होती तो कल ये लपटे नहीं होती, वो 15 जाने सलामत रही होती। लखनऊ अग्निकांड की परतें जब एक एक कर खुल रही है तो साफ नजर आता है कि ये हादसा नहीं हत्या है।
7: एक बॉक्स नुमा ये बिल्डिंग है, इस बॉक्स नुमा बिल्डिंग के अंदर ही लोग सिर्फ इसी से, जो बच्चे थे जो लोग थे वो इसी छोटे से रास्ते से, और कोई रास्ता था ही नहीं, ये इस रास्ते से अंदर जाना बाहर जाना, और जब आग लग गई तो उसकी वजह से धुएं ने और आग ने अफरा तफरी मच गई और लोग फंस गए। मतलब 3 फ्लोर की ये बिल्डिंग, उसके बाद ये बेसमेंट टोटली अगर कहा जाए तो सिर्फ और सिर्फ सुरक्षा मानकों को दरकिनार करके ये बनाया गया।
5: लखनऊ में 15 हत्याओं का सबब बने इस अग्निकांड की जांच यूपी सरकार की SIT कर रही है। SIT को 7 दिनों में रिपोर्ट देनी है। अग्निकांड में दर्ज FIR में 4 नामजद आरोपी हैं। बिल्डिंग के को-ओनर वीरेंद्र शुक्ला समेत तुषांक कृष्ण जायसवाल, रामकृष्ण उपाध्याय और सुरेश कुमार के खिलाफ BNS की धाराओं में केस दर्ज हुआ है। जिस इमारत में आग लगी उसका नक्शा रिहायशी मानकों के मुताबिक पास हुआ, फिर कमर्शियल गतिविधियां शुरू हुई। जिस इमारत में हादसा हुआ वहां 20 किलोवाट का कमर्शियल बिजली कनेक्शन स्वीकृत था। जांच में सामने आया है कि वास्तविक बिजली लोड बढ़कर 34.10 किलोवाट तक पहुंच गया था। अप्रैल महीने में इमारत का लोड 24.30 KVA दर्ज किया गया था, जो जून में और बढ़ गया। जानकारों के मुताबिक स्वीकृत क्षमता से कहीं अधिक लोड होने से तारों और ट्रांसफार्मर पर भारी दबाव था। भीषण गर्मी और ओवरलोडिंग के कारण शॉर्ट सर्किट की आशंका कई गुना बढ़ गई। बात सिर्फ इतनी भर नहीं है। लखनऊ के अलीगंज की ये इमारत 2016 में ध्वस्तीकरण की जद में आई थी। मई 2016 में गैरकानूनी निर्माण के चलते बिल्डिंग को गिराने का आदेश पास हुआ, लेकिन जुलाई 2016 में ये आदेश निरस्त हो गया। सोचिए किस किस स्तर पर नियमों को ताक पर रखा गया होगा। हादसे के बाद बगल की इमारत में छेद कर कुछ लोगों की बचाने की कोशिश हुई। जो मौतें हुई हैं उसकी वजह जलना नहीं बल्कि दम घुटना है। हर हादसा अपने पीछे चुभने वाली कहानियां छोड़ जाता है। इस आग में जल गए नीलेश और अनामिका एक दूसरे के साथ जिंदगी बिताने के ख्वाब सजा बैठे थे। अब्दुल रहमान अपने परिवार के इकलौता सहारा थे। दिव्यांग पिता और बहन की जिम्मेदारी पिछले कई वर्षों से उनके कंधों पर थी। सीतापुर का आदित्य श्रीवास्तव अपने पीछे रोते बिलखते माँ बाप छोड़ गया है। सिर्फ 15 मौतें नहीं हुई हैं, 15 परिवारों पर दुखों का आसमान गिरा है।
8: हम लोग चाहते हैं इस पर जांच हो और ज्यादा से ज्यादा परिवार को मुआवजा दिया जाए, ताकि उसकी माँ की भी कोई ऐसी स्थिति नहीं हो। परिवार में कोई दूसरा कमाने वाला नहीं था, इकलौता बच्चा था।
5: लखनऊ हादसे के बाद क्या यूपी, क्या देश के अन्य शहर इमारतों का सेफ्टी ऑडिट कर रहे हैं? कानपुर और इंदौर में कुछ कोचिंग संस्थानों पर सीलिंग की गई है, लेकिन सवाल वही है कि क्या व्यवस्था बदलेगी? आज तक ब्यूरो।
9: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।
10: आखिर में बिहार के भोजपुर की खबर, जहां के भरत तिवारी एनकाउंटर में एक्शन हुआ है। जगदीशपुर के एसडीपीओ, शाहपुर थाना अध्यक्ष समेत कई पुलिसकर्मियों पर एफआईआर हुआ है। दरअसल जो वहां पर बवाल हुआ, उसके बाद बिहार पुलिस बैकफुट पर आई है और अब ये प्रक्रिया शुरू हुई है। अभी के लिए इतना ही, आगे देखिए ब्लैक एंड व्हाइट और हरदम रहिए खबरदार।
9: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच। Presented by पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।

नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप और ब्लैक एंड व्हाइट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। लखनऊ में एक दिन पहले हुए अग्निकांड में 15 युवाओं की मौत हो गई। हर बार की तरह लाशें गिनने के बाद अब पूरा देश जाग चुका है। प्रशासन की नींद खुल गई है, फायर सेफ्टी की टीमें सक्रिय है, नोटिस बांटे जा रहे हैं, कड़े बयानों की राजनीति शुरू हो चुकी है। लेकिन सवाल यह है कि यह जागरूकता हमेशा किसी त्रासदी के बाद ही क्यों आती है? ये जो जागना है नींद से, वो चंद दिनों के लिए ही क्यों आती है? लखनऊ की इस बिल्डिंग में लापरवाही की गिनती करेंगे तो थक जाएंगे। रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी में ट्रेनिंग सेंटर, बिजली की ओवरलोडिंग, ऑटोमेटिक दरवाजे, आग लगते ही बिजली कटी और ये ऑटोमेटिक गेट लॉक हो गए, खुले ही नहीं। ये सिर्फ लखनऊ की बात नहीं है, मालवीय नगर

मजबूरी। लेकिन आइए शुरुआत करते हैं ब्लैक एंड व्हाइट की एक ऐसी खबर से जिसकी चर्चा शायद ही कहीं हो रही है और होगी भी कैसे। हमने इस देश में हर चीज पर मिलावट का दौर देखा है, दूध, पनीर, सब्जी, खाने, मिठाई की चीजें, जितनी भी चीजें, सब में मिलावट का दौर देखा। और अब तो अभ्यस्त भी हो गए हैं, हम चर्चा भी कर लेते हैं कि पता नहीं मिलावटी है क्या है, चलो खा लेते हैं। हमारे देश में राजनीति की खबरें, नेताओं के बयान, आरोप प्रत्यारोप, सियासी बयानबाजी अक्सर बड़ी खबर मानी जाती है, लेकिन जो खबर सीधे आपके घर, आपकी जेब, आपकी सेहत, आपकी जिंदगी से जुड़ी होती है वो अक्सर सुर्खियों से बाहर रह जाती है। लेकिन आज आप ब्लैक एंड व्हाइट में रहिएगा हमारे साथ, क्योंकि हम आपकी बात आज करने वाले हैं। हम अपने विश्लेषण की शुरुआत करने जा रहे हैं जिस खबर से, वो देश के करोड़ों परिवारों से जुड़ी हुई खबर है। ये खबर उन ब्रांडेड दवाइयों के बारे में है जिन्हें लोग डॉक्टर की सलाह पर और पूरे भरोसे के साथ मेडिकल स्टोर से खरीदते हैं। ये सोचकर खरीदते हैं कि कम से कम दवा की गुणवत्ता पर तो कोई सवाल नहीं होगा, लेकिन अब उसी भरोसे पर सवाल खड़े हो गए। भारत सरकार की संस्था है सेंट्रल ड्रग्स स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन, जिसने अपनी ताजा रिपोर्ट में खुलासा किया है कि मई महीने में 157 दवाइयां क्वालिटी टेस्ट यानी गुणवत्ता के मामले में फेल हो गई। क्वालिटी टेस्ट में फेल होने का मतलब सिर्फ इतना ही नहीं है कि ये दवाइयां तय मानकों पर खरी नहीं उतरती। कई मामलों में पाया गया कि इन दवाओं में मौजूद ड्रग सॉल्ट की मात्रा निर्धारित मानकों के अनुरूप नहीं है, इनमें सॉल्ट कॉम्बिनेशन भी सही नहीं था। कल्पना कीजिए, यानी लोग जिन दवाइयों को इलाज समझकर खा रहे थे उन दवाइयों की गुणवत्ता ही सवालों के घेरे में थी। सबसे चिंता की बात तो यह है कि सूची में ऐसी दवाइयां भी शामिल हैं जो लगभग हर घर में इस्तेमाल होती हैं। और आज इन दवाइयों को मैं साथ भी लेकर आई हूं, और मैं चाहती हूं कि आप भी जरा एक बार देख लें कि कहीं ये दवाइयां जो मेरे साथ यहां पर मौजूद है, हम एक एक करके आपको दिखाएंगे, ये दवाइयां आपके घर में भी तो नहीं है। आपने कभी सोचा है कि पहले आप बुखार की एक गोली खाने से ठीक हो जाते थे, लेकिन अब 2-3 खुराक के बाद भी इन दवाइयों का कोई असर नहीं होता? और इसका कारण यही है कि ये दवाइयां असली होते हुए भी क्वालिटी के मामले में खराब होती हैं। इसमें पैरासिटामोल जैसी बुखार की दवा भी शामिल है जिसे लोग बिना डॉक्टर की सलाह के भी खरीद लेते हैं। इसके अलावा डाइक्लोफेनाक जैसी दर्द की दवा, मांसपेशियों के दर्द में इस्तेमाल होने वाला डाइक्लोफेनाक जेल इसी लिस्ट में शामिल है, और यह भारत सरकार की एजेंसी है जिसने यह बताया है। इसके बाद खांसी, जुकाम, एलर्जी में इस्तेमाल होने वाली दवाइयां भी जांच में फेल हो गई हैं। इनमें भी डेक्सट्रोमेथॉर्फन सिरप जो है वो देश के लाखों घरों में खांसी के लिए इस्तेमाल होता है, वो भी सूची में शामिल है। और सांस से जुड़ी गंभीर बीमारियों के इलाज में इस्तेमाल होने वाले टाइट्रोपियम इनहेलर भी क्वालिटी टेस्ट में निर्धारित मानकों पर खरा नहीं उतरा। यानी सवाल सिर्फ एक गोली या एक सिरप का नहीं है, सवाल उस पूरे भरोसे का है जिस पर मरीज, उसका परिवार, अपना जीवन निर्भर करता है। उदाहरण के लिए इस जांच में पेट और एसिडिटी की दवाइयां फेल हो गई। रेबेप्राजोल, पेंटोप्राजोल, ओमेप्राजोल, एसोमेप्राजोल, ये तमाम दवाइयां जिन्हें देश में लाखों लोग रोजाना खाते हैं, उनके अलग अलग बैचेस के नमूनों पर सवाल उठाए जा रहे हैं, और ये सूची यहीं पर समाप्त नहीं होती। डायबिटीज जैसी गंभीर बीमारी के इलाज में इस्तेमाल होने वाली कई दवाइयों पर भी इसमें सवाल खड़े हुए हैं। तो अनेकों ऐसी दवाएं हैं जिसमें आप ये देखेंगे, लेकिन 3 दवाएं हम लेकर आए हैं जिसमें भारत सरकार की एजेंसी बता रही है कि इसमें जो सॉल्ट्स का इस्तेमाल हो रहा है, जो मानक है, जो मापदंड है क्वालिटी के, वो सही नहीं पाए गए हैं। और ये जानते हैं, ये जो 3 दवाएं मैं लाई हूं आपको दिखाने वाली हूं, ये प्रिस्क्रिप्शन एंटीबायोटिक है। ये बैक्टीरियल इंफेक्शन के लिए फटाफट डॉक्टर्स दिखते हैं बहुत सारे लोगों को, और ऐसा मुमकिन है कि आपने भी ये दवा खाई हो। पहली बार जो दवा हम आपको दिखा रहे हैं ये है ऑगमेंटिन 625 जो इस वक्त आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है कि कई बार हो सकता है डॉक्टर ने आपको दी है हो, आपके बच्चे के लिए प्रिस्क्राइब की हो। तो ये है ऑगमेंटिन 625, पहली दवा बैक्टीरियल इन्फेक्शन के लिए, डॉक्टर्स फौरन इसको प्रिस्क्राइब करते हैं। दूसरी दवा है, ये है मॉक्सक्लैव 625। दवा वही है जिसमें अगर आप देखेंगे जो सॉल्ट है तो इसमें एक्टिव इंग्रेडिएंट्स है अमोक्सिसिलिन और

0: मेलानिक एसिड, ये देखिए अगली दवा जो हम आपको दिखा रहे हैं, ये भी, ये दूसरी कंपनी की है। सॉल्ट वही है लेकिन कंपनी दूसरी है। और ये है क्लैविन 625। ये दवा भी आपको कई डॉक्टर्स ने हो सकता है कभी प्रिस्क्राइब की हो। तीनों में ही सॉल्ट एक है जिसमें अमोक्सिसिलिन एंड पोटेशियम क्लोवेट, इसमें सॉल्ट बताया जा रहा है, और ऐसे ही क्लैविनिक जो एसिड है वो सब में डाला जाता है। तो सॉल्ट वही है, कंपनियां तीन हैं, तीन अलग अलग दवाएं हैं, लेकिन भारत सरकार की रिपोर्ट बता रही है कि इनमें बड़ी बड़ी खामियां हैं, बड़ी बड़ी कमियां हैं। और इनमें मेटफॉर्मिन और ग्लाइमपेराइड, ये तमाम दवाइयों को क्वालिटी टेस्ट में सही नहीं पाया गया। यानी जिन लोगों को रोजाना अपना ब्लड शुगर कंट्रोल रखने के लिए इन दवाओं पर निर्भर करना रहना पड़ता है, और आप भी जानते हैं शुगर बढ़ना कितना बड़ा रिस्क है, शुगर गिर जाना कितना बड़ा रिस्क है, सीधे जिंदगी पर आ सकती है, जानलेवा हो सकता है, ये सही दवाइयां नहीं खा पा रहे हैं लोग, और उनकी दवाइयों में भी मिलावट है। डायबिटीज के बाद ब्लड प्रेशर और दिल की बीमारियों में इस्तेमाल होने वाली दवाइयां भी इस जांच में फेल पाई गई हैं। इनमें टेलमिसार्टन, एम्लोडिपीन और रेमिपिरिल, ये तमाम दवाइयां शामिल हैं। खून को पतला करने के लिए, मतलब जिंदगी और मौत के बीच का खून अगर जम जाए, कत्था बन जाए, कोएगुलेट हो जाए, किसी भी नली को वो ब्लॉक कर सकता है। ऐसे लोगों को जिनमें खून गाढ़ा होने की ऐसी चांसेस रहते हैं, उनको खून पतला करने की दवाई लेनी होती है जिंदा रहने के लिए, किसी रिस्क से बचने के लिए। लेकिन सोचिए इतनी मुश्किल परिस्थिति में, इतनी गंभीर बीमारी से जो लोग जूझ रहे हैं, और जो इस्तेमाल होने वाली जो एस्पिरिन 75 mg है, क्लोपिडोग्रेल है, वो भी इस सूची में शामिल है। और हम बार बार आपको बता रहे हैं ये भारत सरकार की रिपोर्ट है, भारत सरकार की एजेंसी की रिपोर्ट है जिसने इन तमाम दवाइयों में कमियां पाई हैं। इतना ही नहीं, कोलेस्ट्रॉल कम करने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली रेसुवास्टैटिन, ये भी टेस्ट में फेल हो गई। अब सोचिए ये कोई अनजान या गली मोहल्ले में बिकने वाली दवाइयां तो है नहीं जो हम आपको यहां दिखा रहे हैं। ये वो दवाइयां हैं जिन्हें बड़ी बड़ी ब्रांडेड कंपनियां बनाती हैं, ये वो दवाइयां हैं जिन्हें लोग भरोसे के साथ खरीदते हैं, ये वो दवाइयां हैं जिन पर मरीज अपनी सेहत, अपना इलाज, कई बार अपनी जिंदगी तक भरोसे के साथ छोड़ देता है। लेकिन अगर वही दवाइयां गुणवत्ता परीक्षण में फेल होने लगे, अगर वही दवाइयां तय मानकों पर खरी ना उतरे, अगर मरीज को ये भरोसा ही ना रहे कि जो दवा वो खा रहे हैं उसमें सही मात्रा में दवा मौजूद भी है या नहीं है, फिर सवाल सिर्फ दवा का नहीं रह जाता, सवाल पूरे सिस्टम सरकारों का हो जाता है। और सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि जब मरीज दवा खरीदते समय ब्रांड पर भरोसा नहीं कर पाएगा तो आखिर वो भरोसा कैसा करेगा? ये सब बड़ी बड़ी कंपनियां हैं जिनकी दवाएं हमने आपको दिखाई हैं, और अगर सरकार की ही एजेंसी इसको गलत पा रही है मापदंड पर, तो इन दवाओं को रोकने वाला कौन है? इनकी बिक्री कौन रोकेगा, या बस बताकर वो किनारा कर लेंगे? भारत के लोग हर साल एसिडिटी की 2500 करोड़ गोलियां खाते हैं, 2500 करोड़ गोलियां। रेबेप्रोजोल, पेंटोप्रोजोल नाम की ये दवाई सबसे ज्यादा खाई जाती है, लेकिन अब खुलासा हुआ है कि ये दवाई भी निर्धारित मानकों पर खरी नहीं उतरती। इसके अलावा भारत में हर दिन 60 से ज्यादा कंपनियां पैरासिटामोल की 400 करोड़ गोलियां बनाती हैं, और आप इन गोलियों को ये सोचकर खाते हैं कि इनसे आपका बुखार ठीक होगा, लेकिन असली दवाइयां भी सॉल्ट के मामले में मिलावटी निकलती हैं। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ पैरासिटामोल की दवाई इस टेस्ट में फेल हुई, खून की कमी, विटामिन और जितने सप्लीमेंट्स हम लोग खाते हैं, पेट के लिए जो दवाएं हैं, फूड डाइजेशन के लिए जो दवाइयां डॉक्टर आपको लिखते हैं, वो दवाइयां भी क्वालिटी टेस्ट में सही नहीं पाई गई। इनमें भी डिहाइड्रेशन के लिए इस्तेमाल होने वाला ORS, सोचिए ORS, कहते हैं कि जिंदगी बचानी हो, डिहाइड्रेशन में किसी की हालत बहुत खराब है, ORS घोल पिला दो, ORS भी इस जांच में फेल हो गया, जबकि हमारे देश में हर साल 80 करोड़ रुपए के ORS की बिक्री होती है। इसका मतलब यह है कि आप पैसा देकर दवाइयां भी खरीद रहे हैं और ये दवाइयां भी आपको नकली मिल रही हैं, या फिर इनकी क्वालिटी में कमी पाई जा रही है। और बात सिर्फ दवाइयों की नहीं, इस रिपोर्ट में तो यह भी बताया गया है कि चोट लगने के बाद स्किन पर जो हम लोग सर्जिकल स्पिरिट लगाते हैं वो भी गुणवत्ता के मामले में खराब है। हैंड सैनिटाइजर, घाव पर जो हम लोग गॉज बैंडेज लगाते हैं, जो कॉटन वूल की पट्टी बांधी जाती है, वो भी क्वालिटी टेस्ट में फेल हो गई, और ये बहुत बड़ी बात है। अमेरिका और चाइना के बाद दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी फार्मा इंडस्ट्री भारत में है, जहां कुल 3000 कंपनियां काम करती हैं। मौजूदा वक्त में ये इंडस्ट्री 5,67,000 करोड़ रुपए की है, जो साल 2030 में 12,30,000 करोड़ रुपए की हो जाएगी। और हम दुनिया के 200 देशों को भी दवाइयों का निर्यात करते हैं और ये निर्यात भी लगभग 5,00,000 करोड़ रुपए का है। और ये बात सब जानते हैं कि जो फार्मा इंडस्ट्री होती है इसमें भरोसा बहुत जरूरी है। जब कोई व्यक्ति कोई दवाई खाता है तो उसे ये पता नहीं होता कि वो दवाई कहां बनी है, उसमें कौन से ड्रग सॉल्ट इस्तेमाल हुए हैं। लोग सिर्फ सरकारों पर भरोसा रखकर डॉक्टर द्वारा लिखी गई दवाइयों को बाजार से खरीद लेते हैं। भाई डॉक्टर साहब ने नाम बता दिया, ये दवा मंगाओ। कोई भी व्यक्ति यही सुनिश्चित कर सकता है कि वो जो दवाई खा रहा है वो असली है नकली है, हमारे पास सुनिश्चित करने का तो कोई तरीका ही नहीं है। लेकिन सोचिए अगर असली दवाइयां भी क्वालिटी टेस्ट में फेल होने लगे, मतलब बड़ी बड़ी कंपनियों की दवाइयों की हम बात कर रहे हैं, तो इस देश के करोड़ों लोगों का विश्वास क्या होगा, उनकी सेहत का क्या होगा, बीमार होने पर उनका इलाज होगा या उनको और बीमार बनाया जाएगा। आपको यकीन नहीं होगा, जनवरी 2026 में 218, फरवरी 2017, मार्च में 190, अप्रैल में 121 और अब मई में 157 दवाइयां क्वालिटी टेस्ट में फेल हुई है। और ऐसा नहीं है कि जो कंपनियां ये दवाइयां बना रही हैं वो कोई छोटी मोटी कंपनियां हैं। इनमें सिप्ला कंपनी का भी नाम है, जिसने इलेक्टोरल बॉन्ड्स में 39,20,00,000 रुपए का चंदा दिया था, जिनमें से 37,00,00,000 रुपए का चंदा बीजेपी को मिला था और 2,20,00,000 रुपए का चंदा कांग्रेस को। भारत के दवा बाजार में इस कंपनी की 5% की हिस्सेदारी है, यानी हर 100 में से 5 दवाइयां इस कंपनी की होती है। क्वालिटी टेस्ट में इसकी कई दवाएं फेल हुई। सिप्ला के अलावा इसमें सनफार्मा कंपनी भी है, जो दवाइयां क्वालिटी टेस्ट में फेल हुई, जिसने इलेक्टोरल बॉन्ड्स में 31,50,00,000 का चंदा दिया था और ये सारा चंदा बीजेपी को मिला था। और भारत के दवा बाजार में इस कंपनी की 1% की हिस्सेदारी है, यानी हर 100 में से 1 दवाई इस कंपनी की होती है। यह खबर आज सबसे पहले हमने आपको इसलिए दिखाई क्योंकि भारत में हर रोज 30-40 करोड़ लोग कोई ना कोई दवाई खाते हैं। इसके लिए ज्यादातर लोग ब्रांडेड दवाइयों पर भरोसा करते हैं और जब सरकार की ही तरफ से सरकारी एजेंसी बता रही है कि कंपनी की दवाइयों की क्वालिटी में खामी है तो फिर इन पर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है। शहरों में लोगों का दवाइयों और इलाज पर औसत सालाना खर्च 12,400 रुपए है, गांव में 10,500 रुपए है। और बड़ी बात सबसे यह है कि पहले हमारे देश में हर दिन 15 दिन में 7.5% लोग बीमार होते थे, 7.5%, जबकि आज 13% से ज्यादा लोग हर 15 दिन में बीमार होते हैं। और फिर वो डॉक्टर्स द्वारा लिखी गई इन्हीं ब्रांडेड दवाइयों को खरीदते हैं जो क्वालिटी टेस्ट में फेल हैं। और ऐसे में सोचिए अगर यही दवाइयां फेल हो जाएं तो आम लोग फिर कहां जाएं और हम कब तक क्वालिटी टेस्ट में फेल इन दवाइयों को खाने के लिए मजबूर रहेंगे। खैर, एक तरफ इन दवाइयों की मिलावट है, दूसरी तरफ हमारी व्यवस्था का लोगों के साथ वो मजाक जो मौत के साथ भी खत्म नहीं होता। एक दिन पहले लखनऊ की एक बिल्डिंग में आग लगने से 15 युवाओं की मौत हो गई। इसके बाद पूरे देश से ऐसी खबरें आने लगी कि अब प्रशासन और सरकारें जाग चुकी हैं और अब लापरवाही को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। लेकिन जब आप इन तस्वीरों को ध्यान से देखेंगे तो आपको समझ आएगा ये कोई पहली बार नहीं हो रहा है। हर बार जब भी कहीं कोई बड़ा आग हादसा होता है तो अचानक पूरा प्रशासन जाग जाता है, फायर सेफ्टी की टीम सक्रिय हो जाती है, बड़े बड़े मॉल्स, होटल्स, अस्पताल, कोचिंग सेंटर, स्कूल, फैक्ट्रियां, निरीक्षण शुरू हो जाते हैं, नोटिस जारी किए जाते हैं, नियमों की याद दिलाई जाती है, लाइसेंसी की जांच होती है, मीडिया में ऐसे बयान दिए जाते हैं कि अब किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। ऐसा लगता है कि जैसे पूरे देश को अचानक फायर सेफ्टी की अहमियत समझ में आ गई। लेकिन सवाल यह है कि जागरूकता हर बार त्रासदी के बाद क्यों आती है? आखिर इस देश में फायर डिपार्टमेंट हर जगह बना क्यों है अगर काम ही नहीं करना है? जब कोई इमारत जलकर खाक हो जाती है, जब लोग धुएं में दम घुटने से मर जाते हैं, जब परिवार अपने लोगों को खो देते हैं, तब हमें याद आता है कि फायर एग्जिट भी होना चाहिए, इमरजेंसी फायर एग्जिट, आग बुझाने के इंतजाम भी होने चाहिए, बिजली के तार भी सुरक्षित होने चाहिए, इमारतों में सुरक्षा मानकों का पालन भी होना चाहिए, हादसे का इंतजार है तो एक और हो गया। लीजिए, आज लखनऊ के अग्निकांड के बाद भी पूरे देश में यही हो रहा है, जबकि कड़वा सच यह है कि लखनऊ में जो हुआ वो हादसा नहीं, 15 युवाओं की हत्या थी। हम आपको बताते हैं और हम आपको बताते जाएंगे और आप गिनते जाइए लखनऊ की इस बिल्डिंग में क्या कुछ नहीं हो रहा था। सबसे पहले इस बिल्डिंग में लगी आग का कारण ओवरलोडिंग था। बिल्डिंग के पास 20 किलोवाट का कमर्शियल बिजली कनेक्शन था, लेकिन बिजली लोड 34.10 किलोवाट था। समझ रहे हैं आप ओवर लोडिंग का आलम। इसी ओवरलोडिंग के कारण तारों और ट्रांसफार्मर पर भारी दबाव आया और ये इतनी बड़ी घटना हो गई। हैरानी की बात यह है कि ओवरलोडिंग के बाद भी इस बिल्डिंग की बिजली सप्लाई बंद नहीं हुई, जबकि इसकी पूरी व्यवस्था होती है। दूसरा, बिल्डिंग रेसिडेंशियल, लेकिन काम क्या चल रहा है? दुकान, कोचिंग सेंटर। अब भाई अगर रेसिडेंशियल है तो वहां कोचिंग सेंटर या फिर एनिमेशन टीचिंग सेंटर हो ही नहीं सकता, लेकिन इन नियमों की भी धज्जियां उड़ती रही। सोचने वाली बात यह है कि एक रेसिडेंशियल बिल्डिंग को जब व्यावसायिक कामों के लिए इस्तेमाल किया गया, तब भी इस बिल्डिंग का बिजली पानी का कनेक्शन रद्द नहीं हुआ। आज से 10 साल पहले 2016 में इस बिल्डिंग को अवैध माना गया था। बिल्डिंग का नक्शा रिहायशी इमारत के लिए पास हुआ था, जबकि यहां दुकानें चल रही थी, कोचिंग सेंटर खुला था, जिसके बाद इस पर बुलडोजर चल रहा था। लेकिन 2 महीने में ही बुलडोजर चलाने का ऑर्डर वापस ले लिया गया और आरोप लग रहे हैं कि इसके पीछे रिश्वतखोरी थी। ये जो रिश्वतखोरी है, ये हमारे बच्चों के लिए जानलेवा है। इससे भी बड़ी बात यह है कि 2017 से उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार है, लेकिन इस दौरान भी वहां कोई कार्रवाई नहीं हुई और इस बिल्डिंग को बंद नहीं कराया गया। चौथा, इस बिल्डिंग में एक वक्त पर 50 से ज्यादा लोग मौजूद रहते थे, लेकिन फिर भी इस बिल्डिंग के पास फायर एनओसी नहीं था। इस बिल्डिंग में कोई इमरजेंसी एग्जिट प्लान नहीं था जिससे वहां फंसे लोग बाहर निकल सके। रेस्क्यू टीम पुलिसकर्मियों ने साथ वाली इमारत से दीवार तोड़कर लोगों को बचाने की कोशिश की, लेकिन उन्हें कोई इमरजेंसी एग्जिट नहीं मिला जिससे वो अपनी जान बचा सके। कोई इमरजेंसी एग्जिट नहीं। छठा, बिल्डिंग के अंदर ऑटोमेटिक गेट लगाए गए थे। जो लोग आग लगने के बाद ये सोच रहे थे कि गेट खुलेगा उससे वो निकलेंगे, वो ऑटोमेटिक गेट खुले ही नहीं, वो बंद हो गए, लोग अंदर फंस गए और उनकी मौत हुई। सातवां, इस बिल्डिंग में कंप्यूटर लैब, एनिमेशन सेंटर, आईटी ऑफिस, अन्य व्यावसायिक गतिविधियां चल रही थी जिनके लिए मंजूरी लेना जरूरी था, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ था। बिल्डिंग में ऊपरी मंजिलों पर ऐसी मशीनें रखी गई थी जिनके लिए वहां स्मोक मैनेजमेंट सिस्टम होना चाहिए था, लेकिन यहां भी घनघोर लापरवाही, किसी का इस बिल्डिंग पर ध्यान नहीं था। आज सरकार इस अवैध बिल्डिंग की जांच करा रही है और उसने कुछ अधिकारियों को भी सस्पेंड किया, लेकिन हमारा सवाल यह है कि क्या ये काम पहले नहीं होना चाहिए? और सोचिए, अगर ये काम पहले हो गया होता तो 15 युवाओं की जान जाती, शायद बच जाती। ये तस्वीर निलेश और अनामिका की है। इस बिल्डिंग में दोनों नौकरी करते थे, बहुत जल्द शादी होने वाली थी, लेकिन इस अग्निकांड ने उन्हें उनके परिवार से हमेशा के लिए छीन लिया। इसी अग्निकांड में ज्योति नाम की एक लड़की की भी मौत हो गई, जो रोज अपनी स्कूटी से यहां आया करती थी। जब इसका भाई स्कूटी को यहां ले जा रहा था तो उसके हाथ बुरी तरह कांप रहे थे। सोचिए, क्या सरकार की जांच से इस भाई को उसकी बहन वापस मिल जाएगी? इसी घटना में अब्दुल रहमान नाम के एक लड़के की भी जान गई, जिसे इसी बिल्डिंग में एनिमेशन का कोर्स करने के बाद नौकरी मिल गई थी और इस लड़के पर उसके दिव्यांग पिता और बहन की जिम्मेदारियां थी, लेकिन ये लड़का भी पूरी तरह से जल गया। कई कहानियां हैं जिनका दर्द कुछ अधिकारियों के निलंबन से खत्म नहीं होगा। हकीकत तो यह है कि इन सब लोगों को इस सिस्टम ने मारा, उनकी हत्या की, ये हादसा बिल्कुल नहीं है। देखिए,
1: उसकी जिम्मेदारी गवर्नमेंट है, ये शासन प्रशासन है जो हमारे निलेश को क्या, उसमें जितने बेचारे बच्चे थे उनको सुख सुविधा देते तो आज फायर ब्रिगेड टाइम से पहुंच जाती। तो आज मेरा देवन, मेरा
2: 25 मिनट देर पहुंची है जो लोगों ने बताया,
1: 45 मिनट 25 मिनट जो भी पहुंची है। अगर आज वहीं पर पास में ही है, ज्यादा दूर नहीं था, अलीगंज थाना कितनी दूर है वहां से, पुरनिया कितनी दूर है, आ सकती थी गवर्नमेंट बचाने, लेकिन नहीं, शासन प्रशासन की गलती है।
3: वो तस्वीर जो कल निकले तो उस समय तस्वीर तो हमेशा जब तक जिएंगे तब तक सामने दिखेगी हमको, लेकिन बच्चा नहीं दिखेगा, बेटा नहीं दिखेगा, मेरा दुनिया दिख सकती, मेरा बेटा नहीं दिख सकता।
4: मेरा भाई फोन करके बताया कि भैया आप फंस गए, दो दिन पहले मेरा ऑपरेशन किडनी स्टोन को हुआ। हम बेड से सीधा भागे, हमने कहा बीगो निकालो मुझे जाना है, यहाँ है। उसके बाद बात नहीं हुई।
5: ये सबसे बड़ी दर्दनाक घटना हुई कि माँ के सामने बेटा अंदर। कई मंजिल की बिल्डिंग बनती है तो उसके साथ साथ क्या लिफ्टें चलने का सवाल नहीं था? कम से कम साथ में सीढ़ियां तो होनी ही चाहिए, आदमी कहीं से तो भाग सके। वेंटिलेशन बताते हैं उसमें था ही नहीं। और वो जब लगी है आग तो ये पता चला है कि वो ऑटोमेटिक लॉक हो गया गेट, जिसकी वजह से लोग निकल नहीं पाए।
6: स्कूटी लेने आया है बस अभी तो बस। हाँ,
2: इसी से वो आई थी क्या कल?
6: हाँ, इसी से आती थी वो, उसी की है।
2: लगातार ये सवाल उठा रहे हैं और हम प्रशासन से जाकर पूछेंगे कड़े सवाल कि आखिर इस तरह की घटना क्यों हुई है।
6: नॉर्म्स यहाँ फॉलो नहीं हुए थे, वो ऐसा चलता रहेगा, मेरे को कोई उम्मीद नहीं है। कच्चा जो गवर्नमेंट आ जाए, लोग ही ऐसे हैं, पैसे दे के सब पास हो जाता है, अब वो ऐसे होता रहेगा हर, तो इसमें मुझे उम्मीद नहीं है।
2: दम घुटने से मौत हुई है यहाँ बताया गया है,
6: वो मेरा लॉस है और किसी का सबका फायदा है।
0: सोनिया जी क्या कहिएगा, आज पूरा देश आपको सुन रहा है।
7: बच्चा चला गया, मेरी जिम्मेदारी, मेरा जीने का सहारा था सैया, मेरा जीने का सहारा था सैया, मेरी जिम्मेदारी कौन निभाएगा, मेरा जीने का सहारा सैया, मैं क्या बताऊँ, मेरा बच्चा तो चला गया, मेरी जिम्मेदारी कौन करी, उसको तो कोई ला नहीं पाएगा, हाय भगवान, मेरा बच्चा, मेरा बच्चा।
0: इस घटना के बाद ये समझना भी जरूरी है कि हमारे देश में कैसे ऑटोमेटिक गेट और इलेक्ट्रॉनिक लॉक लोगों के लिए जानलेवा साबित हो रहे हैं। आज आपको ये जानना जरूरी है कि इसके लिए क्या करने। देखिए, लखनऊ की इस घटना में जिस मंजिल पर सबसे ज्यादा लोग फंसे थे, वहां जो मेन गेट है वहां पर ऑटोमेटिक लॉक लगा था जो बायोमेट्रिक से ही खुलता था। आग लगने के बाद यह ऑटोमेटिक लॉक फेल हो गया और लोग बाहर ही नहीं निकल पाए। और ऐसा नहीं है कि यह पहली बार किसी घटना में हुआ है। 3 जून को जब दिल्ली के मालवीय नगर में एक होटल में लगी आग लगी थी तब भी इमारत के मुख्य दरवाजे पर इलेक्ट्रॉनिक गेट था जो रात में अपने आप बंद हो जाता था, लेकिन क्योंकि इस घटना के दौरान आग की वजह से बिजली चली गई थी इसलिए गेट पूरी तरह से जाम हो गया, बाद में खुला ही नहीं। और इसीलिए हमने सोचा कि ऐसी तमाम बिल्डिंग्स में जो ऑटोमेटिक गेट लगाई जा रही हैं और जो जानलेवा साबित हो रही हैं, ये मुद्दा उठाना आज जरूरी है। 3 मई 2026 को दिल्ली के विवेक विहार इलाके में एक 4 मंजिला रिहायशी इमारत बहुत भीषण आग लगी, 9 लोगों की दर्दनाक मौत हुई और इस हादसे का भी सबसे बड़ा कारण इलेक्ट्रिक लॉक बने जो सुरक्षा के लिए बनाए गए थे, लेकिन शॉर्ट सर्किट के बाद ये लॉक्स जैम हो जाते हैं जिससे लोग अपने कमरों से बाहर नहीं निकल सके। 11 जून 2025 को दिल्ली के द्वारका में, 1 नवंबर 2024 को उत्तर प्रदेश के कानपुर में, 28 जुलाई 2026 को दिल्ली के ओल्ड राजेंद्र नगर में, 19 मार्च 2024 को मध्य प्रदेश के इंदौर में, 20 जनवरी 2024 को दिल्ली के पीतमपुरा में 6 लोग इसीलिए जिंदा जलकर मारे गए क्योंकि उनके घर में गेट पर लगा इलेक्ट्रॉनिक लॉक घटना के दौरान खुला ही नहीं। और अब ये एक बड़ी समस्या बन गया है, ये ऑटोमेटिक डोर। आग लगने की स्थिति में हर सेकंड कीमती होता है कि आप कैसे वहां से भाग सकें। उस समय लोगों के पास इतना समय नहीं होता कि वो इन इलेक्ट्रॉनिक लॉक्स का पासवर्ड याद करें, इन्हें मोबाइल ऐप खोलें या ये समझने की कोशिश करें कि लॉक क्यों नहीं खुल रहा है। कई बार तो वो बिजली की तारे मारे वहां आग लगने की वजह से डिफंक्ट हो जाती है, काम ही नहीं करती, आप कुछ नहीं कर सकते, उन्हें तो बस बाहर निकलना है। लेकिन सोचिए अगर दरवाजा खुलेगा ही नहीं तो फिर अंदर फंसे लोगों के पास बचने का क्या रास्ता है। आपने इस बिल्डिंग में भी देखा, दूसरी तरफ जो ये बड़े बड़े शीशे लगे हुए थे कांच के, उसको उठाकर किसी तरह से निकलने की कोशिश की और जैसे वो उठाते थे धुआं निकलता था जोर का, अंदर कैसी घुटन हो रही होगी, एक रस्सी के सहारे कुछ बच्चे निकल पाए। सबसे बड़ी चिंता की बात यह है कि हमारे देश में ऐसे इलेक्ट्रॉनिक लॉक्स लगाने को लेकर कोई स्पष्ट नियम नहीं है। कोई व्यक्ति बाजार से ऐसा लॉक खरीद कर अपने घर में लगवा सकता है, लेकिन कोई ये नहीं देखता कि अगर बिजली चली आए तो यही लॉक खुलेगा कैसे? अगर सिस्टम खराब हो जाए, बाहर निकलने का दूसरा रास्ता क्या है? और अगर अंदर बच्चे या बुजुर्ग फंस जाए तो क्या करेंगे? यानी हम घर को सुरक्षित बनाने के लिए जो इलेक्ट्रॉनिक लॉक्स लगा रहे हैं, इसकी सुरक्षा की कोई जांच नहीं होती। और इसीलिए हमें लगता है कि अब समय आ गया है कि सरकार इस पर गंभीरता से विचार करे। जिस तरह गाड़ियों, लिफ्ट, गैस सिलेंडर्स के लिए सुरक्षा नियम होते हैं, उसी तरह इलेक्ट्रॉनिक लॉक्स के लिए भी नियम बनाइए। ये तय कीजिए कि कोई भी ऐसा लॉक नहीं लगाया जा सकता जो आग, शॉर्ट सर्किट, बिजली लाने की स्थिति में लोगों को अंदर फंसा दे। और अगर ऐसा हो तो एक एग्जिट रूट दूसरा होना चाहिए, क्योंकि किसी भी दरवाजे का पहला काम चोरी रोकना नहीं बल्कि मुसीबत के समय लोगों को सुरक्षित बाहर निकालने का होता है। हम आपसे यही कहेंगे कि अगर आप घर या दूसरी जगहों पर इलेक्ट्रॉनिक लॉक्स, फिंगरप्रिंट लॉक या बायोमेट्रिक लॉक लगवा रहे हैं, तो पहले ये देख लें कि क्या वहां इन लॉक के खराब होने पर बाहर निकलने का इमरजेंसी रास्ता है। अगर इमरजेंसी रास्ता नहीं है तो ऐसे इलेक्ट्रॉनिक लॉक्स बिल्कुल ना लगाएं। ये ध्यान रखें कि कोई भी जगह सिर्फ ऑटोमेटिक लॉक से स्मार्ट नहीं बनती, वो इस बात से स्मार्ट बनती है कि वहां इमरजेंसी के लिए क्या इंतजाम किए गए हैं।

0: इस तरह का अगर रूल
1: खैर आगे बढ़ते हैं और आपको ये बताते हैं कि राम मंदिर के चढ़ावे में चोरी के जो आरोप लगे थे उस पर एसआईटी ने अपनी प्रारंभिक रिपोर्ट सौंप दी है। ये रिपोर्ट अभी सार्वजनिक नहीं हुई है लेकिन हमें सूत्रों से पता चला है कि इसमें चढ़ावे की चोरी को लेकर कई बड़े खुलासे किए गए। जैसे पहला बड़ा दावा, एसआईटी को चढ़ावे की गिनती और निगरानी में कई खामियां मिली हैं। दूसरा, एसआईटी को यह भी पता चला है कि जिस तरह सभी 40 दान पेटियों का पैसा गिना जाता था उनमें कई गड़बड़ियां थी। तीसरा, एसआईटी ने अपनी शुरुआत जांच में किसी को भी क्लीन चिट नहीं दी है और सबको इस चोरी के लिए संदिग्ध माना है। चौथा, इसमें उन कर्मचारियों की चयन प्रक्रिया को लेकर सवाल उठाए गए हैं जो चढ़ावे की गिनती करते थे। ये बात कल भी हमने आपको बताई थी ना कि चोरी में भाई भतीजावाद मॉडल चल रहा था। ट्रस्ट के सदस्य और कर्मचारियों ने अपने रिश्तेदारों को चढ़ावा गिनने के काम में लगाया था हर स्तर पर। आप सोचिए, मतलब जो प्राइवेट एजेंसी के पास जिम्मेदारी है वहां भी एक रिश्तेदार घुमा दिया, जिस कंपनी को जिस बैंक को जिम्मेदारी है वहां भी एक रिश्तेदार घुमा दिया, और जो ट्रस्ट है उसमें भी सदस्य बना दिया। तो एक बार फिर से आपको बताते हैं, खुद एसआईटी ने ऐसे सभी लोगों की एक फैमिली चेन बनाई है जिनके रिश्तेदार मंदिर ट्रस्ट के सदस्य हैं या कर्मचारी हैं, चढ़ावा गिनने वाली एक प्राइवेट कंपनी के लिए काम करते हैं। पांचवा, इस रिपोर्ट में आरोपी कर्मचारियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की सिफारिश की गई है ताकि उन्हें गिरफ्तार किया जा सके। और छठा, राम मंदिर की आंतरिक व्यवस्था संचालन के लिए जिम्मेदार कुछ पदाधिकारियों की भूमिका भी जांच के दायरे में है, यानी मंदिर ट्रस्ट के जो 15 सदस्य हैं उनमें कुछ शक के दायरे में है। सातवां, इसी जांच रिपोर्ट में प्रशासनिक और निगरानी तंत्र की जवाबदेही से जुड़े कई बिंदुओं का उल्लेख है और ये बताया गया है कि इसमें अभी तत्काल बदलाव की जरूरत है। आठवां, इस चोरी का दायरा इतना बड़ा हो सकता है कि एसआईटी ने अतिरिक्त संसाधनों और सहयोगी अधिकारियों की मांग की है, और सूत्रों के मुताबिक इसमें आखिरी पॉइंट यह है कि इस चढ़ावा चोरी की जांच करने में वक्त लगेगा और आने वाले दिनों में इस पर कई बड़े खुलासे हो सकते हैं। सुन,
2: मैं और मेरे जो साथी एसआईटी में रहे थे उन्होंने आज अपर मुख्य सचिव गृह महोदय को अपनी जो प्रारंभिक जांच आख्या है उसको सबमिट कर दिया है और जो भी फाइंडिंग्स हैं वो हम सबमिट कर चुके हैं। फाइंडिंग्स के बारे में हमारा कहना उचित नहीं है और अभी भी जांच प्रचलित है और जो बाकी चीज है उसको हम अपनी सेकंड पार्ट में जो हमारा अंतिम प्रतिवेदन रहेगा उसमें सबमिट करेंगे।
3: सर, इसमें जो आप लोग जांच कर रहे थे क्या और भी यूनिट्स लगाई जाएंगी और अभी भी आगे भी जांच इसकी जारी रहेगी चूंकि 15 डेज का जो एक वर्क टाइम है?
2: देखिए, जांच दल का गठन शासन ने किया है तो उसमें अधिक लगाई जाएंगी और बढ़ाई जाएंगी इसके बारे में मेरा कहना उचित नहीं है और जो हमें दायित्व सौंपा गया है हम उस दायित्व को अच्छे से निर्वहन करेंगे, मैं ये बता सकता हूं।
3: सर, एक लाइन बस इसमें, क्या जांच टीम के द्वारा किसी को इसमें क्लीन चिट दी गई है इस पूरे मामले में, पूरी इस जांच के दौरान?
2: चूंकि यह गोपनीय जांच आख्या है इस विषय पर मैं कुछ भी कहने के लिए अधिकृत नहीं हूं।
1: अब तक ये रिपोर्ट सार्वजनिक नहीं हुई है लेकिन सूत्रों से जो जानकारी आ रही है उसमें कहीं ना कहीं ये संकेत मिलता है कि प्रभु श्री राम के मंदिर में चढ़ावे की जो चोरी हुई वो सच हो सकती है और इतना जान लेना ही इस देश के करोड़ों राम भक्तों के लिए बहुत बड़ी त्रासदी है। हम तो ये चाहेंगे कि जिन आरोपियों ने ये चोरी की उनका नाम पूरे देश के सामने रखा जाए और भारत के लोगों को ये पता चले कि किन रामद्रोहियों ने प्रभु श्री राम का चढ़ावा चुराया, ये पाप किया। खैर, आगे बढ़ते हैं और आपको इस वक्त की सबसे बड़ी खबर बताते हैं जो इजराइल से आ रही है। इजराइल के पूर्व प्रधानमंत्री और विपक्षी नेता नफ्ताली बेनेट ने प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। उनका आरोप है कि प्रधानमंत्री नेतन्याहू राष्ट्रपति ट्रंप से डर गए हैं। उन्होंने दक्षिणी लेबनान में तैनात इसराइल के सैनिकों को ये निर्देश दिए हैं कि वो अगले आदेश तक कोई कार्रवाई नहीं करेंगे और ये आरोप नफ्ताली बेनेट लगा रहे हैं। उन्होंने ये भी खुलासा किया है कि उनकी लेबनान में मौजूद सैनिकों और कमांडर्स से सीधी बात हुई है और जमीन पर हकीकत यह है कि इजरायली सैनिकों के सामने हिजबुल्ला के आतंकी बंकर बना रहे हैं, हथियार जुटा रहे हैं, दूरबीन से सैनिकों की रेकी कर रहे हैं, लेकिन इजरायली सैनिकों को गोली चलाने की इजाजत नहीं है। इससे ये सवाल भी उठता है कि आने वाले दिनों में आखिर इजरायल में नेतन्याहू की स्थिति क्या रहेगी और आज जब विपक्ष वहां पर इतनी जोर से आवाज उठा रहा है तो क्या वाकई इजरायली सैनिकों की जिंदगी खतरे में है?
4: मेरा और रक्षा मंत्री का लेबनन में सैनिकों के लिए साफ संदेश है, उसमें कोई बदलाव नहीं है। दक्षिणी लेबनन में हमारे सैनिकों को उन पर या उत्तरी इसराइल के लोगों पर किसी भी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष खतरे से निपटने की पूरी छूट है। इजरायली सेना पर किसी तरह की पाबंदी नहीं है, मैं उनके साथ खड़ा हूं, सारे नागरिक उनके साथ हैं, ताकि उत्तरी इजरायल के लोगों की सुरक्षा के लिए दक्षिणी लेबनन में जब तक रहने की जरूरत हो वो रह सके।
1: और अब अगली खबर का रुख करते हैं। सवाल ये खड़ा होता है कि क्या भारत को वाकई में पेट्रोल में इथेनॉल मिलाने की जरूरत है। इस वक्त हमारे देश में E20 पेट्रोल को लेकर खूब विवाद हो रहा है। लोग ये आरोप लगा रहे हैं कि इसके कारण उनकी गाड़ियों का माइलेज कम हो रहा है, इससे इंजन में भी खराबी आ रही है, जबकि सरकार कह रही है कि E20 पेट्रोल से ज्यादा नुकसान नहीं है और इसका माइलेज पर भी ज्यादा असर नहीं होता। इस बहस के बीच बड़ा सवाल ये बन रहा है कि क्या हमें वाकई में पेट्रोल में इथेनॉल मिलाने की जरूरत है। ये सवाल हम इसलिए पूछ रहे हैं क्योंकि अब धीरे धीरे दुनिया में कच्चे तेल की आपूर्ति सामान्य होने लगी है। इनमें भी ईरान के कच्चे तेल पर लगे प्रतिबंधों को अमेरिका ने अगले 60 दिनों के लिए हटा दिया है, और अगर इन 60 दिनों में इन दोनों देशों की फाइनल डील हो जाती है तो प्रतिबंध हमेशा के लिए निलंबित रहेगा। अब यह भारत के लिए अच्छी खबर है। अच्छी खबर इसलिए है क्योंकि ईरान का कच्चा तेल न सिर्फ सस्ता है बल्कि दोनों देशों के बीच दूरी भी कम है, जिससे कच्चा तेल लाने का खर्च कम हो सकता है। इसी में एक एडवांटेज और है कि ईरान हमें कच्चे तेल का भुगतान करने के लिए 60 से 90 दिनों का क्रेडिट पीरियड देता है, जबकि दूसरे देश हमें इसके लिए 30 दिनों का समय देते हैं। 2019 से पहले जब हम ईरान से कच्चा तेल खरीदते थे तब हमारे आयात में उसकी हिस्सेदारी 11.5% थी, और हाल ही में प्रतिबंध हटने के बाद हमने ईरान से 38,85,000 बैरल कच्चा तेल खरीदा। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ हमें ईरान के तेल की ही जरूरत है। ईरान अपने तेल को रिफाइन करने के लिए भारत की तेल रिफाइनरीज कंपनीज का इस्तेमाल का प्राथमिकता देता है, और अब भी प्रतिबंध हटने के बाद उसने हमसे संपर्क करना शुरू किया है। अब एक तरफ ईरान का कच्चा तेल हमारे पास आने वाला है, दूसरी तरफ रशिया से भी हम खूब तेल खरीद रहे हैं। आप इस ग्राफिक्स को देखिए, जून 2025 में भारत 44.4% कच्चा तेल रशिया से खरीद रहा था, लेकिन इस बार जून महीने में भारत ने आधे से भी ज्यादा यानी 53.9 लगभग 54% कच्चा तेल अकेले रशिया से खरीदा है। यानी आधे से ज्यादा कच्चा तेल हम रशिया से खरीद रहे हैं और अब कच्चे तेल की ज्यादा कमी है नहीं। इंडियन क्रूड बास्केट में एक बैरल कच्चा तेल $75 पर आ गया है, जबकि युद्ध से पहले इसी के आसपास $69 पर था। ये आंकड़े बताते हैं कि जब कच्चा तेल सस्ता किया जा सकता है और दूसरा अब पेट्रोल में इथेनॉल मिलाने की जरूरत पर भी जरूर विचार होना चाहिए। कम से कम सरकार लोगों को ये विकल्प दे सकती है कि वो अपनी गाड़ियों में E20 पेट्रोल डलवाना चाहते हैं या नहीं डलवाना चाहते। जैसे स्वीडन में लोगों के पास ये विकल्प होता है, वो अपनी गाड़ी में सिर्फ पेट्रोल डलवाना चाहते हैं या फिर एथेनॉल वाला फ्यूल डलवाना चाहते हैं। अमेरिका के भी कई राज्यों में पेट्रोल पंप पर अलग अलग विकल्प होते हैं। E0 का मतलब होता है बिना एथेनॉल, जबकि E10, E15, E85 वो तेल होता है जिसमें एथेनॉल मिलाया गया हो 15%, 85%। ये लोगों पर निर्भर करता है कि वो अपनी गाड़ियों में कौन सा पेट्रोल डलवाएंगे। और यहां बात सिर्फ अमेरिका और स्वीडन की नहीं है, जर्मनी में E5 है, E10 दोनों विकल्प मौजूद है। जिन लोगों के पास पुरानी गाड़ियां हैं उनके पास ये विकल्प रहता है कि वो E5 को चुने ताकि उनकी गाड़ियों को इससे नुकसान ना। और फ्रांस और कनाडा में रेगुलर गैसोलीन यानी बिना इथेनॉल वाले पेट्रोल और इथेनॉल वाले पेट्रोल के अलग अलग सेशंस होते हैं। और हमारे देश में भी जब इस पर विवाद हो रहा है तो सरकार ये व्यवस्था कर सकती है। यहां आपको ये भी जानना चाहिए कि सरकार का लक्ष्य 2030 तक पेट्रोल में 20% इथेनॉल मिलाने का था, लेकिन इस लक्ष्य को उसने 5 साल पहले नवंबर 2025 में हासिल कर लिया, जिससे कई लोगों की शिकायत यह है कि यह सब कुछ रॉकेट की रफ्तार से कैसे हो गया। इसके अलावा सरकार ने साल 2024 में किसानों को यह प्रस्ताव दिया कि अगर वो मक्के की खेती करते हैं तो उनके साथ पूरे 5 साल का एक कॉन्ट्रैक्ट किया जाएगा और उन्हें MSP के साथ इसका लाभ मिलेगा। ये इसलिए बड़ा था क्योंकि भारत में मक्के की खपत भोजन के रूप में ज्यादा नहीं होती। भारत में कुल जो उत्पादित मक्के का केवल 20-25% हिस्सा ही सीधे तौर पर भोजन के रूप में खपत होता है, लेकिन फिर भी यह प्रस्ताव आया। और इसलिए आया क्योंकि मक्का से इथेनॉल बन सकता है, और यही कारण है अभी इस पर कई लोग नाराजगी जता रहे हैं, पूछ रहे हैं कि E20 पेट्रोल भारत में पेट्रोल वाली कीमतों पर ही क्यों मिलता है। खैर, इन सब के बीच एक और बड़ी खबर यह है कि भारत और अमेरिका के बीच ट्रेड डील के लिए अंतिम दौर की बातचीत शुरू हो चुकी है। इसके लिए अमेरिका के ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव जेमिसन ग्रीर भारत आ चुके हैं और इसी खबरें हैं कि हमारा देश अमेरिका से दो चीजें चाहता है। पहला, हम चाहते हैं कि ये ट्रेड डील सीधे लागू ना की जाए, इसकी जगह पहले एक अंतरिम या शुरुआती समझौता लागू और फिर आगे बड़े समझौतों की तरफ बढ़ा जाए। दूसरा, हम चाहते हैं कि अमेरिकी बाजारों में भारत के सामानों पर वियतनाम और अन्य एशियाई देशों की तुलना में कम टैरिफ लगे और हमें इस ट्रेड डील का बड़ा एडवांटेज मिले। ये एडवांटेज हमें क्यों चाहिए, उसके लिए आपको ये आंकड़े देखने चाहिए। अमेरिका वो देश है जिसके साथ व्यापार करने में हमें खूब मुनाफा होता था, लेकिन अब ये व्यापार मुनाफा यानी ट्रेड सरप्लस तेजी से घटने लगा है। मई महीने में भारत का व्यापार मुनाफा $2.4 बिलियन रहा, जबकि पिछले साल इसी मई महीने में यह व्यापार मुनाफा $5.02 बिलियन रहा। इसका मतलब यह हुआ कि सिर्फ एक साल में अमेरिका के साथ भारत का व्यापार मुनाफा 40% से ज्यादा कम हो गया और अमेरिका को इसका खूब एडवांटेज मिला है, खूब फायदा मिला है। कैसे, अब इन आंकड़ों को देखिए। पेट्रोलियम उत्पादों में अमेरिका का भारत को निर्यात 130%, इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में 136%, ऑर्गेनिक केमिकल्स में 98%, कॉपर उत्पादों में 159%, गाड़ियों और दूसरे वाहनों में 1,284% और ताजे फलों का निर्यात 15% बढ़ा। लेकिन इसी दौरान पेट्रोलियम उत्पादों में भारत का अमेरिका को 24% कम हो गया जो पेट्रोलियम उत्पाद थे, इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में 33%, ऑर्गेनिक केमिकल्स में 12%, कॉपर उत्पादों में 18%, गाड़ियों दूसरे वाहनों में 37%, ताजे फलों का निर्यात 10% कम हो गया। जब भी आतंकवाद की बात होती है, सुरक्षा एजेंसी से लेकर आम जनता के दिमाग में बंदूक और बारूद से लैस पुरुषों की तस्वीर उभरती है। लेकिन अब जो अगली खबर हम आपको दिखा रहे हैं, पिछले कुछ वक्त में भारत की खुफिया एजेंसियों ने जो गिरफ्तारियां की हैं उसने इस धारणा को लेकर सोचने पर मजबूर कर दिया। इसी महीने जयपुर के वाटिका इलाके से मिलिट्री इंटेलिजेंस के गुप्त इनपुट के आधार पर राजस्थान एटीएस ने छापेमारी की और जानते हैं इस दौरान सवाई माधवपुर की रहने वाली बबीता धाकड़ उर्फ खदीजा को गिरफ्तार कर लिया। बबीता की कहानी इस बात का सबसे बड़ा सबूत है कि कैसे सोशल मीडिया के बंद कमरों में महिलाओं का ब्रेन वॉश किया जा रहा है। मूल रूप से गंगापुर सिटी की रहने वाली बबीता सोशल मीडिया के जरिए पाकिस्तानी आकाओं के संपर्क में आई। पाकिस्तान के एक मुफ्ती ने उसे कलमा पढ़ाया, उनके इस्लाम कबूल करते हुए अपना नाम खदीजा उसने रख लिया। जब बबीता का मोबाइल खंगाला गया तो जांच अधिकारी दंग रह गए। उसके फोन में 2 सिम कार्ड थे, उसका फेसबुक अकाउंट देश विरोधी आपत्तिजनक कंटेंट से भरा पड़ा था, उसकी फ्रेंड लिस्ट में कई ऐसे प्रोफाइल थे जिन पर जैश ए मोहम्मद के झंडे, हथियारों से लैस आतंकियों की तस्वीरें लगी थी। इतना ही नहीं, उसके व्हाट्सएप पर कई पाकिस्तानी नंबर्स मिले जिनसे वो लगातार संपर्क में थी। शुरुआती जांच के मुताबिक पाकिस्तानी हैंडलर्स बबीता का ब्रेन वॉश कर चुके थे और उसे भारत में किसी बड़ी साजिश को अंजाम देने के बाद पाकिस्तान बुलाने की तैयारी भी थी। लेकिन एटीएस ने उससे पहले ही खदीजा को यूएपीए के तहत दबोच लिया। कोर्ट ने उसे 27 जून तक एटीएस की कस्टडी में भेज दिया है। बबीता और खदीजा को सिर्फ आप एक मोहरा मानिए। इस पूरे नेटवर्क के पीछे पाकिस्तान में बैठे आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद और उसकी एक सोची समझी क्रूर रणनीति है। मीडिया रिपोर्ट्स और खुफिया दस्तावेजों के मुताबिक जैश के सरगना मसूद अजहर ने बाकायदा महिलाओं के लिए एक अलग विंग तैयार कर दी है। तो नाम है जमातुल मोमिनात। इस विंग की कमान मसूद अजहर की बहनें सादिया और सुमेरा अजहर संभाल रही हैं। ये नेटवर्क बाकायदा तोहफा अल मोमिनात नाम से ऑनलाइन कोर्सेस चला रहा है जहां लाइव सेशंस के जरिए महिलाओं को जिहाद की थ्योरी पढ़ाई जाती है। यही वजह है कि यह मसला सिर्फ एक महिला बबीता उर्फ खदीजा तक सीमित नहीं है। बेंगलुरु से लेकर हैदराबाद और कश्मीर तक पढ़ी लिखी महिलाएं, डॉक्टर्स, ग्रेजुएट्स अब आतंकी संगठनों के रडार पर हैं, जिन्हें आतंक का नया चेहरा बनाया जा रहा है। पिछले एक साल में अगर आप देखिए तो देश के अलग अलग कोनों से महिलाओं की गिरफ्तारियां हुई हैं। इन मामलों में सुरक्षा एजेंसियों ने प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक्स यानी धमाके से पहले की साजिश के नेटवर्क को क्रैक किया। मार्च 2026 में हैदराबाद से सईदा बेगम की गिरफ्तारी हुई। 15 सदस्यों वाले कोर आइसिस ग्रुप का हिस्सा थी और क्लोज चैट ग्रुप्स के जरिए पूरे देश में जिहादी कंटेंट कोऑर्डिनेट कर रही थी। पिछले साल नवंबर में लखनऊ की एक यूनिवर्सिटी में काम करने वाली पढ़ी लिखी डॉक्टर शाहीन सईद को गिरफ्तार किया गया। आपको याद होगा ये लेडी डॉक्टर जैश और अंसार गजवातुल हिंद के लिए काम कर रही थी और इसकी निजी कार का इस्तेमाल हथियार बारूद की सप्लाई के लिए हो रहा था। इनकी निशानदेही पर फरीदाबाद से 2900 किलो विस्फोटक बरामद हुआ। जुलाई 2025 में गुजरात एटीएस ने बेंगलुरु से शमा परवीन को दबोचा। वो इंस्टाग्राम के जरिए सीधे पाकिस्तानी आकाओं के संपर्क में थी और भारत में अलकायदा का ऑनलाइन टेरर मॉड्यूल चला रही थी। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर आतंकी आका महिलाओं को निशाना क्यों बना रहे हैं। एक्सपर्ट्स के मुताबिक इसके पीछे तीन सबसे बड़ी वजह है। पहला, कम शक। सुरक्षा एजेंसी सिक्योरिटी पॉइंट्स पर महिलाओं पर आसानी से शक नहीं किया जाता। समाज में महिलाओं को सुरक्षा और करुणा का प्रतीक माना जाता है। आतंकी इसी सामाजिक सोच का फायदा उठाकर उन्हें सुरक्षा घेरा भेदने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। दूसरा, मददगार की भूमिका। अक्सर महिलाएं सीधे बॉम्ब रखने नहीं जा रहे, असल में वो इस पूरे इकोसिस्टम की मास्टरमाइंड, लॉजिस्टिकल प्रोवाइडर यानी हथियार और गाड़ी का इंतजाम करने वाली और डिजिटल हैंडलर की भूमिका निभा रही हैं, जिससे वो लंबे समय तक कानून की नजरों से बचती है। और तीसरा, अकेलापन और इंटरनेट का जाल। बबीता और शमा परवीन जैसे मामलों में देखा गया कि सोशल मीडिया के जरिए महिलाओं के अकेलेपन या पारिवारिक अलगाव का फायदा उठाकर इतनी तेजी से ब्रेन वॉश किया जाता है कि वो कट्टरता के जाल में फंस जाती है। जयपुर की बबीता हो, लखनऊ की डॉक्टर शाहीन हो या बेंगलुरु की शमा, इन सभी की गिरफ्तारियों से एक बात साफ है कि आतंक की जंग अब सरहद से निकलकर स्मार्टफोन के बंद कमरों और सोशल मीडिया एप्स तक आ पहुंची है। आतंकी संगठन अब महिलाओं को एक हथियार की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं। हालांकि भारतीय एजेंसियां अब इनके डिजिटल फुटप्रिंट्स और बैंक ट्रेल्स को ट्रैक कर किसी भी बड़ी साजिश से पहले लेडी टेरर नेटवर्क को नस्ताबूत करने में जुटी है। इसी के साथ ब्लैक एंड व्हाइट में हम रुक रहे हैं ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार अंजना की विचारधारा, देखते रहिए आज तक।

0: Some mysteries lie beneath the ocean. Others, beyond the stars. Explore Earth's wildest places on Earth Day 365. Uncover nature's greatest mysteries and experience breathtaking IMAX theatre documentary films. Watch Earth Day 365 free now on the Roku channel, LG channels, Amazon Fire, and more.
1: I'm Pamela Anderson. Explore your world every day on Earth Day 365.
2: केंट से पानी होता है 100% प्योर.
3: केंट आरो प्योरिटी दिखाता भी है.
2: केंट देता है सबसे शुद्ध पानी.
4: क्रिकेट में हर खिलाड़ी का अलग रोल होता है. कोई विकेट कीपर, कोई फील्डर, कोई बॉलर, तो कोई बैट्समैन होता है. और जब सब एक साथ मिलकर खेलते हैं तब बनती है कंप्लीट टीम. जैसे पीएनबी वन ऐप, जिसमें फंड ट्रांसफर्स हो या अकाउंट ओपनिंग, लोन हो या एफडी, सब कुछ है जो बनाता है इसे कंप्लीट बैंकिंग ऐप.
5: पीएनबी वन ऐप, बैंकिंग का कैप्टन.

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: जब बात हो सोयाबीन के खेतों को खरपतवार से बचाने की, तो हर असली हीरो की पहली पसंद है क्रिस्टल क्रॉप का अमोरा। अमोरा तेज तरार वार, हारे अब खरपतवार, देश के हीरो की पहली पसंद।
3: ये मजबूर हैं पर आप नहीं, बीटेक्स मलहम, दांत खाज खुजली से छुटकारा।
4: अब वही बीटेक्स मलहम ट्यूब में भी उपलब्ध।
5: मैं करता हूँ ना,
6: मैं करूँगा।
7: ओए कार्ड्स की दुकान, इतने कार्ड्स कौन रखता है?
5: ये ग्लोबल लग्जरी होटल्स के लिए, ये स्टे स्पा फाइन डाइनिंग के लिए, वर्ल्ड क्लास गोल्फ प्रिविलेजेस के लिए।
7: पंजाब नेशनल बैंक का लग्जरा मेटल क्रेडिट कार्ड लो एंड गेट अनलिमिटेड डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल लाउंज एक्सेस, अनलिमिटेड स्टेज, डाइनिंग एंड मच मोर।
5: क्रिकेट में आप और बैंकिंग में PNB दोनों ही चैंपियन है।
7: PNB लग्जरा मेटल क्रेडिट कार्ड, PNB मेरा अपना बैंक।
2: जब धान के खेतों में जिद्दी खरपतवार दे चुनौती, तो हर असली हीरो उठाता है एक ही हथियार, क्रिस्टल क्रॉप का सिकोसा। खरपतवार मारे उगने से पहले, भारत का सबसे ताकतवर धान का खरपतवार नाशक।
8: जिंदल साथी सील है तो असली स्टेनलेस स्टील है।
9: तो जब भी आप स्टेनलेस स्टील पाइप्स एंड ट्यूब्स खरीदें, जिंदल साथी सील जरूर चेक करें।
8: जिंदल स्टेनलेस, इंडियाज लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ स्टेनलेस स्टील।
10: कूल फैंस के स्टाइलिश डिजाइन से घर की शान बढ़ाएं।
11: कूल फैंस जो दे आधी बिजली में ज्यादा हवा कम आवाज की है।
10: कूल फैंस स्मार्ट भी स्टाइलिश भी।
12: इन एसोसिएशन विद हिंट, बड़े आराम से
13: शारदा यूनिवर्सिटी, द वर्ल्ड कम्स टुगेदर एट शारदा यूनिवर्सिटी। वेयर आर यू?
14: विमल बोलो जुबां केसरी।
15: कूल स्टाइलिश फैंस, एनहांस होम डेकोर विद ब्यूटीफुल फैंस।
16: पंजाब नेशनल बैंक, भरोसे का प्रतीक।

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार।
1: विमल बोलो जुबान केसरी।
2: जिंदल साथी सील है तो असली स्टेनलेस स्टील है,
3: तो जब भी आप स्टेनलेस स्टील पाइप्स एंड ट्यूब्स खरीदें जिंदल साथी सील जरूर चेक करें।
2: जिंदल स्टेनलेस, इंडिया'ज लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ स्टेनलेस स्टील।

0: कानपुर में जब से लखनऊ हादसा हुआ है उसके बाद से लगातार जो ड्राइव है वो जारी है। 22 कोचिंग सेंटर्स को सील कर दिया गया है, ये कल की खबर है। फिलहाल इस वक्त मैं मौजूद हूँ कानपुर के कोचिंग सेंटर काकादेव इलाके में, जहाँ पर हजारों कोचिंग सेंटर्स है और इस वक्त भी यहाँ पे आप देखेंगे तो केडीए की जो कार्रवाई है कानपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी की वो जारी है। पीछे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर पूरा जो सरकारी अमला है वो मौजूद है और जो अवैध कोचिंग सेंटर्स चल रहे थे उसको सील करने का काम किया गया है। मैं अपने कैमरा पर्सन से रिक्वेस्ट करूंगा कि आपको दिखाने पाए, मौके पे अधिकारी मौजूद है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो कानपुर विकास प्राधिकरण द्वारा ये परिसर जो है ये कोचिंग सेंटर उसको सील कर दिया गया है और ये ठीक उसी तरीके की बिल्डिंग है जैसे कल लखनऊ में हमने देखा आग लगी। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो बेसमेंट चल रहा था, अवैध रूप से पूरा इसका कंस्ट्रक्शन हुआ था। पैसेज जितना देना चाहिए था उतना पैसेज नहीं दिया गया था, सेफ्टी नॉर्म्स पूरे नहीं किए गए थे। यहाँ सामने अगर आप देखेंगे तो इसी तरीके की बिल्डिंग थी लखनऊ में, जहां पर सेफ्टी एग्जिट नहीं था और बच्चों को जो बिल्डिंग है वहां से कूदना पड़ा था। इसी तरीके से आप देखेंगे आगे यहाँ पर एक बिलियर्ड्स क्लब है, ये स्पोर्ट्स क्लब है, इसको भी फिलहाल जस्ट अभी प्रशासन ने जो है वो सील किया है। और अभी आप देखेंगे मेरे पीछे, मैं कोशिश करूंगा किसी अधिकारी से बात करने की जो यहाँ पर फिलहाल मौके पे मौजूद है, कि क्या कार्रवाई आप लोग द्वारा की गई है, कितनी कोचिंग सेंटर सील करे गए।
1: देखिये कल लखनऊ में एक दुखद जो है घटना हुई है जिसमें 15 लोगों की जान चली गई है। यहाँ पर जैसे कि कानपुर में जो काकादेव क्षेत्र है वो कोचिंग के लिए जाना जाता है और यहाँ पर जो है कल भी रात में जो है ड्राइव चलाई गई थी और लगभग 22 जो है इस तरीके के अवैध रूप से जिनका बेसमेंट में गतिविधियां संचालित कर रहे थे उनको सील किया गया है। और आज भी जो है प्राधिकरण की टीमें लगातार जो है ऐसे जगहों को चिन्हित कर रही हैं। और
0: हम अभी एक सवाल ये है कि किस तरीके से ये कार्रवाई तब हम देख रहे हैं जब लखनऊ हादसा हुआ, इसके पहले भी ये अवैध रूप से चल रहे थे, इल्लीगल थे, तभी सील करे गए हैं, तो पहले कार्रवाई क्यों नहीं हुई, इस पर एक बड़े सवाल खड़े।
1: जी बिल्कुल, पहले भी आपको संज्ञान में होगा जो है कि पहले भी इसमें 6 महीना पहले भी एक स्पेशल ड्राइव चलाई गई थी और कई जगहों पर इसमें कार्रवाई की गई थी। कुछ जगहों पर अगर छूट गया था और इस तरीके की गतिविधि चल रही है तो प्राधिकरण के अधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि वो एक एक बिल्डिंग एक एक रोड को देख लें। और चूंकि यहाँ पर तमाम बच्चे जो है कोचिंग इंस्टीट्यूट में पढ़ाई करते हैं तो इस चीज़ को हम लोग इंश्योर कराएंगे कि कहीं भी बिना मानक के अवैध तरीके से संचालित।
2: एक एनकाउंटर जिस पर अपनों के बीच ही घिर गई है सम्राट सरकार, एक एनकाउंटर जिस पर बीजेपी के भीतर ही मोर्चाबंदी हो रही है। 5 दिन पहले यानी 17 जून को भरत तिवारी पर बिहार पुलिस गोलियां बरसाती है और अब 5 दिन बाद खुद बिहार पुलिस और बिहार सरकार पर सवालों की बौछार हो रही है। एक बड़ा और संगीन सवाल भरत तिवारी के इस वीडियो की बुनियाद पर भी हो रहा है जो अभी अभी सामने आया है। तो क्या भरत तिवारी को अंदेशा था कि उसकी मौत करीब आ रही है? क्या उसे एहसास हो गया था कि वो इस तरह एनकाउंटर में मारा जाएगा? भरत तिवारी की शख्सियत और अतीत विवादों से भरा है, इसलिए इस वीडियो को लेकर भी दावा जोखिम भरा हो सकता है। बीजेपी के भीतर इस एनकाउंटर को लेकर किस कदर बेचैनी है ये आप सम्राट सरकार के 2 मंत्रियों के बयानों से समझ सकते हैं। इस एनकाउंटर पर सवाल उठाने वाले, आक्रोश जाहिर करने वाले सिर्फ ये 2 मंत्री ही नहीं है, बीजेपी नेताओं की लंबी फहरिस्त है जो खुलकर नाराजगी जता रहे हैं। रोहित सिंह, पटना, आज तक।

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच चोगन परफ्यूम्स द फ्रेंच एडिशन फॉर हिम एंड हर।
1: आज के लिए ब्लैक एंड व्हाइट में इतना ही। अब आपसे हमारी अगली मुलाकात होगी कल रात 9 बजे। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए और नीचा दिखाने की कोशिश वही करते हैं जो आपसे बहुत नीचे खड़े होते हैं। नमस्कार।
0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच Chogan Perfumes, the French edition for him and her. Presented by Patanjali Dant Kanti Toothpaste, complete oral health ka sach. Chogan Perfumes, the French edition for him and her.

0: लखनऊ अग्निकांड में एसआईटी जांच के बीच भड़की राजनीतिक चिंगारी। अखिलेश ने मांगा योगी राज में पास नक्शों का हिसाब। ब्रजेश पाठक का पलटवार, मौत पर राजनीति न करें अखिलेश, 4 को जेल। राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में एसआईटी ने यूपी सरकार को सौंपी प्रारंभिक रिपोर्ट। फिलहाल किसी को क्लीन चिट नहीं, कुछ कर्मचारियों पर केस की सिफारिश। एसपी सांसद अवधेश प्रसाद ने सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के तहत जांच की मांग की। भोजपुर के भरत तिवारी एनकाउंटर में एक्शन। जगदीशपुर के एसडीपीओ, शाहपुर थाना अध्यक्ष समेत पुलिसकर्मियों पर एफआईआर। हंगामे के बाद बैकफुट पर बिहार पुलिस। नीट पर आज तक से बोले धर्मेंद्र प्रधान, लीक के अपराधियों को छोड़ेंगे नहीं। दोबारा गड़बड़ी रोकने की पूरी कोशिश। राहुल पर लगाया छात्रों को भड़काने का आरोप। और पद्म पुरस्कार से 65 हस्तियां सम्मानित। शिबू सोरेन को मरणोपरांत पद्म भूषण। रोहित शर्मा, अलका याग्निक, ममूटी को राष्ट्रपति ने दिया सम्मान।
1: Presented by पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच। Chogan Perfumes, the French edition for him and her.

नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी, स्वागत है आपका। रात के 10 बज रहे हैं आज तक पर, आप देख रहे हैं 10 तक। लखनऊ अग्निकांड सिर्फ एक शहर को नहीं बल्कि पूरे देश को हिलाकर रख चुका है। जी हां, 15 लोग जलकर मर गए हैं और वो भी

0: तो अग्निकांड क्यों होता? पंद्रह मौतों का सवाल है, जिम्मेदारों को जवाब तो देना पड़ेगा। कैसे एक रिहायशी बिल्डिंग कमर्शियल में बदल गई? किस किस का भ्रष्टाचार 15 बेगुनाहों की मौत का कारण बना?
1: माँ के सामने बेटा अंदर,
2: मौके कोई था ही नहीं, बंद था सब। इसके लिए सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए।
3: परिवार पे जो भी तेरी बहिया परिवार समझ सकता है।
0: अब लखनऊ का पूरा प्रशासनिक अमला, सारे दिग्गज अधिकारी इस जलकर खाक हो चुकी इमारत के चप्पे चप्पे को नाप रहे हैं। आग कैसे लगी, कहां से लगी, कैसे फैली और कैसे 15 लोग इस अग्निकांड में जिंदा जल गए? जांच के लिए लखनऊ के अलीगंज की इस 3 मंजिला इमारत में लगी भीषण आग की वजह जानने के लिए और जांच करने के लिए SIT का गठन किया गया है। इसमें अपर मुख्य सचिव पर्यटन अमृत अभिजात और ADG लखनऊ जोन प्रवीण कुमार को शामिल किया गया है। लखनऊ के ये दिग्गज अफसर 7 दिन के भीतर अपनी रिपोर्ट तैयार करके CM योगी को भेजेंगे। लेकिन जिस तरह से इस खाक हुई बिल्डिंग में अधिकारी अब खाक छान रहे हैं, अगर आग लगने से पहले इस कॉम्प्लेक्स की पड़ताल की गई होती और सिस्टम भ्रष्टाचार की भेंट ना चढ़ा होता तो 15 बेगुनाह लोग इस अग्निकुंड में ना समाये होते, इस तरह से पीड़ित परिवारों के आंसू ना बह रहे होते।
4: SIT की टीम में प्रवीण कुमार जो ADG है जोन वो और साथ साथ अमृत अभिजात मौजूद है, जिन्होंने इंस्पेक्शन किया है, जांच की है इस पूरे मामले की कि आखिर किस तरीके से यहां पर ये घटना घटी है। इस SIT रिपोर्ट बनाकर चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ को दी जाएगी और अब यहां पर माइक्रो लेवल पर हर उस चीज की जांच की जा रही है और परखा जा रहा है कि आखिर इस पूरे मामले पर क्या है। सर, क्या क्या आपने जांच किया है अंदर, किस तरीके से?
5: देखिए, सब सारे फ्लोर्स पे गए हैं और जो घटना स्थल है वो भी देखा है। तो अभी कुछ निर्णायक बताने की स्थिति में नहीं, क्योंकि अभी सारी जांचें हो रही हैं FSL वगैरह का।
0: लखनऊ अग्निकांड की परतें जब एक एक करके खुल रही हैं तो साफ साफ नजर आ रहा है कि ये कोई हादसा नहीं बल्कि सामूहिक हत्याकांड है, जिसको उन भ्रष्ट अधिकारियों, अफसरों, जिम्मेदारों ने खुलेआम दिन दहाड़े बेखौफ होकर अंजाम दिया है।
6: एक बॉक्स नुमा ये बिल्डिंग है, इस बॉक्स नुमा बिल्डिंग के अंदर ही लोग सिर्फ इसी से, जो बच्चे थे, जो लोग थे, वो इसी छोटे से रास्ते से, और कोई रास्ता था ही नहीं, ये इस रास्ते से अंदर जाना, बाहर जाना। और जब आग लग गई तो उसकी वजह से धुएं ने और आग ने अफरा तफरी मच गई और लोग फंस गए। मतलब 3 फ्लोर की ये बिल्डिंग, उसके बाद ये बेसमेंट टोटली अगर कहा जाए तो सिर्फ और सिर्फ सुरक्षा मानकों को दरकिनार करके ये बनाया गया।
0: लखनऊ के उस अलीगंज में ये कॉम्प्लेक्स है जहां से हर छोटे बड़े अफसर से लेकर नेताओं की गाड़ियां गुजरती होंगी। इस 3 मंजिला कॉम्प्लेक्स को रिहायशी इमारत से कब कमर्शियल में तब्दील कर दिया गया और कब इसमें एनिमेशन सेंटर चलना शुरू हो गया, इसकी न कभी जांच की गई, न कभी पड़ताल, लेकिन भ्रष्टाचारियों की मुट्ठियां गर्म करके इसे मौत का कॉम्प्लेक्स बना दिया गया। सवाल इस अग्निकांड या कहें हत्याकांड के जिम्मेदारों से है, फायर डिपार्टमेंट ने कैसे अनदेखी की, कैसे लखनऊ डेवलपमेंट अथॉरिटी यानी LDA ने इसमें घोर लापरवाही बरती। 2016 में बनाए गए NBC यानी नेशनल बिल्डिंग कोड 2016 के नियमों की अनदेखी की गई।
7: जो मकान मालिक हैं, क्योंकि बिल्डिंग आवासीय में पहले पास थी, बाद में उन्होंने कमर्शियल रूप में उसका इस्तेमाल करना जब शुरू कर दिया है, तो उनको फायर नाम से पूरा करना चाहिए था, आग बुझाने की पूरी व्यवस्था करनी चाहिए थी, लेकिन आग बुझाने की पूरी व्यवस्था में समुचित ढंग से किया नहीं था, इसलिए मकान मालिक की जिम्मेदारी ज्यादा बनती है वहां पर। दूसरी बात यह कि जो अगर वो कमर्शियल रूप में इस्तेमाल कर ही रहे हैं तो वहां पर जो बिजली विभाग था, उन्होंने उनका लोड सैंक्शन किया होगा कि कितनी AC चल रही है, कितना बिजली का खर्चा इनका आ रहा है, उस हिसाब से उनको वहां पर देखना चाहिए था, लेकिन उन्होंने, मुझे लगता है, देखा नहीं ध्यान से। और जो LDA है, LDA की एरिया में आता है, तो LDA ने क्या चीज देखा है, ये उनकी जिम्मेदारी बनती है।
0: जब ये बिल्डिंग रिहायशी से कमर्शियल कॉम्प्लेक्स में तब्दील हुई तो फायर ऑडिट क्यों नहीं किया गया? क्यों रिहायशी बिल्डिंग के कमर्शियल में बदलने पर LDA के अफसरों ने सर्वे नहीं किया? या फिर इन अफसरों के पहुंचने से पहले ही उनकी जेब

0: उनकी कुर्सी पर ही गर्म कर दी गई। बड़ी बात यह भी है कि जिस इमारत में हादसा हुआ वहां 20 किलोवाट का कमर्शियल बिजली कनेक्शन स्वीकृत था। जांच में सामने आया है कि वास्तविक बिजली लोड बढ़कर 34 केवीए से ज्यादा हो गया था। अप्रैल महीने में इमारत का लोड 24.30 केवीए दर्ज किया गया था, जो जून में और बढ़ गया। जानकारों के मुताबिक स्वीकृत क्षमता से कहीं अधिक लोड होने से तारों और ट्रांसफार्मर पर भारी दबाव था। भीषण गर्मी और ओवरलोडिंग के कारण शॉर्ट सर्किट की आशंका कई गुना बढ़ गई। बिजली विभाग ने मौके पर जाकर लोड चेक क्यों नहीं किया? कितना लोड कागजों में है और कितना बिजली का लोड खपत में आ रहा है? अगर इसकी चेकिंग की गई होती तो इतना बड़ा अग्निकांड नहीं हुआ होता।
1: जो कार्रवाई है उसकी बात कर लेते हैं, तो सरकार सबसे पहले तो पुरनिया के जो थाना प्रभारी हैं उन्होंने FIR की। 6 लोगों पर मुकदमा तहरीर दी गई है, मुकदमा दर्ज हुआ, 4 गिरफ्तार कर लिए गए हैं, जिसमें इस मकान के ओनर, इस मकान के दो जो ओनर हैं जिन्होंने कमर्शियल कम्प्लेक्स बनाया है और जिनकी कंपनियां यहां कार्यरत थीं।
0: 3 मंजिला इस कॉम्प्लेक्स में बेसमेंट भी बनाया गया था। एंट्री एग्जिट के लिए सिर्फ एक छोटा सा रास्ता था और इस रास्ते के ऊपर 7 पैनल, 2 एग्जॉस्ट फैन, इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल पैनल लगाकर रास्ते को और छोटा कर दिया गया था। इमारत के मालिकों और सेंटर संचालकों ने इसे अनदेखा किया।
2: दो बातें बहुत अहम हैं। एक तरफ जो तमाम जो जांचें चल रही हैं वो अपनी जगह है, लेकिन शायद दो बातें अगर इसमें हो गई होती तो इतने बच्चों की जान नहीं जाती। एक, जो बायोमेट्रिक जिसके जरिए एक्सेस था उस एनिमेशन का, जो इंस्टीट्यूट है उसके भीतर जाने और आने का, अगर वो बायोमेट्रिक लॉक नहीं हुआ होता यानी कि, तो शायद बच्चे निकल सकते थे। दूसरी बात, ऊपर अगर आपको दिखाएं तो आप देखिए ऊपर में एक पेंट हाउस जैसा है, यानी कि वो मकान मालिक जो है उसका अपना घर है। और कहा यह जा रहा है कि अगर ऊपर का घर का अगर सीढ़ी का रास्ता खुला होता तो भी ऊपर बच्चे भाग कर जान बचा सकते थे।
0: अब सवाल यही है कि जिस लखनऊ से बुलडोजर और एनकाउंटर के सीधे ऑर्डर निकलते हैं, वहां से भ्रष्टाचार के खिलाफ ऑर्डर क्यों नहीं निकलते? आखिर भ्रष्टाचार की आग कैसे बुझेगी? आज तक ब्यूरो।
3: लखनऊ अग्निकांड सरकारी विभागों की अंधेर गर्दी का साक्षात प्रमाण है, क्योंकि हादसे ने सरकारी दावों और जमीनी सच्चाई के बीच की खाई को उजागर कर दिया। हर हादसे की तरह इस बार भी जांच, माननीयों और अधिकारियों के निरीक्षण के साथ मुआवजे की सरकारी रस्म की अदायगी कर दी गई। सरकार सिर्फ संवेदना व्यक्त करके अपनी जिम्मेदारी से बच नहीं सकती, सवाल सरकार की जवाबदेही का है, पीड़ितों के परिजनों के इंसाफ का है। सवाल यह भी है कि जिस विभाग की कमान सीधे मुख्यमंत्री के हाथों में हो, आखिर उस विभाग ने आम जनता को भगवान के भरोसे कैसे छोड़ दिया? क्या सीएम को अधिकारियों अफसरों ने अंधेरे में रखा, या फिर उत्तर प्रदेश में जनता की जान की कोई भी कीमत नहीं है?
4: कुछ देखेंगे ना कुछ सुनेंगे, क्योंकि जिंदगी लेना और देना तो ऊपर वालों के हाथों में है। ऐसे में जिम्मेदारों की जवाबदेही का कोई सवाल नहीं उठता। हादसे में मौत हुई तो साहब ने मौके का मुआयना कर लिया, जांच के आदेश दे दिए गए, मुआवजे का ऐलान कर दिया, संवेदना जताते हुए दो शब्द भी कह दिए। अब मृतकों की जान लौटाई तो जा नहीं सकती, तो इससे ज्यादा उनके परिजनों को क्या चाहिए? सरकार तो अपनी जिम्मेदारी पूरी तत्परता से निभा रही, फिर हादसा होगा, फिर यही सरकारी रस्म अदा कर दी जाएगी। मतलब ना तो सिस्टम बदलेगा, ना जिम्मेदार अपनी सोच बदलेंगे। यही होता आया है, यही होता रहेगा, क्योंकि योगी सरकार के उत्तम प्रदेश में जनता की जिंदगी सरकारी सिस्टम के आगे सस्ती है। इतनी सस्ती कि अब पूरे सिस्टम से लोगों का भरोसा उठ चुका है। अतीत में हुए हादसों से लेकर लखनऊ अग्निकांड तक जिम्मेदारों के रवैये से पीड़ित इतना टूट चुके हैं कि ना उम्मीदी के अंधेरे में इंसाफ के उजाले की उम्मीद अब बेमानी है।
5: और ये ट्राई फिर हो जाएगी 4 दिन के बाद। वो अधिकारी वो कैसे नहीं, कैसे नक्शा पास कर दिए, कैसे क्या कर दिए, हाँ। और उसमें होता है कि अभी सब पनिश किए जाएंगे, सब कुछ किया जाएगा, अब उसके बाद
6: आपका कहना है कि चार दिन में सब भूल जाएंगे?
5: सात दस दिन के बाद सब भूल जाते हैं।
7: एसआईटी बनाए चाहे कुछ भी बनाए, लेकिन मेरे देवर को तो वापस नहीं दे सकते ना। कितनों के घर उजड़ गए, कितने देवर, कितने भाई बहन, किसके किसके बच्चे होंगे सर, वो बेचारे नहीं रहे अब इस दुनिया में, क्या करेंगे? उनके माँ किसी का वो एक सहारा, किसी के इकलौते बच्चे होंगे।
4: मुख्यमंत्री की तरफ से दोषियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई का ऐलान भी पीड़ितों के दिलों में सोते हुए सिस्टम के जागने का भरोसा नहीं जगा सकता।
8: इस पूरे मामले की तह में हम जाकर के दोषियों को सजा भी दे सकें और उन पीड़ित परिवारों के प्रति अपनी संवेदना भी व्यक्त कर सकें।
9: जांच कुछ नहीं होगी, सिर्फ कागजी कार्रवाई होगी और कुछ नहीं होगा वहाँ पे। ना आज तक हुआ ना आगे ऐसा होगा,
10: ऐसा चलता रहेगा। मेरे को कोई उम्मीद नहीं है, कच्चा जो गवर्नमेंट आ जाए, लोग ही ऐसे हैं, पैसे दे के सब पास हो जाता है, अब वो ऐसे होता रहेगा, तो इसमें मुझे उम्मीद नहीं है।
11: हादसा हो जाने के बाद किस चीज कोई बात करे, क्या वापस कर सकता है? वो वापस तो नहीं कर सकता, केवल समस्या को समाधान करने के लिए, सुलझाने के लिए केवल आश्वासन देंगे। फिर
4: पहले की तरह लखनऊ अग्निकांड के बाद पीछे है परिजनों की पीड़ा, रोते बिलखते लोग, जांच और मुआवजे की खाना पूर्ति, लेकिन पीड़ितों के आंसुओं का हिसाब न कभी मिला, न मिलने की उम्मीद और न कोई दे पाया है। सोचिए, रिहायशी इलाके में नियमों को ताक पर रखकर खड़ी की गई ये कमर्शियल बिल्डिंग न सिर्फ अवैध थी बल्कि सुरक्षा के लिहाज से एक डेथ ट्रैप बन चुकी थी, लेकिन न देखने वाला कोई, न सुनने वाला कोई। आम जनता हादसे का शिकार बनती है तो बनती रहे। लखनऊ में हुए अग्निकांड में 15 जिंदगियां मौत के गाल में सवार। अगर जिम्मेदारों ने आंखों पर रिश्वत की पट्टी नहीं बांधी होती तो ये बच जाते। यही है आम जनता की सुरक्षा की गारंटी, मतलब सिस्टम के भरोसे नहीं बल्कि भगवान के भरोसे जियो। जबकि माननीय और साहब तो पूरे ठसक के साथ सुरक्षा के वीवीआईपी प्रोटोकॉल में चलते। मजाल है कि बिना इजाजत परिंदा भी पर मार दे, क्योंकि माननीय और सरकारी लाट साहबों की जिंदगी का मोल है और आम जनता की जिंदगी का कोई नहीं।
7: अभी अपने को कुछ होता तो प्रशासन तुरंत दौड़ जाएगा। ये वीआईपी यहाँ पर जब मंत्री निकलते हैं तो तुरंत रास्ता बंद कर दिया जाता है। आम आदमी खड़ा रहता है, बच्चे धूप में स्कूल चलाते भी लगते, तब गवर्नमेंट को तरस नहीं आता जनता पे।
4: अगर आम जनता की जिंदगी की परवाह होती तो लखनऊ के अलीगंज में सरकारी तंत्र की नाक के नीचे मौत की इमारत कभी खड़ी नहीं होती। इमारत की नींव से लेकर छत पर लगी आखिरी ईंट तक में सरकारी भ्रष्टाचार का सीमेंट भरा पड़ा है। इतना मजबूत सीमेंट कि कोई हिसाब नहीं। ये सब कैसे हुआ ये भी समझिए। सरकार की हर साख पर 15 बेगुनाहों के खून के छींटे हैं, एक नहीं बल्कि चार चार विभागों की अंधेर गर्दी आम जनता की जिंदगी पर भारी पड़ी। मौत की बिल्डिंग अवैध थी लेकिन सिस्टम की आंखें बंद थी। आज कटघरे में खड़ा है लखनऊ विकास प्राधिकरण, लखनऊ नगर निगम और उसके कर्ता धर्ता। सवाल यही कि दोनों विभागों ने अपनी जिम्मेदारी क्यों नहीं निभाई, भ्रष्टाचार की इमारत क्यों खड़ी थी? ये तब है जब लखनऊ विकास प्राधिकरण जिस विभाग को रिपोर्ट करता है उसके मुखिया सीधे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ है। मुख्यमंत्री की नाक के नीचे काम करने वाले हाउसिंग एंड अर्बन प्लानिंग विभाग की अंधेर गर्दी ने जिंदगी के 15 चिराग बुझा दिए, जिसके लिए सीधे जिम्मेदार हाउसिंग एंड अर्बन प्लानिंग विभाग के मुख्य सचिव पी गुरुप्रसाद, एलडीए के चेयरमैन रोशन जैकब, एलडीए के वीसी प्रथमेश कुमार, लखनऊ नगर निगम के नगर आयुक्त गौरव कुमार, जो नगर विकास मंत्री अरविंद कुमार शर्मा को रिपोर्ट करते हैं। इनका जिम्मा अवैध निर्माण को रोकना और अवैध निर्माण को ढहाना। आंखें बंद थी तो कोई वक्त रहते एक्शन कभी नहीं लिया गया। सरकारी व्यवस्था में अव्यवस्था का दीमा सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं था। सरकारी मुलाजिमों को पता था अलीगंज में खड़ी मौत की इमारत कभी भी आम जनता का जीवन छीन सकती है, लेकिन सब कुछ जानते हुए भी बिजली विभाग ने आंखें मूंदे रखी। अवैध बिल्डिंग मांग से ज्यादा बिजली खपत के बावजूद बिजली विभाग के कान जूं कभी नहीं रेंगी। सब कुछ चलता है, चलता रहेगा के हिसाब से चलता रहा। बिजली विभाग ने अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाई, जिसके मंत्री हैं अरविंद कुमार शर्मा और जिम्मेदार हैं यूपीपीसीएल के चेयरमैन और लखनऊ की बिजली आपूर्ति का जिम्मा संभाल रहे अफसर आशीष कुमार गोयल। वक्त रहते बिजली विभाग ने कार्रवाई की होती 15 जिंदगी बच जाती।
12: ऐसी घटनाएं न हो इसके लिए पूरी तरह सजगता के साथ हम और पूरी सरकार प्रयास करेंगे और ये देखेंगे कि ऐसी घटनाओं का जो भी कारण है वो भविष्य में ऐसी घटनाओं के कारण न बने।
4: ऐसा पहली बार नहीं हुआ कि योगी के राज में सरकारी सिस्टम की लापरवाही जानलेवा साबित हुई। इससे पहले भी सिस्टम की लापरवाही के चलते कई बार लोग बेमौत मारे गए, लेकिन जिम्मेदारों पर कार्रवाई आज तक नहीं हुई। यही है योगी सरकार का ट्रैक रिकॉर्ड और रिपोर्ट कार्ड। महाकुंभ भगदड़, 37 श्रद्धालुओं की मौत, कोई बड़ा अफसर नहीं नपा। हाथरस सत्संग भगदड़, 121 लोगों की मौत, कोई बड़ा अफसर नहीं नपा। झांसी मेडिकल कॉलेज आग, 18 नवजात बच्चों की मौत, किसी बड़े अफसर पर गाज नहीं गिरी। आगरा नोएडा एक्सप्रेसवे हादसा, 19 यात्रियों की मौत, कोई अफसर नहीं नपा। जब सिस्टम की सोच पर सिर्फ आश्वासन का पर्दा पड़ा हो तो जिम्मेदार हर बार अपनी जवाबदेही से बच जाते हैं और आम जनता की जान चली जाती है।
3: जिम्मेदारियां एक दूसरे पर टाली जा रही हैं और इसी से संबंधित एक बड़ी खबर इस अग्निकांड पर आ रही है। यूपी सरकार के एक्शन पर सवाल खड़े किए गए हैं। एक सस्पेंड किए गए अधिकारी ने ये सवाल खड़े किए हैं। फायर सब स्टेशन ऑफिसर का मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को पत्र लिखा गया है और इसमें कहा गया है, इन्होंने कहा है, निलंबित FSSO ने ये कहा है कि छोटे कर्मचारियों पर कार्रवाई आपने की है जो कि गलत है, ये अन्यायपूर्ण है। इसकी जिम्मेदारी तो चीफ फायर ऑफिसर की है। कमलेंद्र प्रताप सिंह हैं जो कि फायर सब स्टेशन ऑफिसर हैं, इन्होंने ये लिखा है। कमलेंद्र प्रताप सिंह ने ये चिट्ठी योगी आदित्यनाथ को लिखी है क्योंकि कमलेंद्र प्रताप सिंह को इस मामले में सस्पेंड किया गया है।
13: यह कार्रवाई अन्यायपूर्ण है क्योंकि FSSO का कार्य क्षेत्र सीमित है। मेरा काम केवल स्थानीय निरीक्षण और रिपोर्टिंग तक सीमित है। मेरे पास फोनों की फायर क्लियरेंस देने या बड़े पैमाने पर सुरक्षा मानकों को लागू करने का अधिकार नहीं है। मुख्य जिम्मेदारी CFO लखनऊ की है। CFO ही पूरे शहर की फायर सेफ्टी व्यवस्था और भवनों को फायर क्लियरेंस देने के लिए जिम्मेदार होते हैं। इस इमारत को आवासीय उपयोग के लिए पास किया गया था, उसे वर्षों से अवैध रूप से व्यावसायिक उपयोग में लिया जा रहा था। यह तथ्य CFO के संज्ञान में होना चाहिए था। आग लगने के बाद दमकल प्रक्रिया में देरी और समन्वय की कमी CFO की सीधी लापरवाही को दर्शाती है। ये निवेदन है कि छोटे अधिकारियों जैसे मेरे विरुद्ध की गई कार्रवाई पर पुनर्विचार किया जाए। घटना की संपूर्ण जिम्मेदारी लखनऊ CFO पर की जाए। CFO के विरुद्ध कठोर विभागीय एवं कानूनी कार्रवाई की जाए।
3: दशक में एक बहुत छोटे से ब्रेक के लिए हम यहाँ पर रुक रहे हैं, लौट कर आएंगे तो दशक के अगले हिस्से में आपको बताएंगे अग्निकांड के 15 जख्म, लखनऊ में मारे गए 15 लोगों की दर्दनाक कहानियां एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप देखते रहिए दस्तक।
14: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाएं स्वाद और सेहत का तड़का हर माँ का भरोसा प्यार से परो इन एसोसिएशन विद
15: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
14: चोगन परफ्यूम्स द फ्रेंच एडिशन फॉर हिम एंड हर।

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: ऊंचाई पर बने रहने के लिए जरूरी है इरादों का प्योर होना। गैलेंट एडवांस बनाते हैं ऐसा स्टील जो अंदर से है ज्यादा प्योर ज्यादा मजबूत। गैलेंट एडवांस TMT रीबार निर्माण का रियल हीरो।
3: Where the software engineer meets the gifted content writer, meets the cool UI UX designer, meets the talented photographer to create the big dream. The world comes together at Sharda University. So where are you?
4: Goldie Hing ka tadka lage to sabhi tabah ke khate hain. Goldie Hing, kan kan mein jaan.
5: Honey, is ghar mein kuch hai jo tootta nahi?
6: ये पिलर कभी नहीं टूटेगा। रुंगटा स्टील TMT से बना।
7: रुंगटा नहीं तो घर स्ट्रॉन्ग नहीं। रुंगटा स्टील TMT बाय एकदम सॉलिड।
8: 11 मई आज तक पर पेपर लीक कनेक्शन का पर्दाफाश।
9: नीट की परीक्षा से पहले एक गेस पेपर धड़ल्ले से मोबाइल पर बंटता है। 135 सवाल उसी गेस पेपर से हूबहू मिलते हैं।
10: 15 दिन पहले से पूरे देश में बट रहा था, NTO को पता नहीं।
8: 12 मई आज तक के खुलासे पर मुहर।
11: जिम्मेदारी लेते हैं कि जो हुआ गलत हुआ।
9: आज तक की खबर के बाद आज सरकार की तरफ से एक्शन हुआ, NTA जागी, पेपर रद्द हुआ। हमने आज तक पर लगातार दस्तक दी है, खबरदार किया है, हर दल की सरकार को जगाया है, बताया है कि पेपर लीक रोक लीजिए वरना बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ होता रहेगा।
8: जहां खबर वहां खबरदार।
12: In association with E3 HDMR, ये रिश्ता लंबा चलेगा।
13: जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए श्री संत का।
14: प्लीज बजीपा, प्लीज डू ललन टॉक शो, इट्स अ रिक्वेस्ट एंड प्लीज टू स्पीक ट्रूथ।
13: अप्रैल 2026 में उन्होंने एक रिटेल कंपनी का ऐड किया।
14: ऐसे हरकतें आप करोगे आपकी बाइक के साथ? आई चैलेंज यू बजीपा, अगर आपको इतना प्रॉब्लम है तप्पड़ खांड से और आप इतना कमा रहे हो, हमें भी तो कमाने दो। आओ ना रिंग में, वेट कम।
15: 25 सालों से जहां टिकी है देश की नजर, मेरे साथ फिर से शुरू हो रहा है वही सफर। ये है खबरें सात तक, देखते रहिए आज तक।
16: राम की अमानत में खयानत का मामला सियासी गलियारे से होते हुए अब सुप्रीम कोर्ट तक जा पहुंचा है। अयोध्या राम मंदिर में चंदा चोरी और वित्तीय अनियमितताओं के मामले में सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दाखिल की गई है। सुप्रीम कोर्ट में दायर PIL में जांच के लिए CBI के नेतृत्व में विशेष जांच दल गठित करने की मांग की गई है। याचिका में कहा गया है कि जांच में पारदर्शिता जरूरी है क्योंकि दान करोड़ों भक्तों की आस्था से जुड़ा है। याचिकाकर्ता ने कोर्ट से अपील की है कि चंदा चोरी की FIR आर्थिक गड़बड़ियों की तय समय सीमा में जांच और संभावित गबन या भ्रष्टाचार की जांच को लेकर दिशा निर्देश जारी किए जाएं। राम मंदिर के चढ़ावे में चोरी का मामला दिनों दिन बढ़ता जा रहा है, लेकिन अब तक सवालों के जवाब नहीं मिले हैं।
17: हमको रामने कोई चोरी हो ही नहीं सकती, जब चोरी होगा तो अपने आप वहा जाएगा, चोर भी ईमानदार बन जाएगा।
16: विपक्ष लगातार चंदा चोरी और उसकी जांच को लेकर सवाल खड़े कर रहा है। हालांकि CM योगी आदित्यनाथ ने साफ किया है कि SIT की जांच रिपोर्ट सामने आने के बाद सच सामने आ जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट आज तक।
18: फिर लापरवाही की आग के लपटों में कई जिंदगियां खाक हो गई। कई बच्चों की जान गई, कई परिवार तबाह हुए। हादसे पर कई सवाल उठे, पूरे सूबे में हाहाकार मचा, तो प्रशासनिक अमला हरकत में आया। यूपी के शहर शहर में कोचिंग सेंटर की पड़ताल शुरू हो गई है। सुरक्षा मानकों की जांच के लिए प्रशासन की टीम कई शहरों के कोचिंग सेंटर्स तक पहुंच रही है। ये तस्वीरें यूपी के मिर्जापुर की हैं, जहां प्रशासन की टीम कोचिंग सेंटर की जांच के लिए पहुंची। पूरे कोचिंग सेंटर का टीम ने मुआयना किया, हर कमरे तक गई और फायर सेफ्टी उपकरणों की जांच की। लखनऊ में हुए हादसे के बाद कानपुर में भी प्रशासन कोचिंग सेंटर्स की पड़ताल के लिए पहुंचा। इस अभियान के तहत कानपुर में 22 ऐसे संस्थान मिले जो सुरक्षा नियमों को ताक पर रखकर संस्थान चला रहे थे, उन्हें फौरन ही सील कर दिया गया। प्रशासन का ऐसा ही अभियान यूपी के सहारनपुर में भी दिखा। लखनऊ के अग्निकांड के बाद प्रशासन की टीम कई सेंटर्स तक पहुंची, कई कोचिंग संस्थानों में भारी लापरवाही दिखी। इन सभी संस्थानों को नोटिस दिया गया, अगर जल्द खामियां दूर नहीं की गई तो प्रशासन सख्त एक्शन लेगा। बीते दिनों दिल्ली के होटल में हुए अग्निकांड के बाद यूपी में होटलों की फायर सेफ्टी के जांच के लिए व्यापक अभियान चलाया गया था। सवाल यह है कि क्या उस वक्त ऐसी बिल्डिंग में चल रहे सेंटर्स की जांच नहीं हुई जहां भारी लापरवाही के चलते 15 लोगों की जान चली गई। लखनऊ से समर श्रीवास्तव, संतोष शर्मा के साथ कुमार अभिषेक, आज तक।
19: समाजवादी पार्टी रामनवमी पर तो विरोध करती ही करती थी, श्री कृष्ण जन्माष्टमी के मनाने पर भी रोक लगाती थी, कावड़ यात्रा भी नहीं होने देती थी, गरीब को राशन नहीं मिलता था, गरीब को आयुष्मान की सुविधा का लाभ नहीं मिलता था, गरीब के लिए आवास की सुविधा नहीं थी, गरीब के घर में शौचालय की सुविधा भी नहीं थी, गरीब को एलपीजी के सिलेंडर की सुविधा भी नहीं थी, तब बिजली भी नहीं थी, क्योंकि ये कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के लोग और बहुजन समाज पार्टी के लोग तो अंधेरे में रहकर रहने के आदि थे, क्योंकि अंधेरे में ही इनकी डकैती कुशलतापूर्वक पड़ जाती थी, इसीलिए चाहते ही नहीं थे कि बिजली आए, गरीब को तबाह करते थे। आज मैं कह सकता हूं प्रदेश के अंदर 15 करोड़ गरीबों को फ्री में राशन की सुविधा का लाभ मिल रहा है, 10 करोड़ लोगों को आयुष्मान भारत में 5 लाख रुपए की मुफ्त में स्वास्थ्य की सुविधा प्राप्त हो रही है।
20: The question my party is asking now is whether I am best placed to lead us into the next general election. I have heard the answer of my parliamentary party to that question, and I accept that answer with good grace. Every decision I've taken has been about putting the country I love first. That is why I will resign as leader of the Labour Party. I have spoken to His Majesty the King this morning to inform him of my decision. I will ask the National Executive Committee of the Labour Party to set out a timetable with nominations opening on the 9th of July and completed by the summer recess.

या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट, तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।

क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा। चोगन परफ्यूम्स, द फ्रेंच एडिशन फॉर हिम एंड हर।
1: अब देख रहे हैं दस्तक, आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। लखनऊ अग्निकांड ने 15 नौजवानों की जिंदगी के दिए को बुझा दिया। मरने वालों में अधिकतर ट्रेनी या स्टूडेंट्स थे, जो सफलता के पंख लगाकर अपने सपनों को सच्चाई में बदलता हुआ देखना चाहते थे, लेकिन उनकी मेहनत और मंजिल के बीच सरकारी व्यवस्था मौत बनकर खड़ी हो गई। मंजिल से पहले ही अंधेर गर्दी की आग में 15 परिवारों की खुशियों को ग्रहण लग गया। आज हादसे का शिकार बने नौजवानों के घर वाले सरकार को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं, सवाल पूछ रहे हैं कि आखिर कब जिम्मेदारों की जवाबदेही तय होगी।

0: 24 साल के आदित्य श्रीवास्तव अब इस दुनिया में नहीं हैं। एक माँ ने अपनी आंखों के सामने जिगर के टुकड़े को हमेशा के लिए खो दिया। दिल में कसक यही है कि सरकारी सिस्टम की नींद वक्त रहते टूटी होती तो शायद बेटा आज जिंदा होता।
1: देखा है मैंने, सब देखा। मैं बराबर यही कह रही थी कि एकदम से देखा था मैंने सब, जिस तरह से इस समय भी मैंने देखा कि सीएम साहब आने वाले थे, किया जा रहा था, उस टाइम उस तरह से ये भी ध्यान दिया जाता तो हो सकता है बच्चे बच जाते।
2: मेहनत कर लिया थी,
1: हाँ बच्चे बचाए जा सकते थे। जॉब करता था, एनिमेशन कोर्स का ये स्टूडियो है, वहीं पे जॉब करता था।
0: पहले सरकारी अनदेखी ने आदित्य को मौत के मुंह में पहुंचाया और फिर सरकारी लापरवाही जिंदगी पर भारी पड़ गई। आदित्य सीतापुर से लखनऊ आया था, सोचा था एनिमेशन एंड गेमिंग ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में मिली नौकरी के बाद अपने पैरों पर खड़ा हो जाएगा, लेकिन किसे पता था कि सरकारी सिस्टम आदित्य की जिंदगी के पैर ही उखाड़ देगा।
3: ये सबसे बड़ी दर्दनाक घटना हुई कि माँ के सामने बेटा अंदर।
4: तो माँ आदित्य की उस वक्त जहाँ पर वो पूरा संस्थान बना है वहाँ, मतलब बाहर मौजूद हैं, और सामने उनका जहाँ पर वो ऑफिस बना है वो धधक रहा है।
3: तो वो आग लग चुकी थी जब पहुंची, आग लग चुकी थी, फिर उसके बाद जो है बुझाने का और निकलने का काम हो रहा था, जो कुछ हो रहा था। जो है कि बनने बड़ा हुनरमंद, बड़ा मतलब एक चीज है, बड़ा हौसले वाला। कभी ये वो उसके दिमाग था ही नहीं कि चार आदमी है तो हम निपट नहीं लेंगे, हिम्मत ही बहुत था।
0: घर वालों के मुताबिक आदित्य बचपन से पढ़ने में होशियार था, हमेशा फर्स्ट डिवीजन में पास हुआ था। आदित्य की हसरत मेहनत के दम पर इतना ऊंचा मुकाम हासिल करने की थी जिससे पूरे घर को नाज हो, लेकिन किसे पता था कि आदित्य की मौत के साथ एक सपना भी हमेशा के लिए टूट जाएगा। आज आदित्य की मौत पर घर वालों के आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे और जुबान पर सरकारी व्यवस्था के खिलाफ जबरदस्त आक्रोश है।
3: जैसे ये तो हम जरूर कहना चाहेंगे कि इस तरीके से भी दिल्ली में कांड हुआ और ये टाई टाई फीस हो जाएगी चार दिन के बाद। वो अधिकारी वो कैसे नहीं, कैसे नक्शा पास कर दिए, कैसे क्या कर दिए, हाँ। अब उसमें होता है कि अभी सब पनिश किए जाएंगे, सब कुछ किया जाएगा। अब उसके बाद
4: आपका कहना है कि चार दिन में सब भूल जाएंगे?
3: सात दस दिन के बाद सब भूल जाते हैं। हम आज जो है कि 65 साल का मैं हूँ, तो 65 साल से जो है कि सब देखते तो चले आ रहे हैं। आप
0: आदित्य उस दुनिया में चला गया जहां से कोई लौट कर नहीं आता, लेकिन परिवार यही चाहता है कि दोषियों का हिसाब होना चाहिए ताकि भविष्य में किसी और परिवार पर दुखों का ऐसा पहाड़ ना टूटे। जिस घर में बेटे की जल्द बारात निकलनी थी, आज उसी घर में बेटे की अर्थी उठाने की तैयारी चल रही है। 27 साल के नीलेश कुमार उन बदनसीबों में एक हैं जिनकी दर्दनाक अग्निकांड में मौत हो गई। आज एक तरफ मातम है तो दूसरी तरफ सरकार के खिलाफ गुस्सा।
4: अपने माता पिता का इन्होंने पेंटिंग किया
5: जी, बहुत अच्छी स्केचिंग पेंटिंग करते थे, बहुत अच्छी फाइलें बनाते थे, इतने अच्छे अच्छे सिस्टम पे, बहुत बढ़िया।
4: जिम्मेदारी तय होनी चाहिए जो घटना हुई है उसकी।
5: उसकी जिम्मेदारी गवर्नमेंट है, ये शासन प्रशासन है जो हमारे नीलेश को क्या, उसमें जितने बेचारे बच्चे थे उनको सुख सुविधा देते तो आज फायर ब्रिगेड टाइम से पहुंच जाते। तो आज मेरा देवन, मेरा
4: 25 मिनट देर पहुंची है जो लोगों ने बताया,
5: 45 मिनट 25 मिनट जो भी पहुंची है। अगर आज वहीं पर पास में ही है, ज्यादा दूर नहीं था, अलीगंज थाना कितनी दूर है वहां से, पुरनिया कितनी दूर है, आ सकती थी गवर्नमेंट बचाने, लेकिन नहीं, शासन प्रशासन की गलती है, योगी दोषी है, मोदी दोषी है इसके।
4: कह रहे हैं SIT बना ली है हमने,
5: SIT बनाए चाहे कुछ भी बनाए, लेकिन मेरे देवर को तो वापस नहीं दे सकते।
0: बीते दिन जब नीलेश ऑफिस के लिए घर से निकले थे तो पिता को यही कहा था कि शाम को मुलाकात होगी और पिता ने कहा था बेटा संभल कर जाना, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था।
6: मैं कहता हूँ बच्चा बेटा ठीक से जाना, आराम से जाना, भले दो चार मिनट लेट पहुँचो लेकिन सुरक्षित जाना, ढंग से जाना, बस यही बात होते हैं। जाओ बेटा बाय करके चला जाता है, हेलो करके।
7: आपको लगता था कि ये उसकी जिंदगी का आपके लिए एक आखिरी बाय होगा?
6: नहीं, ये कभी महसूस ही नहीं किया हमने, ये हमको महसूस नहीं हो रहा था उस समय, कोई ऐसी दिक्कत ही नहीं थी उस तरीके की। खुशी से गया, खुशी से आता था, ऑफिस से निकलने के बाद जिम जाता था, जिम से फिर घर वापस आता था, बराबर बात हुआ करती थी।
0: हादसे से चंद घंटे पहले पिता शत्रुघ्न लाल से नीलेश की बात हुई थी और फिर दोपहर को आई सीना चीर देने वाली खबर। हादसे ने परिवार को ऐसे जख्म दिए हैं जिसे वक्त का मरहम भी कभी नहीं भर पाएगा।
7: पेंटिंग्स के शौकीन 27 वर्षीय नीलेश को शायद ही मालूम था कि महज दो दिन पहले लगाई गई ये नई नवेली पेंटिंग देखने के लिए अपने ही कमरे में, जहां वो सोता उठता बैठता काम करता, वही मौजूद नहीं रहेगा।
0: 24 साल का अब्दुल रहमान घर का इकलौता सहारा था। चंद महीने पहले नौकरी मिली थी, सोचा था घर वालों की तंगहाली को खुशहाली में बदल देगा, लेकिन एक झटके में परिवार की सारी खुशियां ताश के पत्तों की तरह बिखर गईं।
8: ये 3 बजे जब आग लगी है तब तो हमने खुद ही सोशल साइट पे डाला था, तब तक हमें नहीं पता था। अभी 8 बजे पता चला कि हमारा भतीजा रहमान भी इस आग का शिकार हो गया।
0: अब्दुल के कंधों पर पूरे परिवार की जिम्मेदारी थी, दिव्यांग पिता और बहन का सहारा था। एनिमेशन का कोर्स करने के बाद अब्दुल को नौकरी मिली, लेकिन वही दफ्तर अब्दुल की मौत की वजह बन गया।
8: घर में पिताजी विकलांग हैं, माँ टीचरिंग करती थी, बच्चा अभी दो ही तीन महीने हुए जॉब पे था, काम भी करता था, वहीं पढ़ाई भी करता था।
9: अब परिवार की कैसे जिम्मेदारी तो क्या चाहते हैं आप लोग इस पूरी घटना?
8: हम लोग चाहते हैं निष्पक्ष जांच हो और ज्यादा से ज्यादा परिवार को मुआवजा दिया जाए, ताकि उसकी मां की भी कोई ऐसी स्थिति नहीं हो। परिवार में कोई दूसरा कमाने वाला नहीं था, इकलौता बच्चा था, यही पालन पोषण करता था, घर की देखभाल करता था।
10: लखनऊ के अलीगंज से दर्द की ऐसी चीत्कार उठी है जो हमारे पूरे देश में गूंज रही है। जिस इमारत में आग लगी अब वो काले पड़े मलबे में बदल चुकी है, लेकिन खौफनाक हादसे की सबसे दर्दनाक तस्वीर इमारत के बाहर नहीं बल्कि लखनऊ के किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी के मॉर्चरी के अंदर और बाहर दिखाई देती है। उन परिवारों का दर्द और उस दर्द से कलेजा फटा जा रहा है जिन्होंने अपनों को खो दिया। जी हां, अलीगंज के एनिमेशन सेंटर से निकाले 15 शव और उनकी कहानियां कलेजे को चीर रही।
0: धड़कते शहर में एक पल को जैसे सब थम गया। अनजान मोड़ पर अचानक काल का पहिया घूम गया। छीन ली खुशियां, बिखेर दिए अरमान सारे। अचानक हुए हादसे ने बुझा दिए चिराग कई प्यारे। हवा में गूंजती है एक अनसुनी चीख। आंखों के आगे टूट गए जिंदगी के सब लेख। घर में गूंजती थी कल तक जिनकी मीठी बोली, आज उनकी यादों ने ही बस आंखें हैं भिगोली। लखनऊ के अलीगंज में इस एनिमेशन सेंटर से उठती आग की लपटें भले ही बुझ गई हों, लेकिन स्याह पड़ी इस इमारत की कालिख ने कई घरों के चिराग बुझा दिए हैं। लखनऊ के अलीगंज से दर्द की ऐसी चीत्कार उठी है जो पूरे देश में गूंज रही है। 15 लोगों की मौत हो गई, किसी का बेटा गया, किसी की बेटी चली गई। ये है ज्योति, जो स्कूटी से अपने दफ्तर जाया करती थी, लेकिन अब ज्योति कभी नहीं लौटेगी। जी हाँ, ज्योति भ्रष्टाचार के अग्निकांड की भेंट चढ़ गई, घर वालों पर वज्र सा गिर पड़ा है। अब ज्योति की सिर्फ यादें हैं और परिवार की दरकती उम्मीदें हैं। जिस सिस्टम ने ज्योति को उसके भाई से छीन लिया, आगे भी कुछ बदलने वाला नहीं है।
11: स्कूटी लेने आए हैं बस, अभी तो बस। हाँ,
7: इसी से वो आई थी क्या कल?
11: हाँ, इसी से आती थी वो, उसी की है।
7: आप थे जब वो कल घर से निकली थी? घर पर मौजूद थे आप?
11: मैं था, लेकिन मैं सो रहा था। वो मम्मी से
7: बहन लगती हैं।
11: हाँ जी।
7: आखिरी दफा क्या बात हुई थी आपकी? रात में बात हुई होगी, शाम को बात हुई होगी?
11: हाँ, रात में हमेशा बात होती है हमारी।
7: क्या कैसी थी? बड़ी बहन थी आपकी, छोटी
11: बहन थी?
7: छोटी बहन थी, तो फिर अलग ही प्यार होगा।
11: नॉर्म्स यहाँ फॉलो नहीं हुए थे, वो ऐसा चलता रहेगा। मेरे को कोई उम्मीद नहीं है, चाहे जो गवर्नमेंट आ जाए, लोग ही ऐसे हैं, पैसे दे के सब पास हो जाता है, अब वो ऐसे होता रहेगा। तो इसमें मुझे उम्मीद नहीं है।
7: दम घुटने से मौत हुई है, यहाँ बताया गया है।
11: मेरा लॉस है और किसी का, सबका फायदा है।
7: स्कूटी है, इसी स्कूटी से, सोचिए वो लड़की इसी स्कूटी से आई थी और इस स्कूटी से आ तो गई, लेकिन अब ये स्कूटी यहीं खड़ी रहेगी या इनके भाई ले जाएंगे। किसी को उम्मीद नहीं थी घर पर कि जैसे स्कूटी से वो यहाँ आएगी, उस स्कूटी को वापस कभी नहीं ला पाएगी।
0: हरियाणा के सोनीपत का भविष्य भी लखनऊ अग्निकांड में हमेशा हमेशा के लिए सो गया। भविष्य की नई नई नौकरी लगी थी, परिवार का इकलौता था। 6 जून को भविष्य एनिमेशन सेंटर में नौकरी ज्वाइन करने के लिए गया था और अब बेटे का शव पहुंचा है। इंस्टीट्यूट में जब आग लगी तो भविष्य ने पिता को फोन किया और कहा कि अब बचूंगा नहीं।
10: और आइए अब हम आपको दिखाते हैं कि कांग्रेस ने मध्य प्रदेश की मोहन यादव सरकार पर बड़ा हमला बोला है। मध्य प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष जीतू पटवारी ने आरोप लगाया कि डॉक्टर मोहन यादव और उनके परिवार ने उज्जैन में जहां जहां जमीनें खरीदी, वहीं वहीं से परियोजनाएं निकली।
0: मध्य प्रदेश कांग्रेस ने बाकायदा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सीएम मोहन यादव पर उज्जैन में जमीन खरीदी को लेकर सनसनीखेज आरोप लगाए। कांग्रेस का आरोप है कि मुख्यमंत्री बनने के बाद मोहन यादव और उनके परिवार की ओर से जमीन खरीद में तेजी आई और जिन क्षेत्रों में बाद में विकास परियोजनाएं घोषित हुई, वहां पहले से जमीन खरीदी गई। जीतू पटवारी ने कहा कि उज्जैन में जमीन खरीद का मामला भी गंभीर सवाल खड़े कर रहा है।
12: मुख्यमंत्री परिवार की सभी कंपनियों के हिस्सेदार फॉरेंसिक ऑडिट कराने के लिए तैयार है। मीडिया रिपोर्ट्स ने दावा किया कि भूमि खरीदी के कुछ समय बाद ही हाउसिंग प्रोजेक्ट बिल्डर एग्रीमेंट शुरू हो गए उन कंपनी उन जमीनों पर। क्या पहले नियोजित व्यवसाय की रणनीति का हिस्सा था कि जमीन खरीदेंगे, मास्टर प्लान में चेंज आएंगे, परियोजना लाएंगे, उस बीच में रियल एस्टेट कंपनी से हम अपना एग्रीमेंट करेंगे और जो 10 रुपए की जमीन है वो 1000 रुपए की करेंगे, ये पहले से प्लान आउट था क्या? क्या ये सही है कि कुछ परियोजनाओं में भूमि मालिकों के विकसित संपत्ति 60% से 70% का हिस्सा है जिनकी भूमि है मुख्यमंत्री की हो उसके परिवार की?
0: जीतू पटवारी के मुताबिक मोहन यादव 2021 में मंत्री बने थे, 13 दिसंबर 2023 में वो मुख्यमंत्री बने। 21 से 23 के बीच में उनके परिवार के निकट सदस्यों के पास लगभग 194 प्लॉट बने। उनके परिवार के पास अलग अलग जगहों पर 253 एकड़ जमीनें हैं। उन्होंने आरोप लगाया है कि 21 से 25 के बीच में 253 एकड़ जमीनें खरीदी गई हैं। सूत्रों के मुताबिक सीएम दफ्तर ने इस पर सफाई दी है, जिसमें लिखा है कि मुख्यमंत्री मोहन यादव ने दिसंबर 2023 में मुख्यमंत्री बनने के बाद कोई जमीन नहीं खरीदी है। मुख्यमंत्री मोहन यादव की पत्नी सीमा यादव ने भी उनके मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री बनने के बाद कोई जमीन नहीं खरीदी है। मोहन यादव का दफ्तर इस पर बाद में एक विस्तृत रिपोर्ट भी जारी करेगा। आज तक ब्यूरो।
10: दर्शक में आज के लिए बस इतना ही। आप प्लीज अपना बहुत ख्याल रखिएगा। शुभ रात्रि।

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल बोलो जुबान केसरी।
1: फिर शासन जगा है, प्रशासन जगा है, चीख गूंजी है, आंख सूजी है, संवेदना के बोल फूटे हैं।
2: मेरा बेटा भी जिंदा होता, मेरा बेटा।
1: कार्रवाई होने के ढोल बजे हैं। दिल चीरने वाला हादसा हुआ है। हाँ, लखनऊ की फिजा में आज आंसुओं पर हलचल दिखी है, लेकिन चिंगारी की तरह सुलगता मुद्दा तो वही है कि काश कानून अपना काम करता होता, सिस्टम जागरूक हुआ होता, भ्रष्टाचार और लापरवाही पर चाबुक चली होती, तो कल ये लपटे नहीं होती, वो 15 जाने सलामत रही होती। लखनऊ अग्निकांड की परतें जब एक एक कर खुल रही हैं, तो साफ नजर आता है कि ये हादसा नहीं हत्या है।
3: एक बॉक्स नुमा ये बिल्डिंग है, इस बॉक्स नुमा बिल्डिंग के अंदर ही लोग सिर्फ इसी से, जो बच्चे थे, जो लोग थे, वो इसी छोटे से रास्ते से, और कोई रास्ता था ही नहीं, ये इस रास्ते से अंदर जाना, बाहर जाना। और जब आग लग गई तो उसकी वजह से धुएं ने और आग ने अफरा तफरी मच गई और लोग फंस गए। मतलब 3 फ्लोर की ये बिल्डिंग, उसके बाद ये बेसमेंट टोटली अगर कहा जाए तो सिर्फ और सिर्फ सुरक्षा मानकों को दरकिनार करके ये बनाया गया।
1: लखनऊ में 15 हत्याओं का सबब बने इस अग्निकांड की जांच यूपी सरकार की SIT कर रही है। SIT को 7 दिनों में रिपोर्ट देनी है। अग्निकांड में दर्ज FIR में 4 नामजद आरोपी हैं। बिल्डिंग के को-ओनर वीरेंद्र शुक्ला समेत तुषांक कृष्ण, जायसवाल रामकृष्ण उपाध्याय और सुरेश कुमार के खिलाफ BNS की धाराओं में केस दर्ज हुआ है। जिस इमारत में आग लगी उसका नक्शा रिहायशी मानकों के मुताबिक पास हुआ, फिर कमर्शियल गतिविधियां शुरू हुई। जिस इमारत में हादसा हुआ वहां 20 किलोवाट का कॉमर्शियल बिजली कनेक्शन स्वीकृत था। जांच में सामने आया है कि वास्तविक बिजली लोड बढ़कर 34.10 किलोवाट तक पहुंच गया था। अप्रैल महीने में इमारत का लोड 24.30 KVA दर्ज किया गया था, जो जून में और बढ़ गया। जानकारों के मुताबिक स्वीकृत क्षमता से कहीं अधिक लोड होने से तारों और ट्रांसफार्मर पर भारी दबाव था। भीषण गर्मी और ओवरलोडिंग के कारण शॉर्ट सर्किट की आशंका कई गुना बढ़ गई। बात सिर्फ इतनी भर नहीं है। लखनऊ के अलीगंज की ये इमारत 2016 में ध्वस्तीकरण की जद में आई थी। मई 2016 में गैरकानूनी निर्माण के चलते बिल्डिंग को गिराने का आदेश पास हुआ, लेकिन जुलाई 2016 में ये आदेश निरस्त हो गया। सोचिए किस किस स्तर पर नियमों को ताक पर रखा गया होगा। हादसे के बाद बगल की इमारत में छेद कर कुछ लोगों की बचाने की कोशिश हुई। जो मौतें हुई हैं उसकी वजह जलना नहीं बल्कि दम घुटना है। हर हादसा अपने पीछे चुभने वाली कहानियां छोड़ जाता है। इस आग में जल गए नीलेश और अनामिका एक दूसरे के साथ जिंदगी बिताने के ख्वाब सजा बैठे थे। अब्दुल रहमान अपने परिवार के इकलौता सहारा थे। दिव्यांग पिता और बहन की जिम्मेदारी पिछले कई वर्षों से उनके कंधों पर थी। सीतापुर का आदित्य श्रीवास्तव अपने पीछे रोते बिलखते माँ बाप छोड़ गया है। सिर्फ 15 मौतें नहीं हुई हैं, 15 परिवारों पर दुखों का आसमान गिरा है।
4: कि हम लोग चाहते हैं इस पर जांच हो और ज्यादा से ज्यादा परिवार को मुआवजा दिया जाए, ताकि उसकी माँ की भी कोई ऐसी स्थिति नहीं है और परिवार में कोई दूसरा कमाने वाला नहीं था, इकलौता बच्चा था।
1: लखनऊ हादसे के बाद क्या यूपी, क्या देश के अन्य शहर इमारतों का सेफ्टी ऑडिट कर रहे हैं? कानपुर और इंदौर में कुछ कोचिंग संस्थानों पर सीलिंग की गई है, लेकिन सवाल वही है कि क्या व्यवस्था बदलेगी? आज तक ब्यूरो

0: Oh, I have had no luck lately. Wait, lady luck?
1: Bretzky, I got you. I've had so much luck on SpinQuest.com. They have all of my favorite games, slot games, live blackjack craps, and bubble craps. You can even get a $30 coin pack for just 10 bucks.
0: 10 bucks for 30? I'm headed over to SpinQuest.com right now.
2: SpinQuest is a free-to-play social casino. Void where prohibited. Visit SpinQuest.com for more details.
3: Need better internet? Cox Internet has the fast, reliable speeds you're looking for. Perfect for seamless streaming, gaming, and working from home. And now get Cox 300 Meg Internet with a 2-year plan price lock guarantee, plus equipment included. Oh, yeah. So get your household up to speed. Switch to Cox Internet today. Taxes and fees excluded from price guarantee.
4: Hey there, it's Stormy Warren, and on my podcast called The Stormy Cast, I talk to artists like Luke Bryan, Tim McGraw, and Miranda Lambert about their journey from their hometowns to their first big break in Nashville. Thomas Rhett called his episode of The Stormy Cast the best therapy session he's ever had. And during my conversation with Little Big Town, he needed tissues, and a lot of them. Yeah, the conversations go that deep. You'll find The Stormy Cast wherever you listen to your favorite podcast, in the TuneIn app or at TuneIn.com.
5: ये तस्वीरें याद है ना, चंद रोज पहले अखिलेश यादव ने अपने ब्राह्मण नेताओं की बैठक बुलाई थी। सारी कवायद इस बात की थी कि यूपी में ब्राह्मण वोट को एकजुट किया जाए। अब अखिलेश के बाद मायावती ने भी ब्राह्मण वोटर्स पर दांव चला है। बीएसपी प्रमुख मायावती ने एक बार फिर अपने पुराने और सफल सोशल इंजीनियरिंग फॉर्मूले सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय को केंद्र में रखा है। पार्टी ने ब्राह्मण समाज को साधने के लिए उन्हें बड़ी संख्या में टिकट देने का निर्णय लिया है। मायावती ने स्पष्ट किया है कि पार्टी केवल वादे नहीं करती बल्कि जिसकी जितनी तैयारी उसकी उतनी भागीदारी के सिद्धांत पर काम करती है। इधर बीएसपी ब्राह्मण वोटर्स को लुभाने में लगी है, उधर पीडीए की बात करने वाले अखिलेश यादव की मुश्किलें मौलाना शहाबुद्दीन रजवी बरेलवी ने बढ़ा दी है।
6: अखिलेश यादव के परिवार पर मुसलमानों का बहुत बड़ा एहसान है, इस वजह से मैंने पत्र के माध्यम से उनसे मांग की है कि 2027 के चुनाव के लिए मुख्यमंत्री के चेहरे के तौर पर किसी मुसलमान की घोषणा करें।
5: लेकिन मौलाना की अपील को समाजवादी पार्टी ने सिरे से खारिज कर दिया है।
7: हमने एक नेता मुलायम सिंह यादव को चुना था और हमने एक नेता अखिलेश यादव को चुना है, उसी के नेतृत्व में समाजवादी पार्टी आगे बढ़ेगी और जीतेगी भी।
5: यूपी में 27 का समर अब जाति और धर्म के समीकरण बना रहा है। समर्थ श्रीवास्तव, लखनऊ आज तक।
8: मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री का ये मुस्कुराता चेहरा भले महाराष्ट्र की राजनीति में तोड़फोड़ वाले ऑपरेशन की कामयाबी का हो, मगर सोमवार का दिन उद्धव की पार्टी के लिए भी बड़ा दिन था, क्योंकि एक तरफ दिल्ली से लौटे 6 सांसद पार्टी का दामन छोड़ शिंदे वाली शिवसेना का दामन पकड़ते हैं, तो बची खुची पार्टी और बचे हुए विधायक लेकर उद्धव शिवालय में बैठकें करते हैं। और सुबह के सक्सेसफुल ऑपरेशन वाले बयान पर उद्धव की पार्टी के नेता अपने गुस्से का इजहार करते हैं। जिनकी पार्टी टूटी वो कोस रहे हैं, जो टूट रहे हैं वो बहाने बताते हैं, लेकिन उद्धव का साथ छोड़कर जाने वाले सांसदों ने पार्टी क्यों छोड़ी, इसके पीछे दोनों ओर से दावे पर दावे। उद्धव के नेता कहते कि सांसद पैसे से खरीदे गए, टूट चुके सांसद कहते हैं कि अपमान अनदेखी हुई। उद्धव के नेता कहते हैं कि सांसद ईडी और सीबीआई से डरे और डराए गए। टूट चुके सांसद कहते हैं कि विकास के लिए सरकार के साथ। उद्धव के नेता कहते हैं कि बेवफा गद्दार बीजेपी के गुलाम बन गए। टूट चुके सांसद कहते हैं इधर रहकर सरकारी फंड तक नहीं मिलता था। बागी सांसदों की फंड न मिलने वाली दलील तो उद्धव की पार्टी भी मान रही है, और आदित्य ठाकरे ही भी फंड की कमी और भेदभाव वाली शिकायत इससे पहले कई नेताओं ने की। बागी सांसद संजय जाधव ने पहले कहा था कि सांसद निधि के 5 करोड़ विकास के लिए कम पड़ रहे, महायुति सरकार से फंड नहीं मिल रहा था। कांग्रेस से लेकर शरद पवार तक की पार्टी शिकायत करती है कि विपक्षी दलों को फंड में भेदभाव हो रहा है। विजय तिवारी ने तो कहा है कि सत्ताधारी दल के नेताओं को जिला योजना और विकास परिषद के 200-250 करोड़ तक के फंड मिलते हैं। सुप्रिया सुले कह चुकी है कि गांव और आदिवासी विकास फंड भी सत्ताधारी दलों के प्रतिनिधियों को दिए जा रहे हैं। अंबादास दानवे कह चुके हैं कि नीतीश राणे ने खुलेआम नो फंड फॉर MBA का बयान तक दिया था। आरोप ये भी थे कि सत्ताधारी दल के नगर सेवकों को भी 2-2 करोड़ मिले, वहीं विपक्षी पार्षदों को केवल 25 लाख देकर छोड़ दिया गया। तो सवाल है कि क्या उद्धव या शरद पवार की पार्टी छोड़कर जाने वाले इन नेताओं की ये दलील मान लेनी चाहिए कि देश और अपने चुनाव क्षेत्र के विकास के लिए, जनता के कल्याण के लिए ये फंड की जरूरत की खातिर अपनी पार्टी, नेता, वफादारी और विचारधारा छोड़कर NDA में शामिल होने जा रहे हैं। मुंबई से विकृत भालेकर के साथ आज तक ब्यूरो।

छात्रों को भड़काने का आरोप। और पद्म पुरस्कार से 65 हस्तियां सम्मानित, शिबू सोरेन को मिला मरणोपरांत पद्म भूषण, रोहित शर्मा, अलका याग्निक, ममूटी को राष्ट्रपति ने दिया सम्मान।

0: नमस्कार, मैं हूं शम्स ताहिर खान और आप देख रहे हैं वारदात। 11 महीने पहले इंदौर की सोनम ने जो शिलोंग में किया था, 11 महीने बाद ठीक वही काम पुणे की सिया ने कर दिया। जैसे सोनम ने अपने पति राजा रघुवंशी को खाई में धक्का दिया था, ठीक वैसे ही पुणे की सिया ने अपने मंगेतर को खाई में धक्का देकर मार डाला। 4 महीने पहले ही रिया और केतन की सगाई हुई थी और 5 महीने बाद दोनों की जयपुर के एक आलिशान पैलेस में शादी होनी थी। ये तस्वीर तो याद होगी आपको, ये ऊंची चढ़ाई और ये उससे भी गहरी खाई। अब जरा इस तस्वीर को देखिए, वही ऊंची चढ़ाई और उससे भी गहरी खाई। ये दोनों तस्वीरें देश के दो किनारों की है। पहली तस्वीर शिलोंग की है, करीब साल भर पुरानी। दूसरी तस्वीर पुणे से 52 किलोमीटर दूर ऐतिहासिक लोहागढ़ किले की है। पुणे की इस खाई की कहानी जिसने भी लिखी, उसने 100% सोनम की कहानी सुन रखी थी। सोनम राजा रघुवंशी, याद आया आपको ये नाम? पिछले साल 23 मई की वो तारीख थी जब सोनम ने शादी के हफ्ते भर बाद ही हनीमून के नाम पर अपने पति राजा रघुवंशी को शिलोंग में इसी ऊंचाई से धक्का देकर खाई में फेंक दिया था। अब 11 महीने बाद सोनम की कहानी पुणे की सिया गोयल ने दोहरा दी। कमाल का इत्तेफाक है दोनों कहानियों में, मतलब हर कदम हूबहू सब कुछ एक जैसा। कत्ल के लिए चुनी गई जगह एक जैसी, कत्ल करने का तरीका एक जैसा और कत्ल की वजह भी बिल्कुल एक जैसी। बस फर्क एक ही था, सोनम ने शादी के एक हफ्ते बाद अपने पति का कत्ल किया तो सिया ने सगाई के बाद होने वाली शादी से ऐन पहले अपने होने वाले पति को मार डाला। ये पुणे की सिया गोयल है और ये पुणे के एक अमीर बिजनेसमैन के बेटे केतन विशाल अग्रवाल। कुछ वक्त बाद ही सिया और केतन की शादी होनी थी। इस डेस्टिनेशन वेडिंग के लिए जयपुर में एक महल की बुकिंग हो चुकी थी। मेहमानों को पुणे से जयपुर ले जाने के लिए 2 चार्टर्ड प्लेन तक बुक हो चुके थे, लेकिन तभी बस एक साजिश की चिंगारी उठी और केतन और केतन के घर वालों के सपने खाई में समा गए।
1: केतन और सिया की जयपुर में शादी होने वाली थी जिसके लिए लगभग 17 करोड़ रुपए का खर्चा हुआ था। विला बुक करना हो, रिजॉर्ट बुक करना हो, इस सभी के लिए ये पैसा इस्तेमाल किया गया था। अहम बात यह है, गोयल फैमिली और अग्रवाल दोनों काफी खुश थे क्योंकि लड़की उनके यहाँ बहू बनकर आने वाली थी और इसी सब में जोर शोर से शॉपिंग शुरू थी। लोग सोना और कपड़े खरीदने के लिए जा रहे थे और उससे पहले ही घर वालों ने लोहगढ़ के प्री वेडिंग शूट के लिए हाँ भर दी। सिया केतन को लेकर लोहगढ़ पहुंच गई और ये हादसे के बाद दोनों फैमिली अब सदमे में है।
0: सोनम चैप्टर 2 की इस कहानी की शुरुआत होती है 18 जून को। पुणे से करीब 52 किलोमीटर दूर यह ऐतिहासिक आयरन फोर्ट यानी लोहागढ़ किला है। यहाँ सैलानी घूमने और ट्रैकिंग के लिए आते हैं। सिया गोयल अपने मंगेतर केतन अग्रवाल के साथ 18 जून की सुबह 10:30 बजे इसी किले में आती है। दोनों किले की सबसे बुलंदी पर पहुँचते हैं। वहाँ अचानक केतन का पैर फिसलता है और वो सीधे 340 फीट गहरी खाई में जा गिरता है। केतन को खाई में गिरते देख सिया जोर से चिल्लाती है और आसपास मौजूद गार्ड को रोते हुए बताती है। इसके बाद गार्ड पुलिस को फोन करते हैं और सिया अपने घर वालों को।
2: 18 जून 2000

0: 2026 को एक जो वुड बी कपल है जिनकी एंगेजमेंट फरवरी में हुई थी, सिया गोयल और केतन अग्रवाल, ये लोहगढ़ किले पे घूमने के लिए गए थे और वहाँ पे तकरीबन 10:30 पौने 11 के आसपास सिया गोयल ने फ़ोन करके बताया कि वो जो लड़का केतन अग्रवाल है वो फिसल के गिर गया और उसकी लोहगढ़ किले से नीचे गिरा और उसकी मृत्यु हो गई है।
1: लोहगढ़ किले से केतन को जोर से धक्का देने के बाद सिया खुद चिल्लाने लगी, वहां के वॉचमैन को बुलाया, इतना ही नहीं बल्कि पुलिस को भी इत्तला कर दिया। अब हादसा होने के बाद वे रोने लगी, फैमिली को इन्फॉर्म किया और सबको यही लगा कि प्री वेडिंग शूट के दरमियान उसका पैर फिसल गया और वो गिर गया। सभी को ये एक्सीडेंटल डेथ लग रही थी, पुलिस ने इसी की तरह की नोटिंग भी की।
2: किले के गार्ड और पुलिस सब खाई में केतन को तलाश करना शुरू करते हैं, पर खाई बहुत गहरी थी और एरिया बड़ा। पहले दिन की तलाश नाकाम रही। 19 जून को फिर से सर्च ऑपरेशन शुरू हुआ और आखिरकार केतन की लाश खाई से बरामद हो गई। लाश बरामद होने के बाद पुलिस एक्सीडेंटल डेथ का केस दर्ज कर लेती है।
0: वहाँ जो सिक्योरिटी गार्ड हैं, पुलिस और इसके जो मयत है और वो जो लड़की है उसके घर वाले गए, तो पुलिस स्टेशन में उसी दिन ईडी दाखिल की गई 36/2026 जो है सेक्शन 194 के अंतर्गत।
2: जिस घर में कुछ महीने बाद ही शहनाई बजने वाली थी वहां मातम पसरा था। पोस्टमार्टम के बाद 20 जून को केतन का पुणे में ही अंतिम संस्कार कर दिया गया। सगाई के बाद और शादी से ऐन पहले केतन की मौत को लेकर हर कोई सिया के लिए गमजदा था। केतन की मौत के अगले दिन सिया का बर्थडे भी था। इस मौके पर सिया ने एक भावुक और मार्मिक पोस्ट सोशल मीडिया पर डाला।

0: धीरे धीरे अब पूरा परिवार ये यकीन कर चुका था कि केतन की मौत एक हादसा थी, पांव फिसलने की वजह से वो खाई में जा गिरा। लेकिन केतन के पिता और केतन की बहन इस पर यकीन नहीं कर पा रहे थे। वजह ये थी कि केतन अक्सर ट्रैकिंग पर जाया करता था। फिर तभी 22 जून को सिया अपने होने वाले ससुराल पहुंचती है शोक के लिए। इसी दौरान पहली बार केतन की बहन सिया से पूछती है कि केतन किस तरह खाई में गिरा। ये सुनते ही सिया घबरा जाती है। बहन को लगता है कि वो कुछ छुपा रही है। उसी वक्त केतन की बहन अपने पिता से सिया को लेकर शक जताती है। पिता को पहले से ही शक था, लिहाजा वो फौरन पुलिस के पास पहुंचते हैं।
1: तो पहले 31 मई को लोहगढ़ फोर्ट गए घूमने के लिए। उसके बाद इमीडिएटली उसने बोला कि हमको 5 को भी जाना है, 5 जून को भी जाना है। तो 5 जून के लिए हमने इनकार कर दिया कि जब 31 को जाके आए तो रोज रोज वहां क्या काम है। लेकिन उसने बहुत जिद की कि नहीं मेरे को जाना है, मेरे को जाना है। लेकिन फिर किसी वजह से वो जा नहीं पाए। फिर वो लोग जा रहे थे 6 तारीख को शाम को बाली। जाते समय 4 लोग एक साथ जा रहे थे, सिर्फ केतन का ही पासपोर्ट चोरी हो गया जिसकी वजह से वो जा नहीं पाए। एयरपोर्ट से वो रिटर्न आ गए। रिटर्न आने के बाद हमें ये समझ में नहीं आया कि एक ही बैग में जब सब चीजें रखी हुई थी, बाकी सब करेंसी, क्रेडिट कार्ड्स, बाकी के पासपोर्ट अवेलेबल हैं, और एक ही पासपोर्ट कैसे चोरी हो सकता है। बट उसको अब ऐसा लग रहा है कि उस वक्त उसको बहुत ज्यादा सीरियस नहीं लिया, ऐसा लगा जैसे कैब ड्राइवर ने निकाल लिया होगा, कहीं गिर गया होगा। उसके बाद फिर वापस से उसने जिद की कि उसको जाना है लोहगढ़ किला। तो हमारे को ये समझ में नहीं आ रहा है क्यों जाना है। लेकिन बाली कैंसिल होने के बाद, पहले भी ये कैंसिल होने के बाद, फिर ये 14 को गए।
0: शायद सोनम की कहानी कभी पुणे में भी जिंदा थी, इसीलिए केतन के परिवार ने अब सिया के बारे में जानकारी जुटानी शुरू कर दी। तब तक पुलिस ने भी सिया के मोबाइल और सोशल मीडिया अकाउंट में ताक झांक शुरू कर दी थी। साथ ही साथ अब पुलिस लोहागढ़ किले के अंदर और बाहर की सीसीटीवी कैमरे की तस्वीरें भी खंगाल रही थी। इन्हीं तस्वीरों को खंगालते हुए पुलिस को एक अजीब तस्वीर नजर आई, एक शख्स जो हुडी पहनकर किले में आया था। ये तस्वीर इसलिए अजीब थी क्योंकि एक तो गर्मी, ऊपर से चढ़ाई के दौरान ज्यादा गर्मी लगती है, फिर भी उसने हुडी पहन रखी थी और उस हुडी से अपने चेहरे को भी छुपा रखा था। सीसीटीवी कैमरे से पता चला कि ये शख्स लगातार सिया और केतन के पीछे पीछे चल रहा था, पर उसका चेहरा साफ नहीं दिख रहा था। अब पुलिस ने सिया के कॉल डिटेल को खंगालना शुरू किया। पुलिस की नजर एक नंबर पर जाकर ठहर गई। वजह यह थी कि उस नंबर पर सिया ने जनवरी से लेकर जून तक, यानी पिछले 6 महीने में 2004 कॉल किए थे, और इन 2004 कॉल्स के दौरान उसने कुल 338 घंटे बात की। पुलिस ने जब उस नंबर को खंगाला तो पता चला वो नंबर चेतन चौधरी नाम के एक लड़के का है। चेतन पुणे के उसी इलाके में रहता है जहां सिया के पिता प्रवीण गोयल का बिजनेस है। अब पुलिस ने चेतन के कॉल डिटेल निकाले, खासकर 18 जून के, लेकिन पुलिस हैरान रह गई। 18 जून की सुबह 7 बजे से लेकर रात 9 बजे तक चेतन का नेट बंद था और फोन का लोकेशन चेतन का दफ्तर दिखा रहा था। अब पुलिस ने चेतन के दफ्तर के कर्मचारियों से पूछताछ की। इस पूछताछ में पता चला कि 18 जून को चेतन अपना फोन दफ्तर में ही छोड़कर अपने एक कर्मचारी का फोन अपने साथ ले गया था। उस कर्मचारी के फोन नंबर की लोकेशन जब ट्रेस की गई तो उसकी लोकेशन वही लोहागढ़ किला निकला। अब पुलिस को समझने में देर नहीं लगी कि असल में हुडी में चेहरा छुपाए शख्स कोई और नहीं, चेतन चौधरी ही। पुलिस ने फौरन चेता और सिया दोनों को हिरासत में ले लिया।
2: ये जो लड़की है सिया गोयल, इसका एक फ्रेंड जो चेतन चौधरी नाम का है, जो इस यहाँ पे ये लड़की, इसकी फैमिली का काम है मार्केट यार्ड में, उनकी भी दुकान उधर ही है। तो इनकी आपस में कुछ 1 साल के आसपास से पहचान थी, तो इन दोनों ने ये प्लान किया और प्लान करने के बाद इस घटना को अंजाम दिया। और उस लोहगढ़ किले पे इन्होंने वो केतन अग्रवाल को धक्का दिया और वो नीचे गिरा और उसकी मृत्यु हो गई।
3: जब चेतन चौधरी इस पूरे मामले में सामने आया तो लोकेशंस निकाले गए, CDR चेक किए गए, और उसके बाद ये क्लियर हो गया कि इस पूरे मामले में एक्सीडेंटल डेथ नहीं बल्कि साजिश रची गई है और वो भी सिया और चेतन इन दोनों ने मिलकर साजिश रची और केतन की इसमें मौत हो गई।
0: दोनों ने पूछताछ में आखिरकार अपना जुर्म कबूल कर लिया। इन दोनों की कहानी भी सोनम और राजा रघुवंशी जैसी ही कहानी निकली। असल में केतन के पिता पुणे के एक अमीर कारोबारी हैं, सिया के पिता भी शहर के इज्जतदार बिजनेसमैन। दोनों परिवार इकट्ठा हुए और इसी साल फरवरी में केतन और सिया की सगाई कर दी। शादी इसी साल 26 नवंबर को जयपुर के एक महल में होनी थी। शादी के लिए उस महल को 17 करोड़ में बुक किया गया था। मेहमानों को लाने ले जाने के लिए 2 चार्टर्ड प्लेन भी बुक किए जा चुके थे। लेकिन इधर सिया की जिंदगी में कुछ और ही कहानी चल रही थी। पिछले साल दिवाली के मौके पर सचिन चौधरी से उसकी मुलाकात हुई। दोनों में प्यार हो गया, सब कुछ ठीक चल रहा था। लेकिन तभी घर वालों ने सिया की शादी केतन के साथ तय कर दी। सिया इस रिश्ते से खुश नहीं थी क्योंकि वो चेतन से शादी करना चाहती थी।
1: अगर उसको शादी नहीं करनी थी तो सीधा उसने उसके माँ बाप को या हमको किसी चीज से इनकार कर देते, या जिस लड़के के साथ उसका जो भी अफेयर चल रहा है कहीं से भी एक फोटो हमको भेज देते तो भी हम कैंसिल कर देते। इन लोगों ने इतना बड़ा कदम उठाने का क्यों सोचा और क्या इनकी मानसिकता है? इन लोगों की इतनी क्रूर मानसिकता है कि किसी का 26 साल का लड़का इनके थोड़े से अय्याशी के लिए मार दिया जाए। इनकी इतनी क्रूर विचारधारणा को कहीं तो भी समाज में ध्यान में लेना चाहिए। और ये विचारधारणा इनको इनके परिवार से इनके संस्कारों से ही आई होगी। उसके सिवा एक 20 साल के लड़की में इतना किसी का मर्डर करने तक का सोच आना और करना कहां तक पॉसिबल है? तो ये इनके माता पिता परिवार जहां से आई होंगी उन्होंने किसने क्या सीख दी अब ये मैं बता नहीं पाऊंगा।
0: सिया किसी तरह शादी से पहले केतन से पीछा छुड़ाना चाहती थी। इसके लिए उसने चेतन के साथ मिलकर साजिश रचनी शुरू कर दी। इत्तेफाक से 31 मई को ट्रैकिंग का शौकीन केतन सिया को अपने साथ इसी लोहागढ़ किले में लाता है। यहाँ आने के बाद पहली बार सिया को यह ख्याल आया कि अगर वो ऊंचाई से केतन को धक्का दे दे तो वो खाई में गिर जाएगा और सबको यही लगेगा कि एक हादसा है। इसके बाद 14 जून को सिया जिद कर केतन को एक बार फिर इसी किले में लाती है। वो केतन को 14 जून को ही मारना चाहती थी लेकिन वो केतन को धक्का नहीं दे पाई।
1: 14 को मुझे कल वहां पता चला कि उसने खुद ने उसको धक्का मारा जिसकी वजह से केतन पीछे सरक गया और पीछे एक पेड़ था, पेड़ का सहारा लेके वो बच गया। बचने के बाद उसने इमीडिएटली नाटक किया कि सांप आ गया, सांप आ गया, सांप आ गया और मैंने तेरे को बचा लिया। तो उस वक्त उसके ध्यान में नहीं आया कि इसने मेरे को धक्का मारा था गिराने के लिए लेकिन अभी सांप का बहाना कर रही है। फिर इमीडिएटली उसने फिर बोला 18 तारीख को मेरे को फिर लोहगढ़ जाना है, जबकि 19 तारीख को उसका बर्थडे था, महाबलेश्वर में हम सेलिब्रेट कर रहे थे। लेकिन उसने बोला नहीं, मेरे दोस्त कुछ मेरी पार्टी रखना चाहते हैं, कुछ लड़के लड़कियां हैं। केतन को उसने ऐसा कन्विंस किया कि कुछ भी कर, अपन बर्थडे बैश अपने को वहां करना है। उसने फिर उसके मम्मी में उसके केतन के मम्मी को भी रात को फोन किया वीडियो कॉलिंग पे कि आप समझाओ कि हमको जाना है वहां पे। तो उसके हिसाब से फिर हमने बोला कोई बात नहीं, चलो बर्थडे है तो जाके आ जाएंगे।
0: पहली कोशिश नाकाम होने के बाद 18 जून को वो फिर केतन को अपने साथ इसी जगह लाई। इस बार उसने केतन से कहा कि ये जगह अच्छी है और प्री वेडिंग शूट के लिए उसे फिर से ये जगह देखनी है। केतन तैयार हो गया। उधर सिया ने चेतन को अपना प्लान बताया। प्लान के तहत चेतन को सिया और केतन के पीछे पीछे आना था। इसके बाद जैसे ही केतन किले की ऊंचाई पर पहुंचा, मौका देखते ही सिया और चेतन दोनों ने मिलकर केतन को धक्का दे दिया। सिया की इस साजिश से शायद केतन बच जाता। असल में कुछ दिन पहले ही केतन ने अपनी बहन सिया और एक दोस्त के साथ इंडोनेशिया के बाली जाने का प्लान बनाया था। सभी घर से एयरपोर्ट के लिए रास्ते में थे पर सिया बाली जाना नहीं चाहती थी, लिहाजा साजिश के तहत उसने रास्ते में एक रेस्तरां में रुककर केतन का पासपोर्ट फाड़कर वॉशरूम में फ्लश कर दिया। पासपोर्ट न होने की वजह से सभी को वापस लौटना पड़ा।
2: जून के पहले वीक में प्री वेडिंग शूट के लिए ये लोग बाली जाने का प्रोग्राम बनाया था, तो बाली के लिए यहाँ से मुंबई के लिए निकले थे, लेकिन वहाँ से इनको वापस आना पड़ा क्योंकि एयरपोर्ट पे इनको जाके समझ आया कि जो केतन अग्रवाल है जो इस केस में मैयत है कि उसका पासपोर्ट मिसिंग था। तो उसकी जो स्टोरी ऐसी है कि इस लड़की ने सिया गोयल ने ही उसका जो पासपोर्ट है वो निकाल लिया था और उसको डिस्प्लेस किया था सोदा कि ये कतर बाली ना जा पाए।
0: आइए वापस 11 महीने पुरानी सोनम की कहानी में झांकते हैं। सोनम भी अपने बॉयफ्रेंड सचिन की वजह से राजा रघुवंशी से शादी करना नहीं चाहती थी। सोनम भी सिया की बाली की तरह राजा के साथ बेंगलुरु जाना नहीं चाहती थी। जिस तरह सिया जिद कर केतन को लोहागढ़ किला लाई, ठीक उसी तरह सोनम ने भी कामाख्या देवी के मंदिर के दर्शन की आड़ में राजा को अपने साथ गुवाहाटी होते हुए शिलांग ले गई। सोनम ने भी भाड़े के कातिलों के साथ मिलकर अपने हाथों से राजा को खाई में धक्का दिया, तो सिया ने भी अपने बॉयफ्रेंड चेतन के साथ मिलकर केतन को खाई में धक्का दिया। अब आप ही बताइए ये कहानी सोनम चैप्टर 2 है कि नहीं। श्री कृष्ण पांचाल के साथ ओंकार वाबले, पुणे आज तक। वैसे सिया से याद आया कि आपको सोनम का भी अपडेट दे दूं। शिलांग की एक अदालत ने कुछ वक्त पहले ही सोनम को जमानत पर रिहा कर दिया है। हालांकि सोनम इंदौर नहीं लौटी बल्कि वो अब भी शिलांग में है। जमानत पर बाहर आने के बाद सोनम ने शिलांग के एक लोकल न्यूज चैनल से बात की। पेश है उसी बातचीत का कुछ हिस्सा।
4: आप क्या बोलना चाहते हैं, जो आपको बेल मिला है तब से क्या आप मतलब कंप्लाई कर रहे जो कंडीशंस कोर्ट ने रखा है?
5: हाँ, मैं हमेशा बेल कंडीशन जो मुझे मिला हुआ है यहाँ से उसको मैंने हमेशा मान्य किया है और मैं उस चीज को कभी नहीं तोड़ूंगी।
4: जब से बेल मिला कोर्ट से आप कहाँ रह रहे हो और आपकी खर्चा ये सब एक्सपेंसेस आप थोड़ा बता सकते हो कैसे मैनेज कर रहे हो?
5: मैं शिलांग में ही रह रही हूँ, मैं शिलांग से बाहर नहीं गई हूँ और मैं खर्चे के बारे में कुछ नहीं बताना चाहती हूँ, वो सब मेरा खुद का है। और मैं कहाँ रह रही हूँ शिलांग के अंदर वो मैं आपको डिस्क्लोज नहीं कर सकती,
4: सेफ्टी
5: रीजन की वजह से।
4: अभी ये भी है, चर्चा हो रहा है कि आपकी प्लान्स है शिलांग छोड़ने के लिए, और मतलब कोई प्लान्स है इंदौर जाने के लिए अभी?
5: नहीं, मेरा कोई प्लान नहीं है अभी इंदौर जाने के लिए क्योंकि अभी मेरा केस चल रहा है यहाँ पे और जब तक वो ख़त्म नहीं होता मैं नहीं जाऊँगी। अभी ट्रायल चल रहा है और मेरा जनता से यही गुहार है और यही रिक्वेस्ट है कि वो अखबारों में ना जाए क्योंकि ये सब झूठ बोल रहे हैं जो भी है अभी मेरे बारे में चल रहा है वो।
4: मेरा ये भी क्वेश्चन था जो आपने ऑलरेडी जवाब दिया, फिर भी अगर कुछ और बोलना चाहते, जो पब्लिक ओपिनियन है आपके बारे में, आपको क्या लगता है डे वन से आपके अगेंस्ट है और आपका क्या ओपिनियन है ये पूरे इशू के बारे में?
5: मैं अभी इस चीज़ में कुछ नहीं बोलना चाहूँगी क्योंकि अभी मेरा केस जो है वो ट्रायल में चल रहा है तो मैं अभी इस चीज़ के लिए कुछ नहीं बोलना चाहूँगी।
4: मेरा आखिरी सवाल है, क्या बोलना चाहते हो आप, जो आपकी कमिटमेंट, मैं थोड़ा इंग्लिश में एक्सप्लेन कर देते हैं अपने ऑडियंस के लिए, वुड यू लाइक टू से एनीथिंग अबाउट योर कमिटमेंट टू कोऑपरेटिंग विद द कोर्ट प्रोसीडिंग्स?
5: हाँ, मैं हमेशा कोर्ट का जो भी फैसला है उस पर मैंने कोऑपरेट किया है और मैं आगे भी उस चीज़ के लिए कोऑपरेट करूँगी और मुझे जो भी कोर्ट से टर्म्स एंड कंडीशन दिए थे उसको मैं मान्य करते हुए और मैं अपने न्यायालय का रिस्पेक्ट करते हुए मैं उन सारी चीज़ों को हमेशा से रिक्वेस्ट रिस्पेक्ट करती थी, करूंगी और हमेशा उन सारी चीज़ों के लिए मेरे लिए रिस्पेक्ट है और रहेगी।
0: तो वारदात में फिलहाल इतना ही, मगर देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।
6: नीड बेटर इंटरनेट? Cox Internet has the fast, reliable speeds you're looking for. Perfect for seamless streaming, gaming, and working from home. And now get Cox 300 Meg Internet with a 2-year plan price lock guarantee, plus equipment included. Oh yeah! So get your household up to speed. Switch to Cox Internet today. Taxes and fees excluded from price guarantee.
7: Get into the huddle with TuneIn. TuneIn brings you nonstop sports talk, live games, and expert analysis all in one place. From kickoff to final whistle, follow your favorite teams all season long with ESPN Radio, Talk Sport, Big 12 Radio, and more. Here we go. Plus, listen to your favorite sports broadcasts on over 200 devices, so you never miss a moment of sports action with TuneIn. Stay in the game with TuneIn and start listening now.
8: जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए श्री संत का।
9: Please, Bajipa, please do Lalan Talk Show. It's a request. And please to speak truth.
10: April 2026 में उन्होंने एक रिटेल कंपनी का ऐड किया।
9: ऐसे हरकतें आप करोगे आपके भाई के साथ? I challenge you, Bajipa. अगर आपको इतना प्रॉब्लम है तप्पड़ खांड से और आप इतना कमा रहे हो, हमें भी तो कमाने दो। आओ ना रिंग में। Wait. Come.
11: 25 सालों से जहां टिकी है देश की नजर, मेरे साथ फिर से शुरू हो रहा है वही सफर। ये खबरें सात तक, देखते रहिए आज तक।

0: Jack FM, now playing what we want, commercial free on TuneIn Premium.
1: What you got for me, Jack?
0: Upgrade to TuneIn Premium and get Jack FM commercial free.
2: के पहले बहन और भाइयों, आज आप देख रहे होंगे ये डबल इंजन की भारतीय जनता पार्टी की सरकार वन डिस्ट्रिक्ट वन मेडिकल कॉलेज दे रही है, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट दे रही है, वन डिस्ट्रिक्ट वन कुजीन दे रही है। और समाजवादी पार्टी देती थी वन डिस्ट्रिक्ट वन माफिया, यानी हर जिले का एक चिन्हित माफिया था। वो चिन्हित माफिया अराजकता फैलाता था, गरीब के मकान पर कब्जा करता था, गरीब की जमीन पर कब्जा करता था, अपने गुर्गों के माध्यम से व्यापारियों से चौथ वसूली करता था, अराजकता का माहौल पैदा करता था। वह माफिया प्रदेश को तबाह करके रखा हुआ था। सरकारी जमीनों पर कब्जा करना, अराजकता पैदा करना उसकी पहचान बन चुकी थी। आज मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि हमारा प्रदेश अब माफिया मुक्त है, गुंडा मुक्त है, उपद्रव से मुक्त है। अब उत्तर प्रदेश में नो कर्फ्यू नो दंगा, अब तो यूपी में है सब चंगा। और जब होता है चंगा तो तब उपद्रव नहीं, तब उत्साह होते हैं। आप सोचो ये समाजवादी

लखनऊ अग्निकांड में एसआईटी जांच के बीच भड़की सियासी चिंगारी। अखिलेश ने मांगा योगीराज में पास नक्शों का हिसाब। ब्रिजेश पाठक का पलटवार, मौत पर राजनीति न करे एसपी अध्यक्ष। चार आरोपियों को न्यायिक हिरासत। राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में एसआईटी ने यूपी सरकार को सौंपी प्रारंभिक रिपोर्ट। फिलहाल किसी को क्लीन चिट नहीं, कुछ कर्मचारियों पर केस की सिफारिश। एसपी सांसद अवधेश प्रसाद ने सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के तहत जांच की मांग की। भोजपुर के भरत तिवारी एनकाउंटर में एक्शन। जगदीशपुर के एसडीपीओ शाहपुर थानाध्यक्ष समेत कई पुलिसकर्मियों पर एफआईआर। बवाल के बाद बैकफुट पर बिहार पुलिस। नेट पर आज तक से बोले धर्मेंद्र प्रधान, लीक के मुजरिमों को छोड़ेंगे नहीं। दोबारा गड़बड़ी रोकने की पूरी कोशिश। राहुल गांधी पर लगाया छात्रों को भड़काने का आरोप। और पद्म पुरस्कार से 65 हस्तियां सम्मानित। शिबू सोरेन को मिला मरणोपरांत पद्म भूषण। रोहित शर्मा, अलका याग्निक, ममूटी को राष्ट्रपति ने दिया सम्मान।

0: महाराष्ट्र विधानसभा का मॉनसून सत्र, मुस्लिम महिलाओं की सुरक्षा पर जोरदार बहस के बीच महाराष्ट्र में यूजीसी लागू करने की मांग तेज। महाराष्ट्र के गृह राज्य मंत्री योगेश कदम ने बताया, महाराष्ट्र में यूसीसी लागू करने के लिए सेवानिवृत्त हाईकोर्ट जज की अध्यक्षता में समिति गठित, सरकार ने जताया समर्थन। एकनाथ शिंदे बोले, बाला साहेब ठाकरे भी समर्थन में थे, 6 सांसदों के शामिल होने की औपचारिकताएं पूरी की गई। बीजेपी विधायक देवयानी फरांडे ने एक दावा किया, बोली महाराष्ट्र में 3 तलाक पर बैन ठीक से लागू नहीं हो रहा है, जिससे यूसीसी लागू करना जरूरी। यूसीसी और ट्रिपल तलाक को लेकर बीजेपी विधायक देवयानी फरांडे ने बहुविवाह और महिला उत्पीड़न के मामलों का हवाला देते हुए सख्त कानून की मांग की है। महाराष्ट्र विधानसभा में मंत्री नितेश राणे का विवादित बयान, बोले यूसीसी का विरोध करने वालों को पाकिस्तान चले जाना चाहिए, विपक्ष पर संविधान के दुरुपयोग के आरोप लगाए। महाराष्ट्र में समाजवादी पार्टी के विधायक अबू आजमी का बीजेपी सरकार पर बड़ा आरोप, बोले राजनीतिक लाभ के लिए हिंदू मुस्लिम के बीच फैलाई जा रही है नफरत। गुजरात के गिर सोमनाथ के वेरावल में सरकारी जमीन पर बड़ा बुलडोजर एक्शन, जल निकासी मार्ग से हटाया गया अवैध अतिक्रमण, प्रशासन ने 3291 वर्ग मीटर भूमि को कराया मुक्त। पुणे में बिजनेसमैन की बेटी ने प्रेमी के साथ मिलकर मंगेतर को 400 फीट गहरी खाई में फेंक डाला, नवंबर में शादी होने वाली थी। पुणे हत्याकांड में आरोपी सिया गोयल और चेतन चौधरी को कोर्ट ने 7 दिन की पुलिस हिरासत में भेजा। अमरावती में पारिवारिक विवाद में हैवान बन गया पिता, बेटा बहू को कार से कुचलने की कोशिश की गई, आरोपी को गिरफ्तार किया गया, वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद। अमरावती में बड़ा साइबर घोटाला उजागर हुआ, गरीबों के बैंक खातों का इस्तेमाल करके करोड़ों रुपए की ठगी, गोवा में छापेमारी के बाद 12 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। छत्रपति संभाजी नगर में खाद्य विभाग की बड़ी कार्रवाई, बिना लाइसेंस पैकेज पीने के पानी के प्लांट पर छापेमारी, लाखों का स्टॉक जब्त किया गया। जामनगर में मास्क पहनकर वाहन चोरी करने वाले गैंग को सीसीटीवी कैमरे में कैद होने के बाद तस्वीरें वायरल, स्कॉन मंदिर के पास लगातार वारदात से दहशत। गुजरात के द्वारका में अवैध खनिज परिवहन पर बड़ी कार्रवाई, एसओजी ने 5 ट्रक जब्त किए, 77 लाख रुपए से ज्यादा के माल को कब्जे में लिया। राष्ट्रपति भवन में पद्म सम्मान समारोह, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने देश की 65 हस्तियों को पद्म पुरस्कारों से सम्मानित किया। 55 हस्तियों को पद्मश्री, 7 को पद्म भूषण और 2 को पद्म विभूषण, क्रिकेटर रोहित शर्मा को पद्मश्री से सम्मानित किया गया। साउथ के सुपरस्टार ममूटी और बॉलीवुड सिंगर अलका याग्निक को पद्म भूषण, टेनिस खिलाड़ी विजय अमृतराज को पद्म भूषण। 27 करोड़ रुपए के ऋषभ पंत, 15 करोड़ रुपए में दिल्ली कैपिटल्स में लौटे, 13.5 करोड़ रुपए में कुलदीप यादव लखनऊ सुपर जायंट्स में शामिल हुए, दोनों ही टीमों के बीच हुआ ट्रेड। वैभव सूर्यवंशी को मिली टीम इंडिया की नंबर 3 जर्सी, कहा खुशी बयां करने के लिए शब्द नहीं है, आयरलैंड इंग्लैंड दौरे पर रवाना। मुंबई के सनातन मठ पहुंचे बॉलीवुड के सुपरस्टार टाइगर श्रॉफ, पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को अंगवस्त्र भेंट किया। उमा कुरैशी की आगामी फिल्म बेबी डू डाई डू का धमाकेदार ट्रेलर रिलीज किया गया, 3 जुलाई को फिल्म सिनेमाघरों में रिलीज होगी। फिल्म रू में इमरान हाशमी की एंट्री, फिल्म का पहला लुक जारी, अगले साल 2027 में फिल्म को रिलीज किया जाएगा। निधि दत्त की फिल्म बॉर्डर 3 का ऐलान किया गया, सनी पाजी की होगी दमदार एंट्री, वापसी जनरल हरबख्श सिंह की जिंदगी पर होगी ये फिल्म। फिल्म महाप्रभु जगन्नाथ का ट्रेलर लॉन्च किया गया, 10 जुलाई को 3 भाषाओं में सिनेमाघरों में रिलीज की जाएगी फिल्म। नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक और आपके साथ मैं हूं शशि शर्मा। मुंबई मेट्रो में आपका स्वागत है। महाराष्ट्र में भी यूसीसी यानी कि समान नागरिक संहिता लागू किया जाएगा और इसका ऐलान गृह राज्य मंत्री योगेश कदम ने विधानसभा में किया है। उन्होंने कहा कि यूसीसी लागू करने के लिए हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज के नेतृत्व में एक समिति गठित की जाएगी। इस मामले में समाजवादी पार्टी के विधायक अबू आजमी ने मुस्लिमों को टारगेट करने के आरोप लगाए हैं, तो मंत्री नितेश राणे ने कह दिया है कि यूसीसी का विरोध करने वालों को पाकिस्तान चले जाना चाहिए।
1: आम्ही एनडीआरएफ च्या दुप्पट केलं, जाहीर नजर समाधानकारक, आपल्याला कारवाई अभिनंदन करेल।
2: मुस्लिम महिलाओं की सुरक्षा पर विधानसभा में जोरदार बहस के बीच महाराष्ट्र में यूसीसी लागू करने की मांग तेज हो गई है।
3: यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है, समान नागरिक कानून, ये हमारे बालासाहेब ठाकरे जी की पहले से भूमिका रही है और आज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी सकारात्मक है और शिवसेना ये यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में सकारात्मक भूमिका हमारी है। देश में समान नागरिक कानून होने की आवश्यकता है, सभी को समान न्याय और मिलना चाहिए, ये भूमिका शिवसेना की है।
2: महाराष्ट्र विधानसभा में आज मुस्लिम महिलाओं की सुरक्षा और यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी यूसीसी पर जमकर हंगामा हुआ। दरअसल बीजेपी विधायक देवयानी फरांडे ने दावा किया कि महाराष्ट्र में तीन तलाक पर बैन ठीक से लागू नहीं हो रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि मुस्लिम महिलाओं के खिलाफ एक से ज्यादा शादी और बदसलूकी के मामले बढ़ रहे हैं, जिसके लिए यूसीसी लागू करना जरूरी हो गया है।
4: बिल की आज मैंने सदन में मांग की और इस बिल की महाराष्ट्र में बहुत ही जरूरत है, क्योंकि पॉलीगेमी का परसेंटेज हम देख रहे हैं कि मुस्लिम समाज के अंदर बहुत है। डेढ़ महीने में नासिक में 3 FIR खारिज हुए हैं, दर्ज किए गए हैं और उसके अंदर उनके पति ने उनके ऊपर ट्रिपल तलाक के लिए बहुत फोर्स किया, नहीं दिया तो उनको मार देना, उनको मारने की धमकी देना, और एक ने तो बताया उसको दो बंदों को लेके बोले इसके साथ तेरा हलाला कर दूंगा। जैसे कि आसाम की सरकार ने, गुजरात, उत्तराखंड और गोवा की सरकार ने यूसीसी को लागू किया है, वैसे ही महाराष्ट्र की सरकार तुरंत यूसीसी लागू करे, ये मैंने मांग सदन में रखी थी और मंत्री महोदय ने बहुत ही सकारात्मक उसके ऊपर बयान दिया है कि जल्द ही कमेटी बना के सरकार जो है यूसीसी को महाराष्ट्र में लागू करेगी।
2: इसके जवाब में महाराष्ट्र के गृह राज्य मंत्री योगेश कदम ने ऐलान किया कि सरकार एक रिटायर्ड हाईकोर्ट जज के नेतृत्व में कमेटी बनाएगी। ये कमेटी महाराष्ट्र में यूसीसी को कैसे लागू किया जाए इस पर स्टडी करेगी और सरकार फाइनल रिपोर्ट के आधार पर अपना अगला कदम तय करेगी।
5: 100% सकारात्मक आहे। या कायद्याची अंमलबजावणी किंवा ह्या कायद्याचा मसुदा तयार करण्यासाठी किंवा याचा एक अभिप्राय समोर आणण्यासाठी आपण एक रिटायर्ड हायकोर्ट जज यांच्या अंडर आपण एक कमिटी स्थापन करायचा निर्णय माननीय मुख्यमंत्री मोदींनी घेतलेला आहे आणि हा अहवाल, या कमिटीचा अहवाल प्राप्त झाल्याच्या नंतर आपल्या महाराष्ट्रामध्ये देखील यूसीसी कायदा हा लागू केला जाईल। या बाबतीमध्ये आपलं सरकार हे सकारात्मक आहे।
2: इसके बाद यूसीसी और तीन तलाक जैसे मुद्दों पर सदन में बहस तनावपूर्ण हो गई। एनसीपी विधायक सना मलिक ने चर्चा का विरोध करते हुए कहा कि इस्लाम में एक से ज्यादा शादी की इजाजत है, लेकिन दूसरे धर्मों में भी ऐसा होता है। उन्होंने सवाल किया कि सिर्फ मुसलमानों को ही क्यों टारगेट किया जा रहा है।
6: इस तरीके का अत्याचार सिर्फ मुस्लिम महिलाओं के ऊपर हो रहा है, क्या ये प्रश्न मैं पूछ सकती हूँ? उसका जवाब दिया जाएगा कि इस तरीके का अत्याचार सिर्फ मुस्लिम महिलाओं के ऊपर हो रहा है क्या? दूसरा, पॉलीगैमी मुस्लिम्स में अलाउड है मुस्लिम लॉ अंतर्गत। पाकिस्तान ने कुछ नया नहीं किया है, पाकिस्तान ने मुस्लिम लॉ जो हमारा कुरान जो कहता है उसको इम्प्लीमेंट किया है और वही अगर इधर भी इम्प्लीमेंट किया जाएगा तो हम में से किसी को भी इस्लाम के में जो भी कुरान बोलता है वो हम फॉलो करते हैं। अगर कुरान में कोई चीज कही गई है उसको फॉलो करने के लिए अगर इम्प्लीमेंटेशन पाकिस्तान ने लाया है तो भारत देश भी लाए और हम इसकी मांग करते हैं।
2: इस टकराव को और बढ़ाते हुए मंत्री नितेश राणे ने कह दिया, गजवाए हिंद करने वाले जो लोग कानून और संविधान को मानने से इनकार करते हैं उन्हें भारत में रहने का अधिकार नहीं है।
7: पता चलता है कि इस्लाम में महिलाओं का क्या स्थान है, जब हम महिलाओं के हित में बात कर रहे हैं फिर वो हिंदू हो, मुसलमान हो, क्रिश्चियन हो, कोई भी, अगर उनकी हित की बात हो रही होगी तो हमें सभी को उसके साथ में आके उसके लिए करना चाहिए, मगर तो भी कुरान को सामने रख के उन महिलाओं के ऊपर किया हुए अत्याचार को जस्टिफाई किया जा रहा था, यही क्या कुरान में लिखा है क्या? इसी को इस्लाम कहते हैं क्या? इसका जवाब वो लोग ने देना चाहिए।
2: वही समाजवादी पार्टी के विधायक अबू आजमी ने बीजेपी सरकार पर हिंदू मुस्लिम के बीच नफरत फैलाने का आरोप लगा दिया।
8: दल के अंदर जाकर आदिवासियों से पूछें उनका धर्म जो कहता है वो, इसी में आदिवासी को बोलते हैं हम इसको अलग रखेंगे, उसको इसमें शामिल नहीं करेंगे। अगर देश है तो सबको शामिल कीजिए। मुसलमानों का खाली विरोध नहीं है, इसमें बहुत सारे लोगों का विरोध है। अगर मुझे मेरा मजहब कहता है कि मैं निकाह करूं तो आप अगर कानून बना देंगे कि मैं जो है सात फेरे लगाऊं तो कैसे, या आपको कहा जाए कि आप निकाह करो सात फेरे नहीं करो, तो ये जो पर्सनल चीजें रिलीजन की थोड़ी चीजें ऐसी हैं, बाकी हर चीज में तो कॉमन ही है। मर्डर हुआ है, अटेम्प्ट मर्डर है, कोई जायदाद का प्रॉब्लम है तो सब कोर्ट में साफ सेम चलता है। कुछ पर्सनल चीजें हैं जिसमें इंटरफेरेंस नहीं होना चाहिए।
9: सरकार का इस पूरे मामले
8: सरकार जो सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों को इस मुल्क में बर्बाद कर देना चाहती है और उन्हीं के कंधों पर चढ़ करके राजनीति कर रही है, सिर्फ मुस्लिम हिंदू कर रही है और कुछ नहीं।
2: जिस तरह सरकार ने यूसीसी के लिए कमेटी बनाने का ऐलान किया है उससे सरकार ने अपनी मंशा जाहिर कर दी है कि विपक्ष के विरोध के बावजूद यूनिफॉर्म सिविल कोड ला कर रहेगी।
10: महाराष्ट्र विधानसभा में छिड़ी यह बहस एक बात तो साफ करती है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड और महिला सुरक्षा, ये दोनों मुद्दे महाराष्ट्र की राजनीति में एक बड़ा मोड़ लेने वाले हैं। अब ये देखना जरूरी होगा कि इस कमेटी की रिपोर्ट राज्य की राजनीति किस तरह से बदलती है। हालांकि देखना ये भी होगा कि क्या इस फैसले से सही मायने में समाज को जोड़ा जाता है या फिर इससे सिर्फ राजनीतिक हवा बदलती है। कैमरा पर्सन सचिन सावन के साथ मैं ऋत्विक भालेकर, मुंबई आज तक।
0: उद्धव ठाकरे की पार्टी शिवसेना यूबीटी के जो 6 सांसद शिंदे कैंप में शामिल हुए हैं वो दावा कर रहे हैं कि सांसद निधि की कमी की वजह से वो जनता के जरूरी काम भी नहीं कर पा रहे थे, इसीलिए उन्होंने पाला बदल लिया। अब उद्धव गुट इन सांसदों पर भ्रष्टाचार और पूरी सांसद निधि खर्च नहीं करने के आरोप लगा रहे हैं। इस पर सांसदों ने सफाई दी है।
2: उद्धव ठाकरे के 6 सांसद अब शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना के हो चुके हैं। अब ऐसी चर्चा है कि शिंदे कैंप उद्धव ठाकरे के विधायकों को अपने पाले में लाने के लिए ऑपरेशन टाइगर पार्ट 3 शुरू करने वाला है। उद्धव ठाकरे का साथ छोड़ने वाले सांसद अपने चुनाव क्षेत्र में डेवलपमेंट के लिए फंड की कमी को लेकर अपनी शिकायतें बता रहे हैं। धारा शिव से सांसद ओमराजे निम्बालकर ने बताया कि ट्रांसफार्मर की मरम्मत जैसे बेसिक काम के लिए भी फंड नहीं मिल रहा था। उन्होंने फंड के अलॉटमेंट और उसे खर्च नहीं करने के आरोपों पर सफाई भी दी।
11: एक सांसद को एक साल में उसके चुनाव क्षेत्र के विकास के लिए 5 करोड़ रुपए आवंटित किए जाते हैं। 5 साल का अगर आप हिसाब देखेंगे तो 25 करोड़ रुपए एक सांसद को एक टर्म में 5 साल में मिलते हैं और आवंटित निधि को खर्च करने के लिए एक सांसद को 5 साल का समय रहता है। मुझे लगता है एमपी लैड फंड का जो कुछ मूल्यमापन आप कर रहे हैं वो 5 साल खत्म होने के बाद आपने करना चाहिए, क्योंकि उसका लिमिट जो है खर्च करने का वो 5 साल है। आप अगर उदाहरण के तौर पर देखेंगे तो 2019 से 2024 तक मैं सांसद था, इन 5 सालों में मुझे जो निधि आवंटित हुआ मेरे चुनाव क्षेत्र के विकास के लिए वो पूरा का पूरा निधि मैंने 100% खर्च किया हुआ है।
2: निम्बालकर ने समझाया कि अगर लोकसभा सांसद को हर साल 5 करोड़ रुपए मिलते हैं तो वो कहां कहां कैसे खर्च होते हैं।
11: अभी मेरा दूसरा टर्म चल रहा है, उसमें 24 से 29 तक जो निधि मुझे मिलेगा वो पूरा का पूरा 29 के बाद अगर एक पैसा भी बचता है तो उसके लिए मैं बिल्कुल जिम्मेवार हूँ। दूसरी बात जो बताया जाता है कि बाबा 5 करोड़ रुपए यानी 5 साल के 25 करोड़ रुपए में चुनाव क्षेत्र में मेरे वार्ड कितने हैं, तो 2475 मेरे चुनाव क्षेत्र में वार्ड है और उन सारे वार्डों ने मुझे वोट डाला है। तो 25 करोड़ को आप अगर आप 2475 चुनाव क्षेत्र के वार्ड से अगर आप डिवाइड करेंगे तो हर एक वार्ड में 1 लाख रुपए और उससे आगे 2000 रुपए, 1 लाख 2000 रुपए या 3000 रुपए कुछ तो हिसाब आएगा। 1 लाख रुपए में एक वार्ड में क्या काम कर सकते हैं हम, कुछ भी नहीं हो सकता। 1 लाख रुपए में कुछ काम नहीं हो सकता।
2: ओमराजे निम्बालकर के जिले के शिवसेना यूबीटी विधायक कैलाश पाटिल भी मान रहे हैं कि फंड्स की कमी से दबाव बढ़ रहा है क्योंकि वो भी अपने इलाके में काम नहीं करा पा रहे हैं।
12: ये जो फैक्ट है वही फैक्ट हमने सभी ने एक्सेप्ट भी करने चाहिए। ये फंड का प्रॉब्लम सिर्फ एमपीज को ही नहीं है, सरपंच से लेके सरपंच हो, कॉरपोरेटर हो, पंचायत समिति मेंबर हो, जिला परिषद का मेंबर हो, एमएलए हो, एमपी हो, जो अपोजिशन के जो पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव है सभी को गवर्नमेंट में जो काम कर रहे लोग जो रूलिंग पार्टी में है सभी ब्लॉक करते हैं। उनको 1 रुपया भी फंड नहीं देने का और उनको उनकी तरफ से सभी तरफ से उनको ब्लॉक करके उनको ऐसा कुछ तो निर्णय डिसीजन ले, इसके लिए उनको प्रवृत्त करते हैं।
2: उद्धव के खेमे से शिंदे के पास आए सांसद निम्बालकर कह रहे हैं कि उनके ऊपर भ्रष्टाचार के जो आरोप लग रहे हैं वो बेबुनियाद है। इधर ऑपरेशन टाइगर से नाराज कांग्रेस भी बीजेपी सरकार पर हमलावर है।
13: वही सबको डर लगा हुआ है कि 2029 तक चुनाव प्रक्रिया होगी कि नहीं होगी, यह सबको डर लगा हुआ है। जिस तरह से बीजेपी लोकतांत्रिक व्यवस्था की रोज हत्या कर रही है और जिस तरह से माहौल बनते जा रहा है, इसलिए सबको डर है कि लोकतांत्रिक व्यवस्था का अंत 2029 तक खत्म होगा और इसलिए जिस तरह से बीजेपी काम कर रही है उसका अंदाज बनाया जाता है कि ये वास्तविक हो सकता है।
2: ऑपरेशन टाइगर को लेकर जूनियर शिंदे फ्रंट फुट पर बैटिंग करते नजर आ रहे हैं तो विपक्ष भी महायुति को बोल्ड करने की कोशिश लगातार कर रहा है।
14: क्या करना चाहिए, खुद में क्या गलतियां हैं, क्या खामियां हैं, ये जब ढूंढोगे, इंट्रोस्पेक्शन करोगे तो आपको उत्तर मिलेगा कि आपके सांसद, आपके विधायक आपको छोड़ के क्यों जा रहे हैं। सांसद जो कल तक तुम्हारे साथ था वो बहुत अच्छा था, हाँ, आज तुम्हारे से चला गया तो बुरा हो गया वो, और उसको गाली देने को शुरुआत, मतलब कुछ कुछ कुछ कुछ घंटों में तुरंत जो है गालियां देना शुरू हो गया। मतलब आप जरा सोचिए कि आपके पार्टी के लिए इस सांसद ने जिला परिषद चुनाव हो, विधायक के चुनाव हो, अलग अलग चुनाव में आपके सपोर्ट के बिना वहां पर मेहनत की, पार्टी को बढ़ाने का काम वहां पर किया, लेकिन आपने क्या किया, आपने तो कभी चुनाव में आए भी नहीं।
15: टाइगर नाम दे दिया है, ये काम तो चोरों का है, छुप करके लोगों को पटा कर पैसे दे करके, कहीं 50 करोड़, कहीं 80 करोड़ रुपया। मैं समझता हूँ ये जिन्होंने वोट दिया है अपने आइडियोलॉजी के ऊपर, उनके साथ बुरा धोखा है और जो लोग जा रहे हैं पार्टी छोड़ के उन्हें रिजाइन करना चाहिए और फिर से इलेक्शन लड़के जाना चाहिए, ये लॉ बनना चाहिए। मैं समझता हूँ यहाँ पे जो हो रहा है ना, ये पैसे का खेल हो रहा है और ये जो है डेमोक्रेसी की हत्या हो रही है।
2: फिलहाल ऑपरेशन टाइगर 3 की खबरों को लेकर विपक्ष डरा हुआ है। वहीं महायुति कह रही है कि उद्धव आरोप लगाने की जगह आत्ममंथन करें कि आखिर उनके सांसद और विधायक क्यों नहीं रहना चाहते।
16: फंड्स की कमी के बारे में बात करते हुए शिवसेना यूबीटी के बागी सांसद ओम राजे निम्बालकर, जो कि अब शिवसेना शिंदे फैक्शन में है, कहा कि 5 सालों में 25 करोड़ रुपए जो है एमपीस को मिलते हैं, उस हिसाब से 2500 जो उनके पास बूथ है तो वो एक बूथ में 1 लाख रुपए ही डेवलपमेंट के लिए दे पाते। वो अब सत्ता में शामिल हो चुके हैं, इसीलिए उनका कहना है कि जो 7 से 10 लाख रुपया प्रत्येक बूथ की एक तरह से रिक्वायरमेंट है अब वो पूरी कर पाएंगे। और इस तरह से सभी बागी सांसद जो है शिवसेना के वो यही कह रहे हैं कि फंड्स उनको नहीं मिल पा रहे थे और ये एक उनके बागी होने की बड़ी वजह है। सचिन सावंत के साथ मुस्तफा शेख, मुंबई आज तक।
0: और इसी के साथ मुंबई मेट्रो में हम यहां रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आज तक।
17: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।
18: Need better internet? Cox Internet has the fast, reliable speeds you're looking for. Perfect for seamless streaming, gaming, and working from home. And now get Cox 300 Meg Internet with a 2-year plan, price lock guarantee, plus equipment included. Oh yeah! So get your household up to speed. Switch to Cox Internet today. Taxes and fees excluded from price guarantee.
19: Hey, music lovers. Ready to take your listening to the next level? Upgrade to TuneIn Premium for curated music channels that fit every mood. Listen with less ads so you can keep the music going. So you get more of today's hits. More country roads. Classic rock. Plus, enjoy commercial-free news, ESPN Radio, and more with Premium Upgrade to TuneIn Premium. And start listening now.

एक एनकाउंटर जिस पर अपनों के बीच ही घिर गई है सम्राट सरकार, एक एनकाउंटर जिस पर बीजेपी के भीतर ही मोर्चाबंदी हो रही है। 5 दिन पहले यानी 17 जून को भरत तिवारी पर बिहार पुलिस गोलियां बरसाती है और अब 5 दिन बाद खुद बिहार पुलिस और बिहार सरकार पर सवालों की बौछार हो रही है। एक बड़ा और संगीन सवाल भरत तिवारी के इस वीडियो की बुनियाद पर भी हो रहा है जो अभी अभी सामने आया है। तो क्या भरत तिवारी को अंदेशा था कि उसकी मौत करीब आ रही है? क्या उसे एहसास हो गया था कि वो इस तरह एनकाउंटर में मारा जाएगा? भरत तिवारी की शख्सियत और अतीत विवादों से भरा है, इसलिए इस वीडियो को लेकर भी दावा जोखिम भरा हो सकता है। बीजेपी के भीतर इस एनकाउंटर को लेकर किस कदर बेचैनी है, ये आप सम्राट सरकार के 2 मंत्रियों के बयानों से समझ सकते हैं। इस एनकाउंटर पर सवाल उठाने वाले, आक्रोश जाहिर करने वाले सिर्फ ये 2 मंत्री ही नहीं है, बीजेपी नेताओं की लंबी फहरिस्त है जो खुलकर नाराजगी जता रहे हैं। रोहित सिंह, पटना, आज तक।

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।
1: महाराष्ट्र में ऑपरेशन टाइगर को अंजाम देने के बाद एकनाथ शिंदे सियासत की पिच पर फ्रंट फुट पर बैटिंग करते हुए नजर आ रहे हैं, जबकि उद्धव और आदित्य ठाकरे बैकफुट पर नजर आ रहे हैं। इसी बीच विधानसभा से शिंदे की गैर मौजूदगी पर विपक्ष ने जमकर हंगामा करते हुए वॉकआउट कर दिया। जूनियर ठाकरे ने पूछा कि आखिर शिंदे जनता के मुद्दों पर भी जवाब देने से क्यों कतराते हैं। इस पर शिंदे ने कहा है कि पार्टी में बगावत के बाद उद्धव खेमा अब सदमे में है।
2: छह सांसदों की बगावत से उद्धव ठाकरे बैकफुट पर नजर आ रहे हैं, लेकिन जूनियर ठाकरे इस मामले में बेहद आक्रामक रुख अपना रहे हैं। आज आदित्य ठाकरे और एकनाथ शिंदे दोनों ने महाराष्ट्र विधानसभा में एक दूसरे पर जोरदार हमले किए। विपक्ष ने डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे पर अपने विभागों के काम से बचने का आरोप लगाते हुए सदन से वॉकआउट कर दिया। जयंत पाटिल, विजय वडेट्टीवार, नाना पटोले और आदित्य ठाकरे जैसे नेताओं ने आरोप लगाए कि शिंदे गैर कानूनी तरीके से अपने विभाग के सवाल दूसरे मंत्रियों को दे देते हैं और खुद सदन से गैर हाजिर हो जाते हैं।
3: बहिष्कार का कारण यही आज हमने जो वॉकआउट किया इसलिए किया है क्योंकि हर अधिवेशन देखें तो 2022 से जब से सरकार को इन्होंने गिराया, गद्दारों ने गिराया, तो हर अधिवेशन में एकनाथ शिंदे खुद की जिम्मेदारी को टालते हैं। जो भी सवाल आते हैं, जो हम सवाल पूछते हैं क्वेश्चन आर में, ये सारे सवाल जनता के, ये महाराष्ट्र के सवाल है और उनका जवाब अपेक्षित है। लेकिन हर एक अधिवेशन में आप देखें, हर एक सेशन में देखें, हर एक सत्र में देखें, तो ये किसी ना किसी को अधिवेशन मंत्री बना दे गए कि आज ये जवाब देंगे, आज वो जवाब देंगे। तो आपने क्यों रखा है वो डिपार्टमेंट भाई? वो डिपार्टमेंट भी दे दो ना आप उनको परमानेंटली, लेकिन पैसा निकालने के लिए, घोटाला करने के लिए, भ्रष्टाचार करने के लिए खुद के पास डिपार्टमेंट रखते हो और जब जवाब देने का समय आता है उस वक्त आप भाग जाते हो। अगर आपको जवाब देना आता नहीं है तो क्यों बनते उसके मंत्री? अगर आज की स्थिति में देखें तो मुख्यमंत्री महोदय स्वयं खुद के जो डिपार्टमेंट से उनका जवाब देते हैं, अगर सीएम साहब दे सकते हैं तो आप क्यों नहीं दे सकते?
2: विधानसभा स्पीकर राहुल नार्वेकर ने विपक्ष को जवाब देते हुए साफ किया कि कार्यवाही में विधानसभा के नियमों का सख्ती से पालन किया गया है। हालांकि फैसले से नाखुश विपक्ष ने वॉकआउट कर दिया, जिसके कुछ देर बाद शिंदे सदन में आए और विपक्ष के आरोपों का चुन चुन कर जवाब दिया। शिंदे बोले, उद्धव की बची खुची सेना ऑपरेशन टाइगर के बाद से सदमे में है।
4: ये बात आप उनको पूछिए, मुझे पूछने की आवश्यकता नहीं। कल का झटका उनको बहुत जोर का बैठा है, आज सदन में उसके परिणाम दिख रहे थे, उनका संतुलन बिगड़ चुका है।
2: शिंदे ने आदित्य ठाकरे पर पलटवार करते हुए कहा कि जिनके घर शीशे के होते हैं वो दूसरों पर पत्थर नहीं फेंका करते।
4: मैंने कल कहा कि ये छह सांसद शिवसेना में शामिल हुए, आपके सामने लाया था ना उन्हें, अभी लोकसभा लीगल प्रोसीडिंग कंप्लीट हो चुकी है। लोकसभा अध्यक्ष जी के पास जो भी कानूनी कार्रवाई करनी थी, जो भी घटनात्मक कार्यवाही उनके पास करनी थी, वो सब पूरी हो चुकी है और इसलिए कोई भी कुछ भी कहे आप उस पर भरोसा मत रखो।
2: शिंदे ने बताया कि महायुति सरकार ने मुआवजे के क्राइटेरिया को दोगुना करके किसानों की मदद के लिए 45,000 करोड़ रुपए दिए हैं। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र विकास के पद पर लगातार बढ़ रहा है, जबकि जनता में विपक्ष की विश्वसनीयता कम होती जा रही है।
5: आज जब क्वेश्चन आर शुरू था और जब सवाल पूछे गए तो वहां पर उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे उनके जवाब देने के लिए मौजूद नहीं थे और इसी मुद्दे को लेकर विपक्ष आक्रामक हुआ। आदित्य ठाकरे ने एकनाथ शिंदे के नाम को लेकर सवाल पूछे और वो उपस्थित क्यों नहीं है, वो अपने ही खाते के जो सवाल है उस पे जवाब क्यों नहीं दे रहे, क्या उन्होंने खाते सिर्फ घोटाले के लिए अपने पास रखे हैं, ऐसे सवाल पूछे, जिसके बाद विपक्ष ने विधानसभा में वॉकआउट कर दिया। और वॉकआउट करने के बाद कुछ ही समय में उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे सभागृह में आए, उन्होंने उन सारे सवालों के जवाब देने की कोशिश की और साथ ही साथ पलटवार भी किया। उन्होंने कहा कि जिनके घर शीशे के होते वो दूसरों पर पत्थर नहीं फेंका करते और उन्होंने ये भी कहा कि कहीं ना कहीं आदित्य ठाकरे और उनकी शिवसेना गुट को जोर का झटका धीरे से लगा है और इसीलिए वो तिल मिलाकर उठे हुए है। अब देखना ये जरूरी है कि इस बगावत के बाद क्या मानसून सत्र के महाराष्ट्र के विधानसभा में भी उसके परिणाम इसी तरह देखने को मिलेंगे। कैमरा पर्सन सचिन सावन के साथ मैं ऋत्विक भालेकर, मुंबई आज तक।
1: और इसी के साथ मुंबई मेट्रो में बस इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम बड़ी और अहम खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।
0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच। प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।

0: क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com। क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।

वर्षों का हो हिसाब। ब्रजेश पाठक ने मौत पर राजनीति न करने की नसीहत दी। चार आरोपियों को न्यायिक हिरासत। राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में एसआईटी ने यूपी सरकार को सौंपी प्रारंभिक रिपोर्ट। फिलहाल किसी को क्लीन चिट नहीं, कुछ कर्मचारियों पर केस की सिफारिश। एसपी सांसद अवधेश प्रसाद ने सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के तहत जांच की मांग की। भोजपुर के भरत तिवारी एनकाउंटर पर एक्शन। जगदीशपुर के एसडीपीओ शाहपुर थानाध्यक्ष समेत कई पुलिसकर्मियों पर एफआईआर। बवाल के बाद बैकफुट पर बिहार पुलिस। नीट पर आज तक से बोले धर्मेंद्र प्रधान, लीग के मुजरिमों को छोड़ेंगे नहीं। दोबारा गड़बड़ी रोकने की पूरी कोशिश। राहुल गांधी पर लगाया छात्रों को भड़काने का आरोप। पद्म पुरस्कारों से 65 हस्तियां सम्मानित। शिबू सोरेन को मिला मरणोपरांत पद्म भूषण। रोहित शर्मा, अलका याग्निक, ममूटी को राष्ट्रपति ने दिया सम्मान।

लखनऊ अग्निकांड में बड़ा एक्शन, 15 मौतों के बाद 4 की गिरफ्तारी। आरोपियों में से 3 आरोपियों को जेल भेजा गया, एक हॉस्पिटल में भर्ती। लखनऊ अग्निकांड में फॉरेंसिक एसआईटी और एलडीए की जांच तेज हुई। चीफ इंजीनियर मानवेंद्र सिंह की अगुवाई में टीम ने कॉम्प्लेक्स का निरीक्षण किया, बिल्डिंग में कई खामियां मिली। लखनऊ अग्निकांड मामले में एसआईटी ने पुलिस दमकल विभाग के अधिकारियों के बयान भी दर्ज किए, 7 दिन में आएगी रिपोर्ट। अखिलेश यादव ने योगी सरकार पर निशाना साधा, कहा सरकार के पास सभी नक्शे और एनओसी की जांच होनी चाहिए। यूपी के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने अखिलेश पर पलटवार करते हुए कहा 15 लोगों की मौत पर राजनीति न करे एसपी अध्यक्ष। लखनऊ अग्निकांड पर मुख्यमंत्री का सख्त संदेश, बोले फायर सेफ्टी मानकों से कोई समझौता नहीं होगा, सभी जिलों में विशेष टीम गठित करके फायर सेफ्टी ऑडिट अभियान चलाया जाएगा। लखनऊ अग्निकांड के बाद दिल्ली के मुखर्जी नगर पर भी उठे सवाल, सक्रिय गलियां और फायर सेफ्टी की कमी के बीच हजारों छात्रों की सुरक्षा पर चिंता। लखनऊ अग्निकांड के बाद कई राज्यों में फायर सेफ्टी विभाग की जांच तेज हुई, नोएडा में बिना रजिस्ट्रेशन चल रहे 2 कोचिंग सेंटर्स को सील किया गया। गाजियाबाद में भी फायर विभाग का बड़ा अभियान, कोचिंग सेंटर्स की जांच में मिली गंभीर खामियां, कई संस्थानों को नोटिस जारी किए गए। प्रयागराज में भी सुरक्षा मानक पूरे न होने पर खान सर की खान ग्लोबल क्लासेस सील की गई, छात्रों को बाहर निकालकर की गई कार्रवाई। भोजपुर के भरत तिवारी एनकाउंटर पर एक्शन, जगदीशपुर के एसडीपीओ शाहपुर थाना अध्यक्ष समेत कई पुलिसकर्मियों पर एफआईआर, बवाल के बाद बैकफुट पर बिहार पुलिस। भरत भूषण तिवारी एनकाउंटर पर सियासत तेज हुई, कांग्रेस नेता अखिलेश प्रसाद सिंह ने सुनियोजित हत्या बताते हुए डीएसपी ने ये साजिश रची। अखिलेश प्रसाद सिंह ने सरकार से भरत एनकाउंटर मामले की जांच रिटायर्ड जज से बजाय पटना हाईकोर्ट के जज से करवाने की मांग की, साथ ही मृतक के परिवार को 1 करोड़ मुआवजा देने की भी मांग की। बिहार में बढ़ते अपराध पर प्रशांत किशोर का बड़ा हमला, सीएम सम्राट पर लगाए गंभीर आरोप, का अपराधी आदमी है मुख्यमंत्री सम्राट। पटना पीएमसीएच में स्वास्थ्य मंत्री निशांत कुमार का औचक निरीक्षण, प्रिंसिपल के अनुपस्थिति में कड़ी कार्रवाई के निर्देश। मध्य प्रदेश में कांग्रेस ने मुख्यमंत्री मोहन यादव पर उज्जैन में जमीन खरीदने के लगाए हैं गंभीर आरोप, मांगा 335 करोड़ लैंड बैंक का जवाब। कांग्रेस नेता जीतू पटवारी ने सीएम मोहन के इस्तीफे और सुप्रीम कोर्ट जज से जांच की मांग की है। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने एक्स पर लिखा, बोले एमपी में डबल इंजन की सरकार में लूट का इंजन तेज रफ्तार से चल रहा है। रुद्रप्रयाग के नगरासू गुरुद्वारे में 4 दिन से चल रहा गतिरोध समाप्त हुआ, 6 से उतरे निहंग सिख वार्ता के बाद शांतिपूर्ण ढंग से लौटे। हिमाचल में एचआरटीसी कर्मचारियों की हड़ताल पर सरकार का बड़ा एक्शन, 6 महीने के लिए लागू किया इसमा, हड़ताल पर रहेगी रोक, उल्लंघन करने वालों पर कार्रवाई। टीएमसी ने 24 सदस्य राष्ट्रीय कार्य समिति का पुनर्गठन किया, ममता बनर्जी फिर से बनी चेयरपर्सन, अभिषेक बनर्जी महासचिव नियुक्त। टीएमसी विधायक कुणाल घोष का बड़ा बयान, का असली टीएमसी ममता बनर्जी है और ममता बनर्जी के संघर्ष से ही ये पार्टी बनी है। कुणाल घोष ने अभिषेक बनर्जी पर निशाना साधते हुए उनसे करीबी सहयोगियों पर मनमानी चलाने के भी आरोप लगाए, बोले जो टीएमसी से दूर जा रहे हैं उनके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। दक्षिण 24 परगना में प्रशासन की बड़ी कार्रवाई, अवैध निर्माण बताए जा रहे कई टीएमसी के पार्टी के कार्यालयों को ध्वस्त किया गया, पुलिस और नगर पालिका की मौजूदगी में बुलडोजर एक्शन। नंदीग्राम चुनाव नतीजों में हेरफेर का आरोप के मामले में ममता की सरकार पर हाईकोर्ट में सीसीटीवी और वीवीपैट सुरक्षित रखने की मांग की गई। महाराष्ट्र विधानसभा का मानसून सत्र, मुस्लिम महिलाओं की सुरक्षा पर जोरदार बहस के बीच

महाराष्ट्र में यूसीसी लागू करने की मांग तेज। महाराष्ट्र के गृह राज्य मंत्री योगेश कदम ने बताया, महाराष्ट्र में यूसीसी लागू करने के लिए सेवानिवृत्त हाईकोर्ट जज की अध्यक्षता में समिति गठित, सरकार ने जताया समर्थन। एकनाथ शिंदे बोले, बालासाहेब ठाकरे भी समर्थन में थे, 6 सांसदों के शामिल होने की औपचारिकताएं पूरी कर ली गई हैं। बीजेपी विधायक देवयानी फरांडे ने किया दावा, बोली महाराष्ट्र में 3 तलाक पर बैन ठीक से लागू नहीं हो रहा, जिसके लिए यूसीसी लागू करना बहुत जरूरी। यूसीसी और ट्रिपल तलाक को लेकर बीजेपी विधायक देवयानी फरांडे का बहुविवाह और महिला उत्पीड़न के मामलों का हवाला देते हुए उन्होंने कहा, सख्त कानून जरूरी। महाराष्ट्र विधानसभा में मंत्री नितेश राणे का विवादित बयान, बोली यूसीसी का विरोध करने वालों को पाकिस्तान चले जाना चाहिए, विपक्ष पर संविधान के दुरुपयोग के आरोप लगाए। महाराष्ट्र में समाजवादी पार्टी के विधायक अबू आजमी का सरकार पर बड़ा आरोप, बोले राजनीतिक लाभ के लिए हिंदू मुस्लिम्स के बीच नफरत फैलाई जा रही है। पुणे में बिजनेसमैन की बेटी ने प्रेमी के साथ मिलकर मंगेतर को 400 फीट गहरी खाई में धकेल दिया, नवंबर में शादी थी। पुणे हत्याकांड में आरोपी सिया गोयल और चेतन चौधरी को कोर्ट ने 7 दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया है। गुजरात में गिर सोमनाथ के वेरावल में सरकारी जमीन पर बड़ा बुलडोजर एक्शन, जल निकासी मार्ग से हटाया गया अवैध अतिक्रमण, प्रशासन ने 3291 वर्ग मीटर भूमि को मुक्त कराया। राष्ट्रपति भवन में पद्म सम्मान समारोह, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने देश की 65 हस्तियों को पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया। 56 हस्तियों को पद्मश्री, 7 को पद्म भूषण और 2 को पद्म विभूषण, क्रिकेटर रोहित शर्मा को पद्मश्री से सम्मानित किया गया। साउथ सुपरस्टार ममूटी और बॉलीवुड सिंगर अलका याग्निक को पद्म भूषण, टेनिस खिलाड़ी विजय अमृतराज को पद्म भूषण। जीएमएम के संस्थापक दिवंगत शिव सोरेन को मरणोपरांत पद्म भूषण, हॉकी खिलाड़ी सविता पूनिया पद्मश्री से सम्मानित। पूर्व न्यायाधीश केटी थॉमस को पद्म विभूषण, मलयालम पत्रकार पी नारायण पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किए गए। अयोध्या से सीधे जुड़ेगा प्रयागराज, श्रृंगवेरपुर में बन रहा है राम वन गमन मार्ग, जल्द होगा उद्घाटन। गांधीनगर में अगरिया समुदाय के बच्चों की शिक्षा के लिए गुजरात सरकार की अनोखी पहल, स्कूल ऑन व्हील्स रणशाला प्रोजेक्ट की शुरुआत। उप मुख्यमंत्री हर्ष संघवी ने 18 रणशाला बसों का लोकार्पण किया है, बसों में डिजिटल लर्निंग संसाधन समेत तमाम सुविधाएं मौजूद। गुवाहाटी के कामाख्या मंदिर में धार्मिक उत्सव अमुबाची महायोग का भव्य शुभारंभ हुआ, देश विदेश से भारी संख्या में पहुंच रहे श्रद्धालु। अमरनाथ यात्रा को लेकर घाटी में सुरक्षा पुख्ता हुई, जम्मू में एनएसजी कमांडोज ने मॉक ड्रिल की, 3 जुलाई से शुरू हो रही है पवित्र यात्रा। 27 करोड़ रुपए के ऋषभ पंत 15 करोड़ में दिल्ली कैपिटल्स लौटे, 13.5 करोड़ रुपए में कुलदीप यादव लखनऊ सुपर जायंट्स में शामिल हुए, दोनों ही टीमों के बीच हुआ ट्रेड। वैभव सूर्यवंशी को मिली टीम इंडिया की 3 नंबर की जर्सी, कहा खुशी बयां करने के लिए शब्द नहीं, आयरलैंड इंग्लैंड दौरे पर रवाना। रोहतास में टीम इंडिया के तेज गेंदबाज आकाशदीप की शादी की रस्में, हल्दी मेहंदी का वीडियो वायरल हुआ, आज वाराणसी में होगा शादी समारोह। दिल्ली एनसीआर में अचानक से बदला मौसम का मिजाज, तेज हवाओं के साथ चली धूल भरी आंधी। सड़क पर वाहन चालकों और राहगीरों को मिली भारी परेशानी, थोड़ी देर के लिए आम जनजीवन प्रभावित हुआ। 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चली हवाएं, चारों ही तरफ धूल की मोटी परत। धूल भरी आंधी की वजह से दिल्ली में दिन में ही छा गया था अंधेरा, कई इलाकों में उठा धूल का गुबार। तेज हवाओं और धूल भरी आंधी के बाद दिल्ली में झमाझम बारिश हुई, लोगों को भीषण गर्मी से राहत मिली। गाजियाबाद में भी चली धूल भरी आंधी, दिन में छाया अंधेरा जिसके कारण विजिबिलिटी काफी कम थी। गुरुग्राम में भी मौसम ने करवट ली, तेज आंधी की वजह से सड़कों पर छा गई थी धूल। सिक्किम के रंगपो रोरा थांग मार्ग पर भारी भूस्खलन हुआ, रास्ता पूरी तरह से बंद होने से प्रशासन के दूसरे रास्तों से जाने की सलाह। नेपाल में भारी बारिश के बाद उफान पर कोसी नदी डैम के 23 फाटक खोले गए, 1,86,000 क्यूसेक पानी छोड़े जाने से बिहार में अलर्ट। कोलकाता में मूसलाधार बारिश का कहर, हाईकोर्ट समेत कई जगहों पर गिरे पेड़, कई इलाकों में जलभराव से यातायात बाधित। महाराष्ट्र के कल्याण में मॉनसून की जोरदार एंट्री, झमाझम बारिश के बाद गर्मी उमस से राहत मिली, सड़कों पर बारिश का आनंद लेते हुए नजर आए लोग। गुजरात के नवसारी समेत कई इलाकों में दिन भर रुक रुक कर हो रही है बारिश, हिल स्टेशन सापुतारा में पहाड़ों पर छाई धुंध, बादलों के नजारे ने पर्यटकों को आकर्षित किया। हरिद्वार में बैटरी रिक्शा शोरूम में भयंकर भीषण आग लगी, शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगने की आशंका, सभी कुछ जलकर खाक। अजमेर में चलती हुई बस में अचानक से लग गई थी आग, ड्राइवर की सूझबूझ से 37 यात्रियों की जान बची, शॉर्ट सर्किट की वजह से हादसे की आशंका। लखनऊ के ठाकुरगंज में एक स्कूल में लगी थी भीषण आग, एक कमरे से उठी थी लपटों के बीच अफरा तफरी मची।
आगरा के आकाश इंस्टीट्यूट में बेसमेंट में धुआं उठने पर मचा हड़कंप, सैकड़ों छात्र सुरक्षित बाहर निकाले गए। आरा के नवादा थाना परिसर में लगी आग, मालखाने में रखा हुआ सामान जब्त किया गया, सब कुछ जलकर खाक, दमकल की टीम ने आग पर काबू पाया। साउथ दिल्ली के मेहरौली इलाके में 11 साल की बच्ची के साथ किडनैपिंग, रेप और मर्डर की वारदात। दिल्ली से किडनैपिंग करके गुरुग्राम के जंगल में किया गया रेप और फिर बेरहमी से हत्या कर डाली गई। पुलिस ने आरोपी को हाफ। मेरठ में चेकिंग के दौरान तेज रफ्तार कार ने पुलिसकर्मियों और थाना मोबाइल जीप को भीषण टक्कर मारी। हादसे में 7 पुलिसकर्मी घायल हुए, 2 आरोपी गिरफ्तार। कानपुर में आरपीएफ की सूझबूझ से बड़ा हादसा टला, चलती हुई ट्रेन से गिरते यात्री की बचाई गई थी जान। रांची में दिनदहाड़े चेन स्नैचिंग की कोशिश को नाकाम किया गया, स्थानीय लोगों ने एक आरोपी को दबोचा भी, दूसरा बदमाश फरार हुआ। कोटा बाल सुधार गृह में गंभीर लापरवाही का मामला सामने आया, धड़ल्ले से उपयोग हो रहे हैं मोबाइल, शराब और नॉनवेज पार्टी भी चल रही थी। हिमाचल के सोलन सब्जी मंडी के पास भयंकर सड़क हादसा, तेज रफ्तार कार अनियंत्रित होकर पुल के नीचे गिरी, सभी सवार सुरक्षित। अमरावती में पारिवारिक विवाद में मेहमान बन गया पिता, बेटा बहू को कार से कुचलने की कोशिश में आरोपी गिरफ्तार, सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई घटना। अमरावती में बड़ा साइबर घोटाला उजागर, गरीबों के बैंक खातों का इस्तेमाल करके करोड़ों की ठगी, गोवा में छापेमारी के बाद 12 की गिरफ्तारी। छत्रपति संभाजी नगर में खाद्य विभाग की बड़ी कार्रवाई, बिना लाइसेंस पैकेज्ड पीने के पानी के प्लांट पर छापेमारी, लाखों का स्टॉक जब्त किया गया। जामनगर में मास्क पहनकर वाहन चोरी करने वाले गैंग को सीसीटीवी कैमरे में कैद किया गया, सुमन मंदिर के पास लगातार वारदात के बाद दहशत थी। गुजरात के द्वारका में अवैध खनिज परिवहन पर बड़ी कार्रवाई, एसओजी ने 5 ट्रक जब्त किए, 77 लाख रुपए से ज्यादा का माल कब्जे में लिया गया। मुंबई के सनातन मठ पहुंचे बॉलीवुड के सुपरस्टार टाइगर श्रॉफ, पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के दर्शन किए, एक्टर ने बाबा बागेश्वर को भेंट किया अंगवस्त्र। हुमा कुरैशी का आगामी फिल्म बेबी डू डाई डू का धमाकेदार ट्रेलर रिलीज किया गया, 3 जुलाई को फिल्म सिनेमाघरों में रिलीज होगी। फिल्म रो में इमरान हाशमी की एंट्री, फिल्म का पहला लुक जारी, अगले साल 2027 में फिल्म रिलीज की जाएगी। निधि दत्त की फिल्म बॉर्डर 3 का ऐलान, सनी पाजी की होगी दमदार वापसी, जनरल हरबख्श सिंह जिनकी जिंदगी पर बनेगी बॉर्डर 3। फिल्म महाप्रभु जगन्नाथ का ट्रेलर लॉन्च किया गया, 10 जुलाई को 3 भाषाओं में सिनेमाघरों में रिलीज की जाएगी। कच्चे तेल की कीमतें घटने से सरकारी तेल कंपनियों का मार्जिन पहले के मुकाबले बेहतर हुआ है, एलपीजी पर घाटा जारी है, पुराने नुकसान की भरपाई के बाद आम आदमी को सस्ता ईंधन मिलने का रास्ता साफ होगा। मेमोरी चिप्स की कमी और बढ़ती कीमतों की वजह से फेस्टिव सीजन में स्मार्टफोन्स पर भारी डिस्काउंट की उम्मीद नहीं है, पहले ही इस साल फोन के दाम अब तक 30-40% बढ़ चुके हैं। आलिनो के असर से कम बारिश और चारे की कमी की आशंका के बीच दूध उत्पादन प्रभावित होने की बात, बीते महीने 2-3% तक महंगा होने के बाद जुलाई अगस्त में फिर से बढ़ सकते हैं दूध के दाम। अमेरिका ने ईरान से तेल खरीदारी के लिए 60 दिनों की मियाद दी है, 21 अगस्त तक भारत समेत कई देशों में बिना पाबंदी के ईरानी तेल खरीद सकेंगे, जिससे तेल की कीमतें कम होने का भरोसा है। FSSAI ने 14 कंपनियों को भ्रामक विज्ञापन और गलत लेबलिंग के लिए नोटिस भेजा है, कुछ ब्रांड्स पर मैदे का ऑर्गेनिक और गन्ने के रस को नो एडेड शुगर बताने के आरोप लगने के बाद की गई है कार्रवाई। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का बड़ा बयान, का ईरान भविष्य में होने वाले सभी परमाणु निरीक्षणों के लिए हुआ है पूरी तरह से सहमत, हॉर्मुज को लेकर कहा पूरी तरह खुला रहने पर सहमति जताई गई है। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पजिश्कियान पहुंचे, पाकिस्तान अमेरिका के साथ चल रही शांति वार्ता को लेकर बातचीत होगी। संयुक्त राष्ट्र में मौजूद ईरान के राजदूत का बड़ा बयान, कहा अगर इसराइल लेबनान और लेबनान में हिजबुल्ला पर करता है हमला तो ईरान देगा इसका जवाब। इसराइल के पूर्व प्रधानमंत्री और विपक्षी नेता नेफ्टाली बेनेट ने बेंजामिन नेतन्याहू के दावों की उड़ाई धज्जियां, बेनेट ने दावा किया है कि लेबनान में इसराइली सैनिकों के हाथ पूरी तरह से बांध दिए गए हैं और उनके सिर पर मौत का खतरा मंडरा रहा है। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने यूक्रेन से शांति वार्ता पर बड़ी बात कही, कहा रूस के आम नागरिकों पर लगातार हो रहे हमले और इसे देखते हुए राष्ट्रपति जेलेंस्की के साथ बातचीत का कोई मतलब नहीं है। रूस के तेल ठिकानों पर लगातार हो रहे यूक्रेनी हमलों के बाद क्रीमिया में गहराया ऊर्जा संकट, तेल की कमी के कारण अंधेरे में छाया सेवास्तोपोल शहर, सार्वजनिक परिवहन, दुकान और स्ट्रीट लाइट्स के रात को 8 बजे के बाद बंद करने का फैसला। उत्तर कोरियाई नेता किम जोंग उन ने परमाणु हथियारों को बढ़ाने की कही है बात, कहा आज दुनिया अमेरिका फोर्स विचार, यूक्रेनी नव नाजीवाद और जापानी सैन्यवाद जैसे आधुनिक राष्ट्रवाद को फैलते हुए देख रही है। रोमानिया में गहराया राजनीतिक संकट, संसद में विश्वास मत हासिल करने के विफल रहे प्रधानमंत्री पद के नामित उम्मीदवार
एंड्रिएट वेस्तोआ रोमानिया के राष्ट्रपति अब नए प्रधानमंत्री का नामांकन करेंगे। फ्रांस में गर्मी ने तोड़े तमाम रिकॉर्ड, पश्चिमी शहर नांत में तापमान 41 डिग्री के पार दर्ज किया गया। भीषण गर्मी के बाद कई शहरों में जारी है अलर्ट। जबरदस्त तूफान की चपेट में आया रूस का यूराल शहर। तूफान के कारण 16 लोग हुए घायल, कई घरों के साथ गाड़ियां भी तबाह हुई, बिजली की लाइनें भी क्षतिग्रस्त।

0: नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप और ब्लैक एंड व्हाइट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। लखनऊ में एक दिन पहले हुए अग्निकांड में 15 युवाओं की मौत हो गई। हर बार की तरह लाशें गिनने के बाद अब पूरा देश जाग चुका है। प्रशासन की नींद खुल गई है, फायर सेफ्टी की टीमें सक्रिय है, नोटिस बांटे जा रहे हैं, कड़े बयानों की राजनीति शुरू हो चुकी है। लेकिन सवाल यह है कि यह जागरूकता हमेशा किसी त्रासदी के बाद ही क्यों आती है? ये जो जागना है नींद से, वो चंद दिनों के लिए ही क्यों आती है? लखनऊ की इस बिल्डिंग में लापरवाही की गिनती करेंगे तो थक जाएंगे। रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी में ट्रेनिंग सेंटर, बिजली की ओवरलोडिंग, ऑटोमेटिक दरवाजे, आग लगते ही बिजली कटी और ये ऑटोमेटिक गेट लॉक हो गए, खुले ही नहीं। ये सिर्फ लखनऊ की बात नहीं है, मालवीय नगर, विवेक विहार, ओल्ड राजेंद्र नगर के हादसों में भी लोग इसी वजह से बाहर नहीं निकल पाए क्योंकि ऑटोमेटिक डोर लॉक हो गया। हैरानी की बात देखिए, लोग स्टेटस सिंबल और सुविधा के नाम पर ऑटोमेटिक गेट तो लगवा लेते हैं, लेकिन यही अक्सर ऐसे हादसों के वक्त लोगों की मौत की वजह बनते हैं। सवाल यह है कि आखिर इन्हें रेगुलेट करने के लिए देश में कोई कड़ा नियम क्यों नहीं है? और इसके बाद आपको बताएंगे कि अगर आप लखनऊ जैसे हादसों से बच भी जाएं, तो ब्रांडेड दवाओं के धोखे से कौन बचाएगा? आज बीमार होने पर डॉक्टर की लिखी दवाई खा ली, सोते हैं कि ठीक हो जाएंगे, लेकिन ठीक कैसे होंगे जब क्वालिटी टेस्ट में ब्रांडेड कंपनीज की 157 दवाएं फेल हो गई? नकली दवाएं तो नुकसान कर ही रही हैं, असली के नाम पर भी धोखा बेचा जा रहा है। इसके बाद आप टीएमसी में टूट के बाद पार्टी के खजाने को लेकर शुरू हुए विवाद के बारे में बताएंगे। अब टीएमसी का खजाना विवादों में है, दोनों ही पक्ष पार्टी फंड पर दावा कर रहे हैं। आज आपको बताएंगे कि इस खजाने पर हक किसका है, और आखिर में आपको बताएंगे कि आपकी गाड़ी में आप शुद्ध पेट्रोल डलवाना चाहते हैं या एथेनॉल मिला हुआ पेट्रोल, ये कौन तय करेगा? क्या गाड़ी में एथेनॉल डालना आपकी मर्जी होनी चाहिए या फिर मजबूरी? लेकिन आइए शुरुआत करते हैं ब्लैक एंड व्हाइट की एक ऐसी खबर से जिसकी चर्चा शायद ही कहीं हो रही है, और होगी भी कैसे। हमने इस देश में हर चीज पर मिलावट का दौर देखा है, दूध, पनीर, सब्जी, खाने, मिठाई की चीजें, जितनी भी चीजें, सब में मिलावट का दौर देखा, और अब तो अभ्यस्त भी हो गए हम, चर्चा भी कर लेते हैं कि पता नहीं मिलावटी है क्या है, चलो खा लेते हैं। हमारे देश में राजनीति की खबरें, नेताओं के बयान, आरोप प्रत्यारोप, सियासी बयानबाजी अक्सर बड़ी खबर मानी जाती है, लेकिन जो खबर सीधे आपके घर, आपकी जेब, आपकी सेहत, आपकी जिंदगी से जुड़ी होती है, वो अक्सर सुर्खियों से बाहर रह जाती है। लेकिन आज आप ब्लैक एंड व्हाइट में रहिएगा हमारे साथ, क्योंकि हम आपकी बात आज करने वाले हैं। हम अपने विश्लेषण की शुरुआत करने जा रहे हैं जिस खबर से, वो देश के करोड़ों परिवारों से जुड़ी हुई खबर है। ये खबर उन ब्रांडेड दवाइयों के बारे में है जिन्हें लोग डॉक्टर की सलाह पर और पूरे भरोसे के साथ मेडिकल स्टोर से खरीदते हैं। ये सोचकर खरीदते हैं कि कम से कम दवा की गुणवत्ता पर तो कोई सवाल नहीं होगा, लेकिन अब उसी भरोसे पर सवाल खड़े हो गए। भारत सरकार की संस्था है सेंट्रल ड्रग्स स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन, जिसने अपनी ताजा रिपोर्ट में खुलासा किया है कि मई महीने में 157 दवाइयां क्वालिटी टेस्ट यानी गुणवत्ता के मामले में फेल हो गई। क्वालिटी टेस्ट में फेल होने का मतलब सिर्फ इतना ही नहीं है कि ये दवाइयां तय मानकों पर खरी नहीं उतरती। कई मामलों में पाया गया कि इन दवाओं में मौजूद ड्रग सॉल्ट की मात्रा निर्धारित मानकों के अनुरूप नहीं है, इनमें सॉल्ट कॉम्बिनेशन भी सही नहीं था। कल्पना कीजिए, यानी लोग जिन दवाइयों को इलाज समझकर खा रहे थे, उन दवाइयों की गुणवत्ता ही सवालों के घेरे में थी। सबसे चिंता की बात तो यह है कि सूची में ऐसी दवाइयां भी शामिल हैं जो लगभग हर घर में इस्तेमाल होती हैं। और आज इन दवाइयों को मैं साथ भी लेकर आई हूं, और मैं चाहती हूं कि आप भी जरा एक बार देख लें कि कहीं ये दवाइयां जो मेरे साथ यहां पर मौजूद है, हम एक एक करके आपको दिखाएंगे, ये दवाइयां आपके घर में भी तो नहीं है। तीन दवाएं हम लेकर आए हैं जिसमें भारत सरकार की एजेंसी बता रही है कि इसमें जो सॉल्ट्स का इस्तेमाल हो रहा है, जो मानक है, जो मापदंड है क्वालिटी के, वो सही नहीं पाए गए हैं। और ये जानते हैं, ये जो तीन दवाएं मैं लाई हूं आपको दिखाने वाली हूं, ये प्रिस्क्रिप्शन एंटीबायोटिक है। ये बैक्टीरियल इंफेक्शन के लिए फटाफट डॉक्टर्स दिखते हैं बहुत सारे लोगों को, और ऐसा मुमकिन है कि आपने भी ये दवा खाई हो। पहली बार जो दवा हम आपको दिखा रहे हैं ये है ऑगमेंटिन 625। ऑगमेंटेन 625 जो इस वक्त आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं, मुझे ऐसा लगता है कि कई बार हो सकता है डॉक्टर ने आपको दी है, हो आपके बच्चे के लिए प्रिस्क्राइब की हो, तो ये है ऑगमेंटेन 625 पहली दवा। बैक्टीरियल इन्फेक्शन के लिए डॉक्टर्स फौरन इसको प्रिस्क्राइब करते हैं। दूसरी दवा है, ये है मॉक्सक्लैव 625। दवा वही है जिसमें अगर आप देखेंगे जो सॉल्ट है तो इसमें एक्टिव इंग्रेडिएंट्स है अमोक्सिसिलिन और क्लैविलानिक एसिड। ये देखिए अगली दवा जो हम आपको दिखा रहे हैं, ये भी ये दूसरी कंपनी की है। सॉल्ट वही है लेकिन कंपनी दूसरी है, और ये है क्लैविन 625। ये दवा भी आपको कई डॉक्टर्स ने हो सकता है कभी प्रिस्क्राइब की हो। तीनों में ही सॉल्ट एक है जिसमें अमोक्सिसिलिन एंड पोटेशियम क्लोवेट, इसमें सॉल्ट बताया जा रहा है और ऐसे ही क्लैविलानिक जो एसिड है वो सब में डाला जाता है। तो सॉल्ट वही है, कंपनियां तीन हैं, तीन अलग अलग दवाएं हैं, लेकिन भारत सरकार की रिपोर्ट बता रही है कि इनमें बड़ी बड़ी खामियां हैं, बड़ी बड़ी कमियां हैं। आपने कभी सोचा है कि पहले आप बुखार की एक गोली खाने से ठीक हो जाते थे, लेकिन अब दो तीन खुराक के बाद भी इन दवाइयों का कोई असर नहीं होता? और इसका कारण यही है कि ये दवाइयां असली होते हुए भी क्वालिटी के मामले में खराब होती हैं। इसमें पैरासिटामोल जैसी बुखार की दवा भी शामिल है जिसे लोग बिना डॉक्टर की सलाह के भी खरीद लेते हैं। इसके अलावा डाइक्लोफेनाक जैसी दर्द की दवा, मांसपेशियों के दर्द में इस्तेमाल होने वाला डाइक्लोफेनाक जेल इसी लिस्ट में शामिल है, और ये भारत सरकार की एजेंसी है जिसने ये बताया है। इसके बाद खांसी जुकाम एलर्जी में इस्तेमाल होने वाली दवाइयां भी जांच में फेल हो गई हैं। इनमें भी डेक्स्ट्रोमेथॉर्फन सिरप जो है वो देश के लाखों घरों में खांसी के लिए इस्तेमाल होता है, वो भी सूची में शामिल है। और सांस से जुड़ी गंभीर बीमारियों के इलाज में इस्तेमाल होने वाले टाइट्रोपियम इनहेलर भी क्वालिटी टेस्ट में निर्धारित मानकों पर खरा नहीं उतरा। यानी सवाल सिर्फ एक गोली या एक सिरप का नहीं है, सवाल उस पूरे भरोसे का है जिस पर मरीज, उसका परिवार अपना जीवन निर्भर करता है। उदाहरण के लिए इस जांच में पेट और एसिडिटी की दवाइयां फेल हो गई, रेबेप्राजोल, पेंटोप्राजोल, ओमेप्राजोल, एसोमेप्राजोल, ये तमाम दवाइयां जिन्हें देश में लाखों लोग रोजाना खाते हैं, उनके अलग अलग बैचेस के नमूनों पर सवाल उठाए जा रहे हैं, और ये सूची यहीं पर समाप्त नहीं होती। डायबिटीज जैसी गंभीर बीमारी के इलाज में इस्तेमाल होने वाली कई दवाइयों पर भी इसमें सवाल खड़े हुए हैं। और इनमें मेटफॉर्मिन और ग्लाइमपेराइड, ये तमाम दवाइयों को क्वालिटी टेस्ट में सही नहीं पाया गया। यानी जिन लोगों को रोजाना अपना ब्लड शुगर कंट्रोल रखने के लिए इन दवाओं पर निर्भर करना रहना पड़ता है, और आप भी जानते हैं शुगर बढ़ना कितना बड़ा रिस्क है, शुगर गिर जाना कितना बड़ा रिस्क है, सीधे जिंदगी पर आ सकती है, जानलेवा हो सकता है, ये सही दवाइयां नहीं खा पा रहे हैं लोग, और उनकी दवाइयों में भी मिलावट है। डायबिटीज के बाद ब्लड प्रेशर और दिल की बीमारियों में इस्तेमाल होने वाली दवाइयां भी इस जांच में फेल पाई गई हैं। इनमें टेलमिसार्टन, एम्लोडिपीन और रेमिपेरिल, ये तमाम दवाइयां शामिल है। खून को पतला करने के लिए, मतलब जिंदगी और मौत के बीच का खून अगर जम जाए, कत्था बन जाए, कोएगुलेट हो जाए, किसी भी नली को वो ब्लॉक कर सकता है। ऐसे लोगों को जिनमें खून गाढ़ा होने की ऐसी चांसेस रहते हैं, उनको खून पतला करने की दवाई लेनी होती है जिंदा रहने के लिए, किसी रिस्क से बचने के लिए। लेकिन सोचिए इतनी मुश्किल परिस्थिति में, इतनी गंभीर बीमारी से जो लोग जूझ रहे हैं, और जो इस्तेमाल होने वाली जो एस्पिरिन 75 mg है, क्लोपिडोग्रेल है, वो भी इस सूची में शामिल है। और हम बार बार आपको बता रहे हैं ये भारत सरकार की रिपोर्ट है, भारत सरकार की एजेंसी की रिपोर्ट है जिसने इन तमाम दवाइयों में कमियां पाई हैं। इतना ही नहीं, कोलेस्ट्रॉल कम करने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली रेसुवास्टैटिन, ये भी टेस्ट में फेल हो गई। अब सोचिए ये कोई अनजान या गली मोहल्ले में बिकने वाली दवाइयां तो है नहीं जो हम आपको यहां दिखा रहे हैं। ये वो दवाइयां हैं जिन्हें बड़ी बड़ी ब्रांडेड कंपनियां बनाती हैं, ये वो दवाइयां हैं जिन्हें लोग भरोसे के साथ खरीदते हैं, ये वो दवाइयां हैं जिन पर मरीज अपनी सेहत, अपना इलाज, कई बार अपनी जिंदगी तक भरोसे के साथ छोड़ देता है। लेकिन अगर वही दवाइयां गुणवत्ता परीक्षण में फेल होने लगे, अगर वही दवाइयां तय मानकों पर खरी ना उतरे, अगर मरीज को यह भरोसा ही ना रहे कि जो दवा वो खा रहे हैं उसमें सही मात्रा में दवा मौजूद भी है या नहीं है, फिर सवाल सिर्फ दवा का नहीं रह जाता, सवाल पूरे सिस्टम, सरकारों का हो जाता है। और सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि जब मरीज दवा खरीदते समय ब्रांड पर भरोसा नहीं कर पाएगा तो आखिर वो भरोसा कैसा करेगा? ये सब बड़ी बड़ी कंपनियां जिनकी दवाएं हमने आपको दिखाई हैं, और अगर सरकार की ही एजेंसी इसको गलत पा रही है मापदंड पर, तो इन दवाओं को रोकने वाला कौन है? इनकी बिक्री कौन रोकेगा, या बस बताकर वो किनारा कर लेंगे। भारत के लोग हर साल एसिडिटी की 2500 करोड़ गोलियां खाते हैं, 2500 करोड़ गोलियां। रैबेप्रोजोल, पैंटोप्रोजोल नाम की ये दवाई सबसे ज्यादा खाई जाती है, लेकिन अब खुलासा हुआ है कि ये दवाई भी निर्धारित मानकों पर खरी नहीं उतरती। इसके अलावा भारत में हर दिन 60 से ज्यादा कंपनियां पैरासिटामोल की 400 करोड़ गोलियां बनाती हैं, और आप इन गोलियों को ये सोचकर खाते हैं कि इनसे आपका बुखार ठीक होगा, लेकिन असली दवाइयां भी सॉल्ट के मामले में मिलावटी निकलती हैं। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ पैरासिटामोल की दवाई इस टेस्ट में फेल हुई। खून की कमी, विटामिन और जितने सप्लीमेंट्स हम लोग खाते हैं, पेट के लिए जो दवाएं हैं, फूड डाइजेशन के लिए जो दवाइयां डॉक्टर आपको लिखते हैं, वो दवाइयां भी क्वालिटी टेस्ट में सही नहीं पाई गई। इनमें भी डिहाइड्रेशन के लिए इस्तेमाल होने वाला ORS, सोचिए ORS, कहते हैं कि जिंदगी बचानी हो, डिहाइड्रेशन में किसी की हालत बहुत खराब है, ORS घोल पिला दो। ORS भी इस जांच में फेल हो गया, जबकि हमारे देश में हर साल 80 करोड़ रुपए के ORS की बिक्री होती है। इसका मतलब यह है कि आप पैसा देकर दवाइयां भी खरीद रहे हैं और ये दवाइयां भी आपको नकली मिल रही हैं, या फिर इनकी क्वालिटी में कमी पाई जा रही है। और बात सिर्फ दवाइयों की नहीं, इस रिपोर्ट में तो ये भी बताया गया है कि चोट लगने के बाद स्किन पर जो हम लोग सर्जिकल स्पिरिट लगाते हैं, वो भी गुणवत्ता के मामले में खराब है। हैंड सैनिटाइजर, घाव पर जो हम लोग गॉज बैंडेज लगाते हैं, जो कॉटन वुल की पट्टी बांधी जाती है, वो भी क्वालिटी टेस्ट में फेल हो गई, और ये बहुत बड़ी बात है। अमेरिका और चाइना के बाद दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी फार्मा इंडस्ट्री भारत में है, जहां कुल 3000 कंपनियां काम करती हैं। मौजूदा वक्त में ये इंडस्ट्री 5,67,000 करोड़ रुपए की है, जो साल 2030 में 12,30,000 करोड़ रुपए की हो जाएगी। और हम दुनिया के 200 देशों को भी दवाइयों का निर्यात करते हैं, और ये निर्यात भी लगभग 5,00,000 करोड़ रुपए का है। और ये बात सब जानते हैं कि जो फार्मा इंडस्ट्री होती है, इसमें भरोसा बहुत जरूरी है। जब कोई व्यक्ति कोई दवाई खाता है, तो उसे ये पता नहीं होता कि वो दवाई कहां बनी है, उसमें कौन से ड्रग्स सॉल्ट इस्तेमाल हुए हैं। लोग सिर्फ सरकारों पर भरोसा रखकर डॉक्टर द्वारा लिखी गई दवाइयों को बाजार से खरीद लेते हैं। भाई डॉक्टर साहब ने नाम बता दिया, ये दवा मंगाओ। कोई भी व्यक्ति यही सुनिश्चित कर सकता है कि वो जो दवाई खा रहा है वो असली है, नकली है। हमारे पास सुनिश्चित करने का तो कोई तरीका ही नहीं है। लेकिन सोचिए, अगर असली दवाइयां भी क्वालिटी टेस्ट में फेल होने लगे, मतलब बड़ी बड़ी कंपनियों की दवाइयों की हम बात कर रहे हैं, तो इस देश के करोड़ों लोगों का विश्वास क्या होगा, उनकी सेहत का क्या होगा? बीमार होने पर उनका इलाज होगा या उनको और बीमार बनाया जाएगा? आपको यकीन नहीं होगा, जनवरी 2026 में 218, फरवरी 2017 मार्च में 190, अप्रैल में 121 और अब मई में 157 दवाइयां क्वालिटी टेस्ट में फेल हुई है। और ऐसा नहीं है कि जो कंपनियां ये दवाइयां बना रही हैं वो कोई छोटी मोटी कंपनियां हैं। इनमें सिप्ला कंपनी का भी नाम है, जिसने इलेक्टोरल बॉन्ड्स में 39,20,00,000 रुपए का चंदा दिया था, जिनमें से 37 करोड़ रुपए का चंदा बीजेपी को मिला था और 2,20,00,000 रुपए का चंदा कांग्रेस को। भारत के दवा बाजार में इस कंपनी की 5% की हिस्सेदारी है, यानी हर 100 में से 5 दवाइयां इस कंपनी की होती है। क्वालिटी टेस्ट में इसकी कई दवाएं फेल हुई। सिप्ला के अलावा इसमें सनफार्मा कंपनी भी है, जो दवाइयां क्वालिटी टेस्ट में फेल हुई, जिसने इलेक्टोरल बॉन्ड्स में 31.5 करोड़ का चंदा दिया था और ये सारा चंदा बीजेपी को मिला था। और भारत के दवा बाजार में इस कंपनी की 1% की हिस्सेदारी है, यानी हर 100 में से 1 दवाई इस कंपनी की होती है। ये खबर आज सबसे पहले हमने आपको इसलिए दिखाई क्योंकि भारत में हर रोज 30 से 40 करोड़ लोग कोई ना कोई दवाई खाते हैं। इसके लिए ज्यादातर लोग ब्रांडेड दवाइयों पर भरोसा करते हैं, और जब सरकार की ही तरफ से सरकारी एजेंसी बता रही है कि कंपनी की दवाइयों की क्वालिटी में खामी है, तो फिर इन पर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? शहरों में लोगों का दवाइयों और इलाज पर औसत सालाना खर्च 12,400 रुपए है, गांव में 10,500 रुपए है। और बड़ी बात सबसे यह है कि पहले हमारे देश में हर दिन 15 दिन में 7.5% लोग बीमार होते थे, 7.5%, जबकि आज 13% से ज्यादा लोग हर 15 दिन में बीमार होते हैं। और फिर वो डॉक्टर्स द्वारा लिखी गई इन्हीं ब्रांडेड दवाइयों को खरीदते हैं जो क्वालिटी टेस्ट में फेल हैं। और ऐसे में सोचिए, अगर यही दवाइयां फेल हो जाएं तो आम लोग फिर कहां जाएं, और हम कब तक क्वालिटी टेस्ट में फेल इन दवाइयों को खाने के लिए मजबूर रहेंगे? खैर, एक तरफ इन दवाइयों की मिलावट है, दूसरी तरफ हमारी व्यवस्था का लोगों के साथ वो मजाक, जो मौत के साथ भी खत्म नहीं होता। एक दिन पहले लखनऊ की एक बिल्डिंग में आग लगने से 15 युवाओं की मौत हो गई। इसके बाद पूरे देश से ऐसी खबरें आने लगी कि अब प्रशासन और सरकारें जाग चुकी हैं और अब लापरवाही को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। लेकिन जब आप इन तस्वीरों को ध्यान से देखेंगे तो आपको समझ आएगा ये कोई पहली बार नहीं हो रहा है। हर बार जब भी कहीं कोई बड़ा आग हादसा होता है तो अचानक पूरा प्रशासन जाग जाता है, फायर सेफ्टी की टीम सक्रिय हो जाती है, बड़े बड़े मॉल्स, होटल्स, अस्पताल, कोचिंग सेंटर, स्कूल, फैक्ट्रियां निरीक्षण शुरू हो जाते हैं, नोटिस जारी किए जाते हैं, नियमों की याद दिलाई जाती है, लाइसेंसी की जांच होती है, मीडिया में ऐसे बयान दिए जाते हैं कि अब किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। ऐसा लगता है कि जैसे पूरे देश को अचानक फायर सेफ्टी की अहमियत समझ में आ गई। लेकिन सवाल यह है कि जागरूकता हर बार त्रासदी के बाद क्यों आती है? आखिर इस देश में फायर डिपार्टमेंट हर जगह बना क्यों है अगर काम ही नहीं करना है? जब कोई इमारत जलकर खाक हो जाती है, जब लोग धुएं में दम घुटने से मर जाते हैं, जब परिवार अपने लोगों को खो देते हैं, तब हमें याद आता है कि फायर एग्जिट भी होना चाहिए, इमरजेंसी फायर एग्जिट, आग बुझाने के इंतजाम भी होने चाहिए, बिजली के तार भी सुरक्षित होने चाहिए, इमारतों में सुरक्षा मानकों का पालन भी होना चाहिए, हादसे का इंतजार है तो एक और हो गया लीजिए। आज लखनऊ के अग्निकांड के बाद भी पूरे देश में यही हो रहा है, जबकि कड़वा सच यह है कि लखनऊ में जो हुआ वो हादसा नहीं, 15 युवाओं की हत्या थी। हम आपको बताते हैं और हम आपको बताते जाएंगे और आप गिनते जाइए लखनऊ की इस बिल्डिंग में क्या कुछ नहीं हो रहा था। सबसे पहले इस बिल्डिंग में लगी आग का कारण ओवरलोडिंग था। बिल्डिंग के पास 20 किलोवाट का कमर्शियल बिजली कनेक्शन था, लेकिन बिजली लोड 34.10 किलोवाट था। समझ रहे हैं आप ओवरलोडिंग का आलम? इसी ओवरलोडिंग के कारण तारों और ट्रांसफार्मर पर भारी दबाव आया और ये इतनी बड़ी घटना हो गई। हैरानी की बात यह है कि ओवरलोडिंग के बाद भी इस बिल्डिंग की बिजली सप्लाई बंद नहीं हुई, जबकि इसकी पूरी व्यवस्था होती है। दूसरा, बिल्डिंग रेसिडेंशियल, लेकिन काम क्या चल रहा है? दुकान, कोचिंग सेंटर। अब भाई अगर रेसिडेंशियल है तो वहां कोचिंग सेंटर या फिर एनिमेशन टीचिंग सेंटर हो ही नहीं सकता, लेकिन इन नियमों की भी धज्जियां उड़ती रही। सोचने वाली बात यह है कि एक रेसिडेंशियल बिल्डिंग को जब व्यावसायिक कामों के लिए इस्तेमाल किया गया तब भी इस बिल्डिंग का बिजली पानी का कनेक्शन रद्द नहीं हुआ। आज से 10 साल पहले 2016 में इस बिल्डिंग को अवैध माना गया था। बिल्डिंग का नक्शा रिहायशी इमारत के लिए पास हुआ था, जबकि यहां दुकानें चल रही थी, कोचिंग सेंटर खुला था, जिसके बाद इस पर बुलडोजर चला। लेकिन 2 महीने में ही बुलडोजर चलाने का ऑर्डर वापस ले लिया गया और आरोप लग रहे हैं कि इसके पीछे रिश्वतखोरी थी। ये जो रिश्वतखोरी है ये हमारे बच्चों के लिए जानलेवा है। इससे भी बड़ी बात यह है कि 2017 से उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार है, लेकिन इस दौरान भी वहां कोई कार्रवाई नहीं हुई और इस बिल्डिंग को बंद नहीं कराया गया। चौथा, इस बिल्डिंग में एक वक्त पर 50 से ज्यादा लोग मौजूद रहते थे, लेकिन फिर भी इस बिल्डिंग के पास फायर एनओसी नहीं था। इस बिल्डिंग में कोई इमरजेंसी एग्जिट प्लान नहीं था जिससे वहां फंसे लोग बाहर निकल सके। रेस्क्यू टीम पुलिसकर्मियों ने साथ वाली इमारत से दीवार तोड़कर लोगों को बचाने की कोशिश की, लेकिन उन्हें कोई इमरजेंसी एग्जिट नहीं मिला जिससे वो अपनी जान बचा सके। कोई इमरजेंसी एग्जिट नहीं। छठा, बिल्डिंग के अंदर ऑटोमेटिक गेट लगाए गए थे। जो लोग आग लगने के बाद ये सोच रहे थे कि गेट खुलेगा उससे वो निकलेंगे, वो ऑटोमेटिक गेट खुले ही नहीं, वो बंद हो गए, लोग अंदर फंस गए और उनकी मौत हुई। सातवां, इस बिल्डिंग में कंप्यूटर लैब, एनिमेशन सेंटर, आईटी ऑफिस, अन्य व्यावसायिक गतिविधियां चल रही थी जिनके लिए मंजूरी लेना जरूरी था, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ था। बिल्डिंग में ऊपरी मंजिलों पर ऐसी मशीनें रखी गई थी जिनके लिए वहां स्मोक मैनेजमेंट सिस्टम होना चाहिए था, लेकिन यहां भी घनघोर लापरवाही, किसी का इस बिल्डिंग पर ध्यान नहीं था। आज सरकार इस अवैध बिल्डिंग की जांच करा रही है और उसने कुछ अधिकारियों को भी सस्पेंड किया, लेकिन हमारा सवाल यह है कि क्या यह काम पहले नहीं होना चाहिए? और सोचिए अगर यह काम पहले हो गया होता तो 15 युवाओं की जान जाती, शायद बच जाती। ये तस्वीर निलेश और अनामिका की है। इस बिल्डिंग में दोनों नौकरी करते थे, बहुत जल्द शादी होने वाली थी, लेकिन इस अग्निकांड ने उन्हें उनके परिवार से हमेशा के लिए छीन लिया। इसी अग्निकांड में ज्योति नाम की एक लड़की की भी मौत हो गई, जो रोज अपनी स्कूटी से यहां आया करती थी। जब इसका भाई स्कूटी को यहां ले जा रहा था तो उसके हाथ पूरी तरह कांप रहे थे। सोचिए क्या सरकार की जांच से इस भाई को उसकी बहन वापस मिल जाएगी। इसी घटना में अब्दुल रहमान नाम के एक लड़के की भी जान गई, जिसे इसी बिल्डिंग में एनिमेशन का कोर्स करने के बाद नौकरी मिल गई थी और इस लड़के पर उसके दिव्यांग पिता और बहन की जिम्मेदारियां थी। लेकिन ये लड़का भी पूरी तरह से जल गया। कई कहानियां हैं जिनका दर्द कुछ अधिकारियों के निलंबन से खत्म नहीं होगा। हकीकत तो यह है कि इन सब लोगों को इस सिस्टम ने मारा, उनकी हत्या की, ये हादसा बिल्कुल नहीं है। देखिए,
1: मेरा बेटा भी होता तो दुनिया में, मेरी तो दुनिया उजड़ गई।
2: उसकी जिम्मेदारी गवर्नमेंट है, ये शासन प्रशासन है जो हमारे नीलेश को क्या, उसमें जितने बेचारे बच्चे थे उनको सुख सुविधा देते तो आज फायर ब्रिगेड टाइम से पहुंच जाती। तो आज मेरा देवन, मेरा
3: 25 मिनट देर पहुंची है जो लोगों ने बताया,
2: 45 मिनट 25 मिनट जो भी पहुंची है, अगर आज वहीं पर पास में ही है, ज्यादा दूर नहीं था, अलीगंज थाना कितनी दूर है वहां से, पुरानिया कितनी दूर है, आ सकती थी गवर्नमेंट बचाने, लेकिन नहीं, शासन प्रशासन की गलती है।
4: वो तस्वीर जो कल निकले तो उस समय तस्वीर तो हमेशा जब तक जिएंगे तब तक सामने दिखेगी हमको, लेकिन बच्चा नहीं दिखेगा, बेटा नहीं दिखेगा, मेरा दुनिया दिख सकती, मेरा बेटा नहीं दिख सकता।
5: मेरा भाई फोन करके बताया कि भैया आप फंस गए, 2 दिन पहले मेरा ऑपरेशन किडनी स्टोन को हो, हम बेड से सीधा भागे, लगा बीगो निकालो मुझे जाना है, यहाँ है, उसके बाद बात नहीं हुई।
6: ये सबसे बड़ी दर्दनाक घटना हुई कि माँ के सामने बेटा अंदर। कई मंजिल की बिल्डिंग बनती है तो उसके साथ साथ क्या लिफ्टें चलने का सवाल नहीं था, कम से कम साथ में सीढ़ियां तो होनी ही चाहिए, आदमी कहीं से तो भाग सके, वेंटिलेशन बताते हैं उसमें था ही नहीं। और वो जब लगी है आग तो ये पता चला है कि वो ऑटोमेटिक लॉक हो गया गेट, जिसकी वजह से लोग निकल नहीं पाए।
7: स्कूटी लेने आया है बस अभी तो, बस हाँ।
8: इसी से वो आई थी क्या कल?
7: हाँ इसी से आती थी वो, उसी की है।
8: लगातार ये सवाल उठा रहे हैं और हम प्रशासन से जाकर पूछेंगे कड़े सवाल कि आखिर इस तरह की घटना क्यों हुई है।
7: नॉर्म्स यहाँ फॉलो नहीं हुए थे, वो ऐसा चलता रहेगा, मेरे को कोई उम्मीद नहीं है, कच्चा जो गवर्नमेंट आ जाए, लोग ही ऐसे हैं, पैसे दे के सब पास हो जाता है, अब वो ऐसे होता रहेगा, तो इसमें मुझे उम्मीद नहीं है।
8: दम घुटने से मौत हुई है यहाँ बताया गया है,
7: मेरा लॉस है और किसी का सबका फायदा है।
0: सोनिया जी क्या कहिएगा, आज पूरा देश आपको सुन रहा है।
1: बच्चा चला गया, मेरी जिम्मेदारी, मेरा जीने का सहारा था सैया, मेरा जीने का सहारा था सैया, मेरी जिम्मेदारी कौन निभाएगा, मेरा जीने का सहारा सैया, मैं क्या बताऊँ, मेरा बच्चा तो चला गया, मेरी जिम्मेदारी कौन करी, उसको तो कोई ला नहीं पाएगा, हाय भगवान, मेरा बच्चा,
0: इस घटना के बाद ये समझना भी जरूरी है कि हमारे देश में कैसे ऑटोमेटिक गेट और इलेक्ट्रॉनिक लॉक लोगों के लिए जानलेवा साबित हो रहे हैं। आज आपको ये जानना जरूरी है कि इसके लिए क्या करने। देखिए, लखनऊ की इस घटना में जिस मंजिल पर सबसे ज्यादा लोग फंसे थे, वहां जो मेन गेट है वहां पर ऑटोमेटिक लॉक लगा था जो बायोमेट्रिक से ही खुलता था। आग लगने के बाद यह ऑटोमेटिक लॉक फेल हो गया और लोग बाहर ही नहीं निकल पाए। और ऐसा नहीं है कि यह पहली बार किसी घटना में हुआ है। 3 जून को जब दिल्ली के मालवीय नगर में एक होटल में लगी आग लगी थी तब भी इमारत के मुख्य दरवाजे पर इलेक्ट्रॉनिक गेट था जो रात में अपने आप बंद हो जाता था, लेकिन क्योंकि इस घटना के दौरान आग की वजह से बिजली चली गई थी इसलिए गेट पूरी तरह से जाम हो गया, बाद में खुला ही नहीं। और इसीलिए हमने सोचा कि ऐसी तमाम बिल्डिंग्स में जो ऑटोमेटिक गेट लगाई जा रही हैं, और जो जानलेवा साबित हो रही हैं, ये मुद्दा उठाना आज जरूरी है। 3 मई 2026 को दिल्ली के विवेक विहार इलाके में एक 4 मंजिला रिहायशी इमारत बहुत भीषण आग लगी, 9 लोगों की दर्दनाक मौत हुई और इस हादसे का भी सबसे बड़ा कारण इलेक्ट्रिक लॉक बने जो सुरक्षा के लिए बनाए गए थे, लेकिन शॉर्ट सर्किट के बाद ये लॉक्स जैम हो जाते हैं जिससे लोग अपने कमरों से बाहर नहीं निकल सके। 11 जून 2025 को दिल्ली के द्वारका में, 1 नवंबर 2024 को उत्तर प्रदेश के कानपुर में, 28 जुलाई 2026 को दिल्ली के ओल्ड राजेंद्र नगर में, 19 मार्च 2024 को मध्य प्रदेश के इंदौर में, 20 जनवरी 2024 को दिल्ली के पीतमपुरा में 6 लोग इसीलिए जिंदा जलकर मारे गए क्योंकि उनके घर में गेट पर लगा इलेक्ट्रॉनिक लॉक घटना के दौरान खुला ही नहीं और अब ये एक बड़ी समस्या बन गया है, ये ऑटोमेटिक डोर। आग लगने की स्थिति में हर सेकंड कीमती होता है कि आप कैसे वहां से भाग सकें। उस समय लोगों के पास इतना समय नहीं होता कि वो इन इलेक्ट्रॉनिक लॉक्स का पासवर्ड याद करें, इन्हें मोबाइल ऐप खोलें या ये समझने की कोशिश करें कि लॉक क्यों नहीं खुल रहा है। कई बार तो वो बिजली की तारें मारे वहां आग लगने की वजह से डिफंक्ट हो जाती, काम ही नहीं करती, आप कुछ नहीं कर सकते, उन्हें तो बस बाहर निकलना है। लेकिन सोचिए अगर दरवाजा खुलेगा ही नहीं तो फिर अंदर फंसे लोगों के पास बचने का क्या रास्ता है। आपने इस बिल्डिंग में भी देखा, दूसरी तरफ जो ये बड़े बड़े शीशे लगे हुए थे कांच के, उसको उठाकर किसी तरह से निकलने की कोशिश की और जैसे वो उठाते थे धुआं निकलता था जोर का, अंदर कैसी घुटन हो रही होगी, एक रस्सी के सहारे कुछ बच्चे निकल पाए। सबसे बड़ी चिंता की बात यह है कि हमारे देश में ऐसे इलेक्ट्रॉनिक लॉक्स लगाने को लेकर कोई स्पष्ट नियम नहीं है। कोई व्यक्ति बाजार से ऐसा लॉक खरीद कर अपने घर में लगवा सकता है लेकिन कोई ये नहीं देखता कि अगर बिजली चली आए तो यही लॉक खुलेगा कैसे, अगर सिस्टम खराब हो जाए बाहर निकलने का दूसरा रास्ता क्या है, और अगर अंदर बच्चे या बुजुर्ग फंस जाए तो क्या करेंगे। यानी हम घर को सुरक्षित बनाने के लिए जो इलेक्ट्रॉनिक लॉक्स लगा रहे हैं इसकी सुरक्षा की कोई जांच नहीं होती और इसीलिए हमें लगता है कि अब समय आ गया है कि सरकार इस पर गंभीरता से विचार करे। जिस तरह गाड़ियों, लिफ्ट, गैस सिलेंडर्स के लिए सुरक्षा नियम होते हैं उसी तरह इलेक्ट्रॉनिक लॉक्स के लिए भी नियम बनाइए। ये तय कीजिए कि कोई भी ऐसा लॉक नहीं लगाया जा सकता जो आग, शॉर्ट सर्किट, बिजली लाने की स्थिति में लोगों को अंदर फंसा दे, और अगर ऐसा हो तो एक एग्जिट रूट दूसरा होना चाहिए क्योंकि किसी भी दरवाजे का पहला काम चोरी रोकना नहीं बल्कि मुसीबत के समय लोगों को सुरक्षित बाहर निकालने का होता है। हम आपसे यही कहेंगे कि अगर आप घर या दूसरी जगहों पर इलेक्ट्रॉनिक लॉक्स, फिंगरप्रिंट लॉक या बायोमेट्रिक लॉक लगवा रहे हैं तो पहले ये देख लें कि क्या वहां इन लॉक के खराब होने पर बाहर निकलने का इमरजेंसी रास्ता है। अगर इमरजेंसी रास्ता नहीं है तो ऐसे इलेक्ट्रॉनिक लॉक्स बिल्कुल ना लगाएं। ये ध्यान रखें कि कोई भी जगह सिर्फ ऑटोमेटिक लॉक से स्मार्ट नहीं बनती, वो इस बात से स्मार्ट बनती है कि वहां इमरजेंसी के लिए क्या इंतजाम किए गए हैं।

0: इस तरह का अगर रूल सारे
1: खैर आगे बढ़ते हैं और आपको ये बताते हैं कि राम मंदिर के चढ़ावे में चोरी के जो आरोप लगे थे उस पर एसआईटी ने अपनी प्रारंभिक रिपोर्ट सौंप दी है। ये रिपोर्ट अभी सार्वजनिक नहीं हुई है लेकिन हमें सूत्रों से पता चला है कि इसमें चढ़ावे की चोरी को लेकर कई बड़े खुलासे किए गए। जैसे पहला बड़ा दावा, एसआईटी को चढ़ावे की गिनती और निगरानी में कई खामियां मिली हैं। दूसरा, एसआईटी को यह भी पता चला है कि जिस तरह सभी 40 दान पेटियों का पैसा गिना जाता था उनमें कई गड़बड़ियां थी। तीसरा, एसआईटी ने अपनी शुरुआत जांच में किसी को भी क्लीन चिट नहीं दी है और सबको इस चोरी के लिए संदिग्ध माना है। चौथा, इसमें उन कर्मचारियों की चयन प्रक्रिया को लेकर सवाल उठाए गए हैं जो चढ़ावे की गिनती करते थे। ये बात कल भी हमने आपको बताई थी ना कि चोरी में भाई भतीजावाद मॉडल चल रहा था। ट्रस्ट के सदस्य और कर्मचारियों ने अपने रिश्तेदारों को चढ़ावा गिनने के काम में लगाया था हर स्तर पर। आप सोचिए, मतलब जो प्राइवेट एजेंसी के पास जिम्मेदारी है वहां भी एक रिश्तेदार घुमा दिया, जिस कंपनी को जिस बैंक को जिम्मेदारी है वहां भी एक रिश्तेदार घुमा दिया, और जो ट्रस्ट है उसमें भी सदस्य बना दिया। तो एक बार फिर से आपको बताते हैं, खुद एसआईटी ने ऐसे सभी लोगों की एक फैमिली चेन बनाई है जिनके रिश्तेदार मंदिर ट्रस्ट के सदस्य हैं या कर्मचारी हैं, चढ़ावा गिनने वाली एक प्राइवेट कंपनी के लिए काम करते हैं। पांचवा, इस रिपोर्ट में आरोपी कर्मचारियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की सिफारिश की गई है ताकि उन्हें गिरफ्तार किया जा सके। और छठा, राम मंदिर की आंतरिक व्यवस्था संचालन के लिए जिम्मेदार कुछ पदाधिकारियों की भूमिका भी जांच के दायरे में है, यानी मंदिर ट्रस्ट के जो 15 सदस्य हैं उनमें कुछ शक के दायरे में है। सातवां, इसी जांच रिपोर्ट में प्रशासनिक और निगरानी तंत्र की जवाबदेही से जुड़े कई बिंदुओं का उल्लेख है और ये बताया गया है कि इसमें अभी तत्काल बदलाव की जरूरत है। आठवां, इस चोरी का दायरा इतना बड़ा हो सकता है कि एसआईटी ने अतिरिक्त संसाधनों और सहयोगी अधिकारियों की मांग की है, और सूत्रों के मुताबिक इसमें आखिरी पॉइंट यह है कि इस चढ़ावा चोरी की जांच करने में वक्त लगेगा और आने वाले दिनों में इस पर कई बड़े खुलासे हो सकते हैं। सुन,
2: मैं और मेरे जो साथी एसआईटी में रहे थे उन्होंने आज अपर मुख्य सचिव गृह महोदय को अपनी जो प्रारंभिक जांच आख्या है उसको सबमिट कर दिया है और जो भी फाइंडिंग्स हैं वो हम सबमिट कर चुके हैं। फाइंडिंग्स के बारे में हमारा कहना उचित नहीं है और अभी भी जांच प्रचलित है और जो बाकी चीज है उसको हम अपनी सेकंड पार्ट में जो हमारा अंतिम प्रतिवेदन रहेगा उसमें सबमिट करेंगे।
3: सर, इसमें जो आप लोग जांच कर रहे थे क्या और भी यूनिट्स लगाई जाएंगे और अभी भी आगे भी जांच इसकी जारी रहेगी चूंकि 15 डेज का जो एक वर्क टाइम है?
2: देखिए, जांच दल का गठन शासन ने किया है तो उसमें अधिक लगाई जाएंगी और बढ़ाई जाएंगी इसके बारे में मेरा कहना उचित नहीं है और जो हमें दायित्व सौंपा गया है हम उस दायित्व को अच्छे से निर्वहन करेंगे, मैं ये बता सकता हूं।
3: सर, एक लाइन बस इसमें, क्या जांच टीम के द्वारा किसी को इसमें क्लीन चिट दी गई है इस पूरे मामले में, पूरी इस जांच के दौरान?
2: चूंकि ये गोपनीय जांच आख्या है इस विषय पर मैं कुछ भी कहने के लिए अधिकृत नहीं हूं।
1: अब तक ये रिपोर्ट सार्वजनिक नहीं हुई है लेकिन सूत्रों से जो जानकारी आ रही है उसमें कहीं ना कहीं ये संकेत मिलता है कि प्रभु श्री राम के मंदिर में चढ़ावे की जो चोरी हुई वो सच हो सकती है और इतना जान लेना ही इस देश के करोड़ों राम भक्तों के लिए बहुत बड़ी त्रासदी है। हम तो ये चाहेंगे कि जिन आरोपियों ने ये चोरी की उनका नाम पूरे देश के सामने रखा जाए और भारत के लोगों को ये पता चले कि किन रामद्रोहियों ने प्रभु श्री राम का चढ़ावा चुराया, ये पाप किया। खैर, आगे बढ़ते हैं और आपको इस वक्त की सबसे बड़ी खबर बताते हैं जो इसराइल से आ रही है। इसराइल के पूर्व प्रधानमंत्री और विपक्षी नेता नफ्ताली बेनेट ने प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। उनका आरोप है कि प्रधानमंत्री नेतन्याहू राष्ट्रपति ट्रंप से डर गए हैं। उन्होंने दक्षिणी लेबनान में तैनात इसराइल के सैनिकों को ये निर्देश दिए हैं कि वो अगले आदेश तक कोई कार्रवाई नहीं करेंगे और ये आरोप नफ्ताली बेनेट लगा रहे हैं। उन्होंने ये भी खुलासा किया है कि उनकी लेबनान में मौजूद सैनिकों और कमांडर्स से सीधी बात हुई है और जमीन पर हकीकत यह है कि इजरायली सैनिकों के सामने हिजबुल्ला के आतंकी बंकर बना रहे हैं, हथियार जुटा रहे हैं, दूरबीन से सैनिकों की रेकी कर रहे हैं, लेकिन इजरायली सैनिकों को गोली चलाने की इजाजत नहीं है। इससे यह सवाल भी उठता है कि आने वाले दिनों में आखिर इजरायल में नेतन्याहू की स्थिति क्या रहेगी और आज जब विपक्ष वहां पर इतनी जोर से आवाज उठा रहा है तो क्या वाकई इजरायली सैनिकों की जिंदगी खतरे में है?
4: मेरा और रक्षा मंत्री का लेबनन में सैनिकों के लिए साफ संदेश है, उसमें कोई बदलाव नहीं है। दक्षिणी लेबनन में हमारे सैनिकों को उन पर या उत्तरी इसराइल के लोगों पर किसी भी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष खतरे से निपटने की पूरी छूट है। इजरायली सेना पर किसी तरह की पाबंदी नहीं है, मैं उनके साथ खड़ा हूं, सारे नागरिक उनके साथ हैं, ताकि उत्तरी इजरायल के लोगों की सुरक्षा के लिए दक्षिणी लेबनन में जब तक रहने की जरूरत हो वो रह
5: सकें।
1: और अब अगली खबर का रुख करते हैं। सवाल ये खड़ा होता है कि क्या भारत को वाकई में पेट्रोल में इथेनॉल मिलाने की जरूरत है। इस वक्त हमारे देश में E20 पेट्रोल को लेकर खूब विवाद हो रहा है। लोग ये आरोप लगा रहे हैं कि इसके कारण उनकी गाड़ियों का माइलेज कम हो रहा है, इससे इंजन में भी खराबी आ रही है, जबकि सरकार कह रही है कि E20 पेट्रोल से ज्यादा नुकसान नहीं है और इसका माइलेज पर भी ज्यादा असर नहीं होता। इस बहस के बीच बड़ा सवाल ये बन रहा है कि क्या हमें वाकई में पेट्रोल में इथेनॉल मिलाने की जरूरत है। ये सवाल हम इसलिए पूछ रहे हैं क्योंकि अब धीरे धीरे दुनिया में कच्चे तेल की आपूर्ति सामान्य होने लगी है। इनमें भी ईरान के कच्चे तेल पर लगे प्रतिबंधों को अमेरिका ने अगले 60 दिनों के लिए हटा दिया है, और अगर इन 60 दिनों में इन दोनों देशों की फाइनल डील हो जाती है तो प्रतिबंध हमेशा के लिए निलंबित रहेगा। अब यह भारत के लिए अच्छी खबर है। अच्छी खबर इसलिए है क्योंकि ईरान का कच्चा तेल न सिर्फ सस्ता है बल्कि दोनों देशों के बीच दूरी भी कम है, जिससे कच्चा तेल लाने का खर्च कम हो सकता है। इसी में एक एडवांटेज और है कि ईरान हमें कच्चे तेल का भुगतान करने के लिए 60 से 90 दिनों का क्रेडिट पीरियड देता है, जबकि दूसरे देश हमें इसके लिए 30 दिनों का समय देते हैं। 2019 से पहले जब हम ईरान से कच्चा तेल खरीदते थे तब हमारे आयात में उसकी हिस्सेदारी 11.5% थी, और हाल ही में प्रतिबंध हटने के बाद हमने ईरान से 38,85,000 बैरल कच्चा तेल खरीदा। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ हमें ईरान के तेल की ही जरूरत है। ईरान अपने तेल को रिफाइन करने के लिए भारत की तेल रिफाइनरीज कंपनीज का इस्तेमाल का प्राथमिकता देता है, और अब भी प्रतिबंध हटने के बाद उसने हमसे संपर्क करना शुरू किया है। अब एक तरफ ईरान का कच्चा तेल हमारे पास आने वाला है, दूसरी तरफ रशिया से भी हम खूब तेल खरीद रहे हैं। आप इस ग्राफिक्स को देखिए, जून 2025 में भारत 44.4% कच्चा तेल रशिया से खरीद रहा था, लेकिन इस बार जून महीने में भारत ने आधे से भी ज्यादा यानी 53.9 लगभग 54% कच्चा तेल अकेले रशिया से खरीदा है। यानी आधे से ज्यादा कच्चा तेल हम रशिया से खरीद रहे हैं और अब कच्चे तेल की ज्यादा कमी है नहीं। इंडियन क्रूड बास्केट में एक बैरल कच्चा तेल $75 पर आ गया है, जबकि युद्ध से पहले इसी के आसपास $69 पर था। यह आंकड़े बताते हैं कि जब कच्चा तेल सस्ता किया जा सकता है और दूसरा अब पेट्रोल में इथेनॉल मिलाने की जरूरत पर भी जरूर विचार होना चाहिए। कम से कम सरकार लोगों को यह विकल्प दे सकती है कि वो अपनी गाड़ियों में E20 पेट्रोल डलवाना चाहते हैं या नहीं डलवाना चाहते। जैसे स्वीडन में लोगों के पास ये विकल्प होता है, वो अपनी गाड़ी में सिर्फ पेट्रोल डलवाना चाहते हैं या फिर एथेनॉल वाला फ्यूल डलवाना चाहते हैं। अमेरिका के भी कई राज्यों में पेट्रोल पंप पर अलग अलग विकल्प होते हैं। E0 का मतलब होता है बिना एथेनॉल, जबकि E10, E15, E85 वो तेल होता है जिसमें एथेनॉल मिलाया गया हो 15%, 85%। ये लोगों पर निर्भर करता है कि वो अपनी गाड़ियों में कौन सा पेट्रोल डलवाएंगे, और यहां बात सिर्फ अमेरिका और स्वीडन की नहीं है, जर्मनी में E5 है, E10 दोनों विकल्प मौजूद है। जिन लोगों के पास पुरानी गाड़ियां हैं उनके पास ये विकल्प रहता है कि वो E5 को चुने ताकि उनकी गाड़ियों को इससे नुकसान ना। और फ्रांस और कनाडा में रेगुलर गैसोलीन यानी बिना इथेनॉल वाले पेट्रोल और इथेनॉल वाले पेट्रोल के अलग अलग स्टेशन होते हैं, और हमारे देश में भी जब इस पर विवाद हो रहा है तो सरकार ये व्यवस्था कर सकती है। यहां आपको ये भी जानना चाहिए कि सरकार का लक्ष्य 2030 तक पेट्रोल में 20% इथेनॉल मिलाने का था, लेकिन इस लक्ष्य को उसने 5 साल पहले नवंबर 2025 में हासिल कर लिया, जिससे कई लोगों की शिकायत यह है कि यह सब कुछ रॉकेट की रफ्तार से कैसे हो गया। इसके अलावा सरकार ने साल 2024 में किसानों को यह प्रस्ताव दिया कि अगर वो मक्के की खेती करते हैं तो उनके साथ पूरे 5 साल का एक कॉन्ट्रैक्ट किया जाएगा और उन्हें MSP के साथ इसका लाभ मिलेगा। ये इसलिए बड़ा था क्योंकि भारत में मक्के की खपत भोजन के रूप में ज्यादा नहीं होती। भारत में कुल जो उत्पादित मक्के का केवल 20-25% हिस्सा ही सीधे तौर पर भोजन के रूप में खपत होता है, लेकिन फिर भी यह प्रस्ताव आया, और इसलिए आया क्योंकि मक्का से इथेनॉल बन सकता है। और यही कारण है अभी इस पर कई लोग नाराजगी जता रहे हैं, पूछ रहे हैं कि E20 पेट्रोल भारत में पेट्रोल वाली कीमतों पर ही क्यों मिलता है। खैर, इन सब के बीच एक और बड़ी खबर यह है कि भारत और अमेरिका के बीच ट्रेड डील के लिए अंतिम दौर की बातचीत शुरू हो चुकी है। इसके लिए अमेरिका के ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव जेमिसन ग्रीर भारत आ चुके हैं और इसी खबरें हैं कि हमारा देश अमेरिका से दो चीजें चाहता है। पहला, हम चाहते हैं कि ये ट्रेड डील सीधे लागू ना की जाए, इसकी जगह पहले एक अंतरिम या शुरुआती समझौता लागू और फिर आगे बड़े समझौतों की तरफ बढ़ा जाए। दूसरा, हम चाहते हैं कि अमेरिकी बाजारों में भारत के सामानों पर वियतनाम और अन्य एशियाई देशों की तुलना में कम टैरिफ लगे और हमें इस ट्रेड डील का बड़ा एडवांटेज मिले। ये एडवांटेज हमें क्यों चाहिए, उसके लिए आपको ये आंकड़े देखने चाहिए। अमेरिका वो देश है जिसके साथ व्यापार करने में हमें खूब मुनाफा होता था, लेकिन अब ये व्यापार मुनाफा यानी ट्रेड सरप्लस तेजी से घटने लगा है। मई महीने में भारत का व्यापार मुनाफा $2.4 बिलियन रहा, जबकि पिछले साल इसी मई महीने में यह व्यापार मुनाफा $5.02 बिलियन रहा। इसका मतलब यह हुआ कि सिर्फ एक साल में अमेरिका के साथ भारत का व्यापार मुनाफा 40% से ज्यादा कम हो गया और अमेरिका को इसका खूब एडवांटेज मिला है, खूब फायदा मिला है। कैसे, अब इन आंकड़ों को देखिए। पेट्रोलियम उत्पादों में अमेरिका का भारत को निर्यात 130%, इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में 136%, ऑर्गेनिक केमिकल्स में 98%, कॉपर उत्पादों में 159%, गाड़ियों और दूसरे वाहनों में 1,284% और ताजे फलों का निर्यात 15% बढ़ा। लेकिन इसी दौरान पेट्रोलियम उत्पादों में भारत का अमेरिका को 24% कम हो गया जो पेट्रोलियम उत्पाद थे, इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में 33%, ऑर्गेनिक केमिकल्स में 12%, कॉपर उत्पादों में 18%, गाड़ियों दूसरे वाहनों में 37%, ताजे फलों का निर्यात 10% कम हो गया। जब भी आतंकवाद की बात होती है, सुरक्षा एजेंसी से लेकर आम जनता के दिमाग में बंदूक और बारूद से लैस पुरुषों की तस्वीर उभरती है। लेकिन अब जो अगली खबर हम आपको दिखा रहे हैं, पिछले कुछ वक्त में भारत की खुफिया एजेंसियों ने जो गिरफ्तारियां की हैं उसने इस धारणा को लेकर सोचने पर मजबूर कर दिया। इसी महीने जयपुर के वाटिका इलाके से मिलिट्री इंटेलिजेंस के गुप्त इनपुट के आधार पर राजस्थान एटीएस ने छापेमारी की और जानते हैं इस दौरान सवाई माधवपुर की रहने वाली बबीता धाकड़ उर्फ खदीजा को गिरफ्तार कर लिया। बबीता की कहानी इस बात का सबसे बड़ा सबूत है कि कैसे सोशल मीडिया के बंद कमरों में महिलाओं का ब्रेन वॉश किया जा रहा है। मूल रूप से गंगापुर सिटी की रहने वाली बबीता सोशल मीडिया के जरिए पाकिस्तानी आकाओं के संपर्क में आई। पाकिस्तान के एक मुफ्ती ने उसे कलमा पढ़ाया, उनके इस्लाम कबूल करते हुए अपना नाम खदीजा उसने रख लिया। जब बबीता का मोबाइल खंगाला गया तो जांच अधिकारी दंग रह गए। उसके फोन में 2 सिम कार्ड थे, उसका फेसबुक अकाउंट देश विरोधी आपत्तिजनक कंटेंट से भरा पड़ा था, उसकी फ्रेंड लिस्ट में कई ऐसे प्रोफाइल थे जिन पर जैश ए मोहम्मद के झंडे, हथियारों से लैस आतंकियों की तस्वीरें लगी थी। इतना ही नहीं, उसके व्हाट्सएप पर कई पाकिस्तानी नंबर्स मिले जिनसे वो लगातार संपर्क में थी। शुरुआती जांच के मुताबिक पाकिस्तानी हैंडलर्स बबीता का ब्रेन वॉश कर चुके थे और उसे भारत में किसी बड़ी साजिश को अंजाम देने के बाद पाकिस्तान बुलाने की तैयारी भी थी। लेकिन एटीएस ने उससे पहले ही खदीजा को यूएपीए के तहत दबोच लिया। कोर्ट ने उसे 27 जून तक एटीएस की कस्टडी में भेज दिया है। बबीता और खदीजा को सिर्फ आप एक मोहरा मानिए। इस पूरे नेटवर्क के पीछे पाकिस्तान में बैठे आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद और उसकी एक सोची समझी क्रूर रणनीति है। मीडिया रिपोर्ट्स और खुफिया दस्तावेजों के मुताबिक जैश के सरगना मसूद अजहर ने बाकायदा महिलाओं के लिए एक अलग विंग तैयार कर दी है। तो नाम है जमातुल मोमिनात। इस विंग की कमान मसूद अजहर की बहनें सादिया और सुमेरा अजहर संभाल रही हैं। यह नेटवर्क बाकायदा तोहफा अल मोमिनात नाम से ऑनलाइन कोर्सेज चला रहा है जहां लाइव सेशंस के जरिए महिलाओं को जिहाद की थ्योरी पढ़ाई जाती है। यही वजह है कि यह मसला सिर्फ एक महिला बबीता उर्फ खदीजा तक सीमित नहीं है। बेंगलुरु से लेकर हैदराबाद और कश्मीर तक पढ़ी लिखी महिलाएं, डॉक्टर्स, ग्रेजुएट्स अब आतंकी संगठनों के रडार पर हैं, जिन्हें आतंक का नया चेहरा बनाया जा रहा है। पिछले एक साल में अगर आप देखिए तो देश के अलग अलग कोनों से महिलाओं की गिरफ्तारियां हुई हैं। इन मामलों में सुरक्षा एजेंसियों ने प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक्स यानी धमाके से पहले की साजिश के नेटवर्क को क्रैक किया। मार्च 2026 में हैदराबाद से सईदा बेगम की गिरफ्तारी हुई। 15 सदस्यों वाले कोर आइसिस ग्रुप का हिस्सा थी और क्लोज चैट ग्रुप्स के जरिए पूरे देश में जिहादी कंटेंट कोऑर्डिनेट कर रही थी। पिछले साल नवंबर में लखनऊ की एक यूनिवर्सिटी में काम करने वाली पढ़ी लिखी डॉक्टर शाहीन सईद को गिरफ्तार किया गया। आपको याद होगा ये लेडी डॉक्टर जैश और अंसार गजवातुल हिंद के लिए काम कर रही थी और इसकी निजी कार का इस्तेमाल हथियार बारूद की सप्लाई के लिए हो रहा था। इनकी निशानदेही पर फरीदाबाद से 2900 किलो विस्फोटक बरामद हुआ। जुलाई 2025 में गुजरात एटीएस ने बेंगलुरु से शमा परवीन को दबोचा। वो इंस्टाग्राम के जरिए सीधे पाकिस्तानी आकाओं के संपर्क में थी और भारत में अलकायदा का ऑनलाइन टेरर मॉड्यूल चला रही थी। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर आतंकी आका महिलाओं को निशाना क्यों बना रहे हैं। एक्सपर्ट्स के मुताबिक इसके पीछे

जाता है आतंकी इसी सामाजिक सोच का फायदा उठाकर उन्हें सुरक्षा घेरा भेदने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। दूसरा, मददगार की भूमिका। अक्सर महिलाएं सीधे बॉम्ब रखने नहीं जा रहे, असल में वो इस पूरे इकोसिस्टम की मास्टरमाइंड, लॉजिस्टिकल प्रोवाइडर यानी हथियार और गाड़ी का इंतजाम करने वाली और डिजिटल हैंडलर की भूमिका निभा रही है, जिससे वो लंबे समय तक कानून की नजरों से बचती है। और तीसरा, अकेलापन और इंटरनेट का जाल। बबीता और शमा परवीन जैसे मामलों में देखा गया कि सोशल मीडिया के जरिए महिलाओं के अकेलेपन या पारिवारिक अलगाव का फायदा उठाकर इतनी तेजी से ब्रेन वॉश किया जाता है कि वो कट्टरता के जाल में फंस जाती है। जयपुर की बबीता हो, लखनऊ की डॉक्टर शाहीन हो या बेंगलुरु की शमा, इन सभी की गिरफ्तारियों से एक बात साफ है कि आतंक की जंग अब सरहद से निकलकर स्मार्टफोन के बंद कमरों और सोशल मीडिया एप्स तक आ पहुंची है। आतंकी संगठन अब महिलाओं को एक हथियार की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं। हालांकि भारतीय एजेंसियां अब इनके डिजिटल फुटप्रिंट्स और बैंक ट्रेल्स को ट्रैक कर किसी भी बड़ी साजिश से पहले लेडी टेरर नेटवर्क को नेस्ताबूत करने में जुटी है। आज के लिए ब्लैक एंड व्हाइट में इतना ही। अब आपसे हमारी अगली मुलाकात होगी कल रात 9 बजे। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए और नीचा दिखाने की कोशिश वही करते हैं जो आपसे बहुत नीचे खड़े होते हैं। नमस्कार।

0: लखनऊ अग्निकांड ने सिर्फ एक शहर को नहीं बल्कि पूरे देश को हिलाकर रख दिया है। 15 लोग जलकर मर गए, वो भी उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में, जहां से सरकार चलती है, जहां बुलडोजर से लेकर एनकाउंटर तक के ऑर्डर निकाले जाते हैं। लेकिन एक बिल्डिंग जो रिहायशी इमारत के तौर पर बनाई जाती है और उसे कमर्शियल में तब्दील कर दिया जाता है, और राजधानी में बैठे सत्ताधीश बड़े बड़े ऑफिसर उससे आंखें मूंद लेते हैं, और वही बिल्डिंग 15 मौतों का मरघट बनकर स्याह खड़ी रहती है। वही जिम्मेदार है, वही सत्ताधीश इमारत का मुआयना करने पहुंचते हैं। सवाल सिर्फ यही इन्हीं ऑफिसर से, इन्हीं सत्ताधीशों से, कि क्या वो 15 मौतों की जिम्मेदारी लेकर खुद को आईना दिखा पाएंगे।
1: मेरा बेटा भी जिंदा होता, मेरा बेटा भी होता दुनिया में।
2: 15 लोग जिंदा जल गए, क्या जिंदगी इतनी सस्ती है?
3: ये पापा बचाओ, कैसे भी करके आग लग गए।
2: पहले ऐसा मुआयना होता तो अग्निकांड क्यों होता? पंद्रह मौतों का सवाल है, जिम्मेदारों को जवाब तो देना पड़ेगा। कैसे एक रिहायशी बिल्डिंग कमर्शियल में बदल गई? किस किस का भ्रष्टाचार 15 बेगुनाहों की मौत का कारण बना?
4: माँ के सामने बेटा अंदर,
5: मौके कोई था ही नहीं, बंद था सब। इसके लिए सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए।
6: परिवार पे जो भी भैया परिवार समझ सकता।
2: अब लखनऊ का पूरा प्रशासनिक अमला, सारे दिग्गज अधिकारी इस जलकर खाक हो चुकी इमारत के चप्पे चप्पे को नाप रहे हैं। आग कैसे लगी, कहां से लगी, कैसे फैली, और कैसे 15 लोग इस अग्निकांड में जिंदा जल गए? जांच के लिए लखनऊ के अलीगंज की इस 3 मंजिला इमारत में लगी भीषण आग की वजह जानने के लिए और जांच करने के लिए SIT का गठन किया गया है। इसमें अपर मुख्य सचिव पर्यटन अमृत अभिजात और ADG लखनऊ जोन प्रवीण कुमार को शामिल किया गया है। लखनऊ के ये दिग्गज अफसर 7 दिन के भीतर अपनी रिपोर्ट तैयार करके CM योगी को भेजेंगे। लेकिन जिस तरह से इस खाक हुई बिल्डिंग में अधिकारी अब खाक छान रहे हैं, अगर आग लगने से पहले इस कॉम्प्लेक्स की पड़ताल की गई होती और सिस्टम भ्रष्टाचार की भेंट ना चढ़ा होता तो 15 बेगुनाह लोग इस अग्निकुंड में ना समाए होते। इस तरह से पीड़ित परिवारों

0: के आंसू ना बह रहे होते।
1: एसआईटी की टीम में प्रवीण कुमार जो एडीजी हैं जोन वो और साथ साथ अमृत अभिजात मौजूद है जिन्होंने इंस्पेक्शन किया है, जांच की है इस पूरे मामले की कि आखिर किस तरीके से यहां पर ये घटना घटी है। इस एसआईटी रिपोर्ट बनाकर चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ को दी जाएगी और अब यहां पर माइक्रो लेवल पर हर उस चीज की जांच की जा रही है और परखा जा रहा है कि आखिर इस पूरे मामले पर क्या है। सर क्या क्या आपने जांच किया है अंदर किस तरीके से?
2: देखिए सब सारे फ्लोर्स पे गए हैं और जो घटना स्थल है वो भी देखा है। देखो तो अभी कुछ निर्णायक बताने की स्थिति में नहीं क्योंकि अभी सारी जांचें हो रही हैं एफएसएल वगैरह का।
0: लखनऊ अग्निकांड की परतें जब एक एक करके खुल रही हैं तो साफ साफ नजर आ रहा है कि ये कोई हादसा नहीं बल्कि सामूहिक हत्याकांड है जिसको उन भ्रष्ट अधिकारियों अफसरों जिम्मेदारों ने खुलेआम दिन दहाड़े बेखौफ होकर अंजाम दिया है।
3: एक बॉक्स नुमा ये बिल्डिंग है, इस बॉक्स नुमा बिल्डिंग के अंदर ही लोग सिर्फ इसी से जो बच्चे थे जो लोग थे वो इसी छोटे से रास्ते से और कोई रास्ता था ही नहीं, ये इस रास्ते से अंदर जाना बाहर जाना और जब आग लग गई तो उसकी वजह से धुएं ने और आग ने अफरा तफरी मच गई और लोग फंस गए। मतलब तीन फ्लोर की ये बिल्डिंग, उसके बाद ये बेसमेंट टोटली अगर कहा जाए तो सिर्फ और सिर्फ सुरक्षा मानकों को दरकिनार करके ये बनाया गया।
0: लखनऊ के उस अलीगंज में ये कॉम्प्लेक्स है जहां से हर छोटे बड़े अफसर से लेकर नेताओं की गाड़ियां गुजरती होंगी। इस तीन मंजिला कॉम्प्लेक्स को रिहायशी इमारत से कब कमर्शियल में तब्दील कर दिया गया और कब इसमें एनिमेशन सेंटर चलना शुरू हो गया इसकी न कभी जांच की गई न कभी पड़ताल, लेकिन भ्रष्टाचारियों की मुट्ठियां गर्म करके इसे मौत का कॉम्प्लेक्स बना दिया गया। सवाल इस अग्निकांड या कहे हत्याकांड के जिम्मेदारों से है, फायर डिपार्टमेंट ने कैसे अनदेखी की, कैसे लखनऊ डेवलपमेंट अथॉरिटी यानी LDA ने इसमें घोर लापरवाही बरती। 2016 में बनाए गए NBC यानी नेशनल बिल्डिंग कोड 2016 के नियमों की अनदेखी की गई।
4: जो मकान मालिक हैं, क्योंकि बिल्डिंग आवासी में पहले पास थी बाद में उन्होंने कमर्शियल रूप में उसका इस्तेमाल करना जब शुरू कर दिया है तो उनको फायर नाम से पूरा करना चाहिए था, आग बुझाने की पूरी व्यवस्था करनी चाहिए थी, लेकिन आग बुझाने की पूरी व्यवस्था में समुचित ढंग से किया नहीं था, इसलिए मकान मालिक की जिम्मेदारी ज्यादा बनती है वहां पर। दूसरी बात है कि जो अगर वो कमर्शियल रूप में इस्तेमाल कर ही रहे हैं तो वहां पर जो बिजली विभाग था उन्होंने उनका लोड सैंक्शन किया होगा कि कितनी AC चल रही है, कितना बिजली का खर्चा इनका आ रहा है, उस हिसाब से उनको वहां पर देखना चाहिए था, लेकिन उन्होंने मुझे लगता है देखा नहीं ध्यान से। और जो LDA की एरिया में आता है तो LDA ने क्या चीज देखा है, उनकी जिम्मेदारी बनती है।
0: जब ये बिल्डिंग रिहायशी से कमर्शियल कॉम्प्लेक्स में तब्दील हुई तो फायर ऑडिट क्यों नहीं किया गया, क्यों रिहायशी बिल्डिंग के कमर्शियल में बदलने पर LDA के अफसरों ने सर्वे नहीं किया, या फिर इन अफसरों के पहुंचने से पहले ही उनकी जेब उनकी कुर्सी पर ही गर्म कर दी गई। बड़ी बात यह भी है कि जिस इमारत में हादसा हुआ वहां 20 किलोवाट का कमर्शियल बिजली कनेक्शन स्वीकृत था। जांच में सामने आया है कि वास्तविक बिजली लोड बढ़कर 34 KVA से ज्यादा हो गया था। अप्रैल महीने में इमारत का लोड 24.30 KVA दर्ज किया गया था जो जून में और बढ़ गया। जानकारों के मुताबिक स्वीकृत क्षमता से कहीं अधिक लोड होने से तारों और ट्रांसफार्मर पर भारी दबाव था। भीषण गर्मी और ओवरलोडिंग के कारण शॉर्ट सर्किट की आशंका कई गुना बढ़ गई। बिजली विभाग ने मौके पर जाकर लोड चेक क्यों नहीं किया, कितना लोड कागजों में है और कितना बिजली का लोड खपत में आ रहा है, अगर इसकी चेकिंग की गई होती तो इतना बड़ा अग्निकांड नहीं हुआ होता।
5: जो कार्रवाई है उसकी बात कर लेते हैं तो सरकार सबसे पहले तो पुरनिया के जो थाना प्रभारी हैं उन्होंने FIR की, 6 लोगों पर मुकदमा तहरीर दी गई है, मुकदमा दर्ज हुआ, 4 गिरफ्तार कर लिए गए हैं जिसमें इस मकान के ओनर, इस मकान के दो जो ओनर हैं जिन्होंने कमर्शियल कॉम्प्लेक्स बनाया है और जिनकी कंपनियां यहां कार्यरत थी।
0: 3 मंजिला इस कॉम्प्लेक्स में बेसमेंट भी बनाया गया था, एंट्री एग्जिट के लिए सिर्फ एक छोटा सा रास्ता था और इस रास्ते के ऊपर 7 पैनल, 2 एग्जॉस्ट फैन, इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल पैनल लगाकर रास्ते को और छोटा कर दिया गया था। इमारत के मालिकों और सेंटर संचालकों ने इसे अनदेखा किया।
6: 2 बातें बहुत अहम हैं। एक तरफ जो तमाम जो जांचें चल रही हैं वो अपनी जगह है, लेकिन शायद 2 बातें अगर इसमें हो गई होती तो इतने बच्चों की जान नहीं जाती। एक, जो बायोमेट्रिक जिसके जरिए एक्सेस था उस एनिमेशन का जो इंस्टीट्यूट है उसके भीतर जाने और आने का, अगर वो बायोमेट्रिक लॉक नहीं हुआ होता यानी कि, तो शायद बच्चे निकल सकते थे। दूसरी बात, ऊपर अगर आपको दिखाएं तो आप देखिए ऊपर में एक पेंट हाउस जैसा है, यानी कि वो मकान मालिक जो है उसका अपना घर है, और कहा यह जा रहा है कि अगर ऊपर का घर का अगर सीढ़ी का रास्ता खुला होता तो भी ऊपर बच्चे भाग कर जान बचा सकते थे।
0: अब सवाल यही है कि जिस लखनऊ से बुलडोजर और एनकाउंटर के सीधे ऑर्डर निकलते हैं, वहां से भ्रष्टाचार के खिलाफ ऑर्डर क्यों नहीं निकलते? आखिर भ्रष्टाचार की आग कैसे बुझेगी? आज तक ब्यूरो।
7: लखनऊ अग्निकांड सरकारी महकमों की अंधेरगर्दी का साक्षात प्रमाण है, क्योंकि हादसे ने सरकारी दावों और जमीनी हकीकत के बीच की खाई को उजागर करके रख दिया है। सवाल जवाबदेही का है, पीड़ितों के परिजनों के इंसाफ का है। सवाल यह भी है कि जिस महकमे की कमान सीधे मुख्यमंत्री के हाथों में है, आखिर उस विभाग ने आम जनता को भगवान के भरोसे कैसे छोड़ दिया? क्या सीएम को ऑफिसर्स ने अंधेरे में रखा था, या फिर उत्तर प्रदेश में जनता की जान की कोई कीमत ही नहीं है?
8: ना कुछ देखेंगे ना कुछ सुनेंगे, क्योंकि जिंदगी लेना और देना तो ऊपर वालों के हाथों में है। ऐसे में जिम्मेदारों की जवाबदेही का कोई सवाल नहीं उठता। हादसे में मौत हुई तो साहब ने मौके का मुआयना कर लिया, जांच के आदेश दे दिए गए, मुआवजे का ऐलान कर दिया, संवेदना जताते हुए दो शब्द भी कह दिए। अब मृतकों की जान लौटाई तो जा नहीं सकती, तो इससे ज्यादा उनके परिजनों को क्या चाहिए? सरकार तो अपनी जिम्मेदारी पूरी तत्परता से निभा रही, फिर हादसा होगा फिर यही सरकारी रस्म अदा कर दी जाएगी। मतलब ना तो सिस्टम बदलेगा ना जिम्मेदार अपनी सोच बदलेंगे, यही होता आया है यही होता रहेगा, क्योंकि योगी सरकार के उत्तम प्रदेश में जनता की जिंदगी सरकारी सिस्टम के आगे सस्ती है। इतनी सस्ती कि अब पूरे सिस्टम से लोगों का भरोसा उठ चुका है। अतीत में हुए हादसों से लेकर लखनऊ अग्निकांड तक जिम्मेदारों के रवैये से पीड़ित इतना टूट चुके हैं कि ना उम्मीदी के अंधेरे में इंसाफ के उजाले की उम्मीद अब बेमानी है।
9: और ये ट्राई ट्राई फिर हो जाएगी चार दिन के बाद। वो अधिकारी वो कैसे नहीं, कैसे नक्शा पास कर दिए, कैसे क्या कर दिए, हाँ। अब उसमें होता है कि अभी सब पनिश किए जाएंगे, सब कुछ किया जाएगा। अब उसके बाद
10: आपका कहना है कि चार दिन में सब भूल जाएंगे?
9: सात दस दिन के बाद सब भूल जाते हैं।
11: एसआईटी बनाए चाहे कुछ भी बनाए, लेकिन मेरे देवर को तो वापस नहीं दे सकते ना। कितनों के घर उजड़ गए, कितने देवर, कितने भाई बहन, किसके किसके बच्चे होंगे सर, वो बेचारे नहीं रहे अब इस दुनिया में, क्या करेंगे? उनके माँ किसी का वो एक सहारा, किसी के इकलौते बच्चे होंगे।
8: मुख्यमंत्री की तरफ से दोषियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई का ऐलान भी पीड़ितों के दिलों में सोते हुए सिस्टम के जागने का भरोसा नहीं जगा सकता।
12: इस पूरे मामले की तह में हम जाकर के दोषियों को सजा भी दे सकें और उन पीड़ित परिवारों के प्रति अपनी संवेदना भी व्यक्त कर सकें।
13: जांच कुछ नहीं होगी, सिर्फ कागजी कार्रवाई होगी और कुछ नहीं होगा वहाँ पे। ना आज तक हुआ ना आगे ऐसा होगा,
14: ऐसा चलता रहेगा। मेरे को कोई उम्मीद नहीं है, कच्चा जो गवर्नमेंट आ जाए, लोग ही ऐसे हैं, पैसे दे के सब पास हो जाता है, अब वो ऐसे होता रहेगा, तो इसमें मुझे उम्मीद नहीं है।
15: हादसा हो जाने के बाद किस चीज कोई बात करे, क्या वापस कर सकता है? वो वापस तो नहीं कर सकता, केवल समस्या को समाधान करने के लिए, सुलझाने के लिए केवल आश्वासन देंगे। पर
8: पहले की तरह लखनऊ अग्निकांड के बाद पीछे है परिजनों की पीड़ा, रोते बिलखते लोग, जांच और मुआवजे की खाना पूर्ति, लेकिन पीड़ितों के आंसुओं का हिसाब न कभी मिला, न मिलने की उम्मीद और न कोई दे पाया है। सोचिए रिहायशी इलाके में नियमों को ताक पर रखकर खड़ी की गई ये कमर्शियल बिल्डिंग न सिर्फ अवैध थी बल्कि सुरक्षा के लिहाज से एक डेथ ट्रैप बन चुकी थी, लेकिन न देखने वाला कोई न सुनने वाला कोई। आम जनता हादसे का शिकार बनती है तो बनती रहे। लखनऊ में हुए अग्निकांड में 15 जिंदगियां मौत के गाल में सवार। अगर जिम्मेदारों ने आंखों पर रिश्वत की पट्टी नहीं बांधी होती तो ये बच जाते। यही है आम जनता की सुरक्षा की गारंटी, मतलब सिस्टम के भरोसे नहीं बल्कि भगवान के भरोसे जियो। जबकि माननीय और साहब तो पूरे ठसक के साथ सुरक्षा के वीवीआईपी प्रोटोकॉल में चलते हैं। मजाल है कि बिना इजाजत परिंदा भी परवार दे, क्योंकि माननीय और सरकारी लाट साहबों की जिंदगी का मोल है और आम जनता की जिंदगी का कोई नहीं।
11: अभी अपने को कुछ होता है तो प्रशासन तुरंत दौड़ जाएगा। ये वीआईपी यहाँ पर जब मंत्री निकलते हैं तो तुरंत रास्ता बंद कर दिया जाता है। आम आदमी खड़ा रहता है, बच्चे धूप में स्कूल चलाते भी लगते, तब गवर्नमेंट को तरस नहीं आता जनता पे।
8: अगर आम जनता की जिंदगी की परवाह होती तो लखनऊ के अलीगंज में सरकारी तंत्र की नाक के नीचे मौत की इमारत कभी खड़ी नहीं होती। इमारत की नींव से लेकर छत पर लगी आखिरी ईंट तक में सरकारी भ्रष्टाचार का सीमेंट भरा पड़ा है। इतना मजबूत सीमेंट कि कोई हिसाब नहीं। ये सब कैसे हुआ ये भी समझिए। सरकार की हर साख पर 15 बेगुनाहों के खून के छींटे, एक नहीं बल्कि 4-4 विभागों की अंधेरगर्दी आम जनता की जिंदगी पर भारी पड़ी। मौत की बिल्डिंग अवैध थी लेकिन सिस्टम की आंखें बंद थी। आज कटघरे में खड़ा है लखनऊ विकास प्राधिकरण, लखनऊ नगर निगम और उसके कर्ता धर्ता। सवाल यही कि दोनों विभागों ने अपनी जिम्मेदारी क्यों नहीं निभाई, भ्रष्टाचार की इमारत क्यों खड़ी थी। ये तब है जब लखनऊ विकास प्राधिकरण जिस विभाग को रिपोर्ट करता है उसके मुखिया सीधे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ है। मुख्यमंत्री की नाक के नीचे काम करने वाले हाउसिंग एंड अर्बन प्लानिंग विभाग की अंधेरगर्दी ने जिंदगी के 15 चिराग बुझा दिए, जिसके लिए सीधे जिम्मेदार हाउसिंग एंड अर्बन प्लानिंग विभाग के मुख्य सचिव पी गुरुप्रसाद, एलडीए के चेयरमैन रोशन जैकब, एलडीए के वीसी प्रथमेश कुमार, लखनऊ नगर निगम के नगर आयुक्त गौरव कुमार, जो नगर विकास मंत्री अरविंद कुमार शर्मा को रिपोर्ट करते हैं। इनका जिम्मा अवैध निर्माण को रोकना और अवैध निर्माण को ढहाना। आंखें बंद थी तो कोई वक्त रहते एक्शन कभी नहीं लिया गया। सरकारी व्यवस्था में अव्यवस्था का दीमा सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं था। सरकारी मुलाजिमों को पता था अलीगंज में खड़ी मौत की इमारत कभी भी आम जनता का जीवन छीन सकती है, लेकिन सब कुछ जानते हुए भी बिजली विभाग ने आंखें मूंदे रखी। अवैध बिल्डिंग मांग से ज्यादा बिजली खपत के बावजूद बिजली विभाग के कान जूं कभी नहीं रहेंगी। सब कुछ चलता है, चलता रहेगा के हिसाब से चलता रहा। बिजली विभाग ने अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाई, जिसके मंत्री हैं अरविंद कुमार शर्मा और जिम्मेदार हैं यूपीपीसीएल के चेयरमैन और लखनऊ की बिजली आपूर्ति का जिम्मा संभाल रहे अफसर आशीष कुमार गोयल। वक्त रहते बिजली विभाग ने कार्रवाई की होती 15 जिंदगी बच जाती।
16: ऐसी घटनाएं न हो इसके लिए पूरी तरह सजगता के साथ हम और पूरी सरकार प्रयास करेंगे और ये देखेंगे कि ऐसी घटनाओं का जो भी कारण है वो भविष्य में ऐसी घटनाओं के कारण न बने।
8: ऐसा पहली बार नहीं हुआ कि योगी के राज में सरकारी सिस्टम की लापरवाही जानलेवा साबित हुई। इससे पहले भी सिस्टम की लापरवाही के चलते कई बार लोग बेमौत मारे गए, लेकिन जिम्मेदारों पर कार्रवाई आज तक नहीं हुई। यही है योगी सरकार का ट्रैक रिकॉर्ड और रिपोर्ट कार्ड। महाकुंभ भगदड़, 37 श्रद्धालुओं की मौत, कोई बड़ा अफसर नहीं नपा। हाथरस सत्संग भगदड़, 121 लोगों की मौत, कोई बड़ा अफसर नहीं नपा। झांसी मेडिकल कॉलेज आग, 18 नवजात बच्चों की मौत, किसी बड़े अफसर पर गाज नहीं गिरी। आगरा नोएडा एक्सप्रेसवे हादसा, 19 यात्रियों की मौत, कोई अफसर नहीं नपा। जब सिस्टम की सोच पर सिर्फ आश्वासन का पर्दा पड़ा हो तो जिम्मेदार हर बार अपनी जवाबदेही से बच जाते हैं और आम जनता की जान चली जाती है।
7: महाराष्ट्र में ऑपरेशन टाइगर को अंजाम देने के बाद एकनाथ शिंदे सियासत की पिच पर फ्रंट फुट पर बैटिंग कर रहे हैं, जबकि उद्धव ठाकरे और आदित्य ठाकरे बैकफुट पर नजर आ रहे हैं। इसी बीच विधानसभा से शिंदे की गैर मौजूदगी पर विपक्ष ने जमकर हंगामा करते हुए वॉकआउट कर दिया। जूनियर ठाकरे ने पूछा कि आखिर शिंदे जनता के मुद्दों पर भी जवाब देने से क्यों कतराते हैं। इस पर शिंदे ने कहा है कि पार्टी में बगावत के बाद उद्धव खेमा सदमे में है।
17: छह सांसदों की बगावत से उद्धव ठाकरे बैकफुट पर नजर आ रहे हैं, लेकिन जूनियर ठाकरे इस मामले में बेहद आक्रामक लुक अपना रहे हैं। आज आदित्य ठाकरे और एकनाथ शिंदे दोनों ने महाराष्ट्र विधानसभा में एक दूसरे पर जोरदार हमले किए। विपक्ष ने डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे पर अपने विभागों के काम से बचने का आरोप लगाते हुए सदन से वॉकआउट कर दिया। जयंत पाटिल, विजय वडेट्टीवार, नाना पटोले और आदित्य ठाकरे जैसे नेताओं ने आरोप लगाए कि शिंदे गैर कानूनी तरीके से अपने विभाग के सवाल दूसरे मंत्रियों को दे देते हैं और खुद सदन से गैर हाजिर हो जाते हैं।
18: बहिष्कार का कारण यही आज हमने जो वॉकआउट किया इसलिए किया है क्योंकि हर अधिवेशन देखें तो 2022 से जब से सरकार को इन्होंने गिराया, गद्दारों ने गिराया, तो हर अधिवेशन में फेकनाथ मिंदे खुद की जिम्मेदारी को टालते हैं। जो भी सवाल आते हैं, जो हम सवाल पूछते हैं क्वेश्चन आर में, ये सारे सवाल जनता के, ये महाराष्ट्र के सवाल है और उनका जवाब अपेक्षित है। लेकिन हर एक अधिवेशन में आप देखें, हर एक सेशन में देखें, हर एक सत्र में देखें, तो ये किसी ना किसी को अधिवेशन मंत्री बना दे गए कि आज ये जवाब देंगे, आज वो जवाब देंगे। तो आपने क्यों रखा है वो डिपार्टमेंट भाई? वो डिपार्टमेंट भी दे दो ना आप उनको परमानेंटली, लेकिन पैसा निकालने के लिए, घोटाला करने के लिए, भ्रष्टाचार करने के लिए खुद के पास डिपार्टमेंट रखते हो और जब जवाब देने का समय आता है उस वक्त आप भाग जाते हो। अगर आपको जवाब देना आता नहीं है तो क्यों बनते हो उसके मंत्री? अगर आज की स्थिति में देखें तो मुख्यमंत्री महोदय स्वयं खुद के जो डिपार्टमेंट से उनका जवाब देते हैं, अगर सीएम साहब दे सकते हैं तो आप क्यों नहीं दे सकते?
17: विधानसभा स्पीकर राहुल नार्वेकर ने विपक्ष को जवाब देते हुए साफ किया कि कार्यवाही में विधानसभा के नियमों का सख्ती से पालन किया गया है। हालांकि फैसले से नाखुश विपक्ष ने वॉकआउट कर दिया, जिसके कुछ देर बाद शिंदे सदन में आए और विपक्ष के आरोपों का चुन चुन कर जवाब दिया। शिंदे बोले, उद्धव की बची खुची सेना ऑपरेशन टाइगर के बाद से सदमे में है।
19: ये बात आप उनको पूछिए, मुझे पूछने की आवश्यकता नहीं। कल का झटका उनको बहुत जोर का बैठा है, आज सदन में उसके परिणाम दिख रहे थे, उनका संतुलन बिगड़ चुका है।
17: शिंदे ने आदित्य ठाकरे पर पलटवार करते हुए कहा कि जिनके घर शीशे के होते हैं वो दूसरों पर पत्थर नहीं फेंका करते।
19: मैंने कल कहा कि ये 6 सांसद शिवसेना में शामिल हुए, आपके सामने लाया था ना उन्हें, अभी लोकसभा लीगल प्रोसीडिंग कंप्लीट हो चुकी है, लोकसभा अध्यक्ष जी के पास जो भी कानूनी कार्रवाई करनी थी, जो भी घटनात्मक कार्यवाही उनके पास करनी थी वो सब पूरी हो चुकी है, और इसलिए कोई भी कुछ भी कहे आप उस पर भरोसा मत रखो।
17: शिंदे ने बताया कि महायुति सरकार ने मुआवजे के क्राइटेरिया को दोगुना करके किसानों की मदद के लिए 45,000 करोड़ रुपए दिए हैं। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र विकास के पद पर लगातार बढ़ रहा है, जबकि जनता में विपक्ष की विश्वसनीयता कम होती जा रही है।
20: आज जब क्वेश्चन आर शुरू था और जब सवाल पूछे गए तो वहां पर उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे उनके जवाब देने के लिए मौजूद नहीं थे, और इसी मुद्दे को लेकर विपक्ष आक्रामक हुआ। आदित्य ठाकरे ने एकनाथ शिंदे के नाम को लेकर सवाल पूछे और वो उपस्थित क्यों नहीं है, वो अपने ही खाते के जो सवाल है उस पे जवाब क्यों नहीं दे रहे, क्या उन्होंने खाते सिर्फ घोटाले के लिए अपने पास रखे हैं, ऐसे सवाल पूछे, जिसके बाद विपक्ष ने विधानसभा में वॉकआउट कर दिया। और वॉकआउट करने के बाद कुछ ही समय में उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे सभागृह में आए, उन्होंने उन सारे सवालों के जवाब देने की कोशिश की और साथ ही साथ पलटवार भी किया। उन्होंने कहा कि जिनके घर शीशे के होते वो दूसरों पर पत्थर नहीं फेंका करते, और उन्होंने ये भी कहा कि कहीं ना कहीं आदित्य ठाकरे और उनकी शिवसेना गुट को जोर का झटका धीरे से लगा है और इसीलिए वो तिल मिलाकर उठे हुए है। अब देखना ये जरूरी है कि इस बगावत के बाद क्या मानसून सत्र के महाराष्ट्र के विधानसभा में भी उसके परिणाम इसी तरह देखने को मिलेंगे। कैमरा पर्सन सचिन सावन के साथ मैं ऋत्विक भालेकर, मुंबई आज तक।
7: कांग्रेस ने मध्य प्रदेश की मोहन यादव सरकार पर बड़ा हमला बोला है। मध्य प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष जीतू पटवारी ने आरोप लगाया है कि मोहन यादव और उनके परिवार ने उज्जैन में जहां जमीनें खरीदी वहीं से परियोजनाएं निकाली गई हैं।
17: मध्य प्रदेश कांग्रेस ने बाकायदा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सीएम मोहन यादव पर उज्जैन में जमीन खरीदी को लेकर सनसनीखेज आरोप लगाए। कांग्रेस का आरोप है कि मुख्यमंत्री बनने के बाद मोहन यादव और उनके परिवार की ओर से जमीन खरीद में तेजी आई और जिन क्षेत्रों में बाद में विकास परियोजनाएं घोषित हुई वहां पहले से जमीन खरीदी गई। जीतू पटवारी ने कहा कि उज्जैन में जमीन खरीद का मामला भी गंभीर सवाल खड़े कर रहा है।
21: मुख्यमंत्री परिवार की सभी कंपनियों के हिस्सेदार फॉरेंसिक ऑडिट कराने के लिए तैयार है। मीडिया रिपोर्ट्स ने दावा किया कि भूमि खरीदी के कुछ समय बाद ही हाउसिंग प्रोजेक्ट बिल्डर एग्रीमेंट शुरू हो गए उन कंपनी उन जमीनों पर, क्या पहले नियोजित व्यवसाय की रणनीति का हिस्सा था ये जमीन खरीदेंगे, मास्टर प्लान में चेंज आएंगे, परियोजना लाएंगे, उस बीच में रियल एस्टेट कंपनी से हम अपना एग्रीमेंट करेंगे और जो 10 रुपए की जमीन है वो 1000 रुपए की करेंगे। ये पहले से प्लान आउट था क्या? क्या ये सही है कि कुछ परियोजनाओं में भूमि मालिकों के विकसित संपत्ति 60% से 70% का हिस्सा है जिनकी भूमि है मुख्यमंत्री की हो उसके परिवार की हो।
1: जीतू पटवारी के मुताबिक मोहन यादव 2021 में मंत्री बने थे, 13 दिसंबर 2023 में वो मुख्यमंत्री बने। 21 से 23 के बीच में उनके परिवार के निकट सदस्यों के पास लगभग 194 प्लॉट बने। उनके परिवार के पास अलग अलग जगहों पर 253 एकड़ जमीनें हैं। उन्होंने आरोप लगाया है कि 21 से 25 के बीच में 253 एकड़ जमीनें खरीदी गई हैं। सूत्रों के मुताबिक सीएम दफ्तर ने इस पर सफाई दी है, जिसमें लिखा है कि मुख्यमंत्री मोहन यादव ने दिसंबर 2023 में मुख्यमंत्री बनने के बाद कोई जमीन नहीं खरीदी है। मुख्यमंत्री मोहन यादव की पत्नी सीमा यादव ने भी उनके मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री बनने के बाद कोई जमीन नहीं खरीदी है। मोहन यादव का दफ्तर इस पर बाद में एक विस्तृत रिपोर्ट भी जारी करेगा। आज तक ब्यूरो।
7: इसी के साथ हम यहाँ रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए। आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आज तक।

0: लखनऊ अग्निकांड पर सीएम योगी की समीक्षा बैठक का फायर सेफ्टी मानकों से समझौता नहीं। अखिलेश बोले बीजेपी राज में पास नक्शों का हो हिसाब। ब्रिजेश पाठक ने मौत पर राजनीति न करने की नसीहत दी। चार आरोपियों को न्यायिक हिरासत। राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में एसआईटी ने यूपी सरकार को सौंपी प्रारंभिक रिपोर्ट। फिलहाल किसी को क्लीन चिट नहीं। कुछ कर्मचारियों पर केस की सिफारिश। एसपी सांसद अवधेश प्रसाद ने सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के तहत जांच की मांग की। भोजपुर के भरत तिवारी एनकाउंटर पर एक्शन। जगदीशपुर के एसडीपीओ शाहपुर थानाध्यक्ष समेत कई पुलिसकर्मियों पर एफआईआर। बवाल के बाद बैकफुट पर बिहार पुलिस। नीट पर आज तक से बोले धर्मेंद्र प्रधान, लीग के मुजरिमों को छोड़ेंगे नहीं। दोबारा गड़बड़ी रोकने की पूरी कोशिश। राहुल गांधी पर लगाया छात्रों को भड़काने का आरोप। पद्म पुरस्कारों से 65 हस्तियां सम्मानित। शिबू सोरेन को मिला मरणोपरांत पद्म भूषण। रोहित शर्मा, अलका याग्निक, ममूटी को राष्ट्रपति ने दिया सम्मान। लखनऊ अग्निकांड ने सिर्फ एक शहर को नहीं बल्कि पूरे देश को हिलाकर रख दिया है। 15 लोग जलकर मर गए, वो भी उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में, जहां से सरकार चलती है, जहां बुलडोजर से लेकर एनकाउंटर तक के ऑर्डर निकाले जाते हैं। लेकिन एक बिल्डिंग जो रिहायशी इमारत के तौर पर बनाई जाती है और उसे कमर्शियल में तब्दील कर दिया जाता है, और राजधानी में बैठे सत्ताधीश बड़े बड़े ऑफिसर उससे आंखें मूंद लेते हैं, और वही बिल्डिंग 15 मौतों का मरघट बनकर स्याह खड़ी रहती है। वही जिम्मेदार है, वही सत्ताधीश इमारत का मुआयना करने पहुंचते हैं। सवाल सिर्फ यही इन्हीं ऑफिसर से, इन्हीं सत्ताधीशों से, कि क्या वो 15 मौतों की जिम्मेदारी लेकर खुद को आईना दिखा पाएंगे।
1: मेरा बेटा भी जिंदा होता, मेरा बेटा भी होता दुनिया में।
2: 15 लोग जिंदा जल गए, क्या जिंदगी इतनी सस्ती है?
3: ये पापा बचाओ कैसे भी करके, आग लग गए।
2: पहले ऐसा मुआयना होता तो अग्निकांड क्यों होता? पंद्रह मौतों का सवाल है, जिम्मेदारों को जवाब तो देना पड़ेगा। कैसे एक रिहायशी बिल्डिंग कमर्शियल में बदल गई? किस किस का भ्रष्टाचार 15 बेगुनाहों की मौत का कारण बना?
4: माँ के सामने बेटा अंदर,
5: मौके कोई था ही नहीं, बंद था सब। इसके लिए सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए।
6: परिवार पे जो भी भैया परिवार समझ सकता है।
2: अब लखनऊ का पूरा प्रशासनिक अमला, सारे दिग्गज अधिकारी इस जलकर खाक हो चुकी इमारत के चप्पे चप्पे को नाप रहे हैं। आग कैसे लगी, कहां से लगी, कैसे फैली, और कैसे 15 लोग इस अग्निकांड में जिंदा जल गए? जांच के लिए लखनऊ के अलीगंज की इस 3 मंजिला इमारत में लगी भीषण आग की वजह जानने के लिए और जांच करने के लिए एसआईटी का गठन किया गया है। इसमें अपर मुख्य सचिव पर्यटन अमृत अभिजात और एडीजी लखनऊ जोन प्रवीण कुमार को शामिल किया गया है। लखनऊ के ये दिग्गज अफसर 7 दिन के भीतर अपनी रिपोर्ट तैयार करके सीएम योगी को भेजेंगे। लेकिन जिस तरह से इस खाक हुई बिल्डिंग में अधिकारी अब खाक छान रहे हैं, अगर आग लगने से पहले इस कॉम्प्लेक्स की पड़ताल की गई होती और सिस्टम भ्रष्टाचार की भेंट ना चढ़ा होता, तो 15 बेगुनाह लोग इस अग्निकुंड में ना समाये होते। इस तरह से पीड़ित परिवारों के आंसू ना बह रहे होते।
7: एसआईटी की टीम में प्रवीण कुमार जो एडीजी है जोन वो, और साथ साथ अमृत अभिजात मौजूद है, जिन्होंने इंस्पेक्शन किया है, जांच की है इस पूरे मामले की, कि आखिर किस तरीके से यहां पर ये घटना घटी है। इस एसआईटी रिपोर्ट बनाकर चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ को दी जाएगी और अब यहाँ पर माइक्रो लेवल पर हर उस चीज की जांच की जा रही है और परखा जा रहा है कि आखिर इस पूरे मामले पर क्या है। सर, क्या क्या आपने जांच किया है अंदर, किस तरीके से?
8: देखिए, सब सारे फ्लोर्स पे गए हैं और जो घटना स्थल है वो भी देखा है। तो अभी कुछ निर्णायक बताने की स्थिति में नहीं, क्योंकि अभी सर जांचें हो रही हैं एफएसएल वगैरह का।
2: लखनऊ अग्निकांड की बातें जब एक एक करके खुल रही हैं, तो साफ साफ नजर आ रहा है कि ये कोई हादसा नहीं बल्कि सामूहिक हत्याकांड है, जिसको उन भ्रष्ट अधिकारियों, अफसरों, जिम्मेदारों ने खुलेआम दिन दहाड़े बेखौफ होकर अंजाम दिया है।
9: एक बॉक्स नुमा ये बिल्डिंग है, इस बॉक्स नुमा बिल्डिंग के अंदर ही लोग सिर्फ इसी से, जो बच्चे थे, जो लोग थे, वो इसी छोटे से रास्ते से, और कोई रास्ता था ही नहीं, ये इस रास्ते से अंदर जाना, बाहर जाना। और जब आग लग गई तो उसकी वजह से धुएं ने और आग ने अफरा तफरी मच गई और लोग फंस गए। मतलब तीन फ्लोर की ये बिल्डिंग, उसके बाद ये बेसमेंट, टोटली अगर कहा जाए तो सिर्फ और सिर्फ सुरक्षा मानकों को दरकिनार करके ये बनाया गया।
2: लखनऊ के उस अलीगंज में ये कॉम्प्लेक्स है जहां से हर छोटे बड़े अफसर से लेकर नेताओं की गाड़ियां गुजरती होंगी। इस तीन मंजिला कॉम्प्लेक्स को रिहायशी इमारत से कब कमर्शियल में तब्दील कर दिया गया और कब इसमें एनिमेशन सेंटर चलना शुरू हो गया, इसकी न कभी जाँच की गयी न कभी पड़ताल, लेकिन भ्रष्टाचारियों की मुठ्ठियाँ गर्म करके इसे मौत का कॉम्प्लेक्स बना दिया गया। सवाल इस अग्निकांड या कहें हत्याकांड के जिम्मेदारों से है, फायर डिपार्टमेंट ने कैसे अनदेखी की, कैसे लखनऊ डेवलपमेंट अथॉरिटी यानी एलडीए ने इसमें घोर लापरवाही बरती। 2016 में बनाए गए एनबीसी यानी नेशनल बिल्डिंग कोड 2016 के नियमों की अनदेखी की गई।
10: जो मकान मालिक हैं, क्योंकि बिल्डिंग आवासीय में पहले पास थी, बाद में उन्होंने कमर्शियल रूप में उसका इस्तेमाल करना जब शुरू कर दिया है, तो उनको फायर नाम से पूरा करना चाहिए था, आग बुझाने की पूरी व्यवस्था करनी चाहिए थी, लेकिन आग बुझाने की पूरी व्यवस्था में समुचित रूप से किया नहीं था, इसलिए मकान मालिक की जिम्मेदारी ज्यादा बनती है वहां पर। दूसरी बात यह कि जो अगर वो कमर्शियल रूप में इस्तेमाल कर ही रहे हैं, तो वहां पर जो बिजली विभाग था, उन्होंने उनका लोड सैंक्शन किया होगा कि कितनी एसी चल रही है, कितना बिजली का खर्चा इनका आ रहा है, उस हिसाब से उनको वहां पर देखना चाहिए था, लेकिन उन्होंने, मुझे लगता है, देखा नहीं ध्यान से। और जो एलडीए है, एलडीए की एरिया में आता है, तो एलडीए ने क्या चीज देखा है, उनकी जिम्मेदारी बनती है।
2: जब ये बिल्डिंग रिहायशी से कमर्शियल कॉम्प्लेक्स में तब्दील हुई तो फायर ऑडिट क्यों नहीं किया गया? क्यों रिहायशी बिल्डिंग के कमर्शियल में बदलने पर एलडीए के अफसरों ने सर्वे नहीं किया, या फिर इन अफसरों के पहुंचने से पहले ही उनकी जेब उनकी कुर्सी पर ही गर्म कर दी गई? बड़ी बात यह भी है कि जिस इमारत में हादसा हुआ वहां 20 किलोवाट का कमर्शियल बिजली कनेक्शन स्वीकृत था। जांच में सामने आया है कि वास्तविक बिजली लोड बढ़कर 34 केवीए से ज्यादा हो गया था। अप्रैल महीने में इमारत का लोड 24.30 केवीए दर्ज किया गया था, जो जून में और बढ़ गया। जानकारों के मुताबिक स्वीकृत क्षमता से कहीं अधिक लोड होने से तारों और ट्रांसफार्मर पर भारी दबाव था। भीषण गर्मी और ओवरलोडिंग के कारण शॉर्ट सर्किट की आशंका कई गुना बढ़ गई। बिजली विभाग ने मौके पर जाकर लोड चेक क्यों नहीं किया? कितना लोड कागजों में है और कितना बिजली का लोड खपत में आ रहा है? अगर इसकी चेकिंग की गई होती तो इतना बड़ा अग्निकांड नहीं हुआ होता।
11: जो कार्रवाई है उसकी बात कर लेते हैं, तो सरकार सबसे पहले तो पुरनिया के जो थाना प्रभारी हैं, उन्होंने एफआईआर की, 6 लोगों पर मुकदमा तहरीर दी गई है, मुकदमा दर्ज हुआ, 4 गिरफ्तार कर लिए गए हैं, जिसमें इस मकान के ओनर, इस मकान के दो जो ओनर हैं जिन्होंने कमर्शियल कम्प्लेक्स बनाया है और जिनकी कंपनियां यहां कार्यरत थीं।
2: 3 मंजिला इस कॉम्प्लेक्स में बेसमेंट भी बनाया गया था, एंट्री एग्जिट के लिए सिर्फ एक छोटा सा रास्ता था और इस रास्ते के ऊपर 7 पैनल, 2 एग्जॉस्ट फैन, इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल पैनल लगाकर रास्ते को और छोटा कर दिया गया था। इमारत के मालिकों और सेंटर संचालकों ने इसे अनदेखा किया।
11: दो बातें बहुत अहम हैं। एक तरफ जो तमाम जो जांचें चल रही हैं वो अपनी जगह है, लेकिन शायद दो बातें अगर इसमें हो गई होती तो इतने बच्चों की जान नहीं जाती। एक, जो बायोमेट्रिक जिसके जरिए एक्सेस था उस एनिमेशन का, जो इंस्टीट्यूट है उसके भीतर जाने और आने का, अगर वो बायोमेट्रिक लॉक नहीं हुआ होता यानी कि, तो शायद बच्चे निकल सकते थे। दूसरी बात, ऊपर अगर आपको दिखाएं तो आप देखिए ऊपर में एक पेंट हाउस जैसा है, यानी कि वो मकान मालिक जो है उसका अपना घर है, और कहा यह जा रहा है कि अगर ऊपर का घर का अगर सीढ़ी का रास्ता खुला होता तो भी ऊपर बच्चे भाग कर जान बचा सकते थे।
2: अब सवाल यही है कि जिस लखनऊ से बुलडोजर और एनकाउंटर के सीधे ऑर्डर निकलते हैं, वहाँ से भ्रष्टाचार के खिलाफ ऑर्डर क्यों नहीं निकलते? आखिर भ्रष्टाचार की आग कैसे बुझेगी? आज तक ब्यूरो।
0: लखनऊ अग्निकांड सरकारी महकमों की अंधेरगर्दी का साक्षात प्रमाण है, क्योंकि हादसे ने सरकारी दावों और जमीनी हकीकत के बीच की खाई को उजागर करके रख दिया है। सवाल जवाबदेही का है, पीड़ितों के परिजनों के इंसाफ का है। सवाल यह भी है कि जिस महकमे की कमान सीधे मुख्यमंत्री के हाथों में है, आखिर उस विभाग ने आम जनता को भगवान के भरोसे कैसे छोड़ दिया? क्या सीएम को ऑफिसर्स ने अंधेरे में रखा था, या फिर उत्तर प्रदेश में जनता की जान की कोई कीमत ही नहीं है?
12: ना कुछ देखेंगे ना कुछ सुनेंगे, क्योंकि जिंदगी लेना और देना तो ऊपर वालों के हाथों में है। ऐसे में जिम्मेदारों की जवाबदेही का कोई सवाल नहीं उठता। हादसे में मौत हुई तो साहब ने मौके का मुआयना कर लिया, जांच के आदेश दे दिए गए, मुआवजे का ऐलान कर दिया, संवेदना जताते हुए दो शब्द भी कह दिए। अब मृतकों की जान लौटाई तो जा नहीं सकती, तो इससे ज्यादा उनके परिजनों को क्या चाहिए? सरकार तो अपनी जिम्मेदारी पूरी तत्परता से निभा रही, फिर हादसा होगा, फिर यही सरकारी रस्म अदा कर दी जाएगी। मतलब ना तो सिस्टम बदलेगा, ना जिम्मेदार अपनी सोच बदलेंगे। यही होता आया है, यही होता रहेगा, क्योंकि योगी सरकार के उत्तम प्रदेश में जनता की जिंदगी सरकारी सिस्टम के आगे सस्ती है। इतनी सस्ती कि अब पूरे सिस्टम से लोगों का भरोसा उठ चुका है। अतीत में हुए हादसों से लेकर लखनऊ अग्निकांड तक जिम्मेदारों के रवैये से पीड़ित इतना टूट चुके हैं कि ना उम्मीदी के अंधेरे में इंसाफ के उजाले की उम्मीद अब बेमानी है।
13: और ये ट्राई फिर हो जाएगी चार दिन के बाद। वो अधिकारी वो कैसे नहीं, कैसे नक्शा पास कर दिए, कैसे क्या कर दिए, हाँ। अब उसमें होता है कि अभी सब पनिश किए जाएंगे, सब कुछ किया जाएगा। अब उसके बाद
14: आपका कहना है कि चार दिन में सब भूल जाएंगे?
13: सात दस दिन के बाद सब भूल जाते हैं।
15: एसआईटी बनाए चाहे कुछ भी बनाए, लेकिन मेरे देवर को तो वापस नहीं दे सकते ना। कितनों के घर उजड़ गए, कितने देवर, कितने भाई बहन, किसके किसके बच्चे होंगे सर। वो बेचारे नहीं रहे अब इस दुनिया में, क्या करेंगे? उनके माँ किसी का वो एक सहारा, किसी के इकलौते बच्चे होंगे।
12: मुख्यमंत्री की तरफ से दोषियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई का ऐलान भी पीड़ितों के दिलों में सोते हुए सिस्टम के जागने का भरोसा नहीं जगा सकता।
16: इस पूरे मामले की तह में हम जाकर के दोषियों को सजा भी दे सकें और उन पीड़ित परिवारों के प्रति अपनी संवेदना भी व्यक्त कर सकें।
17: जांच कुछ नहीं होगी, सिर्फ कागजी कार्रवाई होगी और कुछ नहीं होगा वहाँ पे। ना आज तक हुआ ना आगे ऐसा होगा,
18: ऐसा चलता रहेगा। मेरे को कोई उम्मीद नहीं है, कच्चा जो गवर्नमेंट आ जाए। लोग ही ऐसे हैं, पैसे दे के सब पास हो जाता है, अब वो ऐसे होता रहेगा, तो इसमें मुझे उम्मीद नहीं है।
19: हादसा हो जाने के बाद किसी कोई बात करे, क्या वापस कर सकता है? वो वापस तो नहीं कर सकता, केवल समस्या को समाधान करने के लिए, सुलझाने के लिए केवल आश्वासन देंगे। फिर
12: पहले की तरह लखनऊ अग्निकांड के बाद पीछे है परिजनों की पीड़ा, रोते बिलखते लोग, जांच और मुआवजे की खाना पूर्ति। लेकिन पीड़ितों के आंसुओं का हिसाब न कभी मिला, न मिलने की उम्मीद और न कोई दे पाया है। सोचिए, रिहायशी इलाके में नियमों को ताक पर रखकर खड़ी की गई ये कमर्शियल बिल्डिंग न सिर्फ अवैध थी, बल्कि सुरक्षा के लिहाज से एक डेथ ट्रैप बन चुकी थी। लेकिन न देखने वाला कोई, न सुनने वाला कोई। आम जनता हादसे का शिकार बनती है तो बनती रहे। लखनऊ में हुए अग्निकांड में 15 जिंदगियां मौत के गाल में सवार। अगर जिम्मेदारों ने आंखों पर रिश्वत की पट्टी नहीं बांधी होती तो ये बच जाते। यही है आम जनता की सुरक्षा की गारंटी। मतलब सिस्टम के भरोसे नहीं, बल्कि भगवान के भरोसे जियो। जबकि माननीय और साहब तो पूरे ठसक के साथ सुरक्षा के वीवीआईपी प्रोटोकॉल में चलते। मजाल है कि बिना इजाजत परिंदा भी पर मार दे, क्योंकि माननीय और सरकारी लाट साहबों की जिंदगी का मोल है और आम जनता की जिंदगी का कोई नहीं।
15: अभी अपने को कुछ होता तो प्रशासन तुरंत दौड़ जाएगा। ये वीआईपी यहाँ पर जब मंत्री निकलते तो तुरंत रास्ता बंद कर दिया जाता। आम आदमी खड़ा रहता है, बच्चे धूप में स्कूल चलाते भी लगते, तब गवर्नमेंट को तरस नहीं आता जनता पे।
12: अगर आम जनता की जिंदगी की परवाह होती तो लखनऊ के अलीगंज में सरकारी तंत्र की नाक के नीचे मौत की इमारत कभी खड़ी नहीं होती। इमारत की नींव से लेकर छत पर लगी आखिरी ईंट तक में सरकारी भ्रष्टाचार का सीमेंट भरा पड़ा है। इतना मजबूत सीमेंट कि कोई हिसाब नहीं। ये सब कैसे हुआ ये भी समझिए। सरकार की हर साख पर 15 बेगुनाहों के खून के छींटे हैं। एक नहीं बल्कि चार चार विभागों की अंधेर गर्दी आम जनता की जिंदगी पर भारी पड़ी। मौत की बिल्डिंग अवैध थी लेकिन सिस्टम की आंखें बंद थी। आज कटघरे में खड़ा है लखनऊ विकास प्राधिकरण, लखनऊ नगर निगम और उसके कर्ता धर्ता। सवाल यही कि दोनों विभागों ने अपनी जिम्मेदारी क्यों नहीं निभाई, भ्रष्टाचार की इमारत क्यों खड़ी। ये तब है जब लखनऊ विकास प्राधिकरण जिस विभाग को रिपोर्ट करता है उसके मुखिया सीधे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। मुख्यमंत्री की नाक के नीचे काम करने वाले हाउसिंग एंड अर्बन प्लानिंग विभाग की अंधेर गर्दी ने जिंदगी के 15 चिराग बुझा दिए, जिसके लिए सीधे जिम्मेदार हाउसिंग एंड अर्बन प्लानिंग विभाग के मुख्य सचिव पी गुरुप्रसाद, एलडीए के चेयरमैन रोशन जैकब, एलडीए के वीसी प्रथमेश कुमार, लखनऊ नगर निगम के नगर आयुक्त गौरव कुमार, जो नगर विकास मंत्री अरविंद कुमार शर्मा को रिपोर्ट करते हैं। इनका जिम्मा अवैध निर्माण को रोकना और अवैध निर्माण को ढहाना। आंखें बंद थी तो कोई वक्त रहते एक्शन कभी नहीं लिया गया। सरकारी व्यवस्था में अव्यवस्था का दीमा सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं था। सरकारी मुलाजिमों को पता था अलीगंज में खड़ी मौत की इमारत कभी भी आम जनता का जीवन छीन सकती है, लेकिन सब कुछ जानते हुए भी बिजली विभाग ने आंखें मूंदे रखी। अवैध बिल्डिंग में मांग से ज्यादा बिजली खपत के बावजूद बिजली विभाग के कान जूं कभी नहीं रहेंगी। सब कुछ चलता है, चलता रहेगा के हिसाब से चलता रहा। बिजली विभाग ने अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाई, जिसके मंत्री हैं अरविंद कुमार शर्मा और जिम्मेदार हैं यूपीपीसीएल के चेयरमैन और लखनऊ की बिजली आपूर्ति का जिम्मा संभाल रहे अफसर आशीष कुमार गोयल। वक्त रहते बिजली विभाग ने कार्रवाई की होती 15 जिंदगी बच जाती।
20: ऐसी घटनाएं न हो इसके लिए पूरी तरह सजगता के साथ हम और पूरी सरकार प्रयास करेंगे और ये देखेंगे कि ऐसी घटनाओं का जो भी कारण है वो भविष्य में ऐसी घटनाओं के कारण न बने।
12: ऐसा पहली बार नहीं हुआ कि योगी के राज में सरकारी सिस्टम की लापरवाही जानलेवा साबित हुई। इससे पहले भी सिस्टम की लापरवाही के चलते कई बार लोग बेमौत मारे गए, लेकिन जिम्मेदारों पर कार्रवाई आज तक नहीं हुई। यही है योगी सरकार का ट्रैक रिकॉर्ड और रिपोर्ट कार्ड। महाकुंभ भगदड़, 37 श्रद्धालुओं की मौत, कोई बड़ा अफसर नहीं नपा। हाथरस सत्संग भगदड़, 121 लोगों की मौत, कोई बड़ा अफसर नहीं नपा। झांसी मेडिकल कॉलेज आग, 18 नवजात बच्चों की मौत, किसी बड़े अफसर पर गाज नहीं गिरी। आगरा नोएडा एक्सप्रेसवे हादसा, 19 यात्रियों की मौत, कोई अफसर नहीं नपा। जब सिस्टम की सोच पर सिर्फ आश्वासन का पर्दा पड़ा हो तो जिम्मेदार हर बार अपनी जवाबदेही से बच जाते हैं और आम जनता की जान चली जाती है।
0: लखनऊ अग्निकांड ने 15 नौजवानों की जिंदगी के दियों को बुझा दिया। मरने वालों में ज्यादातर ट्रेनी या स्टूडेंट्स थे, जो कामयाबी के पंख लगाकर अपने सपनों को हकीकत में बदलना चाहते थे, लेकिन उनकी मेहनत और मंजिल के बीच सरकारी व्यवस्था मौत बनकर खड़ी हो गई। मंजिल से पहले ही अंधेरगर्दी की आग में 15 परिवारों की खुशियों को ग्रहण लग गया है।

0: 24 साल के आदित्य श्रीवास्तव अब इस दुनिया में नहीं हैं। एक माँ ने अपनी आंखों के सामने जिगर के टुकड़े को हमेशा के लिए खो दिया। दिल में कसक यही है कि सरकारी सिस्टम की नींद वक्त रहते टूटी होती तो शायद बेटा आज जिंदा होता।
1: देखा है मैंने, सब देखा। मैं बराबर यही कह रही थी कि एकदम से देखा था मैंने सब। जिस तरह से इस समय भी मैंने देखा कि सीएम साहब आने वाले थे, किया जा रहा था, उस टाइम उस तरह से ये भी ध्यान दिया जाता तो हो सकता है बच्चे बच जाते।
2: मेहनत कर लिया थी,
1: हाँ बच्चे बचाए जा सकते थे। जॉब करता था, एनिमेशन कोर्स का ये स्टूडियो है, वहीं पे जॉब करता था।
0: पहले सरकारी अनदेखी ने आदित्य को मौत के मुंह में पहुंचाया और फिर सरकारी लापरवाही जिंदगी पर भारी पड़ गई। आदित्य सीतापुर से लखनऊ आया था, सोचा था एनिमेशन एंड गेमिंग ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में मिली नौकरी के बाद अपने पैरों पर खड़ा हो जाएगा, लेकिन किसे पता था कि सरकारी सिस्टम आदित्य की जिंदगी के पैर ही उखाड़ देगा।
3: ये सबसे बड़ी दर्दनाक घटना हुई कि माँ के सामने बेटा अंदर।
4: तब माँ आदित्य की उस वक्त जहाँ पर वो पूरा संस्थान बना है वहाँ मतलब बाहर मौजूद हैं, और सामने उनका जहाँ पर वो ऑफिस बना है वो धधक रहा है।
3: वो आग लग चुकी थी जब पहुंची, आग लग चुकी थी, फिर उसके बाद जो है बुझाने का और निकलने का काम हो रहा था, जो कुछ हो रहा था। जो है कि बनने बड़ा हुनरमंद, बड़ा मतलब एक चीज है, बड़ा हौसले वाला। कभी ये वो उसके दिमाग था ही नहीं कि चार आदमी है तो हम निपट नहीं लेंगे, हिम्मत ही बहुत था।
0: घर वालों के मुताबिक आदित्य बचपन से पढ़ने में होशियार था, हमेशा फर्स्ट डिवीजन में पास हुआ था। आदित्य की हसरत मेहनत के दम पर इतना ऊंचा मुकाम हासिल करने की थी जिससे पूरे घर को नाज हो, लेकिन किसे पता था कि आदित्य की मौत के साथ एक सपना भी हमेशा के लिए टूट जाएगा। आज आदित्य की मौत पर घर वालों के आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे और जुबान पर सरकारी व्यवस्था के खिलाफ जबरदस्त आक्रोश है।
3: जैसे ये तो हम जरूर कहना चाहेंगे कि इस तरीके से भी दिल्ली में कांड हुआ और ये टाई टाई फीस हो जाएगी चार दिन के बाद। वो अधिकारी वो कैसे नहीं, कैसे नक्शा पास कर दिए, कैसे क्या कर दिए, हाँ। अब उसमें होता है कि अभी सब पनिश किए जाएंगे, सब कुछ किया जाएगा। अब उसके बाद
4: आपका कहना है कि चार दिन में सब भूल जाएंगे?
3: सात दस दिन के बाद सब भूल जाते हैं। हम दे आज जो है कि 65 साल का मैं हूँ तो 65 साल से जो है कि सब देखते तो चले आ रहे हैं। अब
0: आदित्य उस दुनिया में चला गया जहां से कोई लौट कर नहीं आता, लेकिन परिवार यही चाहता है कि दोषियों का हिसाब होना चाहिए ताकि भविष्य में किसी और परिवार पर दुखों का ऐसा पहाड़ ना टूटे। जिस घर में बेटे की जल्द बारात निकलनी थी आज उसी घर में बेटे की अर्थी उठाने की तैयारी चल रही है। 27 साल के नीलेश कुमार उन बदनसीबों में एक हैं जिनकी दर्दनाक अग्निकांड में मौत हो गई। आज एक तरफ मातम है तो दूसरी तरफ सरकार के खिलाफ गुस्सा।
4: अपने माता पिता का इन्होंने पेंटिंग किया
5: जी, बहुत अच्छी स्केचिंग पेंटिंग करते थे, बहुत अच्छी फाइलें बनाते थे, इतने अच्छे अच्छे सिस्टम पे, बहुत बढ़िया।
4: जिम्मेदारी तय होनी चाहिए जो घटना हुई है उसकी।
5: उसकी जिम्मेदारी गवर्नमेंट है, ये शासन प्रशासन है जो हमारे नीलेश को क्या उसमें जितने बेचारे बच्चे थे उनको सुख सुविधा देते तो आज फायर ब्रिगेड टाइम से पहुंच जाती। तो आज मेरा देवन मेरा
4: 25 मिनट देर पहुंची है जो लोगों ने बताया,
5: 45 मिनट 25 मिनट जो भी पहुंची है। अगर आज वहीं पर पास में ही है, ज्यादा दूर नहीं था, अलीगंज थाना कितनी दूर है वहां से, पुरनिया कितनी दूर है, आ सकती थी गवर्नमेंट बचाने, लेकिन नहीं, शासन प्रशासन की गलती है, योगी दोषी है, मोदी दोषी है इसके।
4: कह रहे हैं SIT बना ली है हमने,
5: SIT बनाए चाहे कुछ भी बनाए, लेकिन मेरे देवर को तो वापस नहीं दे सकते।
0: बीते दिन जब नीलेश ऑफिस के लिए घर से निकले थे तो पिता को यही कहा था कि शाम को मुलाकात होगी और पिता ने कहा था बेटा संभल कर जाना, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था।
6: मैं कहता हूँ बच्चा बेटा ठीक से जाना, आराम से जाना, भले दो चार मिनट लेट पहुँचो लेकिन सुरक्षित जाना, ढंग से जाना, बस यही बात होते है। जाओ बेटा बाय करके चला जाता है, हेलो करके।
7: आपको लगता था कि ये उसकी जिंदगी का आपके लिए एक आखिरी बाय होगा?
6: नहीं, ये कभी महसूस ही नहीं किया हमने, ये हमको महसूस नहीं हो रहा था उस समय, कोई ऐसी दिक्कत ही नहीं थी उस तरीके की। खुशी से गया, खुशी से आता था, ऑफिस से निकलने के बाद जिम जाता था, जिम से फिर घर वापस आता था, बराबर बात हुआ करती थी।
0: हादसे से चंद घंटे पहले पिता शत्रुघ्न लाल से नीलेश की बात हुई थी और फिर दोपहर को आई सीना चीर देने वाली खबर। हादसे ने परिवार को ऐसे जख्म दिए हैं जिसे वक्त का मरहम भी कभी नहीं भर पाएगा।
7: पेंटिंग्स के शौकीन 27 वर्षीय नीलेश को शायद ही मालूम था कि महज दो दिन पहले लगाई गई ये नई नवेली पेंटिंग देखने के लिए अपने ही कमरे में, जहां वो सोता उठता बैठता काम करता, वही मौजूद नहीं रहेगा।
0: 24 साल का अब्दुल रहमान घर का इकलौता सहारा था। चंद महीने पहले नौकरी मिली थी, सोचा था घर वालों की तंगहाली को खुशहाली में बदल देगा, लेकिन एक झटके में परिवार की सारी खुशियां ताश के पत्तों की तरह बिखर गईं।
8: ये 3 बजे जब आग लगी है तब तो हमने खुद ही सोशल साइट पे डाला था, तब तक हमें नहीं पता था। अभी 8 बजे पता चला कि हमारा भतीजा रहमान भी इस आग का शिकार हो गया।
0: अब्दुल के कंधों पर पूरे परिवार की जिम्मेदारी थी, दिव्यांग पिता और बहन का सहारा था। एनिमेशन का कोर्स करने के बाद अब्दुल को नौकरी मिली, लेकिन वही दफ्तर अब्दुल की मौत की वजह बन गया।
8: घर में पिताजी विकलांग हैं, माँ टीचरिंग करती थी, बच्चा अभी दो ही तीन महीने हुए जॉब पे था, काम भी करता था, वहीं पढ़ाई भी करता था।
9: अब परिवार की कैसी जिम्मेदारी तो क्या चाहते हैं आप लोग इस पूरी घटना पर?
8: हम लोग चाहते हैं निष्पक्ष जांच हो और ज्यादा से ज्यादा परिवार को मुआवजा दिया जाए, ताकि उसकी मां की भी कोई ऐसी स्थिति नहीं हो। परिवार में कोई दूसरा कमाने वाला नहीं था, इकलौता बच्चा था, यही पालन पोषण करता था, घर की देखभाल करता था।
10: कांग्रेस ने मध्य प्रदेश की मोहन यादव सरकार पर बड़ा हमला बोला है। मध्य प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष जीतू पटवारी ने आरोप लगाया है कि मोहन यादव और उनके परिवार ने उज्जैन में जहां जमीनें खरीदी वहीं से परियोजनाएं निकाली गई हैं।
0: मध्य प्रदेश कांग्रेस ने बाकायदा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सीएम मोहन यादव पर उज्जैन में जमीन खरीदी को लेकर सनसनीखेज आरोप लगाए। कांग्रेस का आरोप है कि मुख्यमंत्री बनने के बाद मोहन यादव और उनके परिवार की ओर से जमीन खरीद में तेजी आई और जिन क्षेत्रों में बाद में विकास परियोजनाएं घोषित हुई वहां पहले से जमीन खरीदी गई। जीतू पटवारी ने कहा कि उज्जैन में जमीन खरीद का मामला भी गंभीर सवाल खड़े कर रहा है।
11: मुख्यमंत्री परिवार की सभी कंपनियों के हिस्सेदार फॉरेंसिक ऑडिट कराने के लिए तैयार है। मीडिया रिपोर्ट्स ने दावा किया कि भूमि खरीदी के कुछ समय बाद ही हाउसिंग प्रोजेक्ट बिल्डर एग्रीमेंट शुरू हो गए उन जमीनों पर। क्या पहले नियोजित व्यवसाय की रणनीति का हिस्सा था कि जमीन खरीदेंगे, मास्टर प्लान में चेंज आएंगे, परियोजना लाएंगे, उस बीच में रियल एस्टेट कंपनी से हम अपना एग्रीमेंट करेंगे और जो 10 रुपए की जमीन है वो 1000 रुपए की करेंगे, ये पहले से प्लान आउट था क्या? क्या ये सही है कि कुछ परियोजनाओं में भूमि मालिकों के विकसित संपत्ति 60% से 70% का हिस्सा है जिनकी भूमि है मुख्यमंत्री की हो उसके परिवार की हो?
12: जीतू पटवारी के मुताबिक मोहन यादव 2021 में मंत्री बने थे, 13 दिसंबर 2023 में वो मुख्यमंत्री बने। 21 से 23 के बीच में उनके परिवार के निकट सदस्यों के पास लगभग 194 प्लॉट बने। उनके परिवार के पास अलग अलग जगहों पर 253 एकड़ जमीनें हैं। उन्होंने आरोप लगाया है कि 21 से 25 के बीच में 253 एकड़ जमीनें खरीदी गई हैं। सूत्रों के मुताबिक सीएम दफ्तर ने इस पर सफाई दी है, जिसमें लिखा है कि मुख्यमंत्री मोहन यादव ने दिसंबर 2023 में मुख्यमंत्री बनने के बाद कोई जमीन नहीं खरीदी है। मुख्यमंत्री मोहन यादव की पत्नी सीमा यादव ने भी उनके मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री बनने के बाद कोई जमीन नहीं खरीदी है। मोहन यादव का दफ्तर इस पर बाद में एक विस्तृत रिपोर्ट भी जारी करेगा। आज तक ब्यूरो।
10: इसी के साथ हम यहाँ रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए। आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आज तक।

0: लखनऊ अग्निकांड पर सीएम योगी की समीक्षा बैठक का फायर सेफ्टी मानकों से समझौता नहीं। अखिलेश बोले बीजेपी राज में पास नक्शों का हो हिसाब। ब्रिजेश पाठक ने मौत पर राजनीति न करने की नसीहत दी। चार आरोपियों को न्यायिक हिरासत। राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में एसआईटी ने यूपी सरकार को सौंपी प्रारंभिक रिपोर्ट। फिलहाल किसी को क्लीन चिट नहीं। कुछ कर्मचारियों पर केस की सिफारिश। एसपी सांसद अवधेश प्रसाद ने सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के तहत जांच की मांग की। भोजपुर के भरत तिवारी एनकाउंटर पर एक्शन। जगदीशपुर के एसडीपीओ शाहपुर थानाध्यक्ष समेत कई पुलिसकर्मियों पर एफआईआर। बवाल के बाद बैकफुट पर बिहार पुलिस। नीट पर आज तक से बोले धर्मेंद्र प्रधान, लीग के मुजरिमों को छोड़ेंगे नहीं। दोबारा गड़बड़ी रोकने की पूरी कोशिश। राहुल गांधी पर लगाया छात्रों को भड़काने का आरोप। पद्म पुरस्कारों से 65 हस्तियां सम्मानित। शिबु सोरेन को मिला मरणोपरांत पद्म भूषण। रोहित शर्मा अलका याग्निक ममूटी को राष्ट्रपति ने दिया सम्मान। लखनऊ अग्निकांड ने सिर्फ एक शहर को नहीं बल्कि पूरे देश को हिलाकर रख दिया है। 15 लोग जलकर मर गए, वो भी उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में, जहां से सरकार चलती है, जहां बुलडोजर से लेकर एनकाउंटर तक के ऑर्डर निकाले जाते हैं। लेकिन एक बिल्डिंग जो रिहायशी इमारत के तौर पर बनाई जाती है और उसे कमर्शियल में तब्दील कर दिया जाता है, और राजधानी में बैठे सत्ताधीश बड़े बड़े ऑफिसर उससे आंखें मूंद लेते हैं, और वही बिल्डिंग 15 मौतों का मरघट बनकर स्याह खड़ी रहती है। वही जिम्मेदार है, वही सत्ताधीश इमारत का मुआयना करने पहुंचते हैं। सवाल सिर्फ यही इन्हीं ऑफिसर से, इन्हीं सत्ताधीशों से, कि क्या वो 15 मौतों की जिम्मेदारी लेकर खुद को आईना दिखा पाएंगे।
1: मेरा बेटा भी जिंदा होता, मेरा बेटा भी होता दुनिया में।
2: 15 लोग जिंदा जल गए, क्या जिंदगी इतनी सस्ती है?
3: ये पापा बचाओ कैसे भी करके, आग लग गए।
2: पहले ऐसा मुआयना होता तो अग्निकांड क्यों होता? पंद्रह मौतों का सवाल है, जिम्मेदारों को जवाब तो देना पड़ेगा।

0: किस किस का भ्रष्टाचार 15 बेगुनाहों की मौत का कारण बना।
1: माँ के सामने बेटा अंदर,
2: मौके कोई था ही नहीं, बंद था सब। इसके लिए सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए।
3: परिवार पे जो भी भैया परिवार समझ सकता है।
0: अब लखनऊ का पूरा प्रशासनिक अमला, सारे दिग्गज अधिकारी इस जलकर खाक हो चुकी इमारत के चप्पे चप्पे को नाप रहे हैं। आग कैसे लगी, कहां से लगी, कैसे फैली और कैसे 15 लोग इस अग्निकांड में जिंदा जल गए। जांच के लिए लखनऊ के अलीगंज की इस 3 मंजिला इमारत में लगी भीषण आग की वजह जानने के लिए और जांच करने के लिए SIT का गठन किया गया है। इसमें अपर मुख्य सचिव पर्यटन अमृत अभिजात और ADG लखनऊ जोन प्रवीण कुमार को शामिल किया गया है। लखनऊ के ये दिग्गज अफसर 7 दिन के भीतर अपनी रिपोर्ट तैयार करके CM योगी को भेजेंगे। लेकिन जिस तरह से इस खाक हुई बिल्डिंग में अधिकारी अब खाक छान रहे हैं, अगर आग लगने से पहले इस कॉम्प्लेक्स की पड़ताल की गई होती और सिस्टम भ्रष्टाचार की भेंट ना चढ़ा होता तो 15 बेगुनाह लोग इस अग्निकुंड में ना समाये होते, इस तरह से पीड़ित परिवारों के आंसू ना बह रहे होते।
4: SIT की टीम में प्रवीण कुमार जो ADG है जोन वो और साथ साथ अमृत अभिजात मौजूद है, जिन्होंने इंस्पेक्शन किया है, जांच की है इस पूरे मामले की कि आखिर किस तरीके से यहां पर ये घटना घटी। इस SIT रिपोर्ट बनाकर चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ को दी जाएगी और अब यहां पर माइक्रो लेवल पर हर उस चीज की जांच की जा रही है और परखा जा रहा है कि आखिर इस पूरे मामले पर क्या है। सर, क्या क्या आपने जांच किया है अंदर, किस तरीके से?
5: देखिए, सब सारे फ्लोर्स पे गए हैं और जो घटना स्थल है वो भी देखा है। तो अभी कुछ निर्णायक बताने की स्थिति में नहीं, क्योंकि अभी सारी जांचें हो रही हैं FSL वगैरह का।
0: लखनऊ अग्निकांड की परतें जब एक एक करके खुल रही हैं तो साफ साफ नजर आ रहा है कि ये कोई हादसा नहीं बल्कि सामूहिक हत्याकांड है, जिसको उन भ्रष्ट अधिकारियों अफसरों जिम्मेदारों ने खुलेआम दिन दहाड़े बेखौफ होकर अंजाम दिया है।
6: एक बॉक्स नुमा ये बिल्डिंग है, इस बॉक्स नुमा बिल्डिंग के अंदर ही लोग सिर्फ इसी से, जो बच्चे थे जो लोग थे वो इसी छोटे से रास्ते से, और कोई रास्ता था ही नहीं, ये इस रास्ते से अंदर जाना बाहर जाना। और जब आग लग गई तो उसकी वजह से धुएं ने और आग ने अफरा तफरी मच गई और लोग फंस गए। मतलब 3 फ्लोर की ये बिल्डिंग, उसके बाद ये बेसमेंट, टोटली अगर कहा जाए तो सिर्फ और सिर्फ सुरक्षा मानकों को दरकिनार करके ये बनाया गया।
0: लखनऊ के उस अलीगंज में ये कॉम्प्लेक्स है जहां से हर छोटे बड़े अफसर से लेकर नेताओं की गाड़ियां गुजरती होंगी। इस 3 मंजिला कॉम्प्लेक्स को रिहायशी इमारत से कब कमर्शियल में तब्दील कर दिया गया और कब इसमें एनिमेशन सेंटर चलना शुरू हो गया, इसकी न कभी जांच की गई न कभी पड़ताल, लेकिन भ्रष्टाचारियों की मुट्ठियां गर्म करके इसे मौत का कॉम्प्लेक्स बना दिया गया। सवाल इस अग्निकांड या कहें हत्याकांड के जिम्मेदारों से है, फायर डिपार्टमेंट ने कैसे अनदेखी की, कैसे लखनऊ डेवलपमेंट अथॉरिटी यानी LDA ने इसमें घोर लापरवाही बरती। 2016 में बनाए गए NBC यानी नेशनल बिल्डिंग कोड 2016 के नियमों की अनदेखी की गई।
7: जो मकान मालिक हैं, क्योंकि बिल्डिंग आवासीय में पहले पास थी, बाद में उन्होंने कमर्शियल रूप में उसका इस्तेमाल करना जब शुरू कर दिया है, तो उनको फायर नाप से पूरा करना चाहिए था, आग बुझाने की पूरी व्यवस्था करनी चाहिए थी, लेकिन आग बुझाने की पूरी व्यवस्था उन्होंने समुचित ढंग से किया नहीं था, इसलिए मकान मालिक की जिम्मेदारी ज्यादा बनती है वहां पर। दूसरी बात है कि जो अगर वो कमर्शियल रूप में इस्तेमाल कर ही रहे हैं तो वहां पर जो बिजली विभाग था उन्होंने उनका लोड सैंक्शन किया होगा कि कितनी AC चल रही है, कितना बिजली का खर्चा इनका आ रहा है, उस हिसाब से उनको वहां पर देखना चाहिए था, लेकिन उन्होंने मुझे लगता है देखा नहीं ध्यान से। और जो LDA है, LDA की एरिया में आता है, तो LDA ने क्या चीज देखा है, उनकी जिम्मेदारी बनती है।
0: जब ये बिल्डिंग रिहायशी से कमर्शियल कॉम्प्लेक्स में तब्दील हुई तो फायर ऑडिट क्यों नहीं किया गया, क्यों रिहायशी बिल्डिंग के कमर्शियल में बदलने पर LDA के अफसरों ने सर्वे नहीं किया, या फिर इन अफसरों के पहुंचने से पहले ही उनकी जेब उनकी कुर्सी पर ही गर्म कर दी गई। बड़ी बात यह भी है कि जिस इमारत में हादसा हुआ वहां 20 किलोवाट का कमर्शियल बिजली कनेक्शन स्वीकृत था। जांच में सामने आया है कि वास्तविक बिजली लोड बढ़कर 34 KVA से ज्यादा हो गया था। अप्रैल महीने में इमारत का लोड 24.30 KVA दर्ज किया गया था, जो जून में और बढ़ गया। जानकारों के मुताबिक स्वीकृत क्षमता से कहीं अधिक लोड होने से तारों और ट्रांसफार्मर पर भारी दबाव था, भीषण गर्मी और ओवर

0: लोडिंग के कारण शॉर्ट सर्किट की आशंका कई गुना बढ़ गई। बिजली विभाग ने मौके पर जाकर लोड चेक क्यों नहीं किया, कितना लोड कागजों में है और कितना बिजली का लोड खपत में आ रहा है। अगर इसकी चेकिंग की गई होती तो इतना बड़ा अग्निकांड नहीं हुआ होता।
1: जो कार्रवाई है उसकी बात कर लेते हैं, तो सरकार सबसे पहले तो पुरनिया के जो थाना प्रभारी हैं उन्होंने FIR की, 6 लोगों पर मुकदमा तहरीर दी गई है, मुकदमा दर्ज हुआ, 4 गिरफ्तार कर लिए गए हैं, जिसमें इस मकान के ओनर, इस मकान के दो जो ओनर हैं जिन्होंने कमर्शियल कम्प्लेक्स बनाया है और जिनकी कंपनियां यहां कार्यरत थी।
0: 3 मंजिला इस कॉम्प्लेक्स में बेसमेंट भी बनाया गया था। एंट्री एग्जिट के लिए सिर्फ एक छोटा सा रास्ता था और इस रास्ते के ऊपर 7 पैनल, 2 एग्जॉस्ट फैन, इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल पैनल लगाकर रास्ते को और छोटा कर दिया गया था। इमारत के मालिकों और सेंटर संचालकों ने इसे अनदेखा किया।
2: दो बातें बहुत अहम हैं। एक तरफ जो तमाम जो जांचें चल रही हैं वो अपनी जगह है, लेकिन शायद दो बातें अगर इसमें हो गई होती तो इतने बच्चों की जान नहीं जाती। एक, जो बायोमेट्रिक जिसके जरिए एक्सेस था उस एनिमेशन का, जो इंस्टीट्यूट है उसके भीतर जाने और आने का, अगर वो बायोमेट्रिक लॉक नहीं हुआ होता यानी कि, तो शायद बच्चे निकल सकते थे। दूसरी बात, ऊपर अगर आपको दिखाएं तो आप देखिए ऊपर में एक पेंट हाउस जैसा है, यानी कि वो मकान मालिक जो है उसका अपना घर है। और कहा यह जा रहा है कि अगर ऊपर का घर का अगर सीढ़ी का रास्ता खुला होता तो भी ऊपर बच्चे भाग कर जान बचा सकते थे।
0: अब सवाल यही है कि जिस लखनऊ से बुलडोजर और एनकाउंटर के सीधे ऑर्डर निकलते हैं, वहां से भ्रष्टाचार के खिलाफ ऑर्डर क्यों नहीं निकलते? आखिर भ्रष्टाचार की आग कैसे बुझेगी? आज तक ब्यूरो।
3: लखनऊ अग्निकांड सरकारी महकमों की अंधेरगर्दी का साक्षात प्रमाण है, क्योंकि हादसे ने सरकारी दावों और जमीनी हकीकत के बीच की खाई को उजागर करके रख दिया है। सवाल जवाबदेही का है, पीड़ितों के परिजनों के इंसाफ का है। सवाल यह भी है कि जिस महकमे की कमान सीधे मुख्यमंत्री के हाथों में है, आखिर उस विभाग ने आम जनता को भगवान के भरोसे कैसे छोड़ दिया? क्या CM को ऑफिसर्स ने अंधेरे में रखा था, या फिर उत्तर प्रदेश में जनता की जान की कोई कीमत ही नहीं है?
4: ना कुछ देखेंगे ना कुछ सुनेंगे, क्योंकि जिंदगी लेना और देना तो ऊपर वालों के हाथों में है। ऐसे में जिम्मेदारों की जवाबदेही का कोई सवाल नहीं उठता। हादसे में मौत हुई तो साहब ने मौके का मुआयना कर लिया, जांच के आदेश दे दिए गए, मुआवजे का ऐलान कर दिया, संवेदना जताते हुए दो शब्द भी कह दिए। अब मृतकों की जान लौटाई तो जा नहीं सकती, तो इससे ज्यादा उनके परिजनों को क्या चाहिए? सरकार तो अपनी जिम्मेदारी पूरी तत्परता से निभा रही, फिर हादसा होगा फिर यही सरकारी रस्म अदा कर दी जाएगी। मतलब ना तो सिस्टम बदलेगा ना जिम्मेदार अपनी सोच बदलेंगे, यही होता आया है यही होता रहेगा, क्योंकि योगी सरकार के उत्तम प्रदेश में जनता की जिंदगी सरकारी सिस्टम के आगे सस्ती है, इतनी सस्ती कि अब पूरे सिस्टम से लोगों का भरोसा उठ चुका है। अतीत में हुए हादसों से लेकर लखनऊ अग्निकांड तक जिम्मेदारों के रवैये से पीड़ित इतना टूट चुके हैं कि ना उम्मीदी के अंधेरे में इंसाफ के उजाले की उम्मीद अब बेमानी है।
5: और ये ट्राई ट्राई फिर हो जाएगी 4 दिन के बाद। वो अधिकारी वो कैसे नहीं, कैसे नक्शा पास कर दिए, कैसे क्या कर दिए, हाँ। और उसमें होता है कि अभी सब पनिश किए जाएंगे, सब कुछ किया जाएगा। अब उसके बाद
6: आपका कहना है कि 4 दिन में सब भूल जाएंगे?
5: 7-10 दिन के बाद सब भूल जाते हैं।
7: SIT बनाए चाहे कुछ भी बनाए, लेकिन मेरे देवर को तो वापस नहीं दे सकते ना। कितनों के घर उजड़ गए, कितने देवर, कितने भाई बहन, किसके किसके बच्चे होंगे सर, वो बेचारे नहीं रहे अब इस दुनिया में, क्या करेंगे? उनके माँ किसी का वो एक सहारा, किसी के इकलौते बच्चे होंगे।
4: मुख्यमंत्री की तरफ से दोषियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई का ऐलान भी पीड़ितों के दिलों में सोते हुए सिस्टम के जागने का भरोसा नहीं जगा सकता।
8: इस पूरे मामले की तह में हम जाकर के दोषियों को सजा भी दे सकें और उन पीड़ित परिवारों के प्रति अपनी संवेदना भी व्यक्त कर सकें।
9: जांच कुछ नहीं होगी, सिर्फ कागजी कार्रवाई होगी और कुछ नहीं होगा वहाँ पे। ना आज तक हुआ ना आगे ऐसा होगा।
10: ऐसा चलता रहेगा, मेरे को कोई उम्मीद नहीं है, चाहे जो गवर्नमेंट आ जाए, लोग ही ऐसे हैं, पैसे दे के सब पास हो जाता है, अब वो ऐसे होता रहेगा तो इसमें मुझे उम्मीद नहीं है।
11: हादसा हो जाने के बाद किस्ती कोई बात करे, क्या वापस कर सकता है? वो वापस तो नहीं कर सकता, केवल समस्या को समाधान करने के लिए, सुलझाने के लिए केवल आश्वासन देंगे। पर
4: पहले की तरह लखनऊ अग्निकांड के बाद पीछे है परिजनों की पीड़ा, रोते बिलखते लोग, जांच और मुआवजे की खाना पूर्ति, लेकिन पीड़ितों के आंसुओं का हिसाब न कभी मिला, न मिलने की उम्मीद और न कोई दे पाया है। सोचिए, रिहायशी इलाके में नियमों को ताक पर रखकर खड़ी की गई ये कमर्शियल बिल्डिंग न सिर्फ अवैध थी बल्कि सुरक्षा के लिहाज से एक डेथ ट्रैप बन चुकी थी, लेकिन न देखने वाला कोई, न सुनने वाला कोई। आम जनता हादसे का शिकार बनती है तो बनती रहे। लखनऊ में हुए अग्निकांड में 15 जिंदगियां मौत के गाल में सवार हैं। अगर जिम्मेदारों ने आंखों पर रिश्वत की पट्टी नहीं बांधी होती तो ये बच जाते। यही है आम जनता की सुरक्षा की गारंटी, मतलब सिस्टम के भरोसे नहीं बल्कि भगवान के भरोसे जियो। जबकि माननीय और साहब तो पूरे ठसक के साथ सुरक्षा के वीवीआईपी प्रोटोकॉल में चलते, मजार है कि बिना इजाजत परिंदा भी पर मार दे, क्योंकि माननीय और सरकारी लाट साहबों की जिंदगी का मोल है और आम जनता की जिंदगी का कोई नहीं।
7: अभी अपने को कुछ होता तो प्रशासन तुरंत दौड़ जाएगा, ये वीआईपी यहाँ पर जब मंत्री निकलते तो तुरंत रास्ता बंद कर दिया जाता, आम आदमी खड़ा रहता है, बच्चे धूप में स्कूल चलाते भी लगते, तब गवर्नमेंट को तरस नहीं आता जनता पे।
4: अगर आम जनता की जिंदगी की परवाह होती तो लखनऊ के अलीगंज में सरकारी तंत्र की नाक के नीचे मौत की इमारत कभी खड़ी नहीं होती। इमारत की नींव से लेकर छत पर लगी आखिरी ईंट तक में सरकारी भ्रष्टाचार का सीमेंट भरा पड़ा है, इतना मजबूत सीमेंट कि कोई हिसाब नहीं। ये सब कैसे हुआ ये भी समझिए। सरकार की हर साख पर 15 बेगुनाहों के खून के छींटे, एक नहीं बल्कि 4-4 विभागों की अंधेर गर्दी आम जनता की जिंदगी पर भारी पड़ी। मौत की बिल्डिंग अवैध थी लेकिन सिस्टम की आंखें बंद थी। आज कटघरे में खड़ा है लखनऊ विकास प्राधिकरण, लखनऊ नगर निगम और उसके कर्ता धर्ता। सवाल यही कि दोनों विभागों ने अपनी जिम्मेदारी क्यों नहीं निभाई, भ्रष्टाचार की इमारत क्यों खड़ी थी? ये तब है जब लखनऊ विकास प्राधिकरण जिस विभाग को रिपोर्ट करता है उसके मुखिया सीधे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ है। मुख्यमंत्री की नाक के नीचे काम करने वाले हाउसिंग एंड अर्बन प्लानिंग विभाग की अंधेर गर्दी ने जिंदगी के 15 चिराग बुझा दिए, जिसके लिए सीधे जिम्मेदार हाउसिंग एंड अर्बन प्लानिंग विभाग के मुख्य सचिव पी गुरुप्रसाद, एलडीए के चेयरमैन रोशन जैकब, एलडीए के वीसी प्रथमेश कुमार, लखनऊ नगर निगम के नगर आयुक्त गौरव कुमार, जो नगर विकास मंत्री अरविंद कुमार शर्मा को रिपोर्ट करते हैं। इनका जिम्मा अवैध निर्माण को रोकना और अवैध निर्माण को ढहाना। आंखें बंद थी तो कोई वक्त रहते एक्शन कभी नहीं लिया गया। सरकारी व्यवस्था में अव्यवस्था का दीमक सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं था। सरकारी मुलाजिमों को पता था अलीगंज में खड़ी मौत की इमारत कभी भी आम जनता का जीवन छीन सकती है, लेकिन सब कुछ जानते हुए बिजली विभाग ने आंखें मूंदे रखी। अवैध बिल्डिंग में मांग से ज्यादा बिजली खपत के बावजूद बिजली विभाग के कान जू कभी नहीं रहेंगी। सब कुछ चलता है, चलता रहेगा के हिसाब से चलता रहा। बिजली विभाग ने अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाई, जिसके मंत्री हैं अरविंद कुमार शर्मा और जिम्मेदार हैं यूपीपीसीएल के चेयरमैन और लखनऊ की बिजली आपूर्ति का जिम्मा संभाल रहे अफसर आशीष कुमार गोयल। वक्त रहते बिजली विभाग ने कार्रवाई की होती 15 जिंदगी बच जाती।
12: ऐसी घटनाएं न हो इसके लिए पूरी तरह सजगता के साथ हम और पूरी सरकार प्रयास करेंगे और ये देखेंगे कि ऐसी घटनाओं का जो भी कारण है वो भविष्य में ऐसी घटनाओं के कारण न बने।
4: ऐसा पहली बार नहीं हुआ कि योगी के राज में सरकारी सिस्टम की लापरवाही जानलेवा साबित हुई। इससे पहले भी सिस्टम की लापरवाही के चलते कई बार लोग बेमौत मारे गए, लेकिन जिम्मेदारों पर कार्रवाई आज तक नहीं हुई। यही है योगी सरकार का ट्रैक रिकॉर्ड और रिपोर्ट कार्ड। महाकुंभ भगदड़, 37 श्रद्धालुओं की मौत, कोई बड़ा अफसर नहीं नपा। हाथरस सत्संग भगदड़, 121 लोगों की मौत, कोई बड़ा अफसर नहीं नपा। झांसी मेडिकल कॉलेज आग, 18 नवजात बच्चों की मौत, किसी बड़े अफसर पर गाज नहीं गिरी। आगरा नोएडा एक्सप्रेसवे हादसा, 19 यात्रियों की मौत, कोई अफसर नहीं नपा। जब सिस्टम की सोच पर सिर्फ आश्वासन का पर्दा पड़ा हो तो जिम्मेदार हर बार अपनी जवाबदेही से बच जाते हैं और आम जनता की जान चली जाती है।
3: लखनऊ अग्निकांड ने 15 नौजवानों की जिंदगी के दियों को बुझा दिया। मरने वालों में ज्यादातर ट्रेनी या स्टूडेंट्स थे जो कामयाबी के पंख लगाकर अपने सपनों को हकीकत में बदलना चाहते थे, लेकिन उनकी मेहनत और मंजिल के बीच सरकारी व्यवस्था मौत बनकर खड़ी हो गई। मंजिल से पहले ही अंधेरगर्दी की आग में 15 परिवारों की खुशियों को ग्रहण लग गया है।

0: 24 साल के आदित्य श्रीवास्तव अब इस दुनिया में नहीं हैं। एक माँ ने अपनी आंखों के सामने जिगर के टुकड़े को हमेशा के लिए खो दिया। दिल में कसक यही है कि सरकारी सिस्टम की नींद वक्त रहते टूटी होती तो शायद बेटा आज जिंदा होता।
1: देखा है, मैंने सब देखा। मैं बराबर यही कह रही थी कि एकदम सीपा देखा था मैंने सब। जिस तरह से इस समय भी मैंने देखा कि सीएम साहब आने वाले थे, किया जा रहा था, उस टाइम उस तरह से ये भी ध्यान दिया जाता तो हो सकता है बच्चे बच जाते।
2: मेहनत कर लिया थी,
1: हाँ बच्चे बचाए जा सकते थे। जॉब करता था, एनिमेशन कोर्स का ये स्टूडियो है, वहीं पे जॉब करता था।
0: पहले सरकारी अनदेखी ने आदित्य को मौत के मुंह में पहुंचाया और फिर सरकारी लापरवाही जिंदगी पर भारी पड़ गई। आदित्य सीतापुर से लखनऊ आया था, सोचा था एनिमेशन एंड गेमिंग ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में मिली नौकरी के बाद अपने पैरों पर खड़ा हो जाएगा, लेकिन किसे पता था कि सरकारी सिस्टम आदित्य की जिंदगी के पैर ही उखाड़ देगा।
3: ये सबसे बड़ी दर्दनाक घटना हुई कि माँ के सामने बेटा अंदर।
4: तो माँ आदित्य की उस वक्त जहाँ पर वो पूरा संस्थान बना है वहाँ, मतलब बाहर मौजूद हैं और सामने उनका जहाँ पर वो ऑफिस बना है वो धधक रहा है।
3: वो आग लग चुकी थी जब पहुंची, आग लग चुकी थी। फिर उसके बाद जो है बुझाने का और निकलने का काम हो रहा था, जो कुछ हो रहा था। जो है कि बनने बड़ा हुनरमंद, बड़ा मतलब एक चीज है, बड़ा हौसले वाला। कभी ये वो उसके दिमाग था ही नहीं कि चार आदमी है तो हम निपट नहीं लेंगे। हिम्मत ही बहुत था।
0: घर वालों के मुताबिक आदित्य बचपन से पढ़ने में होशियार था, हमेशा फर्स्ट डिवीजन में पास हुआ था। आदित्य की हसरत मेहनत के दम पर इतना ऊंचा मुकाम हासिल करने की थी जिससे पूरे घर को नाज हो, लेकिन किसे पता था कि आदित्य की मौत के साथ एक सपना भी हमेशा के लिए टूट जाएगा। आज आदित्य की मौत पर घर वालों के आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे और जुबान पर सरकारी व्यवस्था के खिलाफ जबरदस्त आक्रोश है।
3: जैसे ये तो हम जरूर कहना चाहेंगे कि ये तरीके से भी दिल्ली में कांड हुआ और ये टाई टाई फीस हो जाएगी चार दिन के बाद। वो अधिकारी वो कैसे नहीं, कैसे नक्शा पास कर दिए, कैसे क्या कर दिए। हाँ, अब उसमें होता है कि अभी सब पनिश किए जाएंगे, सब कुछ किया जाएगा। अब उसके बाद
4: आपका कहना है कि चार दिन में सब भूल जाएंगे?
3: सात दस दिन के बाद सब भूल जाते हैं। हम दे आज जो है कि 65 साल का मैं हूँ तो 65 साल से जो है कि सब देखते तो चले आ रहे हैं। अब
0: आदित्य उस दुनिया में चला गया जहां से कोई लौट कर नहीं आता, लेकिन परिवार यही चाहता है कि दोषियों का हिसाब होना चाहिए ताकि भविष्य में किसी और परिवार पर दुखों का ऐसा पहाड़ ना टूटे। जिस घर में बेटे की जल्द बारात निकलनी थी आज उसी घर में बेटे की अर्थी उठाने की तैयारी चल रही है। 27 साल के नीलेश कुमार उन बदनसीबों में एक हैं जिनकी दर्दनाक अग्निकांड में मौत हो गई। आज एक तरफ मातम है तो दूसरी तरफ सरकार के खिलाफ गुस्सा।
4: अपने माता पिता का इन्होंने पेंटिंग किया
5: जी, बहुत अच्छी स्केचिंग पेंटिंग करते थे, बहुत अच्छी फाइलें बनाते थे, इतने अच्छे अच्छे सिस्टम पे, बहुत बढ़िया।
4: जिम्मेदारी तय होनी चाहिए जो घटना हुई है उसकी।
5: उसकी जिम्मेदारी गवर्नमेंट है, ये शासन प्रशासन है जो हमारे नीलेश को क्या, उसमें जितने बेचारे बच्चे थे उनको सुख सुविधा देते तो आज फायर ब्रिगेड टाइम से पहुंच जाती। तो आज मेरा देवर मेरा
4: 25 मिनट देर पहुंची है जो लोगों ने बताया।
5: हाँ, 45 मिनट 25 मिनट जो भी पहुंची है। अगर आज वहीं पर पास में ही है, ज्यादा दूर नहीं था, अलीगंज थाना कितनी दूर है वहां से, पुरनिया कितनी दूर है, आ सकती थी गवर्नमेंट बचाने, लेकिन नहीं, शासन प्रशासन की गलती है, योगी दोषी है, मोदी दोषी है इसके।
4: कह रहे हैं SIT बना ली है हमने,
5: SIT बनाए चाहे कुछ भी बनाए, लेकिन मेरे देवर को तो वापस नहीं दे सकते।
0: बीते दिन जब नीलेश ऑफिस के लिए घर से निकले थे तो पिता को यही कहा था कि शाम को मुलाकात होगी और पिता ने कहा था बेटा संभल कर जाना, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था।
6: मैं कहता हूँ बच्चा बेटा ठीक से जाना, आराम से जाना, भले दो चार मिनट लेट पहुँचो लेकिन सुरक्षित जाना, ढंग से जाना, बस यही बात होते हैं। जाओ बेटा बाय करके चला जाता है, हेलो करके।
7: लगता था कि ये उसकी जिंदगी का आपके लिए एक आखिरी बाय होगा?
6: नहीं, ये कभी महसूस ही नहीं किया हमने, ये हमको महसूस नहीं हो रहा था उस समय, कोई ऐसी दिक्कत ही नहीं थी उस तरीके की। खुशी से गया, खुशी से आता था, ऑफिस से निकलने के बाद जिम जाता था, जिम से फिर घर वापस आता था, बराबर बात हुआ करती थी।
0: हादसे से चंद घंटे पहले पिता शत्रुघ्न लाल से नीलेश की बात हुई थी और फिर दोपहर को आई सीना चीर देने वाली खबर। हादसे ने परिवार को ऐसे जख्म दिए हैं जिसे वक्त का मरहम भी कभी नहीं भर पाएगा।
8: पेंटिंग्स के शौकीन 27 वर्षीय नीलेश को शायद ही मालूम था कि महज दो दिन पहले लगाई गई ये नई नवेली पेंटिंग देखने के लिए अपने ही कमरे में, जहां वो सोता उठता बैठता काम करता, वही मौजूद नहीं रहेगा।
0: 24 साल का अब्दुल रहमान घर का इकलौता सहारा था। चंद महीने पहले नौकरी मिली थी, सोचा था घर वालों की तंगहाली को खुशहाली में बदल देगा, लेकिन एक झटके में परिवार की सारी खुशियां ताश के पत्तों की तरह बिखर गईं।
9: ये 3 बजे जब आग लगी है तब तो हमने खुद ही सोशल साइट पे डाला था, तब तक हमें नहीं पता था। अभी 8 बजे पता चला कि हमारा भतीजा रहमान भी इस आग का शिकार हो गया।
0: अब्दुल के कंधों पर पूरे परिवार की जिम्मेदारी थी, दिव्यांग पिता और बहन का सहारा था। एनिमेशन का कोर्स करने के बाद अब्दुल को नौकरी मिली, लेकिन वही दफ्तर अब्दुल की मौत की वजह बन गया।
9: घर में पिताजी विकलांग हैं, माँ टीचरिंग करती थी, बच्चा अभी दो ही तीन महीने हुए जॉब पे था, काम भी करता था, वहीं पढ़ाई भी करता था।
10: अब परिवार की कैसे जिम्मेदारी और क्या चाहते हैं आप लोग इस पूरी घटना करना?
9: कि हम लोग चाहते हैं इस पर जांच हो और ज्यादा से ज्यादा परिवार को मुआवजा दिया जाए, ताकि उसकी माँ की भी कोई ऐसी स्थिति नहीं हो। परिवार में कोई दूसरा कमाने वाला नहीं था, इकलौता बच्चा था, यही पालन पोषण करता था, घर की देखभाल करता।
11: कांग्रेस ने मध्य प्रदेश की मोहन यादव सरकार पर बड़ा हमला बोला है। मध्य प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष जीतू पटवारी ने आरोप लगाया है कि मोहन यादव और उनके परिवार ने उज्जैन में जहां जमीनें खरीदी वहीं से परियोजनाएं निकाली गई हैं।
0: मध्य प्रदेश कांग्रेस ने बाकायदा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सीएम मोहन यादव पर उज्जैन में जमीन खरीदी को लेकर सनसनीखेज आरोप लगाए। कांग्रेस का आरोप है कि मुख्यमंत्री बनने के बाद मोहन यादव और उनके परिवार की ओर से जमीन खरीद में तेजी आई और जिन क्षेत्रों में बाद में विकास परियोजनाएं घोषित हुई वहां पहले से जमीन खरीदी गई। जीतू पटवारी ने कहा कि उज्जैन में जमीन खरीद का मामला भी गंभीर सवाल खड़े कर रहा है।
12: मुख्यमंत्री परिवार की सभी कंपनियों के हिस्सेदार फॉरेंसिक ऑडिट कराने के लिए तैयार है। मीडिया रिपोर्ट्स ने दावा किया कि भूमि खरीदी के कुछ समय बाद ही हाउसिंग प्रोजेक्ट बिल्डर एग्रीमेंट शुरू हो गए उन जमीनों पर। क्या पहले नियोजित व्यवसाय की रणनीति का हिस्सा था कि जमीन खरीदेंगे, मास्टर प्लान में चेंज आएंगे, परियोजना लाएंगे, उस बीच में रियल एस्टेट कंपनी से हम अपना एग्रीमेंट करेंगे और जो 10 रुपए की जमीन है वो 1000 रुपए की करेंगे, ये पहले से प्लान आउट था क्या? क्या ये सही है कि कुछ परियोजनाओं में भूमि मालिकों के विकसित संपत्ति 60% से 70% का हिस्सा है जिनकी भूमि है मुख्यमंत्री की हो उसके परिवार की?
13: जीतू पटवारी के मुताबिक मोहन यादव 2021 में मंत्री बने थे, 13 दिसंबर 2023 में वो मुख्यमंत्री बने। 21 से 23 के बीच में उनके परिवार के निकट सदस्यों के पास लगभग 194 प्लॉट बने। उनके परिवार के पास अलग अलग जगहों पर 253 एकड़ जमीनें हैं। उन्होंने आरोप लगाया है कि 21 से 25 के बीच में 253 एकड़ जमीनें खरीदी गई हैं। सूत्रों के मुताबिक सीएम दफ्तर ने इस पर सफाई दी है, जिसमें लिखा है कि मुख्यमंत्री मोहन यादव ने दिसंबर 2023 में मुख्यमंत्री बनने के बाद कोई जमीन नहीं खरीदी है। मुख्यमंत्री मोहन यादव की पत्नी सीमा यादव ने भी उनके मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री बनने के बाद कोई जमीन नहीं खरीदी है। मोहन यादव का दफ्तर इस पर बाद में एक विस्तृत रिपोर्ट भी जारी करेगा। आज तक ब्यूरो।
11: इसी के साथ हम यहां रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए। आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आज तक।

0: लखनऊ अग्निकांड पर सीएम योगी की समीक्षा बैठक का फायर सेफ्टी मानकों से समझौता नहीं। अखिलेश बोले बीजेपी राज में पास नक्शों का हो हिसाब। ब्रिजेश पाठक ने मौत पर राजनीति न करने की नसीहत दी। चार आरोपियों को न्यायिक हिरासत। राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में एसआईटी ने यूपी सरकार को सौंपी प्रारंभिक रिपोर्ट। फिलहाल किसी को क्लीन चिट नहीं। कुछ कर्मचारियों पर केस की सिफारिश। एसपी सांसद अवधेश प्रसाद ने सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के तहत जांच की मांग की। भोजपुर के भरत तिवारी एनकाउंटर पर एक्शन। जगदीशपुर के एसडीपीओ शाहपुर थानाध्यक्ष समेत कई पुलिसकर्मियों पर एफआईआर। बवाल के बाद बैकफुट पर बिहार पुलिस। नीट पर आज तक से बोले धर्मेंद्र प्रधान, लीग के मुजरिमों को छोड़ेंगे नहीं। दोबारा गड़बड़ी रोकने की पूरी कोशिश। राहुल गांधी पर लगाया छात्रों को भड़काने का आरोप। पद्म पुरस्कारों से 65 हस्तियां सम्मानित। शिबू सोरेन को मिला मरणोपरांत पद्म भूषण। रोहित शर्मा, अलका याग्निक, ममूटी को राष्ट्रपति ने दिया सम्मान। लखनऊ अग्निकांड ने सिर्फ एक शहर को नहीं बल्कि पूरे देश को हिलाकर रख दिया है। 15 लोग जलकर मर गए, वो भी उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में, जहां से सरकार चलती है, जहां बुलडोजर से लेकर एनकाउंटर तक के ऑर्डर निकाले जाते हैं। लेकिन एक बिल्डिंग जो रिहायशी इमारत के तौर पर बनाई जाती है और उसे कमर्शियल में तब्दील कर दिया जाता है, और राजधानी में बैठे सत्ताधीश, बड़े बड़े ऑफिसर उससे आंखें मूंद लेते हैं, और वही बिल्डिंग 15 मौतों का मरघट बनकर स्याह खड़ी रहती है। वही जिम्मेदार है, वही सत्ताधीश इमारत का मुआयना करने पहुंचते हैं। सवाल सिर्फ यही इन्हीं ऑफिसर से, इन्हीं सत्ताधीशों से, कि क्या वो 15 मौतों की जिम्मेदारी लेकर खुद को आईना दिखा पाएंगे।
1: मेरा बेटा भी जिंदा होता, मेरा बेटा भी होता दुनिया में।
2: 15 लोग जिंदा जल गए, क्या जिंदगी इतनी सस्ती है?
3: ये पापा बचाओ कैसे भी करके, आग लग गए।
2: पहले ऐसा मुआयना होता तो अग्निकांड क्यों होता? पंद्रह मौतों का सवाल है, जिम्मेदारों को जवाब तो देना पड़ेगा। कैसे एक रिहायशी बिल्डिंग कमर्शियल में बदल गई? किस किस का भ्रष्टाचार 15 बेगुनाहों की मौत का कारण बना?
4: माँ के सामने बेटा अंदर,
5: मौके कोई था ही नहीं, बंद था सब। इसके लिए सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए।
6: परिवार पे जो भी इतनी बढ़िया परिवार समझ सकता है।
2: अब लखनऊ का पूरा प्रशासनिक अमला, सारे दिग्गज अधिकारी इस जलकर खाक हो चुकी इमारत के चप्पे चप्पे को नाप रहे हैं। आग कैसे लगी, कहां से लगी, कैसे फैली, और कैसे 15 लोग इस अग्निकांड में जिंदा जल गए। जांच के लिए लखनऊ के अलीगंज की इस 3 मंजिला इमारत में लगी भीषण आग की वजह जानने के लिए और जांच करने के लिए एसआईटी का गठन किया गया है। इसमें अपर मुख्य सचिव पर्यटन अमृत अभिजात और एडीजी लखनऊ जोन प्रवीण कुमार को शामिल किया गया है। लखनऊ के ये दिग्गज अफसर 7 दिन के भीतर अपनी रिपोर्ट तैयार करके सीएम योगी को भेजेंगे। लेकिन जिस तरह से इस खाक हुई बिल्डिंग में अधिकारी अब खाक छान रहे हैं, अगर आग लगने से पहले इस कॉम्प्लेक्स की पड़ताल की गई होती और सिस्टम भ्रष्टाचार की भेंट ना चढ़ा होता तो 15 बेगुनाह लोग इस अग्निकुंड में ना समाये होते, इस तरह से पीड़ित परिवारों के आंसू ना बह रहे होते।
7: एसआईटी की टीम में प्रवीण कुमार जो एडीजी है जोन वो, और साथ साथ अमृत अभिजात मौजूद है जिन्होंने इंस्पेक्शन किया है, जांच की है इस पूरे मामले की कि आखिर किस तरीके से यहां पर ये घटना घटी। इस एसआईटी रिपोर्ट बनाकर चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ को दी जाएगी और अब यहाँ पर माइक्रो लेवल पर हर उस चीज की जांच की जा रही है और परखा जा रहा है कि आखिर इस पूरे मामले पर क्या है। सर, क्या क्या आपने जांच किया है अंदर, किस तरीके से?
8: देखिए, सब सारे फ्लोर्स पे गए हैं और जो घटना स्थल है वो भी देखा है। तो अभी कुछ निर्णायक बताने की स्थिति में नहीं, क्योंकि अभी सारी जांचें हो रही हैं एफएसएल वगैरह का।
2: लखनऊ अग्निकांड की परतें जब एक एक करके खुल रही हैं, तो साफ साफ नजर आ रहा है कि ये कोई हादसा नहीं बल्कि सामूहिक हत्याकांड है, जिसको उन भ्रष्ट अधिकारियों, अफसरों, जिम्मेदारों ने खुलेआम दिन दहाड़े बेखौफ होकर अंजाम दिया है।
9: एक बॉक्स नुमा ये बिल्डिंग है, इस बॉक्स नुमा बिल्डिंग के अंदर ही लोग सिर्फ इसी से, जो बच्चे थे, जो लोग थे, वो इसी छोटे से रास्ते से, और कोई रास्ता था ही नहीं, ये इस रास्ते से अंदर जाना, बाहर जाना। और जब आग लग गई तो उसकी वजह से धुएं ने और आग ने अफरा तफरी मच गई और लोग फंस गए। मतलब तीन फ्लोर की ये बिल्डिंग, उसके बाद ये बेसमेंट, टोटली अगर कहा जाए तो सिर्फ और सिर्फ सुरक्षा मानकों को दरकिनार करके ये बनाया गया।
2: लखनऊ के उस अलीगंज में ये कॉम्प्लेक्स है जहां से हर छोटे बड़े अफसर से लेकर नेताओं की गाड़ियां गुजरती होंगी। इस तीन मंजिला कॉम्प्लेक्स को रिहायशी इमारत से कब कमर्शियल में तब्दील कर दिया गया और कब इसमें एनिमेशन सेंटर चलना शुरू हो गया, इसकी न कभी जाँच की गयी न कभी पड़ताल, लेकिन भ्रष्टाचारियों की मुठ्ठियाँ गर्म करके इसे मौत का कॉम्प्लेक्स बना दिया गया। सवाल इस अग्निकांड या कहें हत्याकांड के जिम्मेदारों से है, फायर डिपार्टमेंट ने कैसे अनदेखी की, कैसे लखनऊ डेवलपमेंट अथॉरिटी यानी एलडीए ने इसमें घोर लापरवाही बरती। 2016 में बनाए गए एनबीसी यानी नेशनल बिल्डिंग कोड 2016 के नियमों की अनदेखी की गई।
10: जो मकान मालिक है, क्योंकि बिल्डिंग आवासीय में पहले पास थी, बाद में उन्होंने कमर्शियल रूप में उसका इस्तेमाल करना जब शुरू कर दिया है, तो उनको फायर नाम से पूरा करना चाहिए था, आग बुझाने की पूरी व्यवस्था करनी चाहिए थी, लेकिन आग बुझाने की पूरी व्यवस्था में समुचित ढंग से किया नहीं था, इसलिए मकान मालिक की जिम्मेदारी ज्यादा बनती है वहां पर। दूसरी बात है कि जो अगर वो कमर्शियल रूप में इस्तेमाल कर ही रहे हैं, तो वहां पर जो बिजली विभाग था, उन्होंने उनका लोड सैंक्शन किया होगा कि कितनी एसी चल रही है, कितना बिजली का खर्चा इनका आ रहा है, उस हिसाब से उनको वहां पर देखना चाहिए था, लेकिन उन्होंने मुझे लगता है देखा नहीं ध्यान से। और जो एलडीए है, एलडीए की एरिया में आता है, तो एलडीए ने क्या चीज देखा, ये उनकी जिम्मेदारी बनती है।
2: जब ये बिल्डिंग रिहायशी से कमर्शियल कॉम्प्लेक्स में तब्दील हुई तो फायर ऑडिट क्यों नहीं किया गया, क्यों रिहायशी बिल्डिंग के कमर्शियल में बदलने पर एलडीए के अफसरों ने सर्वे नहीं किया, या फिर इन अफसरों के पहुंचने से पहले ही उनकी जेब उनकी कुर्सी पर ही गर्म कर दी गई। बड़ी बात यह भी है कि जिस इमारत में हादसा हुआ वहां 20 किलोवाट का कमर्शियल बिजली कनेक्शन स्वीकृत था। जांच में सामने आया है कि वास्तविक बिजली लोड बढ़कर 34 केवीए से ज्यादा हो गया था। अप्रैल महीने में इमारत का लोड 24.30 केवीए दर्ज किया गया था, जो जून में और बढ़ गया। जानकारों के मुताबिक स्वीकृत क्षमता से कहीं अधिक लोड होने से तारों और ट्रांसफार्मर पर भारी दबाव था। भीषण गर्मी और ओवरलोडिंग के कारण शॉर्ट सर्किट की आशंका कई गुना बढ़ गई। बिजली विभाग ने मौके पर जाकर लोड चेक क्यों नहीं किया, कितना लोड कागजों में है और कितना बिजली का लोड खपत में आ रहा है, अगर इसकी चेकिंग की गई होती तो इतना बड़ा अग्निकांड नहीं हुआ होता।
11: जो कार्रवाई है उसकी बात कर लेते हैं, तो सरकार सबसे पहले तो पुरनिया के जो थाना प्रभारी हैं, उन्होंने एफआईआर की, 6 लोगों पर मुकदमा तहरीर दी गई है, मुकदमा दर्ज हुआ, 4 गिरफ्तार कर लिए गए हैं, जिसमें इस मकान के ओनर, इस मकान के दो जो ओनर है जिन्होंने कमर्शियल कम्प्लेक्स बनाया है और जिनकी कंपनियां यहां कार्यरत थी।
2: 3 मंजिला इस कॉम्प्लेक्स में बेसमेंट भी बनाया गया था, एंट्री एग्जिट के लिए सिर्फ एक छोटा सा रास्ता था और इस रास्ते के ऊपर 7 पैनल, 2 एग्जॉस्ट फैन, इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल पैनल लगाकर रास्ते को और छोटा कर दिया गया था। इमारत के मालिकों और सेंटर संचालकों ने इसे अनदेखा किया।
11: दो बातें बहुत अहम हैं। एक तरफ जो तमाम जो जांचें चल रही हैं वो अपनी जगह है, लेकिन शायद दो बातें अगर इसमें हो गई होती तो इतने बच्चों की जान नहीं जाती। एक, जो बायोमेट्रिक जिसके जरिए एक्सेस था उस एनिमेशन का, जो इंस्टीट्यूट है उसके भीतर जाने और आने का, अगर वो बायोमेट्रिक लॉक नहीं हुआ होता यानी कि, तो शायद बच्चे निकल सकते थे। दूसरी बात, ऊपर अगर आपको दिखाएं तो आप देखिए ऊपर में एक पेंट हाउस जैसा है, यानी कि वो मकान मालिक जो है उसका अपना घर है, और कहा यह जा रहा है कि अगर ऊपर का घर का अगर सीढ़ी का रास्ता खुला होता तो भी ऊपर बच्चे भाग कर जान बचा सकते थे।
2: अब सवाल यही है कि जिस लखनऊ से बुलडोजर और एनकाउंटर के सीधे ऑर्डर निकलते हैं, वहाँ से भ्रष्टाचार के खिलाफ ऑर्डर क्यों नहीं निकलते? आखिर भ्रष्टाचार की आग कैसे बुझेगी? आज तक ब्यूरो।
0: लखनऊ अग्निकांड सरकारी महकमों की अंधेरगर्दी का साक्षात प्रमाण है, क्योंकि हादसे ने सरकारी दावों और जमीनी हकीकत के बीच की खाई को उजागर करके रख दिया है। सवाल जवाबदेही का है, पीड़ितों के परिजनों के इंसाफ का है। सवाल यह भी है कि जिस महकमे की कमान सीधे मुख्यमंत्री के हाथों में है, आखिर उस विभाग ने आम जनता को भगवान के भरोसे कैसे छोड़ दिया? क्या सीएम को ऑफिसर्स ने अंधेरे में रखा था, या फिर उत्तर प्रदेश में जनता की जान की कोई कीमत ही नहीं है?
12: ना कुछ देखेंगे ना कुछ सुनेंगे, क्योंकि जिंदगी लेना और देना तो ऊपर वालों के हाथों में है। ऐसे में जिम्मेदारों की जवाबदेही का कोई सवाल नहीं उठता। हादसे में मौत हुई तो साहब ने मौके का मुआयना कर लिया, जांच के आदेश दे दिए गए, मुआवजे का ऐलान कर दिया, संवेदना जताते हुए दो शब्द भी कह दिए। अब मृतकों की जान लौटाई तो जा नहीं सकती, तो इससे ज्यादा उनके परिजनों को क्या चाहिए? सरकार तो अपनी जिम्मेदारी पूरी तत्परता से निभा रही, फिर हादसा होगा फिर यही सरकारी रस्म अदा कर दी जाएगी। मतलब ना तो सिस्टम बदलेगा ना जिम्मेदार अपनी सोच बदलेंगे। यही होता आया है, यही होता रहेगा, क्योंकि योगी सरकार के उत्तम प्रदेश में जनता की जिंदगी सरकारी सिस्टम के आगे सस्ती है। इतनी सस्ती कि अब पूरे सिस्टम से लोगों का भरोसा उठ चुका है। अतीत में हुए हादसों से लेकर लखनऊ अग्निकांड तक जिम्मेदारों के रवैये से पीड़ित इतना टूट चुके हैं कि ना उम्मीदी के अंधेरे में इंसाफ के उजाले की उम्मीद अब बेमानी है।
13: और ये ट्राई ट्राई फिक्स हो जाएगी चार दिन के बाद। वो अधिकारी वो कैसे नहीं, कैसे नक्शा पास कर दिए, कैसे क्या कर दिए, हाँ। और उसमें होता है कि अभी सब पनिश किए जाएंगे, सब कुछ किया जाएगा। अब उसके बाद
14: आपका कहना है कि चार दिन में सब भूल जाएंगे?
13: सात दस दिन के बाद सब भूल जाते हैं।
15: एसआईटी बनाए चाहे कुछ भी बनाए, लेकिन मेरे देवर को तो वापस नहीं दे सकते ना। कितनों के घर उजड़ गए, कितने देवर, कितने भाई बहन, किसके किसके बच्चे होंगे सर। वो बेचारे नहीं रहे अब इस दुनिया में, क्या करेंगे? उनके माँ किसी का वो एक सहारा, किसी के इकलौते बच्चे होंगे।
12: मुख्यमंत्री की तरफ से दोषियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई का ऐलान भी पीड़ितों के दिलों में सोते हुए सिस्टम के जागने का भरोसा नहीं जगा सकता।
16: इस पूरे मामले की तह में हम जाकर के दोषियों को सजा भी दे सकें और उन पीड़ित परिवारों के प्रति अपनी संवेदना भी व्यक्त कर सकें।
17: जांच कुछ नहीं होगी, सिर्फ कागजी कार्रवाई होगी और कुछ नहीं होगा वहाँ पे। ना आज तक हुआ ना आगे ऐसा होगा,
18: ऐसा चलता रहेगा। मेरे को कोई उम्मीद नहीं है, चाहे जो गवर्नमेंट आ जाए, लोग ही ऐसे हैं, पैसे दे के सब पास हो जाता है, अब वो ऐसे होता रहेगा, तो इसमें मुझे उम्मीद नहीं है।
19: हादसा हो जाने के बाद किसी कोई बात करे, क्या वापस कर सकता है? वो वापस तो नहीं कर सकता, केवल समस्या को समाधान करने के लिए, सुलझाने के लिए केवल आश्वासन देंगे। पर
12: पहले की तरह लखनऊ अग्निकांड के बाद पीछे है परिजनों की पीड़ा, रोते बिलखते लोग, जांच और मुआवजे की खाना पूर्ति, लेकिन पीड़ितों के आंसुओं का हिसाब न कभी मिला, न मिलने की उम्मीद और न कोई दे पाया है। सोचिए, रिहायशी इलाके में नियमों को ताक पर रखकर खड़ी की गई ये कमर्शियल बिल्डिंग न सिर्फ अवैध थी, बल्कि सुरक्षा के लिहाज से एक डेथ ट्रैप बन चुकी थी। लेकिन न देखने वाला कोई, न सुनने वाला कोई। आम जनता हादसे का शिकार बनती है तो बनती रहे। लखनऊ में हुए अग्निकांड में 15 जिंदगियां मौत के गाल में समा गई। अगर जिम्मेदारों ने आंखों पर रिश्वत की पट्टी नहीं बांधी होती तो ये बच जाते। यही है आम जनता की सुरक्षा की गारंटी। मतलब सिस्टम के भरोसे नहीं बल्कि भगवान के भरोसे जियो। जबकि माननीय और साहब तो पूरे ठसक के साथ सुरक्षा के वीवीआईपी प्रोटोकॉल में चलते हैं। मजार है कि बिना इजाजत परिंदा भी पर मार दे, क्योंकि माननीय और सरकारी लाट साहबों की जिंदगी का मोल है और आम जनता की जिंदगी का कोई नहीं।
15: अभी अपने को कुछ होता तो प्रशासन तुरंत दौड़ जाएगा। ये वीआईपी यहाँ पर जब मंत्री निकलते तो तुरंत रास्ता बंद कर दिया जाता। आम आदमी खड़ा रहता है, बच्चे धूप में स्कूल चलाते भी लगते, तब गवर्नमेंट को तरस नहीं आता जनता पे।
12: अगर आम जनता की जिंदगी की परवाह होती तो लखनऊ के अलीगंज में सरकारी तंत्र की नाक के नीचे मौत की इमारत कभी खड़ी नहीं होती। इमारत की नींव से लेकर छत पर लगी आखिरी ईंट तक में सरकारी भ्रष्टाचार का सीमेंट भरा पड़ा है। इतना मजबूत सीमेंट कि कोई हिसाब नहीं। ये सब कैसे हुआ ये भी समझिए। सरकार की हर साख पर 15 बेगुनाहों के खून के छींटे, एक नहीं बल्कि 4-4 विभागों की अंधेर गर्दी आम जनता की जिंदगी पर भारी पड़ी। मौत की बिल्डिंग अवैध थी लेकिन सिस्टम की आंखें बंद थी। आज कटघरे में खड़ा है लखनऊ विकास प्राधिकरण, लखनऊ नगर निगम और उसके कर्ता धर्ता। सवाल यही कि दोनों विभागों ने अपनी जिम्मेदारी क्यों नहीं निभाई, भ्रष्टाचार की इमारत क्यों खड़ी। ये तब है जब लखनऊ विकास प्राधिकरण जिस विभाग को रिपोर्ट करता है उसके मुखिया सीधे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ है। मुख्यमंत्री की नाक के नीचे काम करने वाले हाउसिंग एंड अर्बन प्लानिंग विभाग की अंधेर गर्दी ने जिंदगी के 15 चिराग बुझा दिए, जिसके लिए सीधे जिम्मेदार हाउसिंग एंड अर्बन प्लानिंग विभाग के मुख्य सचिव पी गुरुप्रसाद, एलडीए के चेयरमैन रोशन जैकब, एलडीए के वीसी प्रथमेश कुमार, लखनऊ नगर निगम के नगर आयुक्त गौरव कुमार, जो नगर विकास मंत्री अरविंद कुमार शर्मा को रिपोर्ट करते हैं। इनका जिम्मा अवैध निर्माण को रोकना और अवैध निर्माण को ढहाना। आंखें बंद थी तो कोई वक्त रहते एक्शन कभी नहीं लिया गया। सरकारी व्यवस्था में अव्यवस्था का दीमा सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं था। सरकारी मुलाजिमों को पता था अलीगंज में खड़ी मौत की इमारत कभी भी आम जनता का जीवन छीन सकती है, लेकिन सब कुछ जानते हुए भी बिजली विभाग ने आंखें मूंदे रखी। अवैध बिल्डिंग में मांग से ज्यादा बिजली खपत के बावजूद बिजली विभाग के कान जू कभी नहीं रहेंगी। सब कुछ चलता है, चलता रहेगा के हिसाब से चलता रहा। बिजली विभाग ने अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाई, जिसके मंत्री हैं अरविंद कुमार शर्मा और जिम्मेदार हैं यूपीपीसीएल के चेयरमैन और लखनऊ की बिजली आपूर्ति का जिम्मा संभाल रहे अफसर आशीष कुमार गोयल। वक्त रहते बिजली विभाग ने कार्रवाई की होती 15 जिंदगी बच जाती।
20: ऐसी घटनाएं न हो इसके लिए पूरी तरह सजगता के साथ हम और पूरी सरकार प्रयास करेंगे और ये देखेंगे कि ऐसी घटनाओं का जो भी कारण है वो भविष्य में ऐसी घटनाओं के कारण न बने।
12: ऐसा पहली बार नहीं हुआ कि योगी के राज में सरकारी सिस्टम की लापरवाही जानलेवा साबित हुई। इससे पहले भी सिस्टम की लापरवाही के चलते कई बार लोग बेमौत मारे गए, लेकिन जिम्मेदारों पर कार्रवाई आज तक नहीं हुई। यही है योगी सरकार का ट्रैक रिकॉर्ड और रिपोर्ट कार्ड। महाकुंभ भगदड़, 37 श्रद्धालुओं की मौत, कोई बड़ा अफसर नहीं नपा। हाथरस सत्संग भगदड़, 121 लोगों की मौत, कोई बड़ा अफसर नहीं नपा। झांसी मेडिकल कॉलेज आग, 18 नवजात बच्चों की मौत, किसी बड़े अफसर पर गाज नहीं गिरी। आगरा नोएडा एक्सप्रेसवे हादसा, 19 यात्रियों की मौत, कोई अफसर नहीं नपा। जब सिस्टम की सोच पर सिर्फ आश्वासन का पर्दा पड़ा हो तो जिम्मेदार हर बार अपनी जवाबदेही से बच जाते हैं और आम जनता की जान चली जाती है।
0: लखनऊ अग्निकांड ने 15 नौजवानों की जिंदगी के दियों को बुझा दिया। मरने वालों में ज्यादातर ट्रेनी या स्टूडेंट्स थे जो कामयाबी के पंख लगाकर अपने सपनों को हकीकत में बदलना चाहते थे, लेकिन उनकी मेहनत और मंजिल के बीच सरकारी व्यवस्था मौत बनकर खड़ी हो गई। मंजिल से पहले ही अंधेरगर्दी की आग में 15 परिवारों की खुशियों को ग्रहण लग गया है।

0: 24 साल के आदित्य श्रीवास्तव अब इस दुनिया में नहीं हैं। एक माँ ने अपनी आंखों के सामने जिगर के टुकड़े को हमेशा के लिए खो दिया। दिल में कसक यही है कि सरकारी सिस्टम की नींद वक्त रहते टूटी होती तो शायद बेटा आज जिंदा होता।
1: देखा है मैंने, सब देखा। मैं बराबर यही कह रही थी कि एकदम से देखा था मैंने सब, जिस तरह से इस समय भी मैंने देखा कि सीएम साहब आने वाले थे, किया जा रहा था, उस टाइम उस तरह से ये भी ध्यान दिया जाता तो हो सकता है बच्चे बच जाते।
2: मेहनत कर लिया थी,
1: हाँ बच्चे बचाए जा सकते थे। जॉब करता था, एनिमेशन कोर्स का ये स्टूडियो है, वहीं पे जॉब करता था।
0: पहले सरकारी अनदेखी ने आदित्य को मौत के मुंह में पहुंचाया और फिर सरकारी लापरवाही जिंदगी पर भारी पड़ गई। आदित्य सीतापुर से लखनऊ आया था, सोचा था एनिमेशन एंड गेमिंग ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में मिली नौकरी के बाद अपने पैरों पर खड़ा हो जाएगा, लेकिन किसे पता था कि सरकारी सिस्टम आदित्य की जिंदगी के पैर ही उखाड़ देगा।
3: ये सबसे बड़ी दर्दनाक घटना हुई कि माँ के सामने बेटा अंदर।
4: तो माँ आदित्य की उस वक्त जहाँ पर वो पूरा संस्थान बना है वहाँ, मतलब बाहर मौजूद हैं, और सामने उनका जहाँ पर वो ऑफिस बना है वो धधक रहा है।
3: तो वो आग लग चुकी थी जब पहुंची, आग लग चुकी थी, फिर उसके बाद जो है बुझाने का और निकलने का काम हो रहा था, जो कुछ हो रहा था। जो है कि बनने बड़ा हुनरमंद, बड़ा मतलब एक चीज है, बड़ा हौसले वाला। कभी ये वो उसके दिमाग था ही नहीं कि चार आदमी है तो हम निपट नहीं लेंगे, हिम्मत ही बहुत था।
0: घर वालों के मुताबिक आदित्य बचपन से पढ़ने में होशियार था, हमेशा फर्स्ट डिवीजन में पास हुआ था। आदित्य की हसरत मेहनत के दम पर इतना ऊंचा मुकाम हासिल करने की थी जिससे पूरे घर को नाज हो, लेकिन किसे पता था कि आदित्य की मौत के साथ एक सपना भी हमेशा के लिए टूट जाएगा। आज आदित्य की मौत पर घर वालों के आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे और जुबान पर सरकारी व्यवस्था के खिलाफ जबरदस्त आक्रोश है।
3: जैसे ये तो हम जरूर कहना चाहेंगे कि इस तरीके से भी दिल्ली में कांड हुआ और ये टाई फिस हो जाएगी चार दिन के बाद। वो अधिकारी वो कैसे नहीं, कैसे नक्शा पास कर दिए, कैसे क्या कर दिए, हाँ। अब उसमें होता है कि अभी सब पनिश किए जाएंगे, सब कुछ किया जाएगा। अब उसके बाद
4: आपका कहना है कि चार दिन में सब भूल जाएंगे?
3: सात दस दिन के बाद सब भूल जाते हैं। हम आज जो है कि 65 साल का मैं हूँ, तो 65 साल से जो है कि सब देखते तो चले आ रहे हैं। अब
0: आदित्य उस दुनिया में चला गया जहां से कोई लौट कर नहीं आता, लेकिन परिवार यही चाहता है कि दोषियों का हिसाब होना चाहिए ताकि भविष्य में किसी और परिवार पर दुखों का ऐसा पहाड़ ना टूटे। जिस घर में बेटे की जल्द बारात निकलनी थी, आज उसी घर में बेटे की अर्थी उठाने की तैयारी चल रही है। 27 साल के नीलेश कुमार उन बदनसीबों में एक हैं जिनकी दर्दनाक अग्निकांड में मौत हो गई। आज एक तरफ मातम है तो दूसरी तरफ सरकार के खिलाफ गुस्सा।
4: अपने माता पिता का इन्होंने पेंटिंग किया
5: जी, बहुत अच्छी स्केचिंग पेंटिंग करते थे, बहुत अच्छी फाइलें बनाते थे, इतने अच्छे अच्छे सिस्टम पे, बहुत बढ़िया।
4: जिम्मेदारी तय होनी चाहिए जो घटना हुई है उसकी।
5: उसकी जिम्मेदारी गवर्नमेंट है, ये शासन प्रशासन है जो हमारे नीलेश को क्या, उसमें जितने बेचारे बच्चे थे उनको सुख सुविधा देते तो आज फायर ब्रिगेड टाइम से पहुंच जाते, तो आज मेरा देवर मेरा
4: 25 मिनट देर पहुंची है जो लोगों ने बताया,
5: 45 मिनट 25 मिनट जो भी पहुंची है। अगर आज वहीं पर पास में ही है, ज्यादा दूर नहीं था, अलीगंज थाना कितनी दूर है वहां से, पुरनिया कितनी दूर है, आ सकती थी गवर्नमेंट बचाने, लेकिन नहीं, शासन प्रशासन की गलती है, योगी दोषी है, मोदी दोषी है इसके।
4: कह रहे हैं SIT बना ली है हमने,
5: SIT बनाए चाहे कुछ भी बनाए, लेकिन मेरे देवर को तो वापस नहीं दे सकते।
0: बीते दिन जब नीलेश ऑफिस के लिए घर से निकले थे तो पिता को यही कहा था कि शाम को मुलाकात होगी और पिता ने कहा था बेटा संभल कर जाना, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था।
6: मैं कहता हूँ बच्चा बेटा ठीक से जाना, आराम से जाना, भले दो चार मिनट लेट पहुँचो लेकिन सुरक्षित जाना, ढंग से जाना, बस यही बात होते हैं। जाओ बेटा बाय करके चला जाता है, हेलो करके।
4: लगता था कि ये उसकी जिंदगी का आपके लिए एक आखिरी बाय होगा?
6: नहीं, ये कभी महसूस ही नहीं किया हमने, ये हमको महसूस नहीं हो रहा था उस समय, कोई ऐसी दिक्कत ही नहीं थी उस तरीके की। खुशी से गया, खुशी से आता था, ऑफिस से निकलने के बाद जिम जाता था, जिम से फिर घर वापस आता था, बराबर बात हुआ करती थी।
0: हादसे से चंद घंटे पहले पिता शत्रुघ्न लाल से नीलेश की बात हुई थी और फिर दोपहर को आई सीना चीर देने वाली खबर। हादसे ने परिवार को ऐसे जख्म दिए हैं जिसे वक्त का मरहम भी कभी नहीं भर पाएगा।
7: पेंटिंग्स के शौकीन 27 वर्षीय नीलेश को शायद ही मालूम था कि महज दो दिन पहले लगाई गई ये नई नवेली पेंटिंग देखने के लिए अपने ही कमरे में, जहां वो सोता उठता बैठता काम करता, वही मौजूद नहीं रहेगा।
0: 24 साल का अब्दुल रहमान घर का इकलौता सहारा था। चंद महीने पहले नौकरी मिली थी, सोचा था घर वालों की तंगहाली को खुशहाली में बदल देगा, लेकिन एक झटके में परिवार की सारी खुशियां ताश के पत्तों की तरह बिखर गईं।
8: ये 3 बजे जब आग लगी है तब तो हमने खुद ही सोशल साइट पे डाला था, तब तक हमें नहीं पता था। अभी 8 बजे पता चला कि हमारा भतीजा रहमान भी इस आग का शिकार हो गया।
0: अब्दुल के कंधों पर पूरे परिवार की जिम्मेदारी थी, दिव्यांग पिता और बहन का सहारा था। एनिमेशन का कोर्स करने के बाद अब्दुल को नौकरी मिली, लेकिन वही दफ्तर अब्दुल की मौत की वजह बन गया।
8: घर में पिताजी विकलांग हैं, माँ टीचरिंग करती थी, बच्चा अभी दो ही तीन महीने हुए जॉब पे था, काम भी करता था वहीं पढ़ाई भी करता था।
9: अब परिवार की कैसे जिम्मेदारी तो क्या चाहते हैं आप लोग इस पूरी घटना पर?
8: हम लोग चाहते हैं निष्पक्ष जांच हो और ज्यादा से ज्यादा परिवार को मुआवजा दिया जाए, ताकि उसकी मां की भी कोई ऐसी स्थिति नहीं हो। परिवार में कोई दूसरा कमाने वाला नहीं था, इकलौता बच्चा था, यही पालन पोषण करता था, घर की देखभाल करता।
10: कांग्रेस ने मध्य प्रदेश की मोहन यादव सरकार पर बड़ा हमला बोला है। मध्य प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष जीतू पटवारी ने आरोप लगाया है कि मोहन यादव और उनके परिवार ने उज्जैन में जहां जमीनें खरीदी वहीं से परियोजनाएं निकाली गई हैं।
0: मध्य प्रदेश कांग्रेस ने बाकायदा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सीएम मोहन यादव पर उज्जैन में जमीन खरीदी को लेकर सनसनीखेज आरोप लगाए। कांग्रेस का आरोप है कि मुख्यमंत्री बनने के बाद मोहन यादव और उनके परिवार की ओर से जमीन खरीद में तेजी आई और जिन क्षेत्रों में बाद में विकास परियोजनाएं घोषित हुई वहां पहले से जमीन खरीदी गई। जीतू पटवारी ने कहा कि उज्जैन में जमीन खरीद का मामला भी गंभीर सवाल खड़े कर रहा है।
11: मुख्यमंत्री परिवार की सभी कंपनियों के हिस्सेदार फॉरेंसिक ऑडिट कराने के लिए तैयार है। मीडिया रिपोर्ट्स ने दावा किया कि भूमि खरीदी के कुछ समय बाद ही हाउसिंग प्रोजेक्ट बिल्डर एग्रीमेंट शुरू हो गए उन जमीनों पर। क्या पहले नियोजित व्यवसाय की रणनीति का हिस्सा था कि जमीन खरीदेंगे, मास्टर प्लान में चेंज आएंगे, परियोजना लाएंगे, उस बीच में रियल एस्टेट कंपनी से हम अपना एग्रीमेंट करेंगे और जो 10 रुपए की जमीन है वो 1000 रुपए की करेंगे, ये पहले से प्लान आउट था क्या? क्या ये सही है कि कुछ परियोजनाओं में भूमि मालिकों के विकसित संपत्ति 60% से 70% का हिस्सा है जिनकी भूमि है मुख्यमंत्री की हो उसके परिवार की हो?
0: जीतू पटवारी के मुताबिक मोहन यादव 2021 में मंत्री बने थे, 13 दिसंबर 2023 में वो मुख्यमंत्री बने। 21 से 23 के बीच में उनके परिवार के निकट सदस्यों के पास लगभग 194 प्लॉट बने। उनके परिवार के पास अलग अलग जगहों पर 253 एकड़ जमीनें हैं। उन्होंने आरोप लगाया है कि 21 से 25 के बीच में 253 एकड़ जमीनें खरीदी गई हैं। सूत्रों के मुताबिक सीएम दफ्तर ने इस पर सफाई दी है, जिसमें लिखा है कि मुख्यमंत्री मोहन यादव ने दिसंबर 2023 में मुख्यमंत्री बनने के बाद कोई जमीन नहीं खरीदी है। मुख्यमंत्री मोहन यादव की पत्नी सीमा यादव ने भी उनके मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री बनने के बाद कोई जमीन नहीं खरीदी है। मोहन यादव का दफ्तर इस पर बाद में एक विस्तृत रिपोर्ट भी जारी करेगा। आज तक ब्यूरो।
10: इसी के साथ हम यहां रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए। आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आज तक।

0: लखनऊ अग्निकांड पर सीएम योगी की समीक्षा बैठक का फायर सेफ्टी मानकों से समझौता नहीं। अखिलेश बोले बीजेपी राज में पास नक्शों का हो हिसाब। ब्रिजेश पाठक ने मौत पर राजनीति न करने की नसीहत दी। चार आरोपियों को न्यायिक हिरासत। राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में एसआईटी ने यूपी सरकार को सौंपी प्रारंभिक रिपोर्ट। फिलहाल किसी को क्लीन चिट नहीं। कुछ कर्मचारियों पर केस की सिफारिश। एसपी सांसद अवधेश प्रसाद ने सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के तहत जांच की मांग की। भोजपुर के भरत तिवारी एनकाउंटर पर एक्शन। जगदीशपुर के एसडीपीओ शाहपुर थानाध्यक्ष समेत कई पुलिसकर्मियों पर एफआईआर। बवाल के बाद बैकफुट पर बिहार पुलिस। नीट पर आज तक से बोले धर्मेंद्र प्रधान, लीग के मुजरिमों को छोड़ेंगे नहीं। दोबारा गड़बड़ी रोकने की पूरी कोशिश। राहुल गांधी पर लगाया छात्रों को भड़काने का आरोप। पद्म पुरस्कारों से 65 हस्तियां सम्मानित। शिबू सोरेन को मिला मरणोपरांत पद्म भूषण। रोहित शर्मा, अलका याग्निक, ममूटी को राष्ट्रपति ने दिया सम्मान। लखनऊ अग्निकांड ने सिर्फ एक शहर को नहीं बल्कि पूरे देश को हिलाकर रख दिया है। 15 लोग जलकर मर गए, वो भी उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में, जहां से सरकार चलती है, जहां बुलडोजर से लेकर एनकाउंटर तक के ऑर्डर निकाले जाते हैं। लेकिन एक बिल्डिंग जो रिहायशी इमारत के तौर पर बनाई जाती है और उसे कमर्शियल में तब्दील कर दिया जाता है, और राजधानी में बैठे सत्ताधीश बड़े बड़े ऑफिसर उससे आंखें मूंद लेते हैं, और वही बिल्डिंग 15 मौतों का मरघट बनकर स्याह खड़ी रहती है। वही जिम्मेदार है, वही सत्ताधीश इमारत का मुआयना करने पहुंचते हैं। सवाल सिर्फ यही इन्हीं ऑफिसर से, इन्हीं सत्ताधीशों से, कि क्या वो 15 मौतों की जिम्मेदारी लेकर खुद को आईना दिखा पाएंगे।
1: मेरा बेटा भी जिंदा होता, मेरा बेटा भी होता दुनिया में।
2: 15 लोग जिंदा जल गए, क्या जिंदगी इतनी सस्ती है।
3: ये पापा बचाओ कैसे भी करके, आग लग गए।
2: पहले ऐसा मुआयना होता तो अग्निकांड क्यों होता। पंद्रह मौतों का सवाल है, जिम्मेदारों को जवाब तो देना पड़ेगा।

0: चल गई। किस किस का भ्रष्टाचार 15 बेगुनाहों की मौत का कारण बना?
1: माँ के सामने बेटा अंदर,
2: मौके कोई था ही नहीं, बंद था सब। इसके लिए सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए।
3: परिवार पे जो भी तेरी भैया परिवार समझ सकता है।
0: अब लखनऊ का पूरा प्रशासनिक अमला, सारे दिग्गज अधिकारी इस जलकर खाक हो चुकी इमारत के चप्पे चप्पे को नाप रहे हैं। आग कैसे लगी, कहां से लगी, कैसे फैली और कैसे 15 लोग इस अग्निकांड में जिंदा जल गए। जांच के लिए लखनऊ के अलीगंज की इस 3 मंजिला इमारत में लगी भीषण आग की वजह जानने के लिए और जांच करने के लिए SIT का गठन किया गया है। इसमें अपर मुख्य सचिव पर्यटन अमृत अभिजात और ADG लखनऊ जोन प्रवीण कुमार को शामिल किया गया है। लखनऊ के ये दिग्गज अफसर 7 दिन के भीतर अपनी रिपोर्ट तैयार करके CM योगी को भेजेंगे। लेकिन जिस तरह से इस खाक हुई बिल्डिंग में अधिकारी अब खाक छान रहे हैं, अगर आग लगने से पहले इस कॉम्प्लेक्स की पड़ताल की गई होती और सिस्टम भ्रष्टाचार की भेंट ना चढ़ा होता तो 15 बेगुनाह लोग इस अग्निकुंड में ना समाये होते, इस तरह से पीड़ित परिवारों के आंसू ना बह रहे होते।
4: SIT की टीम में प्रवीण कुमार जो ADG है जोन वो और साथ साथ अमृत अभिजात मौजूद है, जिन्होंने इंस्पेक्शन किया है, जांच की है इस पूरे मामले की कि आखिर किस तरीके से यहां पर ये घटना घटी। इस SIT रिपोर्ट बनाकर चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ को दी जाएगी और अब यहां पर माइक्रो लेवल पर हर उस चीज की जांच की जा रही है और परखा जा रहा है कि आखिर इस पूरे मामले पर क्या है। सर, क्या क्या आपने जांच किया है अंदर, किस तरीके से?
5: देखिए, सब सारे फ्लोर्स पे गए हैं और जो घटना स्थल है वो भी देखा है। तो अभी कुछ निर्णायक बताने की स्थिति में नहीं, क्योंकि अभी सारी जांचें हो रही हैं FSL वगैरह का।
0: लखनऊ अग्निकांड की परतें जब एक एक करके खुल रही हैं तो साफ साफ नजर आ रहा है कि ये कोई हादसा नहीं बल्कि सामूहिक हत्याकांड है, जिसको उन भ्रष्ट अधिकारियों, अफसरों, जिम्मेदारों ने खुलेआम दिन दहाड़े बेखौफ होकर अंजाम दिया है।
6: एक बॉक्स नुमा ये बिल्डिंग है, इस बॉक्स नुमा बिल्डिंग के अंदर ही लोग सिर्फ इसी से, जो बच्चे थे, जो लोग थे, वो इसी छोटे से रास्ते से, और कोई रास्ता था ही नहीं, ये इस रास्ते से अंदर जाना, बाहर जाना। और जब आग लग गई तो उसकी वजह से धुएं ने और आग ने अफरा तफरी मच गई और लोग फंस गए। मतलब 3 फ्लोर की ये बिल्डिंग, उसके बाद ये बेसमेंट टोटली अगर कहा जाए तो सिर्फ और सिर्फ सुरक्षा मानकों को दरकिनार करके ये बनाया गया।
0: लखनऊ के उस अलीगंज में ये कॉम्प्लेक्स है जहां से हर छोटे बड़े अफसर से लेकर नेताओं की गाड़ियां गुजरती होंगी। इस 3 मंजिला कॉम्प्लेक्स को रिहायशी इमारत से कब कमर्शियल में तब्दील कर दिया गया और कब इसमें एनिमेशन सेंटर चलना शुरू हो गया, इसकी न कभी जांच की गई, न कभी पड़ताल, लेकिन भ्रष्टाचारियों की मुट्ठियां गर्म करके इसे मौत का कॉम्प्लेक्स बना दिया गया। सवाल इस अग्निकांड या कहे हत्याकांड के जिम्मेदारों से है, फायर डिपार्टमेंट ने कैसे अनदेखी की, कैसे लखनऊ डेवलपमेंट अथॉरिटी यानी LDA ने इसमें घोर लापरवाही बरती। 2016 में बनाए गए NBC यानी नेशनल बिल्डिंग कोड 2016 के नियमों की अनदेखी की गई।
7: जो मकान मालिक हैं, क्योंकि बिल्डिंग आवासीय में पहले पास थी, बाद में उन्होंने कमर्शियल रूप में उसका इस्तेमाल करना जब शुरू कर दिया है, तो उनको फायर नाप से पूरा करना चाहिए था, आग बुझाने की पूरी व्यवस्था करनी चाहिए थी, लेकिन आग बुझाने की पूरी व्यवस्था उन्होंने समुचित ढंग से किया नहीं था, इसलिए मकान मालिक की जिम्मेदारी ज्यादा बनती है वहां पर। दूसरी बात यह कि जो अगर वो कमर्शियल रूप में इस्तेमाल कर ही रहे हैं तो वहां पर जो बिजली विभाग था, उन्होंने उनका लोड सैंक्शन किया होगा कि कितनी AC चल रही है, कितना बिजली का खर्चा इनका आ रहा है, उस हिसाब से उनको वहां पर देखना चाहिए था, लेकिन उन्होंने मुझे लगता है देखा नहीं ध्यान से। और जो LDA है, LDA की एरिया में आता है, तो LDA ने क्या चीज देखा है, उनकी जिम्मेदारी बनती है।
0: जब ये बिल्डिंग रिहायशी से कमर्शियल कॉम्प्लेक्स में तब्दील हुई तो फायर ऑडिट क्यों नहीं किया गया, क्यों रिहायशी बिल्डिंग के कमर्शियल में बदलने पर LDA के अफसरों ने सर्वे नहीं किया, या फिर इन अफसरों के पहुंचने से पहले ही उनकी जेब उनकी कुर्सी पर ही गर्म कर दी गई। बड़ी बात यह भी है कि जिस इमारत में हादसा हुआ वहां 20 किलोवाट का कमर्शियल बिजली कनेक्शन स्वीकृत था। जांच में सामने आया है कि वास्तविक बिजली लोड बढ़कर 34 KVA से ज्यादा हो गया था। अप्रैल महीने में इमारत का लोड 24.30 KVA दर्ज किया गया था, जो जून में और बढ़ गया। जानकारों के मुताबिक

0: स्वीकृत क्षमता से कहीं अधिक लोड होने से तारों और ट्रांसफार्मर पर भारी दबाव था। भीषण गर्मी और ओवरलोडिंग के कारण शॉर्ट सर्किट की आशंका कई गुना बढ़ गई। बिजली विभाग ने मौके पर जाकर लोड चेक क्यों नहीं किया, कितना लोड कागजों में है और कितना बिजली का लोड खपत में आ रहा है। अगर इसकी चेकिंग की गई होती तो इतना बड़ा अग्निकांड नहीं हुआ होता।
1: जो कार्रवाई है उसकी बात कर लेते हैं तो सरकार सबसे पहले तो पुरनिया के जो थाना प्रभारी हैं उन्होंने FIR की, 6 लोगों पर मुकदमा तहरीर दी गई है, मुकदमा दर्ज हुआ, 4 गिरफ्तार कर लिए गए हैं, जिसमें इस मकान के ओनर, इस मकान के दो जो ओनर हैं जिन्होंने कमर्शियल कॉम्प्लेक्स बनाया है और जिनकी कंपनियां यहां कार्यरत थी।
0: 3 मंजिला इस कॉम्प्लेक्स में बेसमेंट भी बनाया गया था। एंट्री एग्जिट के लिए सिर्फ एक छोटा सा रास्ता था और इस रास्ते के ऊपर 7 पैनल, 2 एग्जॉस्ट फैन, इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल पैनल लगाकर रास्ते को और छोटा कर दिया गया था। इमारत के मालिकों और सेंटर संचालकों ने इसे अनदेखा किया।
2: दो बातें बहुत अहम हैं। एक तरफ जो तमाम जो जांचें चल रही हैं वो अपनी जगह है, लेकिन शायद दो बातें अगर इसमें हो गई होती तो इतने बच्चों की जान नहीं जाती। एक, जो बायोमेट्रिक जिसके जरिए एक्सेस था उस एनिमेशन का, जो इंस्टीट्यूट है उसके भीतर जाने और आने का, अगर वो बायोमेट्रिक लॉक नहीं हुआ होता यानी कि, तो शायद बच्चे निकल सकते थे। दूसरी बात, ऊपर अगर आपको दिखाएं तो आप देखिए ऊपर में एक पेंट हाउस जैसा है, यानी कि वो मकान मालिक जो है उसका अपना घर है, और कहा यह जा रहा है कि अगर ऊपर का घर का अगर सीढ़ी का रास्ता खुला होता तो भी ऊपर बच्चे भाग कर जान बचा सकते थे।
0: अब सवाल यही है कि जिस लखनऊ से बुलडोजर और एनकाउंटर के सीधे ऑर्डर निकलते हैं, वहां से भ्रष्टाचार के खिलाफ ऑर्डर क्यों नहीं निकलते? आखिर भ्रष्टाचार की आग कैसे बुझेगी? आज तक ब्यूरो।
3: लखनऊ अग्निकांड सरकारी महकमों की अंधेरगर्दी का साक्षात प्रमाण है, क्योंकि हादसे ने सरकारी दावों और जमीनी हकीकत के बीच की खाई को उजागर करके रख दिया है। सवाल जवाबदेही का है, पीड़ितों के परिजनों के इंसाफ का है। सवाल यह भी है कि जिस महकमे की कमान सीधे मुख्यमंत्री के हाथों में है, आखिर उस विभाग ने आम जनता को भगवान के भरोसे कैसे छोड़ दिया? क्या CM को ऑफिसर्स ने अंधेरे में रखा था, या फिर उत्तर प्रदेश में जनता की जान की कोई कीमत ही नहीं है?
4: ना कुछ देखेंगे ना कुछ सुनेंगे, क्योंकि जिंदगी लेना और देना तो ऊपर वालों के हाथों में है। ऐसे में जिम्मेदारों की जवाबदेही का कोई सवाल नहीं उठता। हादसे में मौत हुई तो साहब ने मौके का मुआयना कर लिया, जांच के आदेश दे दिए गए, मुआवजे का ऐलान कर दिया, संवेदना जताते हुए दो शब्द भी कह दिए। अब मृतकों की जान लौटाई तो जा नहीं सकती, तो इससे ज्यादा उनके परिजनों को क्या चाहिए? सरकार तो अपनी जिम्मेदारी पूरी तत्परता से निभा रही, फिर हादसा होगा, फिर यही सरकारी रस्म अदा कर दी जाएगी। मतलब ना तो सिस्टम बदलेगा, ना जिम्मेदार अपनी सोच बदलेंगे। यही होता आया है, यही होता रहेगा, क्योंकि योगी सरकार के उत्तम प्रदेश में जनता की जिंदगी सरकारी सिस्टम के आगे सस्ती है। इतनी सस्ती कि अब पूरे सिस्टम से लोगों का भरोसा उठ चुका है। अतीत में हुए हादसों से लेकर लखनऊ अग्निकांड तक जिम्मेदारों के रवैये से पीड़ित इतना टूट चुके हैं कि ना उम्मीदी के अंधेरे में इंसाफ के उजाले की उम्मीद अब बेमानी है।
5: और ये ट्राई फिर हो जाएगी 4 दिन के बाद। वो अधिकारी वो कैसे नहीं, कैसे नक्शा पास कर दिए, कैसे क्या कर दिए, हाँ। अब उसमें होता है कि अभी सब पनिश किए जाएंगे, सब कुछ किया जाएगा। अब उसके बाद
6: आपका कहना है कि 4 दिन में सब भूल जाएंगे?
5: 7-10 दिन के बाद सब भूल जाते हैं।
7: SIT बनाए चाहे कुछ भी बनाए, लेकिन मेरे देवर को तो वापस नहीं दे सकते ना। कितनों के घर उजड़ गए, कितने देवर, कितने भाई बहन, किसके किसके बच्चे होंगे सर, वो बेचारे नहीं रहे अब इस दुनिया में, क्या करेंगे? उनके माँ किसी का वो एक सहारा, किसी के इकलौते बच्चे होंगे।
4: मुख्यमंत्री की तरफ से दोषियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई का ऐलान भी पीड़ितों के दिलों में सोते हुए सिस्टम के जागने का भरोसा नहीं जगा सकता।
8: इस पूरे मामले की तह में हम जाकर के दोषियों को सजा भी दे सकें और उन पीड़ित परिवारों के प्रति अपनी संवेदना भी व्यक्त कर सकें।
9: जांच कुछ नहीं होगी, सिर्फ कागजी कार्रवाई होगी और कुछ नहीं होगा वहाँ पे। ना आज तक हुआ ना आगे ऐसा होगा,
10: ऐसा चलता रहेगा। मेरे को कोई उम्मीद नहीं है, चाहे जो गवर्नमेंट आ जाए, लोग ही ऐसे हैं, पैसे दे के सब पास हो जाता है, अब वो ऐसे होता रहेगा, तो इसमें मुझे उम्मीद नहीं है।
11: हादसा हो जाने के बाद किसी कोई बात करे, क्या वापस कर सकता है? वो वापस तो नहीं कर सकता, केवल समस्या को समाधान करने के लिए, सुलझाने के लिए केवल आश्वासन देंगे। फिर
4: पहले की तरह लखनऊ अग्निकांड के बाद पीछे है परिजनों की पीड़ा, रोते बिलखते लोग, जांच और मुआवजे की खाना पूर्ति, लेकिन पीड़ितों के आंसुओं का हिसाब न कभी मिला, न मिलने की उम्मीद और न कोई दे पाया है। सोचिए, रिहायशी इलाके में नियमों को ताक पर रखकर खड़ी की गई ये कमर्शियल बिल्डिंग न सिर्फ अवैध थी बल्कि सुरक्षा के लिहाज से एक डेथ ट्रैप बन चुकी थी, लेकिन न देखने वाला कोई, न सुनने वाला कोई। आम जनता हादसे का शिकार बनती है तो बनती रहे। लखनऊ में हुए अग्निकांड में 15 जिंदगियां मौत के गाल में सवार हैं। अगर जिम्मेदारों ने आंखों पर रिश्वत की पट्टी नहीं बांधी होती तो ये बच जाते। यही है आम जनता की सुरक्षा की गारंटी, मतलब सिस्टम के भरोसे नहीं बल्कि भगवान के भरोसे जियो। जबकि माननीय और साहब तो पूरे ठसक के साथ सुरक्षा के वीवीआईपी प्रोटोकॉल में चलते हैं। मजाल है कि बिना इजाजत परिंदा भी पर मार दे, क्योंकि माननीय और सरकारी लाट साहबों की जिंदगी का मोल है और आम जनता की जिंदगी का कोई नहीं।
7: अभी अपने को कुछ होता तो प्रशासन तुरंत दौड़ जाएगा। ये वीआईपी यहाँ पर जब मंत्री निकलते हैं तो तुरंत रास्ता बंद कर दिया जाता है। आम आदमी खड़ा रहता है, बच्चे धूप में स्कूल चलाते भी लगते, तब गवर्नमेंट को तरस नहीं आता जनता पे।
4: अगर आम जनता की जिंदगी की परवाह होती तो लखनऊ के अलीगंज में सरकारी तंत्र की नाक के नीचे मौत की इमारत कभी खड़ी नहीं होती। इमारत की नींव से लेकर छत पर लगी आखिरी ईंट तक में सरकारी भ्रष्टाचार का सीमेंट भरा पड़ा है। इतना मजबूत सीमेंट कि कोई हिसाब नहीं। ये सब कैसे हुआ ये भी समझिए। सरकार की हर साख पर 15 बेगुनाहों के खून के छींटे, एक नहीं बल्कि चार चार विभागों की अंधेर गर्दी आम जनता की जिंदगी पर भारी पड़ी। मौत की बिल्डिंग अवैध थी लेकिन सिस्टम की आंखें बंद थी। आज कटघरे में खड़ा है लखनऊ विकास प्राधिकरण, लखनऊ नगर निगम और उसके कर्ता धर्ता। सवाल यही कि दोनों विभागों ने अपनी जिम्मेदारी क्यों नहीं निभाई, भ्रष्टाचार की इमारत क्यों खड़ी थी। ये तब है जब लखनऊ विकास प्राधिकरण जिस विभाग को रिपोर्ट करता है उसके मुखिया सीधे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ है। मुख्यमंत्री की नाक के नीचे काम करने वाले हाउसिंग एंड अर्बन प्लानिंग विभाग की अंधेर गर्दी ने जिंदगी के 15 चिराग बुझा दिए, जिसके लिए सीधे जिम्मेदार हाउसिंग एंड अर्बन प्लानिंग विभाग के मुख्य सचिव पी गुरुप्रसाद, एलडीए के चेयरमैन रोशन जैकब, एलडीए के वीसी प्रथमेश कुमार, लखनऊ नगर निगम के नगर आयुक्त गौरव कुमार, जो नगर विकास मंत्री अरविंद कुमार शर्मा को रिपोर्ट करते हैं। इनका जिम्मा अवैध निर्माण को रोकना और अवैध निर्माण को ढहाना। आंखें बंद थी तो कोई वक्त रहते एक्शन कभी नहीं लिया गया। सरकारी व्यवस्था में अव्यवस्था का दीमा सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं था। सरकारी मुलाजिमों को पता था अलीगंज में खड़ी मौत की इमारत कभी भी आम जनता का जीवन छीन सकती है, लेकिन सब कुछ जानते हुए भी बिजली विभाग ने आंखें मूंदे रखी। अवैध बिल्डिंग मांग से ज्यादा बिजली खपत के बावजूद बिजली विभाग के कान जूं कभी नहीं रेंगी। सब कुछ चलता है, चलता रहेगा के हिसाब से चलता रहा। बिजली विभाग ने अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाई, जिसके मंत्री हैं अरविंद कुमार शर्मा और जिम्मेदार हैं यूपीपीसीएल के चेयरमैन और लखनऊ की बिजली आपूर्ति का जिम्मा संभाल रहे अफसर आशीष कुमार गोयल। वक्त रहते बिजली विभाग ने कार्रवाई की होती 15 जिंदगी बच जाती।
12: ऐसी घटनाएं न हो इसके लिए पूरी तरह सजगता के साथ हम और पूरी सरकार प्रयास करेंगे और ये देखेंगे कि ऐसी घटनाओं का जो भी कारण है वो भविष्य में ऐसी घटनाओं के कारण न बने।
4: ऐसा पहली बार नहीं हुआ कि योगी के राज में सरकारी सिस्टम की लापरवाही जानलेवा साबित हुई। इससे पहले भी सिस्टम की लापरवाही के चलते कई बार लोग बेमौत मारे गए, लेकिन जिम्मेदारों पर कार्रवाई आज तक नहीं हुई। यही है योगी सरकार का ट्रैक रिकॉर्ड और रिपोर्ट कार्ड। महाकुंभ भगदड़, 37 श्रद्धालुओं की मौत, कोई बड़ा अफसर नहीं नपा। हाथरस सत्संग भगदड़, 121 लोगों की मौत, कोई बड़ा अफसर नहीं नपा। झांसी मेडिकल कॉलेज आग, 18 नवजात बच्चों की मौत, किसी बड़े अफसर पर गाज नहीं गिरी। आगरा नोएडा एक्सप्रेसवे हादसा, 19 यात्रियों की मौत, कोई अफसर नहीं नपा। जब सिस्टम की सोच पर सिर्फ आश्वासन का पर्दा पड़ा हो तो जिम्मेदार हर बार अपनी जवाबदेही से बच जाते हैं और आम जनता की जान चली जाती है।
3: लखनऊ अग्निकांड ने 15 नौजवानों की जिंदगी के दियों को बुझा दिया। मरने वालों में ज्यादातर ट्रेनी या स्टूडेंट्स थे जो कामयाबी के पंख लगाकर अपने सपनों को हकीकत में बदलना चाहते थे, लेकिन उनकी मेहनत और मंजिल के बीच सरकारी व्यवस्था मौत बनकर खड़ी हो गई। मंजिल से पहले ही अंधेरगर्दी की आग में 15 परिवारों की खुशियों को ग्रहण लग गया है।

0: 24 साल के आदित्य श्रीवास्तव अब इस दुनिया में नहीं हैं। एक माँ ने अपनी आंखों के सामने जिगर के टुकड़े को हमेशा के लिए खो दिया। दिल में कसक यही है कि सरकारी सिस्टम की नींद वक्त रहते टूटी होती तो शायद बेटा आज जिंदा होता।
1: देखा है मैंने, सब देखा। मैं बराबर यही कह रही थी कि एकदम से देखा था मैंने सब, जिस तरह से इस समय भी मैंने देखा कि सीएम साहब आने वाले थे, किया जा रहा था, उस टाइम उस तरह से ये भी ध्यान दिया जाता तो हो सकता है बच्चे बच जाते,
2: मेहनत कर लिया थी।
1: हाँ, बच्चे बचाए जा सकते थे। जॉब करता था, एनिमेशन कोर्स का ये स्टूडियो है, वहीं पे जॉब करता था।
0: पहले सरकारी अनदेखी ने आदित्य को मौत के मुंह में पहुंचाया और फिर सरकारी लापरवाही जिंदगी पर भारी पड़ गई। आदित्य सीतापुर से लखनऊ आया था, सोचा था एनिमेशन एंड गेमिंग ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में मिली नौकरी के बाद अपने पैरों पर खड़ा हो जाएगा, लेकिन किसे पता था कि सरकारी सिस्टम आदित्य की जिंदगी के पैर ही उखाड़ देगा।
3: ये सबसे बड़ी दर्दनाक घटना हुई कि माँ के सामने बेटा अंदर।
4: तो माँ आदित्य की उस वक्त जहाँ पर वो पूरा संस्थान बना है वहाँ, मतलब बाहर मौजूद हैं, और सामने उनका जहाँ पर वो ऑफिस बना है वो धड़क रहा है।
3: तो वो आग लग चुकी थी जब पहुंची, आग लग चुकी थी, फिर उसके बाद जो है बुझाने का और निकलने का काम हो रहा था, जो कुछ हो रहा था। जो है कि बनने बड़ा हुनरमंद, बड़ा मतलब एक चीज है, बड़ा हौसले वाला। कभी ये वो उसके दिमाग था ही नहीं कि चार आदमी है तो हम निपट नहीं लेंगे, हिम्मत ही बहुत था।
0: घर वालों के मुताबिक आदित्य बचपन से पढ़ने में होशियार था, हमेशा फर्स्ट डिवीजन में पास हुआ था। आदित्य की हसरत मेहनत के दम पर इतना ऊंचा मुकाम हासिल करने की थी जिससे पूरे घर को नाज हो, लेकिन किसे पता था कि आदित्य की मौत के साथ एक सपना भी हमेशा के लिए टूट जाएगा। आज आदित्य की मौत पर घर वालों के आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे और जुबान पर सरकारी व्यवस्था के खिलाफ जबरदस्त आक्रोश है।
3: जैसे ये तो हम जरूर कहना चाहेंगे कि इस तरीके से भी दिल्ली में कांड हुआ और ये टाई टाई फीस हो जाएगी चार दिन के बाद। वो अधिकारी वो कैसे नहीं, कैसे नक्शा पास कर दिए, कैसे क्या कर दिए, हाँ। अब उसमें होता है कि अभी सब पनिश किए जाएंगे, सब कुछ किया जाएगा। अब उसके बाद
4: आपका कहना है कि चार दिन में सब भूल जाएंगे?
3: सात दस दिन के बाद सब भूल जाते हैं। हम तो आज जो है कि 65 साल का मैं हूँ, तो 65 साल से जो है कि सब देखते तो चले आ रहे हैं। आप
0: आदित्य उस दुनिया में चला गया जहां से कोई लौट कर नहीं आता, लेकिन परिवार यही चाहता है कि दोषियों का हिसाब होना चाहिए ताकि भविष्य में किसी और परिवार पर दुखों का ऐसा पहाड़ ना टूटे। जिस घर में बेटे की जल्द बारात निकलनी थी, आज उसी घर में बेटे की अर्थी उठाने की तैयारी चल रही है। 27 साल के नीलेश कुमार उन बदनसीबों में एक हैं जिनकी दर्दनाक अग्निकांड में मौत हो गई। आज एक तरफ मातम है तो दूसरी तरफ सरकार के खिलाफ गुस्सा।
4: अपने माता पिता का इन्होंने पेंटिंग किया
5: जी, बहुत अच्छी स्केचिंग पेंटिंग करते थे, बहुत अच्छी फाइलें बनाते थे, इतने अच्छे अच्छे सिस्टम पे, बहुत बढ़िया।
4: जिम्मेदारी तय होनी चाहिए जो घटना हुई है उसकी।
5: उसकी जिम्मेदारी गवर्नमेंट है, ये शासन प्रशासन है जो हमारे नीलेश को क्या, उसमें जितने बेचारे बच्चे थे उनको सुख सुविधा देते तो आज फायर ब्रिगेड टाइम से पहुंच जाते। तो आज मेरा देवर मेरा
4: 25 मिनट देर पहुंची है जो लोगों ने बताया,
5: 45 मिनट 25 मिनट जो भी पहुंची है। अगर आज वहीं पर पास में ही है, ज्यादा दूर नहीं था, अलीगंज थाना कितनी दूर है वहां से, पुरनिया कितनी दूर है, आ सकती थी गवर्नमेंट बचाने, लेकिन नहीं, शासन प्रशासन की गलती है, योगी दोषी है, मोदी दोषी है इसके।
4: कह रहे हैं SIT बना ली है हमने,
5: SIT बनाए चाहे कुछ भी बनाए, लेकिन मेरे देवर को तो वापस नहीं दे सकते।
0: बीते दिन जब नीलेश ऑफिस के लिए घर से निकले थे तो पिता को यही कहा था कि शाम को मुलाकात होगी और पिता ने कहा था बेटा संभल कर जाना, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था।
6: मैं कहता हूँ बच्चा बेटा ठीक से जाना, आराम से जाना, भले दो चार मिनट लेट पहुँचो लेकिन सुरक्षित जाना, ढंग से जाना, बस यही बात होते हैं। जाओ बेटा बाय करके चला जाता है, हेलो करके।
7: लगता था कि ये उसकी जिंदगी का आपके लिए एक आखिरी बाय होगा?
6: नहीं, ये कभी महसूस ही नहीं किया हमने, ये हमको महसूस नहीं हो रहा था उस समय, कोई ऐसी दिक्कत ही नहीं थी उस तरीके की। खुशी से गया, खुशी से आता था, ऑफिस से निकलने के बाद जिम जाता था, जिम से फिर घर वापस आता था, बराबर बात हुआ करती थी।
0: हादसे से चंद घंटे पहले पिता शत्रुघ्न लाल से नीलेश की बात हुई थी और फिर दोपहर को आई सीना चीर देने वाली खबर। हादसे ने परिवार को ऐसे जख्म दिए हैं जिसे वक्त का मरहम भी कभी नहीं भर पाएगा।
8: पेंटिंग्स के शौकीन 27 वर्षीय नीलेश को शायद ही मालूम था कि महज दो दिन पहले लगाई गई ये नई नवेली पेंटिंग देखने के लिए अपने ही कमरे में, जहां वो सोता उठता बैठता काम करता, वही मौजूद नहीं रहेगा।
0: 24 साल का अब्दुल रहमान घर का इकलौता सहारा था। चंद महीने पहले नौकरी मिली थी, सोचा था घर वालों की तंगहाली को खुशहाली में बदल देगा, लेकिन एक झटके में परिवार की सारी खुशियां ताश के पत्तों की तरह बिखर गईं।
9: ये 3 बजे जब आग लगी है तब तो हमने खुद ही सोशल साइट पे डाला था, तब तक हमें नहीं पता था। अभी 8 बजे पता चला कि हमारा भतीजा रहमान भी इस आग का शिकार हो गया।
0: अब्दुल के कंधों पर पूरे परिवार की जिम्मेदारी थी, दिव्यांग पिता और बहन का सहारा था। एनिमेशन का कोर्स करने के बाद अब्दुल को नौकरी मिली, लेकिन वही दफ्तर अब्दुल की मौत की वजह बन गया।
9: घर में पिताजी विकलांग हैं, माँ टीचरिंग करती थी, बच्चा अभी दो ही तीन महीने हुए जॉब पे था, काम भी करता था, वहीं पढ़ाई भी करता था।
10: अब परिवार की कैसे जिम्मेदारी और क्या चाहते हैं आप लोग इस पूरी घटना पर?
9: हम लोग चाहते हैं इस पर जांच हो और ज्यादा से ज्यादा परिवार को मुआवजा दिया जाए, ताकि उसकी मां की भी कोई ऐसी स्थिति नहीं हो। परिवार में कोई दूसरा कमाने वाला नहीं था, इकलौता बच्चा था, यही पालन पोषण करता था, घर की देखभाल करता था।
11: कांग्रेस ने मध्य प्रदेश की मोहन यादव सरकार पर बड़ा हमला बोला है। मध्य प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष जीतू पटवारी ने आरोप लगाया है कि मोहन यादव और उनके परिवार ने उज्जैन में जहां जमीनें खरीदी वहीं से परियोजनाएं निकाली गई हैं।
0: मध्य प्रदेश कांग्रेस ने बाकायदा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सीएम मोहन यादव पर उज्जैन में जमीन खरीदी को लेकर सनसनीखेज आरोप लगाए। कांग्रेस का आरोप है कि मुख्यमंत्री बनने के बाद मोहन यादव और उनके परिवार की ओर से जमीन खरीद में तेजी आई। पटवारी ने कहा कि उज्जैन में जमीन खरीद का मामला भी गंभीर सवाल खड़े कर रहा है।
12: मुख्यमंत्री परिवार की सभी कंपनियों के हिस्सेदार फॉरेंसिक ऑडिट कराने के लिए तैयार है। मीडिया रिपोर्ट्स ने दावा किया कि भूमि खरीदी के कुछ समय बाद ही हाउसिंग प्रोजेक्ट बिल्डर एग्रीमेंट शुरू हो गए उन जमीनों पर। क्या पहले नियोजित व्यवसाय की रणनीति का हिस्सा था कि जमीन खरीदेंगे, मास्टर प्लान में चेंज आएंगे, परियोजना लाएंगे, उस बीच में रियल एस्टेट कंपनी से हम अपना एग्रीमेंट करेंगे और जो 10 रुपए की जमीन है वो 1000 रुपए की करेंगे, ये पहले से प्लान आउट था क्या? क्या ये सही है कि कुछ परियोजनाओं में भूमि मालिकों के विकसित संपत्ति 60% से 70% का हिस्सा है जिनकी भूमि है मुख्यमंत्री की हो उसके परिवार की?
0: जीतू पटवारी के मुताबिक मोहन यादव 2021 में मंत्री बने थे, 13 दिसंबर 2023 में वो मुख्यमंत्री बने। 21 से 23 के बीच में उनके परिवार के निकट सदस्यों के पास लगभग 194 प्लॉट बने। उनके परिवार के पास अलग अलग जगहों पर 253 एकड़ जमीनें हैं। उन्होंने आरोप लगाया है कि 21 से 25 के बीच में 253 एकड़ जमीनें खरीदी गई हैं। सूत्रों के मुताबिक सीएम दफ्तर ने इस पर सफाई दी है, जिसमें लिखा है कि मुख्यमंत्री मोहन यादव ने दिसंबर 2023 में मुख्यमंत्री बनने के बाद कोई जमीन नहीं खरीदी है। मुख्यमंत्री मोहन यादव की पत्नी सीमा यादव ने भी उनके मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री बनने के बाद कोई जमीन नहीं खरीदी है। मोहन यादव का दफ्तर इस पर बाद में एक विस्तृत रिपोर्ट भी जारी करेगा। आज तक ब्यूरो।
11: इसी के साथ हम यहाँ रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए, आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आज तक।

0: लखनऊ अग्निकांड पर सीएम योगी की समीक्षा बैठक का फायर सेफ्टी मानकों से समझौता नहीं। अखिलेश बोले बीजेपी राज में पास नक्शों का हो हिसाब। ब्रिजेश पाठक ने मौत पर राजनीति न करने की नसीहत दी। चार आरोपियों को न्यायिक हिरासत। राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में एसआईटी ने यूपी सरकार को सौंपी प्रारंभिक रिपोर्ट। फिलहाल किसी को क्लीन चिट नहीं। कुछ कर्मचारियों पर केस की सिफारिश। एसपी सांसद अवधेश प्रसाद ने सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के तहत जांच की मांग की। भोजपुर के भरत तिवारी एनकाउंटर पर एक्शन। जगदीशपुर के एसडीपीओ शाहपुर थानाध्यक्ष समेत कई पुलिसकर्मियों पर एफआईआर। बवाल के बाद बैकफुट पर बिहार पुलिस। नीट पर आज तक से बोले धर्मेंद्र प्रधान, लीग के मुजरिमों को छोड़ेंगे नहीं। दोबारा गड़बड़ी रोकने की पूरी कोशिश। राहुल गांधी पर लगाया छात्रों को भड़काने का आरोप। पद्म पुरस्कारों से 65 हस्तियां सम्मानित। शिबू सोरेन को मिला मरणोपरांत पद्म भूषण। रोहित शर्मा, अलका याग्निक, ममूटी को राष्ट्रपति ने दिया सम्मान। लखनऊ अग्निकांड ने सिर्फ एक शहर को नहीं बल्कि पूरे देश को हिलाकर रख दिया है। 15 लोग जलकर मर गए, वो भी उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में, जहां से सरकार चलती है, जहां बुलडोजर से लेकर एनकाउंटर तक के ऑर्डर निकाले जाते हैं। लेकिन एक बिल्डिंग जो रिहायशी इमारत के तौर पर बनाई जाती है और उसे कमर्शियल में तब्दील कर दिया जाता है, और राजधानी में बैठे सत्ताधीश बड़े बड़े ऑफिसर उससे आंखें मूंद लेते हैं, और वही बिल्डिंग 15 मौतों का मरघट बनकर स्याह खड़ी रहती है। वही जिम्मेदार है, वही सत्ताधीश इमारत का मुआयना करने पहुंचते हैं। सवाल सिर्फ यही इन्हीं ऑफिसर से, इन्हीं सत्ताधीशों से, कि क्या वो 15 मौतों की जिम्मेदारी लेकर खुद को आईना दिखा पाएंगे।
1: मेरा बेटा भी जिंदा होता, मेरा बेटा भी होता दुनिया में।
2: 15 लोग जिंदा जल गए, क्या जिंदगी इतनी सस्ती है।
3: ये पापा बचाओ कैसे भी करके, आग लग गए।
2: पहले ऐसा मुआयना होता तो अग्निकांड क्यों होता। पंद्रह मौतों का सवाल है, जिम्मेदारों को जवाब तो देना पड़ेगा। कैसे एक रिहायशी बिल्डिंग कमर्शियल में बदल गई। किस किस का भ्रष्टाचार 15 बेगुनाहों की मौत का कारण बना।
4: माँ के सामने बेटा अंदर,
5: मौके कोई था ही नहीं, बंद था सब। इसके लिए सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए।
6: परिवार पे जो भी इतनी बढ़िया परिवार समझ सकता है।
2: अब लखनऊ का पूरा प्रशासनिक अमला, सारे दिग्गज अधिकारी इस जलकर खाक हो चुकी इमारत के चप्पे चप्पे को नाप रहे हैं। आग कैसे लगी, कहां से लगी, कैसे फैली, और कैसे 15 लोग इस अग्निकांड में जिंदा जल गए। जांच के लिए लखनऊ के अलीगंज की इस 3 मंजिला इमारत में लगी भीषण आग की वजह जानने के लिए और जांच करने के लिए एसआईटी का गठन किया गया है। इसमें अपर मुख्य सचिव पर्यटन अमृत अभिजात और एडीजी लखनऊ जोन प्रवीण कुमार को शामिल किया गया है। लखनऊ के ये दिग्गज अफसर 7 दिन के भीतर अपनी रिपोर्ट तैयार करके सीएम योगी को भेजेंगे। लेकिन जिस तरह से इस खाक हुई बिल्डिंग में अधिकारी अब खाक छान रहे हैं, अगर आग लगने से पहले इस कॉम्प्लेक्स की पड़ताल की गई होती और सिस्टम भ्रष्टाचार की भेंट ना चढ़ा होता तो 15 बेगुनाह लोग इस अग्निकुंड में ना समाये होते। इस तरह से पीड़ित परिवारों के आंसू ना बह रहे होते।
7: एसआईटी की टीम में प्रवीण कुमार जो एडीजी है जोन वो, और साथ साथ अमृत अभिजात मौजूद है जिन्होंने इंस्पेक्शन किया है, जांच की है इस पूरे मामले की कि आखिर किस तरीके से यहां पर ये घटना घटी है। इस एसआईटी रिपोर्ट बनाकर चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ को दी जाएगी और अब यहाँ पर माइक्रो लेवल पर हर उस चीज की जांच की जा रही है और परखा जा रहा है कि आखिर इस पूरे मामले पर क्या है। सर, क्या क्या आपने जांच किया है अंदर, किस तरीके से?
8: देखिए, सब सारे फ्लोर्स पे गए हैं और जो घटना स्थल है वो भी देखा है। देखो, तो अभी कुछ निर्णायक बताने की स्थिति में नहीं, क्योंकि अभी सर जांचें हो रही हैं एफएसएल वगैरह का।
2: लखनऊ अग्निकांड की परतें जब एक एक करके खुल रही हैं, तो साफ साफ नजर आ रहा है कि ये कोई हादसा नहीं बल्कि सामूहिक हत्याकांड है, जिसको उन भ्रष्ट अधिकारियों, अफसरों, जिम्मेदारों ने खुलेआम दिन दहाड़े बेखौफ होकर अंजाम दिया है।
9: एक बॉक्स नुमा ये बिल्डिंग है, इस बॉक्स नुमा बिल्डिंग के अंदर ही लोग सिर्फ इसी से, जो बच्चे थे, जो लोग थे, वो इसी छोटे से रास्ते से, और कोई रास्ता था ही नहीं, ये इस रास्ते से अंदर जाना, बाहर जाना। और जब आग लग गई तो उसकी वजह से धुएं ने और आग ने अफरा तफरी मच गई और लोग फंस गए। मतलब तीन फ्लोर की ये बिल्डिंग, उसके बाद ये बेसमेंट, टोटली अगर कहा जाए तो सिर्फ और सिर्फ सुरक्षा मानकों को दरकिनार करके ये बनाया गया।
2: लखनऊ के उस अलीगंज में ये कॉम्प्लेक्स है जहां से हर छोटे बड़े अफसर से लेकर नेताओं की गाड़ियां गुजरती होंगी। इस तीन मंजिला कॉम्प्लेक्स को रिहायशी इमारत से कब कमर्शियल में तब्दील कर दिया गया और कब इसमें एनिमेशन सेंटर चलना शुरू हो गया, इसकी न कभी जांच की गई, न कभी पड़ताल, लेकिन भ्रष्टाचारियों की मुट्ठियां गर्म करके इसे मौत का कॉम्प्लेक्स बना दिया गया। सवाल इस अग्निकांड या कहें हत्याकांड के जिम्मेदारों से है, फायर डिपार्टमेंट ने कैसे अनदेखी की, कैसे लखनऊ डेवलपमेंट अथॉरिटी यानी LDA ने इसमें घोर लापरवाही बरती। 2016 में बनाए गए NBC यानी नेशनल बिल्डिंग कोड 2016 के नियमों की अनदेखी की गई।
10: जो मकान मालिक हैं, क्योंकि बिल्डिंग आवासीय में पहले पास थी, बाद में उन्होंने कमर्शियल रूप में उसका इस्तेमाल करना जब शुरू कर दिया है, तो उनको फायर नाम से पूरा करना चाहिए था, आग बुझाने की पूरी व्यवस्था करनी चाहिए थी, लेकिन आग बुझाने की पूरी व्यवस्था में समुचित ढंग से किया नहीं था, इसलिए मकान मालिक की जिम्मेदारी ज्यादा बनती है वहां पर। दूसरी बात है कि जो अगर वो कमर्शियल रूप में इस्तेमाल कर ही रहे हैं, तो वहां पर जो बिजली विभाग था, उन्होंने उनका लोड सैंक्शन किया होगा कि कितनी AC चल रही है, कितना बिजली का खर्चा इनका आ रहा है, उस हिसाब से उनको वहां पर देखना चाहिए था, लेकिन उन्होंने मुझे लगता है देखा नहीं ध्यान से। और जो LDA की एरिया में आता है, तो LDA ने क्या चीज देखा, ये उनकी जिम्मेदारी बनती है।
2: जब ये बिल्डिंग रिहायशी से कमर्शियल कॉम्प्लेक्स में तब्दील हुई, तो फायर ऑडिट क्यों नहीं किया गया? क्यों रिहायशी बिल्डिंग के कमर्शियल में बदलने पर LDA के अफसरों ने सर्वे नहीं किया, या फिर इन अफसरों के पहुंचने से पहले ही उनकी जेब उनकी कुर्सी पर ही गर्म कर दी गई? बड़ी बात यह भी है कि जिस इमारत में हादसा हुआ वहां 20 किलोवाट का कमर्शियल बिजली कनेक्शन स्वीकृत था। जांच में सामने आया है कि वास्तविक बिजली लोड बढ़कर 34 KVA से ज्यादा हो गया था। अप्रैल महीने में इमारत का लोड 24.30 KVA दर्ज किया गया था, जो जून में और बढ़ गया। जानकारों के मुताबिक स्वीकृत क्षमता से कहीं अधिक लोड होने से तारों और ट्रांसफार्मर पर भारी दबाव था। भीषण गर्मी और ओवरलोडिंग के कारण शॉर्ट सर्किट की आशंका कई गुना बढ़ गई। बिजली विभाग ने मौके पर जाकर लोड चेक क्यों नहीं किया? कितना लोड कागजों में है और कितना बिजली का लोड खपत में आ रहा है? अगर इसकी चेकिंग की गई होती तो इतना बड़ा अग्निकांड नहीं हुआ होता।
11: जो कार्रवाई है उसकी बात कर लेते हैं, तो सरकार सबसे पहले तो पुरनिया के जो थाना प्रभारी हैं, उन्होंने FIR की, 6 लोगों पर मुकदमा तहरीर दी गई है, मुकदमा दर्ज हुआ, 4 गिरफ्तार कर लिए गए हैं, जिसमें इस मकान के ओनर, इस मकान के दो जो ओनर हैं जिन्होंने कमर्शियल कॉम्प्लेक्स बनाया है और जिनकी कंपनियां यहां कार्यरत थी।
2: 3 मंजिला इस कॉम्प्लेक्स में बेसमेंट भी बनाया गया था, एंट्री एग्जिट के लिए सिर्फ एक छोटा सा रास्ता था और इस रास्ते के ऊपर 7 पैनल, 2 एग्जॉस्ट फैन, इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल पैनल लगाकर रास्ते को और छोटा कर दिया गया था। इमारत के मालिकों और सेंटर संचालकों ने इसे अनदेखा किया।
11: 2 बातें बहुत अहम हैं। एक तरफ जो तमाम जो जांचें चल रही हैं वो अपनी जगह है, लेकिन शायद 2 बातें अगर इसमें हो गई होती तो इतने बच्चों की जान नहीं जाती। 1, जो बायोमेट्रिक जिसके जरिए एक्सेस था उस एनिमेशन का, जो इंस्टीट्यूट है उसके भीतर जाने और आने का, अगर वो बायोमेट्रिक लॉक नहीं हुआ होता, यानी कि, तो शायद बच्चे निकल सकते थे। दूसरी बात, ऊपर अगर आपको दिखाएं तो आप देखिए ऊपर में एक पेंट हाउस जैसा है, यानी कि वो मकान मालिक जो है उसका अपना घर है, और कहा यह जा रहा है कि अगर ऊपर का घर का अगर सीढ़ी का रास्ता खुला होता तो भी ऊपर बच्चे भाग कर जान बचा सकते थे।
2: अब सवाल यही है कि जिस लखनऊ से बुलडोजर और एनकाउंटर के सीधे ऑर्डर निकलते हैं, वहाँ से भ्रष्टाचार के खिलाफ ऑर्डर क्यों नहीं निकलते? आखिर भ्रष्टाचार की आग कैसे बुझेगी? आज तक ब्यूरो।
0: लखनऊ अग्निकांड सरकारी महकमों की अंधेरगर्दी का साक्षात प्रमाण है, क्योंकि हादसे ने सरकारी दावों और जमीनी हकीकत के बीच की खाई को उजागर करके रख दिया है। सवाल जवाबदेही का है, पीड़ितों के परिजनों के इंसाफ का है। सवाल यह भी है कि जिस महकमे की कमान सीधे मुख्यमंत्री के हाथों में है, आखिर उस विभाग ने आम जनता को भगवान के भरोसे कैसे छोड़ दिया? क्या सीएम को ऑफिसर्स ने अंधेरे में रखा था, या फिर उत्तर प्रदेश में जनता की जान की कोई कीमत ही नहीं है?
12: ना कुछ देखेंगे ना कुछ सुनेंगे, क्योंकि जिंदगी लेना और देना तो ऊपर वालों के हाथों में है। ऐसे में जिम्मेदारों की जवाबदेही का कोई सवाल नहीं उठता। हादसे में मौत हुई तो साहब ने मौके का मुआयना कर लिया, जांच के आदेश दे दिए गए, मुआवजे का ऐलान कर दिया, संवेदना जताते हुए दो शब्द भी कह दिए। अब मृतकों की जान लौटाई तो जा नहीं सकती, तो इससे ज्यादा उनके परिजनों को क्या चाहिए? सरकार तो अपनी जिम्मेदारी पूरी तत्परता से निभा रही। फिर हादसा होगा, फिर यही सरकारी रस्म अदा कर दी जाएगी। मतलब ना तो सिस्टम बदलेगा, ना जिम्मेदार अपनी सोच बदलेंगे। यही होता आया है, यही होता रहेगा, क्योंकि योगी सरकार के उत्तम प्रदेश में जनता की जिंदगी सरकारी सिस्टम के आगे सस्ती है। इतनी सस्ती कि अब पूरे सिस्टम से लोगों का भरोसा उठ चुका है। अतीत में हुए हादसों से लेकर लखनऊ अग्निकांड तक जिम्मेदारों के रवैये से पीड़ित इतना टूट चुके हैं कि ना उम्मीदी के अंधेरे में इंसाफ के उजाले की उम्मीद अब बेमानी है।
13: और ये ट्राई ट्राई फीस हो जाएगी चार दिन के बाद। वो अधिकारी वो कैसे नहीं, कैसे नक्शा पास कर दिए, कैसे क्या कर दिए, हाँ। अब उसमें होता है कि अभी सब पनिश किए जाएंगे, सब कुछ किया जाएगा। अब उसके बाद
14: आपका कहना है कि चार दिन में सब भूल जाएंगे?
13: सात दस दिन के बाद सब भूल जाते हैं।
15: एसआईटी बनाए चाहे कुछ भी बनाए, लेकिन मेरे देवर को तो वापस नहीं दे सकते ना। कितनों के घर उजड़ गए, कितने देवर, कितने भाई बहन, किसके किसके बच्चे होंगे सर, वो बेचारे नहीं रहे अब इस दुनिया में, क्या करेंगे? उनके माँ किसी का वो एक सहारा, किसी के इकलौते बच्चे होंगे।
12: मुख्यमंत्री की तरफ से दोषियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई का ऐलान भी पीड़ितों के दिलों में सोते हुए सिस्टम के जागने का भरोसा नहीं जगा सकता।
16: इस पूरे मामले की तह में हम जाकर के दोषियों को सजा भी दे सकें और उन पीड़ित परिवारों के प्रति अपनी संवेदना भी व्यक्त कर सकें।
17: जांच कुछ नहीं होगी, सिर्फ कागजी कार्रवाई होगी और कुछ नहीं होगा वहाँ पे। ना आज तक हुआ ना आगे ऐसा होगा,
18: ऐसा चलता रहेगा। मेरे को कोई उम्मीद नहीं है, कच्चा जो गवर्नमेंट आ जाए। लोग ही ऐसे हैं, पैसे दे के सब पास हो जाता है, अब वो ऐसे होता रहेगा, तो इसमें मुझे उम्मीद नहीं है।
19: हादसा हो जाने के बाद किसी कोई बात करे, क्या वापस कर सकता है? वो वापस तो नहीं कर सकता, केवल समस्या को समाधान करने के लिए, सुलझाने के लिए केवल आश्वासन देंगे। फिर
12: पहले की तरह लखनऊ अग्निकांड के बाद पीछे है परिजनों की पीड़ा, रोते बिलखते लोग, जांच और मुआवजे की खाना पूर्ति। लेकिन पीड़ितों के आंसुओं का हिसाब न कभी मिला, न मिलने की उम्मीद और न कोई दे पाया है। सोचिए, रिहायशी इलाके में नियमों को ताक पर रखकर खड़ी की गई ये कमर्शियल बिल्डिंग न सिर्फ अवैध थी, बल्कि सुरक्षा के लिहाज से एक डेथ ट्रैप बन चुकी थी। लेकिन न देखने वाला कोई, न सुनने वाला कोई। आम जनता हादसे का शिकार बनती है तो बनती रहे। लखनऊ में हुए अग्निकांड में 15 जिंदगियां मौत के गाल में सवार। अगर जिम्मेदारों ने आंखों पर रिश्वत की पट्टी नहीं बांधी होती तो ये बच जाते। यही है आम जनता की सुरक्षा की गारंटी। मतलब सिस्टम के भरोसे नहीं, बल्कि भगवान के भरोसे जियो। जबकि माननीय और साहब तो पूरे ठसक के साथ सुरक्षा के वीवीआईपी प्रोटोकॉल में चलते। मजार है कि बिना इजाजत परिंदा भी पर मार दे, क्योंकि माननीय और सरकारी लाट साहबों की जिंदगी का मोल है और आम जनता की जिंदगी का कोई नहीं।
15: अभी अपने को कुछ होता है तो प्रशासन तुरंत दौड़ जाएगा। ये वीआईपी यहाँ पर जब मंत्री निकलते हैं तो तुरंत रास्ता बंद कर दिया जाता है। आम आदमी खड़ा रहता है, बच्चे धूप में स्कूल चलाते भी लगते, तब गवर्नमेंट को तरस नहीं आता जनता पे।
12: अगर आम जनता की जिंदगी की परवाह होती तो लखनऊ के अलीगंज में सरकारी तंत्र की नाक के नीचे मौत की इमारत कभी खड़ी नहीं होती। इमारत की नींव से लेकर छत पर लगी आखिरी ईंट तक में सरकारी भ्रष्टाचार का सीमेंट भरा पड़ा है। इतना मजबूत सीमेंट कि कोई हिसाब नहीं। ये सब कैसे हुआ ये भी समझिए। सरकार की हर साख पर 15 बेगुनाहों के खून के छींटे, एक नहीं बल्कि चार चार विभागों की अंधेर गर्दी आम जनता की जिंदगी पर भारी पड़ी। मौत की बिल्डिंग अवैध थी लेकिन सिस्टम की आंखें बंद थी। आज कटघरे में खड़ा है लखनऊ विकास प्राधिकरण, लखनऊ नगर निगम और उसके कर्ता धर्ता। सवाल यही कि दोनों विभागों ने अपनी जिम्मेदारी क्यों नहीं निभाई, भ्रष्टाचार की इमारत क्यों खड़ी। ये तब है जब लखनऊ विकास प्राधिकरण जिस विभाग को रिपोर्ट करता है उसके मुखिया सीधे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। मुख्यमंत्री की नाक के नीचे काम करने वाले हाउसिंग एंड अर्बन प्लानिंग विभाग की अंधेर गर्दी ने जिंदगी के 15 चिराग बुझा दिए, जिसके लिए सीधे जिम्मेदार हाउसिंग एंड अर्बन प्लानिंग विभाग के मुख्य सचिव पी गुरुप्रसाद, एलडीए के चेयरमैन रोशन जैकब, एलडीए के वीसी प्रथमेश कुमार, लखनऊ नगर निगम के नगर आयुक्त गौरव कुमार, जो नगर विकास मंत्री अरविंद कुमार शर्मा को रिपोर्ट करते हैं। इनका जिम्मा अवैध निर्माण को रोकना और अवैध निर्माण को ढहाना। आंखें बंद थी तो कोई वक्त रहते एक्शन कभी नहीं लिया गया। सरकारी व्यवस्था में अव्यवस्था का दीमा सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं था। सरकारी मुलाजिमों को पता था अलीगंज में खड़ी मौत की इमारत कभी भी आम जनता का जीवन छीन सकती है, लेकिन सब कुछ जानते हुए भी बिजली विभाग ने आंखें मूंदे रखी। अवैध बिल्डिंग मांग से ज्यादा बिजली खपत के बावजूद बिजली विभाग के कान जूं कभी नहीं रेंगी। सब कुछ चलता है, चलता रहेगा के हिसाब से चलता रहा। बिजली विभाग ने अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाई, जिसके मंत्री हैं अरविंद कुमार शर्मा और जिम्मेदार हैं यूपीपीसीएल के चेयरमैन और लखनऊ की बिजली आपूर्ति का जिम्मा संभाल रहे अफसर आशीष कुमार गोयल। वक्त रहते बिजली विभाग ने कार्रवाई की होती 15 जिंदगी बच जाती।
20: ऐसी घटनाएं न हो इसके लिए पूरी तरह सजगता के साथ हम और पूरी सरकार प्रयास करेंगे और ये देखेंगे कि ऐसी घटनाओं का जो भी कारण है वो भविष्य में ऐसी घटनाओं के कारण न बने।
12: ऐसा पहली बार नहीं हुआ कि योगी के राज में सरकारी सिस्टम की लापरवाही जानलेवा साबित हुई। इससे पहले भी सिस्टम की लापरवाही के चलते कई बार लोग बेमौत मारे गए, लेकिन जिम्मेदारों पर कार्रवाई आज तक नहीं हुई। यही है योगी सरकार का ट्रैक रिकॉर्ड और रिपोर्ट कार्ड। महाकुंभ भगदड़, 37 श्रद्धालुओं की मौत, कोई बड़ा अफसर नहीं नपा। हाथरस सत्संग भगदड़, 121 लोगों की मौत, कोई बड़ा अफसर नहीं नपा। झांसी मेडिकल कॉलेज आग, 18 नवजात बच्चों की मौत, किसी बड़े अफसर पर गाज नहीं गिरी। आगरा नोएडा एक्सप्रेसवे हादसा, 19 यात्रियों की मौत, कोई अफसर नहीं नपा। जब सिस्टम की सोच पर सिर्फ आश्वासन का पर्दा पड़ा हो तो जिम्मेदार हर बार अपनी जवाबदेही से बच जाते हैं और आम जनता की जान चली जाती है।
0: लखनऊ अग्निकांड ने 15 नौजवानों की जिंदगी के दियों को बुझा दिया। मरने वालों में ज्यादातर ट्रेनी या स्टूडेंट्स थे, जो कामयाबी के पंख लगाकर अपने सपनों को हकीकत में बदलना चाहते थे, लेकिन उनकी मेहनत और मंजिल के बीच सरकारी व्यवस्था मौत बनकर खड़ी हो गई। मंजिल से पहले ही अंधेरगर्दी की आग में 15 परिवारों की खुशियों को ग्रहण लग गया है।

0: 24 साल के आदित्य श्रीवास्तव अब इस दुनिया में नहीं हैं। एक माँ ने अपनी आंखों के सामने जिगर के टुकड़े को हमेशा के लिए खो दिया। दिल में कसक यही है कि सरकारी सिस्टम की नींद वक्त रहते टूटी होती तो शायद बेटा आज जिंदा होता।
1: देखा है मैंने, सब देखा। मैं बराबर यही कह रही थी कि एकदम से देखा था मैंने सब, जिस तरह से इस समय भी मैंने देखा कि सीएम साहब आने वाले थे, किया जा रहा था, उस टाइम उस तरह से ये भी ध्यान दिया जाता तो हो सकता है बच्चे बच जाते।
2: मेहनत कर लिया थी,
1: हाँ बच्चे बचाए जा सकते थे। जॉब करता था, एनिमेशन कोर्स का ये स्टूडियो है, वहीं पे जॉब करता था।
0: पहले सरकारी अनदेखी ने आदित्य को मौत के मुंह में पहुंचाया और फिर सरकारी लापरवाही जिंदगी पर भारी पड़ गई। आदित्य सीतापुर से लखनऊ आया था, सोचा था एनिमेशन एंड गेमिंग ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में मिली नौकरी के बाद अपने पैरों पर खड़ा हो जाएगा, लेकिन किसे पता था कि सरकारी सिस्टम आदित्य की जिंदगी के पैर ही उखाड़ देगा।
3: ये सबसे बड़ी दर्दनाक घटना हुई कि माँ के सामने बेटा अंदर।
4: तो माँ आदित्य की उस वक्त जहाँ पर वो पूरा संस्थान बना है वहाँ, मतलब बाहर मौजूद हैं, और सामने उनका जहाँ पर वो ऑफिस बना है वो धधक रहा है।
3: तो वो आग लग चुकी थी जब पहुंची, आग लग चुकी थी, फिर उसके बाद जो है बुझाने का और निकलने का काम हो रहा था, जो कुछ हो रहा था। जो है कि बनना बड़ा हुनरमंद, बड़ा मतलब एक चीज है, बड़ा हौसले वाला। कभी ये वो उसके दिमाग था ही नहीं कि चार आदमी है तो हम निपट नहीं लेंगे, हिम्मत ही बहुत था।
0: घर वालों के मुताबिक आदित्य बचपन से पढ़ने में होशियार था, हमेशा फर्स्ट डिवीजन में पास हुआ था। आदित्य की हसरत मेहनत के दम पर इतना ऊंचा मुकाम हासिल करने की थी जिससे पूरे घर को नाज हो, लेकिन किसे पता था कि आदित्य की मौत के साथ एक सपना भी हमेशा के लिए टूट जाएगा। आज आदित्य की मौत पर घर वालों के आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे और जुबान पर सरकारी व्यवस्था के खिलाफ जबरदस्त आक्रोश है।
3: जैसे ये तो हम जरूर कहना चाहेंगे कि इस तरीके से भी दिल्ली में कांड हुआ और ये टाई टाई फीस हो जाएगी चार दिन के बाद। वो अधिकारी वो कैसे नहीं, कैसे नक्शा पास कर दिए, कैसे क्या कर दिए, हाँ। अब उसमें होता है कि अभी सब पनिश किए जाएंगे, सब कुछ किया जाएगा। अब उसके बाद
4: आपका कहना है कि चार दिन में सब भूल जाएंगे?
3: सात दस दिन के बाद सब भूल जाते हैं। हम तो आज जो है कि 65 साल का मैं हूँ, तो 65 साल से जो है कि सब देखते तो चले आ रहे हैं। आप
0: आदित्य उस दुनिया में चला गया जहां से कोई लौट कर नहीं आता, लेकिन परिवार यही चाहता है कि दोषियों का हिसाब होना चाहिए ताकि भविष्य में किसी और परिवार पर दुखों का ऐसा पहाड़ ना टूटे। जिस घर में बेटे की जल्द बारात निकलनी थी आज उसी घर में बेटे की अर्थी उठाने की तैयारी चल रही है। 27 साल के नीलेश कुमार उन बदनसीबों में एक हैं जिनकी दर्दनाक अग्निकांड में मौत हो गई। आज एक तरफ मातम है तो दूसरी तरफ सरकार के खिलाफ गुस्सा।
4: अपने माता पिता का इन्होंने पेंटिंग किया
5: जी, बहुत अच्छी स्केचिंग पेंटिंग करते थे, बहुत अच्छी फाइलें बनाते थे, इतने अच्छे अच्छे सिस्टम पे, बहुत बढ़िया।
4: जिम्मेदारी तय होनी चाहिए जो घटना हुई है उसकी,
5: उसकी जिम्मेदारी गवर्नमेंट है, ये शासन प्रशासन है जो हमारे नीलेश को क्या, उसमें जितने बेचारे बच्चे थे उनको सुख सुविधा देते तो आज फायर ब्रिगेड टाइम से पहुंच जाते, तो आज मेरा देवर मेरा
4: 25 मिनट देर पहुंची है जो लोगों ने बताया,
5: 45 मिनट 25 मिनट जो भी पहुंची है। अगर आज वहीं पर पास में ही है, ज्यादा दूर नहीं था, अलीगंज थाना कितनी दूर है वहां से, पुरनिया कितनी दूर है, आ सकती थी गवर्नमेंट बचाने, लेकिन नहीं, शासन प्रशासन की गलती है, योगी दोषी है, मोदी दोषी है इसके।
4: कह रहे हैं SIT बना ली है हमने,
5: SIT बनाए चाहे कुछ भी बनाए, लेकिन मेरे देवर को तो वापस नहीं दे सकते।
0: बीते दिन जब नीलेश ऑफिस के लिए घर से निकले थे तो पिता को यही कहा था कि शाम को मुलाकात होगी और पिता ने कहा था बेटा संभल कर जाना, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था।
6: मैं कहता हूँ बच्चा बेटा ठीक से जाना, आराम से जाना, भले दो चार मिनट लेट पहुँचो लेकिन सुरक्षित जाना, ढंग से जाना, बस यही बात होते हैं। जाओ बेटा बाय करके चला जाता है, हेलो करके।
7: आपको लगता था कि ये उसकी जिंदगी का आपके लिए एक आखिरी बाय होगा?
6: नहीं, ये कभी महसूस ही नहीं किया हमने, ये हमको महसूस नहीं हो रहा था उस समय, कोई ऐसी दिक्कत ही नहीं थी उस तरीके की। खुशी से गया, खुशी से आता था, ऑफिस से निकलने के बाद जिम जाता था, जिम से फिर घर वापस आता था, बराबर बात हुआ करती थी।
0: हादसे से चंद घंटे पहले पिता शत्रुघ्न लाल से नीलेश की बात हुई थी और फिर दोपहर को आई सीना चीर देने वाली खबर। हादसे ने परिवार को ऐसे जख्म दिए हैं जिसे वक्त का मरहम भी कभी नहीं भर पाएगा।
8: पेंटिंग्स के शौकीन 27 वर्षीय नीलेश को शायद ही मालूम था कि महज दो दिन पहले लगाई गई ये नई नवेली पेंटिंग देखने के लिए अपने ही कमरे में, जहां वो सोता उठता बैठता काम करता, वही मौजूद नहीं रहेगा।
0: 24 साल का अब्दुल रहमान घर का इकलौता सहारा था। चंद महीने पहले नौकरी मिली थी, सोचा था घर वालों की तंगहाली को खुशहाली में बदल देगा, लेकिन एक झटके में परिवार की सारी खुशियां ताश के पत्तों की तरह बिखर गईं।
9: ये 3 बजे जब आग लगी है तब तो हमने खुद ही सोशल साइट पे डाला था, तब तक हमें नहीं पता था। अभी 8 बजे पता चला कि हमारा भतीजा रहमान भी इस आग का शिकार हो गया।
0: अब्दुल के कंधों पर पूरे परिवार की जिम्मेदारी थी, दिव्यांग पिता और बहन का सहारा था। एनिमेशन का कोर्स करने के बाद अब्दुल को नौकरी मिली, लेकिन वही दफ्तर अब्दुल की मौत की वजह बन गया।
9: घर में पिताजी विकलांग हैं, माँ टीचरिंग करती थी, बच्चा अभी दो ही तीन महीने हुए जॉब पे था, काम भी करता था, वहीं पढ़ाई भी करता था।
10: अब परिवार की कैसी जिम्मेदारी और क्या चाहते हैं आप लोग इस पूरी घटना पर?
9: हम लोग चाहते हैं इस पर जांच हो और ज्यादा से ज्यादा परिवार को मुआवजा दिया जाए, ताकि उसकी मां की भी कोई ऐसी स्थिति नहीं हो। परिवार में कोई दूसरा कमाने वाला नहीं था, इकलौता बच्चा था, यही पालन पोषण करता था, घर की देखभाल करता।
11: कांग्रेस ने मध्य प्रदेश की मोहन यादव सरकार पर बड़ा हमला बोला है। मध्य प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष जीतू पटवारी ने आरोप लगाया है कि मोहन यादव और उनके परिवार ने उज्जैन में जहां जमीनें खरीदी वहीं से परियोजनाएं निकाली गई हैं।
0: मध्य प्रदेश कांग्रेस ने बाकायदा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सीएम मोहन यादव पर उज्जैन में जमीन खरीदी को लेकर सनसनीखेज आरोप लगाए। कांग्रेस का आरोप है कि मुख्यमंत्री बनने के बाद मोहन यादव और उनके परिवार की ओर से जमीन खरीद में तेजी आई और जिन क्षेत्रों में बाद में विकास परियोजनाएं घोषित हुई वहां पहले से जमीन खरीदी गई। जीतू पटवारी ने कहा कि उज्जैन में जमीन खरीद का मामला भी गंभीर सवाल खड़े कर रहा है।
12: मुख्यमंत्री परिवार की सभी कंपनियों के हिस्सेदार फॉरेंसिक ऑडिट कराने के लिए तैयार है। मीडिया रिपोर्ट्स ने दावा किया कि भूमि खरीदी के कुछ समय बाद ही हाउसिंग प्रोजेक्ट बिल्डर एग्रीमेंट शुरू हो गए उन जमीनों पर। क्या पहले नियोजित व्यवसाय की रणनीति का हिस्सा था कि जमीन खरीदेंगे, मास्टर प्लान में चेंज आएंगे, परियोजना लाएंगे, उस बीच में रियल एस्टेट कंपनी से हम अपना एग्रीमेंट करेंगे और जो 10 रुपए की जमीन है वो 1000 रुपए की करेंगे, ये पहले से प्लान आउट था क्या? क्या ये सही है कि कुछ परियोजनाओं में भूमि मालिकों के विकसित संपत्ति 60% से 70% का हिस्सा है जिनकी भूमि है मुख्यमंत्री की हो उसके परिवार की हो?
13: जीतू पटवारी के मुताबिक मोहन यादव 2021 में मंत्री बने थे। 13 दिसंबर 2023 में वो मुख्यमंत्री बने। 21 से 23 के बीच में उनके परिवार के निकट सदस्यों के पास लगभग 194 प्लॉट बने। उनके परिवार के पास अलग अलग जगहों पर 253 एकड़ जमीनें हैं। उन्होंने आरोप लगाया है कि 21 से 25 के बीच में 253 एकड़ जमीनें खरीदी गई हैं। सूत्रों के मुताबिक सीएम दफ्तर ने इस पर सफाई दी है, जिसमें लिखा है कि मुख्यमंत्री मोहन यादव ने दिसंबर 2023 में मुख्यमंत्री बनने के बाद कोई जमीन नहीं खरीदी है। मुख्यमंत्री मोहन यादव की पत्नी सीमा यादव ने भी उनके मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री बनने के बाद कोई जमीन नहीं खरीदी है। मोहन यादव का दफ्तर इस पर बाद में एक विस्तृत रिपोर्ट भी जारी करेगा। आज तक ब्यूरो।
11: इसी के साथ हम यहां रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए। आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आज तक।

0: लखनऊ अग्निकांड पर सीएम योगी की समीक्षा बैठक का फायर सेफ्टी मानकों से समझौता नहीं। अखिलेश बोले बीजेपी राज में पास नक्शों का हो हिसाब। ब्रिजेश पाठक ने मौत पर राजनीति न करने की नसीहत दी। चार आरोपियों को न्यायिक हिरासत। राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में एसआईटी ने यूपी सरकार को सौंपी प्रारंभिक रिपोर्ट। फिलहाल किसी को क्लीन चिट नहीं। कुछ कर्मचारियों पर केस की सिफारिश। एसपी सांसद अवधेश प्रसाद ने सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के तहत जांच की मांग की। भोजपुर के भरत तिवारी एनकाउंटर पर एक्शन। जगदीशपुर के एसडीपीओ शाहपुर थानाध्यक्ष समेत कई पुलिसकर्मियों पर एफआईआर। बवाल के बाद बैकफुट पर बिहार पुलिस। नीट पर आज तक से बोले धर्मेंद्र प्रधान, लीग के मुजरिमों को छोड़ेंगे नहीं। दोबारा गड़बड़ी रोकने की पूरी कोशिश। राहुल गांधी पर लगाया छात्रों को भड़काने का आरोप। पद्म पुरस्कारों से 65 हस्तियां सम्मान्य। शिबू सोरेन को मिला मरणोपरांत पद्म भूषण। रोहित शर्मा अलका याग्निक ममूटी को राष्ट्रपति ने दिया सम्मान। लखनऊ अग्निकांड ने सिर्फ एक शहर को नहीं बल्कि पूरे देश को हिलाकर रख दिया है। 15 लोग जलकर मर गए, वो भी उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में, जहां से सरकार चलती है, जहां बुलडोजर से लेकर एनकाउंटर तक के ऑर्डर निकाले जाते हैं। लेकिन एक बिल्डिंग जो रिहायशी इमारत के तौर पर बनाई जाती है और उसे कमर्शियल में तब्दील कर दिया जाता है, और राजधानी में बैठे सत्ताधीश बड़े बड़े ऑफिसर उससे आंखें मूंद लेते हैं, और वही बिल्डिंग 15 मौतों का मरघट बनकर स्याह खड़ी रहती है। वही जिम्मेदार है, वही सत्ताधीश इमारत का मुआयना करने पहुंचते हैं। सवाल सिर्फ यही इन्हीं ऑफिसर से, इन्हीं सत्ताधीशों से, कि क्या वो 15 मौतों की जिम्मेदारी लेकर खुद को आईना दिखा पाएंगे।
1: मेरा बेटा भी जिंदा होता, मेरा बेटा भी होता दुनिया में।
2: 15 लोग जिंदा जल गए, क्या जिंदगी इतनी सस्ती है।
3: ये पापा बचाओ, पैसे भी करते हैं, आग लग गए।
2: पहले ऐसा मुआयना होता तो अग्निकांड क्यों होता।

0: कैसे एक रिहायशी बिल्डिंग कमर्शियल में बदल गई। किस किस का भ्रष्टाचार 15 बेगुनाहों की मौत का कारण बना।
1: माँ के सामने बेटा अंदर,
2: मौके कोई था ही नहीं, बंद था सब, इसके लिए सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए।
3: परिवार पे जो भी भैया परिवार समझ सकता है।
0: अब लखनऊ का पूरा प्रशासनिक अमला, सारे दिग्गज अधिकारी इस जलकर खाक हो चुकी इमारत के चप्पे चप्पे को नाप रहे हैं। आग कैसे लगी, कहां से लगी, कैसे फैली और कैसे 15 लोग इस अग्निकांड में जिंदा जल गए। जांच के लिए लखनऊ के अलीगंज की इस 3 मंजिला इमारत में लगी भीषण आग की वजह जानने के लिए और जांच करने के लिए SIT का गठन किया गया है। इसमें अपर मुख्य सचिव पर्यटन अमृत अभिजात और ADG लखनऊ जोन प्रवीण कुमार को शामिल किया गया है। लखनऊ के ये दिग्गज अफसर 7 दिन के भीतर अपनी रिपोर्ट तैयार करके CM योगी को भेजेंगे। लेकिन जिस तरह से इस खाक हुई बिल्डिंग में अधिकारी अब खाक छान रहे हैं, अगर आग लगने से पहले इस कॉम्प्लेक्स की पड़ताल की गई होती और सिस्टम भ्रष्टाचार की भेंट ना चढ़ा होता तो 15 बेगुनाह लोग इस अग्निकुंड में ना समाये होते, इस तरह से पीड़ित परिवारों के आंसू ना बह रहे होते।
4: SIT की टीम में प्रवीण कुमार जो ADG है जोन वो और साथ साथ अमृत अभिजात मौजूद है, जिन्होंने इंस्पेक्शन किया है, जांच की है इस पूरे मामले की कि आखिर किस तरीके से यहां पर ये घटना घटी है। इस SIT रिपोर्ट बनाकर चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ को दी जाएगी और अब यहां पर माइक्रो लेवल पर हर उस चीज की जांच की जा रही है और परखा जा रहा है कि आखिर इस पूरे मामले पर क्या है। सर, क्या क्या आपने जांच किया है अंदर, किस तरीके से?
5: देखिए, सब सारे फ्लोर्स पे गए हैं और जो घटना स्थल है वो भी देखा है। तो अभी कुछ निर्णायक बताने की स्थिति में नहीं, क्योंकि अभी सारी जांचें हो रही हैं FSL वगैरह का।
0: लखनऊ अग्निकांड की परतें जब एक एक करके खुल रही हैं तो साफ साफ नजर आ रहा है कि ये कोई हादसा नहीं बल्कि सामूहिक हत्याकांड है, जिसको उन भ्रष्ट अधिकारियों, अफसरों, जिम्मेदारों ने खुलेआम दिन दहाड़े बेखौफ होकर अंजाम दिया है।
6: एक बॉक्स नुमा ये बिल्डिंग है, इस बॉक्स नुमा बिल्डिंग के अंदर ही लोग सिर्फ इसी से, जो बच्चे थे, जो लोग थे, वो इसी छोटे से रास्ते से, और कोई रास्ता था ही नहीं, ये इस रास्ते से अंदर जाना, बाहर जाना। और जब आग लग गई तो उसकी वजह से धुएं ने और आग ने अफरा तफरी मच गई और लोग फंस गए। मतलब 3 फ्लोर की ये बिल्डिंग, उसके बाद ये बेसमेंट, टोटली अगर कहा जाए तो सिर्फ और सिर्फ सुरक्षा मानकों को दरकिनार करके ये बनाया गया।
0: लखनऊ के उस अलीगंज में ये कॉम्प्लेक्स है जहां से हर छोटे बड़े अफसर से लेकर नेताओं की गाड़ियां गुजरती होंगी। इस 3 मंजिला कॉम्प्लेक्स को रिहायशी इमारत से कब कमर्शियल में तब्दील कर दिया गया और कब इसमें एनिमेशन सेंटर चलना शुरू हो गया, इसकी न कभी जांच की गई, न कभी पड़ताल, लेकिन भ्रष्टाचारियों की मुट्ठियां गर्म करके इसे मौत का कॉम्प्लेक्स बना दिया गया। सवाल इस अग्निकांड या कहें हत्याकांड के जिम्मेदारों से है, फायर डिपार्टमेंट ने कैसे अनदेखी की, कैसे लखनऊ डेवलपमेंट अथॉरिटी यानी LDA ने इसमें घोर लापरवाही बरती। 2016 में बनाए गए NBC यानी नेशनल बिल्डिंग कोड 2016 के नियमों की अनदेखी की गई।
7: जो मकान मालिक हैं, क्योंकि बिल्डिंग आवासीय में पहले पास थी, बाद में उन्होंने कमर्शियल रूप में उसका इस्तेमाल करना जब शुरू कर दिया है, तो उनको फायर नाप से पूरा करना चाहिए था, आग बुझाने की पूरी व्यवस्था करनी चाहिए थी, लेकिन आग बुझाने की पूरी व्यवस्था उन्होंने समुचित ढंग से किया नहीं था, इसलिए मकान मालिक की जिम्मेदारी ज्यादा बनती है वहां पर। दूसरी बात यह कि जो अगर वो कमर्शियल रूप में इस्तेमाल कर ही रहे हैं तो वहां पर जो बिजली विभाग था, उन्होंने उनका लोड सैंक्शन किया होगा कि कितनी AC चल रही है, कितना बिजली का खर्चा इनका आ रहा है, उस हिसाब से उनको वहां पर देखना चाहिए था, लेकिन उन्होंने मुझे लगता है देखा नहीं ध्यान से। और जो LDA है, LDA की एरिया में आता है, तो LDA ने क्या चीज देखा है, ये उनकी जिम्मेदारी बनती है।
0: जब ये बिल्डिंग रिहायशी से कमर्शियल कॉम्प्लेक्स में तब्दील हुई तो फायर ऑडिट क्यों नहीं किया गया, क्यों रिहायशी बिल्डिंग के कमर्शियल में बदलने पर LDA के अफसरों ने सर्वे नहीं किया, या फिर इन अफसरों के पहुंचने से पहले ही उनकी जेब उनकी कुर्सी पर ही गर्म कर दी गई। बड़ी बात यह भी है कि जिस इमारत में हादसा हुआ वहां 20 किलोवाट का कमर्शियल बिजली कनेक्शन स्वीकृत था। जांच में सामने आया है कि वास्तविक बिजली लोड बढ़कर 34 KVA से ज्यादा हो गया था। अप्रैल महीने में

0: इमारत का लोड 24.30 केवीए दर्ज किया गया था, जो जून में और बढ़ गया। जानकारों के मुताबिक स्वीकृत क्षमता से कहीं अधिक लोड होने से तारों और ट्रांसफार्मर पर भारी दबाव था। भीषण गर्मी और ओवरलोडिंग के कारण शॉर्ट सर्किट की आशंका कई गुना बढ़ गई। बिजली विभाग ने मौके पर जाकर लोड चेक क्यों नहीं किया? कितना लोड कागजों में है और कितना बिजली का लोड खपत में आ रहा है? अगर इसकी चेकिंग की गई होती तो इतना बड़ा अग्निकांड नहीं हुआ होता।
1: जो कार्रवाई है उसकी बात कर लेते हैं, तो सरकार सबसे पहले तो पुरनिया के जो थाना प्रभारी हैं उन्होंने FIR की। 6 लोगों पर मुकदमा तहरीर दी गई है, मुकदमा दर्ज हुआ, 4 गिरफ्तार कर लिए गए हैं, जिसमें इस मकान के ओनर, इस मकान के दो जो ओनर हैं जिन्होंने कमर्शियल कम्प्लेक्स बनाया है और जिनकी कंपनियां यहां कार्यरत थीं।
0: 3 मंजिला इस कॉम्प्लेक्स में बेसमेंट भी बनाया गया था। एंट्री एग्जिट के लिए सिर्फ एक छोटा सा रास्ता था और इस रास्ते के ऊपर 7 पैनल, 2 एग्जॉस्ट फैन, इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल पैनल लगाकर रास्ते को और छोटा कर दिया गया था। इमारत के मालिकों और सेंटर संचालकों ने इसे अनदेखा किया।
2: 2 बातें बहुत अहम हैं। एक तरफ जो तमाम जो जांचें चल रही हैं वो अपनी जगह है, लेकिन शायद 2 बातें अगर इसमें हो गई होती तो इतने बच्चों की जान नहीं जाती। एक, जो बायोमेट्रिक जिसके जरिए एक्सेस था उस एनिमेशन का, जो इंस्टीट्यूट है उसके भीतर जाने और आने का, अगर वो बायोमेट्रिक लॉक नहीं हुआ होता यानी कि, तो शायद बच्चे निकल सकते थे। दूसरी बात, ऊपर अगर आपको दिखाएं तो आप देखिए ऊपर में एक पेंट हाउस जैसा है, यानी कि वो मकान मालिक जो है उसका अपना घर है। और कहा यह जा रहा है कि अगर ऊपर का घर का अगर सीढ़ी का रास्ता खुला होता तो भी ऊपर बच्चे भाग कर जान बचा सकते थे।
0: अब सवाल यही है कि जिस लखनऊ से बुलडोजर और एनकाउंटर के सीधे ऑर्डर निकलते हैं, वहां से भ्रष्टाचार के खिलाफ ऑर्डर क्यों नहीं निकलते? आखिर भ्रष्टाचार की आग कैसे बुझेगी? आज तक ब्यूरो।
3: लखनऊ अग्निकांड सरकारी महकमों की अंधेरगर्दी का साक्षात प्रमाण है, क्योंकि हादसे ने सरकारी दावों और जमीनी हकीकत के बीच की खाई को उजागर करके रख दिया है। सवाल जवाबदेही का है, पीड़ितों के परिजनों के इंसाफ का है। सवाल यह भी है कि जिस महकमे की कमान सीधे मुख्यमंत्री के हाथों में है, आखिर उस विभाग ने आम जनता को भगवान के भरोसे कैसे छोड़ दिया? क्या CM को ऑफिसर्स ने अंधेरे में रखा था, या फिर उत्तर प्रदेश में जनता की जान की कोई कीमत ही नहीं है?
4: ना कुछ देखेंगे ना कुछ सुनेंगे, क्योंकि जिंदगी लेना और देना तो ऊपर वालों के हाथों में है। ऐसे में जिम्मेदारों की जवाबदेही का कोई सवाल नहीं उठता। हादसे में मौत हुई तो साहब ने मौके का मुआयना कर लिया, जांच के आदेश दे दिए गए, मुआवजे का ऐलान कर दिया, संवेदना जताते हुए 2 शब्द भी कह दिए। अब मृतकों की जान लौटाई तो जा नहीं सकती, तो इससे ज्यादा उनके परिजनों को क्या चाहिए? सरकार तो अपनी जिम्मेदारी पूरी तत्परता से निभा रही, फिर हादसा होगा फिर यही सरकारी रस्म अदा कर दी जाएगी। मतलब ना तो सिस्टम बदलेगा ना जिम्मेदार अपनी सोच बदलेंगे, यही होता आया है यही होता रहेगा, क्योंकि योगी सरकार के उत्तम प्रदेश में जनता की जिंदगी सरकारी सिस्टम के आगे सस्ती है। इतनी सस्ती कि अब पूरे सिस्टम से लोगों का भरोसा उठ चुका है। अतीत में हुए हादसों से लेकर लखनऊ अग्निकांड तक जिम्मेदारों के रवैये से पीड़ित इतना टूट चुके हैं कि ना उम्मीदी के अंधेरे में इंसाफ के उजाले की उम्मीद अब बेमानी है।
5: और ये ट्राई फिर हो जाएगी 4 दिन के बाद। वो अधिकारी वो कैसे नहीं, कैसे नक्शा पास कर दिए, कैसे क्या कर दिए, हाँ। अब उसमें होता है कि अभी सब पनिश किए जाएंगे, सब कुछ किया जाएगा। अब उसके बाद
6: आपका कहना है कि 4 दिन में सब भूल जाएंगे?
5: 7-10 दिन के बाद सब भूल जाते हैं।
7: SIT बनाए चाहे कुछ भी बनाए, लेकिन मेरे देवर को तो वापस नहीं दे सकते ना। कितनों के घर उजड़ गए, कितने देवर, कितने भाई बहन, किसके किसके बच्चे होंगे सर, वो बेचारे नहीं रहे अब इस दुनिया में, क्या करेंगे? उनके माँ किसी का वो एक सहारा, किसी के इकलौते बच्चे होंगे।
4: मुख्यमंत्री की तरफ से दोषियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई का ऐलान भी पीड़ितों के दिलों में सोते हुए सिस्टम के जागने का भरोसा नहीं जगा सकता।
8: इस पूरे मामले की तह में हम जाकर के दोषियों को सजा भी दे सकें
9: और उन पीड़ित परिवारों के प्रति अपनी संवेदना भी व्यक्त कर सकें।
10: जांच कुछ नहीं होगी, सिर्फ कागजी कार्रवाई होगी और कुछ नहीं होगा वहाँ पे। ना आज तक हुआ ना आगे ऐसा होगा,
11: ऐसा चलता रहेगा। मेरे को कोई उम्मीद नहीं है, कच्चा जो गवर्नमेंट आ जाए। लोग ही ऐसे हैं, पैसे दे के सब पास हो जाता है, अब वो ऐसे होता रहेगा, तो इसमें मुझे उम्मीद नहीं है।
12: हादसा हो जाने के बाद किसी कोई बात करे, क्या वापस कर सकता है? वो वापस तो नहीं कर सकता, केवल समस्या को समाधान करने के लिए, सुलझाने के लिए केवल आश्वासन देंगे। पर
4: पहले की तरह लखनऊ अग्निकांड के बाद पीछे है परिजनों की पीड़ा, रोते बिलखते लोग, जांच और मुआवजे की खाना पूर्ति, लेकिन पीड़ितों के आंसुओं का हिसाब न कभी मिला, न मिलने की उम्मीद और न कोई दे पाया है। सोचिए, रिहायशी इलाके में नियमों को ताक पर रखकर खड़ी की गई ये कमर्शियल बिल्डिंग न सिर्फ अवैध थी, बल्कि सुरक्षा के लिहाज से एक डेथ ट्रैप बन चुकी थी। लेकिन न देखने वाला कोई, न सुनने वाला कोई। आम जनता हादसे का शिकार बनती है तो बनती है। लखनऊ में हुए अग्निकांड में 15 जिंदगियां मौत के गाल में सवार। अगर जिम्मेदारों ने आंखों पर रिश्वत की पट्टी नहीं बांधी होती तो ये बच जाते। यही है आम जनता की सुरक्षा की गारंटी, मतलब सिस्टम के भरोसे नहीं बल्कि भगवान के भरोसे जियो। जबकि माननीय और साहब तो पूरे ठसक के साथ सुरक्षा के वीवीआईपी प्रोटोकॉल में चलते। मजाल है कि बिना इजाजत परिंदा भी पर मार दे, क्योंकि माननीय और सरकारी लाट साहबों की जिंदगी का मोल है और आम जनता की जिंदगी का कोई नहीं।
7: अभी अपने को कुछ होता तो प्रशासन तुरंत दौड़ जाएगा। ये वीआईपी यहाँ पर जब मंत्री निकलते तो तुरंत रास्ता बंद कर दिया जाता, आम आदमी खड़ा रहता है, बच्चे धूप में स्कूल चलाते भी लगते, तब गवर्नमेंट को तरस नहीं आता जनता पे।
4: अगर आम जनता की जिंदगी की परवाह होती तो लखनऊ के अलीगंज में सरकारी तंत्र की नाक के नीचे मौत की इमारत कभी खड़ी नहीं होती। इमारत की नींव से लेकर छत पर लगी आखिरी ईंट तक में सरकारी भ्रष्टाचार का सीमेंट भरा पड़ा है। इतना मजबूत सीमेंट कि कोई हिसाब नहीं। ये सब कैसे हुआ ये भी समझिए। सरकार की हर साख पर 15 बेगुनाहों के खून के छींटे, एक नहीं बल्कि 4-4 विभागों की अंधेर गर्दी आम जनता की जिंदगी पर भारी पड़ी। मौत की बिल्डिंग अवैध थी लेकिन सिस्टम की आंखें बंद थी। आज कटघरे में खड़ा है लखनऊ विकास प्राधिकरण, लखनऊ नगर निगम और उसके कर्ता धर्ता। सवाल यही कि दोनों विभागों ने अपनी जिम्मेदारी क्यों नहीं निभाई, भ्रष्टाचार की इमारत क्यों खड़ी। ये तब है जब लखनऊ विकास प्राधिकरण जिस विभाग को रिपोर्ट करता है उसके मुखिया सीधे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। मुख्यमंत्री की नाक के नीचे काम करने वाले हाउसिंग एंड अर्बन प्लानिंग विभाग की अंधेर गर्दी ने जिंदगी के 15 चिराग बुझा दिए, जिसके लिए सीधे जिम्मेदार हाउसिंग एंड अर्बन प्लानिंग विभाग के मुख्य सचिव पी गुरुप्रसाद, एलडीए के चेयरमैन रोशन जैकब, एलडीए के वीसी प्रथमेश कुमार, लखनऊ नगर निगम के नगर आयुक्त गौरव कुमार, जो नगर विकास मंत्री अरविंद कुमार शर्मा को रिपोर्ट करते हैं। इनका जिम्मा अवैध निर्माण को रोकना और अवैध निर्माण को ढहाना। आंखें बंद थी तो कोई वक्त रहते एक्शन कभी नहीं लिया गया। सरकारी व्यवस्था में अव्यवस्था का दीमा सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं था। सरकारी मुलाजिमों को पता था अलीगंज में खड़ी मौत की इमारत कभी भी आम जनता का जीवन छीन सकती है, लेकिन सब कुछ जानते हुए भी बिजली विभाग ने आंखें मूंदे रखी। अवैध बिल्डिंग मांग से ज्यादा बिजली खपत के बावजूद बिजली विभाग के कान जूं कभी नहीं रेंगी। सब कुछ चलता है, चलता रहेगा के हिसाब से चलता रहा। बिजली विभाग ने अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाई, जिसके मंत्री हैं अरविंद कुमार शर्मा और जिम्मेदार हैं यूपीपीसीएल के चेयरमैन और लखनऊ की बिजली आपूर्ति का जिम्मा संभाल रहे अफसर आशीष कुमार गोयल। वक्त रहते बिजली विभाग ने कार्रवाई की होती 15 जिंदगी बच जाती।
13: ऐसी घटनाएं न हो इसके लिए पूरी तरह सजगता के साथ हम और पूरी सरकार प्रयास करेंगे और ये देखेंगे कि ऐसी घटनाओं का जो भी कारण है वो भविष्य में ऐसी घटनाओं के कारण न बने।
4: ऐसा पहली बार नहीं हुआ कि योगी के राज में सरकारी सिस्टम की लापरवाही जानलेवा साबित हुई। इससे पहले भी सिस्टम की लापरवाही के चलते कई बार लोग बेमौत मारे गए, लेकिन जिम्मेदारों पर कार्रवाई आज तक नहीं हुई। यही है योगी सरकार का ट्रैक रिकॉर्ड और रिपोर्ट कार्ड। महाकुंभ भगदड़, 37 श्रद्धालुओं की मौत, कोई बड़ा अफसर नहीं नपा। हाथरस सत्संग भगदड़, 121 लोगों की मौत, कोई बड़ा अफसर नहीं नपा। झांसी मेडिकल कॉलेज आग, 18 नवजात बच्चों की मौत, किसी बड़े अफसर पर गाज नहीं गिरी। आगरा नोएडा एक्सप्रेसवे हादसा, 19 यात्रियों की मौत, कोई अफसर नहीं नपा। जब सिस्टम की सोच पर सिर्फ आश्वासन का पर्दा पड़ा हो तो जिम्मेदार हर बार अपनी जवाबदेही से बच जाते हैं और आम जनता की जान चली जाती है।
3: महाराष्ट्र में भी यूसीसी यानी समान नागरिक संहिता लागू किया जाएगा और इसके ऐलान गृह राज्य मंत्री योगेश कदम ने विधानसभा में कर दिया है। उन्होंने कहा कि यूसीसी लागू करने के लिए हाईकोर्ट की रिटायर्ड जज के नेतृत्व में एक समिति गठित होगी। इस मामले में समाजवादी पार्टी के विधायक अबू आजमी ने मुस्लिमों को टारगेट करने के आरोप लगाए हैं तो मंत्री नीतीश राणे कह रहे हैं कि यूसीसी का विरोध करने वालों को पाकिस्तान चले जाना चाहिए।
14: मुस्लिम महिलाओं की सुरक्षा पर विधानसभा में जोरदार बहस के बीच महाराष्ट्र में यूसीसी लागू करने की मांग तेज हो गई है।
15: यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है, समान नागरिक कानून, ये हमारे बाला साहब ठाकरे जी की पहले से भूमिका रही है और आज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी सकारात्मक है और शिवसेना ये यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में सकारात्मक भूमिका हमारी है। देश में समान नागरिक कानून होने की आवश्यकता है, सभी को समान न्याय और मिलना चाहिए, ये भूमिका शिवसेना की है।
14: महाराष्ट्र विधानसभा में आज मुस्लिम महिलाओं की सुरक्षा और यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी यूसीसी पर जमकर हंगामा हुआ। दरअसल बीजेपी विधायक देवयानी फरांडे ने दावा किया कि महाराष्ट्र में तीन तलाक पर बैन ठीक से लागू नहीं हो रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि मुस्लिम महिलाओं के खिलाफ एक से ज्यादा शादी और बदसलूकी के मामले बढ़ रहे हैं, जिसके लिए यूसीसी लागू करना जरूरी हो गया है।
16: बिल की आज मैंने सदन में मांग की और इस बिल की महाराष्ट्र में बहुत ही जरूरत है क्योंकि पॉलीगेमी का परसेंटेज हम देख रहे हैं कि मुस्लिम समाज के अंदर बहुत है। डेढ़ महीने में नासिक में 3 FIR खारिज हुए हैं, दर्ज किए गए हैं और उसके अंदर उनके पति ने उनके ऊपर ट्रिपल तलाक के लिए बहुत फोर्स किया, नहीं दिया तो उनको मार पीटना, उनको मारने की धमकी देना और एक ने तो बताया उसको दो बंदों को लेके बोले इसके साथ तेरा हलाला कर दूंगा। जैसे कि आसाम की सरकार ने, गुजरात, उत्तराखंड और गोवा की सरकार ने यूसीसी को लागू किया है, वैसे ही महाराष्ट्र की सरकार तुरंत यूसीसी लागू करे, ये मैंने मांग सदन में रखी थी और मंत्री महोदय ने बहुत ही सकारात्मक उसके ऊपर बयान दिया है कि जल्द ही कमेटी बना के सरकार जो है यूसीसी को महाराष्ट्र में लागू करेगी।
14: इसके जवाब में महाराष्ट्र के गृह राज्य मंत्री योगेश कदम ने ऐलान किया कि सरकार एक रिटायर्ड हाईकोर्ट जज के नेतृत्व में कमेटी बनाएगी। ये कमेटी महाराष्ट्र में यूसीसी को कैसे लागू किया जाए इस पर स्टडी करेगी और सरकार फाइनल रिपोर्ट के आधार पर अपना अगला कदम तय करेगी।
17: 100% सकारात्मक आहे या कायद्याची अंमलबजावणी किंवा ह्या कायद्याचा मसुदा तयार करण्यासाठी किंवा याचा एक अभिप्राय समोर आणण्यासाठी आपण एक रिटायर्ड हायकोर्ट जज यांच्या अंडर आपण एक कमिटी स्थापन करायचा निर्णय माननीय मुख्यमंत्री मोदींनी घेतलेला आहे आणि हा अहवाल, या कमिटीचा अहवाल प्राप्त झाल्याच्या नंतर आपल्या महाराष्ट्रामध्ये देखील यूसीसी कायदा हा लागू केला जाईल। या बाबतीमध्ये आपलं सरकार हे सकारात्मक आहे।
14: इसके बाद यूसीसी और तीन तलाक जैसे मुद्दों पर सदन में बहस तनावपूर्ण हो गई। एनसीपी विधायक सना मलिक ने चर्चा का विरोध करते हुए कहा कि इस्लाम में एक से ज्यादा शादी की इजाजत है लेकिन दूसरे धर्मों में भी ऐसा होता है। उन्होंने सवाल किया कि सिर्फ मुसलमानों को ही क्यों टारगेट किया जा रहा है।
18: इस तरीके का अत्याचार सिर्फ मुस्लिम महिलाओं के ऊपर हो रहा है, क्या ये प्रश्न मैं पूछ सकती हूँ? उसका जवाब दिया जाएगा कि इस तरीके का अत्याचार सिर्फ मुस्लिम महिलाओं के ऊपर हो रहा है क्या? दूसरा, पॉलीगैमी मुस्लिम्स में अलाउड है मुस्लिम लॉ अंतर्गत। पाकिस्तान ने कुछ नया नहीं किया है, पाकिस्तान ने मुस्लिम लॉ जो हमारा कुरान जो कहता है उसको इम्प्लीमेंट किया है और वही अगर इधर भी इम्प्लीमेंट किया जाएगा तो हम में से किसी को भी इस्लाम के में जो भी कुरान बोलता है वो हम फॉलो करते हैं। अगर कुरान में कोई चीज कही गई है उसको फॉलो करने के लिए अगर इम्प्लीमेंटेशन पाकिस्तान ने लाया है तो भारत देश भी लाए और हम इसकी मांग करते हैं।
14: इस टकराव को और बढ़ाते हुए मंत्री नीतीश राणे ने कह दिया, गजवाए हिंद करने वाले जो लोग कानून और संविधान को मानने से इनकार करते हैं उन्हें भारत में रहने का अधिकार नहीं है।
19: पता चलता है कि इस्लाम में महिलाओं का क्या स्थान है। जब हम महिलाओं के हित में बात कर रहे हैं फिर वो हिंदू हो, मुसलमान हो, क्रिश्चियन हो, कोई भी, अगर उनकी हित की बात हो रही होगी तो हमें सभी को उसके साथ में आके उसके लिए करना चाहिए। मगर तो भी कुरान सबको सामने रख के उन महिलाओं के ऊपर किया हुए अत्याचार को जस्टिफाई किया जा रहा था। यही क्या कुरान में लिखा है क्या? इसी को इस्लाम कहते हैं क्या? इसका जवाब वो लोग ने देना चाहिए।
14: वही समाजवादी पार्टी के विधायक अबू आजमी ने बीजेपी सरकार पर हिंदू मुस्लिम के बीच नफरत फैलाने का आरोप लगा दिया।
20: दल के अंदर जाकर आदिवासियों से पूछे उनका धर्म जो कहता है वो, इसी में आदिवासी को बोलते हैं हम इसको अलग रखेंगे, उसको इसमें शामिल नहीं करेंगे। अगर देश एक है तो सबको शामिल कीजिए। मुसलमानों का खाली विरोध नहीं है, इसमें बहुत सारे लोगों का विरोध है। अगर मुझे मेरा मजहब कहता है कि मैं निकाह करूं, तो आप अगर कानून बना देंगे कि मैं जो है सात फेरे लगाऊं तो कैसे, या आपको कहा जाए कि आप निकाह करो सात फेरे नहीं करो, तो ये जो पर्सनल चीजें रिलीजन की थोड़ी चीजें ऐसी हैं, बाकी हर चीज में तो कॉमन ही है। मर्डर हुआ है, अटेम्प्ट मर्डर है, कोई जायदाद का प्रॉब्लम है, तो सब कोर्ट में साफ सेम चलता है। कुछ पर्सनल चीजें हैं जिसमें इंटरफेरेंस नहीं होना चाहिए।
21: सरकार का इस पूरे मामले
20: सरकार जो सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों को इस मुल्क में बर्बाद कर देना चाहती है और उन्हीं के कंधों पर चढ़ करके राजनीति कर रही है, सिर्फ मुस्लिम हिंदू कर रही है और कुछ नहीं।
14: जिस तरह सरकार ने यूसीसी के लिए कमेटी बनाने का ऐलान किया है, उससे सरकार ने अपनी मंशा जाहिर कर दी है कि विपक्ष के विरोध के बावजूद यूनिफॉर्म सिविल कोड लाकर रहेगी।
22: महाराष्ट्र विधानसभा में छिड़ी यह बहस एक बात तो साफ करती है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड और महिला सुरक्षा, ये दोनों मुद्दे महाराष्ट्र की राजनीति में एक बड़ा मोड़ लेने वाले हैं। अब ये देखना जरूरी होगा कि इस कमेटी की रिपोर्ट राज्य की राजनीति किस तरह से बदलती है। हालांकि देखना ये भी होगा कि क्या इस फैसले से सही मायने में समाज को जोड़ा जाता है या फिर इससे सिर्फ राजनीतिक हवा बदलती है। कैमरा पर्सन सचिन सावन के साथ मैं ऋत्विक भालेकर, मुंबई आज तक।
3: कांग्रेस ने मध्य प्रदेश की मोहन यादव सरकार पर बड़ा हमला बोला है। मध्य प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष जीतू पटवारी ने आरोप लगाया है कि मोहन यादव और उनके परिवार ने उज्जैन में जहां जमीनें खरीदी वहीं से परियोजनाएं निकाली गई हैं।
23: मध्य प्रदेश कांग्रेस ने बाकायदा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सीएम मोहन यादव पर उज्जैन में जमीन खरीदी को लेकर सनसनीखेज आरोप लगाए। कांग्रेस का आरोप है कि मुख्यमंत्री बनने के बाद मोहन यादव और उनके परिवार की ओर से जमीन खरीद में तेजी आई और जिन क्षेत्रों में बाद में विकास परियोजनाएं घोषित हुई वहां पहले से जमीन खरीदी गई। जीतू पटवारी ने कहा कि उज्जैन में जमीन खरीद का मामला भी गंभीर सवाल खड़े कर रहा है।
24: मुख्यमंत्री परिवार की सभी कंपनियों के हिस्सेदार फॉरेंसिक ऑडिट कराने के लिए तैयार है। मीडिया रिपोर्ट्स ने दावा किया कि भूमि खरीदी के कुछ समय बाद ही हाउसिंग प्रोजेक्ट बिल्डर एग्रीमेंट शुरू हो गए उन कंपनी उन जमीनों पर। क्या पहले नियोजित व्यवसाय की रणनीति का हिस्सा था कि जमीन खरीदेंगे, मास्टर प्लान में चेंज आएंगे, परियोजना लाएंगे, उस बीच में रियल एस्टेट कंपनी से हम अपना एग्रीमेंट करेंगे और जो 10 रुपए की जमीन है वो 1000 रुपए की करेंगे, ये पहले से प्लान आउट था क्या? क्या ये सही है कि कुछ परियोजनाओं में भूमि मालिकों के विकसित संपत्ति 60% से 70% का हिस्सा है जिनकी भूमि है मुख्यमंत्री की हो उसके परिवार की हो।
23: जीतू पटवारी के मुताबिक मोहन यादव 2021 में मंत्री बने थे, 13 दिसंबर 2023 में वो मुख्यमंत्री बने। 21 से 23 के बीच में उनके परिवार के निकट सदस्यों के पास लगभग 194 प्लॉट बने। उनके परिवार के पास अलग अलग जगहों पर 253 एकड़ जमीनें हैं। उन्होंने आरोप लगाया है कि 21 से 25 के बीच में 253 एकड़ जमीनें खरीदी गई हैं। सूत्रों के मुताबिक सीएम दफ्तर ने इस पर सफाई दी है जिसमें लिखा है कि मुख्यमंत्री मोहन यादव ने दिसंबर 2023 में मुख्यमंत्री बनने के बाद कोई जमीन नहीं खरीदी है। मुख्यमंत्री मोहन यादव की पत्नी सीमा यादव ने भी उनके मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री बनने के बाद कोई जमीन नहीं खरीदी है। मोहन यादव का दफ्तर इस पर बाद में एक विस्तृत रिपोर्ट भी जारी करेगा। आज तक ब्यूरो।
3: इसी के साथ हम यहाँ रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए। आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आज तक।

0: लखनऊ अग्निकांड पर सीएम योगी की समीक्षा बैठक का फायर सेफ्टी मानकों से समझौता नहीं। अखिलेश बोले बीजेपी राज में पास नक्शों का हो हिसाब। ब्रिजेश पाठक ने मौत पर राजनीति न करने की नसीहत दी। चार आरोपियों को न्यायिक हिरासत। राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में एसआईटी ने यूपी सरकार को सौंपी प्रारंभिक रिपोर्ट। फिलहाल किसी को क्लीन चिट नहीं। कुछ कर्मचारियों पर केस की सिफारिश। एसपी सांसद अवधेश प्रसाद ने सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के तहत जांच की मांग की। भोजपुर के भरत तिवारी एनकाउंटर पर एक्शन। जगदीशपुर के एसडीपीओ शाहपुर थानाध्यक्ष समेत कई पुलिसकर्मियों पर एफआईआर। बवाल के बाद बैकफुट पर बिहार पुलिस। नीट पर आज तक से बोले धर्मेंद्र प्रधान, लीग के मुजरिमों को छोड़ेंगे नहीं। दोबारा गड़बड़ी रोकने की पूरी कोशिश। राहुल गांधी पर लगाया छात्रों को भड़काने का आरोप। पद्म पुरस्कारों से 65 हस्तियां सम्मानित। शिबू सोरेन को मिला मरणोपरांत पद्म भूषण। रोहित शर्मा, अलका याग्निक, ममूटी को राष्ट्रपति ने दिया सम्मान। लखनऊ अग्निकांड ने सिर्फ एक शहर को नहीं बल्कि पूरे देश को हिलाकर रख दिया है। 15 लोग जलकर मर गए, वो भी उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में, जहां से सरकार चलती है, जहां बुलडोजर से लेकर एनकाउंटर तक के ऑर्डर निकाले जाते हैं। लेकिन एक बिल्डिंग जो रिहायशी इमारत के तौर पर बनाई जाती है और उसे कमर्शियल में तब्दील कर दिया जाता है, और राजधानी में बैठे सत्ताधीश, बड़े बड़े ऑफिसर उससे आंखें मूंद लेते हैं, और वही बिल्डिंग 15 मौतों का मरघट बनकर स्याह खड़ी रहती है। वही जिम्मेदार है, वही सत्ताधीश इमारत का मुआयना करने पहुंचते हैं। सवाल सिर्फ यही इन्हीं ऑफिसर से, इन्हीं सत्ताधीशों से, कि क्या वो 15 मौतों की जिम्मेदारी लेकर खुद को आईना दिखा पाएंगे।
1: मेरा बेटा भी जिंदा होता, मेरा बेटा भी होता दुनिया में।
2: 15 लोग जिंदा जल गए, क्या जिंदगी इतनी सस्ती है?
3: ये पापा बचाओ कैसे भी करके, आग न करे।
2: पहले ऐसा मुआयना होता तो अग्निकांड क्यों होता? पंद्रह मौतों का सवाल है, जिम्मेदारों को जवाब तो देना पड़ेगा। कैसे एक रिहायशी बिल्डिंग कमर्शियल में बदल गई? किस किस का भ्रष्टाचार 15 बेगुनाहों की मौत का कारण बना?
4: माँ के सामने बेटा अंदर,
5: मौके कोई था ही नहीं, बंद था सब। इसके लिए सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए।
6: परिवार पे जो भी इतनी बढ़िया परिवार समझ सकता है।
2: अब लखनऊ का पूरा प्रशासनिक अमला, सारे दिग्गज अधिकारी इस जलकर खाक हो चुकी इमारत के चप्पे चप्पे को नाप रहे हैं। आग कैसे लगी, कहां से लगी, कैसे फैली और कैसे 15 लोग इस अग्निकांड में जिंदा जल गए। जांच के लिए लखनऊ के अलीगंज की इस 3 मंजिला इमारत में लगी भीषण आग की वजह जानने के लिए और जांच करने के लिए एसआईटी का गठन किया गया है। इसमें अपर मुख्य सचिव पर्यटन अमृत अभिजात और एडीजी लखनऊ जोन प्रवीण कुमार को शामिल किया गया है। लखनऊ के ये दिग्गज अफसर 7 दिन के भीतर अपनी रिपोर्ट तैयार करके सीएम योगी को भेजेंगे। लेकिन जिस तरह से इस खाक हुई बिल्डिंग में अधिकारी अब खाक छान रहे हैं, अगर आग लगने से पहले इस कॉम्प्लेक्स की पड़ताल की गई होती और सिस्टम भ्रष्टाचार की भेंट ना चढ़ा होता तो 15 बेगुनाह लोग इस अग्निकुंड में ना समाये होते, इस तरह से पीड़ित परिवारों के आंसू ना बह रहे होते।
7: एसआईटी की टीम में प्रवीण कुमार जो एडीजी है जोन वो, और साथ साथ अमृत अभिजात मौजूद है जिन्होंने इंस्पेक्शन किया है, जांच की है इस पूरे मामले की कि आखिर किस तरीके से यहां पर ये घटना घटी है। इस एसआईटी रिपोर्ट बनाकर चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ को दी जाएगी और अब यहां पर माइक्रो लेवल पर हर उस चीज की जांच की जा रही है और परखा जा रहा है कि आखिर इस पूरे मामले पर क्या है। सर क्या क्या आपने जांच किया है अंदर, किस तरीके से?
8: देखिए सब सारे फ्लोर्स पे गए हैं और जो घटना स्थल है वो भी देखा है, लेकिन तो अभी कुछ निर्णायक बताने की स्थिति में नहीं, क्योंकि अभी सारी जांचें हो रही हैं एफएसएल वगैरह का।
2: लखनऊ अग्निकांड की परतें जब एक एक करके खुल रही हैं, तो साफ साफ नजर आ रहा है कि ये कोई हादसा नहीं बल्कि सामूहिक हत्याकांड है, जिसको उन भ्रष्ट अधिकारियों अफसरों जिम्मेदारों ने खुलेआम दिन दहाड़े बेखौफ होकर अंजाम दिया है।
9: एक बॉक्स नुमा ये बिल्डिंग है, इस बॉक्स नुमा बिल्डिंग के अंदर ही लोग सिर्फ इसी से, जो बच्चे थे जो लोग थे वो इसी छोटे से रास्ते से, और कोई रास्ता था ही नहीं, ये इस रास्ते से अंदर जाना बाहर जाना, और जब आग लग गई तो उसकी वजह से धुएं ने और आग ने अफरा तफरी मच गई और लोग फंस गए। मतलब तीन फ्लोर की ये बिल्डिंग, उसके बाद ये बेसमेंट, टोटली अगर कहा जाए तो सिर्फ और सिर्फ सुरक्षा मानकों को दरकिनार करके ये बनाया गया।
2: लखनऊ के उस अलीगंज में ये कॉम्प्लेक्स है जहां से हर छोटे बड़े अफसर से लेकर नेताओं की गाड़ियां गुजरती होंगी। इस तीन मंजिला कॉम्प्लेक्स को रिहायशी इमारत से कब कमर्शियल में तब्दील कर दिया गया और कब इसमें एनिमेशन सेंटर चलना शुरू हो गया, इसकी न कभी जांच की गई न कभी पड़ताल, लेकिन भ्रष्टाचारियों की मुट्ठियां गर्म करके इसे मौत का कॉम्प्लेक्स बना दिया गया। सवाल इस अग्निकांड या कहे हत्याकांड के जिम्मेदारों से है, फायर डिपार्टमेंट ने कैसे अनदेखी की, कैसे लखनऊ डेवलपमेंट अथॉरिटी यानी LDA ने इसमें घोर लापरवाही बरती। 2016 में बनाए गए NBC यानी नेशनल बिल्डिंग कोड 2016 के नियमों की अनदेखी की गई।
10: जो मकान मालिक हैं, क्योंकि बिल्डिंग आवासीय में पहले पास थी, बाद में उन्होंने कमर्शियल रूप में उसका इस्तेमाल करना जब शुरू कर दिया है, तो उनको फायर नाम से पूरा करना चाहिए था, आग बुझाने की पूरी व्यवस्था करनी चाहिए थी, लेकिन आग बुझाने की पूरी व्यवस्था में समुचित ढंग से किया नहीं था, इसलिए मकान मालिक की जिम्मेदारी ज्यादा बनती है वहां पर। दूसरी बात है कि जो अगर वो कमर्शियल रूप में इस्तेमाल कर ही रहे हैं, तो वहां पर जो बिजली विभाग था उन्होंने उनका लोड सैंक्शन किया होगा कि कितनी AC चल रही है, कितना बिजली का खर्चा इनका आ रहा है, उस हिसाब से उनको वहां पर देखना चाहिए था, लेकिन उन्होंने मुझे लगता है देखा नहीं ध्यान से। और जो LDA है, LDA की एरिया में आता है, तो LDA ने क्या चीज देखा, ये उनकी जिम्मेदारी बनती है।
2: जब ये बिल्डिंग रिहायशी से कमर्शियल कॉम्प्लेक्स में तब्दील हुई तो फायर ऑडिट क्यों नहीं किया गया, क्यों रिहायशी बिल्डिंग के कमर्शियल में बदलने पर LDA के अफसरों ने सर्वे नहीं किया, या फिर इन अफसरों के पहुंचने से पहले ही उनकी जेब उनकी कुर्सी पर ही गर्म कर दी गई। बड़ी बात यह भी है कि जिस इमारत में हादसा हुआ वहां 20 किलोवाट का कमर्शियल बिजली कनेक्शन स्वीकृत था। जांच में सामने आया है कि वास्तविक बिजली लोड बढ़कर 34 KVA से ज्यादा हो गया था। अप्रैल महीने में इमारत का लोड 24.30 KVA दर्ज किया गया था, जो जून में और बढ़ गया। जानकारों के मुताबिक स्वीकृत क्षमता से कहीं अधिक लोड होने से तारों और ट्रांसफार्मर पर भारी दबाव था। भीषण गर्मी और ओवरलोडिंग के कारण शॉर्ट सर्किट की आशंका कई गुना बढ़ गई। बिजली विभाग ने मौके पर जाकर लोड चेक क्यों नहीं किया, कितना लोड कागजों में है और कितना बिजली का लोड खपत में आ रहा है, अगर इसकी चेकिंग की गई होती तो इतना बड़ा अग्निकांड नहीं हुआ होता।
11: जो कार्रवाई है उसकी बात कर लेते हैं, तो सरकार सबसे पहले तो पुरनिया के जो थाना प्रभारी हैं उन्होंने FIR की, 6 लोगों पर मुकदमा तहरीर दी गई है, मुकदमा दर्ज हुआ, 4 गिरफ्तार कर लिए गए हैं, जिसमें इस मकान के ओनर, इस मकान के दो जो ओनर हैं जिन्होंने कमर्शियल कम्प्लेक्स बनाया है और जिनकी कंपनियां यहां कार्यरत थी।
2: 3 मंजिला इस कॉम्प्लेक्स में बेसमेंट भी बनाया गया था, एंट्री एग्जिट के लिए सिर्फ एक छोटा सा रास्ता था और इस रास्ते के ऊपर 7 पैनल, 2 एग्जॉस्ट फैन, इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल पैनल लगाकर रास्ते को और छोटा कर दिया गया था। इमारत के मालिकों और सेंटर संचालकों ने इसे अनदेखा किया।
11: दो बातें बहुत अहम हैं। एक तरफ जो तमाम जो जांचें चल रही हैं वो अपनी जगह है, लेकिन शायद दो बातें अगर इसमें हो गई होती तो इतने बच्चों की जान नहीं जाती। एक, जो बायोमेट्रिक जिसके जरिए एक्सेस था उस एनिमेशन का, जो इंस्टीट्यूट है उसके भीतर जाने और आने का, अगर वो बायोमेट्रिक लॉक नहीं हुआ होता यानी कि, तो शायद बच्चे निकल सकते थे। दूसरी बात, ऊपर अगर आपको दिखाएं तो आप देखिए ऊपर में एक पेंट हाउस जैसा है, यानी कि वो मकान मालिक जो है उसका अपना घर है, और कहा यह जा रहा है कि अगर ऊपर का घर का अगर सीढ़ी का रास्ता खुला होता तो भी ऊपर बच्चे भाग कर जान बचा सकते थे।
2: अब सवाल यही है कि जिस लखनऊ से बुलडोजर और एनकाउंटर के सीधे ऑर्डर निकलते हैं, वहां से भ्रष्टाचार के खिलाफ ऑर्डर क्यों नहीं निकलते, आखिर भ्रष्टाचार की आग कैसे बुझेगी। आज तक ब्यूरो।
0: लखनऊ अग्निकांड सरकारी महकमों की अंधेरगर्दी का साक्षात प्रमाण है, क्योंकि हादसे ने सरकारी दावों और जमीनी हकीकत के बीच की खाई को उजागर करके रख दिया है। सवाल जवाबदेही का है, पीड़ितों के परिजनों के इंसाफ का है। सवाल यह भी है कि जिस महकमे की कमान सीधे मुख्यमंत्री के हाथों में है, आखिर उस विभाग ने आम जनता को भगवान के भरोसे कैसे छोड़ दिया? क्या सीएम को ऑफिसर्स ने अंधेरे में रखा था, या फिर उत्तर प्रदेश में जनता की जान की कोई कीमत ही नहीं है?
12: ना कुछ देखेंगे ना कुछ सुनेंगे, क्योंकि जिंदगी लेना और देना तो ऊपर वालों के हाथों में है। ऐसे में जिम्मेदारों की जवाबदेही का कोई सवाल नहीं उठता। हादसे में मौत हुई तो साहब ने मौके का मुआयना कर लिया, जांच के आदेश दे दिए गए, मुआवजे का ऐलान कर दिया, संवेदना जताते हुए दो शब्द भी कह दिए। अब मृतकों की जान लौटाई तो जा नहीं सकती, तो इससे ज्यादा उनके परिजनों को क्या चाहिए? सरकार तो अपनी जिम्मेदारी पूरी तत्परता से निभा रही, फिर हादसा होगा फिर यही सरकारी रस्म अदा कर दी जाएगी। मतलब ना तो सिस्टम बदलेगा ना जिम्मेदार अपनी सोच बदलेंगे, यही होता आया है यही होता रहेगा, क्योंकि योगी सरकार के उत्तम प्रदेश में जनता की जिंदगी सरकारी सिस्टम के आगे सस्ती है। इतनी सस्ती कि अब पूरे सिस्टम से लोगों का भरोसा उठ चुका है। अतीत में हुए हादसों से लेकर लखनऊ अग्निकांड तक जिम्मेदारों के रवैये से पीड़ित इतना टूट चुके हैं कि ना उम्मीदी के अंधेरे में इंसाफ के उजाले की उम्मीद अब बेमानी है।
13: और ये ट्राई ट्राई फीस हो जाएगी चार दिन के बाद। वो अधिकारी वो कैसे नहीं, कैसे नक्शा पास कर दिए, कैसे क्या कर दिए, हाँ। अब उसमें होता है कि अभी सब पनिश किए जाएंगे, सब कुछ किया जाएगा। अब उसके बाद
14: आपका कहना है कि चार दिन में सब भूल जाएंगे?
13: सात दस दिन के बाद सब भूल जाते हैं।
15: एसआईटी बनाए चाहे कुछ भी बनाए, लेकिन मेरे देवर को तो वापस नहीं दे सकते ना। कितनों के घर उजड़ गए, कितने देवर, कितने भाई बहन, किसके किसके बच्चे होंगे सर, वो बेचारे नहीं रहे अब इस दुनिया में, क्या करेंगे? उनके माँ किसी का वो एक सहारा, किसी के इकलौते बच्चे होंगे।
12: मुख्यमंत्री की तरफ से दोषियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई का ऐलान भी पीड़ितों के दिलों में सोते हुए सिस्टम के जागने का भरोसा नहीं जगा सकता।
16: इस पूरे मामले की तह में हम जाकर के दोषियों को सजा भी दे सकें और उन पीड़ित परिवारों के प्रति अपनी संवेदना भी व्यक्त कर सकें।
17: जांच कुछ नहीं होगी, सिर्फ कागजी कार्रवाई होगी और कुछ नहीं होगा वहाँ पे। ना आज तक हुआ ना आगे ऐसा होगा,
18: ऐसा चलता रहेगा। मेरे को कोई उम्मीद नहीं है, चाहे जो गवर्नमेंट आ जाए, लोग ही ऐसे हैं, पैसे दे के सब पास हो जाता है, अब वो ऐसे होता रहेगा, तो इसमें मुझे उम्मीद नहीं है।
19: हादसा हो जाने के बाद किसी कोई बात करे, क्या वापस कर सकता है? वो वापस तो नहीं कर सकता, केवल समस्या को समाधान करने के लिए, सुलझाने के लिए बस केवल आश्वासन देंगे। पर
12: पहले की तरह लखनऊ अग्निकांड के बाद पीछे है परिजनों की पीड़ा, रोते बिलखते लोग, जांच और मुआवजे की खाना पूर्ति, लेकिन पीड़ितों के आंसुओं का हिसाब न कभी मिला, न मिलने की उम्मीद और न कोई दे पाया है। सोचिए, रिहायशी इलाके में नियमों को ताक पर रखकर खड़ी की गई ये कमर्शियल बिल्डिंग न सिर्फ अवैध थी बल्कि सुरक्षा के लिहाज से एक डेथ ट्रैप बन चुकी थी, लेकिन न देखने वाला कोई, न सुनने वाला कोई। आम जनता हादसे का शिकार बनती है तो बनती रहे। लखनऊ में हुए अग्निकांड में 15 जिंदगियां मौत के गाल में समा गई। अगर जिम्मेदारों ने आंखों पर रिश्वत की पट्टी नहीं बांधी होती तो ये बच जाते। यही है आम जनता की सुरक्षा की गारंटी, मतलब सिस्टम के भरोसे नहीं बल्कि भगवान के भरोसे जियो। जबकि माननीय और साहब तो पूरे ठसक के साथ सुरक्षा के वीवीआईपी प्रोटोकॉल में चलते हैं। मजार है कि बिना इजाजत परिंदा भी पर मार दे, क्योंकि माननीय और सरकारी लाट साहबों की जिंदगी का मोल है और आम जनता की जिंदगी का कोई नहीं।
15: अभी अपने को कुछ होता तो प्रशासन तुरंत दौड़ जाएगा। ये वीआईपी यहाँ पर जब मंत्री निकलते तो तुरंत रास्ता बंद कर दिया जाता, आम आदमी खड़ा रहता है, बच्चे धूप में स्कूल चलाते भी लगते, तब गवर्नमेंट को तरस नहीं आता जनता पे।
12: अगर आम जनता की जिंदगी की परवाह होती तो लखनऊ के अलीगंज में सरकारी तंत्र की नाक के नीचे मौत की इमारत कभी खड़ी नहीं होती। इमारत की नींव से लेकर छत पर लगी आखिरी ईंट तक में सरकारी भ्रष्टाचार का सीमेंट भरा पड़ा। इतना मजबूत सीमेंट कि कोई हिसाब नहीं। ये सब कैसे हुआ ये भी समझिए। सरकार की हर साख पर 15 बेगुनाहों के खून के छींटे, एक नहीं बल्कि चार चार विभागों की अंधेर गर्दी आम जनता की जिंदगी पर भारी पड़ी। मौत की बिल्डिंग अवैध थी लेकिन सिस्टम की आंखें बंद थी। आज कटघरे में खड़ा है लखनऊ विकास प्राधिकरण, लखनऊ नगर निगम और उसके कर्ता धर्ता। सवाल यही कि दोनों विभागों ने अपनी जिम्मेदारी क्यों नहीं निभाई, भ्रष्टाचार की इमारत क्यों खड़ी। ये तब है जब लखनऊ विकास प्राधिकरण जिस विभाग को रिपोर्ट करता है उसके मुखिया सीधे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ है। मुख्यमंत्री की नाक के नीचे काम करने वाले हाउसिंग एंड अर्बन प्लानिंग विभाग की अंधेरगर्दी ने जिंदगी के 15 चिराग बुझा दिए, जिसके लिए सीधे जिम्मेदार हाउसिंग एंड अर्बन प्लानिंग विभाग के मुख्य सचिव पी गुरुप्रसाद, एलडीए के चेयरमैन रोशन जैकब, एलडीए के वीसी प्रथमेश कुमार, लखनऊ नगर निगम के नगर आयुक्त गौरव कुमार, जो नगर विकास मंत्री अरविंद कुमार शर्मा को रिपोर्ट करते हैं। इनका जिम्मा अवैध निर्माण को रोकना और अवैध निर्माण को ढहाना। आंखें बंद थी तो कोई वक्त रहते एक्शन कभी नहीं लिया गया। सरकारी व्यवस्था में अव्यवस्था का दीमा सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं था। सरकारी मुलाजिमों को पता था अलीगंज में खड़ी मौत की इमारत कभी भी आम जनता का जीवन छीन सकती है, लेकिन सब कुछ जानते हुए भी बिजली विभाग ने आंखें मूंदे रखी। अवैध बिल्डिंग में मांग से ज्यादा बिजली खपत के बावजूद बिजली विभाग के कान जू कभी नहीं रहेंगी। सब कुछ चलता है, चलता रहेगा के हिसाब से चलता रहा। बिजली विभाग ने अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाई, जिसके मंत्री हैं अरविंद कुमार शर्मा और जिम्मेदार हैं यूपीपीसीएल के चेयरमैन और लखनऊ की बिजली आपूर्ति का जिम्मा संभाल रहे अफसर आशीष कुमार गोयल। वक्त रहते बिजली विभाग ने कार्रवाई की होती 15 जिंदगी बच जाती।
20: ऐसी घटनाएं न हो इसके लिए पूरी तरह सजगता के साथ हम और पूरी सरकार प्रयास करेंगे और ये देखेंगे कि ऐसी घटनाओं का जो भी कारण है वो भविष्य में ऐसी घटनाओं के कारण न बने।
12: ऐसा पहली बार नहीं हुआ कि योगी के राज में सरकारी सिस्टम की लापरवाही जानलेवा साबित हुई। इससे पहले भी सिस्टम की लापरवाही के चलते कई बार लोग बेमौत मारे गए, लेकिन जिम्मेदारों पर कार्रवाई आज तक नहीं हुई। यही है योगी सरकार का ट्रैक रिकॉर्ड और रिपोर्ट कार्ड। महाकुंभ भगदड़, 37 श्रद्धालुओं की मौत, कोई बड़ा अफसर नहीं नपा। हाथरस सत्संग भगदड़, 121 लोगों की मौत, कोई बड़ा अफसर नहीं नपा। झांसी मेडिकल कॉलेज आग, 18 नवजात बच्चों की मौत, किसी बड़े अफसर पर गाज नहीं गिरी। आगरा नोएडा एक्सप्रेसवे हादसा, 19 यात्रियों की मौत, कोई अफसर नहीं नपा। जब सिस्टम की सोच पर सिर्फ आश्वासन का पर्दा पड़ा हो तो जिम्मेदार हर बार अपनी जवाबदेही से बच जाते हैं और आम जनता की जान चली जाती है।
0: लखनऊ अग्निकांड ने 15 नौजवानों की जिंदगी के दियों को बुझा दिया। मरने वालों में ज्यादातर ट्रेनी या स्टूडेंट्स थे, जो कामयाबी के पंख लगाकर अपने सपनों को हकीकत में बदलना चाहते थे, लेकिन उनकी मेहनत और मंजिल के बीच सरकारी व्यवस्था मौत बनकर खड़ी हो गई। मंजिल से पहले ही अंधेरगर्दी की आग में 15 परिवारों की खुशियों को ग्रहण लग गया है।

0: 24 साल के आदित्य श्रीवास्तव अब इस दुनिया में नहीं हैं। एक माँ ने अपनी आंखों के सामने जिगर के टुकड़े को हमेशा के लिए खो दिया। दिल में कसक यही है कि सरकारी सिस्टम की नींद वक्त रहते टूटी होती तो शायद बेटा आज जिंदा होता।
1: देखा है मैंने, सब देखा। मैं बराबर यही कह रही थी कि एकदम से देखा था मैंने सब, जिस तरह से इस समय भी मैंने देखा कि सीएम साहब आने वाले थे, किया जा रहा था, उस टाइम उस तरह से ये भी ध्यान दिया जाता तो हो सकता है बच्चे बच जाते।
2: मेहनत कर लिया थी,
1: हाँ बच्चे बचाए जा सकते थे। जॉब करता था, एनिमेशन कोर्स का ये स्टूडियो है, वहीं पे जॉब करता था।
0: पहले सरकारी अनदेखी ने आदित्य को मौत के मुंह में पहुंचाया और फिर सरकारी लापरवाही जिंदगी पर भारी पड़ गई। आदित्य सीतापुर से लखनऊ आया था, सोचा था एनिमेशन एंड गेमिंग ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में मिली नौकरी के बाद अपने पैरों पर खड़ा हो जाएगा, लेकिन किसे पता था कि सरकारी सिस्टम आदित्य की जिंदगी के पैर ही उखाड़ देगा।
3: ये सबसे बड़ी दर्दनाक घटना हुई कि माँ के सामने बेटा अंदर।
4: तो माँ आदित्य की उस वक्त जहाँ पर वो पूरा संस्थान बना है वहाँ, मतलब बाहर मौजूद हैं, और सामने उनका जहाँ पर वो ऑफिस बना है वो धधक रहा है।
3: तो वो आग लग चुकी थी जब पहुंची, आग लग चुकी थी, फिर उसके बाद जो है बुझाने का और निकलने का काम हो रहा था, जो कुछ हो रहा था। जो है कि बनना बड़ा हुनरमंद, बड़ा मतलब एक चीज है, बड़ा हौसले वाला। कभी ये वो उसके दिमाग था ही नहीं कि चार आदमी है तो हम निपट नहीं लेंगे, हिम्मत ही बहुत था।
0: घर वालों के मुताबिक आदित्य बचपन से पढ़ने में होशियार था, हमेशा फर्स्ट डिवीजन में पास हुआ था। आदित्य की हसरत मेहनत के दम पर इतना ऊंचा मुकाम हासिल करने की थी जिससे पूरे घर को नाज हो, लेकिन किसे पता था कि आदित्य की मौत के साथ एक सपना भी हमेशा के लिए टूट जाएगा। आज आदित्य की मौत पर घर वालों के आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे और जुबान पर सरकारी व्यवस्था के खिलाफ जबरदस्त आक्रोश है।
3: जैसे ये तो हम जरूर कहना चाहेंगे कि इस तरीके से भी दिल्ली में कांड हुआ और ये टाइ फिस हो जाएगी चार दिन के बाद। वो अधिकारी वो कैसे नहीं, कैसे नक्शा पास कर दिए, कैसे क्या कर दिए, हाँ। अब उसमें होता है कि अभी सब पनिश किए जाएंगे, सब कुछ किया जाएगा। अब उसके बाद
4: आपका कहना है कि चार दिन में सब भूल जाएंगे?
3: सात दस दिन के बाद सब भूल जाते हैं। हम तो आज जो है कि 65 साल का मैं हूँ, तो 65 साल से जो है कि सब देखते तो चले आ रहे हैं। आप
0: आदित्य उस दुनिया में चला गया जहां से कोई लौट कर नहीं आता, लेकिन परिवार यही चाहता है कि दोषियों का हिसाब होना चाहिए ताकि भविष्य में किसी और परिवार पर दुखों का ऐसा पहाड़ ना टूटे। जिस घर में बेटे की जल्द बारात निकलनी थी, आज उसी घर में बेटे की अर्थी उठाने की तैयारी चल रही है। 27 साल के नीलेश कुमार उन बदनसीबों में एक हैं जिनकी दर्दनाक अग्निकांड में मौत हो गई। आज एक तरफ मातम है तो दूसरी तरफ सरकार के खिलाफ गुस्सा।
4: अपने माता पिता का इन्होंने पेंटिंग किया
5: जी, बहुत अच्छी स्केचिंग पेंटिंग करते थे, बहुत अच्छी फाइलें बनाते थे, इतने अच्छे अच्छे सिस्टम पे, बहुत बढ़िया।
4: जिम्मेदारी तय होनी चाहिए जो घटना हुई है उसकी।
5: उसकी जिम्मेदारी गवर्नमेंट है, ये शासन प्रशासन है जो हमारे नीलेश को क्या, उसमें जितने बेचारे बच्चे थे उनको सुख सुविधा देते तो आज फायर ब्रिगेड टाइम से पहुंच जाते। तो आज मेरा देवर, मेरा
4: 25 मिनट देर पहुंची है जो लोगों ने बताया,
5: 45 मिनट 25 मिनट जो भी पहुंची है। अगर आज वहीं पर पास में ही है, ज्यादा दूर नहीं था, अलीगंज थाना कितनी दूर है वहां से, पुरनिया कितनी दूर है, आ सकती थी गवर्नमेंट बचाने, लेकिन नहीं, शासन प्रशासन की गलती है, योगी दोषी है, मोदी दोषी है इसके।
4: कह रहे हैं SIT बना ली है हमने,
5: SIT बनाए चाहे कुछ भी बनाए, लेकिन मेरे देवर को तो वापस नहीं दे सकते।
0: बीते दिन जब नीलेश ऑफिस के लिए घर से निकले थे तो पिता को यही कहा था कि शाम को मुलाकात होगी और पिता ने कहा था बेटा संभल कर जाना, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था।
6: मैं कहता हूँ बच्चा बेटा ठीक से जाना, आराम से जाना, भले दो चार मिनट लेट पहुँचो लेकिन सुरक्षित जाना, ढंग से जाना, बस यही बात होते हैं। जाओ बेटा बाय करके चला जाता है, हेलो करके।
4: लगता था कि ये उसकी जिंदगी का आपके लिए एक आखिरी बाय होगा?
6: नहीं, ये कभी महसूस ही नहीं किया हमने, ये हमको महसूस नहीं हो रहा था उस समय, कोई ऐसी दिक्कत ही नहीं थी उस तरीके की। खुशी से गया, खुशी से आता था, ऑफिस से निकलने के बाद जिम जाता था, जिम से फिर घर वापस आता था, बराबर बात हुआ करती थी।
0: हादसे से चंद घंटे पहले पिता शत्रुघ्न लाल से नीलेश की बात हुई थी और फिर दोपहर को आई सीना चीर देने वाली खबर। हादसे ने परिवार को ऐसे जख्म दिए हैं जिसे वक्त का मरहम भी कभी नहीं भर पाएगा।
7: पेंटिंग्स के शौकीन 27 वर्षीय नीलेश को शायद ही मालूम था कि महज दो दिन पहले लगाई गई ये नई नवेली पेंटिंग देखने के लिए अपने ही कमरे में, जहां वो सोता उठता बैठता काम करता, वही मौजूद नहीं रहेगा।
0: 24 साल का अब्दुल रहमान घर का इकलौता सहारा था। चंद महीने पहले नौकरी मिली थी, सोचा था घर वालों की तंगहाली को खुशहाली में बदल देगा, लेकिन एक झटके में परिवार की सारी खुशियां ताश के पत्तों की तरह बिखर गईं।
8: ये 3 बजे जब आग लगी है तब तो हमने खुद ही सोशल साइट पे डाला था, तब तक हमें नहीं पता था। अभी 8 बजे पता चला कि हमारा भतीजा रहमान भी इस आग का शिकार हो गया।
0: अब्दुल के कंधों पर पूरे परिवार की जिम्मेदारी थी, दिव्यांग पिता और बहन का सहारा था। एनिमेशन का कोर्स करने के बाद अब्दुल को नौकरी मिली, लेकिन वही दफ्तर अब्दुल की मौत की वजह बन गया।
8: घर में पिताजी विकलांग हैं, माँ टीचरिंग करती थी, बच्चा अभी दो ही तीन महीने हुए जॉब पे था, काम भी करता था, वहीं पढ़ाई भी करता था।
9: अब परिवार की कैसे जिम्मेदारी और क्या चाहते हैं आप लोग इस पूरी घटना पर?
8: हम लोग चाहते हैं इस पर जांच हो और ज्यादा से ज्यादा परिवार को मुआवजा दिया जाए, ताकि उसकी मां की भी कोई ऐसी स्थिति नहीं हो। परिवार में कोई दूसरा कमाने वाला नहीं था, इकलौता बच्चा था, यही पालन पोषण करता था, घर की देखभाल करता।
10: कांग्रेस ने मध्य प्रदेश की मोहन यादव सरकार पर बड़ा हमला बोला है। मध्य प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष जीतू पटवारी ने आरोप लगाया है कि मोहन यादव और उनके परिवार ने उज्जैन में जहां जमीनें खरीदी वहीं से परियोजनाएं निकाली गई हैं।
0: मध्य प्रदेश कांग्रेस ने बाकायदा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सीएम मोहन यादव पर उज्जैन में जमीन खरीदी को लेकर सनसनीखेज आरोप लगाए। कांग्रेस का आरोप है कि मुख्यमंत्री बनने के बाद मोहन यादव और उनके परिवार की ओर से जमीन खरीद में तेजी आई और जिन क्षेत्रों में बाद में विकास परियोजनाएं घोषित हुई वहां पहले से जमीन खरीदी गई। जीतू पटवारी ने कहा कि उज्जैन में जमीन खरीद का मामला भी गंभीर सवाल खड़े कर रहा है।
11: मुख्यमंत्री परिवार की सभी कंपनियों के हिस्सेदार फॉरेंसिक ऑडिट कराने के लिए तैयार है। मीडिया रिपोर्ट्स ने दावा किया कि भूमि खरीदी के कुछ समय बाद ही हाउसिंग प्रोजेक्ट बिल्डर एग्रीमेंट शुरू हो गए उन जमीनों पर। क्या पहले नियोजित व्यवसाय की रणनीति का हिस्सा था कि जमीन खरीदेंगे, मास्टर प्लान में चेंज आएंगे, परियोजना लाएंगे, उस बीच में रियल एस्टेट कंपनी से हम अपना एग्रीमेंट करेंगे और जो 10 रुपए की जमीन है वो 1000 रुपए की करेंगे, ये पहले से प्लान आउट था क्या? क्या ये सही है कि कुछ परियोजनाओं में भूमि मालिकों के विकसित संपत्ति 60% से 70% का हिस्सा है जिनकी भूमि है मुख्यमंत्री की हो उसके परिवार की?
12: जीतू पटवारी के मुताबिक मोहन यादव 2021 में मंत्री बने थे, 13 दिसंबर 2023 में वो मुख्यमंत्री बने। 21 से 23 के बीच में उनके परिवार के निकट सदस्यों के पास लगभग 194 प्लॉट बने। उनके परिवार के पास अलग अलग जगहों पर 253 एकड़ जमीनें हैं। उन्होंने आरोप लगाया है कि 21 से 25 के बीच में 253 एकड़ जमीनें खरीदी गई हैं। सूत्रों के मुताबिक सीएम दफ्तर ने इस पर सफाई दी है, जिसमें लिखा है कि मुख्यमंत्री मोहन यादव ने दिसंबर 2023 में मुख्यमंत्री बनने के बाद कोई जमीन नहीं खरीदी है। मुख्यमंत्री मोहन यादव की पत्नी सीमा यादव ने भी उनके मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री बनने के बाद कोई जमीन नहीं खरीदी है। मोहन यादव का दफ्तर इस पर बाद में एक विस्तृत रिपोर्ट भी जारी करेगा। आज तक ब्यूरो।
10: इसी के साथ हम यहां रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए। आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आज तक।

0: लखनऊ अग्निकांड पर सीएम योगी की समीक्षा बैठक का फायर सेफ्टी मानकों से समझौता नहीं। अखिलेश बोले बीजेपी राज में पास नक्शों का हो हिसाब। ब्रिजेश पाठक ने मौत पर राजनीति न करने की नसीहत दी। चार आरोपियों को न्यायिक हिरासत। राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में एसआईटी ने यूपी सरकार को सौंपी प्रारंभिक रिपोर्ट। फिलहाल किसी को क्लीन चिट नहीं। कुछ कर्मचारियों पर केस की सिफारिश। एसपी सांसद अवधेश प्रसाद ने सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के तहत जांच की मांग की। भोजपुर के भरत तिवारी एनकाउंटर पर एक्शन। जगदीशपुर के एसडीपीओ शाहपुर थानाध्यक्ष समेत कई पुलिसकर्मियों पर एफआईआर। बवाल के बाद बैकफुट पर बिहार पुलिस। नीट पर आज तक से बोले धर्मेंद्र प्रधान, लीग के मुजरिमों को छोड़ेंगे नहीं। दोबारा गड़बड़ी रोकने की पूरी कोशिश। राहुल गांधी पर लगाया छात्रों को भड़काने का आरोप। पद्म पुरस्कारों से 65 हस्तियां सम्मानित। शिबू सोरेन को मिला मरणोपरांत पद्म भूषण। रोहित शर्मा, अलका याग्निक, ममूटी को राष्ट्रपति ने दिया सम्मान। लखनऊ अग्निकांड ने सिर्फ एक शहर को नहीं बल्कि पूरे देश को हिलाकर रख दिया है। 15 लोग जलकर मर गए, वो भी उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में, जहां से सरकार चलती है, जहां बुलडोजर से लेकर एनकाउंटर तक के ऑर्डर निकाले जाते हैं। लेकिन एक बिल्डिंग जो रिहायशी इमारत के तौर पर बनाई जाती है और उसे कमर्शियल में तब्दील कर दिया जाता है, और राजधानी में बैठे सत्ताधीश बड़े बड़े ऑफिसर उससे आंखें मूंद लेते हैं, और वही बिल्डिंग 15 मौतों का मरघट बनकर स्याह खड़ी रहती है। वही जिम्मेदार है, वही सत्ताधीश इमारत का मुआयना करने पहुंचते हैं। सवाल सिर्फ यही इन्हीं ऑफिसर से, इन्हीं सत्ताधीशों से, कि क्या वो 15 मौतों की जिम्मेदारी लेकर खुद को आईना दिखा पाएंगे।
1: 15 लोग जिंदा जल गए, क्या जिंदगी इतनी सस्ती है?
2: ये पापा बचाओ कैसे भी करके, आग लग गए।
1: पहले ऐसा मुआयना होता तो अग्निकांड क्यों होता? पंद्रह मौतों का सवाल है, जिम्मेदारों को जवाब तो देना पड़ेगा। कैसे एक रिहायशी बिल्डिंग कमर्शियल में बदल गई? किस किस का भ्रष्टाचार 15 बेगुनाहों की मौत का कारण बना?
3: माँ के सामने बेटा अंदर,
4: मौके कोई था ही नहीं, बंद था सब। इसके लिए सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए।
5: परिवार पे जो भी इतनी बढ़िया परिवार समझ सकता है।
1: अब लखनऊ का पूरा प्रशासनिक अमला, सारे दिग्गज अधिकारी इस जलकर खाक हो चुकी इमारत के चप्पे चप्पे को नाप रहे हैं। आग कैसे लगी, कहां से लगी, कैसे फैली, और कैसे 15 लोग इस अग्निकांड में जिंदा जल गए। जांच के लिए लखनऊ के अलीगंज की इस 3 मंजिला इमारत में लगी भीषण आग की वजह जानने के लिए और जांच करने के लिए एसआईटी का गठन किया गया है। इसमें अपर मुख्य सचिव पर्यटन अमृत अभिजात और एडीजी लखनऊ जोन प्रवीण कुमार को शामिल किया गया है। लखनऊ के ये दिग्गज अफसर 7 दिन के भीतर अपनी रिपोर्ट तैयार करके सीएम योगी को भेजेंगे। लेकिन जिस तरह से इस खाक हुई बिल्डिंग में अधिकारी अब खाक छान रहे हैं, अगर आग लगने से पहले इस कॉम्प्लेक्स की पड़ताल की गई होती और सिस्टम भ्रष्टाचार की भेंट ना चढ़ा होता, तो 15 बेगुनाह लोग इस अग्निकुंड में ना समाये होते। इस तरह से पीड़ित परिवारों के आंसू ना बह रहे होते।
6: एसआईटी की टीम में प्रवीण कुमार जो एडीजी है जोन वो, और साथ साथ अमृत अभिजात मौजूद है, जिन्होंने इंस्पेक्शन किया है, जांच की है इस पूरे मामले की, कि आखिर किस तरीके से यहां पर ये घटना घटी है। इस एसआईटी रिपोर्ट बनाकर चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ को दी जाएगी और अब यहाँ पर माइक्रो लेवल पर हर उस चीज की जांच की जा रही है और परखा जा रहा है कि आखिर इस पूरे मामले पर क्या है। सर, क्या क्या आपने जांच किया है अंदर, किस तरीके से?

0: अग्निकांड की परतें जब एक एक करके खुल रही हैं, तो साफ साफ नजर आ रहा है कि ये कोई हादसा नहीं बल्कि सामूहिक हत्याकांड है, जिसको उन भ्रष्ट अधिकारियों, अफसरों, जिम्मेदारों ने खुलेआम दिन दहाड़े बेखौफ होकर अंजाम दिया है।
1: एक बॉक्स नुमा ये बिल्डिंग है, इस बॉक्स नुमा बिल्डिंग के अंदर ही लोग सिर्फ इसी से, जो बच्चे थे, जो लोग थे, वो इसी छोटे से रास्ते से, और कोई रास्ता था ही नहीं, ये इस रास्ते से अंदर जाना, बाहर जाना। और जब आग लग गई तो उसकी वजह से धुएं ने और आग ने अफरा तफरी मच गई और लोग फंस गए। मतलब 3 फ्लोर की ये बिल्डिंग, उसके बाद ये बेसमेंट, टोटली अगर कहा जाए तो सिर्फ और सिर्फ सुरक्षा मानकों को दरकिनार करके ये बनाया गया।
0: लखनऊ के उस अलीगंज में ये कॉम्प्लेक्स है जहां से हर छोटे बड़े अफसर से लेकर नेताओं की गाड़ियां गुजरती होंगी। इस 3 मंजिला कॉम्प्लेक्स को रिहायशी इमारत से कब कमर्शियल में तब्दील कर दिया गया और कब इसमें एनिमेशन सेंटर चलना शुरू हो गया, इसकी न कभी जांच की गई, न कभी पड़ताल, लेकिन भ्रष्टाचारियों की मुट्ठियां गर्म करके इसे मौत का कॉम्प्लेक्स बना दिया गया। सवाल इस अग्निकांड या कहें हत्याकांड के जिम्मेदारों से है, फायर डिपार्टमेंट ने कैसे अनदेखी की, कैसे लखनऊ डेवलपमेंट अथॉरिटी यानी LDA ने इसमें घोर लापरवाही बरती। 2016 में बनाए गए NBC यानी नेशनल बिल्डिंग कोड 2016 के नियमों की अनदेखी की गई।
2: जो मकान मालिक हैं, क्योंकि बिल्डिंग आवासीय में पहले पास थी, बाद में उन्होंने कमर्शियल रूप में उसका इस्तेमाल करना जब शुरू कर दिया है, तो उनको फायर नाम से पूरा करना चाहिए था, आग बुझाने की पूरी व्यवस्था करनी चाहिए थी, लेकिन आग बुझाने की पूरी व्यवस्था में समुचित रूप से किया नहीं था, इसलिए मकान मालिक की जिम्मेदारी ज्यादा बनती है वहां पर। दूसरी बात है कि जो अगर वो कमर्शियल रूप में इस्तेमाल कर ही रहे हैं, तो वहां पर जो बिजली विभाग था, उन्होंने उनका लोड सैंक्शन किया होगा कि कितनी AC चल रही है, कितना बिजली का खर्चा इनका आ रहा है, उस हिसाब से उनको वहां पर देखना चाहिए था, लेकिन उन्होंने मुझे लगता है देखा नहीं ध्यान से। और जो LDA है, LDA की एरिया में आता है, तो LDA ने क्या चीज देखा, ये उनकी जिम्मेदारी बनती है।
0: जब ये बिल्डिंग रिहायशी से कमर्शियल कॉम्प्लेक्स में तब्दील हुई तो फायर ऑडिट क्यों नहीं किया गया, क्यों रिहायशी बिल्डिंग के कमर्शियल में बदलने पर LDA के अफसरों ने सर्वे नहीं किया, या फिर इन अफसरों के पहुंचने से पहले ही उनकी जेब उनकी कुर्सी पर ही गर्म कर दी गई। बड़ी बात यह भी है कि जिस इमारत में हादसा हुआ वहां 20 किलोवाट का कमर्शियल बिजली कनेक्शन स्वीकृत था। जांच में सामने आया है कि वास्तविक बिजली लोड बढ़कर 34 KVA से ज्यादा हो गया था। अप्रैल महीने में इमारत का लोड 24.30 KVA दर्ज किया गया था, जो जून में और बढ़ गया। जानकारों के मुताबिक स्वीकृत क्षमता से कहीं अधिक लोड होने से तारों और ट्रांसफार्मर पर भारी दबाव था। भीषण गर्मी और ओवरलोडिंग के कारण शॉर्ट सर्किट की आशंका कई गुना बढ़ गई। बिजली विभाग ने मौके पर जाकर लोड चेक क्यों नहीं किया, कितना लोड कागजों में है और कितना बिजली का लोड खपत में आ रहा है, अगर इसकी चेकिंग की गई होती तो इतना बड़ा अग्निकांड नहीं हुआ होता।
3: जो कार्रवाई है उसकी बात कर लेते हैं, तो सरकार सबसे पहले तो पुरनिया के जो थाना प्रभारी हैं, उन्होंने FIR की, 6 लोगों पर मुकदमा तहरीर दी गई है, मुकदमा दर्ज हुआ, 4 गिरफ्तार कर लिए गए हैं, जिसमें इस मकान के ओनर, इस मकान के 2-2 जो ओनर हैं जिन्होंने कमर्शियल कॉम्प्लेक्स बनाया है और जिनकी कंपनियां यहाँ कार्यरत थी।
0: 3 मंजिला इस कॉम्प्लेक्स में बेसमेंट भी बनाया गया था, एंट्री एग्जिट के लिए सिर्फ एक छोटा सा रास्ता था और इस रास्ते के ऊपर 7 पैनल, 2 एग्जॉस्ट फैन, इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल पैनल लगाकर रास्ते को और छोटा कर दिया गया था। इमारत के मालिकों और सेंटर संचालकों ने इसे अनदेखा किया।
4: 2 बातें बहुत अहम हैं। एक तरफ जो तमाम जो जांचें चल रही हैं वो अपनी जगह है, लेकिन शायद 2 बातें अगर इसमें हो गई होती तो इतने बच्चों की जान नहीं जाती। एक, जो बायोमेट्रिक जिसके जरिए एक्सेस था उस एनिमेशन का, जो इंस्टीट्यूट है उसके भीतर जाने और आने का, अगर वो बायोमेट्रिक लॉक नहीं हुआ होता यानी कि, तो शायद बच्चे निकल सकते थे। दूसरी बात, ऊपर अगर आपको दिखाएं तो आप देखिए ऊपर में एक पेंट हाउस जैसा है, यानी कि वो मकान मालिक जो है उसका अपना घर है, और कहा यह जा रहा है कि अगर ऊपर का घर का अगर सीढ़ी का रास्ता खुला होता तो भी ऊपर बच्चे भाग कर जान बचा सकते थे।
0: अब सवाल यही है कि जिस लखनऊ से बुलडोजर और एनकाउंटर के सीधे ऑर्डर निकलते हैं, वहां से भ्रष्टाचार के खिलाफ ऑर्डर क्यों नहीं निकलते, आखिर भ्रष्टाचार की आग कैसे बुझेगी। आज तक ब्यूरो।
5: लखनऊ अग्निकांड सरकारी महकमों की अंधेरगर्दी का साक्षात प्रमाण है, क्योंकि हादसे ने सरकारी दावों और जमीनी हकीकत के बीच की खाई को उजागर करके रख दिया है। सवाल जवाबदेही का है, पीड़ितों के परिजनों के

0: का है। सवाल ये भी है कि जिस महकमे की कमान सीधे मुख्यमंत्री के हाथों में है, आखिर उस विभाग ने आम जनता को भगवान के भरोसे कैसे छोड़ दिया? क्या सीएम को ऑफिसर्स ने अंधेरे में रखा था, या फिर उत्तर प्रदेश में जनता की जान की कोई कीमत ही नहीं है?
1: ना कुछ देखेंगे ना कुछ सुनेंगे, क्योंकि जिंदगी लेना और देना तो ऊपर वालों के हाथों में है। ऐसे में जिम्मेदारों की जवाबदेही का कोई सवाल नहीं उठता। हादसे में मौत हुई तो साहब ने मौके का मुआयना कर लिया, जांच के आदेश दे दिए गए, मुआवजे का ऐलान कर दिया, संवेदना जताते हुए दो शब्द भी कह दिए। अब मृतकों की जान लौटाई तो जा नहीं सकती, तो इससे ज्यादा उनके परिजनों को क्या चाहिए? सरकार तो अपनी जिम्मेदारी पूरी तत्परता से निभा रही, फिर हादसा होगा, फिर यही सरकारी रस्म अदा कर दी जाएगी। मतलब ना तो सिस्टम बदलेगा, ना जिम्मेदार अपनी सोच बदलेंगे। यही होता आया है, यही होता रहेगा, क्योंकि योगी सरकार के उत्तम प्रदेश में जनता की जिंदगी सरकारी सिस्टम के आगे सस्ती है। इतनी सस्ती कि अब पूरे सिस्टम से लोगों का भरोसा उठ चुका है। अतीत में हुए हादसों से लेकर लखनऊ अग्निकांड तक जिम्मेदारों के रवैये से पीड़ित इतना टूट चुके हैं कि ना उम्मीदी के अंधेरे में इंसाफ के उजाले की उम्मीद अब बेमानी है।
2: और ये ट्राई फिर हो जाएगी चार दिन के बाद। वो अधिकारी वो कैसे नहीं, कैसे नक्शा पास कर दिए, कैसे क्या कर दिए, हाँ। और उसमें होता है कि अभी सब पनिश किए जाएंगे, सब कुछ किया जाएगा। अब उसके बाद
3: आपका कहना है कि चार दिन में सब भूल जाएंगे?
2: 7-10 दिन के बाद सब भूल जाते हैं।
4: एसआईटी बनाए चाहे कुछ भी बनाए, लेकिन मेरे देवर को तो वापस नहीं दे सकते ना। कितनों के घर उजड़ गए, कितने देवर, कितने भाई बहन, किसके किसके बच्चे होंगे सर। वो बेचारे नहीं रहे अब इस दुनिया में, क्या करेंगे? उनके माँ किसी का वो एक सहारा, किसी के इकलौते बच्चे होंगे।
1: मुख्यमंत्री की तरफ से दोषियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई का ऐलान भी पीड़ितों के दिलों में सोते हुए सिस्टम के जागने का भरोसा नहीं जगा सकता।
5: इस पूरे मामले की तह में हम जाकर के दोषियों को सजा भी दे सकें और उन पीड़ित परिवारों के प्रति अपनी संवेदना भी व्यक्त कर सकें।
6: जांच कुछ नहीं होगी, सिर्फ कागजी कार्रवाई होगी और कुछ नहीं होगा वहाँ पे। ना आज तक हुआ ना आगे ऐसा होगा,
7: ऐसा चलता रहेगा। मेरे को कोई उम्मीद नहीं है, चाहे जो गवर्नमेंट आ जाए, लोग ही ऐसे हैं, पैसे दे के सब पास हो जाता है, अब वो ऐसे होता रहेगा, तो इसमें मुझे उम्मीद नहीं है।
8: हादसा हो जाने के बाद किस चीज कोई बात करे, क्या वापस कर सकता है? वो वापस तो नहीं कर सकता, केवल समस्या को समाधान करने के लिए, सुलझाने के लिए केवल आश्वासन देंगे। पर
1: पहले की तरह लखनऊ अग्निकांड के बाद पीछे है परिजनों की पीड़ा, रोते बिलखते लोग, जांच और मुआवजे की खाना पूर्ति, लेकिन पीड़ितों के आंसुओं का हिसाब न कभी मिला, न मिलने की उम्मीद और न कोई दे पाया है। सोचिए, रिहायशी इलाके में नियमों को ताक पर रखकर खड़ी की गई ये कमर्शियल बिल्डिंग न सिर्फ अवैध थी, बल्कि सुरक्षा के लिहाज से एक डेथ ट्रैप बन चुकी थी। लेकिन न देखने वाला कोई, न सुनने वाला कोई। आम जनता हादसे का शिकार बनती है तो बनती है। लखनऊ में हुए अग्निकांड में 15 जिंदगियां मौत के गाल में समा गई। अगर जिम्मेदारों ने आंखों पर रिश्वत की पट्टी नहीं बांधी होती तो ये बच जाते। यही है आम जनता की सुरक्षा की गारंटी। मतलब सिस्टम के भरोसे नहीं, बल्कि भगवान के भरोसे जियो। जबकि माननीय और साहब तो पूरे ठसक के साथ सुरक्षा के वीवीआईपी प्रोटोकॉल में चलते। मजाल है कि बिना इजाजत परिंदा भी पर मार दे, क्योंकि माननीय और सरकारी लाट साहबों की जिंदगी का मोल है और आम जनता की जिंदगी का कोई नहीं।
4: अभी अपने को कुछ होता तो प्रशासन तुरंत दौड़ जाएगा। ये वीआईपी यहाँ पर जब मंत्री निकलते तो तुरंत रास्ता बंद कर दिया जाता, आम आदमी खड़ा रहता है, बच्चे धूप में स्कूल चलाते भी लगते, तब गवर्नमेंट को तरस नहीं आता जनता पे।
1: अगर आम जनता की जिंदगी की परवाह होती तो लखनऊ के अलीगंज में सरकारी तंत्र की नाक के नीचे मौत की इमारत कभी खड़ी नहीं होती। इमारत की नींव से लेकर छत पर लगी आखिरी ईंट तक में सरकारी भ्रष्टाचार का सीमेंट भरा पड़ा है। इतना मजबूत सीमेंट कि कोई हिसाब नहीं। ये सब कैसे हुआ ये भी समझिए। सरकार की हर साख पर 15 बेगुनाहों के खून के छींटे हैं। एक नहीं बल्कि 4-4 विभागों की अंधेर गर्दी आम जनता की जिंदगी पर भारी पड़ी। मौत की बिल्डिंग अवैध थी लेकिन सिस्टम की आंखें बंद थी। आज कटघरे में खड़ा है लखनऊ विकास प्राधिकरण, लखनऊ नगर निगम और उसके कर्ता धर्ता। सवाल यही कि दोनों विभागों ने अपनी जिम्मेदारी क्यों नहीं निभाई, भ्रष्टाचार की इमारत क्यों खड़ी थी। ये तब है जब लखनऊ विकास प्राधिकरण जिस विभाग को रिपोर्ट करता है उसके मुखिया सीधे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। मुख्यमंत्री की नाक के नीचे काम करने वाले हाउसिंग एंड अर्बन प्लानिंग विभाग की अंधेर गर्दी ने जिंदगी के 15 चिराग बुझा दिए, जिसके लिए सीधे जिम्मेदार हाउसिंग एंड अर्बन प्लानिंग विभाग के मुख्य सचिव पी गुरुप्रसाद, एलडीए के चेयरमैन रोशन जैकब, एलडीए के वीसी प्रथमेश कुमार, लखनऊ नगर निगम के नगर आयुक्त गौरव कुमार, जो नगर विकास मंत्री अरविंद कुमार शर्मा को रिपोर्ट करते हैं। इनका जिम्मा अवैध निर्माण को रोकना और अवैध निर्माण को ढहाना। आंखें बंद थी तो कोई वक्त रहते एक्शन कभी नहीं लिया गया। सरकारी व्यवस्था में अव्यवस्था का दीमा सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं था। सरकारी मुलाजिमों को पता था अलीगंज में खड़ी मौत की इमारत कभी भी आम जनता का जीवन छीन सकती है, लेकिन सब कुछ जानते हुए भी बिजली विभाग ने आंखें मूंदे रखी। अवैध बिल्डिंग में मांग से ज्यादा बिजली खपत के बावजूद बिजली विभाग के कान जूं कभी नहीं रेंगी। सब कुछ चलता है, चलता रहेगा के हिसाब से चलता रहा। बिजली विभाग ने अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाई, जिसके मंत्री हैं अरविंद कुमार शर्मा और जिम्मेदार हैं यूपीपीसीएल के चेयरमैन और लखनऊ की बिजली आपूर्ति का जिम्मा संभाल रहे अफसर आशीष कुमार गोयल। वक्त रहते बिजली विभाग ने कार्रवाई की होती 15 जिंदगी बच जाती।
9: ऐसी घटनाएं न हो इसके लिए पूरी तरह सजगता के साथ हम और पूरी सरकार प्रयास करेंगे और ये देखेंगे कि ऐसी घटनाओं का जो भी कारण है वो भविष्य में ऐसी घटनाओं के कारण न बने।
1: ऐसा पहली बार नहीं हुआ कि योगी के राज में सरकारी सिस्टम की लापरवाही जानलेवा साबित हुई। इससे पहले भी सिस्टम की लापरवाही के चलते कई बार लोग बेमौत मारे गए, लेकिन जिम्मेदारों पर कार्रवाई आज तक नहीं हुई। यही है योगी सरकार का ट्रैक रिकॉर्ड और रिपोर्ट कार्ड। महाकुंभ भगदड़, 37 श्रद्धालुओं की मौत, कोई बड़ा अफसर नहीं नपा। हाथरस सत्संग भगदड़, 121 लोगों की मौत, कोई बड़ा अफसर नहीं नपा। झांसी मेडिकल कॉलेज आग, 18 नवजात बच्चों की मौत, किसी बड़े अफसर पर गाज नहीं गिरी। आगरा नोएडा एक्सप्रेसवे हादसा, 19 यात्रियों की मौत, कोई अफसर नहीं नपा। जब सिस्टम की सोच पर सिर्फ आश्वासन का पर्दा पड़ा हो तो जिम्मेदार हर बार अपनी जवाबदेही से बच जाते हैं और आम जनता की जान चली जाती है।
0: लखनऊ अग्निकांड ने 15 नौजवानों की जिंदगी के दियों को बुझा दिया। मरने वालों में ज्यादातर ट्रेनी या स्टूडेंट्स थे, जो कामयाबी के पंख लगाकर अपने सपनों को हकीकत में बदलना चाहते थे, लेकिन उनकी मेहनत और मंजिल के बीच सरकारी व्यवस्था मौत बनकर खड़ी हो गई। मंजिल से पहले ही अंधेरगर्दी की आग में 15 परिवारों की खुशियों को ग्रहण लग गया है।

0: 24 साल के आदित्य श्रीवास्तव अब इस दुनिया में नहीं हैं। एक माँ ने अपनी आंखों के सामने जिगर के टुकड़े को हमेशा के लिए खो दिया। दिल में कसक यही है कि सरकारी सिस्टम की नींद वक्त रहते टूटी होती तो शायद बेटा आज जिंदा होता।
1: देखा है, मैंने सब देखा। मैं बराबर यही कह रही थी कि एकदम सीपा देखा था मैंने सब। जिस तरह से इस समय भी मैंने देखा कि सीएम साहब आने वाले थे, किया जा रहा था, अगर उस टाइम उस तरह से ये भी ध्यान दिया जाता तो हो सकता है बच्चे बच जाते।
2: मेहनत कर लिया थी,
1: हाँ बच्चे बचाए जा सकते थे। जॉब करता था, एनिमेशन कोर्स का ये स्टूडियो है, वहीं पे जॉब करता था।
0: पहले सरकारी अनदेखी ने आदित्य को मौत के मुंह में पहुंचाया और फिर सरकारी लापरवाही जिंदगी पर भारी पड़ गई। आदित्य सीतापुर से लखनऊ आया था, सोचा था एनिमेशन एंड गेमिंग ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में मिली नौकरी के बाद अपने पैरों पर खड़ा हो जाएगा, लेकिन किसे पता था कि सरकारी सिस्टम आदित्य की जिंदगी के पैर ही उखाड़ देगा।
3: ये सबसे बड़ी दर्दनाक घटना हुई कि माँ के सामने बेटा अंदर।
4: तो माँ आदित्य की उस वक्त जहाँ पर वो पूरा संस्थान बना है वहाँ मतलब बाहर मौजूद हैं, और सामने उनका जहाँ पर वो ऑफिस बना है वो धधक रहा है।
3: वो आग लग चुकी थी जब पहुंची, आग लग चुकी थी, फिर उसके बाद जो है बुझाने का और निकलने का काम हो रहा था, जो कुछ हो रहा था। जो है कि बनना बड़ा हुनरमंद, बड़ा मतलब एक चीज है, बड़ा हौसले वाला। कभी ये वो उसके दिमाग था ही नहीं कि चार आदमी है तो हम निपट नहीं लेंगे, हिम्मत ही बहुत था।
0: घर वालों के मुताबिक आदित्य बचपन से पढ़ने में होशियार था, हमेशा फर्स्ट डिवीजन में पास हुआ था। आदित्य की हसरत मेहनत के दम पर इतना ऊंचा मुकाम हासिल करने की थी जिससे पूरे घर को नाज हो, लेकिन किसे पता था कि आदित्य की मौत के साथ एक सपना भी हमेशा के लिए टूट जाएगा। आज आदित्य की मौत पर घर वालों के आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे और जुबान पर सरकारी व्यवस्था के खिलाफ जबरदस्त आक्रोश है।
3: जैसे ये तो हम जरूर कहना चाहेंगे कि इस तरीके से भी दिल्ली में कांड हुआ और ये टाई टाई फीस हो जाएगी चार दिन के बाद। वो अधिकारी वो कैसे नहीं, कैसे नक्शा पास कर दिए, कैसे क्या कर दिए, हाँ। अब उसमें होता है कि अभी सब पनिश किए जाएंगे, सब कुछ किया जाएगा। अब उसके बाद
4: आपका कहना है कि चार दिन में सब भूल जाएंगे?
3: सात दस दिन के बाद सब भूल जाते हैं। हम दे आज जो है कि 65 साल का मैं हूँ, तो 65 साल से जो है कि सब देखते तो चले आ रहे हैं। अब
0: आदित्य उस दुनिया में चला गया जहां से कोई लौट कर नहीं आता, लेकिन परिवार यही चाहता है कि दोषियों का हिसाब होना चाहिए ताकि भविष्य में किसी और परिवार पर दुखों का ऐसा पहाड़ ना टूटे। जिस घर में बेटे की जल्द बारात निकलनी थी आज उसी घर में बेटे की अर्थी उठाने की तैयारी चल रही है। 27 साल के नीलेश कुमार उन बदनसीबों में एक हैं जिनकी दर्दनाक अग्निकांड में मौत हो गई। आज एक तरफ मातम है तो दूसरी तरफ सरकार के खिलाफ गुस्सा।
4: अपने माता पिता का इन्होंने पेंटिंग किया
5: जी, बहुत अच्छी स्केचिंग पेंटिंग करते थे, बहुत अच्छी फाइलें बनाते थे, इतने अच्छे अच्छे सिस्टम पे, बहुत बढ़िया।
4: जिम्मेदारी तय होनी चाहिए जो घटना हुई है उसकी।
5: उसकी जिम्मेदारी गवर्नमेंट है, ये शासन प्रशासन है जो हमारे नीलेश को क्या, उसमें जितने बेचारे बच्चे थे उनको सुख सुविधा देते तो आज फायर ब्रिगेड टाइम से पहुंच जाती। तो आज मेरा देवर मेरा
4: 25 मिनट देर पहुंची है जो लोगों ने बताया,
5: 45 मिनट 25 मिनट जो भी पहुंची है। अगर आज वहीं पर पास में ही है, ज्यादा दूर नहीं था, अलीगंज थाना कितनी दूर है वहां से, पुरानिया कितनी दूर है, आ सकती थी गवर्नमेंट बचाने, लेकिन नहीं, शासन प्रशासन की गलती है, योगी दोषी है, मोदी दोषी है इसके।
4: कह रहे हैं SIT बना ली है हमने,
5: SIT बनाए चाहे कुछ भी बनाए, लेकिन मेरे देवर को तो वापस नहीं दे सकते।
6: कांग्रेस ने मध्य प्रदेश की मोहन यादव सरकार पर बड़ा हमला बोला है। मध्य प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष जीतू पटवारी ने आरोप लगाया है कि मोहन यादव और उनके परिवार ने उज्जैन में जहां जमीनें खरीदी वहीं से परियोजनाएं निकाली गई हैं।
7: मध्य प्रदेश कांग्रेस ने बाकायदा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सीएम मोहन यादव पर उज्जैन में जमीन खरीदी को लेकर सनसनीखेज आरोप लगाए। कांग्रेस का आरोप है कि मुख्यमंत्री बनने के बाद मोहन यादव और उनके परिवार की ओर से जमीन खरीद में तेजी आई और जिन क्षेत्रों में बाद में विकास परियोजनाएं घोषित हुई वहां पहले से जमीन खरीदी गई। जीतू पटवारी ने कहा कि उज्जैन में जमीन खरीद का मामला भी गंभीर सवाल खड़े कर रहा है।
8: मुख्यमंत्री परिवार की सभी कंपनियों के हिस्सेदार फॉरेंसिक ऑडिट कराने के लिए तैयार है। मीडिया रिपोर्ट्स ने दावा किया कि भूमि खरीदी के कुछ समय बाद ही हाउसिंग प्रोजेक्ट बिल्डर एग्रीमेंट शुरू हो गए उन कंपनी उन जमीनों पर। क्या पहले नियोजित व्यवसाय की रणनीति का हिस्सा था कि जमीन खरीदेंगे, मास्टर प्लान में चेंज आएंगे, परियोजना लाएंगे, उस बीच में रियल एस्टेट कंपनी से हम अपना एग्रीमेंट करेंगे और जो 10 रुपए की जमीन है वो 1000 रुपए की करेंगे, ये पहले से प्लान आउट था क्या? क्या यह सही है कि कुछ परियोजनाओं में भूमि मालिकों के विकसित संपत्ति 60% से 70% का हिस्सा है जिनकी भूमि है मुख्यमंत्री की हो उसके परिवार की हो।
7: जीतू पटवारी के मुताबिक मोहन यादव 2021 में मंत्री बने थे, 13 दिसंबर 2023 में वो मुख्यमंत्री बने। 21 से 23 के बीच में उनके परिवार के निकट सदस्यों के पास लगभग 194 प्लॉट बने। उनके परिवार के पास अलग अलग जगहों पर 253 एकड़ जमीनें हैं। उन्होंने आरोप लगाया है कि 21 से 25 के बीच में 253 एकड़ जमीनें खरीदी गई हैं। सूत्रों के मुताबिक सीएम दफ्तर ने इस पर सफाई दी है जिसमें लिखा है कि मुख्यमंत्री मोहन यादव ने दिसंबर 2023 में मुख्यमंत्री बनने के बाद कोई जमीन नहीं खरीदी है। मुख्यमंत्री मोहन यादव की पत्नी सीमा यादव ने भी उनके मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री बनने के बाद कोई जमीन नहीं खरीदी है। मोहन यादव का दफ्तर इस पर बाद में एक विस्तृत रिपोर्ट भी जारी करेगा। आज तक ब्यूरो।
6: इसी के साथ हम यहाँ रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए, आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आज तक।
9: कब कोई व्यक्ति लगातार विदेश की यात्राएं करता है, कब कोई व्यक्ति विदेश में जाके परमानेंटली बस जाता है, कब किसी व्यक्ति के विदेश जाने में अड़चने आती हैं, विदेश यात्रा के बारे में ज्योतिष क्या कहता है, जानिए मेरे साथ सिर्फ भाग्य चक्र में।
10: Music for every mood lives on TuneIn. Whether you want to relax, focus, or turn things up, you'll find the right station. Hear from the top stations, like today's hits. Classic rock. Coffee House and more. Stream non-stop music from stations you know and new favorites waiting to be discovered. Just search music or ask your device to play your favorite music station on TuneIn.
11: आज तक ला रहा है आपके लिए वीडियो वाला पेपर हर रोज सुबह आपके मोबाइल पर, वो भी आपके पुराने न्यूज़पेपर से पहले। इसे पढ़ने के लिए अपने डिवाइस पर ePaper.aajtak.in टाइप करें या फिर स्क्रीन पर दिए हुए QR कोड को स्कैन करें।

क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com

0: Stay in the game with TuneIn. Hear nonstop sports talk, live games, and coverage that never slows down. Keep up with your favorite teams from every play to every post-game breakdown. Listen to sports stations like ESPN Radio, NBC Sports Radio, Big 12 Radio, Talk Sport, and more. Plus, catch live games all year round, so you never miss a moment of sports action. Start listening on TuneIn.
1: टीएमसी के लिए लड़ाई तेज हो गई है। इस बार रीता प्रताप बनर्जी के नेतृत्व वाले बागी विधायकों के गुट ने ममता बनर्जी के नेतृत्व को सीधे चुनौती दी है। बागी गुट ने एक नई राष्ट्रीय कार्यकारी समिति बनाई है और ममता बनर्जी को अध्यक्ष पद से हटा दिया है। बागी गुट ने ममता की जगह अरूप रॉय को टीएमसी का अध्यक्ष चुना है। अभिषेक बनर्जी को सस्पेंड कर दिया गया है। बागी गुट का दावा है कि वे ही असली टीएमसी हैं। बागी गुट का दावा है कि पार्टी के भीतर संवैधानिक संकट की वजह से ये बैठक बुलाई गई थी। रताप्रता बनर्जी ने कहा है कि पार्टी संविधान के मुताबिक हर 3 साल में राष्ट्रीय कार्यकारी समिति का गठन जरूरी है और आखिरी बार यह समिति फरवरी 2022 में बनाई गई थी। ऐसे में पार्टी के राष्ट्रीय नेतृत्व के पुनर्गठन की प्रक्रिया शुरू करना जरूरी हो गया था। कोलकाता के पूर्व मेयर फरहाद हकीम बागी गुट में शामिल हो गए हैं, जिसके बाद दीदी ने सख्त रुख अपनाते हुए हाकिम सहित 8 शीर्ष नेताओं को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। ममता गुट ने पलटवार करते हुए बागियों को गद्दार कहा है और कोई भी कार्रवाई करने के उनके अधिकार पर सवाल उठाए हैं।
2: जो बहिष्कृत लीडर है, जो बहिष्कृत आदमी है, एक चोर दूसरे को चोर कैसे बता सकता है? वो तो अपने ही सस्पेंडेड है। एक सस्पेंडेड आदमी दूसरे को कैसे सस्पेंड कर सकता है? ममता बनर्जी चेयरपर्सन है, अभिषेक बनर्जी जनरल सेक्रेटरी है।
1: उधर बागी सांसदों ने संकेत दिए हैं कि वे पार्टी के चुनाव चिन्ह पर दावा करने के लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे। बागी विधायकों ने भी पार्टी के नाम और सिंबल पर अपना दावा ठोका है। ब्यूरो रिपोर्ट आज तक।

0: लखनऊ अग्निकांड पर सीएम योगी की समीक्षा बैठक का फायर सेफ्टी मानकों से समझौता नहीं। अखिलेश बोले बीजेपी राज में पास नक्शों का हो हिसाब। ब्रिजेश पाठक ने मौत पर राजनीति न करने की नसीहत दी। चार आरोपियों को न्यायिक हिरासत। राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में एसआईटी ने यूपी सरकार को सौंपी प्रारंभिक रिपोर्ट। फिलहाल किसी को क्लीन चिट नहीं। कुछ कर्मचारियों पर केस की सिफारिश। एसपी सांसद अवधेश प्रसाद ने सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के तहत जांच की मांग की। भोजपुर के भरत तिवारी एनकाउंटर पर एक्शन। जगदीशपुर के एसडीपीओ शाहपुर थानाध्यक्ष समेत कई पुलिसकर्मियों पर एफआईआर। बवाल के बाद बैकफुट पर बिहार पुलिस। नीट पर आज तक से बोले धर्मेंद्र प्रधान, लीग के मुजरिमों को छोड़ेंगे नहीं। दोबारा गड़बड़ी रोकने की पूरी कोशिश। राहुल गांधी पर लगाया छात्रों को भड़काने का आरोप। पद्म पुरस्कारों से 65 हस्तियां सम्मानित। शिबु सोरेन को मिला मरणोपरांत पद्म भूषण। रोहित शर्मा अलका याग्निक ममूटी को राष्ट्रपति ने दिया सम्मान। लखनऊ अग्निकांड ने सिर्फ एक शहर को नहीं बल्कि पूरे देश को हिलाकर रख दिया है। 15 लोग जलकर मर गए, वो भी उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में, जहां से सरकार चलती है, जहां बुलडोजर से लेकर एनकाउंटर तक के ऑर्डर निकाले जाते हैं। लेकिन एक बिल्डिंग जो रिहायशी इमारत के तौर पर बनाई जाती है और उसे कमर्शियल में तब्दील कर दिया जाता है, और राजधानी में बैठे सत्ताधीश बड़े बड़े ऑफिसर उससे आंखें मूंद लेते हैं, और वही बिल्डिंग 15 मौतों का मरघट बनकर स्याह खड़ी रहती है। वही जिम्मेदार है, वही सत्ताधीश इमारत का मुआयना करने पहुंचते हैं। सवाल सिर्फ यही इन्हीं ऑफिसर से, इन्हीं सत्ताधीशों से, कि क्या वो 15 मौतों की जिम्मेदारी लेकर खुद को आईना दिखा पाएंगे।
1: मेरा बेटा भी जिंदा होता, मेरा बेटा भी होता दुनिया में।
2: 15 लोग जिंदा जल गए, क्या जिंदगी इतनी सस्ती है?
3: ये पापा बचाओ, कैसे भी करके आग लग गए।
2: पहले ऐसा मुआयना होता तो अग्निकांड क्यों होता? पंद्रह मौतों का सवाल है, जिम्मेदारों को जवाब तो देना पड़ेगा। कैसे एक रिहायशी बिल्डिंग कमर्शियल में बदल गई? किस किस का भ्रष्टाचार 15 बेगुनाहों की मौत का कारण बना?
4: माँ के सामने बेटा अंदर,
5: मौके कोई था ही नहीं, बंद था।